देवताओं में सब देवता श्रृंगार कर रहे हैं, बराज जाना है, तो सबसे ज्यादा श्रृंगार कर रहा है यमराज। एक तो उसे कहीं बुलाया नहीं जाता, बड़े कम बराते मिली, ये स्पेशल बरात। यमराज का वाहन क्या है? भैंसा। अब यमराज लगा भैंसा को रगड़ने, लगा रगड़ने, एकदम रगड़े। अब भैंसा बेचारा बड़ा परेशान, बोले महाराज एक बात बताओ, आज इतनी रगड़ाई क्यों हो रही है? बोले आज तुझे काला से गोरा करें। क्यों? बरात जाना है। भैंसा बोला महाराज

0: デビデオタ。
1: あ、またジビア。
0: देवी देवता सब श्रृंगार कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ में। अब आगे का जो श्रृंगार सब देवताओं का हो रहा वो बेहतर हो रहा। तो नंदी भृंगी श्रृंगी आपस में बोले कैसे श्रृंगार करें कैसे करें। बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले पहले तो इनकी जटाओं को ठीक करो, मुकुट चाहिए। अब मुकुट कहां से लाएं? तो नंदी जी ने उपाय निकाला, दूल्हे के सिर पर मुकुट होता है। अब भोले बाबा का मुकुट क्या है?

0: कौन सा मुकुट?
1: जटाओं का मुकुट। तो जटाओं का मुकुट बना दिया।
0: अच्छा, अब जटाओं का मुकुट तो बना दिया, तो नंदी जी बोले भाई मुकुट हो गया, अब मोर चाहिए। ये मोर क्या है? बोले दूल्हा के आगे लंबा लंबा पतला पतला लटका रहता है, वो लटक जाए तो मोर हो जाएगा, दूल्हा का श्रृंगार बेहतर हो जाएगा, मुख दिखे भी और दिखे भी ना, ऐसा हो उसे मोर कहते हैं। तो बोले भाई मोर कहाँ से मिलेगा? बोले मोर तो नहीं है। नंदी जी बोले रुको हम अभी लेकर आते हैं। नंदी जी भागे भागे गए और एक किनारे में कैलाश पर्वत पर जाकर पतले पतले छोटे छोटे सांपों को पकड़ा, और सांपों को पकड़कर सांपों के मुंह में एक सांप की गांठ लगाई और भागे भागे आए, मुंह को फंसा दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने, बोले लो बढ़िया मोर बन गया है। तो भोले बाबा को भस्म राख, मुर्दे की राख से पाउडर बनाकर श्रृंगार किया गया। नंदी बोले बाबा का श्रृंगार अब भस्म का तो हो गया, पाउडर तो हो गया, अब भाई शेरवानी तो है नहीं, बाबा आपकी आज्ञा हो तो किसी का कोट नहीं तो कम से कम गमछा उधार मांग ले। बोले बाबा बोले नहीं ऐसे ही काम चलेगा। नंदी जी बोले महाराज जिस हिसाब से यहाँ बैठे हो, यहाँ तो हम लोग रहते हैं तो काम चल जाता है, वहाँ बारात वाला मामला है जिसके यहाँ पर लड़की लेने जाएंगे, शादी में जाएंगे, आपको देखेगा इस हाल में कौन विवाह कर देगा, तो कम से कम कुछ नहीं तो इज्जत तो ढक लो, इज्जत तो ढक लो। अब कैसे ढके? तो नंदी बोले महाराज आप बुरा ना मानो तो थोड़ी देर खड़े हो। भोले बाबा खड़े हुए तो जिस मृग छाला पे बैठे थे उसी मृग छाला को कमर में लपेट दिया। बोले कम से कम इज्जत तो बची रहे। बोलो सीताराम भाई, शेरवानी नहीं पहननी पर कम से कम यही बांध लो। अच्छा शेरवानी नहीं पहननी तो मृग छाला बांध लो, पर मृग छाला में बटन थोड़ी थे जो रुक जाए। अब नंदी जी के सामने दूसरी दिक्कत कि मृग छाला कमर तो मैं बांध तो दी पर ये रुके कैसे? तो किसी ने कहा एक सेवक की ड्यूटी लगाओ वो पकड़े रहे। नंदी जी बोले वाह, मान लो बारात के बीच में जब भांवर में सात भांवर पड़े उसी बीच में उसका हाथ दर्द करने लगे, वो हाथ पलटे और छूट जाए, छूट जाए तो सब मामला ना गड़बड़ हो जाएगा है? इतनी बनी मनाई इज्जत सवा गड़बड़ हो जाए तो क्या किया जाए? नंदी जी बोले एक दूसरा उपाय। बोले क्या? बोले एक अभी अभी रुको। नंदी जी भागे भागे गए, काला काला एक लंबा सांप पकड़ ले आए, और सांप पकड़ करके लाए और कमर में पहले मृग छाला बांधी और फिर ऊपर से सांप को बांधा और सांप से बोले सुनो पृथ्वी पलट जाए पर तुम्हें नहीं खिसकना है, तुम्हें वहीं रहना है और पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर लगी है दाव। सांप बोला आप टेंशन ना लो, बाबा की आज्ञा है तो बस है, हम सेवा करेंगे। आहा बढ़िया, आप श्रृंगार पूरा हो ही गया, बढ़िया भस्म हो गई, मृग छाला हो गई, बढ़िया मुकुट हो गया, मोर हो गया, गंगा जी चंद्रमा चमक ही रहा, गंगा जी बह ही रही, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दिया। भोले बाबा मैंने पहली बार अपने रूप को ऐसा देखा। अरे भाई वाह, एक तो स्वयं कर्पूर की तरह, कपूर की तरह धवल देह है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऊपर से आज श्रृंगार हुआ और फिर बारात में जाना है। नंदी जी बोले बुरा ना माने तो हम आपको रथ ले आए। भोले बाबा बोले नहीं हम तो नंदी पर ही जाएंगे, जो आज्ञा प्रभु आपकी, जो आज्ञा, सेवक तैयार है। भोले बाबा ने अपने स्वरूप को देखा, खुद के स्वरूप को देख करके ही खुश हो गए, सोई डमरू उठाई और डमरू बजाते हुए बाबा मस्त होकर के झूमने लगे। अच्छा बाबा को मस्त देखा तो फिर चेले कहां रहे? तो भोले बाबा मस्त, सुनंदी भृंगी श्रृंगी सब बाबा की मस्ती में आनंद से झूमने लगे, दमक दमक।

0: अब ऐसे भी कथा की दक्षिणा तो लगती है, तो कुछ ना कुछ तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे माता जी, तो दक्षिणा में यही चढ़ा दें, जय बजरंग बली की, हनुमान जी महाराज की
1: जय हो।
0: आहा, तो सती जी चरणों की सेवा करने लगी। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारी माता जी, चाची जी और हमारी बहन जी की सासू माँ, वो भी माता जी देवराज से सब पूरा परिवार भागवत कथा सुनने के लिए आया हुआ है, और देवरा वाले पापा जी भी आए हैं, तो सब रिश्तेदार सहित, मतलब माता जी बैठी तो पीछे की तरफ उनके समधी भी बैठे हैं। आज बड़ा अद्भुत नज़ारा है ये, हमने तो पहली बार ऐसा देखा है, पहली बार देखा है, बड़ा अद्भुत नज़ारा है, बड़ी अद्भुत बात है, प्रसन्नता की बात है, बड़ा अभूतपूर्व नज़ारा है, तो हम भी बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा, ये भगवान की अनुकंपा होती है, बारात में जाएंगे लोग हमें देखेंगे, वो आप कभी बारात का पूरा आंकलन निकालना तो आप पाओगे बारात में कोई किसी को नहीं देखता, हाँ सब अपने को ही देखते रहते। पूरी बारात का यदि आंकलन निकाला जाए तो बारात में सब श्रृंगार करके इसलिए जाते हैं कि जब बारात में जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे, और सच ये है कोई किसी को नहीं देखता, देखो इसकी तो काली टी शर्ट है, हमारी तो लाल है, इनके तो ऐसे कपड़े, हमारे तो ऐसे हैं, सब आपस में यही बात मन में सोचते रहते। अच्छा, कई बार तो इतना श्रृंगार लोग कर लेते, इतना पाउडर लगा लेते कि शीशा दर्पण ही मना कर देता, भैया रहने दो, अब रहने दो रहने दो। तो आजकल तो उसका जमाना आ गया मेकअप का, सबसे ज्यादा तो ब्यूटी पार्लर वालों को लगेगा। सबसे ज्यादा श्राप यदि किसी बूटी पर, वो कब गोरे को काला, काले को गोरा, राम राम राम राम राम राम राम, क्या जमाना आ गया, हनुमान जी ही बचाएं, धन्य है बूटी पार्लर का जमाना। 5,000 की क्रीम, 10,000 की क्रीम, हे भगवान। और यहां से तो जो बच्चियां बच्चे जो जो जाते हैं बड़े ठीक ठाक दिखने में जाते हैं, वहां से ऐसे आते निकल करके आए, आओ आओ आओ आओ, अरे राम राम राम राम राम। हमारा एक चेला था चंगीलाल, उसकी घरवाली एकदम काली अमावस्या जैसी, देखने गया तो मेकअप में दिखा दिया, मेकअप में दिखाया तो गोरी दिखी, हमारे पास आया, बोले गुरुजी आपकी कृपा से शादी तय हो गई। हमने कहा क्या नाम है, बोले मुन्नी बाई नाम है। हमने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शादी करो शादी करो, बहुत अच्छा है, करो करो करो, करो। लेकिन भगवान की कृपा, बोला देखो गुरुजी कभी ना कभी तो गृहस्थ में जाना ही है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अब जब वो शादी में दूल्हा बन के गया तो भगवान की उस पर विशेष कृपा थी, हमारा तो आशीर्वाद था ही, भगवान की कृपा। उस जमाने में वाटर प्रूफ नहीं चलता था, मेकअप नॉर्मली चलता था, अब तो वाटर प्रूफ आ गया, नॉर्मल चलता था। तो एकदम काली अमावस्या जैसी, लेकिन एकदम मेकअप में ऐसी लगे जैसे पूनम का चंद्रमा उदय होकर के आ गया। की बात, बारिश हो गई और टेंट के नीचे शादी, तो जो हाल हुआ, ज्यों ज्यों बूंदें गिरे त्यों त्यों रंग निखर कर बाहर आए, और एकदम भगवान कृष्ण कन्हैया श्याम वर्ण बनते हुए आभा मंडल से प्रकट भए, और इसकी नजर होने वाली घरवाली पे गई, अरे बोले धोखा हो गया, भागा मंडप से ही। हमारे पास रात्रि में आया, हमका चेला था आज तो तुम्हारी शादी है, इधर क्या कर रहे, अरे बोले गुरु बच गए। हमका हुआ क्या, अरे बोले इंद्र देवता ने बचा लिया, मेकअप के चक्कर में वो गोरी दिख रही थी महाराज, इतनी काली है कि छोटे छोटे जब बच्चे होंगे और उनको बिना मेकअप के दिखा दिया जाएगा तो डर जाएंगे। अरे हमका तो फिर ठीक है, तो मेकअप वाले बड़े, अब उनका भी खैर मेकअप की बुराई नहीं हम कर रहे, श्रृंगार तो करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। फिर से सुनो, श्रृंगार करना चाहिए। अच्छा, बुंदेलखंड में श्रृंगार को सजना कहते हैं। क्या कर रहे हैं? बोले सज रहे हैं, सजना हो रहा है, सजावट हो रही है। तो सजावट का ही अभ्रंश होकर के शब्द बना सजना। सजना तो चाहिए, पर संसार रूपी सजना के लिए नहीं सजना चाहिए, परमात्मा रूपी सजना के लिए सजना चाहिए। हाँ हाँ, सजना तो चाहिए पर संसार रूपी सजना के लिए नहीं सजना चाहिए, परमात्मा रूपी सजना के लिए सजना चाहिए। क्यों? संसार के लिए श्रृंगार पड़ करोगे तो काम में फंसोगे, और परमात्मा के लिए श्रृंगार करोगे तो राम में फंसोगे। दोनों, श्रृंगार का उद्देश्य क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार का उद्देश्य यदि भगवान को रिझाना है बहुत बढ़िया है, तब तो खूब बढ़िया श्रृंगार करके, नख सिख श्रृंगार कर भगवान के सन्मुख जाना चाहिए कि प्रभु अब हमारे पास गुण तो है नहीं है, रूप भी ठीक ठाक आपसे कभी हो ही नहीं सकता, जो है इसी को देखकर हंस लो, आप रीझ जाओ। इस भाव से यदि श्रृंगार है तो ठीक है, बाकी यदि श्रृंगार की दृष्टि से श्रृंगार है तो भगवान ही बच

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: सावन के दूसरे सोमवार पर कौन सा संयोग बन रहा है? सावन के दूसरे सोमवार पर शिव जी की पूजा का क्या होगा विधान? और सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: सावन के महीने का आज दूसरा सोमवार, जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, बाबा की पूजा अर्चना के लिए सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग। जगह जगह दिख रहे हैं कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग, प्रयागराज में कांवड़ियों ने लगाई आस्था की डुबकी, मुंगेर में 60 साल की डाक कांवड़ शिव भक्तों के बीच बनी आकर्षण का केंद्र। कांवड़ियों के नाम सीएम योगी की पाती, कांवड़ यात्रा को बताया सामाजिक समरसता का महापर्व, इको फ्रेंडली कांवड़ अपनाने और प्लास्टिक मुक्त जीवन के संकल्प की अपील की। देवभूमि उत्तराखंड में आज मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में आज स्कूल और आंगनबाड़ी रहेंगे बंद। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे यात्रा की अगुवाई, 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज का दिन बेहद खास है। आज भगवान शिव के प्रिय सावन के पावन महीने का दूसरा सोमवार है, लिहाजा तड़के से ही द्वादश ज्योतिर्लिंगों सहित देश के कोने कोने में शिव मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं, भक्तों और कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है। लोग मंदिरों में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। उज्जैन हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, अयोध्या, हरिद्वार और देवघर जैसे स्थलों से लेकर मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद और गुवाहाटी सहित तमाम जगहों पर मंदिर में भोले भंडारी कैलाशपति शिवशंकर महादेव के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और खास बात यह है कि सावन के दूसरे सोमवार के शुभ अवसर पर आज कई दुर्लभ धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय संयोग भी बन रहे हैं जो बड़े कल्याणकारी माने जा रहे हैं। आपको बता दें, ये मान्यता है कि इन संयोगों में बाबा भोलेनाथ की पूजा से अपार फल की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खासतौर से सावन के सोमवार और सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग बनने से आज के दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। उज्जैन से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरती हो रही है, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की जा रही है। यहां पर किस तरह से आरती हो रही है वो तस्वीर आप देखिए। आज सावन का दूसरा सोमवार और आज श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। ये दुर्लभ तस्वीर आपके सामने है, ये दर्शन हम आपको करवा रहे हैं महाकाल मंदिर से।

0: देखिए आज दिन भर देश भर के शिवालयों की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। इसी बीच अब रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है, मनीषा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के भक्ति के रंग वहां पर देखने को मिल रहे हैं, किस तरह का जोश, किस तरह का उमंग?
1: दीपाली, में तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि भीड़ थोड़ी ज्यादा जो है अब वो होती जा रही है। हालांकि आज के अगर हम बात करें, दूसरा सोमवार है, लेकिन उतनी भीड़ मंदिर के बाहर नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा जो भीड़ है वो भी लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं दर्शन करवाना चाहूंगी कि कितने खूबसूरती के साथ जो है भगवान शंकर और माँ गौरी का जो है श्रृंगार किया गया। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वाकई में पूरा मंदिर परिसर इस वक्त भक्तिमय हो चुका है। और यही जो रौनक है, ये दिखाती है कि किस तरीके से भोले के प्रति जो प्यार है, जो भक्ति है, वो लोगों की नजर आती है। सुबह से ही मंदिर जो है वो खोल दिया गया था, और उसके बाद से ही इसी तरीके से भक्तों की भीड़ जो आपको नजर आएगी, और साथ ही साथ आपको लगातार सेवादार यहाँ पर जो है वो नजर आ जाएंगे, जो भक्तों की जो भीड़ यहाँ पर आ रही है उसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे, ताकि किसी तरीके से किसी भी भक्त को कोई तकलीफ ना हो और हर कोई जो है अच्छे से दर्शन कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि हर कोई अपनी आस्था में लीन आपको इस वक्त नजर आएगा, हर कोई अपने परिवार के लिए जो है यहाँ पे मनोकामना मांगते हुए जो है वो नजर आने वाला है कि किस तरीके से भगवान शंकर के सामने, अपने आराध्य के सामने जो है माथा टेका जा रहा है। भक्तों के चेहरे पे मुस्कुराहट है जैसे ही वो मंदिर में कदम रखते हैं, क्योंकि वाकई में जो माहौल अंदर का है वो मन को जो है काफी ज्यादा सुकून देता है। और कहते हैं कि सावन का जो महीना होता है वो वाकई में इतना पावन होता है कि करोड़ों लोग जो है शिव भक्त जो है वो उनके लिए आस्था, विश्वास और महादेव से जुड़ने का जो है समय माना जाता है। तो दूसरा सोमवार है, और कल की अगर हम बात करें तो कल जो है जल चढ़ाया जाएगा, तो कांवड़ियों के लिए भी जो है बेहद ही कल का दिन जो है खास रहने वाला है। लेकिन आज गौरीशंकर मंदिर की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कितना ज्यादा ऐतिहासिक मंदिर है, और यहाँ पर हर कोई जो है वो जरूर आना चाहता है, सेवा जो है वो करना चाहता है। और लेकिन भक्तों की भीड़ एक बार मैं दिखाती हूँ, मंदिर परिसर को भी बेहद ही खूबसूरती के साथ जो है वो सजाया गया था यहाँ पर। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से माहौल जो है वो पूरा भक्तिमय हो चुका है, और यहाँ पर जिस तरीके से भक्त आपको जो वो नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हर कोई जो है यहाँ पर जयकारों के साथ उनका जो है वो स्वागत कर रहा है, और अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार जो है लोग यहाँ पर भगवान को पसंद करने के लिए जो है वो चीजें लेकर आए। आप कुछ बनाकर लेकर आए खास? मैंने
2: खीर लेकर आई थी,
1: खीर लेकर आई थी। और कैसे प्रसन्न करने की जो है वो तैयारी की जा रही है?
2: बस परमात्मा को बेल पत्र वगैरह सब कुछ चढ़ाया जा रहा है।
1: चढ़ा दिया, दर्शन कर लिए आपने?
2: दर्शन कर लिए बाहर से ही।
1: कैसे दर्शन हुए आज?
2: बहुत खुले दर्शन हुए।
1: आज भीड़ भी नहीं है?
2: आज इतनी नहीं है जितनी पहले वो थी ना, तो आज डर डर के आए थे हम लोग।
1: आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुश करने की तैयारी जो चल रही है, आप यहाँ देखेंगे तो बेलपत्र का जो है टोकरा आपको नजर आ जाएगा, फूल इत्यादि और दूध, गंगा जल जो है, इस तरीके की तमाम चीजें जो है आपको नजर आने वाली है, क्योंकि हर कोई अपने आराध्य को प्रसन्न करना चाहता है। आज तो भीड़ नहीं मिली तो खुशी नजर आ रही है?
3: खुशी है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हम,
1: बिना घंटों के इंतजार के बाद यहाँ पे दर्शन कर रहे
4: हैं। हाँ जी, आज तो भीड़ नहीं है, पिछले मंडे बहुत भीड़ थी,
1: लेकिन कल जब जल चलाया जाएगा तो उम्मीद कर सकते हैं कि भीड़
4: बहुत ज्यादा,
1: कल भीड़ होने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लड़कियाँ भी जो है वो नजर आ जाएगी। लड़कियों के लिए सावन सोमवार बेहद खास माना जाता है, व्रत रखा है?
4: हाँ जी
1: रखा है। चलो, मनोकामना नहीं पूछूंगी, पूरी हो इस मंदिर में जो है हर कोई आ रहा है। आप चेहरे में मुस्कुराहट देखिए, क्या लेकर आए आप?
5: बेलपत्र, जल, चावल, मूंग की दाल।
1: अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है आपको यहाँ पर जो भक्त है वो नजर आने वाले दीपावली और सावन शिवरात्रि जो होती है उस मौके पर भी जो है श्रद्धालु जो है मंदिर में बड़ी तादाद में पहुँचते हैं, भगवान शिव को जो है जल, बेलपत्र, धतूरा, दूध इत्यादि जो है आराधना, अपने आराध्य को जो है वो चढ़ाया जाता है, उनसे आराधना जो है वो की जाती है। और मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को महादेव का जो है वो आशीर्वाद जरूर मिलता है, और उसी आशीर्वाद की कामना करते हुए जो है आपको भक्त यहाँ पर जो है वो नजर आ जाएंगे। ये बाहर की तस्वीर भी दिखा रही हूँ। अब धीरे धीरे करके जो है लाइनें जो है वो लगनी शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं कि लोगों की तादाद भी जो है भी थोड़ी थोड़ी देर बाद बढ़ेगी, क्योंकि दिन का समय है। हालांकि पहले सावन के जब पहले सोमवार की बात करते हैं तो वो नजारा अलग ही होता है, लेकिन वैसे पूरा महीना ही बहुत खास है, तो ये आपको नजारा जो है वो धीरे धीरे कर कुछ इस तरीके की तस्वीरें जो है नजर आने वाली है। और यहाँ पर जो आपको बम बम बोले और भोले शंकर की जो आपको जयकारे हैं वो लगातार यहाँ पर सुनते हुए जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि ये जितने भी सेवादार हैं ये इनका जोश बनाने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए जो है भक्तों का इस तरीके से कर रहे हैं।
6: बोल शंकर गौरी महाराज की जय।
1: देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मंदिर की रौनक जो है वो आपको दिखने वाली है। आपको वहां पर जो है भोले भी नजर आ जाएंगे कि वो भी आज जो है वो जल चढ़ाना है। हर कोई जो है कोई आज चढ़ा रहा है, कोई सोमवार है जैसे कि आज, या फिर कोई कल जल चढ़ाएगा। तो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो नजर आने वाली है। वाकई में दीपावली
0: जिस तरीके से आप तस्वीरें भी लगातार दिखा रही है, पहले सोमवार से आज तक की तस्वीरें आपने लगातार दिखाई है जीएनटी के माध्यम से, और खासा जोश खासा उत्साह देखने को मिलता है श्रद्धालुओं का। आज खास तौर से एक दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, सुबह कितने बजे से श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है, और क्या पूजा का कोई शुभ मुहूर्त भी है?
1: बिल्कुल दीपाली, अगर शुभ मुहूर्त की बात करूं तो ये महीना जो पूरा होता है ये वाकई में शुभ होता है, तो आप किसी भी समय जो है पूजा कर सकते हो। हालांकि अगर इस मंदिर की बात करूं तो 4 बजे के लगभग जो है मंदिर जो है वो भक्तों के लिए खोला गया था, लेकिन भक्त यहां पर पहले से ही आना जो है वो शुरू कर देते, क्योंकि अंदाजा नहीं होता कि कितनी भीड़ जो है वो यहां पर मिलने वाली है। तो 4 बजे से मंदिर जो है खोल दिया गया था, श्रृंगार किया गया, आरती जो है वो सुबह सुबह होती है, और अब इसके बाद जो है संध्या आरती होगी। अगर मैं भगवान के श्रृंगार की बात करूं तो 2 बजे के आसपास जो है भगवान का श्रृंगार जो है वो वापस से आ जाएगा। लेकिन जितने भी भक्त यहाँ पर इस वक्त मौजूद है वो अपने हिसाब से जो है यहाँ पर वो आरती जो है कभी भी करने लग जाते हैं, और लेकिन जब एक भक्त आरती करना शुरू करता है तो यहाँ पर आपको भीड़ नजर आ जाएगी कि कैसे उस आरती में जो है भीड़ पूरी तरीके से जो है मिल जाती है, जुड़ जाती है, और उसके बाद जो है वो आरती की जाती है। तो जिस तरीके से मैं कहा कि पूरा महीना ही जो है वो शुभ है, हर समय हर घंटा जो है वो शुभ है, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा समय नहीं है। लेकिन अगर मंदिर परिसर की बात करूं तो सुबह और रात के टाइम जो है यहाँ पर आरती होती है, और 2 टाइम जो है श्रृंगार किया जाता है। हर तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है, चाहे वो भक्तों की भीड़ को देखने के लिए व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, या फिर गर्मी का समय है तो हर एक तरीके का इंतजाम जो है वो यहाँ किया गया है। यहाँ पे सेवादार तो आपको नजर आ ही रहे कि किस तरीके से भक्तों का जोश जो है ये सेवादार भी बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ इस तरीके से जल कोई जो है उनको दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जल के लिए पहले अलग से भी आपको जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन खास सावन को देखते हुए ये इस तरीके की व्यवस्था जो है यहीं पर कर देते हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, और वो बीच में से ही जो है जल लेकर आगे बढ़ते हुए जो है नजर आएगा। अच्छा, आपको एक चीज और नजर आ जाएगी, यहाँ पर आपको जो बड़े बड़े ये बाल्टी नजर भी आ रही है ना, ये जो टब जैसा है ये भी आपको तांबे का नजर आएगा कि किस तरीके से, क्योंकि तांबे के उसमें कहते हैं कि उसमें जो है शुभ माना जाता है। तो ये देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने जल भरा हुआ है, और इसी के अंदर जो है वो लोटा आपको जो है वो नजर आ जाएगा, और इसके बाद ही जो है पानी लोगों को जल जो है वो जल जो है वो भर भर के जो है दिया जा रहा है। तो वाक्य में मंदिर बेहद ही इस वक्त भक्ति में हो चुका है, भोलेनाथ की कृपा जो है हर किसी में पड़े यही हर कोई मनोकामना कर रहा है, हर कोई सुख समृद्धि का आशीर्वाद के लिए जो है वो यहाँ पर आ रहा है। कोई परिवार की मनोकामना मांगता है सुख समृद्धि की, तो कोई अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना यहाँ पर जो है वो करता हुआ आपको नजर आ जाएगा, लेकिन हर किसी के मन में ढेर सारी भक्ति और आस्था नजर आने वाला है। आंख झुकाकर जो है सिर झुकाकर माफ कीजिएगा सिर झुकाकर जो है आंख बंद कर हाथ जोड़कर जो है हर कोई प्रार्थना में लीन यहाँ पर है। कोई जो है दिया से उनकी पूजा कर रहा है, कोई जल और बेलपत्र जो है उनको अर्पित कर रहा है, कोई दूध इस तरीके से अर्पित कर रहा है, कोई जोड़े में आया है, तो कोई यहाँ पर अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से चेहरों पर जो है लोगों की मुस्कान नजर आ जाएगी। भक्तों का जोश आप कैसे बढ़ाते हो, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है, मैं आप लोगों को भी देखती हूँ, आप भी लगातार जोश बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं,
6: चल रहे हैं क्योंकि इनसे इनका हौसला बढ़ता है और आगे लाइन भरती रहती है बहुत जल्दी जल्दी।
1: लेकिन आज तो जैसे कि भीड़ भी रही है तो आप लोगों को भी थोड़ी तसल्ली मिली होगी।
6: हाँ ये तो है।
1: आप बताइए, हरा सूट पहनकर आप आए आज, सावन और हरा सूट?
7: जी जी।
1: क्या मानने वाले हो आज?
7: कुछ नहीं, बस ये दर्शन करते आए हैं। हाँ,
1: अभी दर्शन करना भी जरूरी है कि सिर्फ दर्शन ही कर लो, बाकी भोले ने जो करना होगा वो जो है वो देना होगा वो जरूर दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि चेहरे में मुस्कुराहट दीपाली, अगर आपने दर्शन नहीं करे तो मैं चाहूंगी आप भी जीएनटी के माध्यम से जो है भगवान शंकर और माँ गौरी के जो है दर्शन जरूर करें।
0: बिल्कुल मनीषा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम जीएनटी के माध्यम से दिन भर दर्शन कर पा रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है और हमारा आपका सभी का सौभाग्य है कि हम दर्शन कर पा रहे हैं लगातार शिव जी के, हम भी शिव भक्त हैं। आप जिस मंदिर में मौजूद हैं गौरी शंकर मंदिर, उसकी खासा मान्यता है और बहुत पुराना मंदिर है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, जरा इसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीपाली, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी भक्त यहाँ पर आ रहा है वो हमेशा ये सुनकर आते हैं कि मंदिर की मंदिर बहुत प्राचीन है, मंदिर की बहुत मान्यता है, लेकिन लोगों को पता जरूर होना चाहिए कि ऐसा क्या है इस मंदिर में। तो मैं बता दूं, मनोकामना का ये मंदिर माना जाता है, क्योंकि वाकई में किसी की मनोकामना पूर्ण हुई थी तभी ये मंदिर का जो है यहाँ पर जो मंदिर की स्थापना जो है वो की गई थी। 800 साल से ज्यादा पुराना ये गौरी शंकर मंदिर है। और अगर इस मंदिर की मैं बात करूं तो ये जो है मराठा सैनिक ने बनवाया था, अप्पा गंगाधर नाम के जो सैनिक थे, सेनापति जो थे, उन्होंने बनवाया था। और उन्होंने युद्ध के समय भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करी थी कि आप इस युद्ध में मेरा जीवन बचा लो, और अगर मेरा जीवन बच जाता है तो मैं आपके नाम पर एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर जो है उसकी स्थापना जरूर करूंगा। और महादेव ने उनकी वो पुकार सुनी, उनका जीवन जो है वो बचाया, और उसके बाद ये मंदिर का जो है वो निर्माण हुआ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अप्पा गंगाधर की जो है भगवान भोलेनाथ ने जो है मनोकामना पूर्ण करी, उनकी सुनी। तो यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं वो उसी मनोकामना के साथ आते हैं, उसी विश्वास के साथ आते हैं कि जिस तरीके से अप्पा गंगाधर की जो है मनोकामना पूर्ण करी थी, आप हमारी भी करना महादेव। और ये मंदिर जो है वो वाकई में आस्था, इतिहास, हर किसी से जुड़ा हुआ है, और लोगों का विश्वास ही जो है लोगों को यहाँ खींच कर लेकर आता है कि उनकी मनोकामना जो है वो महादेव पूरी करे। और यहाँ पर सिर्फ आपको महादेव नजर नहीं आएगी, यहाँ आपको गौरी माँ भी नजर आएगी। तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर आना मतलब दोनों का आशीर्वाद पाना है। और खास
0: बिल्कुल मनीषा, बहुत सुंदर वर्णन आपने किया है इस मंदिर का, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये सुंदर तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जीएनटी के माध्यम से तमाम दर्शकों को दर्शन करवाने के लिए। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जीएनटी पर लगातार कवरेज जारी है।

0: सावन के दूसरे सोमवार पर कौन सा संयोग बन रहा है? सावन के दूसरे सोमवार पर शिव जी की पूजा का क्या होगा विधान? और सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सावन के दूसरे सोमवार के बारे में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सावन के दूसरे सोमवार पर पूजा उपासना कैसे की जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और चंद्रमा तथा मंगल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, पूरे सावन के महीने में सोमवार का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और आज हम बात कर रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार के बारे में। तो दूसरा सोमवार जो इस बार आ रहा है, इसका महत्व क्या है। देखिए, सावन का दूसरा सोमवार प्रदोष की तिथि के साथ आ रहा है, यानी त्रयोदशी तिथि के साथ इस बार सावन का दूसरा सोमवार रहेगा। त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा करने से मनचाहा विवाह होता है। हर महीने की दोनों पक्ष की त्रयोदशी का अलग महत्व है और त्रयोदशी यानी प्रदोष और सोमवार का अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है जो जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। सोमवार के दिन उपवास रख कर शिव जी और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए और त्रयोदशी के दिन शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में। तो इस बार सावन का दूसरा सोमवार प्रदोष के संयोग के साथ है और इस बार सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब सावन के दूसरे सोमवार पर सामान्य रूप से कैसे पूजा की जाएगी वो भी जानते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रातः काल 12 बजे के पहले स्नान करके सफेद वस्त्र या महिला हैं तो पीला वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं और इसके बाद जितना संभव हो शिव जी के मंत्र का, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें।
सावन के सोमवार पर रात के समय शिव जी के सामने अगर घी का दीपक जलाएं और शिव मंत्र का जप करके प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। और अगर आप सावन के सोमवार पर जल और फल ग्रहण करें, नमक और अनाज का सेवन ना करें, यानी सावन के सोमवार पर उपवास रखें, तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। सावन के दूसरे सोमवार पर अलग अलग फूलों से और पत्तियों से भगवान शिव की पूजा कैसे करें, इस विषय पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस तरीके से सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से भगवान शिव की पूजा करेंगे। देखिए, अगर आप सोमवार पर सावन में शिवलिंग पर धतूरे का फूल अर्पित करते हैं तो मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, कम से कम 3 या 9 बेलपत्र अर्पित करें तो इच्छा पूर्ति होगी और आयु की वृद्धि होगी। जपा कुसुम यानी गुड़हल का फूल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। अगर आप शिवलिंग पर बेले का फूल अर्पित करें, बेले का पुष्प अर्पित करें तो सौभाग्यवती और सुशील पत्नी आपको मिलेगी। अगर हर सिंगार के फूल आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर आप शमी पत्र अर्पित करें, शमी के पेड़ के पत्ते अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो पापों का नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। याद रखिए, शिव जी को केतकी और केवड़ा अर्पित नहीं किया जाता, ये आप भगवान शिव को अर्पित ना करें। भगवान शिव की पूजा में आप उनको कोई भी फूल अर्पित करें अपनी मनोकामना के अनुसार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जल अवश्य अर्पित करिएगा, क्योंकि शिव जी जल से प्रसन्न होते हैं। अगर आप जल अर्पित करें शिवलिंग पर और शिव जी से प्रार्थना करें तो मात्र जल अर्पित करने से ही आपकी कामना पूरी हो जाएगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, फ्रिज, टीवी, ओवन, ये सब बार बार खराब हो रही हों तो उनके पीछे छोटे छोटे लाल रंग के स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर दें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं खराब होनी बंद हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 10 अगस्त 2026
दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है? प्रातः काल शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: सावन के महीने का आज दूसरा सोमवार, जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, बाबा की पूजा के लिए सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग। जगह जगह पर दिख रहे हैं कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग, प्रयागराज में कांवड़ियों ने लगाई आस्था की डुबकी, मुंगेर में 60 साल की डाक कांवड़ शिव भक्तों के बीच बनी आकर्षण का केंद्र।

0: बताया सामाजिक समरसता का महापर्व, इको फ्रेंडली कांवड़ अपनाने और प्लास्टिक मुक्त जीवन के संकल्प की अपील। देवभूमि उत्तराखंड में आज मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में आज स्कूल और आंगनबाड़ी रहेंगे बंद। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे यात्रा की अगुवाई, 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का है लक्ष्य।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
0: तो आज के शो में हम बात करेंगे सावन के दूसरे सोमवार की, जो कि आने वाला है। पंडित जी से जानेंगे कि सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव जी को कौन से फूल और पत्तियां अर्पित करें जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुडलक मंत्र क्या है।
2: अगर आपको जीवन में बिना कारण के व्यर्थ का, बेवजह का अपयश मिल रहा है तो हर सोमवार को शिवलिंग पर सुग

0: कि 10 अगस्त 2026 यानी सोमवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः काल 8 बजे तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर 12:26 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना बहुत जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सावन के दूसरे सोमवार की। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार सावन के दूसरे सोमवार का महत्व क्या है।
1: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार के बारे में, और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सावन के दूसरे सोमवार पर आप पूजा उपासना कैसे करेंगे। तो सावन के दूसरे सोमवार का महत्व क्या है? इस बार सावन का दूसरा सोमवार प्रदोष की तिथि को साथ में लेकर आ रहा है, यानी त्रयोदशी तिथि के साथ आ रहा है। त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव हैं और हर महीने की दोनों पक्ष की त्रयोदशी का महत्व अलग अलग है। ऐसा माना जाता है कि अगर त्रयोदशी पर कामदेव की पूजा की जाए तो मनचाहा और शीघ्र विवाह होता है। अब चूंकि एक तरफ त्रयोदशी है और साथ में सावन का सोमवार पड़ रहा है, इसलिए त्रयोदशी और सोमवार का अद्भुत संयोग जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। सावन के सोमवार पर उपवास रख करके भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए, और चूंकि त्रयोदशी की तिथि है इसीलिए शिव जी की पूजा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में करना चाहिए। तो सावन का दूसरा सोमवार प्रदोष के संयोग के साथ आ रहा है, और इसीलिए सावन का दूसरा सोमवार इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है।
0: और चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य

0: आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि सावन के दूसरे सोमवार के दिन सामान्य पूजा विधि क्या है।
0: तो सावन के दूसरे सोमवार की हम बात कर रहे हैं। सामान्यतः सावन के दूसरे सोमवार पर पूजा कैसे करेंगे? प्रातः काल कोशिश करिए 12 बजे के पहले स्नान करके सफेद वस्त्र आपको धारण करने हैं। अगर महिला हैं तो पीला वस्त्र भी पहन सकती हैं। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं और मंदिर में संभव हो तो मंदिर में बैठकर या भोग लगाने के बाद घर आएं और नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। 3 माला या 11 माला नमः शिवाय का जप करें। रात के समय अगर मध्य रात्रि में कर सकें 11 बजे से 1 बजे के बीच में, तो रात के समय भी शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं और शिव मंत्र का नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। अगर आप कर सकें तो सावन के दूसरे सोमवार पर व्रत रखिए, जलाहार और फलाहार ग्रहण करिएगा, नमक और अनाज का सेवन ना करें। कोशिश करें कि सावन के दूसरे सोमवार पर व्रत रखें, और अगर व्रत नहीं रख पाते, स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है, तब आप केवल सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा और दोनों समय प्रातः काल और रात के समय में शिव जी की पूजा जरूर करिएगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्राओं के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: मिलेगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, नई जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेंगे पंडित जी से कि आपका सवाल क्या है आज। पंडित जी, सबसे पहला सवाल किसका रहेगा
0: जी? आज का पहला प्रश्न अभिलाषा जी ने हमें लिखा है, और अभिलाषा जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 मई 1990। जन्म का समय रात में 8:35। जन्म स्थान है वाराणसी। अभिलाषा कह रही हैं कि मेरी नौकरी में दिक्कतें बहुत आ रही हैं और मैं काफी समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अभिलाषा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप इस साल के अक्टूबर के बाद नौकरी बदल पाएंगी। साल के आखिरी में या अगले साल के आरंभ में आपकी नौकरी बदलेगी और नौकरी बदलने के साथ आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आने वाला समय करियर के हिसाब से आपके लिए बेहतर है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करियर में बदलाव हो और करियर बेहतर रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनिए। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं आज का दूसरा सवाल किसका लेने वाले हैं
0: जी। अगला प्रश्न कीर्ति ने हमें लिखा है, और कीर्ति हमें मेल लिखती हैं हरिद्वार उत्तराखंड से। इनकी जन्म की तारीख है 8 जुलाई 1993। जन्म का समय दोपहर में 3:47। जन्म स्थान है हरिद्वार। कीर्ति कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की संभावना क्या है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? कीर्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और ज्यादातर संभावना ये है कि 2027 के शुरुआती समय में आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। आने वाला समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है और वैवाहिक जीवन भी आपका कुल मिला जुलाकर ठीक है। इतना जरूर मैं कहूंगा कि अक्टूबर 2026 तक चोट चपेट और दुर्घटनाओं का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक पीला पुखराज लगभग 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब पंडित जी से जान लेंगे कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस तरह के फूल और पत्तियां शिवजी को अर्पित की जाएं जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों।
0: देखिए सावन के दूसरे सोमवार पर आप अलग अलग तरह के फूल और पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और अलग अलग तरह के फूल और पत्तियों को अर्पित करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो अलग अलग तरह के फूल और पत्तियों को कैसे अर्पित किया जाए? अगर आप शिवलिंग पर धतूरे का फूल अर्पित करें तो मनचाही संतान की, योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप बेलपत्र अर्पित करें शिवलिंग पर, कम से कम 3 या 9 बेलपत्र अर्पित करें तो इच्छा की पूर्ति होती है और आयु वृद्धि होती है, आयु की रक्षा होती है। अगर आप शिवलिंग पर जपा कुसुम यानी गुड़हल का फूल अर्पित करें तो आपके शत्रु और विरोधी शांत होते हैं, मुकदमेबाजी से, वाद विवाद से, झगड़े झंझट से आपको छुटकारा मिलता है। अगर आप बेले का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें तो सौभाग्यवती और सुशील पत्नी की प्राप्ति जीवन में होती है। अगर आप हर सिंगार के फूल अर्पित करें तो धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। छोटे छोटे हर सिंगार के फूल अपने हाथ में लेकर अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं सावन के सोमवार में तो धन और संपत्ति आपको मिलेगी। शमी के पौधों के जो पत्ते हैं जिनको शमी पत्र कहा जाता है, इनको अर्पित करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। याद रखिए शिव जी की पूजा में केतकी और केवड़ा ये अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप शिव जी की पूजा में केतकी और केवड़ा अर्पित करेंगे तो आपकी पूजा निष्फल होगी।
1: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल जानने का।
0: तुला राशि, इस समय आपके लिए लाभकारी यात्रा हो सकती है। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें। वाहन सावधानी से चलाएं। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, मान सम्मान बढ़ेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे कि सावन के दूसरे सोमवार को किस मनोकामना के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए।
0: सावन का दूसरा सोमवार बड़ा शुभ अवसर है, बड़ा अच्छा मौका है। आप फूल और पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ाकर अपनी कामना पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि आप अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए सावन के दूसरे सोमवार पर किस मंत्र का जप करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए सावन के दूसरे सोमवार पर आप मंत्र पढ़िएगा, ओम हों जूं सह, ओम हों जूं सह। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं या चाहती हैं तो सावन के दूसरे सोमवार पर मंत्र पढ़िएगा, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं, आपको रोजगार में सफलता चाहिए, तो सावन के दूसरे सोमवार पर पढ़िएगा, ओम विश्वनाथाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः। अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं या चाहती हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहे, तो सावन के दूसरे सोमवार पर मंत्र पढ़िएगा, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। हर तरह का कल्याण चाहते हैं, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, भक्ति का, भगवान की कृपा का वरदान चाहते हैं, तो सावन के दूसरे सोमवार पर अधिक से अधिक मंत्र पढ़िएगा, नमः शिवाय। मैं आपको बता दूं कि सावन के दूसरे सोमवार पर आप सुबह और शाम दोनों समय मंत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम होगा सावन के दूसरे सोमवार पर मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप मंत्र का जप करें। कम से कम 11 माला अपने मंत्र का जप करें, रुद्राक्ष की माला से या अपनी अंगुलियों की सहायता से। अगर आप सावन के दूसरे सोमवार की मध्य रात्रि को मंत्र जप करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी।
1: चलिए सावन के दूसरे सोमवार के बारे में और जानकारी पंडित जी से लें, उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, करियर में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं हल होंगी। सर्दी जुखाम से बचाव करें। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: बढ़ सकता है, काम का बोझ बढ़ता जाएगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर मेल करके आप पंडित जी तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, अगला प्रश्न मयूर गुप्ता जी ने हमें लिखा है और मयूर जी हमें मेरठ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1991। जन्म का समय सुबह के 10:05। जन्म स्थान है मेरठ। मयूर कह रहे हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ मिल करके अभी व्यापार करता हूँ और भविष्य में मैं मेरठ से निकल करके दिल्ली की तरफ सेटल होना चाहता हूँ। क्या मेरठ से निकलकर बाहर जाना मेरे लिए बेहतर होगा और आने वाले समय में मेरा कारोबार कैसा रहेगा? मयूर, आपकी कुंडली के हिसाब से मुख्यतः आपको मेरठ में अपने पिताजी के साथ ही व्यापार करना चाहिए। आपको दिल्ली की तरफ सेटल होने की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आप ज़्यादा चाहें तो अपने काम का एक ब्रांच दिल्ली NCR में खोल सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन वैसे मेरठ में ही मुख्यतः रह करके अगर व्यापार करें तो आप तरक्की ज्यादा करेंगे। बेवजह की फिजूल खर्ची से आपको बचना है और पैसे के इन्वेस्टमेंट में हमेशा सावधानी रखनी है। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। पंडित जी, चौथा सवाल किसका होने वाला है?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न नीरज जी ने हमें लिखा है और नीरज जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। 2 नवंबर 1986 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 6:55। जन्म स्थान है दिल्ली। नीरज कह रहे हैं कि 2 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार आरंभ किया है, लेकिन व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, काम में दिक्कतें चल रही हैं, तो आगे मुझे अपने करियर के लिए क्या करना चाहिए? नीरज, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप जो व्यापार कर रहे हैं उसको वाइंड अप करिए, उसको बंद करिए, क्योंकि जितने लंबे समय तक आप व्यापार चलाएंगे उतना ही ज्यादा कर्जा आपके ऊपर बढ़ेगा। आप दोबारा से नौकरी की तरफ जाने का प्रयास करिए, आपको बेहतर नौकरी मिल जाएगी। साल 2029 में मार्च के बाद दोबारा व्यापार के बारे में प्रयत्न करेंगे, लेकिन अभी व्यापार वाइंड अप कर दें और अभी नौकरी की तरफ चलें तो जिंदगी में थोड़ा सुधार होगा। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने रोज शाम को 108 बार शनिदेव के मंत्र का जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय करें तो चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे एक सावन के दूसरे सोमवार के बारे में जो व्रत रखते हैं, क्या व्रत रखने से कोई विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसकी विशेषता क्या होती है?
0: जी देखिए, बहुत सारे लोग सावन के सोमवार पर उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। खास तौर से जो अविवाहित कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, वो सावन के सोमवार पर जरूर उपवास रखती हैं ताकि उनका विवाह शीघ्र हो सके और योग्य वर की प्राप्ति उनको हो जाए। ऐसी स्थिति में अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है या किसी बालक का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो सावन के दूसरे सोमवार या आगे आने वाले सोमवारों पर उपवास रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप सावन का उपवास तो रखिए सोमवार का, लेकिन मध्य रात्रि में जग करके भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करिए। कम से कम सावन के एक सोमवार पर भी अगर आप उपवास रख करके भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करेंगे तो निसंदेह आपकी कामना पूरी होगी।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 10 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके लिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 10 अगस्त को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, संपत्ति और वाहन का लाभ मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज की जिज्ञासा के बारे में पंडित जी से जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या उपाय करने से, पूजा पाठ करने से, मंत्र जप करने से मृत्यु को टाला जा सकता है? देखिए, एक होता है मृत्यु का योग और दूसरी होती है मृत्यु। मृत्यु का योग टाला जा सकता है, लेकिन अगर किसी का समय पूरा हो गया है, मृत्यु का समय आ गया है, तो उसको किसी भी उपाय से टाला नहीं जा सकता। इसीलिए उपाय करने पर तभी लाभ होता है जब मृत्यु का योग चल रहा हो। अगर मृत्यु का समय आ गया हो तो आप लाख उपाय कर लें, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता।
1: और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि 10 अगस्त 2026 यानी सोमवार का शुभ पहर क्या रहने वाला है।
0: दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा, स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा।
1: और चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज की आपकी गुड लक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे उनको लाभ हो। आज की गुड लक राशि है मेष, इनको शिव जी को लाल फूल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आज के लिए महा उपाय क्या रहने वाले हैं जिससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं परेशानियां हैं वो दूर हो सके।
0: जी

0: को बताते हैं महा उपाय में कि अगर आप सावन में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे। सावन में रोज सवेरे शिव जी को 9 बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद जल अर्पित करिए और इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिए। सावन में जितने बार जितने दिन आप ये उपाय करेंगे आपकी आर्थिक समस्याओं में सुधार होगा।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: सावन के दूसरे सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन के दूसरे सोमवार की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: आज सावन का दूसरा सोमवार है और अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। आसमान से बरसते हुए फूल, हाथों में कांवड़, माथे पर भस्म और जुबां पर हर हर महादेव के जयकारे। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक, इसके अलावा हर जगह कांवड़ियों में उत्साह जबरदस्त है और उनका स्वागत हर जगह किया जा रहा है। गाजियाबाद हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर सहारनपुर या हापुड़, हर जगह कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है, जिससे कांवड़ियों का उत्साह दोगुना हो रहा है। कई जगहों पर तो प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले रहे हैं, जिससे पूरा माहौल शिवमय नजर आने लगा है। यही नहीं, कांवड़ियों के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई, पेयजल और शौचालय समेत आवश्यक सुविधाओं से कांवड़ियों में खुशी और संतोष देखा जा रहा है। सावन का पावन महीना चल रहा है। हरियाली से भरपूर इस महीने में प्रकृति के सुंदर रूप का उत्सव मनाने के लिए झूले झूलने की परंपरा है और केवल इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। चाहे शिव पार्वती हों या श्री कृष्ण और राधा या फिर श्री राम, इन सब की गाथाओं में सावन के झूले का जिक्र मिलता है और परंपरा के अनुसार अभी भी देश के कोने कोने में धार्मिक उत्सव के रूप में झूलनोत्सव मनाने की रीत है। इसी कड़ी में अयोध्या के श्री राम मंदिर में भी एक बार फिर से रामलला के झूलनोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट।
6: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने जा रही है। सावन के पावन महीने में यहाँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का भव्य झूलोत्सव होने जा रहा है। श्री राम मंदिर में हर साल श्रावण के शुक्ल पक्ष की तिथि से श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक बेहद शानदार तरीके से झूलोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान रामलला फूलों से सजे स्वर्ण जड़ित हिंडोले यानी झूले पर विराजमान होते हैं और श्रद्धालुओं को उनके दिव्य दर्शन करने का अवसर मिलता है। माना जाता है कि झूलोत्सव की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। नया श्री राम मंदिर बनने के बाद इसे और भी शानदार तरीके से मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, लिहाजा इस बार भी इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक में विचार विमर्श हुआ और अहम निर्णय लिए गए।
9: निर्णय उसमें यही हुआ कि भगवान जो राम लला हैं, उनका झूलनोत्सव अयोध्या की परंपरा के अनुसार विधि पूर्वक मनाया जाए। कुबेर टीला जहाँ वृक्ष भी है, भगवान दिव्य झूले में वहाँ पधार करके और सबके साथ वहाँ साजबाज से जाएंगे। उनका जो उत्सव है यानी गान बजान है वो परंपरागत अयोध्या की परंपरा से होगा।
6: अयोध्या की प्राचीन परंपरा के अनुसार 15 अगस्त को श्रावण शुक्ल तृतीया के अवसर पर झूलोत्सव का शुभारंभ होगा। 15 अगस्त को संध्या काल में रामलला झूलोत्सव के लिए कुबेर टीला जाएंगे। इसके लिए मंदिर परिसर से पारंपरिक रूप से सजी धजी पालकी यात्रा निकलेगी। रामलला की पालकी उत्तरी द्वार से बाहर निकलेगी और मुख्य द्वार के सामने से होते हुए परकोटे और परिसर का भ्रमण करते हुए प्राचीन कुबेर टीला पहुंचेगी। कुबेर टीला पर धार्मिक कार्यक्रम होगा, उसके बाद रामलला की पालकी वापस मंदिर परिसर पहुंचेगी। 15 से 28 अगस्त तक प्रतिदिन शाम को 2-3 घंटे विशेष झूलोत्सव और दर्शन की व्यवस्था रहेगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति ने इस बार झूलोत्सव कार्यक्रम के लिए खास व्यवस्था तय की है। उसके अनुसार मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद ही झूलोत्सव शुरू हो जाएगा। भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ झूले पर विराजमान होंगे। झूलोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को दिन भर भगवान के दर्शन होंगे। दोपहर में भोग के समय कुछ देर के लिए मंदिर के पट बंद रहेंगे। इसके बाद दोबारा झूले पर दर्शन शुरू होंगे।
10: रामलला प्रातःकालीन श्रृंगार आरती के पश्चात जो सुबह में होती है, झूलन पर ही चारों भाई सहित विराजमान होंगे और वो भोग लगने तक, मध्यान काल तक वहीं रहेंगे। भोग लगने के लिए पर्दा आएगा, वो झूलन पर भी पर्दा आ जाता है और फिर अंदर ठाकुर जी चले जाएंगे। भोग लगने के उपरांत फिर जब दर्शन की अवधि होती है मध्यान में, उसमें फिर झूलन पर ही रहेंगे। तो उससे आने वाले जो श्रद्धालुजन हैं जो सायंकालीन सत्र में नहीं आ सकते हैं, उन्हें भी ठाकुर जी के झूलन उत्सव का दर्शन प्राप्त होगा।
6: बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था से सावन में अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अधिक समय तक झूलोत्सव के दर्शन का अवसर मिलेगा। खास बात ये भी है कि झूलोत्सव के दौरान रामलला को दिव्य पारंपरिक व्यंजनों का विशेष भोग लगाया जाएगा। रामलला को लगाने वाले भोग में मालपुआ, पूरी, खीर और सब्जी समेत कई पकवान शामिल होंगे। पूजा अर्चना और भोग की पूरी प्रक्रिया निर्धारित धार्मिक विधि विधान के अनुसार सम्पन्न होगी। इस बार झूलोत्सव के लिए रामलला के पुजारियों और अर्चकों की वेशभूषा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अर्चकों की पोशाक रामानंद संप्रदाय की परंपरा के अनुसार रहेगी। वे पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहन सकते हैं। अर्चकों के केश और दाढ़ी को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। ये पंचकेश की परंपरा का पालन करेंगे, जिसमें बाल विशेष तरीके से रखे जाते हैं या फिर वे पूरी तरह केश विहीन रहेंगे। इसके साथ ही रामानंद परंपरा के अनुसार उन्हें तिलक भी धारण करना होगा। झूलनोत्सव का आयोजन अयोध्या की प्राचीन धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा समय तक रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है, जबकि अयोध्या के साधु संतों और स्थानीय निवासियों के लिए नियमित दर्शन पास बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। उनके लिए प्रतिदिन या महीने में दर्शन की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। वहीं संतों के विशेष दर्शन के लिए अयोध्या आने से कम एक दिन पहले सूचना देनी होगी। इसके बाद संतों को सम्मान पूर्वक रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या से मैं शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर प्लेयर्स के साथ एक रील भी शेयर की है। 32 सेकंड की इस रील में वे गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज साक्षी चौधरी और अन्य प्लेयर्स के साथ नजर आए। इसमें पीएम ने कहा, जो खेलेगा वो खिलेगा। आपको बता दें, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल जीते हैं। देखिए, भारत की मेडल टैली में भारत यहां पर मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहा है और हौसला बढ़ाने का काम, उनकी सराहना करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर किया है।
11: प्राउड फील हो रहा है इस बात पर हमें।
8: सिंगर सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनू निगम की सर्जरी हो रही है और वो गाना गा रहे हैं। इसे सोनू निगम ने ही शेयर किया है। सोनू वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि मेरी सर्जरी के दौरान प्यारे डॉक्टर नीलेश सदभाई और उनकी पूरी टीम के लिए अचानक एक छोटा सा परफॉर्मेंस दिया। सुनिए।

0: और अब आपको दिखाते हैं उत्सव की कुछ और खास तस्वीरें। उत्सव दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं, चाइना से लेकर ब्रिटेन तक अलग अलग तरीके से उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट और लीजिए उत्सव का आनंद।
1: पारंपरिक लोक संस्कृति की ये अनूठी छटा सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये तस्वीरें मंगोलिया के नदाब फेस्टिवल की है। चीन के गांसू प्रांत के सूबई इलाके में धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया। चीन के गांसू, किंघाई, जिनजियांग और इनर मंगोलिया इलाके में रहने वाले मंगोलियाई मूल के लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लिया और अपनी लोक संस्कृति के खास रंगों की नुमाइश की। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी लड़कियां और युवा लड़कों ने इस दौरान अपनी परफॉर्मेंस से शानदार समा बांध दिया। आकर्षक संगीत और नृत्य से भरपूर इस उत्सव में मंगोलियाई लोक संस्कृति के अनूठे रंग देखने को मिले। मंगोलियाई भाषा में नदाम का अर्थ होता है खेल कूद और मनोरंजन। इस इलाके के बाशिंदों के लिए अपने रोजमर्रा के कामकाज के बाद वक्त गुजारने का शानदार जरिया रहा है। चीन में मंगोलियाई मूल के लोगों ने अपनी इस सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया, इसीलिए हर साल यहाँ इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं सेंट्रल चीन के हुनान प्रांत में हुए लोक उत्सव की शानदार झलक। ये तस्वीरें हुनान के यांगजी गांव की है। इस इलाके के 48 गांव के लोक कलाकारों ने यहां पर एक साथ जमा होकर पारंपरिक लोक गीत, संगीत और नृत्य से माहौल मनमोहक बना दिया। हुनान और गिजोउ की सीमा पर बसे इस इलाके को बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर इस उत्सव की परंपरा 10वीं सदी से जारी है। पुराने जमाने में इसका मकसद अलग अलग गांवों से यहाँ कारोबार के लिए आने वाले लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाना था। वहीं अब स्थानीय लोग अपनी प्राचीन लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए इसका आयोजन करते हैं। एक अनोखे लोक उत्सव की परंपरा चीन के सिचुआन प्रांत में भी है। दक्षिण पश्चिमी चीन के हुईली में यी टोर्च फेस्टिवल के मौके पर भेड़ों की भिड़ंत करवाई जाती है। दूर दूर से आए लोग यहां भेड़ों की लड़ाई देखने के लिए जमा होते हैं और अपनी भेड़ों को इसमें लड़ाते भी हैं। भेड़े इस इलाके के लोगों के जीवन यापन का एक हिस्सा रही है। अब इस उत्सव के जरिए लोग अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं। इसका मकसद जीवन में संघर्ष और कड़ी मेहनत के प्रति जुनून को कायम रखना है। दुनिया के कोने कोने में उत्सव मनाया जा रहा है। जमीन से आसमान तक जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें इंग्लैंड के ब्रिस्टल की है, जहां दुनिया भर से लोग सतरंगी और अतरंगी गुब्बारों के साथ सैर सपाटे के लिए जमा हुए हैं। ब्रिस्टल में 3 दिन का इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल चल रहा है। इसमें 100 से ज्यादा हॉट एयर बैलून्स की उड़ान के शानदार नजारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इस बैलून उत्सव का आयोजन 1989 से होता आ रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए ये अपना शौक पूरा करने का एक शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सावन के दूसरे सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन के दूसरे सोमवार की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
0: सावन के महीने का आज दूसरा सोमवार, जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, बाबा की पूजा के लिए सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग।

0: समरसता का महापर्व, इको फ्रेंडली कांवड़ अपनाने और प्लास्टिक मुक्त जीवन के संकल्प की अपील।
1: उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में स्कूल और आंगनबाड़ी रहेंगे बंद। हिमाचल के मंडी कांगड़ा कुल्लू और सिरमौर में जमकर बरसने के बाद।
0: हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देशभर में तैयारियां तेज। गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे यात्रा की अगुवाई। 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का है लक्ष्य। उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: शुभ समाचार की शुरुआत सावन के साथ होगी। आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस मौके पर श्रद्धालु देश भर में महादेव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सावन का महीना महादेव का प्रिय महीना है और ऐसे में इस महीने पूजा अर्चना की काफी अहमियत होती है।
1: तो वहीं सावन के दौरान मंदिरों में भी आस्था अपार है। देशभर के शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। ज्योतिर्लिंगों से लेकर हर शिव मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की जा रही है। काशी, सोमनाथ, महाकाल और बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव भक्ति का अद्भुत रंग दिखाई दे रहा है।
0: हरिद्वार और प्रयागराज समेत दूसरे धामों में भी कांवड़ियों का उत्साह अपने चरम पर है। कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था का सफर नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण की अनगिनत कहानियों का संगम भी बन रही है। सावन में शिव भक्त अपने आराध्य भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की अनोखी कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, तो ये सभी रंग आगे आपको दिखाएंगे।
1: इस बीच जगह जगह कांवड़ियों का भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। मुरादाबाद और दूसरी जगहों पर भी कांवड़ियों पर ड्रोन से फूल बरसाए गए। डीएम और एसएसपी ने भी कांवड़ियों का फूलों से स्वागत किया। हर जगह कांवड़ियों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
0: इसके अलावा महाशिवरात्रि की महातैयारी भी जारी है। कल महाशिवरात्रि ही है, लिहाजा देश भर के शिवालयों में इसके लिए भी खास तैयारी है। यानी आज सावन का दूसरा सोमवार तो कल शिवरात्रि का महापर्व है, तो वहां भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
1: देवो को देव, महादेव को समर्पित सावन महीने का आज दूसरा सोमवार। देशभर के शिवालयों में महादेव के जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी कतार देखी जा सकती है। आज काशी से लेकर उज्जैन तक के शिव मंदिरों में महादेव की विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। कांवड़ियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि का योग भी बन रहा है। इससे आज के दिन का महत्व और बढ़ गया।
0: सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ। सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में भक्त इन पलों के साक्षी बने। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती हुई। डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी।
1: सावन के दूसरे सोमवार पर वाराणसी के प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भोर की बेला में भव्य मंगला आरती संपन्न हुई। इस पावन अवसर पर भगवान विश्वेश्वर का अलौकिक श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए देशभर से हजारों शिव भक्त और कांवड़िए काशी पहुंचे।
0: देशभर में सावन को लेकर कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। जहां दिव्य कांवड़ों के साथ शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जहां कांवड़ियों में महादेव के अलग अलग स्वरूप दिखे, वहीं कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना हुए।
1: तो मुरादाबाद में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। कांवड़ियों पर ड्रोन से फूल बरसाए गए। डीएम और एसएसपी ने भी कांवड़ियों का फूलों से स्वागत किया, साथ ही कांवड़ियों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।
0: अयोध्या में सावन झूला मेला और कांवड़ यात्रा के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और इसे देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि आने वाले लाखों भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
1: वहीं भारतीय डाक विभाग के पाली में राखी से रक्षाबंधन विशेष अभियान शुरू किया गया। बहनों के संदेश भी

0: सैनिक भाइयों तक पहुंचेंगे, जहां सीमा पर जवानों की राखी भेजने के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। राखी और सम्मान पत्र भेजने की सुविधा बनाई गई है। इस पहल का उद्देश्य रक्षाबंधन के पावन पर्व को सुगम और यादगार बनाना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित अपने आवास पर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने भारत के लिए 39 पदक, जिनमें 13 गोल्ड, 17 रजत और 9 कांस्य हैं, इन्हें जीतने वाले सभी खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की जमकर सराहना की और उन्हें देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वो खेलेगा।
0: वहीं चीन में आयोजित विश्व युवा ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप से भारत के लिए शानदार खबर आई है। वर्ल्ड एथलेटिक्स 20 चैंपियनशिप में भारत के नाम एक और मेडल किया गया, जिसमें साग्निक रॉय और सयंतन कुशारी ने ब्रिज में स्वर्ण पदक अपने नाम हासिल किया, जबकि हाई जंप में बसंत मेघवाल ने सिल्वर जीतकर देश का नाम रोशन किया है।

0: शुभ समाचार की शुभ शुरुआत आज सावन के सबसे शुभ और पावन दिन से करते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और देश के कोने कोने में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों से लेकर तमाम शिव मंदिरों तक आस्था अपार देखने को मिल रही है।
1: दरअसल बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु की लंबी कतारें लगी हुई है। हर ओर हर हर महादेव का जय घोष गूंज रहा है। देश भर से कांवड़िए भी गंगा जल लेकर अपने आराध्य का जलाभिषेक करने शिवालय की ओर पहुंच रहे हैं। तो वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर तक, देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक हर शिवालय में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है।
0: तो वहीं आपको बता दें, बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्त घंटों तक कतार में खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं बल्कि भोलेनाथ की भक्ति और दर्शन की ललक साफ नजर आई। मौका सावन के दूसरे सोमवार का है, ऐसे में महादेव का हर भक्त दर्शन और जलाभिषेक करने के लिए शिवालय में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सात तस्वीरें आपके सामने हैं देशभर के अलग अलग शिवालयों से, जहां पर पूजा अर्चना जारी है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, खासा जोश खासा उत्साह इनके बीच देखने को मिल रहा है। आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन अलग अलग जगहों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा भी जारी है और गंगा जल लेकर कांवड़िए आगे बढ़ रहे हैं।
1: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं काशी विश्वनाथ धाम में, जहां पर आस्था और विश्वास की धरा बह रही है। मंदिर परिसर भक्तों से पटा हुआ है। विश्वनाथ का अभिषेक पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में काशी भक्त पहुंच रहे हैं और आज सावन का दूसरा सोमवार और आज के दिन भोलेनाथ के दर्शन उन्हें जलाभिषेक की विशेष मान्यता मानी जाती है।

0: तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी की, जो कांवड़िए वहां पर पहुंचे हुए हैं उन पर सुबह सवेरे पुष्प वर्षा की गई है, फूलों से उनका एक तरीके से स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें वाराणसी की आप देख रहे हैं। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसी अद्भुत तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। तो वहीं जीएनटी पर हम आपको भगवान शिव के तमाम धामों की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं, काशी विश्वनाथ धाम और सोमनाथ धाम के लाइव दर्शन आप कर सकते हैं। काशी शिव की नगरी के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है। मान्यता है कि शिव का स्थायी धाम है। मोक्षदायिनी गंगा तट पर बसी शिव की इस नगरी का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। मान्यता है कि सावन के महीने में जो काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करता है, महादेव का जलाभिषेक करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो वहीं सोमनाथ धाम की महिमा भी अपरंपार है। सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान दिया गया है। सावन में सोमनाथ धाम के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। आप इस वक्त काशी विश्वनाथ और सोमनाथ धाम के एक साथ दर्शन कर सकते हैं। ये दुर्लभ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार पर किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई, दिव्य दर्शन हम आपको करवा रहे हैं।
1: देखिए, मान्यता है जहाँ सोमनाथ धाम के दर्शन से जीवन में आरोग्यता समृद्धि आती है, वहीं काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन से साधक को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन शिवमय हो उठी है। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से ही महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। और जब बाबा के भव्य दरबार भक्तों के लिए खुला तो पहले बाबा महाकाल का पंचामृत से दिव्य अभिषेक।
0: तो वहीं दूध दही घी शहद और शक्कर से महादेव का पंचामृत अभिषेक हुआ और इसके बाद बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार किया गया। चंदन भस्म पुष्प और रत्न आभूषणों से महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए और उसके बाद मंगला आरती में दीपों की रोशनी और घंटा घड़ियाल की गूंज ने पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया।
1: सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, सुख समृद्धि आरोग्य की मंगल की कामना की है। तीन अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह सवेरे महाकाल के दर्शन किए गए, उनका अभिषेक किया गया, भस्म आरती भी महाकाल की गई है।

0: भोले बाबा से हम उम्मीदें लेके आते हैं, श्रद्धा से आते हैं और भक्ति भाव से आते हैं। भोलेनाथ सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, हर हर महादेव।
1: बहुत अच्छा लगा भस्म आरती देख के। जिंदगी में एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा जिसको देख के मैं बोलूँगी कि इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में कभी नहीं हो सकता। सो हर हर महादेव, थैंक यू। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि महादेव ने मुझे ये चांस दिया भस्म आरती देखने के लिए।
2: जो भी टीवी पे या नजीक दर्शन कर ले उसकी कामना तो क्या, पूर्व जन्म के संस्कार हो या पूर्व जन्म उसके उद्धार हो जाते हैं इस भस्म आरती के दर्शन से।
3: और चलिए अब आपको देवघर लिए चलते हैं, वहां के दर्शन करवाते हैं जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान बाबा के धाम को खास तौर से सजाया गया है, तैयार किया गया है।
4: पूरा मंदिर परिसर भक्तों के जयकारे से गूंज रहा है। बाबा बैद्यनाथ की तस्वीरें देवघर से आप देख रहे हैं। सुबह सवेरे भगवान को जल अर्पित किया गया है। पूरा मंदिर परिसर सिर्फ महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। सावन का सोमवार आज दूसरा सोमवार है, ऐसे में हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा सीधा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। आपको लिए चलते हैं। मनीषा, तस्वीरें दिखाइएगा अभी किस मंदिर में दिल्ली के आप मौजूद हैं और वहां पर कितने उत्साह के साथ भक्त पहुंचे हुए हैं।
5: पूजा, सबसे पहले तो दर्शन करवाना चाहूंगी जीएनटी के सभी दर्शकों को, क्योंकि आज भीड़ कम है और उसी का हमें फायदा जो है वो मिल रहा है। और यहाँ पे हर एक भक्त को मिल रहा है कि इतने अच्छे दर्शन जो है हम लोग सभी के सभी कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी आप लोग भी सबसे पहले दर्शन करिए कि किस तरीके से मंदिर परिसर को भव्य तरीके से जो है सजाया गया है। माँ गौरी और भगवान शंकर का जो श्रृंगार है वो बेहद ही खूबसूरती के साथ किया गया है। और यही जो है आपको यहाँ पर जो है इस तरीके का आप देख सकते हैं कि सामने आपको अभिषेक होता हुआ नजर आ जाएगा। इस वक्त जो है जल अभिषेक चल रहा है तो लगातार उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, हमारे साथ गोविंद जी भी इस वक्त मौजूद है। आज का दिन वाकई में बहुत खास है, कल के दिन जो है जल चढ़ाया जाएगा, तो कितने ज्यादा आप लोग भी उत्साहित है और भक्तों के लिए क्या कुछ तैयारी है।
6: आए हुए सभी भोले के भक्तों को हार्दिक मैनेजिंग कमेटी सवाला आपा गंगाधर हार्दिक शुभकामनाएं देती है। मैनेजिंग कमेटी के द्वारा इतनी अच्छी गौरी शंकर मंदिर की व्यवस्था की गई है, 25 बाउंसर लगाए हुए हैं जिससे कि किसी भक्त को किसी प्रकार की परेशानी न हो। दिल्ली पुलिस का सहयोग है और हर तरह की भक्तजन आने वाले भक्तजन को किसी प्रकार से किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
5: तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों के लिए ये खास इंतजाम कर रखे इन्होंने। लेकिन पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि मंदिर के अंदर की जो भीड़ है, जो रौनक है, वो वाकई में किस तरीके से भक्ति में पूरी तरीके से हो चुका है। और ये तस्वीर, ये नजारा वाकई में खास होता है और खास तौर पर इस समय पर जो है ये तस्वीरें जरूर सामने आती है देश भर के हर एक शिवालय से। तो आप देख सकते हैं कि कल जल चढ़ाने का दिन है और उससे पहले आज दूसरा सोमवार है, तो लिहाजा इसी तरीके की भीड़ जो है वो भक्तों की देखने को जो है वो बनती है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे से जो है मंदिर परिसर को भक्तों के लिए खोल दिया गया था और उसके बाद ही इस तरीके से भक्तों का आना जो है, जो आने का सिलसिला है वो लगातार इसी तरीके से जारी है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से हर कोई जो है शिव के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचा है और महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए।
3: बिल्कुल मनीषा, और आज सावन का दूसरा सोमवार, कल शिवरात्रि भी है, आज एक दुर्लभ संयोग भी बन रहा है और सनातन के महापर्व के तौर पर सावन के सोमवारों को खास तौर से मनाया जाता है। यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु मौजूद हैं, जरा उनसे बात कीजिए किस तरह की भक्ति, किस तरह की आस्था वहाँ पर देखने को मिल रही है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, मैं भक्तों से भी बात करूंगी। देखो उस तरफ तो मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखाई रही हूँ कि किस तरीके से आरती जो है वो लगातार चल रही है। हर कोई जो है भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुंचा है। कोई परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहा है, तो कोई अच्छे स्वास्थ्य और शांति की कामना कर रहा है। लेकिन भक्तों से पूछते जो यहाँ पर आ रहे हैं कि वो किस मनोकामना के साथ यहाँ पर आए, ये बताइए पहले। बहुत अच्छी मुस्कुराहट है, क्या मांगने वाले हो हंसते हंसते?
7: मैं तो यहाँ पे तो पहली बार आई हूँ, रहते तो हम काफी टाइम से, बट होता नहीं है पहली बार इच्छा होती है, तो मेरी इच्छा थी कि आने की, पहली बार मैं आई हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
5: व्रत रखा है आपने?
7: हाँ जी,
5: सावन के हर व्रत रखते हो?
7: जी, लास्ट ईयर से रख रही हूँ मैं, और ये
5: सब मिलेगा
7: जी, अपने परिवार वालों के लिए मांग रही हूँ, और भगवान करे मिल जाए।
5: आप बताइए कैसा?
8: मैंने मेरी नौकरी के लिए रखा है कि भगवान चाहेंगे तो इस साल जरूर मेरी नौकरी लग जाएगी।
5: हमने वैसे बताते नहीं है, तो मैं भी पूछूंगी नहीं। कैसा लग रहा है आज भीड़ की?
9: बहुत अच्छा लग रहा है, हर हर महादेव, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से सुकून मिल रहा है हमें।
5: लंबी लंबी लाइन नहीं है तो सुकून तो मिल रहा है?
9: बहुत बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा।
5: पिछले सोमवार तो घंटों का आपने
9: बहुत बहुत ज्यादा, पिछले सोमवार तो बहुत गंदी भीड़।
10: हर हर महादेव।
5: आज गर्मी से भी बचे हो और भीड़ से भी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
9: हर हर महादेव।
5: तरीके की कोई तकलीफ?
9: बहुत अच्छे दर्शन हो रहे।
5: आप देख सकते हैं भक्तों के चेहरों पे किस तरीके की मुस्कुराहट जो है आपको नजर आ जाएगी, और हर कोई जो है बेहद ही यहाँ पर आपको जो है उत्साहित नजर आएगा, चेहरे पे मुस्कान जो है वो नजर आएगी। और तस्वीरें मैं आपको इस तरीके की दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से माहौल पूरा भक्ति में जो है इस वक्त हो चुका है। पूजा गौरी शंकर मंदिर की खासियत ही सिर्फ इनके धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के ये ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर सदियों से शिव भक्तों की जो आस्था है उसका ये प्रमुख केंद्र रहा है। तो यहाँ पर हर सोमवार इसी तरीके की भीड़ जो है वो नजर आती है, बट बात जब सावन के महीने की हो तो इस मंदिर का माहौल और भी ज्यादा खास हो जाता है। तो सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें जो है इस तरीके से नजर आ रही है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, महादेव का जाप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो ये भक्ति और आस्था का संगम है जो यहाँ पर नजर आ रहा है, चाहे सेवादार हो चाहे भक्तों, हर कोई जो है सिर्फ महादेव की भक्ति में जो है इस वक्त पूरी तरीके से लीन है, और हर कोई ढेर सारी आस्था के साथ यहाँ पर मन में विश्वास लेकर पहुंचा है कि महादेव जो है वो उनकी पुकार जरूर सुनेंगे, और महादेव के साथ साथ माता गौरी भी।
3: मनीषा, ये भक्तों का विश्वास ही है जो उन्होंने व्रत रखा हुआ है आज के दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए। मनीषा, ये बताइएगा लगभग कितना समय भक्तों को लग रहा है महादेव के दर्शन करने में, जल अर्पित उनको करने में, कितनी लंबी लाइन आप देख पा रहे हैं?
5: बिल्कुल, अगर मैं दिवाली अंदर की मंदिर की बात करूं तो भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन भक्तों को ज्यादा समय नहीं लग रहा। हालांकि पहला सोमवार की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, एक एक दो दो किलोमीटर की लाइनें जो है वो मंदिर के बाहर तक लगी हुई थी, लेकिन अभी की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से अभी आपको नजर आएगा। हालांकि बाहर इस वक्त भीड़ नहीं है, इसलिए लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, लोगों को लंबा इंतजार जो है वो नहीं करना पड़ रहा है, लोग बिना किसी परेशानी के साथ जो है मंदिर में आ रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके उतना ही वो दर्शन करके जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। तो मात्र आप ले लीजिए 10 से 15 मिनट जो है वो लगता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है अगर मैं भीड़ को देखूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर चार चार घंटे भी लोगों को इंतजार करते हुए देखा है, तो 10-15 मिनट उस चीज के सामने कुछ भी नहीं है। तो आज जो है भीड़ थोड़ी कम है, कल जो है जल चढ़ाया जाएगा, तो कल हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भक्तों की भीड़ थोड़ी ज्यादा मिलेगी, और उनसे भी ज्यादा जो कांवड़िए है उनकी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी।
3: मनीषा, और आप बने रहिए हमारे साथ, इसी बीच जरा दर्शकों को हरिद्वार की तस्वीरें दिखा देते हैं, वहां पर किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हरिद्वार के दक्षेश्वर मंदिर की अलग छटा देखने को मिल रही है, सुबह से ही भक्त महादेव के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। तो हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुबह से ही भक्त पहुंचे हुए हैं और महादेव के दर्शन किए जा रहे हैं। भक्तों का उत्साह, भक्तों की आस्था, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। हरिद्वार में भी भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है, सुबह सवेरे वहां पर आरती की गई, मंदिर में एक अलग ही नजारा है और महादेव के जयकारे हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। ये हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त पहुंचे हुए हैं शिवालयों में और महादेव को जल अर्पित किया जा रहा है।

0: बहुत महान सिद्ध पीठ है ये। यहाँ पे हर जगह से आते हैं लोग, सावन में कावड़ आती है, मतलब अधिक मात्रा में, बहुत संख्या में आती है, तो इसका बहुत महत्व है। मतलब आज से नहीं, मतलब प्राचीन समय से ही यहाँ पर इसका महत्व बना हुआ है। और जो हम लोग सब यहाँ पर हैं, ये सब भगवान की कृपा है हम पर।
1: पूरे सावन के महीने में यही रहते हैं, यही मान्यता है। बड़े पुराणों में, कथाओं में, सभी में दिया गया है, इसके जानकारी मिलती है और सब सत्य है। शंकर जी की ससुराल है इसलिए,
2: यहाँ की मान्यता है, इसलिए यहाँ भोले की ससुराल है। यहाँ जो मनोकामना मांगो वो पूरी होती है।
3: सुबह 3 बजे से लोग लाइनों में, कतारों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भगवान नंबर उनका आए और जल का अभिषेक करें। भोलेनाथ,
4: बहुत अच्छे दर्शन हुए, मन बहुत खुश है, शांत है।
5: वरदान है कि यहीं पे एक महीना वो रहते हैं, इसलिए यहाँ पे सब जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ जो भी मांगते हैं सभी को अपना वरदान मिलता है, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। सब आए, जल चढ़ाए, हम तो बहुत पहले से चढ़ाते हैं। उत्साह बहुत है जी, बहुत भोलों का उत्साह है जी।
6: लाइनें लगी हुई है जी।
5: अभी बाहर से भी आए हुए हैं जी भोले।
7: भगवान दक्षिणेश्वर महादेव सबकी मनोकामना पूरी करे, भगवान से यही उम्मीद आशा करते हैं और अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखे।
8: यहाँ पर आकर तो मन एकदम ऐसा हो जाता है आनंदमय, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छे से दर्शन है।
9: तो वहीं अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में भक्त सुबह से ही महादेव के अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं, दर्शन के लिए लंबी कतारें वहां पर भी लगी हुई है।
10: तो ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से मंदिर यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है और श्रद्धालुओं में कितना ज्यादा जोश है, किसी भी तरह से बस महादेव के दर्शन हो जाएं, यही कामना लिए हुए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए, दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर में तांता लगा हुआ है क्योंकि अयोध्या है, नागेश्वरनाथ मंदिर है और भक्त यहाँ पर सुबह से ही लंबी कतारों में लगकर बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से महादेव के दर्शन हो जाएं और आज का दिन, सावन का दूसरा सोमवार, सफल हो जाए और मनोकामना की पूर्ति हो जाए। यहाँ पर बड़ी संख्या में इसके लिए लोग पहुंचे हुए हैं और उसकी ये वानगी देखने को मिल रही है कि लोगों का जो इंतजार है वो दिखाई दे रहा है, कितने लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच पंकज हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं प्रयागराज से?
11: प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है वो लगी हुई है और भक्त यहाँ पर अपने भगवान, अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए सुबह से ही लंबी लाइनों में लगे हैं। यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर मन की कामना को पूर्ण करने वाला मंदिर है और यहाँ पर सुबह से ही जो भक्त आते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हाथ में लोटा और उसमें जल, दूध और भांग, बेलपत्र, तमाम चीजें ऐसी लाती हैं जो भगवान को ये पसंद है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफी होता है। तो यहाँ पर सभी भक्त जल चढ़ा रहे हैं,
9: भक्तों का तांता वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मनीषा भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो तमाम तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहा है बाबा की पूजा के लिए सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग, जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा के भक्त। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा गरीबनाथ धाम में आधी रात से लगा भक्तों का तांता, देवघर में भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान।
8: आप देखते हैं
7: कांवड़ियों के नाम सीएम योगी की पाती, कांवड़ यात्रा को बताया सामाजिक समरसता का महापर्व, इको फ्रेंडली कांवड़ अपनाने और प्लास्टिक मुक्त जीवन के संकल्प की अपील। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में स्कूल और आंगनबाड़ी रहेंगे बंद, हिमाचल के मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर में जमकर बरसेंगे बादल। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे यात्रा की अगुवाई, 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का है लक्ष्य।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका शुभ समाचार में। और अब बात करेंगे सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहे महासंयोग की। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है।
1: दरअसल इस बार सोमवार के दिन ही श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पड़ रही है, इसलिए इसे सोम प्रदोष के तौर पर माना जा रहा है। सुबह से ही देश के तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। श्रद्धालु बेलपत्र, फूल, दूध और गंगा जल लेकर बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। कहीं पर जलाभिषेक हो रहा है तो कहीं रुद्राभिषेक,
0: तो कहीं पर मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा है। एक तरफ सावन का दूसरा सोमवार और सोम प्रदोष का संयोग है, तो दूसरी तरफ अगले ही दिन सावन शिवरात्रि है, वो पवित्र दिन जब कांवड़िए महादेव का जलाभिषेक करेंगे और उनका संकल्प पूरा होगा।

0: तो देश के अलग अलग जगहों से हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंदिरों में कैसे आस्था का सैलाब है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ प्रयागराज से और मनीषा दिल्ली से जुड़ गई हैं। एक बार दिल्ली आपको लिए चलते हैं। मनीषा, अभी कितना उत्साह आप वहां पर भक्तों का देख पा रही हैं? और ये भी बताइएगा मनीषा कि भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, भोलेनाथ के लिए क्या लेकर आए हैं?
1: बिल्कुल, मैं यहीं से तस्वीरें शुरू करती हूँ कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग क्या क्या लेकर आए, क्या क्या लेकर आए उसके अंदर आप?
2: इसमें दूध है और ये मूंग की दाल, हरी दाल है इसमें।
1: मूंग की दाल मैंने वैसे किसी की उसमें देखी नहीं है, आप अपने घर से लेकर आए हो?
2: नहीं नहीं, ये मैं वैसे ही लिया, लेकिन ये छड़ाना अच्छा होता है, सुमाना जाता है, सुमा जाता है।
1: अच्छा, लोग जो है यहाँ पर घर से जो है खीर वगैरह भी जो है लगातार जो है वो बनाकर आ रहे हैं, आप क्या लेकर आए हो? आपकी दही का रंग अलग क्यों है?
3: शहद की रवा, शहद।
1: अच्छा, शहद आपने डाला है? कहते हैं कि शहद भी जो है चढ़ाना बहुत ज्यादा शुभ होता है, तो आप देख सकते हैं कि इस हर कोई जो है शहद, बेलपत्र, दूध आदि जो है तमाम चीजें लेकर आए, हरी साड़ी पहनकर आए हो, बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि सावन का महीना है। और क्या कुछ आप भगवान से मांगने आए और क्या कुछ उनको प्रसन्न करने के लिए क्या लेकर आए हो आप?
4: कुछ भी मांगने नहीं आई हूँ, बस दर्शन
1: करने आए हो। तो बस ये सादगी जो है आपको यहाँ पर बहुत से भक्तों में जो है वो नजर आ जाएगी कि किस तरीके से प्रसन्न करने के लिए आपको यहाँ पर भक्त हो या फिर इन तरीके के छोटे छोटे बच्चे हो आपको नजर आ जाएंगे। जय भोले की,
5: जय भोले की।
1: जल का है आपका? जल का है? आप किससे मिलने आए हो आप यहाँ पे?
5: भोले बाबा से।
1: भोले बाबा से, तो आप देख सकते हैं कि भोले बाबा से मिलने जो है हर कोई यहाँ पर आ रहा है, उनके दर्शन करने के लिए आ रहा है। बाहर हालांकि बहुत कम लाइन है तो इसलिए लोगों को दिक्कत भी नहीं हो रही है, जल्दी जल्दी जो है उनका नंबर भी आ रहा है, लेकिन हर कोई अपनी इच्छा अनुसार जो है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ चढ़ावा जरूर लेकर आया है। कोई फल लेकर आया है तो कोई घर से बनी हुई खीर, पंचामृत या फिर हलवा जो होता है वो यहाँ पर लेकर आया है, भोग चढ़ा रहा है और उसके बाद वही प्रसाद जो है बाकी यहाँ पर भक्तों को बांटा जा रहा है। हालांकि प्रसाद की अगर व्यवस्था की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है नीचे जो है खाने का इंतजाम जो है वो किया गया है, जिसमें भी जितने भी जो नीचे भोले हैं वो प्रसाद जो है वो ग्रहण कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा जो है यहाँ पर मंदिर की तरफ से भी अंदर जो है प्रसाद दिया जाता है, ताकि आप जब यहाँ से जाए तो आस्था के साथ भगवान का दिया हुआ कुछ तो जरूर लेकर जाए, ताकि जिससे लोगों का विश्वास भी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता है कि हमने भोले से मिले तो हमारे को भोले का प्रसाद के रूप में जो है उनका आशीर्वाद जरूर मिला है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से चेहरे पे रौनक के साथ जो है।
0: बिल्कुल मनीषा, और बच्चे हों या फिर बड़े या फिर बुजुर्ग, हर किसी में आस्था की बयार बहती हुई हर ओर भक्ति नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, अब प्रयागराज में जरा दर्शन करवा देते हैं मंदिर के, जहां पर हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, कल महाशिवरात्रि भी है और यहाँ पर कांवड़ यात्रा भी जारी है, कांवड़िए भी पहुंच रहे होंगे, किस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं?
6: एक तो संयोग है, यहाँ पर ये सावन का सोमवार है और यहाँ पर जो कांवड़िए हैं, दारागंज का जो दशा समेध घाट है, तो कल से ही कांवड़ियों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। जो कांवड़िए हैं गंगा जल भर रहे हैं और इसके बाद यहाँ भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे और अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना करेंगे। प्रयागराज में भारी संख्या में जो कांवड़िए हैं कल से ही यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं और जल भर रहे हैं और भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भी भारी भीड़ है और यहाँ पर भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तमाम वो चीजें लेके जा रहे हैं।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रयागराज से तस्वीरें दिखाने के लिए। मनीषा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर बड़ा ही फेमस है, कहते हैं कि यहाँ पर पूजा करने से महादेव भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और सावन के दूसरे सोमवार पर यहाँ अभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो ये तस्वीरें देखिए, भक्त यहाँ पर दूर दूर से पहुंच रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या दिखा रही है कि किस तरह की भक्ति आज के दिन देखने को मिल रही है। सावन का दूसरा सोमवार है, एक दुर्लभ संयोग भी बन रहा है और श्रद्धालुओं की बस यही कामना कि यहाँ पर दर्शन हो जाएं, जलाभिषेक कर दें, दुग्धाभिषेक कर दें, इसके लिए दूर दूर से यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी खासा इंतजाम किए गए हैं, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी खास व्यवस्था की गई है। सावन के दूसरे सोमवार पर तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, हर कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रयागराज की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भक्त, और सावन के दूसरे सोमवार पर भी काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। तो वहीं दिल्ली के पास गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मंदिर में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। भक्त दर्शन के लिए यहां पर दूर दूर से पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली हो या फिर प्रयागराज या फिर वाराणसी, हर जगह की तस्वीरें कुछ इसी तरह से निकलकर सामने आ रही हैं। शिवालयों में यहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और आज सावन के दूसरे सोमवार पर खासा व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं।
3: तो देखिए, सावन के दूसरे सोमवार पर मुंबई की ये तस्वीरें, बाबुलनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी महादेव के जलाभिषेक के लिए यहां पर भी पहुंच रहे हैं। तो मुंबईकरों में भी काफी ज्यादा उत्साह है आज सावन के दूसरे सोमवार को लेकर। दिल्ली से काशी तक हर तरफ आस्था अपरंपार नजर आ रही है। सोमवार को काफी ज्यादा भीड़ है और ये तस्वीरें मुंबई की आप देख रहे हैं। हर कोई पहुंच रहा है मंदिर में मत्था टेकने के लिए और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उन पर जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन पर दुग्ध अभिषेक भी किया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें हम अलग अलग जगह की आपको आज दिखा रहे हैं।
0: और अब आपके सामने तस्वीर रखते हैं हापुड़ के बेहद फेमस शिव मंदिर की, सावली महादेव मंदिर की। आज सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर यहां पर भी अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। भक्त दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं और सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं आज दर्शन पूजन करने के लिए। सावली महादेव का भव्य अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है।
3: सावन के दूसरे सोमवार पर भी कुछ वैसी ही भीड़ नजर आ रही है जो पहले सोमवार को थी और उत्साह के साथ भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए।
0: तो देश भर के मंदिर और शिवालयों में आज बम बम भोले की जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। पवित्र नदियों का जल लेकर कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था, भक्ति और श्रद्धा के अनूठे रंग नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं।
7: कंधों पर कांवड़, जुबां पर हर हर महादेव का जय घोष और मन में भोले की भक्ति का अटूट विश्वास। सावन महीने में बाबा भोले के भक्तों पर भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा है जिसमें हर सड़क हर गली मानो शिवमय हो गई है। बम भोले के जयकारों के साथ लगातार आगे बढ़ते इन कांवड़ियों का दृढ़ संकल्प आसमान से भी ऊंचा है। भोलेनाथ की भक्ति से पोषित अपार ऊर्जा के सहारे ये कांवड़िए अब अपने गंतव्य तक पहुँच रहे हैं। सावन की इस पवित्र कांवड़ यात्रा में आस्था के कई अनेकों रूप देखने को मिल रहे हैं। मन में भगवान शिव के जलाभिषेक की मुराद लिए सिर्फ युवा ही नहीं, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के साथ दिव्यांगजन भी इस धार्मिक यात्रा में चल रहे हैं। 53 साल की शिव भक्त राज बाला ने 5 दिनों में हरिद्वार से दिल्ली तक का सफर तय किया, वो भी कांवड़ में 21 लीटर गंगा जल के साथ।
8: पद की रहने वाली राज बाला जी है जो रोहिणी में रहती है। हर की पौड़ी से इन्होंने जल उठाया और आप देख सकते हैं कि 21 लीटर का वजन इन्होंने अपने कंधों पर उठा रखा है। 5 दिन में ये सफर जो है तय किया है।
9: जय भोले की और ये भोले की,
8: ये भोले की शक्ति है, ये भक्ति है जो
9: हम अपने ही प्रभु से यही कहते हैं कि सबकी मनोकामना पूरी हो।
7: 45 साल के सुनील दिव्यांग है लेकिन शिव भक्ति के ताकत से ये हर साल भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाते हैं।
8: कहते हैं ना, मन में आस्था होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आस्था है तो कितना भी मुश्किल पड़ाव हो या कितना भी मुश्किल काम हो वो आप जरूर पूरा करते हैं। और यही आस्था और भक्ति का मैं जो रूप है आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सुनील जी इस वक्त हमारे साथ है, हालांकि पैरों में उस तरीके की शक्ति नहीं है जिस तरीके से वो चलकर जो है कांवड़ लेकर दिल्ली आ सके, लेकिन उसके बावजूद इस हालत में भी जो है ये टेम्पो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का ही टेम्पो है, इसको चलाकर जो है वो दिल्ली में आज यहाँ आए हैं जल लेकर। सबसे पहले तो ये बताइए आपकी उम्र क्या है?
10: मेरी उम्र है 45 साल।
8: 45 साल की उम्र है सुनील जी, आपने जल कहाँ से लिया है? क्योंकि अलग अलग पवित्र स्थानों से लोग जल लेकर
10: नहीं, मेरा मैं हरिद्वार से जल उठाता हूँ। हाँ। और हरिद्वार से ही लेके आया हूँ।
8: हर साल लेकर आते हैं आप?
10: जी हर साल लेके आता हूँ।
8: तो कितना लीटर जल लेकर आए हैं आप?
10: मैं जी 2 लीटर जल लेके आता हूँ। हाँ। और भोलेनाथ पे चढ़ाता हूँ।
7: कांवड़ यात्रा के दौरान भोले बाबा की इस नन्ही भक्त ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अपनी पहली कांवड़ यात्रा में एक साल की आराध्या ने गंगोत्री से दिल्ली तक का सफर तय किया।
8: भोले के ना जाने कितने रूप है और उन्हीं में से एक सबसे छोटा रूप मैं आपको ये दिखा रही हूँ, एक साल की आराध्या है। सबसे पहले तो मैं इस कैरियर से शुरू करूंगी कि बेबी कैरियर में किस तरीके से जो है उसको सजाया गया है, क्योंकि ये आराध्या की जो है प्रथम कांवड़ यात्रा है। इन्होंने ये पोस्टर भी जो है इसलिए लगाया है, आराध्या की तस्वीर जो है इसमें लगाई गई है, और आराध्या की ये पहली कांवड़ यात्रा है गंगोत्री धाम से लेकर हैदरपुर। हैदरपुर के ये लोग निवासी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप दिख जाएगा बम बम भोले के जयकारों के साथ इन्होंने ये नई शुरुआत करी है। आराध्या के माँ बाप हमारे साथ है, इस वक्त मौजूद है। आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए।
11: प्रीति।
8: प्रीति, प्रीति। और आपका?
12: करण।
8: करण। करण, प्रीति सवाल ही पहले ये है, गर्मी बहुत है, हालांकि हर सावन में बारिश जरूर होती है लेकिन गर्मी भी होती है। माँ बाप तो जो है कर लेते हैं कि कवर करना है हमें जो है पैदल यात्रा करनी है, लेकिन एक साल के बच्चे के साथ ये वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है।
11: नहीं, इतना खास मुश्किल भी नहीं है।
8: क्यों मुश्किल नहीं लगा?
11: अगर सारा लेके सामान चलो तो कोई मुश्किल नहीं होती है।
7: भगवान भोलेनाथ की भक्ति की अनोखी तस्वीर हरियाणा के पलवल में भी देखने को मिली। यहाँ जॉर्डन से लाखों की नौकरी छोड़कर आए ये युवक दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकला है। फरीदाबाद के एक शिव भक्त ने संकल्प लिया है कि वो हरिद्वार से दंडवत कांवड़ लेकर वृंदावन पहुँचेंगे और पूज्य प्रेमानंद महाराज को गंगा जल से स्नान कराएंगे।
13: कांवड़ तो कई आ गई, हर तरह की डाक कांवड़, विशाल कांवड़, झूला कांवड़, कलश कांवड़, हर तरह की कांवड़ लेकर आ गए। हमारी ये पहली कांवड़ है दंडवत यात्रा। हरिद्वार से वृंदावन धाम के लिए प्रेमानंद महाराज जी के स्वस्थ ठीक के लिए यात्रा है।
7: सावन के इस पावन मौके पर हर कोई अपने मन की मुरादें भोलेनाथ को सुनाता है। भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि देवों के देव महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो यूपी में जगह जगह कांवड़ियों की भीड़ दिख रही है गंगा जल भरने के लिए। प्रयागराज में शिव भक्तों का तांता लगा है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर देवघर जाने वाले शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है।
0: तो वहीं झांसी में भी आस्था की बयार बह रही है, हर जगह पर भक्ति की अद्भुत छटा बिखरी हुई नजर आ रही है।
7: सावन का महीना और यूपी में हर तरफ छाया हुआ है भगवा ही भगवा, यानी आस्था और भक्ति का रंग। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक जहां भी देखिए भगवान भोले शंकर के भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। कहीं पवित्र नदी से जल भरने कांवड़िया पहुंचे हैं, तो कहीं जल भरने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ताकि शिवालयों में जाकर वो भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकें। ये तस्वीरें प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट की है, जहां हजारों की संख्या में कांवड़िये जल भरने पहुंचे तो पूरा वातावरण भगवान शिव के जयकारों से गूंजता रहा। स्नान ध्यान के बाद शिव भक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के साथ ही उठक बैठक लगाते दिखे। पंचक के हट एकादशी के शुभ दिन पर जल भरने के लिए यहाँ शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी।
14: प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पे आप भीड़ का नजारा देखिए। अब प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर कांवड़ियों की भीड़ लग रही है, अपने अपने संकल्पों के साथ हर कांवड़िया घाट पहुंचकर जल भर रहा है दशाश्वमेध घाट से। उसके बाद अपने पूरे रीति रिवाज पूजा पाठ करके बाकायदा उठक बैठक करने के बाद वो अपने शिवालय पे रवाना हो रहा है। ऐसे में प्रयागराज का जो दशाश्वमेध घाट है इसका अलग ही महत्व है।
7: एकादशी के दिन जल भरना और भगवान शिव को जलाभिषेक करना शुभ माना जाता है। इसी मान्यता को लेकर रविवार से यहां कांवड़ियों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया।
15: तीन दिन भीड़ लगातार रहेगी, इससे जोरदार भी हो सकता है। भीड़ का कारण यही है, यही मेन पर्व है एकादशी, द्वादशी, तेरस।
16: अभी तक पाचक लगा था, इस वजह से भीड़ नहीं आ रही थी। अब पाचक खत्म हो गया, पाचक में शुद्धक चलता है इसलिए जल नहीं भरा जाता।
7: हर शिव भक्त अपनी अपनी मनोकामना के साथ जल भरने इस घाट पर पहुंच रहा है।
17: घर परिवार सुख संपत्ति बनी रहे और हमारे भाई बहन का अच्छा लक हो, हमारा अच्छा लक हो। हमारा इस साल 7 साल हो गया, 7वां साल है, जैसा कि हम ऐसे कंटिन्यू आते जाते रहते हैं।
18: जॉब लग जाए, अपना कामना यही है।
3: तो देशभर के शिवालयों की इन तमाम तस्वीरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
0: देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: सावन के दूसरे सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन के दूसरे सोमवार की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहा बाबा की पूजा के लिए सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग, जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा के भक्त। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा गरीबनाथ धाम में आधी रात से लगा भक्तों का तांता, देवघर में भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। कांवड़ियों के नाम सीएम योगी की पार्टी कांवड़ यात्रा को बताया सामाजिक समरसता का महापर्व, इको फ्रेंडली कांवड़ अपनाने और प्लास्टिक मुक्त जीवन के संकल्प की अपील। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में स्कूल और आंगनबाड़ी रहेंगे बंद, हिमाचल प्रदेश के मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर में जमकर बरसेंगे बादल। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे यात्रा की अगुवाई, 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का है लक्ष्य।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सावन के दूसरे सोमवार के बारे में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सावन के दूसरे सोमवार पर पूजा उपासना कैसे की जाएगी। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः काल 8 बजे तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर 12:26 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और चंद्रमा तथा मंगल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, पूरे सावन के महीने में सोमवार का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और आज हम बात कर रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार के बारे में। तो दूसरा सोमवार जो इस बार आ रहा है, इसका महत्व क्या है।

तिथि के स्वामी कामदेव माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा करने से मनचाहा विवाह होता है। हर महीने की दोनों पक्ष की त्रयोदशी का अलग महत्व है और त्रयोदशी यानी प्रदोष और सोमवार का अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है जो जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। सोमवार के दिन उपवास रख कर शिव जी और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए और त्रयोदशी के दिन शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में। तो इस बार सावन का दूसरा सोमवार प्रदोष के संयोग के साथ है और इस बार सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब सावन के दूसरे सोमवार पर सामान्य रूप से कैसे पूजा की जाएगी वो भी जानते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रातः काल 12 बजे के पहले स्नान करके सफेद वस्त्र, या महिला हैं तो पीला वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं और इसके बाद जितना संभव हो शिव जी के मंत्र का, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। सावन के सोमवार पर रात के समय शिव जी के सामने अगर घी का दीपक जलाएं और शिव मंत्र का जप करके प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा।
और अगर आप सावन

के सोमवार पर जल और फल ग्रहण करें, नमक और अनाज का सेवन ना करें, यानी सावन के सोमवार पर उपवास रखें, तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। सावन के दूसरे सोमवार पर अलग अलग फूलों से और पत्तियों से भगवान शिव की पूजा कैसे करें, इस विषय पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्राओं के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, नई जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, लाभकारी यात्रा हो सकती है, करियर में कुछ बदलाव होगा, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस तरीके से सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से भगवान शिव की पूजा करेंगे। देखिए, अगर आप सोमवार पर सावन में शिवलिंग पर धतूरे का फूल अर्पित करते हैं तो मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, कम से कम 3 या 9 बेलपत्र अर्पित करें तो इच्छा पूर्ति होगी और आयु की वृद्धि होगी। जपा कुसुम यानी गुड़हल का फूल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। अगर आप शिवलिंग पर बेले का फूल अर्पित करें, बेले का पुष्प अर्पित करें तो सौभाग्यवती और सुशील पत्नी आपको मिलेगी। अगर हर सिंगार के फूल आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर आप शमी पत्र अर्पित करें, शमी के पेड़ के पत्ते अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो पापों का नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। याद रखिए, शिव जी को केतकी और केवड़ा अर्पित नहीं किया जाता,
ये आप भगवान शिव को अर्पित ना करें। भगवान शिव की पूजा में आप उनको कोई भी फूल अर्पित करें अपनी मनोकामना के अनुसार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल अवश्य अर्पित करिएगा, क्योंकि शिव जी जल से प्रसन्न होते हैं। अगर आप जल अर्पित करें शिवलिंग पर और शिव जी से प्रार्थना करें, तो मात्र जल अर्पित करने से ही आपकी कामना पूरी हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मान सम्मान मिलेगा, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, सर्दी जुखाम से बचाव करें। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, काम का बोझ बढ़ता जाएगा, परिवार में विवादों से बचाव करें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, फ्रिज, टीवी, ओवन, ये सब बार बार खराब हो रही हों, तो उनके पीछे छोटे छोटे लाल रंग के स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर दें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं खराब होनी बंद हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

सब देवता श्रृंगार कर रहे, बरात जाना है, तो सबसे ज्यादा श्रृंगार कर रहा है यमराज। एक तो उसे कहीं बुलाया नहीं जाता, बड़े कम बराते मिली, ये स्पेशल बरात। यमराज का वाहन क्या है? भैंसा। अब यमराज लगा भैंसा को रगड़ने, लगा रगड़ने, एकदम रगड़े। अब भैंसा बेचारा बड़ा परेशान, बोले महाराज एक बात बताओ, आज इतनी रगड़ाई क्यों हो रही है? बोले आज तुझे काला से गोरा करें। क्यों? बरात जाना है। भैंसा बोला महाराज चाहे जितना रगड़ लो, खाल चाहे छिल जाएगी, पर हम गोरे ना हो पाएंगे, हमें ऐसे ही रहने दो, रगड़ाई ना करो महाराज, रहने दो ऐसे ही रहने। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे भगवान श्री विष्णु भगवान भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी श्रृंगार कर रहे, देवी देवता माता जी भी आए, देवी देवता सब श्रृंगार कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ में। अब आगे का जो श्रृंगार सब देवताओं का हो रहा वो बेहतर हो रहा। तो नंदी भृंगी श्रृंगी आपस में बोले कैसे श्रृंगार करें, कैसे करें? बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले पहले तो इनकी जटाओं को ठीक करो, मुकुट चाहिए। अब मुकुट कहां से लाएं? तो नंदी जी ने उपाय निकाला, दूल्हे के सिर पर मुकुट होता है। अब भोले बाबा का मुकुट क्या है?

0: कौन सा मुकुट?
1: जटाओं का मुकुट। तो जटाओं का मुकुट बना दिया।
0: अच्छा, अब जटाओं का मुकुट तो बना दिया, तो नंदी जी बोले भाई मुकुट हो गया, अब मोर चाहिए। ये मोर क्या है? बोले दूल्हा के आगे लंबा लंबा पतला पतला लटका रहता है, वो लटक जाए तो मोर हो जाएगा, दूल्हा का श्रृंगार बेहतर हो जाएगा, मुख दिखे भी और दिखे भी ना, ऐसा हो उसे मोर कहते हैं। तो बोले भाई मोर कहाँ से मिलेगा? बोले मोर तो नहीं है। नंदी जी बोले रुको हम अभी लेकर आते हैं। नंदी जी भागे भागे गए और एक किनारे में कैलाश पर्वत पर जाकर पतले पतले छोटे छोटे सांपों को पकड़ा, और सांपों को पकड़कर सांपों के मुंह में एक सांप की गांठ लगाई और भागे भागे आए, मुंह को फंसा दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने, बोले लो बढ़िया मोर बन गया है। तो भोले बाबा को भस्म राख, मुर्दे की राख से पाउडर बनाकर श्रृंगार किया गया। नंदी बोले बाबा का श्रृंगार अब भस्म का तो हो गया, पाउडर तो हो गया, अब भाई शेरवानी तो है नहीं, बाबा आपकी आज्ञा हो तो किसी का कोट नहीं तो कम से कम गमछा उधार मांग ले। बोले बाबा बोले नहीं ऐसे ही काम चलेगा। नंदी जी बोले महाराज जिस हिसाब से यहाँ बैठे हो, यहाँ तो हम लोग रहते हैं तो काम चल जाता है, वहाँ बारात वाला मामला है जिसके यहाँ पर लड़की लेने जाएंगे, शादी में जाएंगे, आपको देखेगा इस हाल में कौन विवाह कर देगा, तो कम से कम कुछ नहीं तो इज्जत तो ढक लो, इज्जत तो ढक लो। अब कैसे ढके? तो नंदी बोले महाराज आप बुरा ना मानो तो थोड़ी देर खड़े हो। भोले बाबा खड़े हुए तो जिस मृग छाला पे बैठे थे उसी मृग छाला को कमर में लपेट दिया। बोले कम से कम इज्जत तो बची रहे, बोलो सीताराम। भाई शेरवानी नहीं पहननी पर कम से कम यही बांध लो। अच्छा शेरवानी नहीं पहननी तो मृग छाला बांध लो, पर मृग छाला में बटन थोड़ी थे जो रुक जाए। अब नंदी जी के सामने दूसरी दिक्कत कि मृग छाला कमर तो मैं बांध तो दी पर ये रुके कैसे? तो किसी ने कहा एक सेवक की ड्यूटी लगाओ वो पकड़े रहे। नंदी जी बोले वाह, मान लो बारात के बीच में जब भांवर में सात भांवर पड़े उसी बीच में उसका हाथ दर्द करने लगे, वो हाथ पलटे और छूट जाए, छूट जाए तो सब मामला ना गड़बड़ हो जाएगा है? इतनी बनी मनाई इज्जत सवा गड़बड़ हो जाए तो क्या किया जाए? नंदी जी बोले एक दूसरा उपाय। बोले क्या? बोले एक अभी अभी रुको। नंदी जी भागे भागे गए, काला काला एक लंबा सांप पकड़ ले आए, और सांप पकड़ करके लाए और कमर में पहले मृग छाला बांधी और फिर ऊपर से सांप को बांधा, और सांप से बोले सुनो पृथ्वी पलट जाए पर तुम्हें नहीं खिसकना है, तुम्हें वहीं रहना है और पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर लगी है दाव। सांप बोला आप टेंशन ना लो, बाबा की आज्ञा है तो बस है, हम सेवा करेंगे। आहा बढ़िया, आप श्रृंगार पूरा हो ही गया, बढ़िया भस्म हो गई, मृग छाला हो गई, बढ़िया मुकुट हो गया, मोर हो गया, गंगा जी चंद्रमा चमक ही रहा, गंगा जी बह ही रही, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दिया। भोले बाबा मैंने पहली बार अपने रूप को ऐसा देखा। अरे भाई वाह, एक तो स्वयं कर्पूर की तरह, कपूर की तरह धवल देह है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऊपर से आज श्रृंगार हुआ और फिर बारात में जाना है। नंदी जी बोले बुरा ना माने तो हम आपको रथ ले आए। भोले बाबा बोले नहीं हम तो नंदी पर ही जाएंगे, जो आज्ञा प्रभु आपकी जो आज्ञा, सेवक तैयार है। भोले बाबा ने अपने स्वरूप को देखा, खुद के स्वरूप को देख करके ही खुश हो गए, सोई डमरू उठाई और डमरू बजाते हुए बाबा मस्त होकर के झूमने लगे। अच्छा बाबा को मस्त देखा तो फिर चेले कहां रहे? तो भोले बाबा मस्त, सुनंदी भृंगी संगी सब बाबा की मस्ती में आनंद से झूमने लगे, दमक दमक।

अब ऐसे भी कथा की दक्षिणा तो लगती है, तो कुछ ना कुछ तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे माता जी, तो दक्षिणा में यही चढ़ा दें, जय बजरंग बली की, हनुमान जी महाराज की जय हो। आहा, तो सती जी चरणों की सेवा करने लगी। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारी माता जी, चाची जी और हमारी बहन जी की सासू माँ, वो भी माता जी देवराज से, सब पूरा परिवार भागवत कथा सुनने के लिए आया हुआ है। और देवरा वाले पापा जी भी आए हैं, तो सब रिश्तेदार सहित, मतलब माता जी बैठी तो पीछे की तरफ उनके समधी भी बैठे हैं। आज बड़ा अद्भुत नज़ारा है ये। हमने तो पहली बार ऐसा देखा है, पहली बार देखा है, बड़ा अद्भुत नज़ारा है, बड़ी अद्भुत बात है, प्रसन्नता की बात है, बड़ा अभूतपूर्व नज़ारा है, तो हम भी बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा, ये भगवान की अनुकंपा होती है। बारात में जाएंगे, लोग हमें देखेंगे, वो आप कभी बारात का पूरा आंकलन निकालना तो आप पाओगे बारात में कोई किसी को नहीं देखता, हाँ सब अपने को ही देखते रहते। पूरी बारात का यदि आंकलन निकाला जाए तो बारात में सब श्रृंगार करके इसलिए जाते हैं कि जब बारात में जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे, और सच ये है कोई किसी को नहीं देखता। देखो इसकी तो काली टी शर्ट है, हमारी तो लाल है, इनके तो ऐसे कपड़े, हमारे तो ऐसे हैं, सब आपस में यही बात मन में सोचते रहते। अच्छा, कई बार तो इतना श्रृंगार लोग कर लेते, इतना पाउडर लगा लेते कि शीशा दर्पण ही मना कर देता, भैया बहन अब रहने दो रहने दो। आजकल तो उसका जमाना आ गया मेकअप का, सबसे ज्यादा तो ब्यूटी पार्लर वालों को लगेगा। हाँ, सबसे ज्यादा श्राप यदि किसी बूटी पर, वो कब गोरे को काला और काले को गोरा, राम राम राम राम राम राम राम, क्या जमाना आ गया, हनुमान जी ही बचाएं, धन्य है बूटी पार्लर का जमाना। 5,000 की क्रीम, 10,000 की क्रीम, हे भगवान। और यहां से तो जो बच्चियां बच्चे जो जो जाते हैं बड़े ठीक ठाक दिखने में जाते हैं, वहां से ऐसे आते निकल करके आए, आओ आओ आओ आओ, अरे राम राम राम राम राम। हमारा एक चेला था चंगीलाल, उसकी घरवाली एकदम काली अमावस्या जैसी, देखने गया तो मेकअप में दिखा दिया, मेकअप में दिखाया तो गोरी दिखी। हमारे पास आया, बोले गुरुजी आपकी कृपा से शादी तय हो गई। हमने कहा क्या नाम है, बोले मुन्नी बाई नाम है। हमने कहा बहुत बढ़िया, शादी करो बहुत अच्छा है, करो करो करो, करो। लेकिन भगवान की कृपा, बोला देखो गुरुजी कभी ना कभी तो गृहस्थ में जाना ही है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अब जब वो शादी में दूल्हा बन के गया तो भगवान की उस पर विशेष कृपा थी, हमारा तो आशीर्वाद था ही भगवान की कृपा। उस जमाने में वाटर प्रूफ नहीं चलता था, मेकअप नॉर्मली चलता था, अब तो वाटर प्रूफ आ गया, नॉर्मल चलता था। तो एकदम काली अमावस्या जैसी, लेकिन एकदम मेकअप में ऐसी लगे जैसे पूनम का चंद्रमा उदय होकर के आ गया। की बात, बारिश हो गई और टेंट के नीचे शादी, तो जो हाल हुआ, ज्यों ज्यों बूंदें गिरे त्यों त्यों रंग निखर कर बाहर आए, और एकदम भगवान कृष्ण कन्हैया श्याम वर्ण बनते हुए आभा मंडल से प्रकट भए, और इसकी नजर होने वाली घरवाली पे गई, अरे बोले धोखा हो गया, भागा मंडप से ही। हमारे पास रात में आया, हमका चेला आज तो तुम्हारी शादी है, इधर क्या कर रहे? अरे बोले गुरु बच गए। हमका हुआ क्या? अरे बोले इंद्र देवता ने बचा लिया, मेकअप के चक्कर में वो गोरी दिख रही थी महाराज, इतनी काली है कि छोटे छोटे जब बच्चे होंगे और उनको बिना मेकअप के दिखा दिया जाएगा तो डर जाएंगे। अरे हमका तो फिर ठीक है, तो मेकअप वाले बड़े, अब उनका भी खैर मेकअप की
बुराई नहीं हम कर रहे, श्रृंगार तो करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। फिर से सुनो, श्रृंगार करना चाहिए। अच्छा, बुंदेलखंड में श्रृंगार को सजना कहते हैं। क्या कर रहे हैं? बोले सज रहे हैं, सजना हो रहा है, सजावट हो रही है। तो सजावट का ही अपभ्रंश होकर के शब्द बना सजना। सजना तो चाहिए, पर संसार रूपी सजना के लिए नहीं सजना चाहिए, परमात्मा रूपी सजना के लिए सजना चाहिए। सजना तो चाहिए, पर संसार रूपी सजना के लिए नहीं सजना चाहिए, परमात्मा रूपी सजना के लिए सजना चाहिए। क्यों? संसार के लिए श्रृंगार पढ़ करोगे तो काम में फंसोगे, और परमात्मा के लिए श्रृंगार करोगे तो राम में फंसोगे। दोनों, श्रृंगार का उद्देश्य क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार का उद्देश्य यदि भगवान को रिझाना है बहुत बढ़िया है, तब तो खूब बढ़िया श्रृंगार करके, नख सिख श्रृंगार कर भगवान के सन्मुख जाना चाहिए कि प्रभु अब हमारे पास गुण तो है नहीं है, रूप भी ठीक ठाक आपसे कभी हो ही नहीं सकता, जो है इसी को देखकर हंस लो, आप रीझ जाओ। इस भाव से यदि श्रृंगार है तो ठीक है, बाकी यदि श्रृंगार की दृष्टि से श्रृंगार है तो भगवान ही बचा।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: दो साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
17: सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहा बाबा की पूजा के लिए सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग, जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा के भक्त। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा गरीबनाथ धाम में आधी रात से लगा भक्तों का तांता, देवघर में भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। कांवड़ियों के नाम सीएम योगी की पाती, कांवड़ यात्रा को बताया सामाजिक समरसता का महापर्व, इको फ्रेंडली कांवड़ अपनाने और प्लास्टिक मुक्त जीवन के संकल्प की अपील। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में स्कूल और आंगनबाड़ी रहेंगे बंद, हिमाचल प्रदेश के मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर में जमकर बरसेंगे बादल। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे यात्रा की अगुवाई, 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का है लक्ष्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आपको बता दें पीएम मोदी ने नई दिल्ली में स्थित अपने आवास पर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम ने इस मुलाकात का एक खास वीडियो अपने इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सभी खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत की सराहना की। वहीं खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को अपने खेल के अनुभव और संघर्ष की कहानियां सुनाई। प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। इस मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा, और देशवासियों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 39 मेडल जीते थे, जिसमें से 13 गोल्ड, 17 रजत और 9 कांस्य हैं।
6: मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी तो मिल रही है, तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं

0: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी। वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूं, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं वे खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी।
2: हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाई।
1: पक्का?
3: जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने गिफ्ट दे दिया।
1: बड़ी शान बढ़ाई आपने, इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है।
4: मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 21 में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो
1: बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है।
5: सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा।
1: यानी मान के चलते हैं।
5: हाँ सर।
1: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
6: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
1: इस विजय की परिस्थिति, खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूं, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं।
6: जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट है, वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही।
1: अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। कारगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी?
7: उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है।

0: मैंने वो कम पाकिस्तान एक तरफा मैंने 5-0 से हराया, तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज को मैंने डेडिकेट किया था सर।
1: आपको ये याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने।
2: वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था तो मिलिट्री वाले को फोन आया कि भी पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी मिले थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलो। वहाँ बोलो, मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
1: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया।
3: मेरे मन में भी धक धक धक धक हो रहा है।
1: आप चिंता मत कीजिए।
3: पर
1: आप जाए आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है।
3: मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तुम मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ।
4: कॉमन गेम्स में मेडल सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुश हुई जी। मैंने सर को क्रेडिट दिया था क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ।
1: मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है, मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना?
5: जी सर। बहुत
1: कैसा बना है स्टेडियम?
5: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी, और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर।
1: भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी?
5: जी सर। 2000
1: उज्जैन जाते थे कि नहीं?
5: जी सर उज्जैन भी गई थी सर।
1: अच्छा महाकाल के पास भी गई?
5: जी सर।
1: काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार?
5: जी सर।
1: सावन महीना तो भी है,
5: वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर।
1: ठीक है।
5: साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची। मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी। 2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो उसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर।
1: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
6: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
7: और थैंक यू सो मच। मैं सर के हाथ से मिला, बर्थडे था तो आज सर की
6: बहुत बधाई।
7: ये ओनली एक ही
6: मेडल।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सुरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हर्ड है औषधीय गुणों से भरपूर है। हर्ड के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में, कहीं है हंगामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहा है बाबा की पूजा के लिए सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग, जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा के भक्त। भक्तों से गुलजार, देश भर के शिवालय रोहतास त्रिनारी की गुप्ता धाम गुफा में 60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बाबा गरीबनाथ में भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। पहाड़ों में आज सावन का अंतिम सोमवार, शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को बांटी जा रही है खीर। बद्रीनाथ में आस्था का महासैलाब, मॉनसून में टूटा यात्रा का रिकॉर्ड, अब तक 16 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, नवंबर तक होंगे दर्शन। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में स्कूल और आंगनबाड़ी रहेंगे बंद, हिमाचल प्रदेश के मंडी कांगड़ा कुल्लू और सिरमौर में जमकर बरसेंगे बादल।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज सावन का दूसरा सोमवार है और शिव मंदिरों में इस अवसर पर भोले बाबा के अभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शिवजी के जलाभिषेक की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि जलाभिषेक को शीतलता, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हर शिवालय में पहले महादेव का भव्य जलाभिषेक होता है और उसके बाद महादेव का श्रृंगार होता है। गुजरात के सोमनाथ में सावन के सोमवार पर भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। दूर दूर से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दूध, जल, बेलपत्र और फूलों के साथ भक्त बाबा को अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की अपनी विशेष परंपरा है। यहाँ हर दिन सुबह भगवान महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। जलाभिषेक हो या पंचामृत अभिषेक, श्रद्धालुओं के लिए ये बाबा के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ धाम में भी महादेव का सबसे पहले पंचामृत अभिषेक होता है। हम आपको ज्योतिर्लिंगों पर बाबा के अभिषेक की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि बाबा के अभिषेक के पीछे केवल धार्मिक मान्यता है या इसके कुछ वैज्ञानिक कारण और महत्व भी होते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है, वैदिक मंत्रोच्चार होते हुए भी आप सुन सकते हैं।

महादेव का अभिषेक तो आपने देखा। आपको बता दें महादेव के अभिषेक की परंपरा शायद उतनी ही पुरानी है जितनी देवाधिदेव की आराधना। भोले भंडारी के अभिषेक की परंपरा से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसके पीछे केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं, और इससे क्या लाभ होते हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। आइए आपको बताते हैं।

0: बम भोले, कैलाशपति, शिव शंकर, ओगड़ दानी, नीलकंठ, गंगाधर, रुद्र, महेश्वर, पशुपतिनाथ, भगवान आशुतोष का हर नाम शुभता से परिपूर्ण है, परम कल्याणकारी है। जब इन पावन नामों का जाप करते हुए महादेव का अभिषेक किया जाता है तो ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि इसके जरिए आत्मा का परमात्मा से सीधा जुड़ाव बन जाता है। सावन के पावन महीने में महादेव के अभिषेक के लिए कांवड़िये, शिव भक्तों और श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ रहा है। तमाम लोग न केवल शिवलिंग के दर्शन पूजन करना चाहते हैं, बल्कि उन पर जल चढ़ाकर और दूसरी सामग्रियों से उनका अभिषेक करके भोले भंडारी को प्रसन्न करना चाहते हैं। ऐसी मान्यता है कि अभिषेक करने से शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही कारण है कि न केवल सावन में बल्कि साल भर हर महीने हर मौसम में भोले बाबा के अभिषेक की परंपरा चली आ रही है। पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार शिव भक्त और श्रद्धालु हमेशा महादेव का अभिषेक करते हैं, कभी मंदिरों में जाकर तो कभी अपने घरों में ही विशेष अनुष्ठान करवा कर। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भोले भंडारी के अभिषेक के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे क्या कोई विज्ञान है या कि ये महज सदियों से चली आ रही परंपरा का पालन है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं नीलकंठ भगवान शंकर के अभिषेक की परंपरा कैसे शुरू हुई और इसका रहस्य क्या है। साथ ही ये भी बताएंगे कि महादेव का अभिषेक कैसे किया जाता है, इसके विधि विधान क्या है, केवल जल से ही अभिषेक किया जाता है या और भी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कितने प्रकार से भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है। सनातन परंपरा में शिव जी के अभिषेक का अर्थ और उसका महत्व बहुत गहरा है। शिव जी की भक्ति और उनकी उपासना में अभिषेक की प्रधानता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अभिषेक करने का मतलब क्या है। आमतौर पर अभिषेक शब्द का अर्थ है स्नान कराना, लेकिन विशेष रूप से शिव जी के अभिषेक से तात्पर्य केवल उन्हें स्नान कराना नहीं है। महादेव के अभिषेक से तात्पर्य उनकी उस खास पूजा विधि से है जो महादेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए की जाती है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए की जाती है। शिव जी के प्रतीक शिवलिंग पर मंत्रों उच्चार के साथ पवित्र नदियों के जल, दूध, दही, घी, शहद और गन्ने के रस जैसे दिव्य वस्तुओं को अर्पित करना ही अभिषेक कहलाता है और उनके प्रति भक्ति के समर्पण और सेवा भाव को दर्शाता है। भोले बाबा के आम भक्तों और श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी नहीं होगी कि शिव जी के अभिषेक का अर्थ क्या है। वो तो अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए उपासना के विधान के तहत उनका अभिषेक करते हैं। लेकिन अगर आप ये जानेंगे कि भोले भंडारी के अभिषेक का महत्व क्या है, तो इस पूजन प्रक्रिया के प्रति आपकी श्रद्धा और आस्था और भी बढ़ जाएगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बाबा के अभिषेक के पीछे क्या रहस्य है। दरअसल भगवान शिव के अभिषेक के पीछे सबसे प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल नाम का भयंकर विष निकला। ये विष इतना खतरनाक था कि इसकी गर्मी और धुएं से पूरी सृष्टि जलने लगी और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सृष्टि को नष्ट होने से बचाने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। महादेव ने बिना संकोच किए उस विष को पी लिया। विष के प्रभाव को रोकने के लिए माता पार्वती ने तुरंत शिव जी के कंठ को दबा दिया। इससे विष उनके गले में ही रुक गया। विष के कारण शिव जी का गला नीला पड़ गया, जिससे उन्हें नीलकंठ कहा गया। भले ही विष गले में रुक गया था, लेकिन उसकी गर्मी के कारण भगवान शिव के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। महादेव को शीतलता पहुंचाने के लिए सभी देवों और ऋषियों ने उन पर पवित्र गंगा जल और दूध और शीतल द्रव्यों की धारा बरसानी शुरू कर दी। इस शीतल बौछार से शिवजी की तपन शांत हुई। तभी से भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने और उनके प्रति आभार जताने के लिए शिवलिंग पर अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। केवल यही नहीं, बल्कि पुराणों और धर्म ग्रंथों में महादेव के अभिषेक से जुड़ी और भी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें पता चलता है कि आखिर भोलेनाथ के अभिषेक की परंपरा कैसे शुरू हुई। वराह पुराण के अनुसार एक बार महर्षि दधीची के श्राप के कारण भगवान शिव के तेज से अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होने लगी थी। उस भीषण ताप को शांत करने के लिए 77 दिव्य कामधेनु गायों ने शिवलिंग के ऊपर खड़े होकर अपने थनों से दूध की निरंतर धारा बहा दी थी। गायों के इस दुग्ध अभिषेक से शिवजी की जटाएं और शरीर शांत हुआ। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि जो भी गाय के दूध से मेरा अभिषेक करेगा, उसे परम आनंद मिलेगा। वहीं शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने कौतूहलवश शिवजी से पूछ लिया था कि भक्तों की मनोकामनाएं सबसे जल्दी कैसे पूरी होती है। तब भोलेनाथ ने स्वयं बताया था कि जो भक्त अलग अलग द्रव्यों से मेरा अभिषेक करते हैं, मैं उनके दुख को हर कर मन चाहा वरदान देता हूँ। इन्हीं पौराणिक कथाओं के आधार पर ये माना जाता है कि भक्त जब शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाकर देवा अधिदेव महादेव का अभिषेक करते हैं, तो वो प्रतीकात्मक रूप से महादेव से कष्टों को कम करने और संसार को शीतलता देने की प्रार्थना करते हैं। वही ये भी समझना जरूरी है कि महादेव के अभिषेक के पीछे विज्ञान क्या है, इसके क्या वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि महादेव के शिवलिंग पर अभिषेक करने के पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे और सटीक वैज्ञानिक कारण भी है। माना जाता है कि प्राचीन और जागृत शिवलिंग ब्रह्मांड की कॉस्मिक ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं और उच्च ऊर्जा केंद्र बन जाते हैं। ऊर्जा को संतुलित रखने और गर्मी को शांत रखने के लिए शिवलिंग पर लगातार पानी या दूध चढ़ाया जाता है। यही कारण है कि शिव मंदिरों में शिवलिंग के ठीक ऊपर कलश टंगा होता है, जिससे बूंद बूंद पानी गिरता रहता है ताकि शीतलता मिलती रहे। शिवलिंग की बनावट अंडाकार होती है। माना जाता है कि उसमें ऊर्जा को सहेजने और प्रसारित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अभिषेक के दौरान जिन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, उनके औषधीय गुण शिवलिंग की ऊर्जा से मिलकर हवा में फैलते हैं। इससे हवा में मौजूद हानिकारक तत्व नष्ट हो जाते हैं और जिससे मंदिर के आसपास का वातावरण पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन का उपयोग किया जाता है। तांबे के बर्तन से गिरने वाला पानी जब शिवलिंग से होते हुए भूमि में जाता है, तो वो आसपास के भूजल स्तर को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भले ही आम तौर पर महादेव का अभिषेक शीतल जल से किया जाता है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि जल के अलावा और भी सामग्रियों का उपयोग अभिषेक के लिए किया जाता है। इसके पीछे भी खास वजह मानी जाती है। आपको बताते हैं भोले बाबा के अभिषेक के लिए किन चीजों का उपयोग होता है और उनका महत्व क्या है। अभिषेक के लिए आमतौर पर पवित्र नदियों के जल का उपयोग किया जाता है, जो शीतलता का प्रतीक है। दूध से भी महादेव का अभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि दूध में प्राकृतिक रूप से शीतलता देने वाले तत्व होते हैं, जो शिवलिंग को रेडियोधर्मी ऊर्जा को सोखते हैं। अभिषेक में दही का उपयोग भी किया जाता है। दही की तासीर ठंडी और गाढ़ी होती है, जो शिवलिंग के तापमान को स्थिर रखती है। इसके अतिरिक्त अभिषेक में शहद का उपयोग भी होता है। माना जाता है कि शहद शिवलिंग की सतह पर सुरक्षात्मक परत बनाता है। वहीं अभिषेक में घी का उपयोग चमक और मजबूती को बनाए रखता है, जो भौतिक समृद्धि का प्रतीक है।
1: इसमें गन्ने के रस का उपयोग होता है जो मिठास और प्रचुर ऊर्जा से भरपूर होता है और कड़वेपन को दूर करने का प्रतीक है। साथ ही फलों के रस का भी उपयोग अभिषेक में किया जाता है जो अच्छी सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। औषधीय और सुगंधित जल का उपयोग तनाव, अवसाद और क्रोध को शांत करता है। पंचगव्य यानी गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर के मिश्रण से अभिषेक करने से अंदरूनी दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ और चीजों का भी उपयोग महादेव के अभिषेक में किया जाता है जिनके महत्व के बारे में हम आपको बताते हैं। अभिषेक में चंदन का उपयोग शीतलता और सुगंध के लिए किया जाता है, वहीं भस्म का उपयोग जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। अभिषेक में बेलपत्र का उपयोग भी होता है। माना जाता है कि बेलपत्र में अद्भुत शीतलता होती है और ये शिव जी को सबसे प्रिय है। वहीं भांग और धतूरे का उपयोग भी अभिषेक में होता है। भांग और धतूरा अपनी गर्म तासीर के लिए जाने जाते हैं। इनका उपयोग औषधि के रूप में विष के प्रभाव को काटने के लिए किया जाता है। कुशा का भी उपयोग होता है। माना जाता है कुशा में रेडिएशन को सोखने की क्षमता होती है। साबुत चावल यानी अक्षत का भी उपयोग होता है जो पूर्णता का प्रतीक है। इसके अलावा काले तिल का उपयोग किया जाता है जिसका संबंध राहु, केतु और शनि ग्रह से माना जाता है। अभिषेक के दौरान शिव जी को पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं जो सुख, समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक है। बहरहाल आम श्रद्धालुओं के लिए अभिषेक का महत्व शिव जी को प्रसन्न करना ही है, तो सावन ही नहीं बल्कि साल के दूसरे महीनों में भी और खास तौर से शिव जी के प्रिय दिन सोमवार और त्रयोदशी तिथि को उनके अभिषेक की परंपरा चली आ रही है। लेकिन अभिषेक कई प्रकार से किए जाते हैं और उनकी अपनी महिमा है। आमतौर पर लोग शिव जी का जल अभिषेक करते हैं यानी केवल शुद्ध जल या गंगा जल से निरंतर धारा प्रवाहित करते हुए उनका अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इससे मानसिक शांति मिलती है। वहीं रुद्रा अभिषेक महादेव का ये सबसे प्रभावशाली अभिषेक माना जाता है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ करते हुए विशेष द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा लघु रुद्र, महारुद्र और अति रुद्र रूपों में महादेव के अभिषेक के अलग अलग अनुष्ठान भी किए जाते हैं जिनके अपने महत्व है। द्रव्यों के आधार पर गाय के दूध से दुग्ध अभिषेक, गाय के घी से घृता अभिषेक और शहद से और पंचामृत से अभिषेक करने की भी परंपरा है। हालांकि आमतौर पर महादेव का अभिषेक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, लेकिन व्यापक रूप में देखें तो इसके पीछे विश्व कल्याण की भावना छिपी हुई है। माना जाता है कि शिव जी का अभिषेक करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और अशांत मन को अद्भुत शीतलता और शांति मिल जाती है। जल, दूध या पंचामृत की दिव्य धारा से अभिषेक करने से शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। संकटों और रोगों से मुक्ति मिलती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन्हीं मान्यताओं के कारण सदियों से बाबा भोले के अभिषेक की परंपरा चली आ रही है और इस विधान के प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो महादेव के अभिषेक कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपने जान लिया। चलिए अब आपको इसकी परंपरा और विधि विधान के बारे में जानकार ज्योतिष आचार्य क्या कहते हैं वो सुनवाते हैं।
3: रोजगार की प्राप्ति के लिए श्रावण मास में शिवरात्र के दिन भी और प्रत्येक दिन हो सके तो भगवान शिव को गंगा जल की धारा अर्पित करें, साथ में बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेल का फल, वेर का फल, चावल, चीनी, दूध, सफेद चंदन, भस्म, समय पत्र, कूस का रस अगर अर्पित करते हैं तो रोगों से मुक्ति मिलती है, यशकीर्त में वृद्धि होती है, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ रोजगार की प्राप्ति होती है। यदि आपके जीवन में संतान से संबंधित कोई कष्ट है, तनाव है, तो उसके लिए दुग्ध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। भस्म और इत्र चढ़ाने से जीवन में ऐश्वर्य बढ़ता है। भांग चढ़ाने से तथा काला तिल चढ़ाने से राहु ग्रह शांत होता है, राहु की नकारात्मकता दूर होती है तथा राहु से संबंधित कोई कष्ट है जन्म कुंडली में तो वह समाप्त होती है। घृत अर्पित करने से, घी अर्पित करने से, घी से अभिषेक करने से वंश वृद्धि होती है, संतान से संबंधित कष्ट दूर होता है। धन की प्राप्ति के लिए शर्करा मिश्रित जल से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें, शहद को गंगा जल में मिलाकर अगर उससे अभिषेक करते हैं तो भी धन की प्राप्ति होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। सुगंधित तेल चढ़ाने से ऐश्वर्य, धन, वैभव, आरोग्यता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार बेलपत्र अगर श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं तो बुध ग्रह से संबंधित नकारात्मकता दूर होती है और सारे ग्रह स्वतः ही महादेव की कृपा से श्रावण मास में विशेष पूजन करने से अनुकूल फल प्रदान करने लगते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।
2: और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में कहीं है हंगामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: ब्रेक के बाद जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। आपको बता दें, देश भर में सावन के रंग बिखरे हुए हैं। सावन के सोमवार पर महादेव के अभिषेक का बड़ा महत्व होता है। इस दिन हर भक्त महादेव का भव्य अभिषेक करता है। हरिद्वार के पवित्र गंगा जल से लेकर काशी की गंगा धारा तक, सोमनाथ से उज्जैन के महाकाल तक, हर शिवालय में भोलेनाथ की भक्ति अपने चरम पर है। कहीं गंगा जल से बाबा का अभिषेक हो रहा है तो कहीं पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। मान्यता है कि जल चढ़ाने की एकाग्र प्रक्रिया, मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि और कुछ समय तक शांत होकर पूजा करना मानसिक रूप से स्थिर और एकाग्र महसूस कराता है। और सावन के पावन महीने में जलाभिषेक से महादेव प्रसन्न होते हैं। महादेव के अभिषेक के लिए कांवड़ियों, शिव भक्तों और श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ता है। तमाम लोग न सिर्फ शिवलिंग के दर्शन पूजन करते हैं बल्कि उन पर जल चढ़ाकर उनका अभिषेक करके भोले भंडारी को प्रसन्न भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अभिषेक करने से शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही वजह है कि न सिर्फ सावन में बल्कि साल भर हर महीने हर मौसम में भोले बाबा के अभिषेक होते हैं। दिल्ली के प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोई हाथों में दूध लेकर बाबा के दरबार में पहुंचा है तो कोई गंगा जल लेकर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए आया हुआ है। जलाभिषेक के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। आस्था ऐसी कि सुबह से लगी लंबी कतार भी भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पा रही। हर भक्त की बस यही कामना है कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो सकें और उनके चरणों में जल अर्पित कर मनोकामना पूरी हो।
1: सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में सुबह से ही जो है भक्तों की भीड़ अलग अलग शिवालयों में जो है वो नजर आ रही है और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हर एक शिवालय की आपको देश भर से नजर आएगी। आज जल अभिषेक जो है वो किया जा रहा है, रुद्र अभिषेक किया जा रहा है और उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ गौरीशंकर मंदिर की, कि किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर आपको जल अभिषेक के लिए जो है वो नजर आ जाएगी। और अपने आप में एक महत्व है इस जल अभिषेक का और उसी को जानने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण पंडित जी इस वक्त मौजूद है, जो हमारे को बताएंगे कि किस तरीके का कैसा महत्व है, क्यों जरूरी है सावन के समय में जल अभिषेक। पंडित जी, सबसे पहला सवाल ही यही, भक्तों की भीड़ जो है इस वक्त वो जलाभिषेक करने के लिए क्यों इतना महत्व है कि जलाभिषेक होना बेहद जरूरी है?
2: ये जो मंदिर है भगवान श्री गौरी शंकर का, ये प्राचीन नहीं अति प्राचीन है और यहाँ जो भी आता है भगत उसकी कामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए लोगों की आस्था जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और सावन जो परम पवित्र पावन मास है, इसलिए लोग चाहते हैं कि बाबा का अभिषेक हो जाए, दर्शन हो जाए, जलाभिषेक हो जाए, अन्य कामनाओं से यहाँ आते हैं। मंदिर का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, सबके लिए बढ़िया व्यवस्था।
1: जलाभिषेक की करते हैं हम तो जलाभिषेक करना किससे सबसे ज्यादा सही रहता है, गंगा जल से या दूध से? बिकॉज यहाँ पर जो बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं, जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, वो दूध, दही, शहद हर किसी तरीके से जो है जलाभिषेक कर रहे हैं।
2: जी, हरेक कामनाओं के लिए हरेक चीज से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक होता है। बाबा को जलाभिषेक होता है, दूध स्नान होता है, दधि स्नान होता है, घृत स्नान होता है, शहद स्नान होता है, शर्करा स्नान होता है, बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, तो अनेक सामग्रियों से भगवान शिव की अभिषेक होती है। लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कामनाएं करते हैं और बाबा को अर्पण करते हैं, बाबा सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंडित जी ने बताया कि इस वक्त जो जलाभिषेक हो रहा है उसका महत्व क्या है और क्यों इतना जरूरी है जलाभिषेक। जलाभिषेक कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, क्या लगता है?
3: आज सोमवार है और सावन के दिन जो है ये बहुत अच्छा माना जाता है, भगवान शिव से प्रसन्न होते हैं।
1: आप जलाभिषेक किस किस चीज से करोगे?
4: दूध, दही और गंगा जल।
1: जी, जी, जी। हर किसी की अपनी मनोकामना है। आप सुबह से ही सेवा कर रहे हैं भक्तों की।
5: हाँ जी।
1: आपने जलाभिषेक करा?
5: हाँ जी।
1: आपको क्या लगता है कि क्यों इतना जरूरी है जलाभिषेक?
5: बोले वहाँ पे जलाभिषेक जरूरी है क्योंकि ये साल कभी कभी हो पाता है, इसीलिए तो सबको होता है कि ये जल जरूरी है, चढ़ाना ही चढ़ाना है, हर महीने सेवा करनी ही चाहिए।
1: तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरीके से भक्त जो है वो नजर आ जाएंगे। हर कोई जो है अपने जितने भी यहाँ भक्त है उनकी सेवा के लिए जो है आते हुए, और आप देख सकते हैं कि हर किसी के चेहरे पे भी आपको मुस्कुराहट नजर आएगी क्योंकि बाबा की झलक पाने के लिए ये चेहरे जो है इंतजार कर रहे थे और लंबे इंतजार के बाद जो है अब मंदिर में ये लोग आ पहुंचे। और उसके बाद की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से लोग जो है वो आपको अब दिखने वाले हैं। तो हर कोई अपने परिवार की मनोकामना के साथ जो है वो मंदिर में आया है, दर्शन करके जो है यहाँ से जा रहा है, लेकिन आए, चाहे बेशक खाली थे, दुखी मन के साथ आए थे, लेकिन जब मंदिर से जाते हैं तो पूरी आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं कि महादेव जो है उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। तो आज की हम रौनक दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सावन के इस पावन दिन पर जो है भक्तों की जो भक्ति है महादेव के प्रति वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
0: और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहा बाबा की पूजा के लिए सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग, जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे बाबा के भक्त। भक्तों से गुलजार हुआ देशभर का शिवालय, रोहतास चेनारी के गुप्ता धाम गुफा में 60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बाबा गरीबनाथ में भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। पहाड़ों में आज सावन का अंतिम सोमवार, शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को बांटी जा रही खीर। बद्रीनाथ में आस्था का महासैलाब, मॉनसून में टूटा यात्रा का रिकॉर्ड, अब तक 16 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, नवंबर तक होंगे दर्शन। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में स्कूल और आंगनबाड़ी रहेंगे बंद, हिमाचल के मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर में जमकर बरसेंगे बादल।

0: नमस्कार, लंच टाइम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज चूंकि सावन का दूसरा सोमवार है, तो इस खास पेशकश में आपको भगवान शिव के साथ जुड़े हुए इसी सावन के सोमवार के तमाम उपायों के बारे में बताएंगे।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज महादेव की कृपा पाने का एक और विशेष दिन है सावन का सोमवार। सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये दिन भगवान शिव की साधना आराधना को भी समर्पित है। ऐसे में देश भर के शिवालय और ज्योतिर्लिंग में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ रहा है।
0: बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान अरविंद शुक्ला जी स्टूडियो में मौजूद है। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे कि पूजा ने बताया कि मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं, भक्ति की अविरल धारा बह रही है। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार, अयोध्या से लेकर देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, गुवाहाटी, तमाम जगहों पर मौजूद शिव मंदिरों में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की कतारें लगी हैं। महादेव को प्रिय धतूरा, भांग, बेलपत्र, दूध अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है।
1: देश भर से कांवड़िए भी गंगा समेत पवित्र नदियों से जल लेकर अपने आराध्य का जलाभिषेक करने शिवालयों की ओर पहुंच रहे हैं। सभी आस्थावानों की मनोकामना एक ही है, भोलेनाथ की कृपा उनके और उनके परिवार पर बनी रहे। देश भर के तमाम शिवालयों से आ रही ये तस्वीरें शिव भक्तों की अटूट श्रद्धा और समर्पण की गवाही दे रही हैं।

0: ये देश की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रयागराज और साथ ही दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आस्था का नजारा सुबह से ही नजर आ रहा है। सुबह सवेरे भक्त पहुंचे हैं देश के अलग अलग शिवालयों में, वहां पर भोलेनाथ को जल अर्पित किया गया, उनका दुग्ध अभिषेक भी किया गया है। हरिद्वार, अयोध्या, देहरादून, गाजियाबाद, मुंबई की ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है।
1: देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें लगातार आपको जीएनटी पर हम दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सुबह से ही कैसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जिसकी जितनी श्रद्धा है उस हिसाब से महादेव को प्रसन्न यहाँ पर किया जा रहा है। कोई दूध अर्पित कर रहा है, कोई भांग, कोई धतूरा, तो कोई अपने आराध्य को जल चढ़ाकर अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए आज महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो देश से ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस वक्त मंदिरों में किस तरह की रौनक है वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे खास मेहमान के साथ भी बातचीत करेंगे, आज के दिन का किस तरह से पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी तमाम जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जीएनटी पर लगातार।

और देखिए देश भर के शिवालय में तो आस्था का सैलाब नजर आ ही रहा है। भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग में श्रद्धा और भक्ति के ऐसे ही उत्साह और उल्लास भी नजर आ रहा है। सुबह से बाबा के इन धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, देवघर का बैद्यनाथ धाम हो या वाराणसी का बाबा विश्वनाथ धाम, तमाम ज्योतिर्लिंग में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। भक्तों ने विधि विधान से जल अभिषेक किया और बेलपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। सुख समृद्धि की यहाँ पर उन्होंने कामना की।

0: तमाम जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। माँ महाकालेश्वर मंदिर में भी भस्म आरती हुई, उसके बाद भगवान महादेव को उनकी यहाँ पर आरती की गई, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झारखंड की तस्वीरें आपके सामने हैं और वाराणसी में भी किस तरह से भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया वो सब आपके सामने।
1: भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंगों में भी श्रद्धा भक्ति की ऐसी ही उत्साह उल्लास नजर आ रहा है। सुबह से ही बाबा के इन धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरात का सोमनाथ मंदिर या उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, देवगढ़ का बैद्यनाथ धाम भी कुछ ऐसा ही नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है।

0: पवित्र सावन महीने का दूसरा सोमवार है। हरिद्वार वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक के गंगा घाटों से लोग जल लेकर शिवालयों पहुंच रहे हैं। काशी से केदारनाथ तक, उज्जैन से देवघर तक और हरिद्वार से लेकर सोमनाथ तक के मंदिरों में हर हर महादेव, बोलबम और ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिरों में भक्ति की गूंज है और कावड़ मार्ग भक्तिमय हो गया है। देवों के देव महादेव की प्रिय नगरी देवघर में आस्था का मेला सजा है। माहौल में हर हर महादेव की गूंज है और श्रद्धालुओं के दिल में भक्त की संगीत और बाबा के जलाभिषेक के लिए हर कोई लालायित है। बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए लाखों भक्त बिहार की सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा से पहुंच रहे हैं। 10 किलोमीटर तक लंबी कतारें बाबा के दर्शन के लिए यहां लगी हैं। सुबह की पहली किरण से पहले ही शिव मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लग गई। द्वार खुले तो महादेव की जय जयकार के साथ भक्त भगवान को खुश करने में जुट गए। बाबा की नगरी काशी में तो आस्था का समंदर उमड़ रहा है। काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन का दौर जारी है। इस दौरान प्रशासन ने कांवड़ियों पर भी पुष्प वर्षा की। उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आस्था की लहर है। दर्शन पूजन के लिए भक्तों के पहुँचने का सिलसिला भी जारी है और आज भगवान का यहाँ दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से पंचामृत अभिषेक हुआ। अभिषेक पूजन के बाद मंदिर के पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी महाकाल से आशीर्वाद लिया।
1: जो भोले बाबा से हम उम्मीदें लेके आते हैं, श्रद्धा से आते हैं और भक्ति भाव से आते हैं, भोलेनाथ सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। हर हर महादेव।
2: बहुत अच्छा लगा भस्म आरती देख के। जिंदगी में एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा जो उसको देख के मैं बोलूँगी कि इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में कभी नहीं हो सकता। सो हर हर महादेव, थैंक यू। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि महादेव ने मुझे ये चांस दिया भस्म आरती देखने के लिए।
0: उधर संगम नगरी में भी आज सावन के दूसरे सोमवार की धूम है। पवित्र यमुना नदी के तट पर मन की इच्छा पूरी करने वाले मनकामेश्वर महादेव विराजमान हैं। सुबह से भक्त और कांवड़िये यहां पर जलाभिषेक के लिए जुट रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार के कनखल स्थित पौराणिक महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भारी संख्या में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर हर हर महादेव के जयकारों के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भक्ति का कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा गुवाहाटी और मुंबई के शिवालयों में भी देखने को मिल रहा है। सावन के दूसरे सोमवार पर राजधानी दिल्ली भी शिव भक्ति के रंग में पूरी तरह रंगी नजर आई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही गौरी शंकर मंदिर, प्राचीन श्री किलकारी भैरव मंदिर, दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर और शिवालय में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखने को मिली। हाथों में गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प लिए भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना की।
3: सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में सुबह से ही जो है भक्तों की भीड़ अलग अलग शिवालयों में जो है वो नजर आ रही है और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हर एक शिवालय की आपको देश भर से नजर आएगी। आज जल अभिषेक जो है वो किया जा रहा है, रुद्र अभिषेक किया जा रहा है और उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ गौरीशंकर मंदिर की, कि किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर आपको जल अभिषेक के लिए जो है वो नजर आ जाएगी और अपने आप में एक महत्व है इस जल अभिषेक का।
0: गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर में तो सुबह से भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। शिव भक्त बाबा का जलाभिषेक कर यहां भी आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी में भी सावन की धूम है। सरयू नदी के पवित्र जल से बाबा को नहलाने के लिए भक्त काफी ललायित है। नागेश्वर मंदिर में तो सुबह से ही यहाँ लंबी कतारें देखने को मिली। जिसे भी यहाँ बाबा के जलाभिषेक का मौका मिल रहा है वो खुद को धन्य मानते हुए बाबा के जयकारों के साथ आशीर्वाद ले रहा है। यूं तो सावन का पूरा महीना ही खास है, लेकिन सोमवार को इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। महादेव के प्रिय महीने सावन में उनके अति प्रिय दिवस सोमवार की महिमा बेहद अनोखी है। आज सावन के दूसरे सोमवार पर भक्त भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कोशिशें कर रहे हैं। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए देशभर से तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान अरविंद शुक्ला जी लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं, आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे अरविंद जी। उससे पहले हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बन गए हैं, मुंबई से धर्मेंद्र हमारे साथ हैं और मनीषा हैं दिल्ली से, इनसे भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पूजा
5: बिल्कुल, चलिए शगुफ्ता सबसे पहले दिल्ली की तस्वीरें देख लेते हैं। मनीषा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा, अभी दिल्ली में आप किस मंदिर में मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइएगा, कितना उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं का देख पा रही हैं, कितने भक्त अभी तक शिवालय में दर्शन कर चुके हैं।
3: इस वक्त प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में मौजूद हूँ और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि गिनती करना मुश्किल है शगुफ्ता। और आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि सुबह से ही ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, लगातार इसी तरीके से देखी जा रही है और यही नजारा आपको देश भर के हर एक शिवालय में जो है वो नजर आने वाला है। लेकिन ये मंदिर वाकई में बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना मंदिर है और खूब सारी इसकी मान्यता है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर हर सावन में जो भीड़ है वो हद से ज्यादा देखी जाती है। चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कितनी कितनी लंबी लाइनें हो, लेकिन हर कोई दर्शन करने यहाँ पर जरूर आता है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर महादेव के सामने अपनी मनोकामना रखना वो अवश्य पूर्ण होती है, तो उसी को देखते हुए हर कोई आस्था के साथ, श्रद्धा पूर्ण के साथ जो है वो यहाँ आता जरूर है, ढेर सारी कामना के साथ कि महादेव और माँ गौरी जो है वो उनकी मनोकामना जरूर जो है वो पूरी करे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है वो नजर आ जाएगी। हर कोई जो है यहाँ पर सेवा में आपको लीन नजर आएगा। सबसे पहले तो तस्वीरें मैं आपको इन सेवादार की दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये लगातार सुबह से इसी तरीके से आपको बिना थके जो है काम करते हुए नजर आएंगे और ये भक्तों का भी जोश बढ़ाते हुए जो है आपको नजर आ जाएंगे। बीच बीच में जयकारे जो है ये लगातार जो है वो लगाते हैं ताकि जो लाइन में लगकर जो भक्त मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं उनका जो उत्साह है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो ये इस तरीके से आपको ये जो लोग है वो नजर आ जाएंगे। अंदर की तस्वीरें दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और वरना हम सुबह से ही जो है जीएनडी के माध्यम से जो है भगवान शंकर और माँ गौरी की जो तस्वीरें है वो लगातार दिखा रहे, दर्शन करवा रहे। लेकिन अभी अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मंदिर का जो प्रांगण है वो किस तरीके से पूरी तरीके से भक्तिमय हो चुका है और आज दूसरे सोमवार की जो भक्ति के बीच आपको एक खास चीज और दिखेगी कि कल जो है कल जल चढ़ाया जाएगा। कल सावन शिवरात्रि यानी शिव भक्तों के लिए आने वाले जो दिन है वो और भी विशेष होने वाला है। सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना और साथ ही साथ जलाभिषेक करने का काफी ज्यादा महत्व जो है वो माना जाता है और ऐसे में आज तो मंदिर में आपको जो आस्था दिखाई दे ही रही है, लेकिन अगर कल की बात करें तो कल भी भक्तों में खासा उत्साह जो है वो नजर आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मंदिर में आए हैं और भगवान शिव को जो है दूध, जल, बेलपत्र और तमाम चीजें, घर से बना प्रसाद भी जो है वो लगातार यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और उनको जो है अपने आराध्य को जो है उनको अर्पित कर रहे हैं और उनसे आराधना कर रहे हैं। और मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की जो पूजा अर्चना करते हैं उनको जरूर आशीर्वाद महादेव का मिलता है। और
4: चलिए मनीषा, लौटती हूँ आपके पास धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं एक बार मुंबई का। धर्मेंद्र, आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद हैं और दिखाइए सुबह से यहाँ पर किस प्रकार की रौनक है।
6: देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आज महाराष्ट्र का भी श्रावण शुरू हो गया है, यानी जो मराठी लोग हैं आज से वो श्रावण में शिव शंभू के दर्शन करेंगे और उन्हें लेकर के आशीर्वाद लेंगे, पूजा पाठ वगैरह सारी चीजें यहाँ पे होगी। इस समय मैं घाटकोपर के महेश्वर मंदिर में हूँ, क्योंकि हमेशा से ही हम बाबुलनाथ मंदिर में जा करके लोगों को दर्शन कराते हैं वहाँ का, लेकिन मुंबई में ऐसी और भी दूसरे मंदिर हैं जहाँ पर एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है और बड़े इत्मीनान से, बड़े अस्तीले से लोग बाबा के धाम पहुँचते हैं और जो भी उन्हें पसंद है उन्हें चढ़ाते हैं, चढ़ाकर उनका दर्शन करते हैं। आप भी जो हैं इस समय गुड न्यूज़ टुडे को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं वो महेश्वर मंदिर का भी दर्शन करें। महेश्वर मंदिर के ये शिवलिंग हैं जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। सुबह 7 बजे की आरती के बाद अब दोपहर 1 बजे की आरती होनी है। हर कोई बाबा को प्रसन्न करने के लिए, उनसे मन्नतें मांगने के लिए तमाम वो चीजें लेकर के यहाँ पर मौजूद है, जिससे बाबा कहीं ना कहीं खुश हो जाएंगे। वाकई में श्रावण का बहुत ज्यादा इंतजार होता है। बाबा तक पहुंचने के पहले पहले इस तरीके से दिया यहाँ पर लोग चढ़ा देते हैं, जला देते हैं और अपनी अपनी जो मन्नतें हैं, मांगे हैं, वो बाबा तक समक्ष पहुंचाते हैं। न केवल सिर्फ बाबा का यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं, बल्कि बाबा के दर्शन के बाद बकायदा उनकी आरती भजन करते हैं और कुछ इस तरीके की तस्वीरें यहाँ होती है। हर कोई बाबा के समक्ष यहाँ पर हाजिर है और हर कोई बाबा तक पहुँचना चाहता है अपनी अपनी बातें करके। देखिए कितने अस्तीले से बुजुर्ग महिलाएं हैं, माताएं हैं, जो यहाँ पर बाबा की आरती गा चुकी हैं और अब यहाँ पर उनके दरबार में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ देखें और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं बाबा के धाम में।
5: आप लोगों से बात भी करिएगा अभी थोड़ी देर बाद, जरूर सुनना चाहेंगे कि भक्त वहां पर आज के दिन क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे धर्मेंद्र, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अरविंद जी भी। अरविंद जी के पास सीधा आप चलते हैं। अरविंद जी देखिए, आज हर भक्त पहुंच रहा है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उन पर जल अर्पित कर रहा है। ये बताइएगा कि सबसे पहले जिसमें जल रखते हैं हम, वो क्या पात्र होना चाहिए? साथ ही जब उस दौरान हम शिवलिंग के गोल गोल चक्कर लगाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, तो मैंने ऐसा सुना है अरविंद जी कि वो परिक्रमा पूरी नहीं की जाती, ऐसा क्यों?
7: जी जी, सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति से जो है मैं शुरू करता हूँ और फिर इसके बाद आपको बताते हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाः कल्पोज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्महसीनं समस्तास्तुतमम गणैर् व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। अर्थात त्रिनेत्रधारी जो भगवान शिव हैं, जिनके पंच मुख कहे गए हैं, पंच सिर कहे गए हैं, उनको जो आपने प्रश्न किया जल किस पात्र में होना चाहिए, तो देखिए आप यदि सिंपल जल चढ़ाते हैं तो तांबे का पात्र आपके लिए सर्वोत्तम है, लेकिन जल में दूध मिक्स यदि करते हैं तो फिर आपके पास पीतल का पात्र होना चाहिए। जो परिक्रमा की बात आप पूछ रही हैं, तो परिक्रमा भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा होती है, अर्थात माता शिव और पार्वती के बीच की जो परिधि होती है जहाँ पे जल गिरता है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक बात ये। उसके साथ साथ भगवान शिव की यदि आप पूजा पाठ आराधना कहें, तो भगवान शिव ही ऐसे एक देव हैं जिनको एक लोटी जल में आप जो है प्रसन्न कर सकती हैं, और भगवान शिव का ही ऐसा परिवार है जिसके पूजन से आपका संपूर्ण दाम्पत्य जीवन सफल हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवती माँ पार्वती और भगवान शंकर से ही कुमारी कन्या प्रार्थनाएं करती हैं कि हमें अच्छा वर और अच्छा घर प्राप्त हो। आज के दिन का विशेष जो संयोग है, आज सोमवार है, प्रदोष है, यानी कहने का तात्पर्य कि सोमवार है, प्रदोष है, श्रावण का महीना है, जिन किसी के भी महिला के संतान की दिक्कत होगी, संतान की प्रॉब्लम हो, वो इस प्रदोष व्रत को उठा लें, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत सर्वोत्तम होता है। और इस श्रावण के महीने में आपने यदि थोड़ा सा भी भगवान शिव का किसी तरह से भी प्रार्थना और उनका नाम लिया है तो इसमें आपको अमोघ फल की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि शिव क्या है, वेद शिव शिवा वेदो वेदाध्यायी सदा शिवा। यह वेद कहता है कि भगवान शिव का जो ध्यान कर लेता है, कहते हैं अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्या सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। यदि कोई आपको अघोर फल जो है दे सकता है, आपको कोई अघोर जो है हरेक परेशानी से, हरेक विपदा से, हरेक तरह की दारिद्रता से निकाल सकते हैं, तो भगवान शिव ही हैं, क्योंकि शिव एक ऐसे देवता हैं जो थोड़े से प्रयास और थोड़ी सी सामग्री में आपसे जो है खुश हो जाते हैं।
5: जी अरविंद जी, एक छोटा सा सवाल और लेती हूँ। रिदम हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। रिदम आपके पास आते हैं। अरविंद जी आपसे सवाल ये है, छोटा सा ही जवाब दीजिएगा इसका।
4: कहते हैं कि सावन के इस बार चार सोमवार हैं, तो पहला व्रत, दूसरा व्रत, तीसरा, चौथा, ये सारे रखने लाजमी है या पहला भी रखा जा सकता है, ऐसा नियम है?
7: देखिए, ऐसा है कि यदि आपने शुरू में मतलब एक तरह से मन में संकल्प किया है कि मैं श्रावण के सोमवार व्रत रखूंगा या रखूंगी, तो आपको पूरा रखना जो है श्रेयस्कर है, उत्तम है। और यदि आपने ऐसा कुछ मानसिक संकल्प नहीं लिया है तो आप अपनी सुविधा अनुसार पहला रख लीजिए और लास्ट का रख लीजिए, तो जोड़े का हो जाएगा, ये ज्यादा उत्तम रहेगा।
5: चलिए ठीक है, रिदम के पास दिए चलते हैं। रिदम जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिदम, तस्वीरें दिखाइएगा, अभी जयपुर में आप किस मंदिर में मौजूद हैं, कैसा नजारा वहां देख पा रहे हैं?
8: जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में मैं भी मौजूद हूं, जो कि जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। और मैं नज़ारा दिखाती हूं किस तरीके से भक्तों का यहां तांता लगा हुआ है। अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं, फिर भी हम देख पा रहे हैं कि जितनी भीड़ सुबह से होती है लगभग उतनी ही भीड़ अभी भी दिन के समय में देखने को मिल रही है। हर एक भक्त इंतज़ार कर रहा है बाबा भोले तक पहुँचने का। और चारों तरफ से अभी हम देख पा रहे हैं कि महादेव को, ये जो शिवलिंग है, उसको कभी पूरा दूध से कवर कर दिया जाता है तो कभी फूलों से। तो भक्तों की जो आस्था है वो बहुत अच्छे से दिख रही है, कोई कमी नहीं है वो दिखने में। कतारें बहुत लंबी लंबी सुबह से लगी हुई है, क्योंकि तड़के 3 बजे से यहाँ पे भक्तों की जो कतारें हैं वो लगना शुरू हो जाती है और वो लगभग शाम तक रहती है, क्योंकि दिन में भले ही दर्शन ना हो पाए पर शाम का जो भव्य श्रृंगार होता है उसका इंतजार दिन से शुरू हो जाता है। और आज भी जैसा कि हर दिन अलग अलग बहुत ही अलौकिक श्रृंगार किया जाता है, वैसे ही आज भी 125,000 बेल पत्रों से जो श्रृंगार है वो किया जाने वाला है। कुछ भक्त मेरे साथ अभी मौजूद है जिनसे मैं बात कराऊंगी। हाँ जी, क्या आस्था, क्या श्रद्धा, क्या भक्ति भाव है आपके?
9: शिव शिव है तो सब कुछ है, शिव के बिना कुछ भी नहीं है। हमारे सारे काम शिव पे छोड़ दिए और शिव सब सिद्ध करेगा। हर हर महादेव।
8: आप क्या भक्ति भाव
10: जी? हम कहना चाहेंगे सावन का महीना है, जिस तरह शिव जी और पार्वती जी का मिलन होता है उसी तरह हम भी अपने पति की लंबी दुआ और स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए कामना करते हैं।
8: हर हर महादेव। एक चीज और पूछना चाहूंगी, बहुत सुंदर लहरिया आप लोग पहन के आए हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है?
9: सावन में लहरिया तो फेमस है और जयपुर में तो बहुत ही फेमस है, तो इसलिए हम लहरिया पहन के भगवान जी के मंदिर के दर्शन करने आए कि शिव जी हम पर भी ऐसी कृपा बनाए रखना।
8: आप क्या कहना चाहेंगे?
9: हर हर महादेव।
8: देखिए यहाँ पे अब सभी भक्तों ने जयकारा जो है वो लगा दी है, उत्साह जो है सावन का वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर मैं बताना चाहूंगी कि 125,000 बेल पत्रों की जो झांकी है वो आज की शाम यहाँ सजने जा रही है। हर शाम जिस तरीके से अलग अलग रूप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बाबा भोले का, उसी तरीके से एक और नया रूप जो है वो आज देखने को मिलेगा। हर भक्त इस समय पे यहाँ पे हाथ में जल और दूध और अन्य जो सामग्री है वो लिए खड़ा है कि कब वो बाबा भोले तक पहुंच पाएगा, कब दर्शन कर पाएगा, अपनी मनोकामना उन तक पहुंचा पाएगा। सावन का दूसरा ही सोमवार अभी है, 2 अभी बाकी है, पर उत्साह में यहाँ पे कोई कमी नहीं नजर आ रही है, भक्ति भाव में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, या फिर चाहे वो बच्चे हो, हर उम्र के लोग पूरे दिन इस समय पे यहाँ पे महादेव के सामने नजर आते हैं। और
4: चलिए रिदम लौटती हूँ आपके पास, मनीषा के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनीषा, ये बताइए कि आज के दिन को लेकर शाम के कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं और प्रसाद वगैरह की क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? मनीषा,
11: बिल्कुल, मैं प्रसाद से शुरू करती हूँ। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि कुल्फी मुझे इस वक्त जो है मिली, क्योंकि अभी महादेव को जो है इस चीज का भोग लगाया गया है। हालांकि भोग की अगर मैं बात करूँ तो तमाम चीजों का भोग उनको लगा है, जिसमें पूरी, हलवा, खीर जो है, खीर कहते हैं कि खीर सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो खीर जो है चावल की खीर का उन्हें भोग लगाया गया है। उनको पूरी, कचौड़ी, हर तरीके के जो भोग आम भक्त जो खाना पसंद करते हैं वही भोग जो है महादेव को लगाया गया। लेकिन गर्मी का समय को देखते हुए जो है ये ठंडी ठंडी कुल्फी जो है लगाई गई चाहिए भोग के तौर पर, और इसको हर कोई जो है प्रसाद के साथ बाद में ग्रहण भी कर सकता है। जैसे कि मुझे अभी प्रसाद जो है वो मिला है, तो इंतजाम कुछ इस तरीके से भोग के किए गए थे। लेकिन अगर मैं बाकी जो भक्त यहाँ पर आ रहे उनके लिए मैं बात करूँ, तो नीचे जो है भंडारे की व्यवस्था लगातार जो है वो जारी है। लोग वहां जाकर, जो भक्त यहाँ से दर्शन करके निकल रहे हैं, वो वहां जाके जो है प्रसाद जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अंदर का नजारा बेहद ही भक्तिमय जो है इस वक्त हो चुका है शगुफ्ता। एकदम तस्वीरें अलग अलग नजर आ रही है, जिस तरीके से हर तस्वीरें हम बाकी देश के अलग अलग राज्यों की दिखा रहे हैं, अलग अलग शिवालयों की दिखा रहे हैं, तो जो मंदिर का जो तस्वीर है वो वाकई में बेहद अच्छी है, क्योंकि भक्ति से, भक्ति भाव से हर कोई यहाँ पर जो है इस वक्त भक्त आ रहा है, ढेर सारी मनोकामना के साथ आ रहा है। चाहे आप किसी जोड़े की बात करो, बच्चों की बात करो, या वर्ग, किसी भी वर्ग की बात करो, हर एक वर्ग आपको यहाँ पर मिलेगा ढेर सारी आस्था के साथ, विश्वास के साथ। लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो एक हल्के मन के साथ जाते हैं, उनको ये लगता है कि हमने महादेव के सामने अपनी सारी इच्छा जो है वो रख दी है, अब महादेव ही जो है उसको पूर्ण करेंगे। सिर्फ एक लोटा जल चाहिए उनको चढ़ाना है, उसके बाद
5: बने रहिएगा और भी जानकारी साझा कीजिएगा। देखिए, सावन की शुरुआत से ही प्रयागराज में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो अब तो केसरिया रंग का कपड़ा पहने कांवड़ियों की भीड़ आपको दिखा देते हैं। दरअसल कांवड़ियों की इस भीड़ में अब सफेद कपड़े पहने कांवड़िए भी नजर आने लगे हैं।
4: और देखिए, इन्हें डाक बम कांवड़िया भी कहते हैं। डाक बम कांवड़ियों की खास पहचान उनका सफेद रंग का कपड़ा है और पीठ का लटका हुआ झोले नुमा बैग है, जिस पर लिखा होता है डाक बम। गंगा जल भरने के बाद बिना रुके पैदल ही अपने शिवालयों की तरफ निकल पड़ते हैं।
12: सावन का महीना पूरे एकदम पीक पर है, हर कांवड़िया प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पहुंच रहा है, लेकिन कांवड़ियों के कई अलग रंग और रूप भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे सामने ये डाक बम वाले कांवड़ियां हैं। इनकी खास बात यह है कि ये कहीं भी नहीं रुकेंगे, जल भरने के बाद सीधा अपने घाट यानी जहां पे शिवालय है वहां पे जाएंगे। इनके गले में देखिए ये डाक बम लिखा हुआ, और सभी व्हाइट ड्रेस यानी इनकी पहचान व्हाइट ड्रेस और एक झोला जिसमें डाक बम लिखा हुआ, इसका मतलब कि ये सब कहीं नहीं रुकेंगे और सीधा यहाँ से जल भरने के बाद ये सब सीधा अपने शिवालय में जाकर जलाभिषेक करेंगे। यानी डाक बम की ये पहचान है कि व्हाइट ड्रेस, पीछे झोला और उस पर डाक बम लिखा हुआ, तो इस तरह की ये पहचान है। और ये प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पहुँचे हैं ये लोग, और दशाश्वमेध घाट पे पहुँच कर जल भरेंगे, अपने शिवालय पे जाकर ये जलाभिषेक करेंगे, इस कामना के साथ कि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और ये सफलता को प्राप्त कर सके। आनंद राज, गुड न्यूज टुडे, प्रयागराज।
4: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है, तमाम मेहमान और तमाम खास सहयोगी बने हुए हैं। लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए।

बहू और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में कहीं है हंगामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहा बाबा की पूजा के लिए सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग, जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे बाबा के भक्त। भक्तों से गुलजार, देशभर के शिवालय रोहतास चिनारी के गुप्ताधाम गुफा में 60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बाबा गरीबनाथ में भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। पहाड़ों में आज सावन का अंतिम सोमवार, शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को बांटी जा रही खीर। बद्रीनाथ में आस्था का महासैलाब, मॉनसून में टूटा यात्रा का रिकॉर्ड, अब तक 16 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, नवंबर तक होंगे दर्शन। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में स्कूल और आंगनबाड़ी रहेंगे बंद, हिमाचल के मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर में जमकर बरसेंगे बादल।

0: चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। तो सावन का दूसरा सोमवार और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी शिवमय हो उठी है। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से ही महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जब बाबा के भव्य दरबार भक्तों के लिए खुला तो पहले बाबा महाकाल का पंचामृत से दिव्य अभिषेक हुआ।
1: तो देखिए दूध दही घी शहद और शक्कर से महादेव का पंचामृत अभिषेक हुआ। इसके बाद बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार किया गया। चंदन भस्म पुष्प रत्नाभूषणों से महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। इसके बाद मंगला आरती में दीपों की रोशनी और घंटा घड़ियाल की गूंज ने पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। सावन का दूसरा सोमवार है तो इस खास मौके पर देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। सुख समृद्धि आरोग्य और मंगल की कामना भी उन्होंने की।

0: और चलिए हमारे तमाम सहयोगी और अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से मनीषा का रुख करना चाहूंगी। मनीषा, ये बताइए कि आज कितने पहर की पूजा यहाँ पर की जाएगी महाकाल की?
1: बिल्कुल, अगर आप पूजा की बात करें शगुप्ता, तो सुबह 4 बजे जो है आरती की गई थी, भगवान शंकर और माँ गौरी का जो है श्रृंगार किया गया था। वहीं अभी थोड़ी देर पहले की बात करूं तो 12 बजे अभी भोग जो है वो चढ़ाया गया, और उसके बाद अभी 2 बजे जो है मंदिर थोड़ी देर के लिए बंद किया जाएगा ताकि वापस से जो है श्रृंगार जो है वो किया जा सके। लेकिन अगर मैं आरती की बात करूं तो आरती केवल सुबह के समय और रात को जब मंदिर बंद होता है उससे पहले की जाती है। लेकिन भक्त जो यहाँ पर आ रहे हैं वो ढेर सारी आस्था के साथ आते हैं और कि ये पावन महीना है तो यहाँ पे हर समय हर क्षण जो है वो बेहद ही खास है, उतना ही पावन है। तो जितने भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो एक भक्त जो है यहाँ पर आरती करना शुरू करता है और उसके बाद भीड़ वहाँ पे जो है जुड़ जाती है उन्हीं के साथ और उसके बाद वही आरती करना जो है शुरू कर देते। तो यहाँ पर मैं सुबह से 3 से 4 बार जो है आरती देख चुकी हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ की आरती की बात करूँ तो यहाँ पर जो है 2 समय की आरती होती है। अच्छा, इसके साथ ही इस मंदिर के नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे जो बेसमेंट वाली जगह है वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो लगाए गए, ताकि अगर आप अलग अलग जगह जाकर अलग अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते तो आप गौरी शंकर मंदिर में आइए, आपको भगवान महादेव के दर्शन, साथ ही साथ माँ गौरी के दर्शन और साथ ही साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो है वो करने को मिलेंगे। तो नीचे हर सोमवार जो सावन के सोमवार है उसमें जो है महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है हमारा, उनका भस्म आरती के साथ जो है उनकी भस्म आरती जो है वो की जाती है और उसके साथ ही जो है हर एक जो ज्योतिर्लिंग है उनकी भी पूजा अर्चना जो है होती है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि 12 ज्योतिर्लिंग तो यहाँ पे है ही, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पे आपको 4 धाम के भी आप दर्शन कर पाओगे। हालांकि अभी काम जो है नीचे लगातार जारी है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये मंदिर जो है वो और भी ज्यादा खास लोगों के लिए आने वाले समय में हो जाएगा जब यहाँ पर हर कोई जो है ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 4 धाम के दर्शन भी कर सकेगा। तो मंदिर की मान्यता वैसी अपने आप में बहुत खास है, 800 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर है, लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है, तभी हर सावन में जो है यहाँ पर भीड़ जो है भक्तों की हद से ज्यादा देखी जाती है। लेकिन जब यहाँ पर 4 धाम जो है उसकी स्थापना हो जाएगी उसके बाद ये मंदिर की रौनक देखने लायक होगी शगुप्ता। तो मैं आपको भी बोलूंगी और जीएनटी के माध्यम से सभी दर्शकों को बोलूंगी कि जो लोग दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहे तो ये उनके लिए एक बहुत ही विशेष जगह ये बन जाएगी, जहाँ आप आकर जो है अपने परिवार संग जो है ज्योतिर्लिंग के और साथ ही साथ 4 धाम के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन बात सावन की हो रही है, सावन के पावन महीने की हो रही है और ये पूरा मंदिर प्रांगण इस वक्त भक्तिमय हो चुका है, हर किसी के चेहरे पे आपको उत्साह नजर आएगा। हालांकि थकावट थोड़ी बहुत जो है वो नजर आने लग गई है क्योंकि सुबह के समय इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अगर मैं अब की बात करूं तो बाहर लंबी लंबी लाइन लोगों की लगनी शुरू हो गई है, ऊपर से उमस भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में भक्तों का मंदिर के अंदर प्रवेश करना उनके चेहरे पे मुस्कान ले आता है कि अब महादेव की और उनके बीच की जो दूरी थी वो अब खत्म होने वाली है, महादेव के दर्शन करने वाले और साथ ही साथ जलाभिषेक, क्योंकि जलाभिषेक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
0: मनीषा, आपके पास लौटेंगे और भी जानकारी आप दीजिएगा। अरविंद जी, आपके पास सीधा आते हुए, अरविंद जी क्योंकि हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो जल अर्पित कर रहे हैं, किसी ने व्रत रखा हुआ है, तो क्या अरविंद जी आज के दिन जिन्होंने व्रत नहीं रखा क्या उनको भोलेनाथ की जो वरदान नहीं प्राप्त होगा?
2: जी देखिए, ऐसा है कि जिसने व्रत रखा है उनको भी फल की प्राप्ति होगी, जिसने व्रत नहीं रखा है यदि वह भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, उनके नाम का जाप करता है तो उसको भी मिलेगा। यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ के पास जो नहीं भी पहुँच पा रहा है और व्रत भी नहीं रखे है, सिर्फ मन से उनका जो स्मरण कर रहा है उसको भी फल की प्राप्ति होगी। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के विषय में कि श्री

0: भूतपतिर महेशः, अर्थात भगवान शिव को किसी भी भाव से यदि व्यक्ति भज लेता है तो भगवान शिव उसकी हर प्रकार की इच्छा को जो है परिपूर्ण करते हैं। आप जब एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उनको हर तरह की सुख और सुकून की आनंद की प्राप्ति होती है। देख रहे हैं कि आप जिसे महाकाल की तस्वीर दिखाई जाती है या विश्व बाबा वैद्यनाथ की या विश्वेश्वर महाराज की, तो आप जो अलग अलग चीज़ चढ़ाते हैं उसका अलग अलग फल है। जैसे आप तीन पत्ते का जो है बेलपत्र जो चढ़ाते हैं तो उस तीन पत्ते में त्रिदेव होते हैं, जिसको कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रयायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। दाईं तरफ भगवान विष्णु का वास होता है, बाईं तरफ भगवान ब्रह्मा का वास होता है और मध्य में भगवान शिव का वास होता है। और बिल्वपत्र ये है क्या, जो कि ऋग्वेद में जो श्री सूक्त है उसमें आया है, बिल्व वृक्षोथ बिल्वाहा, जो माँ ये बिल्व वृक्ष जो है माँ लक्ष्मी का वृक्ष है और चढ़ता भगवान शिव को है। इसकी भी एक कहानी, उसका समय नहीं तो विशेष प्रिय है। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि आप जो भी चीज़ अर्पण करते हैं वह आपको हर चीज़ विशेष फलदायी होती है। जैसे दूध अर्पण करते हैं उससे आपकी संतान की वृद्धि होती है, जैसे आप शहद अर्पण करते हैं उससे जो है आपकी धन संपदा का विशेष जो है बढ़ोतरी होती है और दरिद्रता आपके जीवन से नष्ट होती है। जैसे आप मान लीजिए कि घृत चढ़ाते हैं तो यक्ष्म आदि रोगों से निवृत्ति मिलती है और पशु की प्राप्ति होती है। पूर्ण पंचामृत जैसी चीनी चढ़ाते हैं तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और संपूर्ण पंचामृत का अभिषेक यदि आप करते हैं तो जैसे नहीं कि आप दिन भर मेहनत करने के लिए मान लीजिए कोई संघर्ष कर रहे हैं, पिता कहीं जॉब कर रहा है, पुत्र कहीं जॉब कर रहा है, जब शाम को इकट्ठे होते हैं और एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं वह परम सुख का क्षण होता है, परम आनंद का क्षण होता है। उसी प्रकार पंचामृत होता है कि जब आप पांच अमृत भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देते हैं तो उन पांचों अमृत से भगवान शिव को बहुत ही शांति मिलती है और जो आप अर्पित करते हो उससे ही भगवान शिव आपको लौटा के देते हैं। जैसे मान लीजिए भस्म देखते हैं आप, महाकाल में भस्म चढ़ती है, लेकिन कई बार भस्म क्या है कि स्त्रियों को मना है कि उनको नहीं देखने दिया जाता है। तो हर चीज के पीछे एक कारण है और कारण यह है कि जब भगवान शिव को भस्म चढ़ाते हैं, और एक चीज बात और क्लियर कर दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो है मुर्दे की भस्म होती है, नहीं जी मुर्दे की भस्म नहीं होती है, क्योंकि भगवान शिव के तो शरीर में पूरा ब्रह्मांड धारण है। ये भस्म बाकायदे जो है अलग इसका एक अखाड़ा है, वह अखाड़ा पूरे भस्म को तैयार करता है और एक दो लोगों का नहीं बहुत संख्या में लोग हैं जो साधु वो जो है इसको तैयार करते हैं और वही लोग आकर के भस्मारती करते हैं। मंदिर के कोई पुजारी भस्मारती नहीं करते हैं, वही लोग भस्मारती करते हैं। तो इसलिए वो भस्म का भी अपने आप में विशेष महत्व, और स्त्रियां इसलिए नहीं देखती हैं कि नग्न अवस्था में भगवान शिव को भस्म जो है चढ़ाई जाती है तो उस नग्न अवस्था में ना देखने की जो प्रथा है उससे उनका जो है पल्ला ढका जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है भस्म का।
1: चलिए अरविंद जी आपके पास लौटती हूँ, एक बार जयपुर का रुख कर लेते हैं, रिदम के पास चलते हैं। रिदम, अगर आपके लिए संभव है तो कुछ श्रद्धालुओं के साथ बातचीत कर लीजिए, आज के दिन को लेकर कितने उत्साहित हैं वो।
2: बिल्कुल, मैं श्रद्धालुओं की एक बार लाइन आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं लंबी लंबी जो कतारें हैं वो नजर आ रही हैं। एक बार मैं दिखाना चाहूंगी कि सुबह से ही ये जो कतारें हैं इतनी लंबी लगातार चल रही है, हर एक भक्त जो है वो इंतजार कर रहा है। मैं कुछ से बात करना चाहूंगी, मैम क्या भक्ति भाव लेके आई है?
3: हम हर हर महादेव, सबसे पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम महादेव के अपने श्रद्धा और अपने मन से लेके आए हैं और भगवान हमारी मनोकामना पूरी भी करता है, और काफी देर से हम लाइन पे खड़े फिर भी हमें भगवान ने शक्ति दे रखी।
2: अच्छा, आप बताइए कितनी देर हो गई है लाइन में खड़े हुए?
4: कम से कम 1 घंटे के लगभग हो गया।
2: तो अब कैसा लग रहा है जब आप काफी पास में आ चुके?
4: बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर में आके बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है।
2: सर आप बताइए क्या भक्ति भाव है, कितने समय से आप?
5: मैडम 1 घंटा करीब हो गया है, और भक्ति भाव तो ये है महादेव है, हम तो कौन है, वो ही है करने वाले सब कुछ।
2: मैम एक बार आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है महादेव के इतना पास में आके, और क्या आज आपने व्रत रखा है, क्या मनोकामना?
6: हम मनोकामना तो सारी पूरी होती है भगवान के यहाँ के,
7: आस्था रहनी चाहिए सबसे बड़ी। जब अपन आस्था ही नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं है। अपन आस्था रखेंगे पग पग पे सहायता करता वो, पग पग पे करता वो।
2: जयकारा एक बार लगा,
7: जय हर हर महादेव,
6: हर हर महादेव, हर हर महादेव।
2: देखिए आस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है और खुशी भी दिखाई दे रही है क्योंकि जो लाइंस हैं वो वाकई में बहुत लंबी है और काफी समय लगता है क्योंकि जो मौसम है भक्तों ने उम्मीद की थी कि इंद्रदेव जो है वो मेहरबान होंगे पर यहाँ पे तेज धूप और उमस महसूस की जा रही है तो बहुत ही
8: एकदम काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है बिल्कुल कि ताकि श्रद्धालु आराम से भगवान शिव के दर्शन कर पाएं। एक बार मुंबई का सीधा रुख करते हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र आप भी दिखाइएगा जरा तस्वीरें, वहां पर व्यवस्था कैसी की गई है मंदिरों में जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके लिए।
9: बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए शिवलिंग की अभी साफ सफाई हो रही है, कुछ देर पहले ही तमाम फूल हार यहाँ पर रखे हुए थे लेकिन जो भी महाजन हैं, मंडित हैं, पंडित हैं और जो महंत हैं वो सभी के सभी यहाँ पर मंदिर के इस शिवलिंग शंकर भगवान भोलेनाथ की इस प्रतिमा को साफ करते नजर आ रहे हैं। हर कोई यहाँ पर चाहता है कि आकर छू ले, लेकिन खास बात ये है कि कितना ज्यादा अच्छा लगता है जब युवा पीढ़ी आज की तारीख में शिव भगवान को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए एक जोड़ा इस समय हमारे साथ में है, आइए थोड़ा इस तरफ आइए, और अभी अभी इनकी नई नई शादी हुई है और भगवान शिव के समर्पित करने के लिए थाली बकायदा। मैम क्या नाम है आपका?
10: आरजू वर्मा।
9: अच्छा ये बताइए कि कितना ज्यादा जरूरी है श्रावण में शिव भगवान की पूजा, नई नई शादी हुई है, बहुत बधाई आपको।
10: बहुत ज्यादा जरूरत है तुझे की शिव पूजा करने की क्योंकि अभी यही मतलब यही है जो अपने मतलब अपने जीवन को पालन हार रहे, मतलब यही सब।
9: क्या क्या थी आपकी थाली में, क्या क्या लाया था आपने?
10: हार, फूल, चंदन, अक्षत, भांग, पंचामृत, दूध, दिया, अगरबत्ती वगैरह।
9: तो लगता है क्या मांगा आपने, वैसे हम किसी को बताएंगे नहीं फिर भी बता दी।
10: कुछ नहीं, बस हम लोग का साथ पूरी जीवन ऐसे रहे, सातों जन्म तक मैं इनके साथ रहूं।
9: क्या नाम है आपका?
11: संदीप वर्मा।
9: नई नई शादी हुई है? शादी के बाद आप तो एकदम दबी गए हैं।
11: नई नई शादी हुई है।
9: अच्छा, श्रावण में शिव भगवान की पूजा करना कितना खास?
11: बहुत खास है हमारे लिए, बस भगवान से यही दुआ है हम दोनों साथ हमेशा साथ।
1: जी धर्मेंद्र।
9: और कितना अच्छा लगता है भगवान जी।
1: बिल्कुल, चलिए धर्मेंद्र, मनीषा और रिदम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए आज का दिन इतना उत्तम क्यों है। तो देखिए संगम नगरी प्रयागराज के दारागंज में मौजूद दशाश्वमेध घाट भी इन दिनों पूरी तरह से शिवमय नजर आ रहा है। जहां तक नजर जाती है वहां केवल कांवड़िए ही कांवड़िए दिखाई देते हैं। गंगा तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, छोटे बच्चे हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग, हर कोई गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पवित्र गंगा जल अपनी कांवड़ में भर रहा है। हर चेहरे पर आपको भक्ति नजर आएगी, हर कदम पर श्रद्धा, हर तरफ बोलबम और हर हर महादेव के जय घोष वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं।
12: सावन का महीना चल रहा है और यहाँ पर जो कांवड़ लेकर लोग हैं वो दारागंज के दशाश्वमेध घाट पर आए हैं, यहाँ पर जल भर रहे हैं। जल भरने के बाद पूजा पाठ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांवड़िए हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कांवड़ है सफल तरीके से यहाँ पर हो और अपनी जो गलती है उसकी माफी मांगते हैं। फिलहाल दो तरह के कांवड़ होते हैं, एक डाक बम होता है और साधारण जो बम है वो यहाँ पर गंगा जल भरते हैं, और गंगा जल भर के यहाँ पर जो लोग भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं। आप कहाँ से आए हैं?
13: प्रयागराज बलरामपुर से।
12: अच्छा, जल चढ़ाने जा रहे हैं, महाकाल से क्या कामना है?
13: कामना है कि परिवार में सब सुखी मंगल रहे और परिवार के सारे सदस्य भली भात से रहे, सुशोभित रहे, कष्ट कट जाए।
12: जल भर लिया है आपने?
13: जी जी, जल भर लिया।
12: अब कहाँ जाएंगे?
13: बनारस, काशी विश्वनाथ।
12: काशी विश्वनाथ जाएंगे। आप भी यहाँ पर आए, क्या कामना है?
14: हमारा कामना है भगवान हमको बढ़ी दे, बाप परिवार अच्छे से रहे, और बस यही कामना है हमारा।
12: आप भी हैं यहाँ जा रहे हैं जल चढ़ाने?
13: जी जी हाँ।
12: क्या ईश्वर से कामना है भोलेनाथ?
13: ईश्वर से कामना है कि सब सब परिवार सब कुशल रहे, जीवन मंगलमय हो।
12: ये कांवड़ लेकर के जो भक्त हैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ दशाश्वमेध घाट से इन्होंने जल भरा है। आप देखिए छोटा बच्चा भी है, कांवड़ लिए हैं और भगवान भोलेनाथ को यहाँ जल चढ़ाने जाएंगे। आप भी यहाँ पर हैं, क्या कहीं कांवड़ लेके जा रही हैं, भगवान भोलेनाथ से क्या कहेंगे?
15: बस ऐसे ही,
12: परिवार के सुख,
15: परिवार के सुख के लिए।
12: बच्चा भी जा रहा
15: है? बच्चा भी है साथ में।
12: बिल्कुल, यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है, जो भक्त है भगवान से अपनी गलती की माफी भी मांगेंगे और प्रयागराज से जल भर करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए ये कांवड़ लेकर सभी कांवड़ ये जा रहे हैं और अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। पंकज श्रेष्ठ, प्रयागराज, गुड डे।
8: तो देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग में भी श्रद्धा और भक्ति की ऐसी उत्साह और उल्लास के नजारा नजर आ रहा है।
1: बिल्कुल, देखिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आज सुबह से ही कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालु निकल पड़े हैं। एक तरफ कांवड़ियों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह से लीन आपको नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का किस तरह से भस्म आरती से उनको प्रसन्न करने की कोशिश की गई। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन आप कर सकते हैं। तमाम जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही भक्तगण पहुंचे अपने महादेव को, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। और देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दक्षेश्वर मंदिर की अलग छटा है, सुबह से भक्त महादेव के दर्शन के लिए यहां पर लगातार आ रहे हैं। वहीं तस्वीरें आपको दिखाते हैं,
16: और बहुत महान सिद्ध पीठ है ये। यहाँ पे हर जगह से आते हैं लोग, और सावन में कावड़ आती है, मतलब अधिक मात्रा में, बहुत संख्या में आती है, तो इसका बहुत महत्व है। मतलब आज से नहीं, मतलब प्राचीन समय से ही यहाँ पर इसका महत्व बना हुआ है। और जो हम लोग सब यहाँ पर हैं, ये सब भगवान की कृपा है हम पर।
17: पूरे सावन के महीने में यही रहते हैं, यही मान्यता है। बड़े पुराणों में, कथाओं में, सभी में दिया गया है, इसके जानकारी मिलती है और सब सत्य है। शंकर जी की ससुराल है, इसलिए
18: यहाँ की मान्यता है, इसलिए यहाँ भोले की ससुराल है। यहाँ जो मनोकामना मांगो वो पूरी होती है। सुबह 3 बजे से लोग लाइनों में, कतारों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भगवान नंबर उनका आए और जल का अभिषेक करें भोलेनाथ।
19: बहुत अच्छे दर्शन हुए, मन बहुत खुश है, शांत है।
20: वरदान है कि यहीं पे एक महीना वो रहते हैं, इसलिए यहाँ पे सब जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ जो भी मांगते हैं सभी को अपना वरदान मिलता है, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। सब आए, जल चढ़ाए, हम तो बहुत पहले से चढ़ाते हैं। उत्साह बहुत है जी, बहुत बोलो का उत्साह है जी।
21: लाइनें
20: लगी हुई है जी, अभी बाहर से भी आए हुए हैं जी बोले।
21: भगवान दक्षेश्वर महादेव सबकी मनोकामना पूरी करे, भगवान से यही उम्मीद आशा करते हैं और अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखे।
22: यहाँ पर आकर तो मन एकदम ऐसा हो जाता है, आनंदमय, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छे से दर्शन है।
8: तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल यहाँ वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक का आपका ही मन जाएगा। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।

और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में कहीं है हंगामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: और देखिए दिल्ली के प्राचीन कालकाजी मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता यहां पर लगा है। जलाभिषेक के लिए जबरदस्त उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है।
1: आस्था ऐसी है कि सुबह से लगी लंबी कतार भी भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पा रही। हर भक्त की बस एक ही कामना है, बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो और उनके चरणों में जल अर्पित कर मनोकामना पूरी हो।
2: सावन का पावन महीना चल रहा है और इस दौरान शिव मंदिरों में काफी भीड़ देखी जा रही है। भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और भगवान भोले को पवित्र जल चढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में भी भारी भीड़ नजर आ रही है। दरअसल यहां पर भक्तों की भारी आस्था है और जो भगवान भोले को जल चढ़ा रहे हैं, साथ ही कालकाजी माँ के दर्शन भी कर रहे हैं और यहाँ पर भारी भीड़ कालकाजी मंदिर में लगातार नजर आ रही है। हम अभी कालकाजी मंदिर परिसर के पास मौजूद हैं और यहाँ पर जहाँ तक लाइन है उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और माँ कालका के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों में काफी उत्साह है। भोले भी जो है जो जल वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अन्य भक्त भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माँ कालका के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको लंबी लाइन नजर आएगी और लंबी लाइनों में लगकर भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो जल लेकर के आ रहे हैं वो भी पहुँच रहे हैं। तमाम लोग अपना यहाँ आ रहे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। जो ये सिलसिला है लगातार देखने को मिल रहा है, भक्त लगातार कालका जी मंदिर पहुँच रहे हैं और माँ कालका के जयकारों के साथ दर्शन कर रहे हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली।
1: इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना।
0: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: दूसरे सोमवार पर बन रहा है बाबा की पूजा के लिए सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग, जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा के भक्त। भक्तों से गुलजार देश भर के शिवालय रोहतास, श्रीनारी की गुप्ता धाम गुफा में 60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बाबा गरीबनाथ में भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। पहाड़ों में आज सावन का अंतिम सोमवार, शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को बांटी जा रही है खीर। बद्रीनाथ में आस्था का महासैलाब, उमड़ा मानसून में टूटा यात्रा का रिकॉर्ड, अब तक 16 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, नवंबर तक होंगे दर्शन। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में स्कूल और आंगनबाड़ी रहेंगे बंद, हिमाचल प्रदेश के मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर में जमकर बरसेंगे बादल। कोलंबिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है फूलों का त्योहार, निकाली गई भव्य फूल परेड, फूलों की खेती करने वाले 500 से ज्यादा किसान परेड में हुए शामिल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: पवित्र सावन का आज दूसरा सोमवार, तो वहीं जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार, हर होर भोले के जयकारों की गूंज। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ में हुई भव्य मंगला आरती, बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह से उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब, भक्तों पर बरसाए गए फूल। हापुड़ में प्राचीन

ध्यान से की जा रही है पूजा अर्चना। सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ। सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों का लगन तांता।

भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी।

सावन के पहले दिन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। दूसरे सोमवार पर उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचे जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, विधि विधान से पूजा की। सावन के दूसरे सोमवार पर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब, भक्तों ने किया दुग्ध अभिषेक। इस अवसर पर सुबह से ही लगी भक्तों की कतार, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। गाजियाबाद के बाबा दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में उमड़े शिव भक्त, भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए लिलाहित दिखे भक्त। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। बोलबम के जय घोष से गूंजा नागेश्वरनाथ का मंदिर परिसर, शिव भक्तों से पटा मंदिर का चप्पा चप्पा। सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार के दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का रेला लगा, दक्षेश्वरनाथ मंदिर में बेलपत्र अर्पित कर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा दक्षेश्वर महादेव का मंदिर परिसर, सुबह सुबह लगी भक्तों की लंबी कतारें। कानपुर में सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में उमड़ा भक्तों का मेला, श्रद्धालुओं ने आनंदेश्वर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। कुंभ नगरी प्रयागराज में भगवान आशुतोष के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, शहर के ज्यादातर मंदिरों में एक जैसा नजारा। प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दुग्ध अभिषेक। दिल्ली के शिवालयों में दूसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए सुबह से लगी भक्तों की कतार, बाबा की हुई विशेष पूजा अर्चना। बाबा बैद्यनाथ दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार, लाखों से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गुवाहाटी में सावन के दूसरे सोमवार पर सुरकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता, भक्ति ने यहां पर अपार भक्ति देखने को मिली, विधि विधान से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। मुंबई में सावन के दूसरे सोमवार पर बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक। मुरादाबाद के दूसरे सोमवार को कामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का मेला लगा, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा का जलाभिषेक। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुबह से मंदिर में जलाभिषेक के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में दूसरे सोमवार पर लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बाराबंकी में दूसरे सोमवार पर लोधेश्वर महादेव धाम में भक्तों का मेला लगा, भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक।

मधेपुरा में सावन के दूसरे सोमवार पर मां गंगा की उतारी गई भव्य आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मधेपुर में दूसरे सोमवार पर सिंहेश्वर धाम में लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में सुबह से लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा का जलाभिषेक। लखीसराय के इंद्र मनमेश्वर महादेव मंदिर में दूसरे सोमवार में श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। हापुड़ के श्री श्यामेश्वर महादेव में मंदिर में दूसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सीतापुर में श्यामेश्वर मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सुबह सुबह अधिकारियों ने मंदिर परिसर का जायजा लिया। रोहतास के गुप्ता धाम में 60,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन, सुबह से लगी लंबी कतार। मनेर में सावन महोत्सव की धूम देखने को मिली, पारंपरिक परिधान में जमकर झूमी महिलाएं।

0: चित्रकूट में सावन के दूसरे सोमवार में शिव मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतार, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया, हेलीकॉप्टर से हुई भक्तों पर फूलों की बारिश। और आइए मैं दूसरे सोमवार को मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की कतार, भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। रायसेन के सोमेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। पहाड़ों में सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए आदि केदारेश्वर के दर्शन। सोमवार पर बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की बांटी गई खीर, भक्तों ने लगाए बोलबम की जयकारे। बद्रीनाथ में मानसून में टूटे यात्रा के रिकॉर्ड, 16 लाख श्रद्धालु पहुंचे बद्री विशाल के दरबार। बाबा बद्री के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतार, जय बद्री के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। अयोध्या में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह पर तैनात किए गए जवान। अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की ड्रोन से हो रही है निगरानी, आने जाने वाले लोगों पर पुलिस रख रही है कड़ी नजर। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट शिव भक्तों से गुलजार हुआ, बड़ी संख्या में डाक बम कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। मुजफ्फरनगर के बीटेक छात्रा ने बनाई अनोखी कांवड़ बाइक, बाइक को देखने के लिए लगी भीड़। बीटेक छात्र ने महज 3 दिन में बनाई बाइक, 45,000 रुपए आया बाइक बनाने में खर्चा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में, कहीं है हंगामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और अब आपको दिखाते हैं उत्सव की कुछ और खास तस्वीरें। उत्सव दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं, चाइना से लेकर ब्रिटेन तक अलग अलग तरीके से उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट और लीजिए उत्सव का आनंद।
2: पारंपरिक लोक संस्कृति की ये अनूठी छटा सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये तस्वीरें मंगोलिया के नदाब फेस्टिवल की है। चीन के गांसू प्रांत के सूबई इलाके में धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया। चीन के गांसू, किंघाई, जिनजियांग और इनर मंगोलिया इलाके में रहने वाले मंगोलियाई मूल के लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लिया और अपनी लोक संस्कृति के खास रंगों की नुमाइश की। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी लड़कियां और युवा लड़कों ने इस दौरान अपनी परफॉर्मेंस से शानदार समा बांध दिया। आकर्षक संगीत और नृत्य से भरपूर इस उत्सव में मंगोलियाई लोक संस्कृति के अनूठे रंग देखने को मिले। मंगोलियाई भाषा में नदाम का अर्थ होता है खेल कूद और मनोरंजन। इस इलाके के बाशिंदों के लिए अपने रोजमर्रा के कामकाज के बाद वक्त गुजारने का शानदार जरिया रहा है। चीन में मंगोलियाई मूल के लोगों ने अपनी इस सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया, इसीलिए हर साल यहाँ इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं सेंट्रल चीन के हुनान प्रांत में हुए लोक उत्सव की शानदार झलक। ये तस्वीरें हुनान के यांगजी गांव की है। इस इलाके के 48 गांव के लोक कलाकारों ने यहां पर एक साथ जमा होकर पारंपरिक लोक गीत संगीत और नृत्य से माहौल मनमोहक बना दिया। हुनान और गिजोउ की सीमा पर बसे इस इलाके को बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर इस उत्सव की परंपरा 10वीं सदी से जारी है। पुराने जमाने में इसका मकसद अलग अलग गांवों से यहाँ कारोबार के लिए आने वाले लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाना था। वहीं अब स्थानीय लोग अपनी प्राचीन लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए इसका आयोजन करते हैं। एक अनोखे लोक उत्सव की परंपरा चीन के सिचुआन प्रांत में भी है। दक्षिण पश्चिमी चीन के हुईली में यी टोर्च फेस्टिवल के मौके पर भेड़ों की भिड़ंत करवाई जाती है। दूर दूर से आए लोग यहां भेड़ों की लड़ाई देखने के लिए जमा होते हैं और अपनी भेड़ों को इसमें लड़ाते भी हैं। भेड़े इस इलाके के लोगों के जीवन यापन का एक हिस्सा रही है। अब इस उत्सव के जरिए लोग अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं। इसका मकसद जीवन में संघर्ष और कड़ी मेहनत के प्रति जुनून को कायम रखना है। दुनिया के कोने कोने में उत्सव मनाया जा रहा है। जमीन से आसमान तक जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें इंग्लैंड के ब्रिस्टल की है, जहां दुनिया भर से लोग सतरंगी और अतरंगी गुब्बारों के साथ सैर सपाटे के लिए जमा हुए हैं। ब्रिस्टल में 3 दिन का इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल चल रहा है। इसमें 100 से ज्यादा हॉट एयर बैलून्स की उड़ान के शानदार नजारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इस बैलून उत्सव का आयोजन 1989 से होता आ रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए ये अपना शौक पूरा करने का एक शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहा बाबा की पूजा के लिए सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग, जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा के भक्त। भक्तों से गुलजार, देश भर के शिवालय रोहतास, श्रीनारी के गुप्ता धाम गुफा में 60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बाबा गरीबनाथ में भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पहाड़ों में आज सावन का अंतिम सोमवार, शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को बांटी जा रही है खीर। बद्रीनाथ में आस्था का महासैलाब, मॉनसून में टूटा यात्रा का रिकॉर्ड, अब तक 16 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, नवंबर तक होंगे दर्शन। कोलंबिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है फूलों का त्योहार, निकाली गई भव्य फूल परेड, फूलों की खेती करने वाले 500 से ज्यादा किसान परेड में शामिल हुए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: पारुल चौधरी और आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां। कहते हैं कि जिस तरह तितली अपने कुकून से निकलकर अपनी एक नई पहचान बनाती है ना, उसी तरह हमारी जिंदगी में हमें हर दिन बदलना और आगे चलना सिखाती है। वैसे ये जो तितलियां हैं, इनमें भी होते हैं अनेक रंग, और तितलियां सिर्फ बगीचों की शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि ये तो हमें उम्मीद, आजादी और एक नई शुरुआत का संदेश भी देकर जाती हैं। तो आज का ये हमारा एपिसोड होगा बिल्कुल तितलियों जैसा, रंगों से भरा, खुशियों से सजा और मनोरंजन की उड़ान के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सास बहू और बेटियां हेडलाइंस के साथ।
9: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, खतरे में पड़ेगी ईशान की जान, नायनिका पर लगेंगे इल्जाम। सीरियल चौधरी में शुरू होगा बंदूक ड्रामा, घायल होगा गुरु, करेगा सच का खुलासा। सीरियल मन्नत में आएगा मन्नत और विक्रांत के बीच चाकू वाला ट्विस्ट। अपनी होगी किडनैप, ईशा और सूरज करेंगे सच का खुलासा।
10: सर मैं एक संस्था चलाता हूँ, पानी फाउंडेशन, महाराष्ट्र में किसानों के साथ काम करती है। तो अगर सनी को
9: मंजूरी तो आएंगे आमिर खान और सनी देओल बनकर खास मेहमान।
11: I was dying to work with Amit ji.
12: ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
9: और पति ब्रह्मचारी के सूरज यानी कि आशीष दीक्षित की देखेंगे भक्ति। सावन सोमवार के दिन वो करेंगे महादेव के दर्शन। देखेंगे ये संस्कारी डे आउट सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: हंसी मजाक के रंगों से भर जाए इनका ये सफर। बस हमारी तो यही कामना है हमारे सूरज और ईशा के लिए। तो क्या कुछ हो रहा है पति ब्रह्मचारी की इस कहानी में आज? क्या कहानी में आ रहा है फिर से कोई इंटरेस्टिंग मोड, या फिर से आई है इन दोनों के सामने कोई नई सिचुएशन? वेल, जो भी हो, देखिए हमारे लिए तो कहानी से आता है ढेर सारा मनोरंजन। तो चलिए फिर जानकर आते हैं इस कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन सीधा पति ब्रह्मचारी के सेट पर।
1: अपनी हुई किडनैप, ताईजी का हुआ बुरा हाल।
2: हम दोनों साथ में काम करेंगे, तुम या तुम्हारे आदमी मुझसे बिना पूछे कोई भी कदम नहीं उठाओगे।
1: ईशा सूरज करेंगे अवनी के सच का खुलासा।
2: नया प्लान भी बना लिया होगा।
3: नहीं ईशा जी, अवनी को नहीं पता कि अब हम दोनों एक हो चुके हैं।

मंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ताई जी अवनी के साथ मार्केट में आई थी, लेकिन यहाँ पर हो गया गोलमाल, क्योंकि जैसे ही ताई जी अवनी के लिए पानी लेने जाती हैं, अवनी को कुछ गुंडे बाइक पर किडनैप कर ले जाते हैं। ये देखकर ताई जी का तो हाल ही बेहाल हो जाता है,

0: me queda aquí. Mira, nada. Lee. ¿Apni? ¿Apni? अरे अभी प्यास लगी थी, अब कहाँ चली गई?
1: आपके साथ जो लड़की थी उसे कुछ कुंडे उठा के ले गए वहां पे।
2: भाई देखिए कैसे ताई जी चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं। ताई जी को लग रहा है कि अवनी अब खतरे में है और अवनी के घर वाले उसके साथ सही नहीं करेंगे। भाई ताई जी परेशान है, तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं ईशा और सूरज और उन्हें भी रो रो कर ताई जी ये सारी बातें बता रही हैं। तभी ईशा और सूरज ताई जी को बताते हैं कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अवनी एक अच्छी लड़की नहीं है बल्कि वो तो एक मुजरिम है। और ईशा तुरंत अवनी को पकड़ने के ऑर्डर्स दे देती है।
0: वो लोग उठा कर ले गए, अब उसके घर वाले उसके साथ पता नहीं क्या ही करेंगे, क्या करूं?
3: रहमा परेशान मत हो, अपने को कुछ नहीं, पूरी साजिश का पता सिर्फ उसे से पता चला।
4: अवनी की फोटो हर जगह पहुंचाओ, जल्द से जल्द उसे।
0: नहीं नहीं सारी गलती मेरी ही है, जैसा उस अदित के साथ हुआ कहीं अवनी के साथ भी हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बाकी
4: बेचारी नहीं है और ना ही के आंसुओं के लायक है, वो बहुत बड़ी मुझे और धोखेबाज है।
3: टाइम आप घर चले और रही बात अवनी की तो उसे तो क्योंकि सारी साजिश का पता।
5: तो मुझे और सूरज को इससे पहले सारी सच्चाई लाइक पता चल गई होती है कि अवनी मुजरिम है, बहुत बड़ा प्लान रच रही है ये सारी चीज़ें। तो मैं सूरज को कन्विंस भी कर लेती हूँ, प्रूफ भी बताती हूँ कि देखो ये सारी चीज़ें। और तभी हम घर की तरफ जाते हैं, हमारी बातचीत होती है, फिर हम घर में जाते हैं तो पता लगता है कि ताइमा अवनी को लेकर गई है। तो हम और डर जाते हैं कि अवनी ताइमा को लेकर गई है, ताइमा की जान खतरे में, हमें उन्हें बचाना होगा। तो हम जाते हैं मार्केट क्योंकि मोनिका भाभी हमें बताती है कि ये बाजार की तरफ गए हैं दोनों। तो हम जाते हैं, देखते हैं ताइमा वहाँ रो रही है। तो हम दोनों ऑफकोर्स उनके पास जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, अवनी कहाँ है। तो ताइमा कहती है उसे किडनैपर्स ले गए। तो हमें पता चल जाता है कि अवनी का ही चाल है कि उसे पता चल गया है, हमें पता चल गया है इसलिए वो ऐसे भाग गई है। तो ताइमा को हम बताते हैं कि ताइमा आप रोइए मत, वो बिल्कुल भी लायक नहीं आपके आंसुओं के, वो धोखेबाज है, मुजरिम है, साजिश रच रही है कोई। तो सूरज भी वही कंसोल करता है ताइमा को। और मैं एक तरह से श्रेया को कॉल करके बोलती हूँ कि अवनी की फ़ोटोज़ हर जगह भेजो, हर पुलिस स्टेशन में, हर जगह, हमें उसे ढूंढना है।
2: तो भाई अब ईशा और सूरज मिल गए हैं और अब वो अवनी को गिरफ्तार तो करेंगे ही, साथ ही साथ उसका खुलासा भी करेंगे क्योंकि उसने जो ड्रामा किया था उसका पर्दाफाश करना भी तो जरूरी है। अब देखना होगा इसके बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है।
6: हम दोनों साथ में काम करेंगे, तुम या तुम्हारे आदमी मुझसे बिना पूछे कोई भी कदम नहीं उठाओगे। अवनी ने अब तक सारे सिक्योरिटी पॉइंट्स।
2: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: नहीं सजी, अवनी को नहीं पता कि अब हम दोनों एक हो चुके हैं।
8: खूबसूरती तो वही है जो रिश्तों में प्यार के रंग भर दे, और बिल्कुल ऐसी है ये कहानी जिसका नाम है मन सुंदर। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस शो के सेट पर और दिखाते हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स। तो किस हाल में है आज हमारे नाहर और रूही, क्या कुछ हो रहा है उनकी जिंदगी में एट प्रेजेंट, लेट्स चेक इट आउट।
2: नेहाल के के घर पहुंची रुचिता। हुआ निहाल की दादी से सामना। रुचिता को देख फूटा दादी का गुस्सा। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में असल में निहाल के घर पर जानवी को आना था, लेकिन जानवी बिजी है इसीलिए उसने रुचिता को यहाँ भेजा है। असल में जानवी की नानी ने निहाल का रिश्ता जानवी के लिए देखा है, इसीलिए आज जानवी को घर में आना था, लेकिन यहाँ रुचिता पहुँच गई। और देखिए रुचिता को देखते ही दादी का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि रुचिता का रंग सांवला है और वो सिंपल सी लड़की है जो दादी को रास नहीं आई। ऐसे में रुचिता तो यहाँ अच्छे इरादे से आई है, क्योंकि उसे झुमका पड़ा हुआ मिला था और यही झुमका सुभद्रा दादी को देती है ये कहकर कि हो सकता है कि ये झुमका उनका हो। लेकिन इसी बात को लेकर देखिए कैसे दादी भड़क गई। दादी ने रुचिता का हाथ पकड़ा और देखिए कैसे झुमके सहित इस बाल्टी में डाल दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये झुमका उसका हो ही नहीं सकता। इसी बात पर दादी ने रुचिता को खरी खोटी भी सुनाई। भाई दादी को तो बस रिश्ता तोड़ना था, क्योंकि उसे रुचिता पसंद नहीं आई है इसीलिए वो ये सारा तमाशा कर रही है। लेकिन बेचारी रुचिता वो तो बुरी तरह से डर गई है।
9: वो जबरदस्ती ऐसा लग रहा है कि उसकी जो बड़ी नानी है मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रही है और वो हमारे घर में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। और मेरा जैसा है नेचर कि मुझे सांवले लोग ज़्यादा पसंद नहीं है, तो एक नेगेटिविटी हमेशा उस रंग को लेके मुझे हमेशा रहती है, तो उसी के तहत ये पूरा सीन उसके इर्द गिर्द जो है बुना गया है। अभी तो बहुत जल्द है, मतलब अभी मैंने 4 दिन ही हुए हैं शूट करते हुए, देखो अभी कैसा रिस्पॉन्स आता है। जहाँ तक कि ऑडियंस है, उनको टेलीविजन की ऑडियंस को सास बहू हमेशा अच्छा ही लगता है, तो आई एम होपिंग कि अच्छा लगेगा उनको।
2: तो भाई फिलहाल तो निहाल की दादी ने रुचिता को घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन आगे चलकर क्या निहाल और रुचिता का रिश्ता जुड़ेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
10: जो लड़की आज कंपटीशन में जीती है उसे हमारे घर भेजो।
11: क्या यही लड़की है जो मेरे निहाल के दर्द का इलाज करेगी?
2: मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
12: तेरी बातें हैं बेटा, पुराने से पुराने दर्द को भी यार से खींच के बाहर निकाल देती
8: है। ये खूबसूरत लगने लगती है, बिल्कुल ऐसी ही सीख मिलती है ना हमें इन रंग बिरंगी तितलियों से। अब लेकर चलते हैं आप सबको हमारे रंगीन पड़ाव की ओर, जहां लेकर चल रहे हैं हम आपको शो के सेट पर, क्योंकि कहानी में फिर से आया है एक इंटरेस्टिंग मोड, आई है एक नई सिचुएशन, यानी आया है एक नया ट्विस्ट जो लेकर आ रहा है हमारे लिए अनलिमिटेड ड्रामा। लेट्स चेक इट आउट।
13: नाम जपे जो खाटू का मन ना पाखोय, नाम जपे जो खाटू का मन ना पाखोय,
2: घर आई खुशियाँ, संगम की भक्ति,
13: सुखमय जीवन हो,
2: आस्था मिली बच्चन परिवार, कलश टीवी के सीरियल बरेली के बच्चन में आज संगम ने फैसला लिया है कि वो घर की साफ सफाई करेगी और खासकर मंदिर की, जिसके लिए वो फूल भी लेकर आई है। ऐसे में सभी भाई हो गए हैं हैरान, क्योंकि साफ सफाई से तो उनका दूर दूर तक नाता ही नहीं है। लेकिन संगम ने ठान लिया है कि वो इस घर को और इस घर के लोगों को सुधार कर ही रहेगी। ऐसे में शुरू हो चुकी है पूजा की तैयारियां और संगम कर रही है इस मंदिर की साफ सफाई।

फाइनली साफ सफाई होती है पूरी और अगले दिन सभी लोग हो जाते हैं एकजुट पूजा करने के लिए। हालांकि ये सब देख जहां भाई सभी खुश हो रहे हैं, तो वहीं अजब सिंह को हो रही है हैरानी।

0: साफ किया आपने? पूरा रंगा है। चाहिए अच्छे से साफ करके आइए।
1: हाँ यार करना है साफ, हमको हम कर देते हैं ना
0: भैया। नहीं आज मिस्टर कृष्णा बच्चन ही साफ करते
2: हैं। उनका सही है, मतलब क्या करते हैं भूखो मछली वाले चलाते हैं जो बड़े लिए तो करेंगे।
0: चाहिए
1: कैसे आते हैं

0: लेकिन वहीं दूसरी तरफ संगम की मम्मी ने कर लिया है फैसला कि वो संगम को घर वापस लाकर रहेगी और उसकी दूसरी शादी करवाएगी।
1: अगर वो वापस जाना चाहेगी तो भी हम उसे नहीं जाने देंगे। उस ड्राइवर से हम उसे अलग करके ही रहेंगे। हम ना उसके एक अच्छे परिवार में दूसरी शादी करा देंगे।
0: तो भाई अब देखना होगा संगम और कृष्णा का रिश्ता टूटेगा या फिर बचेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: जब प्यार अपने पूरे रंग में होना तो बस फिर तो हर एहसास तितली की तरह खूबसूरत लगने लगता है। कुछ ऐसा ही है यहाँ पर गुरु और रूहानी का साथ। लेकिन क्या करें, इनके रिश्ते में इतनी कॉम्प्लिकेशंस, इतने उतार चढ़ाव थे कि हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर हर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए दूर और ये दोनों आए फॉरएवर एक दूसरे के पास। क्योंकि कहानी तो शुरू हुई थी इनके ही इश्क के जुनून से। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस जुनून के सेट पर।

हुआ मामा जी का भांडा फोड़। सामने आया पीए मिश्रा का सच। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। असल में सच का पीछा करते करते गुरु वहां तक पहुंच गया जहां उसकी मंजिल थी। असल में मामा जी इस टेम्पो में बंद कर लेकर आ रहा था मिश्रा की फैमिली को, और इन्हीं के साथ है पुष्पी मौसी भी। कहीं मिश्रा जिंदा है ये बात गुरु को पता ना चल जाए और मिश्रा उसे मिल ना जाए, इसी वजह से मामा जी ने ये सारा षड्यंत्र रचा। लेकिन गुरु ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, वो भी कर रहा था मामा जी का पीछा। और ऐसे में ये सब अब मामा जी की कैद में है क्योंकि मामा जी ने इन सभी को बांध दिया है इन्हें जान से मारने के लिए। और मामा जी ने उठा लिया चाकू और करने लगा पुष्पी पर वार, लेकिन सही समय पर वहां पहुंच गया गुरु जो खुद भी घायल हुआ लेकिन पुष्पी का रक्षक बन गया। देखिए कैसे मामा जी का चाकू गुरु को जा लगा।

0: लेकिन आज गुरु का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि मामा जी ने ये सारा षड्यंत्र रचा था जिसका पर्दाफाश गुरु ने कर दिया है। तभी तो गुरु ने मामा जी पर तान दी बंदूक।
1: कैसी लगी पिक्चर?
2: बलाए

लेकिन उसने मामा जी को मारा नहीं बल्कि पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही फोन पर रूहानी को ये भी बता दिया कि मिश्रा जिंदा है और उसके हाथ लग गया है, और पुलिस ने भी इन सभी को कर लिया गिरफ्तार।

0: का गुस्सा पुष्पी पर भी है, लेकिन हाथ में बंदूक होने के बावजूद भी गुरु ने पुष्पी को नहीं मारा बल्कि पुलिस के हवाले कर दिया चेतावनी देकर।
1: तो मैं मर्यादा नहीं रखता, उसे जीने का भी कोई हक नहीं, चाहे ना तो आपकी क्या अभी जान से मार दे। मारेंगे नहीं, जैसी भी हो हमारी माँ के बराबर मौसी हो हमारी, रिश्ते का मान रखेंगे। वैसे भी आपके चेहरे में तो हमें हमारी माँ नजर आती है, ध्यान रहे आगे से हमसे या हमारी परिवार से दूरी बनाकर रखना।
0: तो भाई फिलहाल तो सच का खुलासा हो चुका है, लेकिन अभी गौतम से निपटना बाकी है। अब देखना होगा कि गुरु कैसे गौतम को सबक सिखाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: आज के हैप्पी आवर्स भी बिल्कुल इन तितलियों की तरह रंगीन होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ होगी आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान। जी हाँ, ये तो वो सेगमेंट है जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज। तभी तो आएगी आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको इसकी ओर।
3: हिंदी फिल्म जगत के दो अनमोल रत्न आमिर खान और सनी देओल का बॉलीवुड के साथ अभिनंदन किया जाए।
4: बजर है और कुछ ऑप्शंस आएंगे स्क्रीन पे, कैसे होगा?
5: पहले यहाँ पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ करता
4: जी,
5: लेकिन अब बदल गया है।
4: अब क्या बदला है सर?
5: अब वो हो गया है फास्टेस्ट बजर फर्स्ट, जिसने सबसे पहले मारा हाथ उसको हम फिर पूछते हैं कि जवाब बताइए।
6: मैं बजर दबाऊंगा नहीं, मैं उखाड़ लूंगा।
3: बिल्कुल सही जवाब दिया। ये
5: जो फास्टेस्ट बजर फर्स्ट, ये आपको कैसे लगा?
7: सर ये यूनिक है, झटका दे दिया इसने तो, करंट आ गया एकदम, वाइब्रेशन सा। सर उस पे हाथ रखते ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं।
5: वहां से उड़ करके आप इधर आ गए। हमारा जो अब की बार का टैगलाइन है, सोचना बहुत जरूरी है।
4: सोचना
5: तो आप काफी सोच समझ करके आए होंगे यहाँ पर। जी
4: सर, मैं 6-7 दफा आ गया हूँ आई थिंक।
8: ये सोचता
5: सर,
8: नहीं
5: ये,
8: है
5: हाँ बता दें,
8: सोचता
5: आपको।
8: नहीं है, मैं सोचता हूँ।
5: बहुत ही चतुरनाग हैं ये और इनको इतना ज्ञान है, हमको बड़ा ताज्जुब होता है आमिर कि इतना ज्ञान आपके पास कहाँ से आता है।
4: सर सबसे ज्यादा ज्ञान आपके पास?
5: नहीं नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा ज्ञान ही हमारे सर, सामने हमारा मित्र है
4: सर, आप
5: इसी के पास है।
4: देखिए अगर वर्ल्ड में कंपटीशन हो कौन बनेगा करोड़पति का, तो इंडिया किसको भेजेगा भाई?
5: डर जाए, इतने जोर से नाचे आपका माइक गिर गया है। डर जाए, हम लगा देंगे। भाई साहब अपना सीना चौड़ा मत किया कीजिए, माइक गिर जाता है।
4: सर मैं एक संस्था चलाता हूँ, पानी फाउंडेशन, महाराष्ट्र में किसानों के साथ काम करती है, तो अगर सनी को मंजूर है तो हम पानी फाउंडेशन को ये संपत्ति जो कुछ भी जीते
5: हैं।
6: ये 7 करोड़ है।
5: हाँ जी,
6: ये ऐसे ही दे दीजिए। हमें तो नहीं लेके जाने, किसी को देंगे।
5: नहीं सर, उसको कमाना पड़ेगा आपको, इसीलिए तो केबीसी इसका नाम है
4: जी।
5: सर ये एक बार आए 50 लाख इन्होंने जीत लिया, अगला प्रश्न 1 करोड़ का था।
4: सर मैं वो सुनाऊं कहानी?
5: नहीं नहीं, ठहर जाइए। 50 लाख जैसे ही जीता मैंने कहा कि अब आपके सामने आने वाला है 1 करोड़। बाजा बज गया।
4: जैसे ही बजर बजा अमित जी ने मुझे डांट लगाई, अमित तुम पागल हो गए हो, तुमको जवाब नहीं पता था फिर भी तुम खेल रहे हो, अगर गलत हो जाता तो। आई सेड सर आपको तो पता होगा। इसे नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे क्या लगा सनी कि ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है अमित जी के सामने, उनको क्वेश्चन तो आते ही है लेकिन आंसर भी आता होगा।
6: आते नहीं क्या वहाँ?
4: नहीं नहीं आते भाई,
6: मैं यही सोच के आया था कि मुझे पापा
4: हेल्प करेंगे ना,
6: वजह से हाँ। हेल्प कर देंगे।
4: हम सब यही सोच के आते हैं।
9: आपने अमिताभ सर और राधर बच्चन फैमिली के साथ ओवरऑल बहुत काम किया है, सो व्हाट इज योर फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ ऑल?
10: वेरी फॉन्ड मेमोरीज, इट्स वन फैमिली आई लव एंड रिस्पेक्ट अ लॉट, बट आई हैव टू से ऑल द मेमोरीज देयर आर वन आई वाज dying to work with Amit ji, dying to. And मैंने बहुत try किया and then मैंने एक film sign की अरमान and I told Honey Rani the director कि मैं ये film करूंगी अगर अमित जी के साथ एक scene हो. So she said okay if you're dying to work with him you better die in the scene. So I'm in coma and Amit ji comes as a image and I'm in coma. Amit ji remember?
8: Yeah.
10: Or I was shaking because it's so difficult to act dead. I felt so silly because there was the Amitabh Bachchan in the room and I was like, Preeti, aap scene kharab kar rahe ho. Preeti, aap hil rahe ho. Preeti, and I was like...
11: मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सनी सर से है. सनी सर आपकी एक बड़ी फेमस मूवी है गातक जिसके डायलॉग्स बहुत ही फेमस हुए और उसमें से अगर आप एक डायलॉग अगर सुना दे कि ये हाथ नहीं मजदूर का हाथ है कात्या तो सर
6: मुझे इतना याद नहीं लेकिन देखता हूँ कितना याद क्या याद है.
12: अगर कोई और डायलॉग याद हो आपको सुनी जी आप बोल.
6: ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है. क्या याद है
12: मनवर आप इतनी देर क्या कर रहे थे हमारे साथ क्यों नहीं जुड़े आप हम जानना चाहते हैं आप.
6: अमित जी मैं शो से घबराता बहुत हूँ जैसे आज भी था चाहे मुझे जवाब पता भी था फिर भी मैं सोचने पड़ गया था तो इन चीजों में मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ और इसलिए मैं इतने सालों तक नहीं आ सका लेकिन आई वुड हैव ऑलवेज लव टू बी विद यू सर
8: आपके साथ
6: ऑल द टाइम.
12: हमारा जो अब की बार का टैगलाइन है सोचना बहुत जरूरी है.
13: सोचना जरूरी
12: तो आप काफी सोच समझ करके आए होंगे
13: सर मैं 6-7 दफा आ गया हूँ आई थिंक.
6: ये सोचता नहीं है
12: हाँ बता
6: ये सोचता नहीं है मैं सोचता हूँ.
12: बहुत ही चतुर नाग हैं ये. हमको बहुत बड़ी एक कंप्लेंट है आपके साथ.
2: इन तितलियों की तरह आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट के खूबसूरत रंग बिखेरने अब आ रहे हैं पति ब्रह्मचारी के सूरज यानी आशीष दीक्षित. तो चलिए करते हैं आज इनसे एक खास मुलाकात. ओहो वेल चल रहा है सावन का ये पावन महीना तो ये भी पहुंचे हैं सोमवार के दिन कर रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन. हम तो चाहते हैं इन्हें मिले भगवान भोलेनाथ का ढेर सारा आशीर्वाद. उसके बाद हमने किया है इनके साथ सत्तक का सफर. आइए जानते हैं आशीष को अप क्लोज एंड पर्सनल.

0: सीरियल के साथ जिंदगी भी बदल गई, जहां सीरियल पति ब्रह्मचारी के सूरज यानी आशीष दीक्षित मना रहे हैं सावन का सोमवार और साथ साथ कर रहे हैं अपने सीरियल की भी नई शुरुआत। एक बार फिर से सूरज उसी अंदाज में लौट रहा है जहां से सीरियल शुरू हुआ था।
1: ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
2: ओम देवा देवा, ओम देवा देवा।
0: दादा भाई अब कहेंगे अलविदा और लौटेगा फिर से सूरज का वही अंदाज। अपने सीरियल पति ब्रह्मचारी के इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए सूरज यानी आशीष दीक्षित आज बना रहे हैं सावन का सोमवार, जहां सावन आ चुका है और इस मौके पर हर सोमवार को शिव जी

आशीष दीक्षित रियल लाइफ में है शिव भक्त और आज सावन के सोमवार पर वो शिव जी की खास पूजा कर रहे हैं। और साथ साथ उनके सीरियल में भी एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब दादा बाबू की कहानी खत्म होगी और एक बार फिर से सूरज बनेगा पति ब्रह्मचारी। जी हाँ, वही सूरज जो ईशा के लिए कुछ भी कर सकता था।

0: तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की नई शुरुआत के लिए आज वो सास बहू और बेटिया संग जाएंगे शिव मंदिर, मनाएंगे सावन का सोमवार, करेंगे शिव जी की आराधना, लेंगे उनका आशीर्वाद और अपनी नए अध्याय की शुरुआत करेंगे इस खास भक्ति के साथ।
1: शिव कैलाशों के वासी भोली धारों के राजा।
0: तो मेरी धर्म मेरी आस्था में आज आशीष दीक्षित के साथ देखते हैं उनकी खास आस्था जो है भगवान शिव पर।

0: आशीष वहीं पर आए हैं। इसके बाद वो सेट पर गए, दादा बाबू का वेश धरा और अपना आखिरी शॉट दिया, क्योंकि अब वो सूरज बनकर नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज आशीष दीक्षित के साथ करते हैं ये खास संस्कारी डे आउट, जहाँ जानेंगे उनकी धर्म और आस्था और उनके साथ मनाएंगे सावन का सोमवार।
1: ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। तो जैसा कि सभी को पता है, सावन का जो महीना है शुरू हो चुका है, और ये सावन के पावन अवसर पर शिव जी के मंदिर ना जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमेशा की तरह, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनके बगैर मेरी जिंदगी चलती ही नहीं है, बिकॉज आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की दया दृष्टि से हूँ। सो डेफिनेटली मैं आज शिव जी के मंदिर जा रहा हूँ, और सावन के सोमवार में आप सब भी ज़रूर जा रहे होंगे। तो बिल्कुल आप ही लोगों की तरह मैं भी आस्था में इस समय डूबा हुआ हूँ, उनके क्या बोलते हैं, प्यार में डूबा हुआ हूँ। तो मैं बस शिव मंदिर जा रहा हूँ उनके दर्शन के लिए और उन्हें जल अर्पित करने, दूध अर्पित करने।
0: तो आशीष टोपी ओपी पहन के रेडी हैं, क्योंकि आज उनका बतौर दादा बाबू लास्ट डे है। अब दादा बाबू नहीं दिखेंगे और सूरज अपने पुराने अवतार में लौटने वाला है, इसलिए ये अध्याय के लिए भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है।
1: एटलीस्ट सच कहता हूँ, मतलब मैं भगवान जी से हमेशा यही करता हूँ, भोलेनाथ हो या कोई भी भगवान हो, सृष्टि के रचयिता भोलेनाथ से मैं बस एक ही चीज कहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आपको जितना लगता है कि मैं लायक हूँ उतना ही देते रहिए। जब आपको लगे कि मैं और ज़्यादा लायक हो गया तो और देना, बिकॉज समय के पहले और समय के बाद कोई चीज़ मिलती है उसकी अहमियत नहीं रह जाती। तो मुझे उतना ही दो जितना मैं एबल हूँ। डन डन डन, चलिए।

आशी सवार हो लिए अपनी गाड़ी में और निकल पड़े अपने घर के पास के शिव मंदिर में, जो दरअसल पशुपतिनाथ का ही एक मंदिर है। आशीष है शिव भक्त और वो हमेशा इसी मंदिर में आते हैं। अब उनके सीरियल में एक नया मोड़ आ रहा है, इसलिए भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूरी है।

0: तो बस थोड़ी सी ही दूर में मेरे घर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है, तो यहाँ पे आया हूँ आज मैं। और अभी अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे, जल अर्पित करेंगे, दूध चढ़ाएंगे, बेलपत्र, धतूरा, भोलेनाथ का फेवरेट, तो ये सारी चीजें करते हैं दिल से, श्रद्धा से। चलिए।
1: ओम नमः शिवाय। मन जपता।
2: आशीष दीक्षित ने अपनी गाड़ी पार्क की और सबसे पहले प्रसाद लिया। भाई सावन के सोमवार में खास प्रसाद चढ़ता है, फिर वो भगवान शिव का पसंदीदा धतूरा हो, बेलपत्र हो, दूध हो, ये सब चीजें लेकर अब वो करेंगे अपनी प्रार्थना।
0: बेलपत्र

साथ अधूरा और कुछ पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें हैं।

सावन के सोमवार की पूजा में सबसे खास होता है जल अर्पण करना। जी हाँ, भगवान शिव को सोमवार के दिन जल अर्पण करने से मन की मुरादें पूरी होती हैं और आशीष ने भी वही किया और अपने मन की इच्छा जाहिर की। कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से महादेव से कुछ मांगा जाए

0: मतलब कितना आत्मन को शांति मिलती है जगह।
1: तो यहाँ मंदिर में जैसे कि सावन का सोमवार है, भीड़ के बीच में शिव जी की जो ऑर्डर, सावन का सोमवार था, सावन के सोमवार में शिव जी का दर्शन हुआ, पिंड पे मैंने जल अर्पित किया, दूध अर्पित किया, बहुत ज़्यादा सुकून सा महसूस होता है सुबह के साथ। बिकॉज शूट पे जाने से पहले अगर शिव जी का दर्शन हो जाए तो ऐसा लगे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करके हम साइड पे जा रहे हैं, वही एनर्जी लेके साइड पे जा रहे हैं। हालांकि मेरी वाइफ श्वेता जो है उसे मतलब मेरे साथ ही जाना है, बड़ा समय है कि कमी की वजह से मॉर्निंग में ही मुझे निकलना पड़ा, लेकिन हम दोनों बहुत जल्द जाने वाले हैं शिव जी के मंदिर में, इसी मंदिर में हमारे साथ में आएंगे। तो क्या ही बोलूँ, यहाँ मंदिर में बैठा हूँ, घंटियों की आवाज़ लग रही है, हजरत महादेव की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत बहुत बहुत ही सुकून लगता है। और मैं दरअसल मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं अंदर जाऊँ और सुकून से पूजा करूँ, लेकिन जितना भी हो सका प्यार से दिल से किया। बिकॉज मेरा मुद्दा ओवरऑल यही रहता है कि मुझे कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए खास करके मंदिर वाले हुए कि भैया मैं करूँ जल्दी आ जाऊँ, जल्दी करा लो मुझे कभी। मैं चाहता हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके लाइन में लगूँ। हाँ, जब परिवार होती है, बच्ची गोद में होती है, तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब थोड़ा जल्दी पहुँच जाए तो बेहतर होगा।
2: आशीष ने अपनी पूजा की, जल चढ़ाया, कलावा बांधा, पंडित जी से आशीर्वाद लिया, सब भगवानों का नमन किया, अपने संस्कारों के साथ अपने इष्ट देव की आराधना की।

0: जब मैं वहां पर गया तो मतलब सारी चीजें अपने आप हो गई, भगवान की कृपा इतनी थी कि जल्दी से जल्दी दर्शन हो गया, उन्होंने मुझे उस लायक बनाया है। तो यही सब थैंक्स ही बोलता हूँ मैं हमेशा शिव जी को, क्योंकि जब से मैंने अपने आप को सौंप दिया है उन्हें, वो सब कुछ देखते रहते हैं। डे टू डे लाइफ में मैं जब भी मन करता है शिव जी के गाने सुनता हूँ एंड खुश रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ। अब सावन का महीना है तो और ज़्यादा यू नो उत्साहित रहता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मुझे पूरी तरह से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे पूरा नॉलेज है शिव जी की कहानी पूरी तरह से पता है, लेकिन जितना भी पता है उतना मेरे ख्याल से उतना जानना भी बहुत है। बिकॉज शिव जी की नगरी, फिर शिव जी की शादियाँ, दो शादियाँ, कैसे होना, क्या होना, ये सब पूरी कहानी कहीं ना कहीं मुझे पहले आइडिया नहीं था, ये श्वेता ने बताया। एंड जब बताने लगी, अब वो तो ऑलरेडी भक्त हैं शिव जी के, अब मुझे भी भक्त में शामिल कर लिया है, तो बस या तो अब चलते हैं सेट पे और करते हैं शूट, जो कि हमारी दिनचर्या की लाइफ है। बिगर उसके आप सब एंटरटेन हो ही नहीं सकते ना, तो शिव जी की एनर्जी लेके आप सबको एंटरटेन करने के लिए तैयार हुआ मैं। लेट्स गो। दादा भाई बनूंगा, बट लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, सभी ऑडियंस को यहाँ पे, कि दादा भाई के साथ साथ यह पुराना सूरज भी बन रहा है, आप सबको बहुत जल्द नजर आएगा, क्योंकि ईशा जी के लिए दादा भाई, मतलब ईशा जी बस यही कह रही है कि मुझे ये लिबास पसंद नहीं है, तो सूरज पूरी तरह से शायद से दादा भाई छोड़ के वो सूरज बनेगा पुराना। और हिंट यही है कि जब भी वो दादा भाई के सभा में रहेगा वो दादा भाई ही रहेगा। क्या, लेट्स गो एंड वॉच। तो भोलेनाथ का जो दर्शन था वो सुबह ही सुबह हो गया आज सावन के महीने में, और पूरी तरह से एनर्जी मिल चुकी है मुझे। भोलेनाथ ने शायद से पूरे सावन के पूरे साल भर की एनर्जी भर दी है। तो अब चलते हैं अब सेट पे, यही एनर्जी के साथ शूट करते हैं। और बस यही कहना चाहते हैं सभी को, जो भी दुख है, जो भी लोग ऐसे ही नहीं कहते, चलिए आप सभी के लिए अच्छे से जितने वो हैं वो सभी बोल के दिखाता हूँ मैं। दरअसल होता है ये कि या काल हर, कष्ट हर, दुख हर, कटंक हर, संकट हर, रोग हर, विपत्ति हर, बाधा हर, अकाल मृत्यु हर, सुख संपत्ति कर, नमः पार्वती पते हर हर हर महादेव।
1: भगवान शिव आशीष के इष्ट देव है, वो और उनकी पत्नी श्वेता हमेशा भगवान शिव की आराधना करते हैं। हाल ही में आशीष दीक्षित पूरे परिवार के साथ काशी भी गए थे और वहां पर भगवान शिव का अनोखा रूप देखा। आज सावन के खास सोमवार में देखिए उनकी अनोखी शिव भक्ति, अपने पसंदीदा गाने को वो सुन रहे हैं और शिव को याद कर रहे

वो मतलब बस यही कह सकता हूँ बहुत ही डिफरेंट, बिकॉज काशी अपने आप में मतलब शिव जी की नगरी है. ऑफ कोर्स वहाँ पे कदम रखते ही, वहाँ पे घूमते ही ऐसा फील होने लगता है कि हम नगरियों के बीच में हैं. शिव जी साक्षात वहाँ पे, यू नो, मतलब ऐसा लगता है कि आई डोंट नो कि इट्स अ वाइब वी कैन से. लाइक जब भी वहाँ गया

0: मुंबई के सावन को चीरते हुए आशीष पहुंचे अपने सीरियल पति ब्रह्मचारी के सेट पर। आज इस किरदार में उनका ये आखिरी शूट है क्योंकि अब वो अपने अलग किरदार में आने वाले हैं।
1: तो देख लीजिए दादा भाई को जी भर के, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आप तभी देख पाएंगे जब सभा दादा भाई अपने सभा में बैठेंगे लोगों के दुखों को सुनने के लिए, लोगों के दुख को हरने के लिए जब बैठेंगे तब, क्योंकि आज के बाद आप लोगों को आपका अपना सूरज, सिर्फ और सिर्फ अपना सूरज देखने को मिलेगा जो कि स्टार्टिंग डेज में था।

0: ये ग्रीन कुर्ता और लुंगी पहनकर उन्होंने आखिरी बाजी लुक लिया। वैसे इस बार भी उनकी एक्सरसाइज खास है, लेकिन वो अपने उस ओरिजिनल सूरज को बहुत मिस करते हैं जिसके साथ पति ब्रह्मचारी शुरू हुआ था और अब वही लौट के आ रहा है।
1: मैं एक्चुअली हमेशा से पहले वाले सूरज को पसंद किया था और वही मेरा प्रायोरिटी है। और दादा भाई की रही बात तो ये ऑफकोर्स ये भी अपने आप में बहुत बड़ा लुक है, बिकॉज इस लुक में आने के बाद बहुत सारा ठहराव एक्टिंग के लिए लाना पड़ा मुझे खुद में कि एक्टिंग कैसे करनी है, क्राफ्ट कैसे बनाना है। ऑडियंस को हालांकि ज्यादा दादा भाई पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ एक कलाकार को उसका हर एक किरदार पसंद आता है गाइस, तो मुझे तो पसंद आया। लेकिन सबसे ज्यादा मिस तो उसी को करता हूँ, पुराने सूरज को, बिकॉज उसी के दम पे सारी चीजें बनी है।
0: तो आशीष की मुराद भगवान ने पूरी की, क्योंकि अब वो अपने उनके फेवरेट लुक में वापस आ रहे हैं। अब वही उनके बिखरे बाल दिखेंगे, वही उनका मस्ताना अंदाज दिखेगा जिसकी वजह पति ब्रह्मचारी लुक पसंद करते थे। तो ओरिजिनल सूरज वापस लौट रहा है, वही लुक वही अंदाज जिसकी वजह से सीरियल पति ब्रह्मचारी पसंद किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि भोले बाबा इसी तरह आशीष की दुआएं कबूल करते रहे। फिलहाल सीरियल में पति ब्रह्मचारी का ओरिजिनल सूरज लौट आया है और ईशा और सूरज की वही केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आशीष शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय अपनी लाइफ में।

0: तो आशीष दीक्षित की तरह आप भी सावन के इस त्यौहार को मनाइए, अपने इष्टदेव को याद कीजिए और मौसम का मजा उठाइए। मुंबई से अनुपम मावची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: रिश्तों के रंग जब प्यार से भर जाए ना, तो जिंदगी भी खूबसूरत तितली के पंखों की तरह लगने लगती है। यहाँ हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट के रंग। जी हाँ, जिन्हें लेकर हाजिर है हमारी सास बहु अरपेटिया की एयरलाइन। यहाँ तो आपके फेवरेट शोज के सारे हाईलाइट्स और हाई पॉइंट्स भर रहे हैं एंटरटेनमेंट की उड़ान। तो आप भी कर लीजिए हमारी इस एयरलाइन को बोर्ड और हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर।
2: टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आरंभी पहुंची है अस्पताल और इसी के साथ यहां पर राज भी पहुंचा है और दोनों मनमीत को ढूंढ रहे हैं जिसे चोट लगी है और वो इसी अस्पताल में इलाज करवाने आई है। तो वहीं दूसरी तरफ चल रहा है अलग ही तमाशा, जहां पर टंडन परिवार में आए हैं मेहमान क्योंकि डिंपल ने घर में किटी पार्टी जो रखी है। ऐसे में डिंपल की ढेर सारी फ्रेंड्स यहां पर पहुंची हैं और इस बार किटी पार्टी की जिम्मेदारी ली है अवंतिका ने, क्योंकि डॉक्टर आरंभी तो है ही नहीं। ऐसे में अवंतिका ने सभी के लिए डिशेस बनाई है, लेकिन इससे पहले कि ये सभी इस डिश को चखते, नंदिता रोक देती है क्योंकि डिश अच्छी नहीं बनी है और इसी बात को लेकर चल रही है चर्चा, क्योंकि नंदिता कोई बहाना बना देती है। भाई अवंतिका काफी कोशिश कर रही है कि वो सिचुएशन को संभाले।
3: That's really sweet of you, Dr.

0: गोलमाल हो जाता है जब अवंतिका के हाथों डिंपल की इस फ्रेंड पर चटनी गिर जाती है और ऐसे में सभी कर रहे हैं आरंभी को याद। इतना ही नहीं, आज तो डिंपल को भी आरंभी की याद आ गई।
1: चूंकि ये हमारा डिसीजन था कि हम आरंभी को घर से निकाल देंगे क्योंकि उसने हमें जेल भेजा था सारे टंडन परिवार को, तो वो तो अब घर से चली गई है। कोशिश पूरी जारी है कि सारी पूरा जो घर है टंडन परिवार का वो नॉर्मल सी पर आ जाए, आरंभी के बिना भी चल सकता है। लेकिन यहाँ जो अभी डिंपल ने जो अपने सारे दोस्तों को बुलाया है पॉडकास्ट का डिस्कशन करने के लिए, किटी पार्टी छोटी सी रखी है घर के अंदर, उसमें सारी जो फ्रेंड्स हैं सारी जो लेडीज हैं वो सब के सब आरंभी को मिस कर रही हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। और डिंपल को भी ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ था कि ऐसे मिस करेंगे वो आरंभी को। आरंभी की तैयारियाँ, आरंभी का खाना, आरंभी के सारे प्रेप्स और जिस तरह से वो सब लोगों की देखभाल करती थी, शायद इस सीन के एंड में कहीं ना कहीं डिंपल को भी एहसास होता है कि वो शायद आरंभी को मिस कर रही है। अवंतिका पूरी कोशिश कर रही है कि वो आरंभी की जगह ले, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया है अवंतिका ने जिससे ऐसा लगे कि डिंपल को ऐसा लगे कि शी इज कॉन्फिडेंट इनफ कि अवंतिका ये संभाल सकती है।
0: तो भाई अवंतिका ने तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, अब देखना होगा कि डिंपल क्या करती है।

दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आ गया है भूत वाला ट्विस्ट, जहां पर राध्या के अंदर आत्मा आ चुकी है और ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि पिशाचनी की है जो प्रथम को पाना चाहती है। ऐसे में देखिए कैसे रात में अकेले ही राध्या घर में घूम रही है और दादी राध्या को इस हालत में देख लेती है और दादी को समझ आ जाता है कि राध्या पर कोई बुरा साया है। ऐसे में दादी तो पूरी तरह से डर गई है, लेकिन पिशाचनी है जो राध्या और प्रथम पर बराबर नजर रखे हुए है, क्योंकि अब राध्या राध्या नहीं बल्कि पिशाचनी है, क्योंकि उसके अंदर पिशाचनी जो आ चुकी है। अब देखना होगा कि वो क्या क्या खेल रचती है

0: राध्या अजीब सी हरकतें कर रही है और वो हरकतें मेरे ही सामने आई जा रही हैं बार बार, तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त शक है कि उसके अंदर कोई बुरी शक्ति है जिसकी वजह से राध्या का ये हाव भाव है। वैसे भी राध्या मुझे पसंद नहीं है और वो तो कंफर्म हो गया है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके साथ। ये जहाँ जाती है कुछ सब चीज़ें काली हो जाती हैं, अजीब सी हरकतें। रात को मैं मतलब उठ के जा रही हूँ तो देखती हूँ ये चुड़ैलों की तरह कॉरिडोर में इधर से उधर भटक रही है, क्यों? तो मुझे तो शक है इसके ऊपर, कुछ तो है। नहीं नहीं नहीं, कोई बुरा साया इसके ऊपर है, और है तो अच्छा है, होने दो, इसको तो घर से निकालूंगा बाहर।
1: जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आज वृंदा काफी परेशान है। असल में स्वाति वृंदा के पति को ढूंढने के लिए वृंदा के गांव चली गई है वृंदा को बिना बताए। ऐसे में वृंदा हो रही है परेशान क्योंकि वहां पर नरेंद्र भी है और उसे डर है कि कहीं नरेंद्र स्वाति पर हमला ना कर दे, इसीलिए वो देखिए कितनी घबरा गई है। वो स्वाति को फोन लगाकर वापस बुलाने की कोशिश भी करती है लेकिन स्वाति का फोन नहीं लग रहा है, इस वजह से वृंदा का हाल बेहाल हो चुका है।
2: मुझे पता था अगर दीदी को पता चली तो वो गांव जाके उनके बारे में पूछने की जरूर कोशिश करेंगे, पर गांव में तो अगर उसने दीदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जैसे मेरे साथ किया था तो
1: ऐसे में वृंदा के पास अब कोई चारा नहीं बचा है, इसीलिए तो वो पहुंच गई है अपने भगवान के पास करने स्वाति के लिए प्रार्थना, ताकि स्वाति को कुछ भी ना हो और वो गांव से सही सलामत लौट कर आ जाए। अब देखना तो ये है कि क्या स्वाति सही सलामत लौटती है और क्या स्वाति को सच का पता चलता है या नहीं।
3: उम्मीदों के रंग जब जिंदगी में घुल जाए ना तो हर सपना तितली की उड़ान जैसा लगने लगता है। कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी नौनिका जिन्होंने भी भर ली है एक नई उड़ान। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको सैराट के सेट पर और देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रंग, या फिर से आया है कहानी में कोई नया ट्विस्ट या फिर कोई नया ड्रामा। वेल जो भी हो हमारे लिए एंटरटेनमेंट तो पक्का है, सो गेट सेट।
2: तुमने ऐसा क्यों किया है शादी, बताओ क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? उसका नाम शोहरत पैसा ये सब देखकर तुम उसकी जिंदगी में आई थी ना, और जब तुम्हारा काम बन गया तब तुम उसकी जिंदगी से 9-11 हो गए।
1: ईशान की माँ के ताने,
2: तुमने उसका इलाज करने के लिए किसने कहा? इतना कुछ करने के बाद हम कैसे विश्वास कर ले कि तुम उसका सही इलाज कर ले?
1: नौनिका पर फिर लगे इल्जाम। नौनिका ईशान की तड़प।

0: कांग्रेस के सीरियल सैराब में भाई ईशान का बेहद ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते वो अस्पताल में एडमिट है। और ऐसे में ये खबर मिलते ही उसकी मम्मी भी अस्पताल पहुंच गई है, और उनके अस्पताल आते ही उनकी मुलाकात हो गई है नोएनिका से। और जैसे ही ये बात नोएनिका को पता चलती है कि वो ईशान की मम्मी है, तो देखिए कैसे वो उसका आशीर्वाद लेने जाती है। लेकिन ईशान की माँ इस बात से सरासर इनकार कर देती है। भाई इतना ही नहीं, वो तो नोएनिका को खूब घड़ी खोटी भी सुनाती है और उसकी बेइज्जती कर देती है।
1: मैं तुमसे बड़ी और मैं उसी लड़के की माँ हूँ जिसकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ कर दूँगी? ये तो आप अपनी जिंदगी समझ, तुम मेरी जिंदगी के बारे में क्या जानते हो? हाँ, मैं सिर्फ ईशान की वजह से। छोड़ो, इसे बातें करने का कोई फायदा नहीं। जितना मुझे जानना जरूरी है इतना कुछ करने के बाद हम कैसे विश्वास कर ले कि तुम उसका सही इलाज कर ले? तुम चुप करो। मुझे क्यों, मैं ये सब बातें नहीं, आज मैं बोलूंगी जो मुझे बोले। तुम जानते हो कि मैंने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। मैंने कभी ईशान की लाइफ में आने की कोशिश ही नहीं की, कभी नहीं गई उसके पास। और ये लड़की उसके पास उसके दिल से खेलने के लिए चली गई, और फिर जब मन भर गया तो उसे छोड़ दिया। एक बात बताओ, तुमने अब तक मेरे बेटे से कितने पैसे खर्च किए?
2: अरे ये लड़की ऐसी
1: नहीं। तुम चुप हो जाओ विश्वनाथ, तुम नहीं जानते ऐसी लड़कियों को।
3: आप देख सकती हैं कि मैं डॉक्टर अपना कमा सकती हूँ, और मैं जितना भी कमाती हूँ मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए गुजारा हो जाता है।
1: अच्छा, सिर्फ गुजारा होने से तुम्हारा काम चल जाता है? हाँ, तुमने मेरे बेटे का रहन सहन, मुंबई में इतना आलीशान बंगला, वो किसके साथ उठता है, बैठता है, क्या करता है, ये सब देखा ही होगा। और वो सब देख के तुम्हें लगा होगा कि तुम्हें भी ऐसी जिंदगी चाहिए, है ना? और जब तुम्हें लगा कि तुम उसकी जिंदगी से दूर हो रहे हो, तो तुम उसके होटल चली गई उससे मिलने के लिए। मैं तो मेरी अच्छे से जानती थी, उसका बहुत बड़ा दिल। तुम यही चाहती थी ना मेरे बेटे से, इसलिए गई थी उसके पास। इसका जवाब तो आपको ईशान ही देगा। किसी ने इसे सहा नहीं, इससे मुझे इतना चौंकता हुआ महसूस। जवाब देने की मुझे आदत नहीं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रही। बातें आप ईशान से ही पूछ लीजिएगा, और ईशान और मेरे बीच का रिश्ता इसमें बदलूंगा नहीं।
0: ऐसे में ईशान की मम्मी ये फैसला करती है कि अब वो इस अस्पताल में नहीं रहेगा। साथ ही साथ वो विश्वास को ये ऑर्डर्स भी देती है कि वो तुरंत यहाँ से ईशान को ले जाने की तैयारी करे। लेकिन नोएनिका उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अब तक ईशान की हालत स्टेबल नहीं है और उसकी जान खतरे में है।
3: आप मेरी बात पर क्यों नहीं विश्वास करेंगी?
1: और ये सब कुछ जल्दी हो जाना चाहिए, मैं नहीं चाहती ईशान यहाँ।
3: देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और ईशान का इलाज मैं कर रही हूँ, तो एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज है आपको बताने का कि अगर आप उसे अभी यहाँ से ले जाना चाहती है तो उसके लिए आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, क्योंकि ईशान की हालत नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। अभी उसका एक ऑपरेशन हुआ है और अभी उसका एक और ऑपरेशन होना बाकी है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर है, और अगर वो समय पर नहीं हुआ तो बहुत नुकसान हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक माँ होने के नाते ईशान ऐसा नहीं चाहिए।
1: वो सब तो देख लेंगे,
3: आपके देख लेने से नहीं चलेगा। वो एक पब्लिक फिगर है और पब्लिक आपसे सवाल करेगी अगर ईशान को कुछ हो गया। कोलकाता के डॉक्टर्स का नाम खराब हो सकता है, पर हमारा भी नाम आ सकता है।
1: चुप करो तुम, हमें तुम्हारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इतना सब करने के बाद भी तुम बस बोले ही जा रही हो।
0: इन सब के बीच देखिए कैसे नयनिका पहुंच गई है ईशान के पास, जहां वो उससे गुस्से में ही सही लेकिन प्यार से डांट लगा रही है और इस तरीके से अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने पर गुस्सा भी जता रही है। और इन्हीं सब के बीच जब वो अपने घर के लिए निकलती है तो देखिए कैसे मीडिया उसे घेर लेती है और कई तरीके के सवाल भी करती है जिनके जवाब शायद नयनिका के पास है भी नहीं।

0: फॉर नोएनिका इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन, क्योंकि एक तो वो ईशान से प्यार करती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और कहा जाता है कि जब आप किसी को पर्सनली जानते हैं तो उसका ऑपरेशन आप नहीं कर सकते हैं, आई थिंक एक बेसिक रूल होता है, लेकिन यहाँ पर उस समय इतना अर्जेंट था उसका ऑपरेशन करना और कोई और डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मुझे ही करना पड़ा वो, तो बहुत टफ था क्योंकि अंदर डर भी था कि कुछ हो ना जाए, और ये भी पता था कि मोर और लेस आगे पीछे वो नोएनिका के कारण ही हुआ है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या चाहे वो लोग कहें या ना कहें। तो एक तो सर्जरी, ऊपर से इमोशनल कनेक्शन, फिर वो बहुत ऑलरेडी मेंटल स्ट्रेसफुल है और घर पे भी बहुत कुछ चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा कश्मकश में है इस समय, बट ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है एंड देन नाउ शी इज़ फेसिंग ऑल मीडियाज़ की क्या हुआ क्या हुआ।
1: भाई फिलहाल तो नोएनिका ने एक ऑपरेशन सक्सेसफुली कर तो दिया है, लेकिन एक और ऑपरेशन पेंडिंग है, ऐसे में अब देखना होगा कि क्या नोएनिका दूसरा ऑपरेशन भी कर पाएगी या फिर ईशान की मम्मी कोई ऐसा फैसला लेगी जिसके बाद नोएनिका की जिंदगी ही बदल जाएगी।
2: मना करने के बावजूद तुम उस लड़के से मिलने गई? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप ईशान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगी।
1: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: हिम्मत और आत्मविश्वास के रंग। जगदात्री की जिंदगी में भी हर चुनौती के बाद कुछ ऐसा ही होता है जहां पर हमारे लिए आते हैं एंटरटेनमेंट के रंग, और हर चुनौती उन्हें तितली की तरह और भी मजबूत बना देती है। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको जगदात्री और शिवाय के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज, क्योंकि कहानी में फिर से आया है एक इंटरेस्टिंग मोड़, यानी हमारे लिए एक नया ड्रामा। सो गेट सेट गो।

0: जगधात्री शिवाय का बंदूक ड्रामा। ज्ञान की हुई मौत। जगधात्री और शिवाय पर उठे सवाल। जी टीवी के सीरियल जगधात्री में भई आखिरकार जगधात्री ज्ञान का पता लगाते हुए उसके घर पहुंच गई और देखिए कैसे भाई अपने ऑफिसर अंदाज में वो बंदूक तानती हुई नजर आई, जिसके बाद उसने ज्ञान को काफी आवाजें भी लगाई। लेकिन भाई जगधात्री इस बात से अनजान थी कि ज्ञान की हत्या हो चुकी है। तभी तो देखिए जैसे ही जगधात्री ने ज्ञान की चेयर को घुमाया भाई उसके पेट पर बेरहमी से चाकू मार दिया गया था। और ये देखकर जगधात्री के होश उड़ गए भाई। होश क्या, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि आखिर किसने ज्ञान की हत्या कर दी है। और इन्हीं सब के बीच भाई वहां पर शिवाय भी पहुंच जाता है अपनी बंदूक के साथ। और देखिए कैसे किसी की आहट को सुनते हुए जब जगधात्री बंदूक तान कर पलटती है भाई उसके सामने होता है शिवाय। और कहीं ना कहीं ये दोनों ऑफिसर्स का एक दूसरे के सामने आमना सामना होते हुए नजर आता है, जहाँ दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए सवाल है। भाई भले ही ये पति पत्नी हो लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये दोनों अंडरकवर एजेंट्स हैं, जिसके बाद शक तो किसी न किसी एक पर ही जाता है। और देखिए कैसे शिवाय भी आकर ज्ञान को देखता है और उसे पता लगता है कि भाई उसकी तो मौत हो चुकी है, जिसके बाद वो एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं।
1: किसने मारे साथ?
2: मार चुका
1: है। कौन है? पीछे से टूट नहीं आते क्यों? बॉस मैं कुछ पूछ रहा हूँ, किसने मारा इसे?
2: मैं क्यों बताती हूँ? ये सेम सवाल मैं भी तुमसे कर सकती हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर?

0: जिसके बाद जगदात्री वो सारे सबूतों को भी मिटाती है, यानी कि उनके लगे हुए डोर्स पर हाथ और चेयर पर भी, ताकि उन पर शक ना जाए। जिसके बाद जगदात्री पुलिस को फोन करके मौकाए वारदात पर बुलाती है, और इसी के साथ साथ ऐसे में वो शिवाय से सवाल भी करती है कि क्या कहीं उसने किसी को बाहर जाते हुए तो नहीं देखा, और अपने साथ आए हुए ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन देती है।
1: काला नंबर लूट कर एक आदमी यहाँ से निकला है, उसे फॉलो करो, बहुत दूर नहीं गया होगा, लेन के एग्जिट तक गया होगा, तुम उसे फॉलो करो जल्दी फास्ट।
0: भाई इसके बाद वो दोनों यहाँ से तो निकल जाते हैं, लेकिन घर पहुँचते ही शिवाय फाइल देख लेता है जो कि उसके दादाजी की होती है, जिसके बाद फिर एक बार दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है और शिवाय नाराज होकर निकल जाता है। ऐसे में अब देखना होगा वही प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते किस तरीके से जगदात्री और शिवाय संभालते हुए नजर आएंगे, और क्या वो इसी तरीके से पहुंच जाएंगे ज्ञान के कातिल तक भी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: हर दुआ पूरी होने के बाद जो चेहरे पर मुस्कान आती है ना, वो बिल्कुल एक रंगीन तितली जैसी होती है। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारी मन्नत की भी हर मन्नत हो जाए पूरी, लेकिन इनकी मन्नत ना इतनी आसानी से पूरी नहीं होती। देखिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी सारी परेशानियों का सामना करता है, कितने सारे सुपर विलन्स हैं इनकी कहानी में। वेल, इनकी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं है आसान। तो चलिए फिर पता कर कर आते हैं इस कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास।
0: मन्नत का विक्रांत पर वार। मन्नत और विक्रांत कर रहे हैं धैर्य की जासूसी।

0: बच्चों संग मस्ती करती नजर आई मन्नत। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में भाई मन्नत अपने ही ख्यालों में गुम इस चाकू को छुपाने जा रही होती है। तभी देखिए कैसे विक्रांत उसका हाथ पकड़ लेते हैं और घबराई मन्नत ये जाने बिना कि पर्दे के पीछे कौन है। देखिए कैसे खुद तो डर जाती है लेकिन विक्रांत को चाकू दिखा देती है। लेकिन सामने विक्रांत को देखकर भाई वो शांत हो जाती है। ऐसे में दोनों के बीच देखने को मिल रही है बातचीत जहां पर विक्रांत काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। भाई वो तो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द धैर्य का पर्दाफाश करे और अभिमन्यु के कैरेक्टर को छोड़ दे क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अभिमन्यु के किरदार में रहना पसंद नहीं आ रहा है। साथ ही साथ वो मन्नत को अपने साथ हुए एक्सीडेंट की कहानी भी सुना रहे हैं।
1: मान्यता बच्चों को पता चल गया था कि मुझे सब कुछ याद आ गया। इट्स टू रिस्की राइट, हमें कुछ भी करके फौरन से सच उगलवाना होगा। धैर्य हैज टू कन्फेस। ऐसे कुछ हुआ नहीं है, जस्ट मैं नदी में होते हुए जा रहा था, तैरते हुए जो भी है इनको मिला तो इन्होंने मेरी जान बचाई, इन्होंने मेरा ख्याल किया। तो मुझे समाधि में उनसे कहा कि ये जो मान्यता है तुम उसे बचपन से जानते हो, बचपन से प्यार करते हो एंड यू नो तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। ठीक है, आई मीन सस्पेक्ट करने की कोई वजह नहीं थी, उन्होंने जान बचाई है, व्हाई वुड दे लाई।
0: ऐसे में देखिए कैसे भाई मन्नत और विक्रांत धैर्य के हर मूव पर नजर रख रहे हैं।
2: अभी हम लोग यू नो प्लान कर रहे हैं धैर्य को कैसे कन्फेस करवा पाए, सच उगलवा पाए और उनको डरा रहे हैं। जो तरीके हमने ऐश्वर्या राय सिंह के टाइम पे अपनाए थे वैसे ही कुछ तरीके अपना रहे हैं। तो मेरा पर्सनल कांस्टेंट डर रहता है कि अरे यार ये तो पुलिस वाले कहीं पकड़ ना ले, सिमिलैरिटी कैच ना कर ले यू नो। तो ऐसा मुझे लगता है बट अभी तक मन्नत को ऐसा नहीं लगता है। तो आई डोंट नो मन्नत को लगेगा नहीं लगेगा, विक्रांत को लगेगा नहीं लगेगा, बट एज एन ऑडियंस, हालांकि यू नो मेरे को ऑडियंस प्रस्पेक्टिव देना नहीं चाहिए क्योंकि आई एम अ कैरेक्टर, बट या अभी निकल गया मेरे मुंह से तो मैं इसको एंड करती हूँ। विषय सिंपल
0: भाई, असल में ये सब माजरा तब शुरू हुआ जब सम्राज्ञी को पुलिस पकड़ ले गई और ये सब प्लान था बच्चों का यानी कि दुआ बंटी और यूवी का। तभी तो देखिए कैसे मन्नत उन्हें गले लगा रही है, शाबाशी दे रही है और उनके प्लान की तारीफ भी कर रही है। ऐसे में सभी बच्चे विक्रांत का मजाक उड़ाते हैं और देखिए कैसे विक्रांत आके उन्हें मस्ती में ही सही लेकिन अभिमन्यु के अंदाज में फटकार लगा रहे हैं क्योंकि इन बच्चों को तो पता ही नहीं है कि विक्रांत की आताश लौट आई है।
3: शैतान बच्चे की पार्टी है ये, तो हम मजाक लग रहे, हिम्मत कैसे हुई मान्यता को डराने की? गैंग लीडर तू ही है ना, तूने ही सिखाया ना सबको। अब बस यार बहुत हो गया, कोर्ट में कार्रवाई करेंगे हम, कोर्ट लेके जाऊंगा सबको। भाई पहला इल्जाम मान्यता को डराने का, दूसरा इल्जाम बड़ों को डराने का? हाँ हाँ डर गए थे ना हम सब। और तीसरा इल्जाम इतनी सी उम्र में ना इतनी बड़ी शरारत करने का, तुसी सारे ना बदमाशी दी फैक्ट्री हो, फैक्ट्री।
4: तू है तो दिल धड़कता है। तो डर नहीं लगता, तू है तो हम नाते हैं तू।
2: फन सीन था बच्चों, बच्चों ने काफी यू नो हेल्प करी मन्नत को सेव करने में। एंड देन मन्नत विक्रांत को बोलती है कि आप अभिमन्यु प्ले कर रहे हैं तो आप थोड़ा डांटी है बच्चों को, ऐसे टेक्स्ट करती है। तो बच्चे फिर डांट खा रहे हैं अभिमन्यु से।
0: ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कैसे विक्रांत और मन्नत धैर्य और सम्राज्ञी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं और जल्द से जल्द उनका पर्दाफाश करेंगे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: अब यूं तो तितलियां कितनी खूबसूरत होती हैं, मन करता है घंटों बैठकर उन्हें ऐसे ही देखते रहो, हाउ रॉकिंग ना। लेकिन जब तितली अचानक भर लेती है एक उड़ान तो हम चौंक जाते हैं और हो जाता है ये शॉकिंग। और ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग इन फॉर्म ऑफ रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। खतरों के खिलाड़ी के सेट से रुबीना दिलैक ने शेयर किया है ये वीडियो।
6: गुड मॉर्निंग सर, आज सब बहुत सुंदर लग रहे हैं और सर अति हैंडसम।
7: सर बुला रहे हैं।
0: जिया शंकर ने शेयर किए हैं अपने हैप्पी मोमेंट्स अपने होने वाले हस्बैंड केडी संग। भाई दोनों जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, ऐसे में देख लीजिए इनकी ये केमिस्ट्री।

0: ये मेरे बाबा ने मुझे दिया था, आज मैं ये तुझे सौंप रहा हूँ।
1: उड़ने की आशा का नया प्रोमो देख लीजिए, जहाँ पर परेश लेकर आया है साहिली के लिए गिफ्ट।
2: परेश, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है कि तुम साहिली को कुछ और गिफ्ट दे दो ना। ये ससुर जी ने तुम्हें दिया है, उनकी निशानी है ये तुम्हारे पास, ऐसे तुम किसी और को कैसे दे सकते हो?
1: इसी के साथ देख लीजिए बिहाइंड द सीन नजारे, जहां सचिन यानी कि कवन ढिल्लो कर रहा है ये एक्शन सीन।

कपूर जल्द नजर आने वाली हैं उनकी आने वाली नई फिल्म स्लमडॉग 33 टेंपल में, जिसमें वो निभा रही हैं गौरी हेगड़े का किरदार। देख लीजिए तबु का ये इंट्रोडक्शन।

0: केआर आडवाणी नजर आने वाली हैं आने वाली फिल्म टॉक्सिक में। ऐसे में उनके हस्बैंड सिद्धार्थ मल्होत्रा उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने शेयर किया है ये वीडियो।
1: छोड़ कर नहीं जाऊंगा बाबा,
2: आप मुझसे नफरत करते हैं।
0: देख लीजिए कैसे तेरी दिल लगी के ये बीटीएस नजारे, जहाँ छाया है रोमांस का मौसम।
3: आज के एपिसोड में बस इतना ही। याद रखिए कि तितलियां हमें यही सिखाती हैं कि जिंदगी का हर नया बदलाव हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो बस आप हंसिए, मुस्कुराइए और जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए। अब लेते हैं आपसे इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
11: सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्तों से गुलजार, देश भर के शिवालय लंबी लंबी कतारों में लगकर शिव भक्त कर रहे जलाभिषेक। बागपत में महिला कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए शुरू की गई पिंक सेवा और पिंक रिट्रीट सेवा, महिला डॉक्टर और मुफ्त ई रिक्शा की भी व्यवस्था। पहाड़ों में आज सावन का अंतिम सोमवार, शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को बांटी जा रही खीर। बद्रीनाथ में आस्था का महासैलाब, मॉनसून में टूटा यात्रा का रिकॉर्ड, अब तक 16 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, नवंबर तक होंगे दर्शन। कोलंबो में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन, 30 देशों के करीब 80 पतंगबाज हुए शामिल, श्रीलंका को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करना आयोजन का मकसद।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: पवित्र सावन का आज दूसरा सोमवार, जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की लगी कतारें, हर तरफ भोले के जयकारों की गूंज। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ में हुई भव्य मंगला आरती, बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह से उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, भक्तों पर बरसाए गए। हापुर के प्राचीन सिद्धपीठ श्री सबली महादेव मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ा, पवित्र शिवलिंग पर किया गया जलाभिषेक। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर जयकारों से गूंजा श्री सबली महादेव मंदिर का परिसर, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ, सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य और दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती हुई, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से पूरी फिजा गूंज उठी। सावन के पहले दिन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। दूसरे सोमवार पर उज्जैन के महाकाल के दरबार में पहुंचे जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, विधि विधान से की गई पूजा। सावन के दूसरे सोमवार पर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब, भक्तों ने किया दुग्धाभिषेक। इस मौके पर सुबह से बेल लगी भक्तों की कतारें, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। गाजियाबाद के बाबा दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में उमड़े शिव भक्त, भोलेनाथ की एक झलक पाने को आतुर दिखे। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। बोलबम के जय घोष के साथ गूंजा नागेश्वरनाथ का मंदिर परिसर, शिव भक्तों से पटा मंदिर का चप्पा चप्पा। सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का रैला लगा, बेलपत्र अर्पित कर शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा दक्षेश्वर महादेव का मंदिर परिसर, सुबह सुबह लगी भक्तों की कतारें। कानपुर में सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में उमड़ा भक्तों का मेला, श्रद्धालुओं ने आनंदेश्वर मंदिर में विधि विधान से की पूजा। कुंभ नगरी प्रयागराज में भगवान आशुतोष के दर्शन को पहुंच रहे भक्त, शहर के ज्यादातर मंदिरों में एक जैसा नजारा। प्रयागराज के श्री मन कामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दुग्धाभिषेक। दिल्ली के शिवालयों में दूसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने सुबह से लगी भक्तों की कतारें, बाबा की हुई विशेष पूजा। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें, लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गुवाहाटी में सावन के दूसरे सोमवार पर शुक्रेश्वर मंदिर में भक्तों का लगा तांता, भक्तों ने विधि विधान के साथ की भोले की पूजा। मुंबई में सावन के दूसरे सोमवार पर बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। मुरादाबाद के दूसरे सोमवार को कामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का मेला लगा, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया जलाभिषेक। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुबह से मंदिर में जलाभिषेक किया गया। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में दूसरे सोमवार पर लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बाराबंकी में दूसरे सोमवार पर लोधेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का मेला, भक्तों ने किए भोलेनाथ के दर्शन। मधेपुरा में सावन के दूसरे सोमवार पर मां गंगा की उतारी गई भव्य आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। मधेपुर में दूसरे सोमवार पर सिंहेश्वर धाम में लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में सुबह से लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा का जलाभिषेक। लखीसराय के इंद्र दमनेश्वर

0: रोहतास के गुप्ता धाम में 60,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन, सुबह से लगी कतारें। मनेर में सावन महोत्सव की धूम, पारंपरिक परिधान में जमकर झूमी नाची महिलाएं। चित्रकूट में सावन के दूसरे सोमवार में शिव मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें, हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत हुआ, हेलीकॉप्टर से हुई भक्तों पर फूलों की बरसात। मौरैया में दूसरे सोमवार को भयानक, नाथ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की कतारें, भक्तों ने किया जलाभिषेक। रायसेन के सोमेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की कतारें, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पहाड़ों में सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए आदि केदारेश्वर के दर्शन। आखिरी सोमवार पर बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को बांटी गई खीर, भक्तों ने लगाए बोलबम के जयकारे। बद्रीनाथ में मानसून में टूटे यात्रा के रिकॉर्ड, 16,00,000 श्रद्धालु पहुंचे बद्री विशाल के दरबार में। बाबा बद्री के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतारें, जय बद्री के जयकारों से गूंजा परिसर। अयोध्या में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह तैनात किए गए जवान। अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की ड्रोन से हो रही निगरानी, आने जाने वाले लोगों पर पुलिस रख रही नजर। प्रयागराज का दशाश्वमेघ घाट से भक्तों से गुलजार, बड़ी संख्या में डाक बम, गावड़ियों ने भरा गंगा जल। मुजफ्फरनगर के बीटेक छात्रा ने बनाई अनोखी कांवड़ बाइक, बाइक को देखने के लिए लगी भीड़। बीटेक छात्र ने महज 3 दिन में बनाई है बाइक, 45,000 रुपए आया बाइक बनाने में खर्चा। प्रयागराज में एकादशी के दिन दशाश्वमेघ घाट पर कांवड़ियों की उमड़ी भारी भीड़, पंचक खत्म होते ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। घाट पर हर तरफ बोलबम और ओम नमः शिवाय के गूंजे जयकारे, गंगा में स्नान कर कांवड़ियों ने किया पूजा पाठ। दशाश्वमेघ घाट पर कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इंतजाम किए, सावन भर घाट पर इसी तरह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहेगी। दशाश्वमेघ घाट पर कांवड़ियों ने पूरी श्रद्धा के साथ भरा गंगा जल, गंगा स्नान के बाद भगवान शिव को भी जल अर्पित किया। कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने से पूरा घाट भगवा रंग में रंगा नजर आया, कांवड़ियों का कहना है सफलता सुख समृद्धि के लिए उठा रहे कांवड़। 60 साल की रेणु देवी 28 साल से लगातार सावन की हर सोमवारी पर डाक बम बनकर बाबा बैजनाथ को चढ़ाती हैं जल। हावड़ा से आए शिव भक्तों की बैकुंठ धाम की थीम वाली विशाल कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, 1.5 क्विंटल की कांवड़ लेकर भक्त बोलबम के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहे। बोलबम के जयकारों से गूंजा मुंगेर का कांवड़िया पथ, डाक बम रेणु देवी और भव्य कांवड़ को देखने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा झांसी, बड़ी संख्या में कांवड़िए ओरछा धाम के लिए रवाना। डीजे ढोल नगाड़ों गाजे बाजे के बीच में निकली भव्य कांवड़ यात्रा, 12 अगस्त को केदारेश्वर धाम में कांवड़िए करेंगे जलाभिषेक। मुरादाबाद में कांवड़ियों पर ड्रोन से बरसाए गए फूल, डीएम और एसएसपी ने कांवड़ियों का फूलों से स्वागत किया। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की हर सहूलियत का रखा गया ख्याल, यहां के डीएम और एसएसपी ने कांवड़ियों को फल बांटे और भंडारे में परोसा खाना। बागपत में पुलिस ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया, खाकी और भगवा के संगम ने लोगों का दिल जीता। हरिद्वार से गंगा जल लेकर पूरा महादेव मंदिर की तरफ कांवड़ियों का पुलिस ने सम्मान किया। बांका में कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सेवा समिति के कैंप में शिव भक्तों की सेवा करने पहुंचे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने, इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में
3: विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्तों से गुलजार, देश भर के शिवालय लंबी लंबी कतारों में लगकर शिव भक्त कर रहे जलाभिषेक। बागपत में महिला कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए शुरू की गई पिंक सेवा और पिंक रिट्रीट सेवा, महिला डॉक्टर और मुफ्त ई रिक्शा की भी व्यवस्था की गई। पहाड़ों में आज सावन का अंतिम सोमवार, शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को बांटी जा रही खीर। बद्रीनाथ में आस्था का महासैलाब, मॉनसून में टूटा यात्रा का रिकॉर्ड, अब तक 16 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, नवंबर तक होंगे दर्शन। कोलंबो में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन, 30 देशों के करीब 80 पतंगबाज हुए शामिल, श्रीलंका को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करना इसका मकसद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
8: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रार्थना हूँ स्वीकार में, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज सावन का दूसरा सोमवार है और साथ ही प्रदोष की तिथि भी है जो शिव साधना के लिए अमोघ मानी जाती है। तो कल है सावन में जलाभिषेक की दिव्य तिथि, सावन की शिवरात्रि। माना जाता है कि सावन की शिवरात्रि को शुभ मुहूर्त में शिवलिंग का जलाभिषेक करने से महादेव की कृपा बरसती है। मान्यता है कि अगर विधि विधान से इस दिन महादेव का अभिषेक कर लिया जाए तो भक्तों की सारी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आज हम आपको बताएंगे शिव की महाकृपा पाने का महा उपाय क्या है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं सावन की शिवरात्रि की महिमा के बारे में।

0: पुण्यकारी और मोक्षदायिनी है सावन की शिवरात्रि। आने वाली है जलाभिषेक के अर्पण की शुभ मंगल रात्रि। ऐसी अद्भुत तिथि जब शिव भक्तों की पूर्ण होती है परीक्षा। सावन की शिवरात्रि को ही पूर्ण होती है कांवड़ियों की दीक्षा। शास्त्रों में सावन की शिवरात्रि को परम फलकारी माना गया है। माना जाता है कि ये वो पावन तिथि है जब भोलेनाथ की असीम कृपा भक्तों पर बरसती है। आज हम अपनी खास पेशकश में जानेंगे सावन की शिवरात्रि की महिमा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कब से लग रही है सावन की शिवरात्रि और किस शुभ मुहूर्त में आप शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक और रात्रि के चार प्रहर की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। महाजलाभिषेक का सर्वश्रेष्ठ समय कल चतुर्दशी तिथि को सावन की शिवरात्रि है। ज्योतिषी बताते हैं कि 11 अगस्त को सुबह 4:54 से देर रात 1:52 पर जलाभिषेक कर सकते हैं। ज्योतिषी बताते हैं कि सुबह 5:23 से सुबह 6 तक कांवड़ से जल चढ़ाने का उत्तम समय है, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:58 तक है। इस मुहूर्त में भी भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा सकता है।
1: श्रावण महीने के शिवरात्रि की महिमा शास्त्रों में अनंत बताई गई है। शिवरात्रि जिस रात को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की रात के रूप में जाना जाता है, इस दिन यदि साधक साधना करता है, उपासना करता है, भगवान शिव का ध्यान करता है, इस दिन पार्थिव पूजन करता है मध्य रात्र के समय में, तो भगवान शिव माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है।
0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव ने ही पूरी सृष्टि समाई है, क्या राजा क्या रंक, जिसको भी भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल जाए उसे संसार की ना तो कोई बाधा रोक सकती है और ना ही जीवन में कोई परेशानी छू सकती है। माना जाता है कि सावन की शिवरात्रि पर महादेव की चार पहर आराधना का विधान है। चलिए आपको महादेव की उपासना करने का वो शुभ मुहूर्त बताते हैं जब आप अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। शिव पुराण कहता है कि सावन की शिवरात्रि की रात की जाने वाली चार पहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। चार पहर की पूजा का समय, प्रथम पहर की पूजा शाम 7:04 से रात 9:45 तक करें। इसमें भगवान शिव को दूध या जल अर्पित करें। द्वितीय पहर की पूजा रात 9:45 से लेकर रात 12:26 के बीच करें। इसमें भगवान शिव को दही अर्पित करें। तृतीय पहर यानी निशिता काल की पूजा रात 12:26 से सुबह 3:07 तक करें। इसमें भगवान शिव को घी अर्पित करें। निशिता काल की पूजा का उत्तम समय रात 12:05 से 12:48 तक रहेगा। चतुर्थ पहर की पूजा सुबह 3:07 से सुबह 5:49 तक करें। इसमें भगवान शिव को शहद अर्पित करें। हर बार अर्पित की जाने वाली सामग्री के बाद जल अवश्य चढ़ाएं।
1: शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से जो हलाहल निकला था उसको उसका पान कर लिए थे। इस कारण से उनका शरीर तप रहा था। उनको शांति प्रदान करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको आराम प्रदान करने के लिए देवी देवता और मनुष्य सभी जलाभिषेक करते हैं।
0: धर्मग्रंथ के जानकार बताते हैं कि भगवान शिव को सावन और शिवरात्रि दोनों बहुत पसंद है, इसलिए इस तिथि पर की गई शिव उपासना शीघ्र फलीभूत होती है। माना जाता है कि इस दिन का इंतजार शिव भक्त साल भर करते हैं, क्योंकि मीलों मील पैदल चलकर बाबा की जल अर्पित की कामना से आने वाले कांवड़ियों के लिए ये खास तिथि है। सावन की शिवरात्रि अपने आराध्य को अपनी मनोहार समर्पित करने का दिन है। ये पवित्र दिन मान्यता है कि सावन की शिवरात्रि पर अगर भगवान शिव का पूजन विधि विधान से किया जाए तो उससे हर बाधा पर विजय हासिल की जा सकती है। सावन शिवरात्रि की महिमा। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। सामान्यतः इसे चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिवजी का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिवजी का विवाह भी इस दिन माना जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। महीने की हर चतुर्दशी को मास शिवरात्रि आती है, पर सावन का महीना शिवजी का महीना है, अतः सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन लोग कावड़ में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं।
1: श्रावण मास में कांवरिये गंगा जल या पवित्र सरोवरों से, नदियों से जल भरकर भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, तो इस दिन जलाभिषेक करने से पवित्र सरोवर से जल ले जाकर के भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोले की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है।
0: धर्मग्रंथ के जानकार बताते हैं कि धरती पर शिवलिंग को शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है, तभी तो शिवलिंग के दर्शन को स्वयं महादेव का दर्शन माना जाता है। और इसी मान्यता के चलते भक्त शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। यूं तो भोले भंडारी एक छोटी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिव आराधना की सबसे महत्वपूर्ण पूजा विधि रुद्राभिषेक को माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि जल की धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और उसी से हुई है रुद्राभिषेक की उत्पत्ति। रुद्र यानी भगवान शिव और अभिषेक का अर्थ होता है स्नान करना। शुद्ध जल या फिर गंगा जल से महादेव के अभिषेक की विधि सदियों पुरानी है। जल के स्पर्श मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं भोले भंडारी। तो चलिए आपको बताते हैं कि शिवरात्रि पर कैसे करनी है आपको भगवान शिव की पूजा। स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लें, शिव जी को जल अर्पित करें, इसके बाद पंचोपचार पूजन करके शिव जी के मंत्रों का जाप करें। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टक अथवा शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर चार पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए।
1: श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन हम पवित्र सरोवर का जल ला करके शिवलिंग पर अगर जल अभिषेक करते हैं तो उसका भी अलग पुण्य प्राप्त होता है। यदि इस दिन व्रत रह करके रात्र में, मध्य रात्र में, महानिशा काल में या चारों प्रहर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए और विभिन्न वस्तुओं से, चाहे दूध से, साध से, पंचामृत से, गंगा जल से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के सुखों का वरदान देते हैं।
0: आस्था कहती है कि शिव की उपासना से इंसान के जीवन की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं धन संतान या फिर भोलेनाथ से विवाह का वरदान, या फिर पूरा करना चाहते हैं जीवन का कोई और अरमान, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के दिव्य उपाय भी बताएंगे। तब तक आप कहीं मन जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: धर्मग्रंथ कहते हैं कि सावन में कभी भी शिवलिंग का जलाभिषेक किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ खास तिथियां विशेष मानी गई हैं, जैसे सावन का सोमवार, प्रदोष की तिथि और सावन की शिवरात्रि। हर कोई ये चाहता है कि सावन की शिवरात्रि पर ही बाबा का अभिषेक किया जाए। कहते हैं कि जिसने शिव को प्रसन्न कर लिया उसके लिए सब कुछ संभव है। आस्था कहती है कि सावन की शिवरात्रि वो खास तिथि होती है जब आप विधि विधान से शिव शक्ति का पूजन करके महादेव की विशेष कृपा को पा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सावन की शिवरात्रि पर किए जाने वाले वो दिव्य महा उपाय।

0: वो देवों के देव महादेव हैं, वो भोले हैं, वो जल के अर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है, सुबह से ही भक्त भोले बाबा को जलधारा अर्पित कर रहे हैं। साथ ही आज प्रदोष की तिथि भी है। कितना अद्भुत संयोग है, सावन का सोमवार और प्रदोष की तिथि। मान्यता है कि सावन में शिव को सोमवार के अलावा प्रदोष की तिथि और सावन की शिवरात्रि सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए ये तिथियां कामना पूर्ति के लिए विशेष मानी जाती हैं।
1: सोमवार के दिन यदि प्रदोष पड़ जाए तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। इसका भी बड़ा ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति सोम प्रदोष का व्रत करता है वह अपने जीवन में अभीष्ट फल की प्राप्ति करता है, यानी जो उसकी मनोकामना है, जो वह चाहता है, उसकी प्राप्ति सरलता पूर्वक हो जाती है।
0: आस्था कहती है आदि मध्य और अनंत महादेव ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इससे अद्भुत संयोग हो ही नहीं सकता। आज हम आपको सावन की शिवरात्रि पर किए जाने वाले महाप्रयोग बता रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि पर हर समस्या का समाधान संभव है, क्योंकि महादेव स्थिति पर सबसे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसके अलावा आप प्रदोष की तिथि पर भी ज्योतिषी द्वारा बताए महा उपाय करके अपने मन की कामना पूर्ण कर सकते हैं।
1: यदि उसकी मन की इच्छा संतान से संबंधित है, यदि उसकी इच्छा धन से संबंधित है, यदि उसकी इच्छा रोजगार से संबंधित है, यदि उसकी इच्छा यश कीर्ति से संबंधित है, यदि उसकी इच्छा स्वास्थ्य से संबंधित है, तो उसकी भी प्राप्ति हो जाती है, आयु में वृद्धि होती है। सोम प्रदोष का व्रत यदि श्रावण मास में मिल जाए तो उसका जो प्रभाव है, उसकी जो महिमा है, उसका जो फल है, वह कई गुना बढ़ जाता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच रहते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। माना जाता है कि इस तिथि के कुछ दिव्य प्रयोग आपके जीवन भर के कष्टों को दूर कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि के खास उपाय। इस दिन पूजा में 21 बेल पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें, भगवान शिव को समर्पित करें। इससे सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। सावन शिवरात्रि के दिन बैल को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से शिवगण नंदी की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि शिव तक मुनहार पहुंचाने का कार्य नंदी ही करते हैं। शिवलिंग पर जौ और काला तिल अर्पित करें, इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जो लोग बीमारी से परेशान हैं, वो शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इस दिन आपको 101 बार महामृत्युंजय जाप करना चाहिए, इससे आपके बड़े से बड़े रोग और कष्ट दूर होते हैं। अगर शनि दोष चल रहा हो तो जल में काला तिल मिलाएं, इससे भगवान शिव को अर्पित कर दें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको शनि की ढैया 7.5 से मुक्ति मिलती है। तो देखा आपने, सावन की शिवरात्रि से जुड़े महा उपाय कितने कारगर हैं। बाबा भोलेनाथ से कुछ भी छुपा नहीं है। जब आप अपनी प्रार्थना स्वयं करते हैं तो शिव भी आपके दुख हरने लगते हैं। तभी तो शिवरात्रि के दिन किए गए पूजा अनुष्ठान को सबसे चमत्कारी माना गया है। तो देखिए, ये खास उपाय आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद जलधारा अर्पित करें, फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर घी अर्पित करें, फिर जल की धारा अर्पित करें, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें, हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहें, शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें।
1: भगवान शिव की उपासना कैसे करेंगे? तो सोम प्रदोष के दिन पूरा दिन व्रत रहें, और जितने देर तक व्रत रहें, मन में कहीं कहीं भगवान शिव का स्मरण होता रहे, माता पार्वती का स्मरण होता रहे, ओम शाम सदा शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, किसी भी मंत्र का जब अंदर अंदर चलता रहे, ध्यान करें। इससे सोम प्रदोष व्रत का विशेष फल प्राप्त होगा और मनोकामनाओं की पूर्ति सरलता पूर्वक हो जाएगी। ऐसी मान्यता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।
0: आज हम आपको सावन की शिवरात्रि के महिमा बता रहे हैं, लेकिन सावन की शिवरात्रि के पहले आज सोवन के सोमवार और प्रदोष की तिथि पर भी आप महादेव की विधिवत अर्चना करके उनसे कामना पूर्ति का वरदान पा सकते हैं।
1: श्रावण मास में प्रतिदिन एक लोटा जल, संभव हो सके तो गंगा जल, नहीं तो शुद्ध जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, इतना भगवान शिव को जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर हम सरलता पूर्वक अंतर मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इस कामना से यदि एक लोटा जल संपूर्ण श्रावण मास में भगवान शिव को अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो यह सभी बाधाओं से मुक्ति प्रदान करने वाला हो जाता है, इसमें संदेह की बात नहीं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिसने भोलेनाथ को मना लिया उसे संसार में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती और ना ही जीवन में कोई बाधा परेशान कर सकती है। तो आप सावन की शिवरात्रि पर देवाधिदेव महादेव को मना लीजिए, आप भी बम बम बोले बोलिए और संसार की तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाइए।
2: महादेव की कृपा जिसको मिल जाए भला उसे किस चीज की जरूरत है। शिवरात्रि पर खास उपायों से की गई शिव उपासना से पूरी हो सकती है आपकी हर मनोकामना। तो गौर से देखिए मनोकामना पूर्ति के वो महा उपाय जिनसे आपको मिल सकती है महादेव की महाकृपा।

0: शिवरात्रि पर प्रसन्न होंगे भगवान, मिलेगा सुख समृद्धि का वरदान। महादेव की उपासना का उत्तम दिन है सावन की शिवरात्रि। बाबा का जी भर जलाभिषेक और श्रृंगार करने का दिन है सावन की शिवरात्रि। अगर शिवरात्रि पर कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए, महादेव की आराधना की जाए, तो शिव की विशेष कृपा मिल सकती है। इसलिए हम आपको आपकी हर समस्या का उत्तम उपाय बताएंगे। और से देखिए,
1: यदि आपके जीवन में संतान से संबंधित कोई कष्ट है, तनाव है, तो उसके लिए दुग्ध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। भस्म और इत्र चढ़ाने से जीवन में ऐश्वर्य बढ़ता है। भांग चढ़ाने से तथा काला तिल चढ़ाने से राहु ग्रह शांत होता है, राहु की नकारात्मकता दूर होती है तथा राहु से संबंधित कोई कष्ट है जन्म कुंडली में तो वह समाप्त होती है।
0: ये उपाय शिक्षा और एकाग्रता के लिए है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिला जल अर्पित करें। जल में अत्यंत अल्प मात्रा दूध की मिलाएं। इसकी धारा लगातार शिवलिंग पर गिराते रहें। उस समय शिव शिव कहते जाएं। शिवलिंग से स्पर्श करा के पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करें।
1: शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। सुगंधित तेल चढ़ाने से ऐश्वर्य, धन, वैभव, आरोग्यता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार बेलपत्र गत श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं तो बुध ग्रह से संबंधित नकारात्मकता दूर होती है।
0: अगर आपको रोजगार की समस्या है तो शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा से शीघ्र ही नौकरी और रोजगार में तरक्की का वरदान मिल सकता है। गौर से देखिए ये उपाय। ये उपाय रोजगार और मन चाही नौकरी के लिए हैं। शिवरात्रि के दिन जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन नमः शिवाय कहते जाएं। शिव जी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या काल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं।
1: रोजगार की प्राप्ति के लिए श्रावण मास में शिवरात्रि के दिन भी और प्रत्येक दिन हो सके तो भगवान शिव को गंगा जल की धारा अर्पित करें, साथ में बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेल का फल, वेर का फल, चावल, चीनी, दूध, सफेद चंदन, भस्म, समय पत्र, कुश का रस अगर अर्पित करते हैं तो रोगों से मुक्ति मिलती है, यशकीर्ति में वृद्धि हो, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ रोजगार की प्राप्ति होती है।
0: शिवरात्रि पर हर समस्या का समाधान संभव है, क्योंकि आज सबसे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं महादेव। आज के दिन की गई एक उपासना आपको महाकाल की कृपा दिला सकती है, तो कर लीजिए आज बाबा को प्रसन्न। आप भी बम बम भोले बोलिए और संसार की तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाइए, क्योंकि भोले की कृपा बरस गई तो संकट आपको छू भी नहीं पाएगा।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुननी।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: आपको दिखाते हैं उत्सव की कुछ और खास तस्वीरें। उत्सव दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं, चीन से लेकर ब्रिटेन तक अलग अलग तरीकों से उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट और लीजिए उत्सव का आनंद।
7: पारंपरिक लोक संस्कृति की ये अनूठी छटा सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये तस्वीरें मंगोलिया के नदाब फेस्टिवल की है। चीन के गांसू प्रांत के सूबई इलाके में धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया। चीन के गांसू, किंघाई, जिनजियांग और इनर मंगोलिया इलाके में रहने वाले मंगोलियाई मूल के लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लिया और अपनी लोक संस्कृति के खास रंगों की नुमाइश की। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी लड़कियां और युवा लड़कों ने इस दौरान अपनी परफॉर्मेंस से शानदार समा बांध दिया। आकर्षक संगीत और नृत्य से भरपूर इस उत्सव में मंगोलियाई लोक संस्कृति के अनूठे रंग देखने को मिले। मंगोलियाई भाषा में नदाम का अर्थ होता है खेल कूद और मनोरंजन। इस इलाके के बाशिंदों के लिए अपने रोजमर्रा के कामकाज के बाद वक्त गुजारने का शानदार जरिया रहा है। चीन में मंगोलियाई मूल के लोगों ने अपनी इस सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया, इसीलिए हर साल यहाँ इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं सेंट्रल चीन के हुनान प्रांत में हुए लोक उत्सव की शानदार झलक। ये तस्वीरें हुनान के यांगजी गांव की है। इस इलाके के 48 गांव के लोक कलाकारों ने यहां पर एक साथ जमा होकर पारंपरिक लोक गीत संगीत और नृत्य से माहौल मनमोहक बना दिया। हुनान और गिजो की सीमा पर बसे इस इलाके को बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर इस उत्सव की परंपरा 10वीं सदी से जारी है। पुराने जमाने में इसका मकसद अलग अलग गांवों से यहाँ कारोबार के लिए आने वाले लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाना था। वहीं अब स्थानीय लोग अपनी प्राचीन लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए इसका आयोजन करते हैं। एक अनोखे लोक उत्सव की परंपरा चीन के सिचुआन प्रांत में भी है। दक्षिण पश्चिमी चीन के हुईली में यी टोर्च फेस्टिवल के मौके पर भेड़ों की भिड़ंत करवाई जाती है। दूर दूर से आए लोग यहां भेड़ों की लड़ाई देखने के लिए जमा होते हैं और अपनी भेड़ों को इसमें लड़ाते भी हैं। भेड़े इस इलाके के लोगों के जीवन यापन का एक हिस्सा रही है। अब इस उत्सव के जरिए लोग अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं। इसका मकसद जीवन में संघर्ष और कड़ी मेहनत के प्रति जुनून को कायम रखना है। दुनिया के कोने कोने में उत्सव मनाया जा रहा है, जमीन से आसमान तक जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें इंग्लैंड के ब्रिस्टल की है, जहां दुनिया भर से लोग सतरंगी और अतरंगी गुब्बारों के साथ सैर सपाटे के लिए जमा हुए हैं। ब्रिस्टल में 3 दिन का इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल चल रहा है। इसमें 100 से ज्यादा हॉट एयर बैलून्स की उड़ान के शानदार नजारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इस बैलून उत्सव का आयोजन 1989 से होता आ रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए ये अपना शौक पूरा करने का एक शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देशभर में सावन के दूसरे सोमवार की रौनक, शिवालय शिव भक्तों से गुलजार, भक्ति भाव से श्रद्धालु कर रहे महादेव का जल अभिषेक। सावन के पावन महीने में दिख रहे कावड़ के अनोखे रंग, मेरठ में शिव भक्तों पर बुलडोजर से की गई पुष्प वर्षा, भागलपुर में खास अंदाज में सजाई गई बस। पहाड़ों में आज सावन का अंतिम सोमवार, शिवालय में उमड़ा आस्था का मेला, बद्रीनाथ में श्रद्धालु को बांटी जा रही खीर। महाराष्ट्र के जालना में संत गजानन महाराज की पालकी की भव्य स्वागत, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालु की भीड़, सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय मतंग महोत्सव का आयोजन, 30 देशों के करीब 80 पतंगबाज शामिल, श्रीलंका में पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद।

श्रीमय सावन का महासंयोग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। चर्चा हम इसी को लेकर करेंगे। आज सावन का दूसरा सोमवार है और शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं जलाभिषेक के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे आगे भी, और इस मौके पर श्रद्धालु देश भर के महादेव मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भक्ति में लीन है। सावन का महीना चल रहा है, महादेव का प्रिय महीना इसको कहा जाता है, तो ऐसे में इस महीने पूजा अर्चना की काफी अहमियत होती है। सावन के दौरान मंदिरों में आस्था भी अपार नजर आ रही है। देश भर के शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ज्योतिर्लिंगों से लेकर हर शिव मंदिर में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पूजा अर्चना की जा रही है। काशी, सोमनाथ, महाकाल, बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव भक्ति का अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है। वहीं कल शिवरात्रि पर चार ग्रहों का मंगलवार है, तो किस मुहूर्त में पूजा आपको करनी है, विधान क्या है, इसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और कथावाचक हमारे साथ मौजूद रहेंगे।

0: सावन का महीना शिव का प्रिय महीना, आज है दूसरा सोमवार यानी कि महादेव की कृपा पाने का एक और विशेष दिन। सावन का सोमवार सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि ये दिन भगवान शिव की साधना आराधना को भी समर्पित है। देशभर के शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, भक्ति की अविरल धारा बह रही है। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार, अयोध्या से लेकर देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, गुवाहाटी, तमाम जगहों पर मौजूद शिव मंदिरों में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शिव भक्त उमड़ रहे हैं। महादेव को प्रिय धतूरा, भांग, बेलपत्र, धूप चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश हो रही है। देश भर से कांवड़िए भी गंगा समेत पवित्र नदियों में जल लेकर अपने आराध्य का जलाभिषेक करने शिवालयों की ओर पहुंच रहे हैं। सभी आस्थावानों की मनोकामना एक ही है कि भोलेनाथ की कृपा उन पर हो, उनके परिवार पर हो और देश के तमाम शिवालयों से आ रही तस्वीरें शिव भक्तों की अटूट श्रद्धा और समर्पण की गवाही दे रही हैं।
1: सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में सुबह से ही जो है भक्तों की भीड़ अलग अलग शिवालयों में जो है वो नजर आ रही है और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हर एक शिवालय की आपको देश भर से नजर आएगी। आज जल अभिषेक जो है वो किया जा रहा है, रुद्र अभिषेक किया जा रहा है और उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ गौरी शंकर मंदिर की, कि किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर आपको जल अभिषेक के लिए जो है वो नजर आ जाएगी। और अपने आप में एक महत्व है इस जल अभिषेक का और उसी को जानने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण पंडित जी इस वक्त मौजूद है, जो हमारे को बताएंगे कि किस तरीके का कैसा महत्व है, क्यों जरूरी है सावन के समय में जल अभिषेक। पंडित जी, सबसे पहला सवाल ही यही, भक्तों की भीड़ जो है इस वक्त वो जलाभिषेक करने के लिए क्यों इतना महत्व है कि जलाभिषेक होना बेहद जरूरी है?
2: ये जो मंदिर है भगवान श्री गौरी शंकर का, ये प्राचीन नहीं अति प्राचीन है और यहाँ जो भी आता है भगत उसकी कामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए लोगों की आस्था जन सैलाब उमड़ा हुआ है।
1: हर कोई जो है अपने जितने भी यहाँ भक्त है उनकी सेवा के लिए जो है आते हुए और आप देख सकते हैं कि हर किसी के चेहरे पे भी आपको मुस्कुराहट नजर आएगी क्योंकि बाबा की झलक पाने के लिए ये चेहरे जो है इंतजार कर रहे थे और लंबे इंतजार के बाद जो है अब मंदिर में ये लोग आ पहुंचे और उसके बाद की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से लोग जो है वो आपको अब दिखने वाले हैं। तो हर कोई अपने परिवार की मनोकामना के

0: पुकार जरूर सुनेंगे। तो आज की हम रौनक दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सावन के इस पावन दिन पर जो है भक्तों की जो भक्ति है महादेव के प्रति वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
1: तो शिवमय सावन का महासंयोग है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, मंगलवार को शिवरात्रि है, भोलेनाथ का प्रिय महीना इसको कहा जाता है और 30 जुलाई से सावन की शुरुआत हुई थी। 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन तक सावन चलेगा और इस बार सावन में चार सोमवार पड़ रहे हैं। आज दूसरा सोमवार है, सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को था, आज सावन का दूसरा सोमवार यानी कि 10 अगस्त और फिर तीसरा 17 अगस्त और फिर 24 अगस्त को चौथा सोमवार होगा। दिल्ली हरिद्वार समेत कई जगह पर सावन के मेले लगे हुए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर आस्था के अद्भुत रंग बिखरे हुए हैं। काशी से प्रयागराज तक शिव मंदिरों में भीड़ है। कल शिवरात्रि पर भी अद्भुत संयोग देखने को मिलेगा और इस बार शिवरात्रि पर चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। शिवरात्रि पर बुध, सूर्य, गुरु और चंद्रमा चारों कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। तो शिवरात्रि पर बुधादित्य और गजकेसरी योग भी बन रहे हैं, तो भगवान शिव की आराधना का ये बेहद खास मौका है।
2: श्रावण महीने के शिवरात्रि की महिमा शास्त्रों में अनंत बताई गई है। शिवरात्रि जिस रात को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की रात के रूप में जाना जाता है, इस दिन यदि साधक साधना करता है, उपासना करता है, भगवान शिव का ध्यान करता है, इस दिन पार्थिव पूजन करता है मध्य रात्र के समय में, तो भगवान शिव माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है।
1: तो देश भर के शिवालयों में तो आस्था का सैलाब नजर आ ही रहा है। भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंगों में भी श्रद्धा और भक्ति की ऐसी ही तस्वीर, ऐसा ही उत्साह, उल्लास नजर आ रहा है। सुबह से ही बाबा के इन तमाम धामों में बड़ी संख्या से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या फिर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, देवघर का बैद्यनाथ मंदिर हो या फिर वाराणसी का बाबा विश्वनाथ, तमाम ज्योतिर्लिंगों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की अच्छी खासी लंबी कतारें लगी हुई है। विधि विधान के साथ श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं और बेलपत्र, पुष्प, भांग और धतूरा अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। सुख समृद्धि की कामना लगातार की जा रही है।
3: भक्ति भाव है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे सावन के पहले दिन और पहले सोमवार के दिन थे। लंबी लंबी कतारें जितनी भी शिवालयों में नजर आ रही है वो दिखा रही है क्या आस्था भगवान शिव के लिए हर भक्त के मन में है। सावन का ये जो पावन महीना होता है इसमें सभी भक्त अपनी मनोकामनाएं भगवान शिव तक लेके पहुँचते हैं, अपने हाथ में जल लिए, दूध लिए और उनकी पसंद की जो सामग्री है वो लिए उनको अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो उन तक पहुंचाते हैं। जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर की तस्वीरें जो है वो अभी मैं दिखा रही हूँ। ये जो मंदिर है वो जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है जिसमें सावन का महीना शुरू होते ही ये जो लंबी लंबी कतारें हैं वो देखने को मिलती है। खास करके सोमवार का जब दिन हो तो भक्ति बहुत अच्छे से देखने को मिलती है क्योंकि जितने भी श्रद्धालु हैं वो तड़के 3 बजे से भगवान शिव का इंतजार करने लग जाते हैं कि कब वो दर्शन देंगे। और अक्सर ये देखा जाता है कि सावन के पावन महीने में भगवान शिव अपने भक्तों को समय से जल्दी दर्शन दे देते हैं, अपना आशीर्वाद उन तक पहुँचाते हैं, उनकी मनोकामनाएँ जानते हैं, पूरी करते हैं। तो ऐसे में ये जो भक्त हैं वो बहुत ही अच्छे भाव लेके यहाँ नजर आते हैं। कुछ भक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं जो लंबी लंबी कतारों में पिछले 1 से 1.5 घंटे से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो सुबह के समय देखी जाती है पर फिर भी दिन भर ऐसा ही जो नज़ारा है वो देखने को मिलता है। श्रृंगार की अगर मैं बात करूँ तो इस मंदिर की खासियत ये कि हर एक दिन अलग अलग थीम पर बहुत ही भव्य, बहुत ही अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
1: तो चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पंडित संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाने आर्या जी और साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य राज मिश्रा जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। सावन का पावन महीना आज है, दूसरा सोमवार, जलाभिषेक के लिए कतारें भक्तों की लगी है तमाम शिवालयों में, लेकिन साथ ही साथ हम कल महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाएंगे। सबसे पहले सावन के दूसरे सोमवार पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद शिवरात्रि की महिमा।

0: और उस पर भी आएंगे, ग्रह किस तरीके से ग्रह गोचर बन रहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन आज सावन का दूसरा सोमवार किन मायनों में खास है?
1: देखिए, दूसरा सोमवार अगर कहा जाए, श्रावण की जो चार सोमवार है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले माने जाते हैं। वैसे तो मैं कहूं तो भगवान शंकर खुद ऐसे देवता हैं जो भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं, कर देते हैं। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि इच्छित फल बिलिसिव और आधे औलाइन जो विज्ञ साधे, और उसे उसके साथ कहा कि जो तप करें कुमार तुम्हारी भावि उमेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर भाग्य को परिवर्तित कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो दूसरा सोमवार है, इस दूसरे सोमवार में जो अर्थ की प्राप्ति होती है, पहला धर्म को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सोमवार जीवन की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उसको वृद्धि करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक परिस्थिति अच्छी होती है। मैं सबसे पहले पुनः एक बार धन्यवाद करूं, खैर आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। आप उज्जैन से शायद धर्म संसद कर रही थी और उस
0: जी
1: को लेकर के प्रश्न की और उसकी चर्चाएं हुई, वो बहुत सुंदर थी। मैं लगातार आपके कार्यक्रम को देख रहा था और मेरा सौभाग्य एक बात को लेकर के और है कि जब मैं आपके चैनल पर बैठा था, मैंने शुरू में देखा, मुझे लगता है जितने भक्त अपने घरों में बैठे हैं सभी के लिए बड़ा असंभव होगा कि एक साथ चारों शिवलिंग के दर्शन हो पाए, कि उज्जैन भी पहुंच पाए और उसके साथ द्वारिका भी पहुंच पाए, बाबा बैद्यनाथ धाम के भी दर्शन कर पाए, वाराणसी के भी दर्शन कर पाए। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में बैठा था और मुझे चारों शिवलिंग का जब दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर बैठ करके चर्चा कर रहा हूं। तो आज का जो दिन है दूसरे सोमवार का, वो भगवान शंकर की आराधना से हमारे जीवन की जितनी आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक दिक्कतें हैं, भगवान शिव उसको दूर कर देते हैं। लक्ष्मी की जो प्राप्ति है वो भगवान शंकर के दूसरे सोमवार के पूजन से निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि जो गंगा जल आनि चढ़ावे उसो साजुज मुक्ति नर पावन। दूसरे सोमवार को भगवान शंकर की आराधना से अगर उनको श्रद्धा पूर्वक गंगा जल अर्पण कर दिया जाए तो उससे जीवन के अंतर्गत जो मोक्ष की प्राप्ति है, धन के साथ साथ वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन के अंदर जो हमारे पाप हैं उस पाप से हमारी निवृत्ति हो जाती है। मुझे चर्चा करते हुए नवजोत जी एक बात और लगा, मुझे लगा कि सब लोग अपने घर पर बैठे होंगे, कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका अधिकतम व्यूअर्स है आपके देश और विदेश के अंतर्गत। शिव जी का दर्शन करते हुए एक बार हम लोग भी भगवान शंकर का स्मरण कर ले और फिर जो आपके बाकी प्रश्न हैं उस पर तो चर्चा होती ही रहेगी। लेकिन सबके साथ एक बार जितने घर में दर्शक हैं मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ लीजिए, बहुत सौभाग्य की बात है इतने सारे शिवलिंग के साथ दर्शन हो रहे हैं। प्रार्थना करके फिर चर्चा को प्रारंभ करते हैं, भगवान शंकर का स्मरण करते हैं। ओम कर्पूर करुणा संसार सारम भोज

0: नमामि शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती प्रे हर हर महादेव शंभु। तो ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मेरे स्मरण के साथ मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन बेहतर रहे। तो आज का दिन बहुत खास है,
1: बहुत खास है बिल्कुल। और आज के दिन आगे जानूंगी आपसे भी कि पूजा अर्चना किस तरीके से की जानी चाहिए। वाणी जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगी। सावन का दूसरा सोमवार है, इस बार कुल चार सोमवार है, और कहा जाता है कि सोमवार का उपवास करने से भी कई गुना ज्यादा फल मिलता है। मतलब सावन के चार सोमवार जो बाकी सोमवार होते हैं उसके बराबर माने जाते हैं।
2: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले GNT के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। तो सावन का ये जो सोमवार है ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में खास है। और ये जो होता है, अभी जो है दूसरा सोमवार भी है जो महाशिवरात्रि भी है, तो आप वहां से भी अगर देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस टाइम है। इस टाइम पर जो लोग भी व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उनको उनका कई गुना लाभ मिलता है। क्योंकि सावन का जो मतलब होता है वो रीवैम्प है, आपकी रीजनरेशन है, आपका पूरा ग्रोथ है, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो प्रकृति से है। और कल जो है, जैसे कल चतुर्ग्रही योग भी है, तो यहाँ पर आप देखिए सूर्य हो गया, बुध हो गया, गुरुदेव बृहस्पति अभी वैसे ही अपनी उच्चस्थ अवस्था में चल रहे हैं, साथ में चंद्रमा। तो आपका ये जो चतुर्ग्रही योग है, इससे जो है आपका बुध आदित्य योग भी बन रहा है, गज केसरी योग भी बन रहा है। तो ये जो समय है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास है। और जब भी इस तरह से जब आप महादेव से मैनिफेस्टेशन करते हैं शिवरात्रि के टाइम पे, तो आपको कई गुना उसका फल मिलता है। मतलब शिव की रात, ये भगवान शिव की पूरी नाइट है। तो शिव का जो दूसरा मीनिंग ही है वो लाइफ में जो है करुणा, कृपा और कल्याण है। तो आपको सच्चे मन से जो भी मांगना है आप उसको भोलेनाथ से मांगिए, आपको गौरी माँ से मांगिए, आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कीजिए, और आप ओम गौराय नमः का जो है इस दिन आप जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए ओनली। आप पेड़ लगाइए जितना हो सकता है, और महादेव को जो है आप गन्ने का रस जो है वो आप अर्पित कर सकते हैं। उन्हें जो शमी के पत्ते होते हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, वो भी आप जो है अर्पित कर सकते हैं। शिवरात्रि में अगर आप रात को मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है। आप रात को बैठिए, अपनी जप की जो माला है आप वो लीजिए, और आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और भगवान शिव के आगे आपको जो है दिया जलाना है। और इसका जो सबसे बेस्ट मुहूर्त जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है 12:05 से लेकर 12:48 तक का, कल की रात का। तो अगर आप इस मुहूर्त में, जो आपका निषिद्ध का मुहूर्त है, इसमें आपकी जो भी विश है आप एक पेपर पर लिखिए, और वो जो है आप भोलेनाथ को बड़े सच्चे मन से जो है सरेंडर कर दीजिए, कोई भी डाउट मत रखिए। और जो है आप भोलेनाथ के लिए जो है आप व्रत के सावक के चावल की जो है आप खीर जो है वो भी आप बना सकते हैं। और आप जब अगर व्रत रखते हैं, ये हमारी लाइफ में हमारे पेशेंस लेवल को बढ़ाता है, हमारे सरेंडरिंग को जो है वो भी ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो इस टाइम पर आप भोलेनाथ पर आप जो है अपनी लाइफ को सरेंडर कर दीजिए। आपकी लाइफ की जो भी विशेस हैं आप उसको जो है बिना डाउट के जब आप सरेंडर कर देते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप माता पार्वती से जो है आप वहां पर जो है आराधना करते हैं। और सावन जो है, जैसे मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, मल्टीप्लाई आपका एक प्रोजेक्ट, इस ये मल्टीप्लाई बाय डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। आपके पास एक है, मैनिफेस्ट कीजिए, मल्टीप्लाई होंगे आपके प्रोजेक्ट्स। कल के दिन आप एक पौधा लगाइए और उस पौधे में भी एक स्लिप पर जो है अपनी विश डाल के लिख रखिए। और आप जो है वो खास तौर पर अगर कहीं आप शमी का पौधा जो है वो आप लगवा सकते हैं बेलपत्र का। और एक और उपाय मैं आपको बस एक बताऊंगी नवजोत जी, एक मिनट और। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी एज है, आपकी जितना भी एज ग्रुप है, उतने ही आप बेलपत्र लेंगे और वो अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा है। और बेल पत्र पर आप श्री राम जो है वो आप जरूर लिखें।
1: बिल्कुल नितिशा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी राज मिश्रा जी बता रहे थे कि सावन के चारों सोमवार की अगर हम बात करें तो हर सोमवार का अलग अलग महत्व है, यानी कि हर सोमवार पर आप अपनी कोई ना कोई मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। और अगर आपको वाकई धन लाभ की जरूरत है या फिर अगर आर्थिक तंगी है तो आप सावन का दूसरा सोमवार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर पहली बात तो आप क्या कहेंगे, और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा है तो क्या उपाय भक्तों को बताएंगे, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा सकती है।
3: थैंक यू नवजोत जी और सभी GNT के दर्शकों को। उमापति महादेव, हर हर महादेव। तो शिव जी की जय बोलते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि देखिए चैत्र माह से पांचवा महीना होता है सावन माह, और हम देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली बढ़ गई होती है, हमने मेहंदी लगाई होती है, हमने हरी चूड़ियां पहनी होती है, हरे कपड़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी बुध ग्रह को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जोड़ा जा सकता है क्योंकि कांच की चूड़ियों का पूरा प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करते हैं। और पांचवा नंबर यानी 12 महीनों से पांचवा महीना कहीं ना कहीं बुध ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, जिसे हम गणेश की ऊर्जा से भी जोड़ते हैं। यहाँ पे शिव जी को प्राप्त करने वाला महीना नहीं है, शिव जी तो इस महीने में पृथ्वी पर है जिससे हम उनको सबसे जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन शिव तक अगर पहुंचना है तो आपको गणेश जी तक, कार्तिकेय जी से, नंदी जी से और पार्वती जी से होकर वहां जाना पड़ेगा। तो जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चार सोमवार की बात हुई, वहीं पे जो दूसरा सोमवार है वो अर्थ से जुड़ा हुआ है यानी धन से जुड़ा है, और जो श्री जी है वो माँ पार्वती या शिव की वो शक्ति है जो लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। लोगों को लगता है कि लक्ष्मी जी सिर्फ धन की देवी है, तो मैं लोगों से कहना चाहूंगी जब आप लक्ष्य प्राप्ति के पीछे जाते हो, किसी भी चीज को प्राप्त करते हो, तो अपने आप आपके साथ धन जुड़ जाता है। सपोज दैट अगर मैं चाहती हूँ मैं विदेश यात्रा करूं या मेरा प्रमोशन हो जाए या मैं बड़ा बंगला बना लूं, तो उसमें मेरी लक्ष्य प्राप्ति होगी। अगर लक्ष्य प्राप्ति है तो लक्ष्मी जी अपने आप जुड़ी हुई है। इसलिए सभी से कहना चाहूंगी दूसरा सोमवार, तीसरा और भी ज्यादा विशेष है, नाग पंचमी से जुड़ा है, और दूसरा सोमवार अगर आप लोग शिव पार्वती की पूजा करते हैं श्री के रूप में, यानी कोई भी पूजा अगर आप कर रहे हैं शिव जी की, शिव सूक्तम का पाठ कर रहे हैं, शिव तांडव स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं, शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, उसके साथ अगर आप श्री सूक्तम जोड़ देते हैं तो आज के दिन का विशेष संकल्प आपको मिलता है। तो ये बहुत विशेष है आज का दिन, और आज के दिन श्री की प्राप्ति के लिए आप बिल्व पत्र पर जय श्री राम, जय माँ पार्वती लिख कर या फिर श्रीम लिख करके अगर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और शिव रात्रि जो आ रही है ना नवजोत जी, सावन माह की शिवरात्रि, वो और भी ज्यादा स्पेशल हो जाती है क्योंकि जो 12 शिवरात्रियां हैं वो अपने आप में मुख्य है, लेकिन एक शिवरात्रि आती है जब उन दोनों का मिलन हुआ। ये जो शिवरात्रि है ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस दिन पार्वती ने शिव को प्राप्त किया, यानी स्वीकार किया शिव जी ने पार्वती जी को। एक कथा हमें ये मिलती है, दूसरी कथा हमें ये मिलती है कि आज ही के दिन शिवरात्रि के दिन ही उन्होंने विष का पान किया था, तो विष का पान करने की वजह से सभी देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया और माँ पार्वती जी ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष अंदर ना जा सके। इसलिए दिन बहुत विशेष है, इसमें शिव के समर्पण और माँ पार्वती के समर्पण दोनों को ही दर्शाता है। शिव का समर्पण है अपनी प्रकृति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए उन्होंने समर्पण किया कि विष को मैं ग्रहण करूंगा। माँ पार्वती ने समर्पित किया कि शिव जी को कोई भी कठिनाई ना हो, कोई भी गर्म जो ऊर्जा है विष की वो परेशान ना कर सके, तो उन्होंने उनका कंठ पकड़ा और माँ तारा के रूप में उनको दुग्ध पान कराया। इसलिए सावन की शिवरात्रि 12 शिवरात्रियों में दूसरे नंबर पर ऐसी शिवरात्रि आती है जो बहुत ही ज्यादा विशेष और मुख्य हो जाती है, जिस दिन हम अपनी सभी मनोकामनाओं को नवजोत जी पूरा कर सके, जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिलता है।
1: चलिए मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करना आगे जाने के, लेकिन एक बार संजय जी को इंक्लूड कर लेती हूँ। संजय जी, आज सावन का दूसरा सोमवार, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तमाम शिवालयों से, ज्योतिर्लिंगों से, कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा भी साथ ही साथ चल रही है और यकीनन अब तमाम कांवड़िए भी अपनी मंजिल तक पहुंच रहे होंगे, यानी कि मंजिल वो जहां पर उन्हें आकर जल चढ़ाना है। कल शिवरात्रि भी है, तो ऐसे में कितना पावन हो जाता है पर्व।
4: सबसे पहले हर हर महादेव, और एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा, ओम नमः शंभवाय चय मयो भवाय चय नमः शंकराय चय मयस्कराय नमः शिवाय शिव कराय चय। कहते कि ये सावन का जो मास है, और कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा का जो प्रारंभ हुआ, कहते कि भगवान शिव की उपासना जो है रावण ने बड़ी मन और श्रद्धा से की, और रावण को ही लगा कि कहते हैं कि सबसे बड़ा पहला कांवड़िया जो था रावण ही था। उनको लगा कि भगवान ने जब प्रकृति को बचाने के लिए, नेचर को बचाने के लिए जो विष का पान कर लिया, तो उस विष पान से भगवान कितने जो है ज्यादा जो उनकी बॉडी जो है हीटअप हो गई है, जिस कारण से भगवान को जो है विशेष करके जो है गंगा जल या अमृत जल, जिसको हम गंगा जल कहते हैं, अमृत जल है एक तरह का, और उससे स्नान कराने से भगवान की जो है आत्मा की शरीर की शुद्धि होगी और उनके अंदर जो ठंडक पहुंचेगी। तो तब से जो है कावड़ यात्रा जो है प्रारंभ हुई और जो रावण था वो भगवान शिव का अनंत भक्त भी बन गया और भगवान के ऊपर उसका अटूट विश्वास भी रहा। तो तब से कावड़ यात्रा का प्रारंभ हुआ और अब आज तक कहते हैं कि इतने वर्षों से लेकर के अभी तक कलयुग तक का जो समय है इसमें जो हम कावड़ यात्रा जो है मनाते आ रहे हैं। और भगवान शिव का जो महीना है श्रावण, श्रावण का अर्थ होता है जो शुभता को प्रदान करने वाला है, आनंद को प्रदान करने वाला है, खुशी को प्रारंभ देने वाला है। प्रकृति और नेचर में कहते हैं पांचों तत्व, जैसे जल की जब वर्षा होती है अमृत की प्राप्ति होती है, पूरी जो प्रकृति है वो जलमग्न हो जाती है। तो ये एक ऐसा महीना है इसके अंदर जो भगवान प्रसन्न होते हैं और पांचों एलिमेंट्स जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। आप नेचर की बात करें तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनको अन्न जल की प्राप्ति हो जाती है और जल में होने से जो है आत्मा की और देह की शुद्धि हो जाती है। तो ये एक ऐसा समय होता है जिसमें कावड़िए जो है अपनी पूरी मन और श्रद्धा, कावड़ हमेशा जो है दो लानी चाहिए, कई लोग तो हर साल लाते हैं पर जोड़ा जो लोग करते हैं उससे विशेष लाभ रहता है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप माना गया है और उसके दो आप देखें कि दो पहलू हैं हमेशा कावड़ में। आप देखें कि दोनों तरफ प्रकृति और नेचर और जल सब कुछ बैलेंस रहता है और दो जो है कलश लाए जाते हैं उससे जो भगवान को अर्पण किया जाता है और पंचामृत से स्नान करा करके और भगवान शिव का ध्यान करके जो है कावड़िए हैं और बम बम बोले बोलते हुए जो है इतनी श्रद्धा और विश्वास से आप देखें कि हजारों किलोमीटर पैदल चल करके और जो अपने समीप जो मंदिर होता है उस मंदिर में जाकर के और शिव को जो है जल अर्पित करते हैं और आनंद की प्राप्ति, अनुभव की प्राप्ति करते हैं। कल मैं नवेड़ा गया था, मैंने देखा कि 5 साल का जो बच्चा है वो भी उस रथ को खींच रहा है। इतनी श्रद्धा और विश्वास, अटूट विश्वास परमात्मा के प्रति जिन लोगों का होता है वो भगवान के प्रति समर्पण पहले से ही हो जाता है उनके अंदर और मोक्ष के द्वार, उनके स्वर्ग के द्वार, आनंद के द्वार जो है भगवान जो है पहले से ही खुल और सभी रोगों से निवृत्ति कर देते हैं। और जो नित्य नियम से शिव की उपासना करते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुनते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में कितना भी बड़ा संकट वो टल ही जाता है,
1: बिल्कुल भगवान से बिल्कुल दूर कर देते हैं। चलिए जल्दी से राजमिश्रा जी आपके पास आऊंगी। दूसरा सोमवार आपने कहा कि धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, जल्दी से एक उपाय बता दीजिए क्योंकि फिर उसके बाद हम महाशिवरात्रि पर लौटेंगे।
0: भगवान शंकर ने स्वयं शिव पुराण के रुद्र संहिता में वर्णन किया है अलग अलग प्रकार की चीजें जो भगवान शंकर को पसंद है और क्या उनको अर्पण कर देने से भगवान शिव क्या प्रदान कर देते हैं, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। भगवान शंकर ने शिव पुराण में ब्रह्मा जी से चर्चा करते हुए कहा कि जो मुझे कमल का पुष्प ला करके अर्पण कर देता है ना, जो मुझे कमल का पुष्प ला करके चढ़ाता है, मैं उसके जीवन की जो आर्थिक दिक्कतें हैं उसको दूर कर देता हूं। और इसी प्रकार अगर आप शिव तांडव स्तोत्र का अध्ययन करेंगे तो लिखा है कि पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतम या संभ पूजन मिदम पठति प्रदोषे तत्स स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभु। भगवान शंकर को अगर कमल का पुष्प अर्पण किया जाए, उनके सामने बैठ करके या तो शिव तांडव स्तोत्र का अगर पाठ करना संभव है तो बहुत सुंदर है, और अगर वो नहीं भी संभव है तो भगवान शंकर के सामने सिर्फ बैठ करके उनके नाम का स्मरण ही कर लिया जाए। एकमात्र ऐसे देवता अगर ब्रह्मांड में कोई हैं तो वो शिव हैं, जिनको अगर कुछ भी ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर दिया जाए तो भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ नवजोत जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आपके स्क्रीन पर ऐसे चल रहा होता ना, जैसे हम लोग दर्शन कर रहे होते हैं और जब इस पर चर्चा चल रही होती ना तो इतना सुंदर लगता है चर्चा करते हुए। ऐसा लगता है कि वास्तविकता में हम लोग अपने घरों में नहीं बैठ करके, स्टूडियो में नहीं बैठ करके, वास्तविकता में उस देव स्थान पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। तो जिनके जीवन में अर्थ को लेकर के कोई भी दिक्कत है, इवन आपको लगता है कि कर्ज इत्यादि इतना हो गया है कि उतर नहीं सकता है, तो सिर्फ भगवान शंकर को श्रावण के मास में किसी भी दिन अर्पण कर सकते हैं, लेकिन विशेष अगर शिवरात्रि की हम एक चर्चा कर लें और दूसरे सोमवार पर भगवान शंकर को कमल का पुष्प श्रद्धा पूर्वक ले जाकर के वहां अर्पण कर दिया जाए और वहां बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा से जप कर लिया जाए, मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप ये अजमा करके देख लीजिएगा, आपके जीवन में आने वाला जो अगले सोमवार का, जब तक दूसरा अगले श्रावण का दूसरा सोमवार आएगा ना, बड़ा से बड़ा कर्ज आपका उतरता हुआ दिखेगा जी।
1: लेकिन लेकिन राज जी बहुत ज्यादा आप श्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें भाव बहुत अहम होता है, आप कितनी ईमानदारी के साथ किस भाव के साथ जा रहे हैं, कहीं कोई छल कपट तो आपके मन में नहीं, ऐसा होगा तो प्रभु कभी आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे। चले शिवरात्रि पर भी चर्चा करेंगे, इस बार ग्रह गोचर कैसा बन रहा है, किस तरह के महायोग संयोग बन रहे हैं, सब पर बात होगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: श्रीमय सावन का महासंयोग, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सावन का महीना शिव का प्रिय महीना, आज है दूसरा सोमवार, लेकिन कल है शिवरात्रि का पर्व। और इस बार किन मायनों में खास हो जाता है शिवरात्रि का ये पर्व, चर्चा इसी को लेकर आगे बढ़ाते हैं। राज मिश्रा जी, सबसे पहले तो बता दीजिए कि इस बार ग्रह गोचर कैसा है, कौन से संयोग महासंयोग बन रहे हैं इस बार शिवरात्रि पर।
1: अगर इस बार के संयोग की बात की जाए तो खैर हमने कई बार चर्चा किया, लेकिन ये श्रावण वास्तविकता में अपने आप में खास है। मैंने पिछली बार भी जो आपके कार्यक्रम में चर्चा कर रहा था तो मैंने इस शब्द को कहा था कि ये अद्भुत श्रावण है। इस श्रावण के अंतर्गत पहली बार ऐसी परिस्थिति है कि 2 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 16, 20 और 23, यानी 2, 2, 4 और 2, 6 सर्वार्थ सिद्धि योग स्पेशली इस श्रावण के अंतर्गत पड़े। अब आज आते हैं उसके साथ, अगर बात किया जाए अमृत सिद्धि 3 अमृत सिद्धि योग पड़े, रवि योग की बात की जाए तो करीब करीब 6 रवि योग, 1 दीपुष्कर योग, 2 त्रिपुष्कर योग, इतने योग जनरली श्रावण के अंतर्गत नहीं पड़ते हैं। अब दूसरी चीज सोचिए, धर्म के सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति जो हंस नामक योग बना करके कर्क राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, और जब शिवरात्रि पर चर्चा कर रहे हैं तो शिवरात्रि में आपने जैसा कि पहले स्टार्टिंग की अपने रिपोर्ट में बताया और आपने खुद कहा कि हाँ चंद्रमा भी साथ में चले जाएंगे तो गजकी से योग का अपने आप निर्माण हो जाएगा। तो जब चतुर्थ भाव जो हृदय का भाव है जिसको कामना पूर्ण करने वाला भाव कहा जाता है, वहां के स्वामी चंद्रमा जाकर के जिनको पार्वती कहा गया है, अगर वास्तविकता में कुछ ज्योतिष के अंदर उठा करके देखा जाए तो बृहस्पति को जीव, चंद्रमा को पार्वती कहा गया, बुध को सरस्वती कहा गया और सूर्य को भगवान शंकर के साथ जोड़ करके देखा जाता है। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत बुध चंद्रमा बृहस्पति और सूर्य का जो एक शानदार कॉम्बिनेशन काल पुरुष के चतुर्थ भाव के अंतर्गत बनने जा रहा है, ये वास्तविकता में अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सबसे शानदार संयोग कहा जाएगा, सबसे बेहतरीन योग है। इस योग में पूजन करने से निश्चित रूप से कामना की पूर्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दशम भाव के स्वामी शनि काल पुरुष के और उसके साथ सप्तम भाव के और द्वितीय धन भाव के स्वामी शुक्र और शनि का आपस में दृष्टि संबंध रहेगा, जो कि आपके भगवान शंकर के पूजन करने से आपके कर्म का जो फल है, जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो धन प्रदान करने वाला है, वो परिस्थितियां आपके साथ बनने जा रही है। तो एक तो शिवरात्रि अपने आप में चमत्कारिक है। शिवरात्रि में कई शास्त्र कई जगह वर्णन मिलता है कि भगवान शंकर का विवाह हुआ, लेकिन कई जगह ये वर्णन मिलता है कि यही वो पहला दिन था जब भगवान शंकर का शिवलिंग के स्वरूप में प्राकट्य हुआ और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने पहली बार जाकर के पूजन किया। शिवपुराण की बिंदेश्वर संहिता और रुद्र संहिता में ये कथा प्राप्त होती है कि पहली बार पूजन किया और भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि इस दिन जो आकर के मेरी पूजा करेगा, इस दिन जो आकर के मेरी आराधना करेगा, मैं उसके सभी कामनाओं को पूर्ण कर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर मैं एक शिवरात्रि अपने आप में खास और जो इस बार के संयोग है वो संयोग अपने आप में अद्भुत संयोग है, इस संयोग पर किया गया पूजन मुझे लगता है कि जीवन को वास्तविकता में बनाने वाला होगा, जीवन की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। और मैं दोबारा एक बार अपील करूं, यदि मंदिर ना जा पाए, यदि पूजन ना कर पाए तो फिर, और घर में यदि मंदिर ना भी हो तो मैं दोबारा एक बार अपील करूं कि सिर्फ लगा दीजिए घर के अंदर GMT और सुंदर सुंदर आप दर्शन कर सकते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के, तो घर में ही अपने आप में शिवाला बन जाएगा। जी नौ
0: जी वान्या जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल 4 ग्रहों का मंगलवार भी कहा जा रहा है और मंगल शिवरात्रि इसको कहा जा रहा है, क्यों और किन मायनों में खास है ये तो बताइए, और साथ ही साथ उपाय क्या किए जा सकते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए।
2: थैंक यू नवजोत जी। कल का दिन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि कल मंगला गौरी व्रत भी है और कल शुक्र का जो है नक्षत्र परिवर्तन भी है। कल आपका पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, फिर आपका जैसे पुष्य नक्षत्र रहेगा, तो बहुत ही सारे खास संयोग बन रहे हैं। और जैसे आपका जो है कर्क राशि में चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, जैसे अभी और भी हमारे रिस्पेक्टिव पैनलिस्ट जो है हमें बता रहे थे, तो ये जो टाइम है हमारे लिए ये बहुत ही बेस्ट टाइम है क्योंकि ओवरऑल अगर आप प्लैनेट्स देखते हैं कि एक तरफ शिवरात्रि का व्रत है, एक तरफ मंगला गौरी का व्रत है और कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का ये टाइम है। शिवरात्रि का एक और मतलब भी होता है कि जो आप जो अपने रिचुअल्स कर रहे हैं आप उसे कीजिए, लेकिन साथ में आप भगवान शिव की क्वालिटीज को अगर आप अपने अंदर इम्बाइब करते हैं तो ही एक्चुअली वो हमारी लाइफ की ब्यूटिफिकेशन है। शिवरात्रि का मतलब होता है अपने शरीर के अंदर जो हमारे कण हैं उनको जीवंत करना, ये शिवरात्रि का मतलब होता है। तो ये शिव की रात है, मैं कहती हूँ आप थोड़ा सा अगर सिर्फ कल की रात अगर आप जाके भगवान शिव की जितनी ज्यादा आप आराधना कर सकते हैं, पूरी रात अगर आप जाप कर सकते हैं, शिव तांडव स्त्रोत्र जो है वो आप सुन सकते हैं, और जब भी कोई आपका फेस्टिवल आता है तो मैनिफेस्टेशन मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल टाइम्स जो है, इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई होती है। तो इस दिन जो है आप तीन ताली का जैसे महत्व है, कांवड़ का जो महत्व है, बैलेंसिंग है लाइफ में, आप जो है बेलपत्र जो है इस टाइम पर आप जरूर चढ़ाइए, क्योंकि वो ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करता है और ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, माँ सरस्वती को रिप्रेजेंट करता है, फिर उसके बाद जो आपकी सारी देवी शक्ति को जो है देवियों को रिप्रेजेंट करता है, माँ काली को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो है इतनी सारी जब हमारी लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं, आप बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, आप धतूरा चढ़ाएं, गन्ने का रस का बहुत ज्यादा महत्व होता है, माँ लक्ष्मी को भी ये जो है रिप्रेजेंट करता है। इस टाइम पर जो है आप पार्वती माता की जितनी ओम पार्वती पतये नमः का जितना ज्यादा आप जाप करते हैं वो भी आपके लिए शुभ है। और मैं कहती हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपली क्लोज योर आईज एंड जस्ट मैनिफेस्ट, जस्ट विजुअलाइज करिए आप भगवान शिव को, आंखें बंद कीजिए और जितना हो सकता है भगवान शिव का ध्यान कीजिए, और ये ध्यान कीजिए कि उनकी क्वालिटीज जो है वो आपके जीवन में आ रही हैं, और आप जिस चीज को अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं आप ये उस टाइम पर ये विजुअलाइज कीजिए कि वो चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी जो है वो घटनाएं जो है घटित हो चुकी हैं। आप जब फास्ट करते हैं तो ये त्याग को रिप्रेजेंट करेगा, समर्पण का टाइम है ये, सरेंडर का टाइम है ये ग्रोथ का टाइम है ये, इनफाइनाइट चीजों को, क्योंकि देखिए एक पेड़ हमसे पूछ के नहीं उगता कि वो कितने पत्ते देगा, तो नेचर जो है इनफाइनाइट मल्टीप्लीकेशन है। जब आप फेथ रखेंगे तो आपके जीवन का हर एरिया भी इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। वो कैसे होगा? वाया भगवान शिव, उसका स्पिरिचुअल चैनल जो है वो भगवान शिव है, बिकॉज ये सावन मंथ होता है और इसको हम मंथ ऑफ मैनिफेस्टेशन ही बोलते हैं। तो इस टाइम पर आप सिंपल अपनी एक जो भी आप अपनी जप को माला को आप यूज करते हैं, इवन आप गुरु मंत्र भी करना चाहते हैं आप वो भी कीजिए, और जो है आप चंद्रदेव को इस दिन आप बिल्कुल भी मत भूलिए, आपको चंद्रमा को भी जो है अर्घ देना है, ओम सोम सोमाय नमः का भी जाप करना है, ओम चंद्रमसे नमः का भी जो है आपको जाप करना है, अपनी माता का आशीर्वाद जो है इस दिन आपको जरूर लेना है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस दिन से आप एक प्रण लीजिए कि कैसे, जैसे कावड़ का मतलब होता है बैलेंसिंग और त्याग, कैसे अपनी लाइफ में आप बैलेंसिंग कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ की कौन सी चीजें जो है वो आप भगवान शिव को सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सरेंडर कर देते हैं तो उसका चार्ज हम भगवान शिव को दे देते हैं और उसकी टेंशन हम लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमने अब ईश्वर को समर्पित कर दिया है। तो आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है उसको एक्चुअली जो है आप भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए, और आप जो है अपने मन को जो है थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, अपने पंच तत्वों को बैलेंस कीजिए। कल का दिन अपने चक्रास को, सारे 7 चक्रास को आप इस दिन बैलेंसिंग जरूर कीजिए। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, उसको मन को जितना हो सकता है स्टेबल रखिए।
0: बिल्कुल नितिशा जी, आपके पास आना चाहूंगी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए, क्योंकि जलाभिषेक तो हर कोई करता ही है, लेकिन उसके अलावा शिवरात्रि पर क्या कुछ चढ़ाया जाए, कैसे अभिषेक किया जाए प्रभु का?
3: जी नवजोत जी, बड़ा ही प्यारा प्रश्न किया आपने। तो पहले मैं बोलना चाहूंगी कि सावन में आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक जो तरंगे है वो बहुत अब हाई फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही है, और शिवरात्रि का जो समय आता है सावन की, वो आध्यात्मिक तरंगे और भी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि शिवरात्रि पर सोना नहीं चाहिए पूरी रात, और जितना आप मैनिफेस्ट करते हैं, जितनी आप उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, शिवमय हो जाते हैं, उतना ही आपके लिए आध्यात्मिक तरंगे शुभ फलों की प्रदाता बन जाती हैं। जैसे कि हम कल के दिन की बात कर रहे हैं, ये शिवरात्रि का दिन चतुर्ग्रही राजयोग, गज केसरी राजयोग, बुद्ध आदित्य राजयोग के साथ साथ यहाँ पे हमें जो चंद्रमा का पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र मिल रहा है, इसे गौरी योग भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इस दिन बनने वाला सिद्ध योग। सिद्ध योग में हम कोई भी कार्य जब करते हैं, कोई भी पूजा, कोई भी उपासना, कोई भी मैनिफेस्टेशन, तो वो हमारी पूर्ण होने लग जाती है। तो मैं सबसे बस इतना बोलूंगी, जब आप शिवोमय हो जाते हो, यानी शिवोहम का मंत्र जाप करते हो, या उमापते महादेव की जय बोलते हो, या फिर ओम उमापति महादेव शंभू, इतना भी अगर आप बोल देते हो, तो आपकी जो दाम्पत्य जीवन में या फिर जहां पे आपकी फ्रिक्वेंसी क्लैश हो रही होती है कि मेरी लोगों से बनती नहीं है, लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा छल करते हैं, वहां पे आप लोगों से उनकी फ्रिक्वेंसी मैच होने लग जाती है। तीसरी चीज, बिल्व पत्र शिव जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि माँ पार्वती ने बिल्व पत्र को ही खा करके उनकी करोड़ों वर्ष तपस्या की थी। तो बिल्व पत्र को आशीर्वाद है शिव जी का कि जो भी तुम्हें मेरे ऊपर चढ़ाएगा मैं उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करूंगा। इसीलिए मोक्ष प्रदाता गंगा जल और बिल्व पत्र को भी कहा गया है। मोक्ष यानी हमारे इच्छाओं का मोक्ष, जब हमारी इच्छाएं हमें मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, उसी के बाद हमें मोक्ष प्राप्त होता है। बिना इच्छाओं के आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। इसलिए आप गंगा जल, बिल्व पत्र, चंदन उनको बहुत प्रिय है, चंदन चढ़ा करके अपने जीवन में चीजों को मांग सकते हैं। जैसे आपको भौतिक जितनी भी चीजें चाहिए कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो आप चंदन चढ़ा सकते हैं। आपको नेम फेम चाहिए तो आप रक्त चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। आपको शांति चाहिए अपने जीवन में तो आप सफेद चंदन से अभिषेक करें। आपको श्री यानी लक्ष्मी जी चाहिए तो बिल्व पत्र पर श्रीम लिखकर कमल के फूलों से लक्ष्मी जी का, शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हर चीज चाहिए कि मुझे सब सुख प्राप्ति हो, मेरे घर में हर तरह के जो कलेश हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, वो सब मिट जाए, तो रुद्राभिषेक पंचामृत से करके देखिए, आपको एक ही हफ्ते में चेंजेस देखने को मिलेंगे। दूसरा, कल का दिन अपने मन को शांत करने का। जब हमारा मन शांत हो जाता है, शिवमय हो जाता है, तो हमें हर इच्छा अच्छी लगने लग जाती है, वो पूर्ण होने लग जाती है। तो ये मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि हम मांग रहे हैं, ये मैनिफेस्टेशन ऐसा है कि जब हम अपने मन को शांत कर रहे हैं कि हमें, हमने जो भी शिव से मांगा है, जो भी शिव पार्वती से मांगा है, जो प्रकृति से मांगा है, क्योंकि आध्यात्मिक तरंगे बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही है, वो हमें मिल रहा है। जब हम कहते हैं वो हमें मिल रहा है, हम समर्पण दिखाते हैं शिव जी पर, शिव पार्वती पर, कि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, वो मुझे देंगे, तो वो हमें प्राप्त होता है। तो ये मैनिफेस्टेशन मांगने का दिन नहीं है, ये आपको मिल चुका है, ये वो दिन है। तो प्लीज कल जो भी चाहिए उसको ले लीजिए कि आज मुझे मिल जाए, क्योंकि सिद्ध योग, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र का सिद्ध योग बन रहा है। इसमें नवजोत जी भद्रा काल भी लग रहा है कल, यानी सूर्य उदय के समय, जिस समय चतुर्दशी तिथि लगेगी उसी समय के कुछ मिनट के बाद भद्रा काल लग जाएगा। भद्रा काल में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो शुभ कार्य से बचे। हाँ, रुद्राभिषेक, शिव पूजन हम सब कर सकते हैं। भद्रा काल 3:24 दोपहर में समाप्त हो रहा है और गोधूली वेला हमें जो मिल रही है वो बहुत विशेष है। और निश्चित काल 12:05 से शुरू हो रहा है, 12:48 तक रात्रि कालीन रहेगा। इस समय अगर आप शिव रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दो मुहूर्त बहुत अच्छे, शाम का गोधूली मुहूर्त और रात का निश्चित काल बहुत विशेष रहेगा। ठीक है,
0: संजय जी आपके पास आना चाहूंगी इस दिन। हालांकि जलाभिषेक करेंगे, माँ पार्वती की आराधना, शिव की आराधना कहा गया है कि आप कीजिए, लेकिन शिवरात्रि पर शिव परिवार की आराधना कितनी अहम हो जाती है और वो क्रम क्या रहता है?
4: जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है। कहा जाता है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले गणेश जी को जल अर्पित किया जाता है और प्रथम पूज्य जो है गणपति है। उसके बाद में गणपति के पाद में आप जो है माँ पार्वती के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं, फिर उसके बाद नंदी के ऊपर कर सकते हैं, उसके बाद कार्तिकेय जी के ऊपर करते हैं, और फिर लास्ट में भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि जो नमः शिवाय जो शब्द है या नमः शिवाय जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम यूनिवर्स साउंड है, नमः शिवाय रिप्रेजेंट करता है पांचों तत्वों को। तभी मंत्र आता है नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वाशम भजे हम। एक दूसरा आता है नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जो फाइव एलिमेंट्स है उन्हीं को बैलेंस करता है मंत्र नमः शिवाय आप जब बोलते हैं। और कहा जाता है कि जो तीन गुण होते हैं, आप देखें कि जब आप बेल पत्र चढ़ाते हैं तो उसमें रज सत और तम, कहा जाता है कि हमें तम को जीवन से त्यागना है, रज और सत को जो है धारण करना है। इसमें आपने विधि पूछी, बड़ी सुंदर बात कही आपने, कहते हैं कि सबसे पहले आपको उपवास रखना चाहिए। उपवास का मतलब है कि आप भगवान के प्रति जो है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं और आप जो है अपने आप को सात्विकता के प्रति या सत्य कर्म के प्रति या बिना भोजन के भगवान का ध्यान करना, भजन करें और भोजन जो है एक वक्त करें। दूसरा, भगवान का ध्यान जरूर लगाएं और मंत्र उच्चारण की शक्ति, कहते हैं कि साउंड वाइब्रेशन जो है वो मंत्र उच्चारण की शक्ति होती है, उसको जागृत करें। और कहते हैं कि ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जिन लोगों को महामृत्युंजय आते हैं महामृत्युंजय का पाठ करें। और मंगलवार कल का जैसे दिन आ रहा है तो उसमें मंगला गौरी का विशेष मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम देवी मंगल चंडी के हूम हूम फट स्वाहा। इस मंत्र का जो है उच्चारण करने से जिनका विवाह नहीं हो पा रहा उनके लिए विशेष करके लाभ रहता है। और सोमवार के दिन सफेद चंदन का प्रयोग और मंगलवार के दिन लाल चंदन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसमें शिव शिवलिंगाष्टकम का पाठ करें, शिव तांडव स्रोत्र का पाठ करें, भैरवाष्टकम का पाठ करें और मंत्रों को जो है थोड़ा सा दीर्घ स्वर में बोले। मैं एक मंत्र बोलता हूँ, जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितांबुजंग तुंग मालिकां दमट दमट दमट दमन निनाद वरडमर वयम चकार चंड तांडवम तनु तुना शिवा शिवम जटाकटा संप्रभम निलंप निर निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत धगत लल्लाट पट्ट पाविके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणा मम ओम नमः शिवाय।
0: आचार्य राज मिश्रा जी, एक छोटा सा सरल उपाय जो कोई भी कर सकता है महाशिवरात्रि के पर्व पर।
1: देखिए, सबसे पहले तो भगवान हमेशा कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट सब सिद्ध भावा। लेकिन अगर संभव है तो एक तो गंगा जल ले लीजिए और गंगा जल ले जाकर के भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, पूर्व के उत्तर की दिशा में मुख करके और भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक चढ़ा दीजिए। भगवान शिव प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लेकिन अगर मंदिर जाना भी संभव नहीं है, कई बार स्वास्थ्य की ऐसी परिस्थिति होती है कि मंदिर जाना भी आपके लिए संभव नहीं होता है, अपने घर में श्रद्धा से बैठिए, अपने मित्रों से को बंद कर दीजिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने मानसिक पूजन का वर्णन किया है, मन से जो भी आप भगवान को सोचते हैं चढ़ाने के लिए भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो सिर्फ घर के अंदर बैठ जाइए, नेत्र को बंद करके शिव का स्मरण करते हुए, मैं शिव का अभिषेक कर रहा हूं, मैं शिव को दुग्ध चढ़ा रहा हूं, दही चढ़ा रहा हूं, चढ़ा रही हूं, जल चढ़ा रहा हूं, चढ़ा रही हूं, उनको ये भोग लगा रहा हूं, लगा रही हूं, सारी पूजा मानसिक रूप से संपन्न करके और फिर भगवान शंकर के जो मंत्र है, साधारण मंत्र ओम नमः शिवाय पुरुष के लिए, महिला के लिए शिवाय नमः, श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण कीजिए। बैठ करके 5 मिनट ध्यान कीजिए, 2.5 मिनट में 108 बार हो जाता है। 5 मिनट श्रद्धा पूर्वक बैठ करके स्मरण कर लीजिए, भगवान शिव आपकी जीवन की जो भी कामना है उसको पूर्ण कर लेंगे। दूसरा, मैं एक बार फिर से उसको कह दूं, कहीं भी नहीं जा पाते हैं, शास्त्र कहता है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवितम, दर्शन करना दर्श परस मज्जन और उपाना, दर्शन करना और श्रवण करना भक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है। घर में धार्मिक चैनल लगा दीजिए, मैं दोबारा कहूंगा GNTV लगा दीजिए, पूरे दिन शिव चर्चा होगी, श्रवण करते रहिए, आपकी पूजा जरूर संपूर्ण होगी।
0: बिल्कुल, यहीं से मैं भी चलते चलते बताते चले, आपने कहा कि पूरा दिन शिव चर्चा होगी, तो क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आप गुड न्यूज टुडे का हिस्सा भी हैं, उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और ये तो शिव का उत्सव है, सावन का उत्सव है जो कि गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
1: धोती भारत की पहचान से जुड़ा एक ऐसा पारंपरिक परिधान है जिसने सदियों से हमारी संस्कृति विरासत को संजो कर रखा है। अब इसी विरासत को प्रीमियम क्वालिटी और नए अंदाज के साथ नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है रामराज कॉटन की ओर से, जिसकी ओर से नई प्रीमियम धोती कलेक्शन पंचा लॉन्च की गई है। इस खास कलेक्शन के जरिए ओडिशा की पारंपरिक हथकरघा कला और कारीगरों की मेहनत को नई पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है। तमिलनाडु के तिरुपुर में इस नई प्रीमियम धोती कलेक्शन का लॉन्च इवेंट हुआ। कुल मिलाकर रामराज कॉटन की पंचा सिर्फ एक नई धोती कलेक्शन नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, कारीगरों की कला और आधुनिक सोच के मेल की एक नई पहल है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन की शिवरात्रि का क्या है महत्व, सावन की शिवरात्रि का क्या है पूजा विधान, और सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज की चाय वाकई मजेदार होने वाली है ना, बाहर बारिश हो रही है कि नहीं,
4: पूरा माहौल बन गया है
2: ना,
5: बाहर क्यों नहीं जा रहे यार हम लोग
2: मन नहीं कर, मैं सच में ऐसे भी मौसम में मन नहीं करता स्टूडियो में बैठ के शो करने का।
6: बाहर जाके चाय की चुस्कियां लेते हुए,
5: चाय का प्याला हो साथ में, हम हो
6: और हल्की हल्की हल्की बारिश हो,
4: बिल्कुल
5: पैटी की जगह समोसा हो
2: अरमान बहुत ज्यादा है हमारे फिलहाल जो खबरें हैं वो बता देते हैं। देखिए जब कोई खिलाड़ी अपने वतन के लिए मेडल लाता है ना, तो उसका सम्मान होना लाजमी है, लेकिन ग्लासगो कॉमनवेल्थ में एक दो नहीं बल्कि 39 मेडल्स हमारे पदक वीरों ने वो लेकर आए हैं और तिरंगे का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो हिंदुस्तान के इन चैंपियन से आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, मुलाकात नहीं स्पेशल मुलाकात की है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
4: बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए वो मुलाकात तो आपको हम दिखाएंगे ही प्रधानमंत्री के साथ उन चैंपियंस की, लेकिन आज सावन के दूसरे सोमवार पर देश भर के शिवालयों में कैसी बह रही है भक्ति की और आस्था की बयार, साथ ही कांवड़ यात्रा में कैसा सज रहा है कांवड़ियों का संसार, इसके भी अनोखे और खूबसूरत रंग हम आपको दिखाएंगे।
2: नमस्कार, मैं आशा गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। 15 अगस्त से पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने, रूसी एस्ट्रोनॉट्स ने किस अंदाज में दी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, वहीं आज वर्ल्ड लायन डे पर देश में एशियाई शेरों की संख्या को लेकर गुड न्यूज क्या आई है वो भी दिखाएंगे। साथ ही दिखाएंगे आपको ऑपरेशन थिएटर में मशहूर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम ने कौन सा गाना गाया, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
9: देश भर में सावन के दूसरे सोमवार की रौनक, शिवालय में शिव भक्तों की लंबी कतार, भक्ति भाव से श्रद्धालु कर रहे महादेव का जलाभिषेक। सावन के पावन महीने में दिख रहे कांवड़ के अनोखे रंग, मेरठ में शिव भक्तों पर बुलडोजर से की गई पुष्प वर्षा, भागलपुर में खास अंदाज में सजाई गई बस। पाली के कलाकार की अनोखी शिव भक्ति, पीपल के पत्तों पर उकेरी महादेव की मनमोहक आकृति, शिव भक्ति के साथ दिखी राष्ट्र प्रेम की भी झलक। महाराष्ट्र के जालना में संत गजानन महाराज की पालकी का भव्य स्वागत, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन, समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का दिया संदेश। दिल्ली समेत NCR में मौसम की मेहरबानी बरकरार, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत हमारे चैंपियंस की खबरों से कर लेते हैं। आपको बता दें कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ के मैदान पर कई खेल इवेंट्स में शामिल होने आए हिंदुस्तान के एथलीट्स उतरे तो देश ही नहीं दुनिया में छा गए और बन गए कॉमनवेल्थ चैंपियन। वहीं बॉक्सिंग रिंग में जब मुक्केबाज उतरे तो सिर्फ मुक्के नहीं चले तिरंगे का दम भी दिखा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय बॉक्सर्स ने ऐसा प्रदर्शन किया कि विरोधियों के बीच भी भारत का खौफ नजर आया और नतीजा रहा 10 मेडल जिनमें 7 गोल्ड।
10: बिल्कुल, वैसे देखिए हरियाणा के बारे में कहते हैं ना कि मारी छोरियां छोरों से कम है, कि हिंदुस्तान के बारे में कहना चाहिए छोरे और छोरियां किसी से कम नहीं है। ये यहाँ पर इन लोगों ने दिखा दिया है। अब देखिए इन सभी चैंपियंस की मुलाकात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई तो बातचीत में मैदान के वो किस्से भी सामने आए जिन्हें सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से उनके अनुभव पूछे और महिला मुक्केबाज साक्षी ने बताया कि मुकाबले से पहले विरोधी टीमों में क्या माहौल था। तो चलिए सीधे सुनते हैं चैंपियंस की जुबानी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की कामयाब कहानी।

0: मेरे यहां मुझे यहां लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूं, तो खिलाड़ी है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी।
1: हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे।
0: पक्का?
2: जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने गिफ्ट दे दिया।
0: बड़ी शान बढ़ाई आपने, इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है।
3: मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, और खुशी ज्यादा था। पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो
0: बहुत बहुत बढ़िया।
4: सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा।
0: यानी मान के चलते हैं।
4: हाँ सर।
0: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
5: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था, और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
0: इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ, और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना, और तुरंत सिर्फ मेडल देते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूं, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं।
5: जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे, और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट है, वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही।
0: कारगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी?
6: उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन

0: और आप स्वयं फौज से हैं तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर चार चांद लगा दिए और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने।
1: वो पाकिस्तान की बात चल रही है, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ। वहाँ बोलो, बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
0: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया।
2: मेरे मन में भी धक धक धक धक हो रहा है।
0: आप चिंता मत कीजिए।
2: पर
0: आप जाकर आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है।
2: मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तुम मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ।
3: कॉमन गेम्स में मेडल, सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुशी थी। मैंने सर को क्रेडिट दिया था क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ।
0: मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है, मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना?
4: जी सर। बहुत
0: कैसा बना है स्टेडियम?
4: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी, और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर।
0: भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी
4: जी सर। 2008
0: उज्जैन जाते थे कि नहीं?
4: जी सर उज्जैन भी गई थी सर।
0: अच्छा महाकाल के बाद भी गई?
4: जी सर।
0: काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार?
4: जी सर।
0: सावन महीना तो अभी है,
4: वह घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर।
0: ठीक है दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ। और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
5: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से वेलकम करती हूँ। मेरा कल बर्थडे था तो आज सर की
0: बहुत बधाई। वाह।
5: एक ही
0: सर।

0: खिलेगा।
1: और जश्न और गर्व कर देने वाली इन तस्वीरों के बाद चलिए सावन का उत्सव मनाता है, क्योंकि आज है दूसरा सोमवार, यानी कि महादेव की भक्ति में डूबने और उनकी कृपा पाने का एक और विशेष दिन। सावन का सोमवार सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि भोलेनाथ की साधना आराधना का वो अवसर है जब देश भर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। हर किसी के मन में बस एक ही भाव है, महादेव का दर्शन, उनका जलाभिषेक हो और भोलेनाथ की कृपा अपने और अपने परिवार पर बनी रहे।
2: और आस्था की यही अविरल धारा प्रयागराज से हरिद्वार तक, अयोध्या से देहरादून तक, दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई और गुवाहाटी तक दिखाई दे रही है। कहीं शिव भक्त बेलपत्र, धतूरा, भांग और दूब अर्पित कर रहे हैं तो कहीं कांवड़िए पवित्र नदियों से गंगा जल लेकर अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। हर कदम महादेव की भक्ति में, हर सुबह पर हर हर महादेव।

0: और हर दिल में बस यही प्रार्थना कि भोलेनाथ अपना आशीर्वाद बनाए रखें। देशभर के शिवालयों से आ रही तस्वीरें महादेव के प्रति करोड़ों शिव भक्तों की अटूट श्रद्धा और समर्पण की गवाही दे रही है।
1: सावन का महीना चल रहा है और यहाँ पर जो कांवर लेकर लोग हैं वो दारागंज के दशाश्वमेध घाट पर आए हैं। यहाँ पर जल भर रहे हैं, जल भरने के बाद पूजा पाठ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांवड़िए हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कांवड़ है सफल तरीके से यहाँ पर हो और अपनी जो गलती है उसकी माफ़ी मांगते हैं। फिलहाल दो तरह के कांवड़ होते हैं, एक डाक बम होता है और साधारण जो बम है वो यहाँ पर गंगा जल भरते हैं और गंगा जल भर के यहाँ पर जो लोग भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं। आप कहाँ से आए हैं?
2: प्रयागराज बलरामपुर से।
1: अच्छा, जल चढ़ाने जा रहे हैं, महाकाल से क्या कामना है?
2: कामना है कि परिवार में सब सुखी मंगल रहें और परिवार के सारे सदस्य भली भात से रहे, सुशोभित रहे, कष्ट कट जाए।
1: जल भर लिया है आपने?
2: जी जी जी, जल भर लिया।
1: अब कहाँ जाएंगे?
2: बनारस, काशी विश्वनाथ।
1: काशी विश्वनाथ जाएंगे। आप भी यहाँ पर आए, क्या कामना है?
3: हमारा कामना है भगवान हमको बढ़ी दे, बाप परिवार अच्छे से रहे और बस यही कामना है हमारा।
1: आप भी हैं यहाँ जा रहे हैं जल चढ़ाने?
2: जी जी हाँ।
1: क्या ईश्वर से कामना है भोलेनाथ?
2: ईश्वर से कामना है कि सब सब परिवार सब कुशल रहे, जीवन मंगलमय हो।
1: ये कांवड़ लेकर के जो भक्त हैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ दशाश्वमेध घाट से इन्होंने जल भरा है। आप देखिए, छोटा बच्चा भी है, कांवड़ लिए हैं और भगवान भोलेनाथ को यहाँ जल चढ़ाने जाएंगे। आप भी यहाँ पर हैं, क्या कहीं कांवड़ लेके जा रही हैं, भगवान भोलेनाथ से क्या कहेंगी?
4: बस ऐसे ही
1: परिवार के सुख।
4: हाँ, परिवार के सुख के लिए।
1: बच्चा भी जा रहा
4: है? बच्चा भी है साथ में।
1: बिल्कुल, यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है और जो भक्त हैं भगवान से अपनी गलती की माफी भी मांगेंगे और प्रयागराज से जल भर करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए ये कांवड़ लेकर सभी कांवड़ ये जा रहे हैं और अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। पंकज श्रेष्ठ, प्रयागराज, गुंडेश्वर।
0: और सावन में शिव भक्ति का रंग इस वक्त हर तरफ बिखरा नजर आ रहा है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों की ओर बढ़ते कांवड़ियों के जत्थे, सड़कों पर गूंजता बम भोले का जयकारा और हर कदम के साथ महादेव के प्रति आस्था और विश्वास और गहरा होता जा रहा है। लेकिन कांवड़ यात्रा में सिर्फ आस्था ही नहीं, भक्ति के अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं।
5: सावन का महीना पूरे एकदम पीक पर है, हर कांवड़िया प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पहुंच रहा है, लेकिन कांवड़ियों के कई अलग रंग और रूप भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे सामने ये डाक बम वाले कांवड़ियां हैं, इनकी खास बात यह है कि ये कहीं भी नहीं रुकेंगे, जल भरने के बाद सीधा अपने घाट यानी जहां पे शिवालय है वहां पे जाएंगे। इनके गले में देखिए ये डाक बम लिखा हुआ और सभी व्हाइट ड्रेस, यानी इनकी पहचान व्हाइट ड्रेस और एक झोला जिसमें डाक बम लिखा हुआ, इसका मतलब कि ये सब कहीं नहीं रुकेंगे और सीधा यहाँ से जल भरने के बाद ये सब सीधा अपने शिवालय में जाकर जलाभिषेक करेंगे। यानी डाक बम की ये पहचान है कि व्हाइट ड्रेस, पीछे झोला और उस पर डाक बम लिखा हुआ, तो इस तरह की ये पहचान है। और ये प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पहुँचे हैं ये लोग और दशाश्वमेध घाट पे पहुँच कर जल भरेंगे, अपने शिवालय पे जाकर ये जलाभिषेक करेंगे इस कामना के साथ कि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और ये सफलता को प्राप्त कर सके। आनंद राज, गुड न्यूज टुडे, प्रयागराज।
6: चलिए, ये रंग तो आप देख ही रहे हैं। अब आपको गणपति महोत्सव के रंग दिखाते हैं जो भले ही इस साल 14 सितंबर से आरंभ हो रहा है लेकिन तैयारियों की तस्वीरें खासकर महाराष्ट्र से सामने आने लगी हैं। भले ही गणपति उत्सव आज महाराष्ट्र से निकलकर देश भर में अपनी छटा बिखेर रहा है लेकिन महाराष्ट्र की धरती से शुरू हुआ गणेशोत्सव अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पुराने गणेश मंडलों की रौनक को लेकर काफी पॉपुलर है। इन्हीं में से एक है पुणे का श्रीमंत भाव साहब रंगारी गणपति मंडल, जहां इस बार के गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
7: और वैसे आपको ये भी बता दें कि गणपति मंडल ने ऐतिहासिक अगस्त क्रांति दिवस पर साल के गणेशोत्सव के लिए थीम रखा है और श्री गणेश सुवर्ण धाम, जिसके बाद पारंपरिक रूप से उत्सव मंडप के लिए भव्य वासा पूजन समारोह भी आयोजित हुआ और खास तौर से पिछले साल की तरह इस बार भी गणेशोत्सव को डीजे मुक्त रखने का संकल्प लिया गया है।

0: सावन में शहर शहर कांवड़ यात्रा के रंग निराले हैं। कहीं भक्त की धुन पर कदम ताल करते कांवड़ ये नजर आ रहे हैं, तो कहीं आस्था के साथ कुछ ऐसा अंदाज देखने को मिल रहा है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच ले रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर की सड़कों पर भी कांवड़ के ऐसे ही अनोखे रंग दिखाई दिए। आगे आगे पैदल चलते कांवड़िए और पीछे पीछे शान से चलती बुलडोजर वाली कांवड़। रंग बिरंगी रोशनी से सजी इस कांवड़ को देखने के लिए लोग सड़कों किनारे ठहर गए। इसी तरह सहारनपुर की सड़कों पर भी इन दिनों आस्था की रोशनी बिखरी हुई है। रात के समय रंग बिरंगी लाइट से सजी कांवड़ जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पूरा कांवड़ मार्ग रोशनी से जगमगा उठता है। इन कांवड़ों को अलग अलग रूप और थीम के साथ सजाया गया है। कहीं भोलेनाथ के अलग अलग स्वरूप दिख रहे हैं, तो कहीं शिव भक्ति से जुड़े मनमोहक दृश्य आस्था का रंग और गहरा कर दे रहे हैं। कांवड़ियों की ये सोच यात्रा को भक्ति के साथ साथ एक अलग ही रंग दे रही है। कांवड़ यात्रा में भक्ति और शक्ति के साथ अब क्रिएटिविटी का रंग भी खूब झलक रहा है। मुजफ्फरनगर में एक ऐसी अनोखी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है जो देखने में बाइक जैसी है और बैटरी से चलती है। इस पर बीटेक के छात्र अक्षय कुमार कांवड़ लेने निकले हैं।
1: मैंने तेज बाइक बनाई है जो कि बैटरी चलती है। इसमें मैंने 150 किलोमीटर की बैटरी लगाई है जो कि चार्ज हो जाती है करीबन 4 घंटे में। मैंने ये सोचा कि सब कांवड़ ले जा रहे हैं, एक ऐसी कांवड़ लेकर जाए जो दुनिया देखे।
0: शिव भक्ति में आस्था के रंग तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन फरीदाबाद में भक्ति का एक ऐसा रूप दिखा जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। संत प्रेमानंद जी का एक भक्त हरिद्वार से वृंदावन तक दंडवत कांवड़ लेकर निकला है।
2: कांवड़ तो कई आ गई, हर तरह की डाक कांवड़, विशाल कांवड़, झूला कांवड़, कलश कांवड़, हर तरह की कांवड़ लेकर आ गए। हमारी ये पहली कांवड़ है दंडवत यात्रा। हरिद्वार से वृंदावन धाम के लिए प्रेमानंद महाराज जी के स्वस्थ ठीक के लिए यात्रा है।
0: सावन में कांवड़ यात्रा सिर्फ गंगा जल लाने की परंपरा नहीं है, बल्कि आस्था, समर्पण और भक्ति के अलग अलग रंगों की तस्वीर भी है। ये भक्ति बताती है कि भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचने के रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही है, महादेव की भक्ति। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, सहारनपुर से राहुल कुमार और फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: कांवड़ यात्रा के अनोखे और अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे हमारा देश उत्सवों का देश है। कांवड़ यात्रा चल रही है, सावन चल रहा है, गणपति उत्सव आने वाला है और तैयारियां अभी से शुरू हो गई। सीधा आपको पुणे लिए चलते हैं, दिखाते हैं कैसी तैयारियां वहां चल रही हैं।
1: विघ्नहर्ता सिद्धिदाता भगवान गणपति की भक्ति भले ही सब जगह एक जैसी ही हो, लेकिन महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की रौनक के तो कहने ही क्या। 10 दिन के उल्लास और उत्साह को दर्शाने वाला महाराष्ट्र इस पर्व के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता के संदेश को बरसों से देता चला आ रहा है। यही वजह है कि दशकों से महाराष्ट्र की धरती पर हर तबके से जुड़े लोग इस 10 दिन की अवधि को बप्पा के आने की खुशी के रूप में मनाते आ रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में गणपति मंडल बने हैं जो हर साल गणपति महोत्सव की तैयारियां करते हैं। ऐसा ही एक गणपति मंडल है पुणे का श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल, जिसने 14 सितंबर से आरंभ हो रहे गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस गणपति मंडल ने क्रांति दिवस पर इस साल के गणेशोत्सव के लिए थीम रखी। श्री गणेश सुवर्ण धाम, जबकि पारंपरिक रूप से उत्सव मंडप के लिए वासा पूजन समारोह भी यहां आयोजित किया गया।
2: क्रांति दिन है आज और हमारे जो फाउंडर थे वो क्रांतिकारी थे और आज क्रांति दिन की निमित्त आज वासा पूजन भी और डेकोरेशन का अनावरण, ये दोनों चीजें हुए हैं। मुझे लगता है आज फर्स्ट टाइम पुणे में ऐसे LED स्क्रीन पे डेकोरेशन का अनावरण जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ है। और इस साल का अगर आप डेकोरेशन देखेंगे श्री सुवर्ण गणेश धाम, गणेश धाम मतलब गणेश नगरी, गणेश का घर, और सोने ये किया जा उनके माता पिता, उनके भाई, वो खुद यहाँ है ऐसा डेकोरेशन में दिखाया है। और मुझे श्योर हूँ कि मैं जो लाखों भाविक इस 10 दिन में इस जो ये गणपति श्रद्धा स्थान है उनके दर्शन करने आएंगे, तभी ये डेकोरेशन देखिए आनंद हो।
3: स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी ब्रिटिशांविरुद्ध
1: श्रीमंत बाहूसाहेब रंगारी गणपति मंडल के अनुसार उनका मंडल आजादी से काफी पहले से गणेशोत्सव का आयोजन करता आया है। इस उत्सव के दौरान परंपरा बरकरार रहे, उससे कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए खासतौर से DJ मुक्त रहने का भी संकल्प मंडल की तरफ से पिछले साल लिया गया था, जिससे यहाँ आने वाली खासकर यंग जनरेशन गणेशोत्सव से जुड़ी समृद्ध परंपरा के मर्म को समझे।
2: 2006 से अगर ये गणेश उत्सव को एक कैंसर, मैं तो कैंसर रोग जो लगा है वो है DJ। आज अन्नाभाऊ साठे जयंती होता है, अंबेडकर जयंती होती है, लहूजी वस्ताद की जयंती होती है, आप देखते हैं उसमें कि 10-11 साल के लड़के किस प्रकार की नाच करते, ये अपनी संस्कृति नहीं है। और मुझे लगता है कि ये DJ मुक्त होना ही चाहिए। पिछले साल 50 से 50 मंडल जो DJ पे थे वो कन्वर्ट हुए हैं। इस साल ऑलरेडी हमारे पास 25 से 30 मंडल कन्वर्ट होने को तैयार है पारंपरिक पे, और मुझे खातरी कि अगले 4-5 साल में पुणे का एक जो गणेश उत्सव ये 100% DJ मुक्त होगा।
1: बता दें कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में गणपति महोत्सव बरसों से महाराष्ट्र के सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है। कभी 1893 से सार्वजनिक रूप में विराजित किए गए गणपति बप्पा पंडालों से होते हुए बाद के सालों में घर घर विराजना शुरू हुए और तभी से इसने महाराष्ट्र में परंपरा का रूप ले लिया। इस साल यह उत्सव गणेश चतुर्थी यानी 14 सितंबर से आरंभ होकर 23 सितंबर यानी अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के साथ संपन्न होगा। इसलिए बुद्धि समृद्धि और विघ्नहर्ता स्वरूप की पारंपरिक पूजा अर्चना के प्रतीक इस पर्व का उल्लास अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: सावन की पहली फुहार, और कहते कि सावन में मोर नाचते हैं, लेकिन अब ये मोर यानी कहें कि भारत के मोर जिनेवा में नाचते नजर आएंगे। दरअसल भारत ने जिनेवा को 5 मोर गिफ्ट किए हैं और इसी के तहत कहा जा रहा है कि इस दोस्ती को और ज्यादा गहरा करने की कोशिश हो रही है।
4: बिल्कुल, देखिए सवाल अब ये खड़ा होता है कि आखिर ये भारत ने मोर यही क्यों चुने? क्या ये सिर्फ खूबसूरती का तोहफा दिया जा रहा है या इसके पीछे कूटनीति का कोई संदेश भी छिपा हुआ है? दरअसल इसे भारत की पीकॉक डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि भारत के राष्ट्र पक्षी के जरिए दुनिया को क्या संदेश दिया जा रहा है।
5: भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर अब स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मेहमान बनकर पहुंचे हैं। जेनेवा में यूएन के कैंपस में ये अपनी छटा बिखेरने के लिए तैयार है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र को मोर के रूप में शानदार तोहफा दिया गया है। एक खास कार्यक्रम में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की महानिदेशक ताचियाना वालोवाया को इन मोरों का अनूठा उपहार सौंपा। बता दें कि भारत ने 45 साल बाद यूएन को मोर गिफ्ट किया है। इस बार भारत की ओर से 5 मोर भेंट किए गए हैं। इनमें 4 नीले और 1 दुर्लभ सफेद मोर शामिल है। ये मोर महज भारत की ओर से यूएन को दिया गया सामान्य तोहफा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भारत और संयुक्त राष्ट्र के बरसों पुराने और लंबे रिश्ते की याद भी दिलाता है और आपसी सहयोग के इरादे को भी जाहिर करता है। इन मोरों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये कूटनीतिक रूप से दुनिया में बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण संरक्षण के मकसद से बढ़ावा देने में मददगार हो सकते हैं। असल में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जिस जगह पर स्थित है उसका मोरों से गहरा संबंध रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय है। ये जगह स्विट्जरलैंड के मशहूर कला प्रेमी गुस्ताव रेविलियोट की संपत्ति थी। 100 साल से ज्यादा वक्त तक ये इलाका मोरों की कुनबे से गुलजार रहा था। 1954 में यहाँ एक मोर काफी चर्चा में रहा था। वो वहाँ पहुँचे तत्कालीन सोवियत प्रतिनिधि मंडल की कार पर सवार हो गया था, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में आ गई थी। हालांकि बताया जाता है कि 1950 के दशक में यहाँ पर मोरों की आबादी घटने लगी थी, जिस पर चिंता भी जताई गई थी। वहीं 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली के चिड़ियाघर से मोरों का जोड़ा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को गिफ्ट में भेजा था। इसके 45 साल के बाद एक बार फिर भारत की ओर से यहां एक साथ 5 मोर भेजे गए हैं। भारत से भेजे गए मोरों को संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलहाल अस्थायी बाड़े में रखा गया है। ये मोर करीब 3 महीने तक यहाँ पर रहेंगे और इसके बाद इन्हें खुले में घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा। खबर है कि जल्दी ही इनके नामकरण के लिए यूएन की ओर से प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। मोर को सुंदरता और गरिमा का प्रतीक भी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के परिसर में इन्हें लाए जाने से यहाँ इनकी आबादी बढ़ने की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले अंतरिक्ष से भारत के लिए एक खास संदेश आया है। ये संदेश आया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। ISS पर मौजूद रूसी एस्ट्रोनॉट्स ने हाथ में तिरंगा लेकर भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही भारत और रूस की पुरानी अंतरिक्ष दोस्ती को याद भी किया है।
6: बिल्कुल, आपको बता दें कि ISS पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने भारत के लोगों के लिए शांति और खुशहाली की कामना की है और कहा है कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत रूस की दोस्ती काफी पुरानी है और इस दोस्ती की कहानी भी बेहद खास है।
7: Dear friends, today the Republic of India is celebrating its 80th Independence Day. 8 decades ago, India broke free from colonial rule and embarked on a path of self-reliance and prosperity. Significantly, this year also marks the 65th anniversary of the greatest feat of human space exploration, historic flight by Soviet cosmonaut Yuri Gagarin.
4: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कैसे अगस्त क्रांति के मूड में है इस बार मॉनसून।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: देश भर में सावन के दूसरे सोमवार की रौनक, शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी कतारें, भक्तिभाव से श्रद्धालु कर रहे महादेव का जलाभिषेक। सावन के पावन महीने में दिख रहे कांवड़ के अनोखे रंग, मेरठ में शिव भक्तों पर बुलडोजर से की गई पुष्प वर्षा, भागलपुर में खास अंदाज में सजाई गई बस। पाली के कलाकार की अनोखी शिव भक्ति, पीपल के पत्तों पर उकेरी महादेव की मनमोहक आकृति, शिव भक्ति के साथ दिखी राष्ट्र प्रेम की भी झलक। महाराष्ट्र के जालना में संत गजानन महाराज की पालकी का भव्य स्वागत, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन, समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का दिया संदेश। दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, कई इलाकों में हुई झमाझम बरसात, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत।
6: चलिए दिल्ली और एनसीआर में फाइनली बादल बरसे और अच्छे खासे बरस रहे। मौसम विभाग यही कह रहा है कि कल भी इसी तरीके से मौसम सुहावना रहेगा, तो जो आप लोगों के अरमान है बाहर से एंकरिंग करने के, एक दिन मैंने कर ली थी, आई थिंक अब आप दोनों जा सकती हैं, मैं स्टूडियो संभाल लूंगी।
7: बट पता क्या है, उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है, होगा नहीं होगा, हम तैयारी करके आ जाते हैं, इतने कॉस्ट्यूम्स लेके आते हैं।
8: आप ना रेनकोट, ये छतरी, जो भी चाहती हैं आप लेकर के आइएगा, और यहाँ से इवन इफ अगर हम शुरू भी कर देना, आप फौरन भाग जाइएगा बाहर, बाहर से आप शो करिएगा।
7: मतलब अगस्त में भी इसी तरह के मौसम के करवट जो है आपको दिखाई देंगे। अब तक देखिए दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में जमकर पानी बरसा है, आगे भी यही उम्मीद है।
6: तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में बादल बरस रहे हैं और इस बीच मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां तेज हैं, यानी कि आने वाले दिनों में कई इलाकों में मॉनसून मेहरबान रह सकता है। वैसे कई जगह पर बारिश लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रही है।
9: मौसम दिल्ली एनसीआर वालों पर मेहरबान है, मौसम नहीं चाहता कि दिल्ली एनसीआर वाले गर्मी झेलें, उमस बर्दाश्त करें। दो दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में इस वक्त झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है, बादल गरज रहे हैं और बारिश बहुत ही तेज इस वक्त आपको चारों तरफ दिल्ली एनसीआर में दिखाई पड़ेगी। हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पर, और पिछले दो दिन से जिस तरह से बारिश पर ब्रेक लग गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आज सुबह से उमस बहुत ज़्यादा थी, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, ऐसे में हर कोई आसमान की तरफ नजर गड़ाए बैठा था कि अगली बारिश कब होगी, कब आसमान में काले बादल छाएंगे। लेकिन अब सबकी उम्मीदों पर एक ब्रेक लगा है और फिर से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। कब तक ऐसी बारिश होती रहेगी? मौसम विभाग ने पहले ही साफ किया था कि 12 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में इसी तरह का मौसम बना रहेगा, रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। हालांकि सैटरडे और संडे के लिए ब्रेक ज़रूर था, लेकिन मंडे से फिर से एक बार भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दी थी। अब आज शाम से बारिश शुरू हो चुकी है और कल यानी कि 12 अगस्त को भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि उसके बाद फिर से मौसम एक बार करवट लेगा, उसके बाद फिर से एक बार लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल लोगों को गर्मी और उमस दोनों से ही राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। कैरावैन पवन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
8: और देखिए बारिश पहाड़ों पर भी खूब हो रही है, खासतौर से हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम का येलो और ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। ऐसे में कहीं आसमान में सफेद काले बादल नजर आ रहे हैं तो कोहरे ने भी हरे भरे पहाड़ों को अपनी आगोश में ले लिया है।
6: तो चलिए आपको दिखाते हैं तस्वीरें देहरादून, मंडी और मनाली की, जहां पर इस मानसूनी सीजन के दौरान ही ऐसी प्राकृतिक खूबसूरत तस्वीरें कैद की गई हैं जिन्हें देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा।
10: बारिश ने पहाड़ों को धुला तो कोहरे ने आगोश में लिया, फिर आसमान से उतरते बादलों ने पहाड़ों को अपना लिया। बस यही तो खूबसूरती पहाड़ों की फिजाओं में इन दिनों छाई हुई है। देहरादून में मूसलाधार बारिश का माहौल बना हुआ है, लेकिन इसी दौरान विशाल दून घाटी में बिछी कोहरे की चादर ये बताने के लिए काफी है कि मानसून अभी बाकी है। आसमान में घिराए काले बादल संकेत दे रहे हैं कि गरज चमक के साथ बारिश भारी होगी, इसलिए अगर आप देहरादून में रहते हैं तो इस मानसूनी बरसात का आनंद लें। बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो ही घर से बाहर एहतियात के साथ निकलें। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की खूबसूरती भी इन दिनों देखने लायक है। ऊपर से कोहरे की सफेद चादर से ढका मंडी का आसमान इस शहर की ब्यूटी में चार चांद लगा दे रहा है। ब्यास नदी किनारे बसे मंडी में भी मॉनसून की हरियाली नजर आ रही है। यहाँ भी मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, इसलिए अगर आप मंडी में रहते हैं तो एहतियात के साथ ही इस बरसाती मौसम को एंजॉय करें। आसमान से मौसम का कुछ ऐसा ही जादू मनाली में भी दिखा। हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत पिकनिक स्पॉट में घने कोहरे ने नजारा बेहद शानदार बना दिया है, जिसमें कोहरे से ढके पहाड़, घाटियां और हिमाचल की प्राकृतिक खूबसूरती दिल को खुश कर देने वाली है। देहरादून, मंडी और मनाली की ये बेपनाह खूबसूरती साफ बयां कर रही है कि कुछ मौसम देखे नहीं बल्कि सिर्फ महसूस किए जाते, जिसमें पहाड़ों की बादलों से नजदीकियां, कोहरे की खामोशी के बाद अचानक बारिश की बौछारें, बस यही इस मानसूनी सीजन का खास चक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: चलिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपको सुनाते हैं। 17 साल की उम्र, जब ज्यादातर बच्चे ना ये सोच रहे होते हैं कि आगे करना क्या है, आगे पढ़ना क्या है, कौन सा करियर चुनना है, उसी उम्र में तमिलनाडु के रोड के प्रणव इलांगो ने वो करके दिखाया है जिसका सपना हर छात्र देखता है। प्रणव को अमेरिका की प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है, लेकिन कहानी सिर्फ दाखिले की नहीं, प्रणव को करीब 3,55,00,000 रुपए की फुल स्कॉलरशिप भी मिली है।
8: और खास बात यह है कि इतनी बड़ी कामयाबी प्रणव ने महज 17 साल की उम्र में हासिल की है। ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में शामिल है, जहां दुनिया भर से बेहतरीन छात्र पढ़ने का सपना देखते हैं। प्रणव की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ एक एडमिशन की कहानी नहीं बल्कि मेहनत, लगन और बड़े सपने देखने की कहानी है।
6: तमिलनाडु के एरोड के 17 साल के प्रणव इलांगो ने वो कर दिखाया जिसका सपना देश के लाखों छात्र देखते हैं। प्रणव को अमेरिका के प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी में 3,55,00,000 रुपए का फुल स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन भी मिला है। इस स्कॉलरशिप में 4 साल की पढ़ाई के साथ साथ प्रणव के रहने और खाने पीने का खर्च भी शामिल है। ब्राउन यूनिवर्सिटी ने प्रणव पब्लिक हेल्थ एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की पढ़ाई करेंगे। खास बात यह है कि प्रणव को द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग से भी 100% स्कॉलरशिप का ऑफर मिला है। एरोड की सीएस एकेडमी के छात्र प्रणव ने महज 13 साल की उम्र में इंटरनेशनल करियर की तैयारी शुरू कर दी थी।
8: वो डेक्सटेरिटी ग्लोबल के नेशनल स्कॉलर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े, जहां उन्हें पढ़ाई के साथ लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रेनिंग मिली। प्रणव की उपलब्धियों में IGCSE मैथमेटिक्स में वर्ल्ड टॉपर बनना भी शामिल है, जिसके लिए उनका नाम आउटस्टैंडिंग कैम्ब्रिज लर्नर्स में दर्ज हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और डेटा में दिलचस्पी रखने वाले प्रणव अब टेक्नोलॉजी और पब्लिक हेल्थ को जोड़कर काम करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य खासतौर पर उन समुदायों के लिए डेटा आधारित समाधान तैयार करना है, जहां स्वास्थ्य और जरूरी संसाधनों की जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है।
7: तो चलिए आपको बताते हैं, जिनको नहीं पता कि आज वर्ल्ड लायन डे है, यानी जंगल के उस राजा का दिन है जिसकी एक दहाड़ पूरे जंगल में अपना रौब दिखाती है। लेकिन आज शेर की दहाड़ के साथ भारत से एक अच्छी खबर भी आई। देश में एशियाई शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सिर्फ संख्या ही नहीं, शेरों का प्राकृतिक पर्यावास यानी उनका जंगल बढ़ रहा है, और ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में शेरों को बचाने की कोशिशें रंग ला रही हैं।
6: बिल्कुल, आंकड़ों पर अगर गौर करें तो साल 2015 में भारत में 523 एशियाई शेर थे। 10 साल बाद यानी कि 2025 की बात करें तो इनकी संख्या बढ़कर 891 तक चली गई है, यानी कि 10 साल में करीब 70% की बढ़ोतरी। शेरों का इलाका भी बढ़ा है। 2015 में करीब 30,000 वर्ग किलोमीटर में शेरों का प्रवास था, अब ये बढ़कर करीब 35,000 वर्ग किलोमीटर में फैल गया है।
8: तो चलिए शेरों से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। दुनिया के ज्यादातर जंगली शेर अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में भी एशियाई शेर हैं। इनका सबसे बड़ा ठिकाना गुजरात का गीर जंगल है। शेरों के वजन की अगर बात करें तो नर शेर का वजन करीब 190 किलो तक हो सकता है, वहीं मादा शेर का औसत वजन करीब 126 किलो होता है। शेरों के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनके शरीर पर छोटे छोटे धब्बे होते हैं, जैसे कि जैसे जैसे शावक बड़े होते हैं ये निशान धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। नर शेर की पहचान उसकी अयाल से होती है। अयाल यानी उसके सिर और गर्दन के आसपास के लंबे बाल। उम्र बढ़ने के साथ ये अयाल और घनी हो सकती है। शेरों के बच्चों की परवरिश भी मिलजुल कर होती है। एक झुंड में कई शेरनियां और उनके बच्चे रहते हैं। खास बात यह है कि शेरनियां मिलकर बच्चों की देखभाल करती हैं। शेर बहुत ज्यादा अनुकूल रहने वाले जानवर हैं। वे बेहद सूखे इलाकों में भी रह सकते हैं, जैसे अफ्रीका का कालाहारी इलाका। यहाँ उन्हें पानी का बड़ा हिस्सा अपने शिकार से मिल जाता है।
7: बिल्कुल, देखिए शेर एक बार में करीब 40 किलो तक मांस खा सकते हैं, और मांस खाने में उनकी जीभ भी खास होती है। उनकी जीभ पर छोटे छोटे कांटों जैसे उभार होते हैं। शेर ज्यादातर रात में शिकार करते हैं क्योंकि उनकी आंखें अंधेरे में देखने के लिए बेहतर ढंग से काम करती हैं, लेकिन तूफान भी उनके लिए शिकार का अच्छा मौका हो जाता है। शिकार के दौरान शेरनियां भी अलग अलग जिम्मेदारी निभाती हैं, कुछ बीच से हमला करती हैं तो कुछ दोनों तरफ से शिकार को घेर लेती हैं। शेर बड़ी बिल्लियों की एक ऐसी प्रजाति है जो मिलकर दहाड़ते हैं। पूरा झुंड एक साथ दहाड़ सकता है। ये सामूहिक दहाड़ करीब 40 सेकंड्स तक चल सकती है और करीब 5 मील तक सुनी जा सकती है।
6: भारत में भले ही शेरों का कुनबा बढ़ा है, लेकिन दुनिया के जंगलों में शेरों की संख्या लगातार घट रही है। अनुमान यह है कि दुनिया में करीब 23,000 जंगली शेर ही बचे हैं, और पिछली 3 पीढ़ियों में अफ्रीकी शेरों की संख्या 40% से ज्यादा घटी है। शेरों के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जंगलों का कम होना, खेती और इंसानी बस्तियों का बढ़ना। तो आज वर्ल्ड लायन डे सिर्फ शेर की शान और उसकी दहाड़ का जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये भी समझने का दिन है कि शेर है तो जंगल है।
8: चलिए यहीं पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सर्जरी के दौरान सोनू निगम का गाना।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। गुड
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
6: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: सावन की शिवरात्रि का क्या है महत्व, सावन की शिवरात्रि का क्या है पूजा विधान और सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: जरा सोचिए, समंदर के किनारे खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखें और वहां आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे उड़ती दिखाई दे तो नजारा कैसा होगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहां आसमान ने जैसे रंगों की चादर ओढ़ ली हो।
6: बिल्कुल मौका था गालेफेस ग्रीन में आयोजित इंटरनेश्नल काइट फेस्टिवल का, जहां पर श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से आए काइट फ्लायर्स ने अपने हुनर का जलवा दिखाया। किसी की पतंग हाथी के आकार की थी तो कोई पांडा, सांप और पक्षियों के रूप में आसमान में उड़ती पतंग लेकर पहुंचा।
13: आसमान में लहराती पतंगों को तो आपने खूब देखा होगा और इंद्रधनुष की खूबसूरत छटा को भी, पर क्या हो जब पतंगों की दुनिया में इंद्रधनुषी रंग भी शामिल हो जाएं? ये कुछ ऐसा ही नजारा है जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है। तस्वीरें हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की। मौका था कोलंबो के गालेफेस ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का। इसमें विशाल काय पतंगों के साथ ही अलग अलग आकृतियों और रंगों वाली छोटी बड़ी पतंगें भी देखने को मिली। यहाँ हर किसी में उत्साह, उमंग और आसमान को छू लेने का जुनून नजर आ रहा था। श्रीलंका में आयोजित ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आए काइट फ्लायर्स ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार करीब 30 देशों के 80 अंतर्राष्ट्रीय काइट फ्लायर्स और 1500 से ज्यादा स्थानीय प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।
14: This is a beautiful kite festival. I've never seen anything like it. It's such a family-friendly festival, and right on the beach here, and the wind is beautiful, the people are beautiful, the weather's all beautiful.
13: Din hi nahi, is event ne raaton ko bhi roshan rakha. Raat mein aasman mein patangon ka shandaar nazara dikha. अंधेरे आसमान में रोशनी से जगमगाती पतंगों ने कोलंबो के स्काईलाइन को एक अलग ही अंदाज दे दिया। समंदर की लहरें, खुला आसमान और उसमें उड़ती सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे। कोलंबो का ये नजारा सिर्फ एक फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है बल्कि श्रीलंका की संस्कृति, रचनात्मकता और पर्यटन को दुनिया के सामने पेश करने की एक कोशिश भी है। कोलंबो का ये काइट फेस्टिवल श्रीलंका के पर्यटन अभियान को एक नया रंग देता दिखा। यहाँ पतंगों की डोर ने सिर्फ आसमान को नहीं छुआ बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को भी एक साथ जोड़ा, यानी कोलंबो में पतंगों के बहाने आसमान भी सजा और श्रीलंका ने दुनिया को अपनी खूबसूरती और संस्कृति की एक रंगीन झलक भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चाय पर चर्चा लगातार जारी है, अब देखते रहिए जीएनटी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
6: देखिए सोशल मीडिया अगर आप देखते हैं ना, तो आई एम श्योर कि ये वीडियो तो आपने देखा होगा। मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं सोनू निगम, गायकी हर किसी का दिल जीतती है उनकी। वो जो भी गाना गाते हैं उसमें इतना फील, इतना वॉइस मॉड्यूलेट कर लेते हैं कि जैसे गाना उन्हीं के लिए बना हो। हाल ही में सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर इनफैक्ट हमने ये वीडियो देखा है जिसमें वो हॉस्पिटल में अपनी एक सर्जरी के दौरान मेडिकल स्टाफ के लिए गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं।
7: बिल्कुल, वीडियो में सोनू निगम अस्पताल बेड पर देखे जा सकते हैं, उनकी सर्जरी चल रही है। तो वहीं सोनू अपने जमाने के मशहूर गायक मोहम्मद रफी का सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, ये गाना गा रहे हैं। दुलारी फिल्म का ये गाना है जो कि साल 1949 में आई थी।

Yeah.

0: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, मौसम एंजॉय कीजिए, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: सावन की शिवरात्रि का क्या है महत्व, सावन की शिवरात्रि का क्या है पूजा विधान, और सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देश भर में सावन के दूसरे सोमवार की रौनक, शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें, फूलों की बारिश से हो रहा कांवड़ियों का स्वागत। महाराष्ट्र के जालना में संत गजानन महाराज की पालकी का भव्य स्वागत, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सांस्कृतिक विरासत की दिखाई दी झलक। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मानसून के फुहारों के बीच में अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के। दिल्ली समेत NCR में मौसम की मेहरबानी बरकरार, कई इलाकों में हुई झमाझम बरसात, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। वर्ल्ड लाइन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन, समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का दिया संदेश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
3: नमस्कार, GNT स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज सावन का दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार पर संयोग बना है प्रदोष का। पावन सोमवार के इस मौके को पवित्र प्रदोष का संयोग भोले के भक्तों के लिए भक्ति का अनुपम अवसर लेकर आया है। यही वजह है कि देशभर के शिवालयों में रविवार आधी रात से ही भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। बाबा बैद्यनाथ, महाकाल, काशी विश्वनाथ जैसे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिरों में भोले के जयकारों और घंटों की टंकारों के साथ पुष्प, चंदन, धूप, अगरबत्ती की खुशबू से वातावरण ऐसे हो गया मानो पूरा स्वर्गलोक ही धरती पर उतर आया हो। सावन के दूसरे सोमवार को समूचा भारत शिवमय हो उठा। देशभर के प्रसिद्ध मंदिरों के भक्तिमय माहौल से रूबरू करवाती हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए।

0: सावन का पावन महीना भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। सावन महीने के सोमवार को तो देवाधिदेव की साक्षात कृपा धरती पर बरसती है। यही वजह है कि सावन के दूसरे सोमवार को पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के सभी शिवालयों में भोले के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दूसरे सोमवार को आधी रात से ही श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने परम आराध्य का अभिषेक करने के लिए मंदिरों के बाहर कतार में खड़े नजर आए। इस दौरान बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से समूचा वातावरण गुंजायमान हो उठा। झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम के प्रति भोले के भक्तों की असीम आस्था है। सावन के दूसरे सोमवार को इस विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने के लिए भारी संख्या में कांवड़िए बिहार के सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए यहां पहुंचे। बैद्यनाथ धाम में रविवार रात 12 बजे से ही भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई। आलम यह हो गया कि मंदिर परिसर से 10 किलोमीटर दूर तक श्रद्धालुओं की लंबी लाइन दिखी और पूरा देवघर शहर ही केसरिया रंग में रंग गया। सावन के दूसरे सोमवार को करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ का दर्शन और अभिषेक किया है।
1: हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। देवाधिदेव ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ हमारे बाबा बैद्यनाथ कामनारिंग ज्योतिर्लिंग के यहाँ आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार और विशेष रूप से आज 13 जो हो गया इससे और संयोग बढ़ जाता है। शिव जी का विशेष दिन बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जलार्पण रुद्राभिषेक पूजन भक्त लोग आ रहे हैं और बहुत अत्यधिक जो है जातियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और बाबा बैद्यनाथ से यही कामना करते हैं जो बाबा बैद्यनाथ कामना रिंग ज्योतिर्लिंग जो भक्त लोग इतना भाव पूर्वक आ रहे हैं उनकी कामना शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करे यही हमारे बाबा बैद्यनाथ से पूरे पुजारी परिवार के द्वारा हम लोग विनती बाबा से करते हैं जो जो भक्त अपने कामना लेके आ रहे हैं उनकी कामना शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा सवेतम सुरा सुरारा धृत पाद पद्म।

0: श्रावण मास के दूसरे सोमवार को उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़ इस कदर उमड़ी कि आम से लेकर खास श्रद्धालु तक सभी भोले की भक्ति में एकाकार हो गए। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए महाकाल भी तय समय से पहले जाग गए। तड़के 2:30 बजे ही गर्भगृह के पट खोल दिए गए। इसके बाद भस्म आरती की शुरुआत हुई। सबसे पहले भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस के पंचामृत से अभिषेक किया गया। अभिषेक पूजन के बाद मंदिर के पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया। सावन सोमवारी को भगवान के निराकार से साकार रूप को देखने के लिए हजारों भक्त मंदिर में उपस्थित थे।
1: आज श्रावण का दूसरा सोमवार था। आज बाबा को भोलेनाथ महाकाल महाराज को आज जल्दी पट खुलते, आज 2:30 बजे पट खुले। आज प्रदोष काल भी है, शिव प्रदोष में श्रावण माह में प्रदोष काल का महत्व है। प्रदोष काल में बाबा की आज पूजा हुई, बाबा का विशेष पूजन हुई। आज भगवान को पट खोलने के बाद स्नान कराए गए, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराए गए और भगवान को पंचामृत से अभिषेक किया गया। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से भी गंगा जल से स्नान कराया गया। केसर से, इत्र से, गन्ने का फलों का रस से स्नान कराया गया और बाबा को भी विशेष श्रृंगार किया गया। विशेष श्रृंगार के बाद बाबा को भस्म के बाद महाआरती की गई और आज महाआरती के बाद बाबा के हजारों लोग, लाखों लोग बाबा के महाकाल के दर्शन करने आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करें।
0: सावन के दूसरे सोमवार को महाकाल मंदिर में कई नामचीन हस्तियां भी भस्म आरती और श्रृंगार दर्शन के लिए पहुंची। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही कुंभ मेले के दौरान मशहूर हुई साध्वी हर्षा रिछारिया भी सावन सोमवारी को महाकाल का दर्शन कर पुण्य लाभ लेने के लिए उज्जैन पहुंची। दरअसल इस बार सावन सोमवार होने के साथ ही प्रदोष का भी महासंयोग बन गया, जिसकी वजह से महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा।
2: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मतलब अपना अभी आपको अनुभव बता ही नहीं सकती हूँ शब्दों में कि आज सावन का दूसरा सोमवार। मैं ज़्यादातर सावन में आने से बचती हूँ कि पता नहीं दर्शन कैसे होंगे, लेकिन महादेव को जिसको बुलाना होता है वो अपने बच्चे को खुद ही बुला लेते हैं और अपने दर्शन करवा देते हैं। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए और ये कांवड़ जो सबके कंधों पर हो गए, महेश्वर से आज महाकाल तक पहुंची, वो कांवड़ का जल आखिरकार महादेव पे चढ़ गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, आज सोम प्रदोष भी है और इसलिए आज का महत्व और ज्यादा हो जाता है। जहां आज कुछ लोग प्रदोष का व्रत और पूजा करेंगे, कुछ लोग सोमवार की पूजा और व्रत करेंगे, तो आज का योग बहुत अच्छा है और ऐसे में बाबा ने खुद बुला के अपने दर्शन करवाए हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

भगवान भोले की शाश्वत नगरी मानी जाने वाली काशी में तो सावन सोमवारी को काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई। मंदिर प्रशासन की ओर से कतार में खड़े भक्तों पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट खुलते ही कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और बोलबम की

0: लेकर हरिद्वार आते हैं और यहां बहने वाली गंगा की निर्मल धारा से पवित्र जल लेकर मनवांछित शिवालयों में पहुंचकर अपने आराध्य का अभिषेक करते हैं। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि सावन महीने में भगवान शिव हरिद्वार के कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन और जन कल्याण करते हैं। मान्यता है कि सावन महीने विशेष रूप से सोमवार को दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान भोले का अभिषेक करने से सारी मनोरथें पूरी हो जाती हैं। यही वजह है कि सावन के दूसरे सोमवार को दक्ष प्रजापति मंदिर में हर साल श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। खास बात यह है कि ये मंदिर पावन गंगा नदी किनारे स्थित है, इसलिए श्रद्धालुओं को अभिषेक का जल लेने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता।
1: सावन के सोमवार में यहाँ पर भोले बाबा विराजमान है और इनका ये ससुराल है। यहाँ पे राजा दक्ष की कर्म भूमि है। ये जब यज्ञ हुआ था तो इसमें माता सती हो गई थी। यहाँ पे ये सती माता का भी ये मायका है और भोले बाबा का ससुराल है। तो इनकी यहाँ पर सती माता से शादी हुई थी और तब से ये जब माता सती हो गई थी उसके बाद से वो यहाँ पे प्रकट हो गए थे। बहुत प्राचीन मंदिर है ये और हम तो यहाँ पे काफी सालों से आ रहे हैं। हमारा जन्म स्थान भी यही है, मायका भी यही है, ससुराल भी यही है। हाँ, उसका हाँ उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। भोले बाबा उसको हमेशा मतलब अपने चरणों में स्थान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं।
2: नाना प्रकार के लोग द्रव्य से भी भोलेनाथ को अभिषेक करते हैं। दूध, घी, दही, बेलपत्र, धतूरा, शहद इत्यादि का भोलेनाथ को अभिषेक करके भगवान को प्रसन्न करते हैं।
0: सावन के महीने में प्रयागराज में संगम स्थित मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ता है। सावन के दूसरे सोमवार को तो यहां आधी रात के बाद से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा। भारी संख्या में श्रद्धालु मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान भोले का अभिषेक करते दिखे। मान्यता है कि दशाश्वमेध घाट से जल लेकर मनकामेश्वर मंदिर में अभिषेक करने से भगवान भोले अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का भी विशेष महत्व है। यही वजह है कि भगवान भोले के कीर्तन की मंगल ध्वनि पूरे दिन मंदिर परिसर में गूंजती रही।

0: आज सावन का दूसरा सोमवार है, भोले बाबा की यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती, जो भी इनके दरवाजे पर आता है सबकी मनोकामनाएं बेल पत्र दूध दही घी शक्कर तहत पंचामृत धतूरा शमी और मदार का फूल मदार की पकड़ी। वैसे तो एक लोटा जल ही काफी है भोले बाबा को, सारी समस्या का हल एक लोटा जल।
1: ये मनका महेश्वर जैसे इनका नाम है, यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यहाँ पे सारे भक्तों का सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक की, भक्तों का ऐसे ही तांता लगा रहता है। जैसे भगवान हमारी मनोकामना पूरी करते वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय भोलेनाथ।
2: साफ है सावन के दूसरे सोमवार को पूरे दिन शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ता रहा है। भोले के भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के मुताबिक अपने आराध्य के दरबार में आधी रात से ही पहुंचने लगे और हर बार की तरह इस बार भी पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ उनका अभिषेक किया। पूरे दिन किसी भी वक्त मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार कमजोर नहीं पड़ी। देश भर के शिवालयों में श्रद्धा का अनुपम और अद्भुत रूप देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो इस बार सावन के दूसरे सोमवार को सचमुच महासंयोग बना है। सावन के सोमवार के साथ प्रदोष और प्रदोष के अवसान के साथ महाशिवरात्रि का मिलन। इस बार महाशिवरात्रि कई दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। कई ऐसे योग बन रहे हैं जो शिव के भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वैसे भी सावन की शिवरात्रि को भगवान भोले का अभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। दरअसल मान्यता यह है कि भगवान शिव ने जिस दिन विष पान किया था वो दिन सावन शिवरात्रि का ही था। विष से

उनके शरीर में जब जलन शुरू हुई तो देवताओं ने उनका शमन करने के लिए उनका अभिषेक किया। अभिषेक से उन्हें तत्काल लाभ हुआ, तभी से शिवलिंग के अभिषेक की परंपरा चल पड़ी।

0: इस बार सावन की शिवरात्रि पर मंगलवार का संयोग बना है। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है और मान्यता है कि शंकर ही केसरी नंदन है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। इस बार सावन में कई पावन संयोग बन रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को प्रदोष का महासंयोग बना। सोमवार और प्रदोष के अवसान का मिलन महाशिवरात्रि के साथ होने जा रहा है। साफ है कि सावन की शिवरात्रि के अति पावन मौके पर इस बार भगवान भोले की विशेष कृपा बरसने वाली है। इस बार सावन की शिवरात्रि मनोकामनाओं के पूर्ण होने का खास अवसर लेकर आ रही है। इस बार शिवरात्रि पर कई शुभ और दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जो भोले के भक्तों के लिए वरदान साबित होंगे। इस बार शिवरात्रि के मौके पर चंद्रमा पुनर्वसु के पश्चात पुष्य नक्षत्र से कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे गौरी योग का संयोग बनेगा। साथ ही इस बार शिवरात्रि के दिन चंद्रमा की युति सूर्य, बुध और गुरु के साथ होने से चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। गुरु और चंद्रमा साथ होने से गज केसरी योग भी बन रहा है। इस बार सावन शिवरात्रि पर शिव कृपा का लाभ सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा, लेकिन विशेष लाभ मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को मिलने वाला है। इस बार शिवरात्रि के दिन जो शिव भक्त अपने आराध्य की चारों पहर पूजा और अभिषेक करेंगे, उनके लिए चौतरफा लाभ का योग बन रहा है।
1: श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना बड़ी ही विशिष्ट फल देती है, चाहे वो मंत्र का जप हो, रुद्राभिषेक हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप हो, किसी भी तरीके से हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन हम पवित्र सरोवर का जल ला करके किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर में शिवलिंग पर अगर जलाभिषेक करते हैं तो उसका भी अलग पुण्य प्राप्त होता है। यदि इस दिन व्रत रह करके रात्र में, मध्य रात्र में, महानिशा काल में या चारों प्रहर में, रात के चारों प्रहर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए और विभिन्न वस्तुओं से, चाहे दूध से, साध से, पंचामृत से, गंगा जल से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के सुखों का वरदान देते हैं।
0: साफ है कि इस बार सावन की शिवरात्रि भोले भंडारी के भक्तों के लिए कई अलौकिक अवसर लिए हुए है। यही वजह है कि इस बार भोले के भक्त विशेष तौर पर कावड़ियों का उत्साह और उमंग अलग ही दिख रहा है। दरअसल शिव सृष्टि का आधार है। शिव सत्य है, आशुतोष है, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, आनंद हैं। शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु है और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी। शिव ज्ञान स्वरूप हैं, स्वर और संगीत के प्रणेता हैं। इनके डमरू से उत्पन्न नाद ही ब्रह्म है, अनादि हैं इसलिए अप्रमेय हैं। इसलिए शिव के दिव्य अलौकिक स्वरूप की अनुभूति उनकी चेतना का साक्षात तर्क यानी लॉजिक से संभव नहीं है। उसी अचिंत्य अप्रेम में अनादि शिव को सावन अत्यंत प्रिय है। सावन का शिवरात्रि महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत अवसर है। सावन की शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी बताया गया है।
1: ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, पवित्र मंदिरों में, प्रतिष्ठित मंदिरों में जाकर अभिषेक करते हैं या घर पर या नदी के किनारे कहीं भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की उपासना करते हैं तो अद्भुत परिणाम जीवन में प्राप्त होता है और व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सरलता पूर्वक कर लेता है।
0: सनातन धर्म में सावन का महीना अत्यंत पावन माना जाता है। वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का तत्व कण कण में ऐसे घुल जाता है कि मन की वीणा के तार से सिर्फ भक्ति के सुर निकलने लगते हैं। क्योंकि सावन का महीना शुरू होते ही पावस ऋतु अपनी पूर्ण रवानी में होती है, इसलिए प्रकृति भी मनमोहक हरियाली से खिल उठती है। हरियाली से ढकी धरती पर भगवान भोले के भक्त भगवा पोशाक में कांधे पर कांवड़ लेकर जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है भगवान भास्कर की रश्मियां किसी घने मनोरम उपवन का श्रृंगार कर रही हो। हिंदुस्तान में ये परंपरा अत्यंत प्राचीन है, सदियों से चली आ रही है। सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान भोले के अभिषेक का इतना ज्यादा महात्मय के पीछे देवासुर संग्राम की पौराणिक कथा को आधार माना जाता है। समुद्र मंथन के बाद कालकूट यानी हलाहल और अमृत दोनों का प्राकट्य हुआ। अमृत पाने की होड़ में देवताओं और असुरों के बीच संग्राम छिड़ गया, लेकिन विषपान के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सृष्टि के व्यापक कल्याण के लिए भगवान शिव ने हलाहल पीने की जिम्मेदारी उठाई। हलाहल पीने के बाद उसके प्रभाव से भगवान भोले का गला नीला पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का अभिषेक किया। देवताओं के अभिषेक से भगवान भोले को काफी लाभ हुआ और महादेव देवताओं पर अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से ये दिन सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था, तब से इसी तिथि को सावन की शिवरात्रि के तौर पर मनाने की परंपरा चल पड़ी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावन की शिवरात्रि को अभिषेक करने से भगवान भोले अभी भी उतने ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं।
1: शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से जो हलाहल निकला था उसको उसका पान कर लिए थे, इस कारण से उनका शरीर तप रहा था। भगवान शिव उस हलाहल विष को कंठ में धारण कर लिए थे, इस कारण से उनका मस्तक गर्म हो गया था। उनको शांति प्रदान करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको आराम प्रदान करने के लिए देवी देवता और मनुष्य सभी जलाभिषेक करते हैं। जिस कारण से भगवान शिव का जो शरीर की गर्मी है वह शांत होती है, तो समुद्र मंथन के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है।
0: इस बात का बेशक आपको कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार ना दिखे, लेकिन भगवान शिव के भक्तों का मानना है कि उन्हें सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान भोले का अभिषेक करने से प्रत्यक्ष लाभ की अनुभूति होती है। दरअसल भगवान भोले की भक्ति की शक्ति की अनुभूति तर्क का विषय है ही नहीं। सावन की शिवरात्रि को भगवान भोले का अभिषेक करने वाले जानते हैं कि इसका क्या लाभ होता है।
1: अगर हम श्रावण मास के शिवरात्रि की बात करें तो इस दिन जलाभिषेक करने से पवित्र सरोवर से जल ले जाकर के भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोले की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इसका मूल कारण जो है वो यही है कि समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल प्राप्त हुआ था उसे भगवान शिव ने विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए उसका पान कर लिया था भगवान शिव ने और उसको कंठ में धारण कर लिए थे। इसी कारण से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है और उसके बाद इनका शरीर गर्म हो गया, मस्तक गर्म हो गया। उसे शांति प्रदान करने के लिए, भगवान शिव को स्थिर करने के लिए जलाभिषेक करने का विधान आरंभ हुआ।
0: दरअसल ये दुनिया विश्वास की धुरी पर टिकी हुई है। विश्वास अगर अचल है तो उससे अद्भुत शक्ति मिलती है और यही शक्ति असंभव से असंभव कार्य की प्रेरणा बन जाती है। भोले के भक्तों का विश्वास है कि सावन की शिवरात्रि को जल अभिषेक करने से लोक परलोक दोनों सुधरता है। दरअसल सनातन के संगतों में शिवरात्रि की अद्भुत महिमा बताई गई है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन निशित काल यानी मध्यरात्रि की वेला में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ धरती पर विचरण करते हैं। यही वजह है कि शिवरात्रि की मध्यरात्रि को जल अभिषेक करने वालों को गौरी शंकर का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सावन की शिवरात्रि को भोले भंडारी की पूजा करने से कुंडली में मौजूद तमाम ग्रह दोष जैसे काल सर्प दोष, पितृ दोष और शनि दोष के अशुभ प्रभावों से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि की तिथि को किए गए दान पुण्य का भी शीघ्र लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए उम्मीद यही करते हैं कि महादेव यूं ही अपनी कृपा दृष्टि आप सब पर बनाए रखें। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: छात्रों ने अधिकारी को जबरन जमीन पर बिठाया। रांची छात्र आंदोलन का नया वीडियो क्यों हुआ वायरल? बांग्लादेश में हिंदुओं की जमीन कब्जा करने का सच। बच्ची की क्रिएटिविटी से बदली नोटबुक की दुनिया। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन की शिवरात्रि का क्या है महत्व? सावन की शिवरात्रि का क्या है पूजा विधान? और सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में सावन के दूसरे सोमवार की रौनक, शिवालय में शिव भक्तों की लंबी कतारें, फूलों से बारिश से हो रहा है कांवड़ियों का स्वागत। महाराष्ट्र के जालना में संत गजानन महाराज की पालकी का भव्य स्वागत, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मानसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का संदेश।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: मेरठ में बुलडोजर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, सिवाया टोल पर दिखारों का नजारा, 61 किलो फूलों से हुआ स्वागत। बुलडोजर पर सवार होकर परसाए गए फूल, हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों का भव्य स्वागत हुआ, कांवड़िए शिव भक्तों को केले और कोल्ड ड्रिंक भी बांटे गए। शिवरात्रि से पहले सड़कों पर बढ़ी कांवड़ियों की भीड़, दिल्ली एनसीआर में केसरिया रंग का सैलाब, तीसरी कक्षा का बच्चा भी लेकर आया कांवड़। ये बच्चों के साथ ऑटो में लेकर निकली कांवड़, ऑटो में सवार होकर दिल्ली से हरिद्वार पहुंचा पूरा परिवार। 18 दोस्तों की टोली ने भी उठाई कांवड़, मौज मस्ती के साथ भक्ति का रंग, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए पूरी की कांवड़ यात्रा। उत्तर प्रदेश के बागपत में महिला कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम, पूरा महादेव में पहली बार पिंक प्लान, पिंक शिविर और पिंक टॉयलेट तैयार। महिला अफसरों के हाथ सुरक्षा की कमान, हर पिंक शिविर में महिला अफसर तैनात। महिलाओं के लिए विशेष बसें तैनात, ई व्हीकल की सुविधा भी मिलेगी, कांवड़ मेले में दिखेगा पिंक पहरा। से केसरिया हुआ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, हर तरफ गूंज रहा है बम बोल के जयकारे, झूमते गाते नजर आए बाबा बैद्यनाथ के लिए कांवड़िए। चंदौली की कांवड़ियों ने जमाया भक्ति का रंग, प्लेटफॉर्म पर गूंज रहे हर हर महादेव के जयकारे। भागलपुर में बोलबम यात्रा में सजी बस बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, हर साल नए रंग रूप में सस्ती है बस। गंगाधाम से बाबा धाम तक का भक्तों का सफर, 26 साल से लगातार जारी अनोखी यात्रा। नागालैंड और बंगाल के शिव भक्तों का जोश आए, यात्रा मार के मंदिर मठों में दर्शन करते हुए नजर आए, जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं बाबा धाम। साइकिल से बोलबम यात्रा कर सिलीगुड़ी से बाबा धाम पहुंचे शिव भक्त अनिल पूर्वे, 7 दिन में 1300 किलोमीटर तक का सफर पूरा किया। सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ में करते हैं जलार्पण, महादेव की भक्ति में तय करते हैं लंबा सफर। वाराणसी के गौरी केदारेश्वर धाम में उमड़े शिव भक्त, बेलपत्र दूध और गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक। सावन में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए उमड़ा जनसला, भक्ति में डूबे हुए नजर आए शिव भक्त, विधि विधान से कर रहे हैं पूजा अर्चना। काशी के केदारनाथ घाट पर भी दिख रहा भक्ति का हर रंग, हर हर महादेव के जय घोष। आस्था और भक्ति में डूबी हुई नजर आई काशी, जलाभिषेक करके भक्त सुख समृद्धि की कर रहे हैं कामना। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर, गौरी केदारेश्वर धाम में दिख रहा है अद्भुत अलौकिक नजारा। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में उमड़ा शिव भक्तों का हुजूम, दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें। कांवड़ियों और डाक पंप से गुलजार हुआ धाम, जलाभिषेक को भक्तों ने जबरदस्त उत्साह बनाया। भक्तों ने किया जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक, बेलपत्र और फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना की बाबा विश्वनाथ धाम में, भक्ति चरम पर। टेहरी गढ़वाल के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालु ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सुबह से ही मंदिर में लगी हुई लंबी कतारें, भक्तों ने दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया। पूर्वी चंपारण के बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब, दर्शन करने के लिए लंबी कतारें। बाबा सोमेश्वरनाथ के जलाभिषेक करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं भक्त। हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हुआ मंदिर परिसर, बाबा सोमेश्वरनाथ की भक्ति में सरबोर नजर आए श्रद्धालु। सहारनपुर में भूतेश्वर बाबा के दरबार में भक्तों का तांता, शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे 50,000 से ज्यादा कांवड़िए। भूतेश्वर महादेव मंदिर की खास मान्यता, 40 दिन से जल चढ़ाने की पूरी होती है मुराद, जलाभिषेक के साथ दीपक जलाने की परंपरा। परंपरा सावन का अच्छा दूसरा सोमवार, जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की लगी है लंबी कतारें, हर ओर भोले के जयकारे। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ में हुई भव्य मंगला आरती, बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह से उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब, भक्तों पर बरसाए जा रहे हैं फूल। के प्राचीन सिद्धपीठ श्री सबली महादेव मंदिर में भक्तों का हुजूम, पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर जयकारों से गूंजा श्री सबली महादेव मंदिर का परिसर। सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक किया गया, सुबह से दर्शन करने के लिए लंबी कतारें। भगवान महाकाल का अभिषेक करने के बाद भव्य दिव्य श्रृंगार हुआ, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गुंजायमान। सावन के पहले दिन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी कतारें लगी हुई हैं, भक्तों ने लगाया हर हर महादेव के जयकारे। दूसरे सोमवार पर उज्जैन के महाकाल के दरबार में पहुंचे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, विधि विधान से पूजा। सावन के दूसरे सोमवार पर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब, भक्तों ने दुग्धाभिषेक किया। इस अवसर पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। गाजियाबाद में बाबा दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में शिव भक्तों का रेला, भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आए भक्त। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, बाबा भोले के नाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। बोलबम के जयघोष के साथ गूंजा नागेश्वरनाथ का मंदिर परिसर, शिव भक्तों से पटापड़ नजर आया मंदिर। सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का रेला, बेलपत्र अर्पित करके शिवलिंग पर जलाभिषेक। हर महादेव के जयकारों से गूंजा दशेश्वर महादेव का मंदिर परिसर। कानपुर में सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में उमड़ा भक्तों का मेला, श्रद्धालुओं ने आनंदेश्वर मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कुंभ नगरी प्रयागराज में भगवान आशुतोष के दर्शन को पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में भक्त। प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में भक्तों ने दुग्धाभिषेक किया। दिल्ली के शिवालयों में दूसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए सुबह से भक्तों की लंबी कतारें, बाबा की हुई विशेष पूजा। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतार है, लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन। गुवाहाटी में सावन के दूसरे सोमवार पर सुकरेश्वर मंदिर में भक्तों का लगा तांता, भक्तों ने विधि विधान के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा की। मुंबई में सावन के दूसरे सोमवार पर बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का झंझला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मुरादाबाद के दूसरे सोमवार को कामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का झंझला, सुबह से मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए लंबी कतारें। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में दूसरे सोमवार को लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। बाराबंकी में दूसरे सोमवार पर लोधेश्वर महादेव धाम में लगा पेला, भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया। मधेपुरा में सावन के दूसरे सोमवार पर मां गंगा की उतारी गई भव्य आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मधेपुर में दूसरे सोमवार पर सिंहेश्वर धाम पर लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने लगाया हर हर महादेव के जयकारे। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में सुबह से लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। लखीसराय के इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर में दूसरे सोमवार में श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। हापुड़ के श्री श्यामेश्वर महादेव में दूसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का झंझला। सीतापुर में श्यामनाथ मंदिर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, सुबह सुबह अधिकारियों ने मंदिर परिसर का जायजा लिया। रोहतास के गुप्ता धाम में 60,000 श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूजन किए, सुबह से लंबी कतारें। मनेर में सावन महोत्सव की धूम, पारंपरिक परिधान में जमकर झूमी महिलाएं। चित्रकूट में सावन के दूसरे सोमवार में शिव मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतारें, हर हर महादेव के जयकारे। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत, हेलीकॉप्टर से हुई भक्तों पर पुष्प वर्षा। औरैया में दूसरे सोमवार को भयानकनाथ मंदिर में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। रायसेन के सोमेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भक्तों का रेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पहाड़ों में सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों का उमड़ा आस्था का झंझला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। आखिरी सोमवार पर बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को बांटी गई खीर, भक्तों ने लगाए बोलबम के जयकारे। बद्रीनाथ में मॉनसून में टूटे यात्रा के रिकॉर्ड, 16,00,000 श्रद्धालु पहुंचे बद्री विशाल के दरबार। बाबा बद्री के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी कतारें लगी हुई हैं, जय बद्री के जयकारों की गूंज। अयोध्या में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, जगह जगह तैनात किए गए जवान। अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन से हो रही निगरानी, आने जाने वाले लोगों पर पुलिस से रखी जा रही है निगरानी। प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट शिव भक्तों से गुलजार, बड़ी संख्या में डाकबम कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। मुजफ्फरनगर के बीटेक छात्रा ने बनाई अनोखी कांवड़ बाइक, बाइक को देखने के लिए भारी भीड़। बीटेक छात्र ने महज 3 दिन में बना दी बाइक, 45,000 रुपए आया बाइक का बजट। पाली में शिव भक्ति का अनोखा अंदाज, पीपल के पत्तों पर रोकेरी भोलेनाथ की भव्य आकृति, इको फ्रेंडली रंगों से देते हैं नया रूप। पीपल के पत्ते बन रहे हैं कैनवस, कटर से महीन नक्काशी कर बनाते हैं आकृतियां। पीपल के पत्तों पर दिखाते हैं बारीक कला, शिव भक्ति ने बनाया हुनर का खास। जालना में संत गजानन महाराज की पालकी का भव्य स्वागत हुआ, दर्शन करने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। जालना में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, वारकरियों को गुलाब के फूल देकर सम्मानित किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पदक वीरों की प्रधानमंत्री ने की जमकर सराहना। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन से मुलाकात का एक वीडियो भी शेयर किया, खिलाड़ियों के चेहरों पर मुस्कान। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी को सुनाई अपने खेलों और अनुभव और संघर्ष की कहानी, प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। प्रधानमंत्री ने वीडियो साझा करके संदेश दिया, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीते 39 मेडल, जिसमें 13 स्वर्ण 17 रजत 9 कांस्य। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लगी लोगों की फरियाद, जल्द मामलों को निपटारे करने के आदेश। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला का निरीक्षण किया, मवेशियों को खाना खिलाया। अयोध्या में चंपतराय ने साधु संतों से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नागपुर में पूर्व सैनिकों ने निकाली तिरंगा यात्रा, 700 फीट की तिरंगा ने लगाया राष्ट्र अभियान। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जमकर लगे भारत माता के जयकारे। अगले साल 2027 में अजय देवगन का बड़ा धमाका, किल के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट संग एक्शन फिल्म के लिए मिलाया हाथ। सोनू निगम ने सर्जरी के बीच गाया मोहम्मद रफी का गाना, हॉस्पिटल बेड से शेयर किया वीडियो। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का कमाल, भारत में बनी नंबर वन हॉलीवुड फिल्म, कमाया 455 करोड़। राजा मौली की वाराणसी से रुद्र का धांसू फर्स्ट लुक निकलकर सामने आया, महेश बाबू के 51वें बर्थडे पर फैंस को दिया तोहफा। आकांक्षा चमोला ने मेटा से मांगी मदद, इंस्टाग्राम यूजर नेम से हटाना चाहती हैं गौरव का सरनेम, शेयर की स्टोरी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: सावन की शिवरात्रि का क्या है महत्व, सावन की शिवरात्रि का क्या है पूजा विधान, और सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: भारत के खूबसूरत मोर अब देश की सरहदों से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर जेनेवा में अपनी छटा बिखेरेंगे। जी हां, भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 5 मोर उपहार में दिए हैं जो अब जेनेवा स्थित यूएन परिसर की शोभा बढ़ाएंगे। इसे भारत की पीकॉक डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी के जरिए दुनिया को क्या संदेश दिया जा रहा है।
7: भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर अब स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मेहमान बनकर पहुंचे हैं। जेनेवा में यूएन के कैंपस में ये अपनी छटा बिखेरने के लिए तैयार है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र को मोर के रूप में शानदार तोहफा दिया गया है। एक खास कार्यक्रम में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की महानिदेशक ताचियाना वालोवाया को इन मोरों का अनूठा उपहार सौंपा। बता दें कि भारत ने 45 साल बाद यूएन को मोर गिफ्ट किया है। इस बार भारत की ओर से 5 मोर भेंट किए गए हैं। इनमें 4 नीले और 1 दुर्लभ सफेद मोर शामिल है। ये मोर महज भारत की ओर से यूएन को दिया गया सामान्य तोहफा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भारत और संयुक्त राष्ट्र के बरसों पुराने और लंबे रिश्ते की याद भी दिलाता है और आपसी सहयोग के इरादे को भी जाहिर करता है। इन मोरों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये कूटनीतिक रूप से दुनिया में बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण संरक्षण के मकसद से बढ़ावा देने में मददगार हो सकते हैं। असल में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जिस जगह पर स्थित है उसका मोरों से गहरा संबंध रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय है। ये जगह स्विट्जरलैंड के मशहूर कला प्रेमी गुस्ताव रेविलियोट की संपत्ति थी। 100 साल से ज्यादा वक्त तक ये इलाका मोरों के कुनबे से गुलजार रहा था। 1954 में यहाँ एक मोर काफी चर्चा में रहा था। वो वहाँ पहुँचे तत्कालीन सोवियत प्रतिनिधि मंडल की कार पर सवार हो गया था जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में आ गई थी। हालांकि बताया जाता है कि 1950 के दशक में यहां पर मोरों की आबादी घटने लगी थी जिस पर चिंता भी जताई गई थी। वहीं 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली के चिड़ियाघर से मोरों का जोड़ा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को गिफ्ट में भेजा था। इसके 45 साल के बाद एक बार फिर भारत की ओर से यहां एक साथ 5 मोर भेजे गए हैं। भारत से भेजे गए मोरों को संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलहाल अस्थायी बाड़े में रखा गया है। ये मोर करीब 3 महीने तक यहाँ पर रहेंगे और इसके बाद इन्हें खुले में घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा। खबर है कि जल्दी ही इनके नामकरण के लिए यूएन की ओर से प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। मोर को सुंदरता और गरिमा का प्रतीक भी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के परिसर में इन्हें लाए जाने से यहाँ इनकी आबादी बढ़ने की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: जरा सोचिए, समुद्र के किनारे खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखें और वहां आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई नजर आए, तो नजारा कैसा होगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहां आसमान ने जैसे रंगों की चादर ओढ़ ली हो। मौका था गाले फेसा ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का, जहां श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से आए काइट फ्लायर्स ने अपने हुनर का जलवा दिखाया।
8: आसमान में लहराती पतंगों को तो आपने खूब देखा होगा और इंद्रधनुष की खूबसूरत छटा को भी, पर क्या हो जब पतंगों की दुनिया में इंद्रधनुषी रंग भी शामिल हो जाएं? ये कुछ ऐसा ही नजारा है जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है। तस्वीरें हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की। मौका था कोलंबो के गाले फेस ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का। इसमें विशाल काय पतंगों के साथ ही अलग अलग आकृतियों और रंगों वाली छोटी बड़ी पतंगे भी देखने को मिली। यहाँ हर किसी में उत्साह, उमंग और आसमान को छू लेने का जुनून नजर आ रहा था। श्रीलंका में आयोजित ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आए काइट फ्लायर्स ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार करीब 30 देशों के 80 अंतर्राष्ट्रीय काइट फ्लायर्स और 1500 से ज्यादा स्थानीय प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।
9: This is a beautiful kite festival. I've never seen anything like it. It's such a family friendly festival and right on the beach here, and the wind is beautiful, the people are beautiful, the weather's all beautiful.
8: दिन ही नहीं, इस इवेंट ने रातों को भी रोशन रखा। रात में आसमान में पतंगों का शानदार नजारा दिखा। अंधेरे आसमान में रोशनी से जगमगाती पतंगों ने कोलंबो के स्काईलाइन को एक अलग ही अंदाज दे दिया। समंदर की लहरें, खुला आसमान और उसमें उड़ती सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे। कोलंबो का ये नजारा सिर्फ एक फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है, बल्कि श्रीलंका की संस्कृति, रचनात्मकता और पर्यटन को दुनिया के सामने पेश करने की एक कोशिश भी है। कोलंबो का ये काइट फेस्टिवल श्रीलंका के पर्यटन अभियान को एक नया रंग देता दिखा। यहाँ पतंगों की डोर ने सिर्फ आसमान को नहीं छुआ, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को भी एक साथ जोड़ा। यानी कोलंबो में पतंगों के बहाने आसमान भी सजा और श्रीलंका ने दुनिया को अपनी खूबसूरती और संस्कृति की एक रंगीन झलक भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
0: गुडनेस टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: छात्रों ने अधिकारी को जबरन जमीन पर बिठाया। रांची छात्र आंदोलन का नया वीडियो क्यों हुआ वायरल? बांग्लादेश में हिंदुओं की जमीन कब्जा करने का सच। बच्ची की क्रिएटिविटी से बदली नोटबुक की दुनिया। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
17: देश भर में सावन के दूसरे सोमवार की रौनक। शिवालय में शिव भक्तों की लंबी कतार, फूलों की बारिश से हो रहा कांवड़ियों का स्वागत। संत गजानन महाराज की पालकी का भव्य स्वागत, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मानसून के फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन, समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का दिया संदेश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
17: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झास। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। आज सावन का दूसरा सोमवार है, यानी कि महादेव की कृपा पाने का एक और विशेष दिन। सावन का सोमवार सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये दिन भगवान शिव की साधना आराधना को समर्पित है। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। सावन का दूसरा सोमवार शिवमय संसार। जी हाँ, देश भर के शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों में आज सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दिल्ली से लेकर काशी तक और उज्जैन से लेकर रामेश्वरम तक शिवालयों में आस्था और भक्ति की लहर देखने को मिल रही है। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। शहर शहर भक्ति की अविरल धारा बह रही है। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार, अयोध्या से लेकर देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, गुवाहाटी, तमाम जगहों पर मौजूद शिव मंदिरों में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शिव भक्त उमड़ रहे हैं। महादेव को प्रिय धतूरा, भांग, बेलपत्र, धूप चढ़ा रहे हैं। मनोकामना है कि महादेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। देश भर से कांवड़िए भी गंगा समेत पवित्र नदियों के जल लेकर यहां पर अपने आराध्य का जलाभिषेक करने शिवालयों की ओर पहुंच रहे हैं। सभी भक्तों की मनोकामना एक ही है, भोलेनाथ की कृपा उनके और उनके परिवार पर बनी रहे। देश भर के तमाम शिवालयों से आ रही ये तस्वीरें शिव भक्तों की अटूट श्रद्धा और समर्पण की गवाही दे रही है।
15: सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में सुबह से ही जो है भक्तों की भीड़ अलग अलग शिवालयों में जो है वो नजर आ रही है और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हर एक शिवालय की आपको देश भर से नजर आएगी। आज जल अभिषेक जो है वो किया जा रहा है, रुद्र अभिषेक किया जा रहा है और उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ गौरीशंकर मंदिर की, कि किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर आपको जल अभिषेक के लिए जो है वो नजर आ जाएगी। और अपने आप में एक महत्व है इस जल अभिषेक का और उसी को जानने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण पंडित जी इस वक्त मौजूद है, जो हमारे को बताएंगे कि किस तरीके का कैसा महत्व है, क्यों जरूरी है सावन के समय में जल अभिषेक। पंडित जी, सबसे पहला सवाल ही यही, भक्तों की भीड़ जो है इस वक्त वो जल अभिषेक करने के लिए क्यों इतना महत्व है कि जल अभिषेक होना बेहद जरूरी है?
18: ये जो मंदिर है भगवान श्री गौरी शंकर का, ये प्राचीन नहीं अति प्राचीन है और यहाँ जो भी आता है भगत उसकी कामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए लोगों की आस्था जन सैलाब उमड़ा हुआ है और सावन जो परम पवित्र पावन मास है, इसलिए लोग चाहते हैं कि बाबा का अभिषेक हो जाए, दर्शन हो जाए, जलाभिषेक हो जाए, अन्य अन्य कामनाओं से यहाँ आते हैं।
15: इस समय पे जो है भगवान शिव ने जो है विष ग्रहण किया था तो उसकी ताप बहुत ज्यादा थी और उसी ताप को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल चढ़ाया था, तो उसके बाद से ही जो है इस समय पे हर कोई भक्त जो है शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करता है ताकि उनका जो विष का जो ताप है वो कम हो सके।
17: एक तरफ आज सावन का दूसरा सोमवार और सोम प्रदोष का संयोग है तो वहीं अगले ही दिन यानी कि कल सावन की शिवरात्रि है, वो पवित्र दिन जब कांवड़िए महादेव का जलाभिषेक करेंगे और उनका संकल्प पूरा होगा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। सावन की शिवरात्रि पर महासंयोग। आपको बता दें कि शिवरात्रि के पवित्र दिन ज्यादातर कांवड़िए महादेव का जलाभिषेक करते हैं, जिसके लिए कांवड़िए पवित्र गंगा नदी से जल लेकर वापस अपने अपने शिवालयों की ओर निकल चुके हैं। हर हर महादेव के जयघोष के साथ कांवड़िए वापसी की ओर हैं और इस राह पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है।

0: आस्था का अद्भुत संसार, दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ियों का महामेला, जल लेकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे कांवड़िए, बस कुछ घंटे और फिर हर हर महादेव के जय घोष के बीच कांवड़िए अपने आराध्य भगवान शिव का महाअभिषेक करेंगे। कल सावन शिवरात्रि का महापर्व है, चतुर्दशी तिथि पर कांवड़िए महादेव का जलाभिषेक करते हैं, जिसके लिए कांवड़िए अब वापसी की राह पर हैं और जगह जगह उनका भव्य स्वागत हो रहा है। कोई पुष्प वर्षा से स्वागत कर रहा है तो कोई भव्य शिविरों में कांवड़ियों की सेवा कर रहा है। मुरादाबाद में कांवड़ लेकर गुजर रहे श्रद्धालुओं के स्वागत और सम्मान के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से खास इंतजाम किए गए। कांवड़ पथ पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई और फिर फल बांटे गए और भंडारे में खाना परोसा गया।
1: कांवड़ यात्री हैं वो गढ़ मुक्तेश्वर से और हरिद्वार से जल लाते हैं और यहाँ शिव मंदिर पर चढ़ाते हैं। इसका भाव ये होता है कि गंगा जी का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है और वो जल जब यहाँ के अन्य जल स्रोतों में जाता है तो उन जल स्रोतों में जा करके उन जल स्रोतों को भी पवित्र करता है। ये इसका एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है और साइंटिफिक एविडेंस भी है।
0: बागपत के ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर में इस बार कांवड़ यात्रा के बीच महिला कांवड़ियों के लिए खास पिंक प्लान तैयार किया गया है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचने वाली महिला कांवड़ियों के लिए मेला परिसर में अलग पिंक शिविर और पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। महिलाओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर के आसपास विशेष बसें भी तैनात हैं। और खास बात है कि महिला कांवड़ियों की सुरक्षा की कमान महिला अधिकारियों के हाथ में होगी।
2: कांवड़ियों की जो नंबर है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, उसके दृष्टिगत हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करी है, उनके लिए अलग से टेंट्स लगे हुए हैं रुकने के लिए।
0: शिव भक्ति के रंग तो शहर शहर खूब देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में भक्ति का एक ऐसा भव्य नजारा देखने के लिए मिला जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। मुजफ्फरनगर में एक ऐसी अनोखी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है जो देखने में बाइक जैसी है और बैटरी से चलती है। इस पर बीटेक के छात्र अक्षय कुमार कांवड़ लेकर निकले हैं। आस्था का ऐसा भव्य दिव्य नजारा संगम नगरी प्रयागराज में भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ महादेव के भक्त क्षमा याचना के बाद जल लेकर काशी विश्वनाथ का अभिषेक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भी हजारों श्रद्धालु रवाना हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कांवड़ियों से पटा है। ट्रेनों में सवार होकर हजारों की तादाद में शिव भक्त कांवड़ियों के जत्थे लगातार देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर रवाना हो रहे हैं। सावन में कांवड़ यात्रा महादेव की भक्ति के महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें हर दिन आस्था समर्पण और भक्ति की भव्य तस्वीर देखने के लिए मिलती है। ये भक्ति बताती है कि भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचने के रास्ते भले अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही है, शिव भक्ति। और कल शिवरात्रि के मौके पर महादेव के भक्तों का संकल्प भी पूरा हो जाएगा, जिसका उत्साह अभी से भक्तों में देखा जा सकता है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, सहारनपुर से राहुल कुमार और फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है और इस वर्ष बद्रीनाथ धाम में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा जिससे कि इस बार यात्रा के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस बार मानसून और सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच

0: इस वर्ष बद्रीनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने से यात्रा के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। आम तौर पर मानसून और सावन के महीने में यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ती है, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। इस साल अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं। सावन में कांवड़ियों की बढ़ती संख्या ने बद्रीनाथ यात्रा में एक बार फिर जबरदस्त उछाल ला दिया है। बद्रीनाथ धाम की सड़कों और बाजारों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है मानो यात्रा का मुख्य सीजन दोबारा लौट आया हो। मॉनसून की बारिश, बदलता मौसम और यात्रा मार्ग में आ रही चुनौतियां भी श्रद्धालुओं की आस्था को रोक नहीं पा रही है। बारिश की वजह से रास्ते बाधित होते हैं तो उन्हें जल्द खोलने के बाद यात्रा फिर रफ्तार पकड़ लेती है।
1: इस बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रही है। अब तक बद्रीनाथ धाम में 16 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। जहां इस समय बरसात और मानसून का समय चल रहा है, वहीं कांवड़ यात्रा भी चल रही है। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ कांवड़िए जो है वो भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुंचे हैं।
0: पिछले साल यात्रा सीजन में बद्रीनाथ धाम में करीब 18 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, लेकिन यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए इस बार ये रिकॉर्ड भी टूट सकता है। अभी नवंबर तक बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे, ऐसे में आने वाले महीनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। सावन के महीने में सबसे ज्यादा कांवड़िया इस बार बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। अब तक इस दौरान 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं। ऐसे में इस बार यहां की यात्रा ऐतिहासिक हो सकती है। आज पहाड़ों पर सावन के अंतिम सोमवार को मंदिरों में जबरदस्त रौनक दिखाई दे रही है। सुबह से ही जिले भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में आज बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं को सुबह सुबह भगवान बद्री विशाल के बाल भोग के रूप में खीर चढ़ाई गई और उसे प्रसाद के रूप में बांटा भी गया।
2: शिव भक्तों की सभी नारायण प्रेमियों की मंगल कामना के लिए महाभिषेक संपन्न करवाया गया। तदनंतर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा पायसान्न अर्थात खीर भोग का सभी श्रद्धालुओं को खीर भोग का वितरण किया गया।
0: नीति घाटी स्थित टिम्मर सैंड महादेव मंदिर में भी सावन के आखिरी सोमवार को श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिली। टिम्मर सैंड महादेव को उत्तराखंड का छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है। यहाँ शीतकाल में प्राकृतिक रूप से बर्फ की आकृति में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। सावन के अंतिम सोमवार पर यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच कर भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं।
1: आज सावन का आखिरी सोमवार मनाया जा रहा है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में आदि केदारेश्वर, नीची घाटी में टिम्बरसेन महादेव, कल्पेश्वर महादेव, ज्योतेश्वर महादेव और गोपीनाथ मंदिर के साथ रुद्रनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
0: अमल नयन सिलोड़ी, चमोली, गुड न्यूज टुडे।
3: और इस साल अयोध्या में 498 साल पुरानी परंपरा में बदलाव होने जा रहा है। इस साल पहली बार नागपंचमी की जगह सावन शुक्ल तृतीया से झूले पर विराजेंगे रामलला, यानी कि इस साल सावन का झूलनोत्सव श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नई परंपरा के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, नई परंपरा के साथ झूले पर विराजेंगे रामलला। जी हाँ, इस बार अयोध्या में नई परंपरा के साथ झूलनोत्सव मनाया जाएगा। पहली बार नागपंचमी नहीं बल्कि सावन शुक्ल तृतीया को झूलनोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 15 अगस्त की शाम 7 बजे झूलनोत्सव की शुरुआत होगी, यानी इस दिन रामलला झूले पर विराजमान

जेंगे। ये उत्सव अयोध्या में 12 दिनों तक चलेगा और इस बार इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की भी तैयारी की जा रही है। राम मंदिर में पहली बार रामलला के झूलन उत्सव का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इस दिन पूरे धूमधाम के साथ पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जो परिसर के उत्तरी द्वार से बाहर निकलकर मुख्य द्वार के सामने से होते हुए परकोटा व परिसर का भ्रमण करते हुए प्राचीन कुबेर टीला पर पहुंचेगी, जहां लगभग 2 घंटे का धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भगवान की पालकी यात्रा वापस गर्भगृह पहुंचेगी। यहां पर स्वर्ण जड़ित चांदी के हिंडोले पर रामलला झूला झूलेंगे। इस झूलनोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को सुबह से ही झूले पर विराजमान रामलला के दर्शन प्राप्त होंगे। सिर्फ दोपहर में कुछ देर के लिए दर्शन बंद होंगे, इसके बाद पुनः शयन काल में झूले पर बैठे रामलला के दर्शन हो पाएंगे। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होगा और इस जगह पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए हैं। अभी से लाल किले के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। इस बार सुरक्षा के लिए AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की हाईटेक सुरक्षा। जी हां, आपको बता दें कि सुरक्षा घेरे में इस बार फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS, बायोमेट्रिक्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और AI इंटीग्रेटेड CCTV कैमरों का पूरा इस्तेमाल दिल्ली पुलिस कर रही है।

0: 15 अगस्त देश के लिए बेहद खास दिन, वो दिन जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। इस दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए अभी से लाल किले के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। सुरक्षा घेरे में इस बार फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS, बायोमेट्रिक्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और AI इंटीग्रेटेड CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सुरक्षा का ऐसा हाईटेक पहरा है जिससे किसी भी अपराधी का बचकर निकल पाना मुश्किल होगा।
1: कि इस बार देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और उसके मद्देनजर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी पुख्ता कर दिए गए हैं। तो जो लोग 15 अगस्त को यहाँ आना चाहते हैं, लाल किले पर आना चाहते हैं, वो समय से आए, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो काफी पुख्ता होगी, जो चेकिंग है वो काफी ज्यादा सख्त होगी।
0: राजधानी दिल्ली में खासकर लाल किले के आसपास के इलाके में इस बार सुरक्षा व्यवस्था में AI तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। साथ ही करीब दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों समेत 20,000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं।
2: स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है वो भी वंदे मातरम है और इसीलिए यहाँ पे वंदे मातरम की ही थीम पे सारा प्रोग्राम होगा। और इसके अंदर जो सुरक्षा इंतजामों की अगर हम बात करें तो सुरक्षा इंतजाम काफी डिटेल में हम लोग काफी समय से तैयारी कर रही है दिल्ली पुलिस।
0: लाल किले और उसके आसपास 1,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से पूरे इलाके की लगातार निगरानी की जा रही है।
1: 1,000 CCTV का जो फीड है वो लगातार यहाँ पर आ रहा है और ये बस नॉर्मल CCTV फीड नहीं है, बल्कि इसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी जो है वो प्रयोग किया गया है। एनालिटिक्स की अलग टीम बनाई गई है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स की अलग टीम बनाई गई है।
0: और खास बात ये है कि कई कैमरे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स से लैस हैं, यानी कैमरे सिर्फ तस्वीर रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि तस्वीरों और गतिविधियों की जांच कर संदिग्ध गतिविधि या किसी अज्ञात वस्तु को पहचानने में मदद करेंगे।
1: जैसे सर ये स्क्वायर बन के आ रहा है तो ये किस तरीके से काम करता है और कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है?
3: सर इसकी जो सेटिंग है, कैमरे की सेटिंग और उसका जो ग्रेविटी नोटिस करी जाती है कि कितना एग्जैक्ट इसका मैच आता है, उस पर हम फिक्स कर देते हैं। अभी जैसे जिन लोगों का नाम एज वगैरह मेंशन हो रहा है कि इस एज ग्रुप के हैं, मेल है फीमेल है, इस तरह से आइडेंटिटी आती है।
0: जमीन पर ही नहीं, आसमान पर भी सुरक्षा की पैनी नजर है। लाल किले के आसपास एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। किसी भी बिना अनुमति वाले ड्रोन की गतिविधि को समय रहते डिटेक्ट करने और उससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं। यानी लाल किले की सुरक्षा का ये घेरा जमीन से लेकर आसमान तक बनाया गया है, जिसका मकसद साफ है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को लाल किले के आसपास पहुंचने से रोकना जो सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: स्वतंत्रता दिवस के जश्न की आहट अब महसूस की जाने लगी है। अकोला में 110 फीट से ज्यादा ऊंचे टावर पर तिरंगे का रंग सज गया है। शहर का लैंडमार्क घंटाघर तिरंगे की रोशनी से नहा उठा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। तिरंगे की रोशनी से जगमगाया अकोला का घंटाघर। जी हां, रात के अंधेरे में रोशनी बिखेरता है ये शहर का प्रमुख घंटाघर। स्वतंत्रता दिवस से पहले अकोला का ये प्रमुख लैंडमार्क पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंग चुका है। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान ने पिछले कुछ वर्षों में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को घर घर और जन जन तक पहुंचाने के लिए एक नई पहचान अब बना दी है। तिरंगा यात्रा हो, रैली हो या फिर सरकारी और सार्वजनिक इमारतों पर तिरंगे की रोशनी, देश के राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर अलग अलग शहरों में इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में अकोला नगर निगम ने भी 15 अगस्त से पहले घंटाघर टावर को तिरंगे की रोशनी से सजाया। 100 फीट से अधिक ऊंचाई वाले इस टावर पर जब तिरंगे के 3 रंग रोशन होते हैं तो पूरा परिसर देशभक्ति की रोशनी से जगमगा उठता है। ये रोशनी सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि तिरंगे की शान, देश की आजादी और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाने वाला संदेश भी दे रहा है। अकोला की सड़कों से गुजरने वाले लोग भी रात में इस रोशन टावर को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर खिलाड़ियों से मुलाकात की और सभी विजेता खिलाड़ियों का स्वागत किया और उनके साथ समय बिताया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सभी खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत की सराहना की। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने खेल के अनुभव और संघर्ष की कहानियां सुनाई। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। सीडब्ल्यूजी के धुरंधरों से प्रधानमंत्री की चाय पर चर्चा। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने मुलाकात के दौरान हमेशा की तरह खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। इस मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला।

0: मेरे यहां मुझे यहां लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूं, तो खिलाड़ी है।
1: मैं बहुत ज्यादा खुशी थे, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज्यादा था। पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो
0: बहुत बहुत बढ़िया।
2: सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा।
0: यानी मान के चलते हैं।
2: हाँ सर।
0: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
3: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था, और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
0: इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ, और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना, और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूं, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं।
3: जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे, और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट है, वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही।
4: वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर, 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे, और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था, तो मिलिट्री वाले को फोन आया कि भी पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था, उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूं, महा बोलो, मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
0: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया।
5: मेरे मन में भी धक धक धक धक हो रहा है।
0: आप चिंता मत कीजिए।
5: पर
0: आप जाए तो आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है।
5: मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी, भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी ते मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तू मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ।
0: दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे, और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
6: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
8: छात्रों ने अधिकारी को जबरन जमीन पर बिठाया, रांची छात्र आंदोलन का नया वीडियो क्यों हुआ वायरल, बांग्लादेश में हिंदुओं की जमीन कब्जा करने का सच, बच्ची की क्रिएटिविटी से बदली नोटबुक की दुनिया, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में सावन के दूसरे सोमवार की रौनक, शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी कतारें, फूलों की बारिश से हो रहा कांवड़ियों का स्वागत। महाराष्ट्र के जालना में संत गजानन महाराज की पालकी का भव्य स्वागत, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मॉनसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर फ्रेम को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसमें रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। इस वीडियो को इसी एंगल से लगातार वायरल किया जा रहा है, क्या है सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, क्या है इसकी सच्चाई आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: रांची में राज्य मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक चली मैराथन वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही। जेबीएससी और जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि रांची में आंदोलनकारी छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत के प्रशासन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद अधिकारियों को जमीन पर बैठकर छात्रों से बातचीत करनी पड़ी। क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
3: झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन से जोड़कर सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में जमीन पर बैठे छात्र अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए उन्हें भी अपने साथ जमीन पर बैठने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो रांची का है, जहां जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में विसंगतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने बंद कमरे में वार्ता से इनकार कर दिया, जिसके बाद एसडीओ और एडीएम को भी प्रदर्शनकारियों के बीच जमीन पर बैठकर खुली बातचीत करनी पड़ी। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं।
2: असल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो रांची का है, जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच्चा झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तस्वीरें देखी, जिसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की लिखित मंजूरी नहीं मिलती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 7 अगस्त से लेकर अब तक 6 राउंड से अधिक की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जानना जरूरी हो गया था। सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में मंत्रियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और छात्र संगठनों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वीडियो में जो दृश्य नजर आ रहे हैं वो किसी गेस्ट हाउस जैसे नहीं लग रहे हैं, ये किसी कॉलेज की बिल्डिंग जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि एसडीओ और एडीएम को जमीन पर बैठकर बातचीत के लिए मजबूर किया जाता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर किया जाने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम पेज पर यह वीडियो मिला। इसके कैप्शन में इसे धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का बताया गया था। वीडियो में यह भी जानकारी दी गई थी कि BBMKU में परीक्षा के नतीजों में देरी, लाइब्रेरी और बेंच की कमी तथा पानी और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने 11 सूत्रीय मांग पत्र रखा। इस दौरान बातचीत शुरू करने से पहले उन्होंने अधिकारियों से उनके साथ जमीन पर बैठने के लिए कहा। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन 27 जुलाई 2026 को हुआ था। सर्च के दौरान हमें झारखंड के कई स्थानीय मीडिया चैनलों पर भी इस वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जुलाई को विश्वविद्यालय में LLM की पढ़ाई शुरू करने, सेंट्रल लाइब्रेरी और लैब बनाने जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे AISA के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी थी। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो झारखंड के रांची का नहीं बल्कि धनबाद का है, जहां विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 27 जुलाई को वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तालाबंदी की थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और वीडियो में लाठी डंडे और कुंडाल से कुछ लोग एक ढांचे को गिरा रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि यह बांग्लादेश का वीडियो है जहां पर हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन ढांचे को गिरा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं हैं, लगातार ढांचे को गिराने में लगे रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां कट्टरपंथियों का एक गुट जबरन एक हिंदू परिवार की जमीन पर कब्जा कर रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को भी बख्शा नहीं गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन ढांचे को गिरा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं है, लगातार ढांचे को गिराने में लगे रहते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह भी कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का वीडियो है जहां कट्टरपंथियों का गुट जबरन हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया लगा। ऐसे में अगर वीडियो बांग्लादेश का बताकर वायरल किया जा रहा है तो इसमें असमिया क्यों सुनाई दे रही है। इसके अलावा हमने फिर से वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें ऐसा लगा कि ये दो गुटों के आपसी विवाद का मामला हो सकता है, क्योंकि हमें सर्च के दौरान इसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो बांग्लादेश के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें असम के एक फेसबुक पेज पर 29 जुलाई की एक पोस्ट मिली। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक असम के गोसाई गांव सब डिवीजन के उच्चतारी गांव में नूरुल खान और गनी शेख की अगुवाई वाले दो गुटों के बीच जमीन के पुराने विवाद को लेकर झड़प हुई थी। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें असम के कई स्थानीय न्यूज आउटलेट्स पर इस झड़प के बारे में वीडियो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार गनी शेख के ग्रुप ने नूरुल खान के उस घर को गिराने की कोशिश की जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बन रहा था। नूरुल खान के परिवार ने आरोप लगाया कि गनी शेख और उसके साथियों ने उनके निर्माणाधीन घर पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। परिवार ने शेख और उसके साथियों के खिलाफ जाँच और सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद पुलिस ने शेख और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने गोसाई गांव पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी नारायण बोरो से संपर्क किया। बातचीत के दौरान उन्होंने पुष्टि की कि हमलावर और पीड़ित दोनों में से कोई हिंदू नहीं था। FIR में 5 लोगों के नाम शामिल थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो का कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, ये वीडियो असम के गोसाई गाँव का है जहाँ जमीन के विवाद को लेकर दो मुस्लिम गुटों के बीच झड़प हो गयी थी। रिदीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: सावन का दूसरा सोमवार, शिव में हुआ सोमवार, भोले के संग कावड़ के रंग, कोल्हापुर में लालबाग चौराजा का आगमन, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपके लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: ये बेडरूम है।
7: एक छोटी बच्ची ने अपनी क्रिएटिविटी से एक साधारण सी नोटबुक को इतना खूबसूरत डॉल हाउस बना दिया कि उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। नोटबुक का हर पन्ना खुलते ही एक नए कमरे में बदल जाता है।
6: फिर ये बेडरूम में जाएगी।
7: वीडियो में देखा जा सकता है कि शुरुआत में नोटबुक का एक पेज गुड़िया के बेडरूम की तरह बनाया गया है। कमरे में एक छोटा सा बेड है जिसमें पेपर डॉल को अंदर रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, कागज से बने कवर को हटाकर गुड़िया को बाहर भी निकाला जा सकता है, यानी ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए भी बनाया गया है। इसके अगले पन्ने पर एक छोटी सी वार्डरोब बनाई गई है, इसमें गुड़िया के लिए अलग अलग कपड़े रखे गए हैं जिन्हें बाहर निकाल कर उसे पहनाया जा सकता है। बच्चे ने कपड़ों से लेकर अलमारी के दरवाजों तक हर चीज को काफी ध्यान से तैयार किया है। अलमारी के दरवाजे भी खुलते हैं और अंदर रखे छोटे छोटे कपड़े दिखाई देते हैं। इसके बाद नोटबुक में एक बाथरूम आता है, यहाँ छोटी सी शावर, सिंक और टॉयलेट तक बनाया गया है। पेपर डॉल को बाथरूम के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर खेला जा सकता है, इस वजह से पूरा सेट किसी छोटी सी प्लेसेट जैसा लगता है।
6: फिर ये किचन में जाएगी और फ्रिज से मैंगो निकालेगी।
7: नोटबुक आगे खुलती है तो एक प्यारा सा किचन दिखाई देता है, यहाँ गुड़िया के लिए छोटी डाइनिंग टेबल बनाई गई है जहाँ वो बैठ सकती है, साथ ही एक छोटा फ्रिज भी है जिसे खोला जा सकता है। हर कमरे में फर्नीचर और छोटी छोटी चीजों को अलग अलग रंगों से सजाया गया है जिससे पूरा डॉल हाउस काफी जीवंत नजर आता है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी चीज को बच्चे ने कागज, रंगों और अपनी कल्पना के सहारे तैयार किया है। इसमें ना कोई महंगा खिलौना है और ना ही किसी बड़े सेट की जरूरत पड़ी, बस एक नोटबुक और ढेर सारी क्रिएटिविटी से उसने अपने लिए पूरी छोटी सी दुनिया बना ली।

0: ब्राजील का ये प्यारा वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक 5 साल की बच्ची अपने क्लासमेट को लंच के समय खाना खिलाती नजर आ रही है। बच्चा बिना हाथों के पैदा हुआ है, इसलिए उसे खाना खाने में मदद की जरूरत पड़ती है। सबसे खास बात यह कि बच्ची ने उसकी मदद के लिए किसी के कहने का इंतजार नहीं किया, उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने दोस्त को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बच्ची के छोटे से काम में इतनी मासूमियत और अपनापन नजर आया कि वीडियो देखने वाले लोग भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए।
1: आप किसको करते हो ज्यादा प्यार?
2: देखो मामा को तो दोनों ही पसंद है।
1: दोनों ही पसंद हो? नहीं, एक एक की बात करो।
2: पर मम्मा आपको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
0: प्यारी सी बच्ची और उसकी माँ के बीच ये मजेदार बातचीत लोगों का दिल जीत रहा है। दरअसल जब माँ अपनी बेटी से पूछती है कि उसे पापा पसंद है या माँ, उसके बाद बच्ची ने जो जवाब दिया उसे सुनकर यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
1: आप किसको करते हो ज्यादा प्यार?
2: देखो मामा को तो दोनों ही पसंद है।
1: दोनों ही पसंद हो? नहीं, एक एक की बात करो।
2: पर मम्मा आपको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर पापा का जो प्यार है ना अलग ही है। मेरे को तो पापा को सोच के ही मेरे दिल में पता नहीं क्या ही जा रहा है।
1: क्या ही जा रहा है?
2: मतलब पापा ना मेरे फेवरेट है।
1: और मम्मा?
2: मम्मा थोड़ी कम है।
3: टू माइनस टू कितना होता है, यही तो पूछा था तुमसे और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है टू माइनस टू?
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग बच्चे के इस मासूम लॉजिक की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माँ अपनी छोटी बेटी को गणित पढ़ा रही है।
3: टू माइनस टू कितना होता है, यही तो पूछा था तुमसे और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है टू माइनस टू?
0: अपनी रोती हुई बेटी से पूछती है टू माइनस टू कितना होता है। बच्ची रोते हुए गलत जवाब देती है और कहती है 5।
3: क्या बच्चा?
0: ये सुनकर बच्ची को समझाने के लिए माँ एक आसान उदाहरण देती है। वो कहती है मानो मैंने तुम्हें लंच में 2 रोटी दी और तुमने वो दोनों खा ली, तब तुम्हारे पास क्या बचा? बच्ची रोते रोते पूरी मासूमियत से जवाब देती है सब्जी। बच्ची का मासूमियत भरा जवाब लोगों को खूब हंसा रहा है।
3: अभी तुम्हें लंच में मानो तुम्हें 2 रोटी दी मैंने, तुम्हें लंच में मैंने 2 रोटी दी और तुमने दोनों खा ली, तो क्या बचा?
2: सब्जी।
0: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है। इसमें एक पिता की बेटी के लिए की गई खास कोशिश नजर आती है। महंगे इंतजामों से दूर ये सरप्राइज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले लोग पिता के प्यार और सोच की तारीफ करते नहीं थक रहे। दरअसल पिता ट्रक चलाते हैं और काम की वजह से उनका काफी समय सड़क पर ही गुजरता है। ऐसे में बेटी के जन्मदिन पर किसी बड़े होटल या पार्टी हॉल में सेलिब्रेशन करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन बेटी की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा तरीका निकाला जिसने लोगों का दिल जीत लिया। पिता ने जिस ट्रक से वो अपना काम करते हैं उसी के अंदर बेटी के लिए छोटा सा बर्थडे सेटअप तैयार कर दिया। ट्रक को रंग बिरंगे गुब्बारों और लाइट से सजाया गया। इसके अलावा बेटी के लिए गिफ्ट भी रखे गए थे। वीडियो में ट्रक के अंदर का नजारा किसी छोटी सी बर्थडे पार्टी से कम नहीं लग रहा। जब बच्ची वहाँ पहुँचती है और अपने लिए इतनी खूबसूरत सजावट देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिता का ये सरप्राइज उसके लिए कितना खास है। एक टीचर ने अपनी क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को समझाने का ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर बच्चों को सिर्फ बोर्ड पर डायग्राम बनाकर या किताब की लाइनें पढ़कर समझाने के बजाय पूरा प्रयोग करके दिखाती हैं। इसके लिए क्लास की लाइट बंद कर दी जाती है और कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके बाद वो एक शीशे और लेजर बीम की मदद से बच्चों को समझाना शुरू करती हैं कि आखिर लाइट किसी सतह से टकराने के बाद किस तरह वापस लौटती है। लेजर की रोशनी जब शीशे पर पड़ती है तो वो दूसरी दिशा में वापस जाती हुई दिखाई देती है। इस पूरी प्रक्रिया को बच्चों के लिए और ज्यादा साफ तरीके से दिखाने के लिए हवा में पाउडर का इस्तेमाल भी किया गया। इससे लेजर बीम का रास्ता साफ नजर आने लगा। ऐसे में बच्चों को सिर्फ ये बताया नहीं गया कि प्रकाश कैसे रिफ्लेक्ट होता है, बल्कि उन्होंने अपनी आँखों से पूरी प्रक्रिया को होते हुए भी देखा। यही इस वीडियो की सबसे खास बात है। कई बार किताब में पढ़ी हुई कोई चीज कुछ देर बाद याद नहीं रहती, लेकिन जब उसे किसी प्रयोग के जरिए समझाया जाता है तो उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। इस टीचर ने भी कुछ ऐसा ही किया।

0: ट्रेन में सफर के दौरान अक्सर ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं जो बाद में यादगार बन जाती हैं। कुछ ऐसा एक स्केच आर्टिस्ट और टीटी के साथ हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर भावुक भी हो रहे हैं। दरअसल स्केच आर्टिस्ट आकाश सेल्वारासु ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर कर रहे थे। उनके पास जनरल क्लास का टिकट था और वो बाथरूम की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास बैठे हुए थे। इसी दौरान वहां टिकट चेक करने के लिए टीटी पहुंच गए। उन्होंने आकाश से टिकट मांगा। आकाश ने अपना जनरल टिकट दिखा दिया। स्लीपर कोच में जनरल टिकट पर सफर करने की वजह से टीटी ने रेलवे के नियमों के मुताबिक उनका जुर्माना काट दिया। इसके बाद टीटी ने अपने टैबलेट पर रेलवे का QR कोड दिखाकर उनसे जुर्माने की रकम ले ली और आगे बढ़ गए। देखने में ये बिल्कुल सामान्य टिकट चेकिंग की घटना थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टीटी के वहां से जाने के बाद आकाश के दिमाग में उनका चेहरा रह गया। उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल करने का फैसला किया और कुछ ही देर में टीटी का स्केच बनाना शुरू कर दिया। आकाश ने इतनी बारीकी से उनका चेहरा कागज पर उतारा कि तस्वीर देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कुछ देर बाद आकाश ने वो स्केच टीटी को जाकर दे दिया। पेंटिंग हाथ में आते ही टीटी ने हैरानी से पूछा कि मेरी पेंटिंग है? आकाश ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद टीटी ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। उन्होंने आकाश से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी की कि अगर संभव हो तो पेंटिंग को थोड़ा और बेहतर कर दें। आकाश ने उनकी बात मान ली और उन्होंने टीटी के स्केच को और निखारा और आखिर में उन्हें उनकी तस्वीर दोबारा सौंप दी। सबसे भावुक पल तब आया जब दोनों ने साथ में तस्वीर खिंचवाई। इस दौरान टीटी की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। शायद उनके लिए ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी बल्कि उस सफर की ऐसी याद थी जिसे वो लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे।
1: हम किधर जा रहे
2: हैं? आप
1: रेडी हो?
0: हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों की आदत होती है कि वे कभी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमेशा परिवार की जरूरतें ही सबसे पहले आती है। ईश्वर की नानी ने अपनी पूरी जिंदगी गांव और घर के कामकाज में बिता दी थी। उन्होंने न तो कभी हवाई जहाज देखा था और न ही कभी अपने घर से दूर किसी ट्रिप पर गई थी। पुरानी पीढ़ी के लोगों की आदत होती है कि वे कभी खुद के ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमेशा परिवार की जरूरतें ही सबसे पहले आती हैं।
2: तेरे को नींद हो जाए रे, हाँ? ये बेटी, तेरे को नींद बहुत आ रही है।
0: जब ईशा का परिवार इस काबिल बना कि वे घूमने फिरने का आनंद ले सके, तो ईशा ने तय किया कि इस बार पहला हक उनकी नानी का है। ईशा उन्हें पहली बार फ्लाइट से गोवा ले गई। एयरपोर्ट लाउंज के अनुभव से लेकर विमान की खिड़की से बाहर झांकने तक नानी के चेहरे का हावभाव देखने लायक था।
2: विमान से आए रहे, ट्रेन से नहीं आए रहे। आया मजा आया बाबा, अभी हम जा रहे हैं गोवा में मजा करने को।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: डेट।
9: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। सावन का दूसरा सोमवार, शिवालयों में लगी भक्तों की कतार। भोले के संग कांवड़ के रंग भी आपको दिखाएंगे, नन्हे कांवड़ियों की आस्था भी देखिए। और कोल्हापुर में लालबाग चौराहा का आगमन, तो पुणे में विनायक का अनूठा अवतार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
9: उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। देश भर में सावन के दूसरे सोमवार की रौनक, शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी कतारें, फूलों की बारिश से हो रहा कांवड़ियों का स्वागत,

से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी। मानसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार। घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान। ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्टर्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। वर्ल्ड लॉयन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन। समारोह में छात्रों ने हिस्सा लिया, शेरों के संरक्षण का संदेश दिया।

0: शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात श्रावण मास के दूसरे सोमवार की और इस खास मौके पर देवाधिदेव महादेव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही देश के तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मान्यता है कि सावन के सोमवार पर शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है और यही वजह है कि तमाम शिवालयों में आज आस्था का सैलाब देखने को मिला। कल सावन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि भी है जिसको लेकर शिव मंदिरों और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में खास तैयारी की गई है।
1: सावन का दूसरा सोमवार शिवालयों में लगी भक्तों की कतार, हर तरफ हो रही भगवान शिव की जय जयकार। आस्था और भक्ति का ऐसा अद्भुत और अलौकिक मंजर आज देश के तमाम छोटे बड़े और प्राचीन शिव मंदिरों में पूरे दिन देखने को मिला। जिसकी एक तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर से सामने आई जहां तड़के गर्भगृह के पट खोले गए और सबसे पहले भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया गया।

0: अभिषेक पूजन के बाद परंपरा के मुताबिक मंदिर के पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया। भगवान के निराकार से साकार रूप को देखने के लिए हजारों भक्त मंदिर में मौजूद रहे। श्रृंगार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। महानिवारिणी अखाड़े के महंतों ने भगवान महाकाल को भस्मीभूत किया। भस्मीभूत होने के बाद भस्म आरती हुई। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर घंटे, घड़ियाल, झांझ मजीरे, शंख और जयकारों से गूंज उठा। बाबा महाकाल के दरबार में क्या आम और क्या खास, बाबा के इस मनोहारी स्वरूप के दर्शन पाकर भक्त निहाल हो उठे।
1: प्रदोष काल में बाबा की आज पूजा हुई, बाबा का विशेष पूजन हुई। आज भगवान को पट खोलने के बाद स्नान कराए गए, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराए गए और भगवान को पंचामृत से अभिषेक किया गया। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से भी गंगा जल से स्नान कराया गया। केसर से, इत्र से, गन्ने का फलों का रस से स्नान कराया गया और बाबा को भी विशेष श्रृंगार किया गया। विशेष श्रृंगार के बाद बाबा को भस्म के बाद महाआरती की गई और आज महाआरती के बाद बाबा के हजारों लोग, लाखों लोग बाबा के महाकाल के दर्शन करने आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करें।
2: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मतलब अपना अभी आपको अनुभव बता ही नहीं सकती हूँ शब्दों में कि आज सावन का दूसरा सोमवार, मैं ज़्यादातर सावन में आने से बचती हूँ कि पता नहीं दर्शन कैसे होंगे, लेकिन महादेव को जिसको बुलाना होता है वो अपने बच्चे को खुद ही बुला लेते हैं और अपने दर्शन करवा देते हैं, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए।
0: उज्जैन की तरह ही काशी और देवघर में भी सावन के दूसरे सोमवार पर आस्थावान भक्तों का रेला नजर आया। सुबह मंदिरों में विशेष पूजा पाठ के बाद जल अभिषेक का जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरे दिन जारी रहा। बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़िए बाबा बैद्यनाथ और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंचे। इन शिव भक्तों में कोई गंगा जल और दूध लेकर आया, कोई बेलपत्र और धतूरा लेकर आया और कोई फूल और अक्षत अर्पित कराने के लिए लाया।
3: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रधान शिवलिंग काशी विश्वनाथ के दरबार के ठीक बाहर, गेट नंबर 4 के ठीक बाहर हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं कि आज सुबह से ही लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं, घंटों लाइन में लग रहे हैं और जल अर्पित कर रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ सावन के इस पावन माह में विश्वनाथ धाम में उमड़ रही है, इसको लेकर बहुत सारी तैयारियां भी की गई हैं। मंदिर में पेयजल, चिकित्सा, छांव, अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई है और लगातार श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे खाली पेट दर्शन न करें। तो वहीं बाढ़ को देखते हुए गंगा द्वार के रास्ते विश्वनाथ धाम में प्रवेश को भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है।
0: इस श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अत्यंत फलदायी और पवित्र मानी जाती है। यह महीना शिव भक्ति के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। यही वजह है कि आज शहर दर शहर शिव मंदिरों में पूजा पाठ के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, गाजियाबाद से लेकर हापुड़ तक और कानपुर से लेकर प्रयागराज तक लोग शिव भक्ति में लीन नजर आए। कोई परिवार संग पूजा पाठ के लिए मंदिर पहुंचा और कोई दोस्तों के साथ दर्शन और पूजन के लिए दौड़ा चला आया। किसी ने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की, किसी ने रोजी रोजगार में तरक्की के लिए प्रार्थना की और किसी ने अच्छे करियर के लिए भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा।
4: आज जल अभिषेक जो है वो किया जा रहा है, रुद्र अभिषेक किया जा रहा है और उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ गौरीशंकर मंदिर की, कि किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर आपको जल अभिषेक के लिए जो है वो नजर आ जाएगी।
5: यहाँ जो भी आता है भगत उसकी कामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए लोगों की आस्था जन सैलाब उमड़ा हुआ है और सावन जो परम पवित्र पावन मास है इसलिए लोग चाहते हैं कि बाबा का अभिषेक हो जाए, दर्शन हो जाए, जलाभिषेक हो जाए, अन्य कामनाओं से यहाँ आते हैं।
0: सावन महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। इस बार शिवरात्रि 11 तारीख यानी कल मनाई जाएगी। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसी कारण से ज्यादातर श्रद्धालु शिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक जरूर करते हैं। वहीं ये दिन रुद्राभिषेक कराने के लिए भी सबसे शुभ माना जाता है। कांवड़िए भी कांवड़ जल इसी दिन मंदिरों में चढ़ाते हैं, जिसे लेकर शिव मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है। खास बात यह है कि इस साल सावन शिवरात्रि पर एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। पंचांग के

0: दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देश भर से बेहद खूबसूरत तस्वीरें इसी तरीके से आ रही हैं। सावन का महीना, आज सावन का दूसरा सोमवार। बताते चलें कि इस बार सावन के महीने में चार सोमवार हैं, आज है दूसरा सोमवार। शिवालयों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। कल है महाशिवरात्रि का दिन, जिस दिन भक्त पहुंचेंगे शिवालयों में एक बार फिर से जलाभिषेक करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। सावन इस पावन महीने में शहर शहर कांवड़ यात्रा भी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर शिव मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ कांवड़ और कुछ कांवड़िए अपने अनोखेपन की वजह से लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। खासकर अगर हम पश्चिमी यूपी के शहरों की बात करें तो ये वो इलाका है जहां से होकर गुजरने वाली कांवड़ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इनमें कोई स्केटिंग करते हुए कांवड़ यात्रा पर निकला है, कोई बुलडोजर लेकर कांवड़ यात्रा पर निकला है, कोई संत प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की कामना लिए हुए आगे बढ़ चला है। एक कांवड़ ऐसे भी आपको इस रास्ते में नजर आएगी जहां पर बेटी की इच्छा पूरी होने पर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। तो ऐसी तमाम मनोकामनाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए भक्त निकल पड़े हैं कांवड़ यात्रा पर और कल शिवालय में पहुंचेंगे जलाभिषेक करने के लिए।

0: शिव भक्ति में मग्न ये कांवड़ यात्री सावन के महीने में आस्था और भक्ति का पर्याय बने हुए हैं। इनमें कोई पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकला है, कोई दूसरी और तीसरी बार निकला है और कोई कई वर्षों से सावन के महीने में ये कठिन यात्रा करता चला आ रहा है। इस साल भी श्रावण मास शुरू होते ही बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री माँ गंगा के पवित्र घाटों से जल लेकर शिवालयों की ओर निकले हैं। इनमें कई कांवड़ यात्री तो अपनी अनोखी कांवड़ को लेकर इन दिनों आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है नंदिनी और युगनागर, जो हरिद्वार से गाजियाबाद तक स्केटिंग करते हुए कांवड़ यात्रा कर रही हैं। उम्र भले ही कम है लेकिन इरादे बहुत मजबूत हैं। ये बच्चे अपने बाबा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें इन बच्चों के साथ उनके पिता भी चल रहे हैं।
1: मन में तमन्ना है कि हमारे बाबा की तबीयत सही हो। ये हमारी स्केटिंग कांवड़ यात्रा है, हरिद्वार हर की पैड़ी से हमने ये उठाई है। ये हमारी दूसरी कांवड़ यात्रा है।
0: अनोखी कांवड़ की लिस्ट में अगला नाम बीटेक के छात्र अक्षय का है, जो हरिद्वार से मेरठ के लिए निकले हैं। वो भी अपने हाथों से बनाई ई बाइक पर। अक्षय ने बताया कि उसने अपनी इस अनोखी कांवड़ को महज 3 दिन में तैयार किया, जिसमें मोटर, बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर और हेडलाइट लगी है। इसे हल्का रखने के लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया गया है। छात्र के अनुसार इस कांवड़ को तैयार करने में करीब 45,000 रुपए का खर्च आया है और ये एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 150 किलोमीटर तक चल सकती है। इसकी टॉप स्पीड करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा है।
2: बोले ये मैंने तेज बाइक बनाई है जो कि बैटरी चलती है। इसमें मैंने 150 किलोमीटर की बैटरी लगाई है जो कि चार्ज हो जाती है करीबन 4 घंटे में। मैंने ये सोचा कि सब कावड़ ले जा रहे हैं, एक ऐसी कावड़ लेकर जाए जो दुनिया देखे।
3: तो क्या खुद आपने इसको तैयार किया है?
2: हाँ बोले मैंने खुद इसको तैयार किया है। मैं एक बीटेक का स्टूडेंट हूँ और मैकेनिकल से मैंने बीटेक किया है।
0: वैसे तो उत्तराखंड से लेकर बिहार और झारखंड तक कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन जैसी रौनक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में दिखाई दे रही है वो अपने आप में अद्भुत है। बीते कुछ वर्षों की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा में बुलडोजर कांवड़ की काफी चर्चा है, जो देखने को मिली मुजफ्फरनगर में। हरिद्वार से गंगा जल लेकर 16 शिव भक्त बुलडोजर कांवड़ लेकर आए हैं और ये औघड़नाथ मंदिर में गंगा जल चढ़ाने जा रहे हैं।
3: मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा रहे हैं और बुलडोजर लेके आए हो?
4: मुख्यमंत्री जी हमें पसंद है, जो कार जो काम कर रहे
0: हैं। फरीदाबाद का रहने वाला एक युवक कांवड़ यात्रा के लिए जॉर्डन से नौकरी छोड़कर आया है। सरूरपुर गांव के रहने वाले 28 साल के रमन हरिद्वार से दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकले हैं और वो

0: चार लीटर गंगा जल से भरा कलश लेकर वृंदावन जा रहे हैं। रमन का कहना है कि वो प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए ये यात्रा कर रहे हैं और वृंदावन पहुंचकर उन्हें गंगा जल से स्नान कराना चाहते हैं। रमन के साथ उनके दो भाई और तीन दोस्त हैं जो दंडवत कांवड़ यात्रा में उनकी मदद कर रहे हैं।
1: 2020 से अभी तक हम कांवड़ लेने के लिए नहीं गए, बाहर जॉर्डन कंट्री में थे, वो काफी साल के बाद विचार आया दंडवत कांवड़ की यात्रा के लिए। हर साल
2: तो ये पहली बार
1: करके आप जा रहे हैं? हमारी पहली कांवड़ है। प्रेमानंद महाराज जी से हम 3 साल से जुड़े हुए हैं, काफी सुधार हुआ है तब से, बाबा जी से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो अंदर से ख्याल आया है कि 5 साल के बाद कांवड़ लेने भी गए, अंदर से ख्याल आया कि इस बार हमको दंडवत कांवड़ यात्रा करके वृंदावन धाम जाना चाहिए, बाबा जी से दर्शन करना चाहिए और पवित्र गंगा जल ले जाकर बाबा जी गंगा जल से स्नान करें।
0: कांवड़ यात्रा के लिए कोई पैदल चल रहा है, कोई दंडवत यात्रा कर रहा है, कोई देवी देवताओं से सजी कांवड़ लेकर चल रहा है, तो कोई किसी प्रसिद्ध मंदिर की थीम पर बनी कांवड़ लेकर चल रहा है। इनमें एक परिवार ऐसा भी है जो ऑटो से कांवड़ यात्रा पर निकला हुआ है, जबकि एक माँ अपने 2 साल के बच्चे के साथ कांवड़ यात्रा कर रही है।
3: जतिन मेरे साथ में है, ये ऑटो उनकी रोजी रोटी है, इसी के जरिए इनका परिवार चलता है। लेकिन सावन के महीने में इसी रोजी रोटी इसी ऑटो पर ये अपने परिवार को बैठा कर निकल पड़े हरिद्वार की तरफ, वहाँ से जल लिया और अब वापस जा रहे हैं। और कल शिवरात्रि है तो कल आप जल चढ़ाएंगे। कितने साल से जल लेकर आ रहे हैं?
4: मैं तो कम से कम 14 साल से ला रहा हूँ।
3: 14 साल?
4: हाँ, जब मैं छोटा स्कूल टाइम से, अब तो मेरे बच्चे भी साथ में जा रहे हैं मेरे।
3: भक्ति की शक्ति ऐसी है कि सफर किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए, कोई भी चीज इस सफर में बाधा नहीं बनती कभी। आप देखिए, मेरे साथ एक परिवार है और इनके साथ एक छोटा सा बच्चा है, ये उसे उसकी साइकिल में लेकर आए हैं, उसे साइकिल में बैठाते हैं, कभी साइकिल से खींचते हैं, कभी अपने गोद में ले लेते हैं और इस तरह से हरिद्वार से नोएडा तक की यात्रा ये पूरी कर चुके हैं। क्या नाम है आपका?
5: सुनीता।
3: सुनीता जी, कितना बड़ा बच्चा है आपका?
5: ये 2 साल 1.5 महीने का।
3: आपने इसकी मन्नत मांग रखी थी कि ये बच्चा होगा, अच्छे से रहेगा, तो फिर हम आपके पास आएंगे उसको लेकर।
5: जब हमारी मन्नत पूरी हो गई।
0: देवाधिदेव महादेव के प्रति इन शिव भक्त कांवड़ियों का अटूट विश्वास ही इस मुश्किल यात्रा को आसान बनाता है। चाहे कितनी भी परेशानी और चुनौती आए, भोले के ये भक्त इसी उत्साह और जोश के साथ कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और महादेव का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, फरीदाबाद से सचिन गौड़ और नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बात बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश की। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। गणपति के जन्मोत्सव की तैयारियां अभी से ही जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि करीब 1 महीने पहले ही परंपरा के मुताबिक कोल्हापुर चाराजा और पुणे में गोल सर्कल मित्र मंडल के गणपति का आगमन हो चुका है। गजानन गणपति, विनायक, गौरी पुत्रियां, विघ्नहर्ता, सच्चे मन से जिस नाम से बप्पा को पुकारा जाए वो अपने भक्तों को उसी नाम से दर्शन देते हैं और उनके दुख हरने में देरी नहीं लगाते। 10 दिन के गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश के नामों का स्मरण करने मात्र से भी भक्तों के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं।

0: अगर सच्चे मन से याद किया जाए तो गौरी नंदन भगवान विनायक गणेश चतुर्थी से एक महीने पहले भी अपने भक्तों को दर्शन के लिए आ सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति में आखंड डूबे भक्त अगर शुद्ध निश्चल मन से बप्पा को पुकारे तो वो अपने भक्तों का दुख हरने में देरी नहीं करते। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेशोत्सव से करीब एक महीने पहले ही कोल्हापुर चा राजा पधार चुके हैं। बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ हजारों की संख्या में गौरी पुत्र भगवान गजानन के स्वागत के लिए सड़कों पर दिखे। ढोल ताशों की गूंज के बीच प्राचीन शहर कोल्हापुर का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया, जिससे 10 दिनों के गणेश उत्सव से पहले शहर में त्योहार की शुरुआत हो गई। भगवान गणेश के नामों का स्मरण करने मात्र से भी भक्तों के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक गणपति के जन्मोत्सव के मौके पर बप्पा की भक्ति का रस सिर्फ मुंबई के दिव्य और भव्य गणेश पंडालों तक सीमित नहीं है, बल्कि कोल्हापुर में भी गोल सर्कल मित्र मंडल की तरफ से पिछले कई वर्षों से लालबाग के राजा के रूप में गणेश मूर्ति की प्रतिष्ठापना की जाती है। श्रद्धा और भक्ति के इस भाव की वजह से कोल्हापुर में रहने वाले गणेश भक्तों को लालबाग के राजा के दर्शन के लिए मुंबई तक करीब 400 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ती।
1: गणेश जयंती अगले महीने में है, लेकिन कोल्हापुर का राजा जो हमारा गणेश फेस्टिवल का गणपति है उसका आगमन आज होने जा रहा है और लाखों लोगों की उपस्थिति में उसका हम स्वागत कर रहे हैं।
0: चौदह फुट ऊंची गणेश प्रतिमा की एक झलक पाने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के स्वरूप वाली इस प्रतिमा के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जिसकी वजह से पूरा शहर गणेश भक्ति में डूब गया। गणेश आस्था से जुड़ी कुछ ऐसी ही तस्वीर पुणे में भी दिखी, जब गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारों से पूरा शहर गूंज पड़ा। वहाँ भी 10 दिनों के गणेशोत्सव से करीब एक महीने पहले श्रीमंत भाव साहेब रंगारी गणपति मंडल से जुड़े विघ्नहर्ता का आगमन हुआ। भारतीय संस्कृति, उत्साह और उत्सव के प्रतीक ढोल ताशों की गूंज के बीच भगवान गणेश की ऐतिहासिक मूर्ति लकड़ी और भूसे से बनी है। स्थापना के बाद से आज तक इस अनोखी मूर्ति के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है। अपने इस अनोखे स्वरूप में बप्पा एक राक्षस का वध करते हुए दिखाई देते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों के संघर्ष का प्रतीक है। इस उत्सव की शुरुआत केवल एक धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरूकता जगाने के लिए की थी। ऐतिहासिक परंपराओं को संजोए हुए इस ऐतिहासिक उत्सव को पहली बार तकनीक से जोड़ा गया है।
2: क्रांति दिन है आज, और हमारे जो फाउंडर थे वो क्रांतिकारी थे, और आज क्रांति दिन के निमित्त आज वासा पूजन भी और डेकोरेशन का अनावरण, ये दोनों चीज़ें हुए हैं। मुझे लगता है आज फर्स्ट टाइम पूना में ऐसी LED स्क्रीन पे डेकोरेशन का अनावरण जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ है। और आज इस साल का अगर आप डेकोरेशन देखेंगे, श्री सुवर्ण गणेश धाम, गणेश धाम मतलब गणेश नगरी, गणेश का घर, और सोने ये किया जा उनके माता पिता, उनके भाई, वो खुद यहाँ है, ऐसा डेकोरेशन में दिखाया है। और मुझे श्योर हूँ कि मैं जो लाखों भाविक इस 10 दिन में इस जो ये गणपति श्रद्धा स्थान है उनके दर्शन करने आएंगे, तभी ये डेकोरेशन देखिए आनंद होगा।
0: हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से यह पर्व शुरू होता है और इसका समापन चतुर्दशी के दिन होता है। 10 दिनों के इस उत्सव में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश से सुख शांति के आशीर्वाद की कामना की जाती है। पूरे विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है। बप्पा के भक्त अपने आराध्य की पूजा के साथ बप्पा के गुणों और उनकी तारीफ से मिलने वाले संदेश को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग स्वरूपों में गौरी नंदन अपने भक्तों की राह में आने वाले विघ्न को हरने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के तमाम रंग पूरे देश में किस तरीके से रौनक है ये सब आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कल दिन भर रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
5: को सावन की शिवरात्रि का क्या है महत्व, सावन की शिवरात्रि का क्या है पूजा विधान, और सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सावन की शिवरात्रि की, इसके पूजा विधान की, साथ ही साथ बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, प्रातः 10:09 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्र, बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन की शिवरात्रि के बारे में। क्या है शिवरात्रि का पर्व और इसकी महिमा क्या है? देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है और सामान्यतः शिवरात्रि को चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन प्रकाश के लिंग के रूप में शिव जी का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल सकता है। शिवरात्रि पर व्रत उपवास, मंत्र जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन का महीना चूंकि शिव जी का महीना है इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। सावन की शिवरात्रि पर लोग पवित्र नदियों से जल भर करके लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और ऐसा मानते हैं कि कांवर में जल भर के लाने से और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से पापों का प्रायश्चित होता है। मेष राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, करियर में आपके दबाव बढ़ेगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें,
गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, नया काम कर सकते हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। शिव जी को बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब सावन की शिवरात्रि पर शिव जी की उपासना कैसे करेंगे? स्नान करके शिव जी की पूजा का संकल्प लीजिएगा। दोपहर 12 बजे के पहले शिव जी को जल अर्पित करें और इसके बाद धूप, दीप, फल, मिठाई, पुष्प, इन वस्तुओं से पूजन करिए शिव जी का और शिव जी के मंत्रों का जप करिए। शिवरात्रि की रात में शिव मंत्रों का जप करिए। इसके अलावा रुद्राष्टक या शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर चार पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजा करें और हर पहर में शिव जी को जल अवश्य अर्पित करिएगा। उसका महत्व सबसे ज्यादा है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की हानि हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, धन लाभ के योग हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे। शिवलिंग पर अपनी आयु के बराबर बेलपत्र अर्पित करिए। एक एक करके बेलपत्र अर्पित करिएगा
और हर बेल पत्र के साथ नमः शिवाय कहिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए क्या उपाय करेंगे? शिवरात्रि पर जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल में या रात के समय में 11 घी के दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से मनचाहे रोजगार की और नौकरी की प्राप्ति होगी। बेहतर स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए क्या करेंगे? इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। चंदन का इत्र हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जल अर्पित करिएगा। इसके बाद मंदिर में बैठकर या घर पर आकर ओम जूम सह माम पालय पालय, ओम जूम सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और संभव हो तो शिवलिंग से स्पर्श कराकर एक रुद्राक्ष का दाना या एक रुद्राक्ष की माला गले में धारण करिएगा। स्वास्थ्य और आयु में सुधार होगा। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सावन की शिवरात्रि पर शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब जान लेते हैं 11 अगस्त मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: श्रावण के दूसरे सोमवार पर उज्जैन में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। राजाधिराज बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले तो पूरा शहर शिवमय नजर आया। चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप और हाथी पर मनमहेश स्वरूप में बाबा ने भक्तों को दर्शन दिए। महाकाल मंदिर में विधि विधान से पूजा के साथ ही शुरू हुई राजाधिराज बाबा महाकाल की शाही सवारी। चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा महाकाल जब मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो पुलिस के सशस्त्र जवानों ने बैंड की धुन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इस शाही सवारी में भक्ति के रंग खूब नजर आए। कहीं डमरू और झाल मंजीरों की गूंज थी तो कहीं भजन मंडलियां बाबा की भक्ति में लीन नजर आई। सवारी मार्ग पर जिधर नजर जाए इधर आस्था का सैलाब दिखाई दिया। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर अपने आराध्य का स्वागत किया और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। करीब 7 किलोमीटर की इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। लोक कलाकारों की प्रस्तुति ने सवारी की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्ति में डूबा पूरा शहर और हर तरफ गूंजता एक ही जयकारा, हर हर महादेव।

0: सवारी की परंपरा यह है कि जो भी भक्त, चूंकि महाकाल यहाँ के राजा है, अवंतिका के राजा है, तो एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति जो दायित्व कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह करने के लिए बाबा महाकाल आज नगर भ्रमण पर निकलते हैं। जो भी वृद्ध हो, अशक्त हो, या जो किसी कारणवश राजा के दर्शन करते हैं उनके मंदिर में या अपन उनके महल में नहीं आ सकते हैं, तो राजा स्वयं अपने भक्तों को और जो लोग सावन का सोमवार करते हैं और वो उनको दर्शन देने के लिए जाते हैं और इनका दर्शन करके, पालकी का दर्शन करके ही लोग अपना उपवास तोड़ते हैं। इसी परंपरा को एक राजा के स्वरूप में बाबा महाकाल निर्वाह करते हैं।
1: मैं पहली बार उत्तराखंड से आया हूँ और महाकाल का दो दिन में ऐसा बुलावा आया कि बाबा ने यहाँ बुलाया और इतने भव्य दर्शन मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं किए। आनंद ही आनंद बरस रहा है यहाँ पर, और ऊपर से भी आनंद बरस रहा है और महाकाल की नगरी में भी आनंद ही आनंद बरस रहा है। सारी जनता, सारे लोग, जितने भी भक्तजन हैं, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जय महाकाल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: सावन की शिवरात्रि की क्या है महिमा, सावन की शिवरात्रि का क्या होगा उपाय और सावन की शिवरात्रि का क्या होगा पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। देश भर में सावन के दूसरे सोमवार की रौनक, शिवालय में शिव भक्तों की लंबी कतार, फूलों की बारिश से हो रहा कांवड़ियों का स्वागत। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मानसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान, ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन, समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का दिया संदेश।

0: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है।
1: असम में बाढ़ से लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं, कई घर उजड़ गए, कई परिवार तबाह हो गए। ऐसे में संकट की इस घड़ी में मुंबई के लोगों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। यहां न सिर्फ बॉलीवुड हस्तियां बल्कि आम लोग भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये तस्वीरें उसी की हैं। लोग सड़कों पर उतरकर राहगीरों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि असम के लोगों की मदद की जा सके। दिलचस्प बात यह है कि सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले, ठेले वाले भी दान पेटी में अपने सामर्थ्य के हिसाब से पैसे डाल रहे हैं। आश्रम फेम एक्ट्रेस अदिति पोहनकर भी इसमें शामिल हुए और लोगों से मदद की अपील की। बागपत के ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर में इस बार महिला कांवड़ियों के लिए खास पिंक प्लान तैयार किया गया है। असल में हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचने वाली महिला कांवड़ियों के लिए यहां मेला परिसर में अलग से पिंक शिविर और पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। डीएम अस्मिता लाल के मुताबिक महिलाओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर के आसपास विशेष बसें भी तैनात रहेंगी और सबसे खास बात ये कि महिला कांवड़ियों की सुरक्षा की कमान महिला अधिकारियों के हाथों में होगी। प्रत्येक महिला शिविर में महिला अधिकारी और महिला कांस्टेबल तैनात रहेंगी ताकि किसी भी परेशानी में तत्काल मदद मिल सके। राजस्थान के पाली में कलाकार और उनके बनाए इन आर्ट वर्क्स की खूब चर्चा है। लोग इसे स्पेशल गिफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल के पत्तों पर ये सुंदर तस्वीरें उकेरी हैं श्रवण प्रजापत ने, जो यहाँ सूचित इलाके के रहने वाले हैं। उनके मुताबिक उन्होंने इस कला को सीखने के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं ली है बल्कि यूट्यूब वीडियो देखकर सीखा है और लगातार अभ्यास से उनकी इस कला में निखार आया है जो अब लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इससे मोटिवेट होकर इन्होंने अपना छोटा सा व्यापार भी शुरू कर दिया है। इनकी खासियत ये है कि अपने चित्रों में वो इको फ्रेंडली रंगों का ही इस्तेमाल करते हैं और खास मौकों पर खास चित्रों के जरिए ये अपनी भावनाएं भी जाहिर करते हैं। सावन है तो पीपल के पत्तों पर भगवान शिव को उकेर दिया तो वहीं स्वतंत्रता दिवस का जश्न भी मनाते दिख रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। यहां अगस्त क्रांति दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में 700 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जहां एक ओर पूर्व सैनिकों के अनुशासित भागीदारी देखने को मिली, वहीं छात्र छात्राओं ने लेजिम गरबा नृत्य के जरिए तिरंगा यात्रा को जोश और उत्साह से भर दिया। यात्रा का प्रमुख आकर्षण 700 फीट लंबा विशाल तिरंगा रहा जिसे एनसीसी कैडेट्स लेकर चल रहे थे। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने 200 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज लेकर शहर में मार्च किया। सिंगर सोनू निगम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में सोनू निगम अस्पताल के बेड पर हैं, उनकी सर्जरी चल रही है। इस दौरान वो बीते दौर के मशहूर गायक मोहम्मद रफी का लोकप्रिय गाना सुहानी रात ढल चुकी गाते दिख रहे हैं।
0: न्यूज पथ में अब्बास सावन के दूसरे सोमवार पर आज देश भर के शिवालयों में उमड़े आस्था के महासैलाब की। आज भगवान शिव की भक्ति का विशेष और पवित्र दिन है। मान्यता है कि सोमवार का दिन महादेव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए सावन में सोमवार को शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देश भर के शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। चारों ओर भक्ति की अविरल धारा बह रही है। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार, अयोध्या से लेकर देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, गुवाहाटी, हर जगह जलाभिषेक के लिए शिव भक्त उमड़े और दर्शन कर महादेव से मनोकामना पूरी करने की मनोहार की।

में मंदिरों में सुबह से ही घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाने निकल पड़ता है तो कोई घर में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की तैयारी करता है। सावन यानी भोले का महीना और सोमवार यानी भोले का दिन, ऐसे में सावन का सोमवार एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। सावन के सोमवार पर भगवान शिव की आराधना करने से मन को शांति मिलती है और भक्त अपनी मनोकामनाओं के लिए महादेव का आशीर्वाद मांगते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा है। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। मानो हर ओर प्रकृति शिव श्रृंगार रस में डूबी है। हर कोई शिवमय है। गुजरात के शिवालयों में सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर सोमनाथ सहित प्रमुख मंदिरों में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सावन के दूसरे सोमवार पर गुजरात के वेरावल में मौजूद प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा सोमनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। यहाँ महापूजा और अनुष्ठान के साथ शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के बीच भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक किया और आशीर्वाद लिया। डमरू की आवाज, बेलपत्र की खुशबू और बम बम भोले के नारों के बीच सावन के दूसरे सोमवार के चलते उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में मौजूद शिवालयों में भक्तों का जबरदस्त उत्साह नजर आया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवनगरी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दूसरे सावन के सोमवार पर बाबा विश्वनाथ की विशेष श्रृंगार के साथ मंगला आरती की गई और दिन का शुभारंभ हुआ। कोई परिवार संग, महिला, बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी अपनी अपनी मन्नत के साथ बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। महादेव की जय जयकार के साथ भक्त भगवान को खुश करने में जुटे रहे। पवित्र कुंभ और संगम नगरी प्रयागराज में भी आशुतोष शशांक शेखर के दर्शनों के लिए भक्त उमड़ पड़े। यहाँ के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की बड़ी संख्या अपने आराध्य की आराधना को आए और दुग्धाभिषेक कर शिव को प्रसन्न किया और वर मांगा। कानपुर में भी प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में शिव दर्शन को भक्तों का मेला लगा रहा। श्रद्धालुओं ने आनंदेश्वर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की।

0: रामनगरी अयोध्या में शिव भक्त नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में पहुंचे और भक्तिमय माहौल में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक संपन्न हुआ। मंदिर का चप्पा चप्पा शिव भक्तों से पटा नजर आया और पूरे नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर का कोना कोना बोल बम के जय घोष से गूंजता रहा।
1: हम लोग नागेश्वरनाथ पे जल चढ़ाने के लिए आए थे। हम लोग अलीगंज सुल्तानपुर से आए हुए हैं। बहुत दूर से काफी संघर्ष हुआ लेकिन फिर भी अच्छा फील हो रहा है। व्यवस्था बढ़िया है, प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है।
2: बहुत ज्यादा भीड़ है, लग नहीं रहा था इतना जल्दी मतलब जल चढ़ जाएगा। लग रहा था हाँ 3-4 घंटे लगेंगे लेकिन हाँ हो गया। बहुत अच्छा है, घुमा दिया इस वजह से भीड़ कम हो गई और जल्दी जल चढ़ गया।
0: गाजियाबाद के प्राचीन सिद्धपीठ दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में आज शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान दुधेश्वर का जलाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। सावन के दूसरे सोमवार पर बिहार के शहरों में भी आस्था का समंदर देखा गया। शिवालयों में, शिव मंदिरों में चारों दिशाओं से बोल बम गुंजायमान रहा। श्रावणी मेले के दूसरे सोमवार पर बाबा बैद्यनाथ धाम में पूरे दिन से जय शिव शंकर, हे भोलेनाथ, तेरी महिमा अपरंपार का जय घोष हो रहा है। बाबा मंदिर से 15 किलोमीटर दूर तक लंबी कतारें लगी रहीं, जो अभी तक जारी है। बाबा धाम में आज दर्शन के तमाम रिकॉर्ड टूटते नजर आए। आज तकरीबन 4 लाख भक्त यहां पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के सभी शिवालयों में सावन के दूसरे सोमवार पर सुबह से ही भक्तों का भारी सैलाब उमड़ा। उज्जैन के महाकाल मंदिर और भोपाल, ग्वालियर व अन्य ऐतिहासिक मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और विशेष पूजन किया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी आज के दिन आस्था का महासैलाब उमड़ा। महाकाल लोक और मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की कतार देखने को मिली।
3: जो भी टीवी पे या नजीक दर्शन कर ले गए उसकी कामना तो क्या, पूर्व जन्म के संस्कार हो या पूर्व जन्म उसके उद्धार हो जाते हैं इस भस्म आरती के दर्शन से। पृथ्वी पे जन्म लिए तो कम से कम इनके कहीं से भी दर्शन हो जाए और इस टाइम में अगर आके तो बाबा सावन महीने में तो इतना उसको आशीर्वाद दे दे जिसका कोई अपार नहीं है।
4: बहुत अच्छा लगा भस्म आरती देख के। जिंदगी में एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा जो उसको देख के मैं बोलूँगी कि इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में कभी नहीं हो सकता। सो हर हर महादेव, थैंक यू। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि महादेव ने मुझे ये चांस दिया भस्म आरती देखने के लिए। हर हर महादेव।
0: यहाँ भस्म आरती के समय से ही दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है जो रात 10 बजे होने वाली शयन आरती तक चलेगा। सावन के दूसरे सोमवार पर राजधानी दिल्ली भी शिव भक्ति के रंग में पूरी तरह से रंगी नजर आई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही गौरी शंकर मंदिर, प्राचीन श्री किलकारी भैरव मंदिर और दूसरे सभी शिवालय में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें

0: यहाँ जो भी आता है भगत उसकी कामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए लोगों की आस्था जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और सावन जो परम पवित्र पावन मास है, इसलिए लोग चाहते हैं कि बाबा का अभिषेक हो जाए, दर्शन हो जाए, जलाभिषेक हो जाए, अन्य कामनाओं से यहाँ आते हैं।
1: आज सोमवार है और सावन के दिन जो है ये बहुत अच्छा माना जाता है, भगवान शिव से प्रसन्न होते हैं।
2: आप जलाभिषेक किस किस चीज से करोगे?
3: दूध, दही और गंगा जल।
4: वैसे तो सावन का पूरा महीना खास है, लेकिन सोमवार के दिन सावन के महीने का महत्व और भी बढ़ जाता है। महादेव के प्रिय माह सावन में उनके अति प्रिय दिवस सोमवार की महिमा अनोखी है। आज सावन के दूसरे सोमवार पर भक्त भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कोशिश करने में जुटे रहे। हर ओर हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और श्रद्धालु की लहर हर मन में जयकार कर रही है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: हिमाचल के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं का जिम्मा संभाल रहे बीबीएमबी प्रबंधन ने व्यास नदी किनारे बसे लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। बीबीएमबी पहली बार यहां पंडोह डैम से लेकर दोहरा तक व्यास नदी के कारण प्रभावित होने वाले लोगों के लिए डैम ब्रेक एनालिसिस और इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने जा रहा है। इस प्लान के तहत पंडोह डैम से देहरा तक 135 किलोमीटर लंबे एरिया में व्यास नदी किनारे रह रहे लोगों को खतरे के लिहाज से ग्रीन, ब्लू और रेड तीन जोन में बांटकर समाधान पर विचार किया जाएगा। इसके लिए आईआईटी रुड़की के आईसीईडी सेंटर की मदद से प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के जालना में श्री संत गजानन महाराज की पालकी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पालकी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीरें भी देखने को मिली। पालकी श्री क्षेत्र पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी का सोहला पूरा करने के बाद श्री गांव की ओर लौटते हुए जालना से होकर गुजर रही है। हर साल की तरह इस साल भी पालकी जालना में दो दिनों तक रहेगी, इसके बाद आगे की यात्रा आरम्भ होगी। पहाड़ों में आज सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु शिवालयों में पहुंचे। वहीं इस पावन दिन पर बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के बाल रूप खीर का प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटा गया। सावन में भगवान के इस विशेष खीर प्रसाद को पाने के लिए श्रद्धालु कतारों में खड़े नजर आए। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर में अगले दो दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। ऐसे में इन जगहों के लिए दो दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के चमोली में इस साल फूलों की घाटी में रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक घाटी में कुल 18,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। इनमें 122 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। सैलानियों की ये संख्या पिछले साल की इसी अवधि यानी अगस्त 2025 से करीब 3,000 ज्यादा है।
5: न्यूज पथ में आज बाद देश भर के तमाम मंदिरों और शिवालयों में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते केसरिया रंग में रंगे कांवड़ियों की। कल सावन की शिवरात्रि पर कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा संपन्न हो रही है। गंगा घाटों से कांवड़ में गंगा जल लेकर कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर निकल गए हैं। भोले के इन भोले भक्तों का जगह जगह अनूठे तरीके से स्वागत किया गया। नंगे पग शिवमय सफर पर निकले ये कांवड़िए कहीं अपनी अनोखी कांवड़ तो कहीं अपने निराले रंगों से कांवड़ यात्रा करते हुए लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। देखिए देश भर से कांवड़ और कांवड़ियों के शिवमय सफर की तस्वीर।

कंधों पर कांवड़, जुबां पर हर हर महादेव का जय घोष और मन में भोले की भक्ति का अटूट विश्वास। सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कांवड़ पर उसे बांधकर और अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और वहां स्थापित शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कांवड़ लेकर शिवमय सफर के लिए नंगे पग निकला कांवड़िया कभी अपनी अनोखी अनूठी कांवड़ से चर्चा में आ जाता है या फिर कभी अपनी यात्रा के विशेष ढंग को लेकर लोगों की चर्चा का केंद्र बन जाता है।

0: लगता है। संगम नगरी प्रयागराज में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। गंगा घाट पर केसरिया रंग का कपड़ा पहने कांवड़ियों की भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। कांवड़ियों की इस भीड़ में अब सफेद कपड़े पहने कांवड़िए भी नजर आने लगे हैं, जिनको लोग यहाँ डाक बम कांवड़िया कहते हैं। डाक बम कांवड़ियों की खास पहचान उनका सफेद रंग का कपड़ा है और पीठ पर लटका झोले नुमा बैग, जिस पर लिखा होता है डाक बम। गंगा जल भरने के बाद बिना रुके ये पैदल ही अपने शिवालयों की ओर निकल पड़ते हैं।
1: हर कांवड़िया प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पहुंच रहा है, लेकिन कांवड़ियों के कई अलग रंग और रूप भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे सामने ये डाक बम वाले कांवड़ियां हैं। इनकी खास बात यह है कि ये कहीं भी नहीं रुकेंगे, जल भरने के बाद सीधा अपने घाट यानी जहां पे शिवालय है वहां पे जाएंगे। इनके गले में देखिए ये डाक बम लिखा हुआ और सभी व्हाइट ड्रेस, यानी इनकी पहचान व्हाइट ड्रेस और एक झोला जिसमें डाक बम लिखा हुआ, इसका मतलब कि ये सब कहीं नहीं रुकेंगे और सीधा यहाँ से जल भरने के बाद ये सब सीधा अपने शिवालय में जाकर जलाभिषेक करेंगे। यानी डाक बम की ये पहचान है कि व्हाइट ड्रेस, पीछे झोला और उस पर डाक बम लिखा हुआ, तो इस तरह की ये पहचान है। और ये प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पहुँचे हैं ये लोग, और दशाश्वमेध घाट पे पहुंचकर जल भरेंगे, अपने शिवालय पे जाकर ये जलाभिषेक करेंगे इस कामना के साथ कि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और ये सफलता को प्राप्त कर सके।
0: प्रयागराज के ही दारागंज में मौजूद दशाश्वमेध घाट तो सावन के दूसरे सोमवार को पूरी तरह शुभमय नजर आया। यहाँ जहाँ तक नजर जाती है केवल कांवड़िए ही कांवड़िए दिखते हैं। गंगा तट पर मानो आस्था की लहरें दम भर रही हैं। छोटे बच्चे हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग, हर कोई गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पवित्र गंगा जल अपनी कांवड़ में भरता नजर आया। हर चेहरे पर भक्ति, हर कदम पर श्रद्धा और हर ओर बोलबम तथा हर हर महादेव के जय घोष माहौल को भक्ति में बना रहे हैं।
2: अच्छा, जल चढ़ाने जा रहे हैं, महाकाल से क्या कामना है?
3: कामना है कि परिवार में सब सुखी मंगल रहे और परिवार के सारे सदस्य भली भात से रहे, सुशोभित रहे, कष्ट कट जाए।
2: जल भर लिया है आपने?
3: जी, जल भर लिया।
2: अब कहाँ जाएंगे?
3: बनारस, काशी विश्वनाथ।
2: काशी विश्वनाथ जाएंगे, आप भी यहाँ पर आए, क्या कामना है?
4: हमारा कामना है भगवान हमको बढ़ी दे, बाप परिवार अच्छे से रहे और बस यही कामना है हमारा।
2: आप भी हैं यहाँ जा रहे हैं जल चढ़ाने?
3: जी हाँ।
2: क्या ईश्वर से कामना है भोलेनाथ?
3: ईश्वर से कामना है कि सब परिवार सब कुशल रहे, जीवन मंगलमय हो।
2: ये कांवड़ लेकर के जो भक्त हैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ दशाश्वमेध घाट से इन्होंने जल भरा है। आप देखिए छोटा बच्चा भी है, कांवड़ लिए है और भगवान भोलेनाथ को यहाँ जल चढ़ाने जाएंगे। आप भी यहाँ पर हैं, क्या कहीं कांवड़ लेके जा रही है, भगवान भोलेनाथ से क्या कहेंगे?
5: बस ऐसे ही
2: परिवार के सुख,
5: परिवार के सुखी के लिए।
2: बच्चा भी जा रहा
5: है? बच्चा भी है साथ में।
2: बिल्कुल, यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है और जो भक्त हैं भगवान से अपनी गलती की माफी भी मांगेंगे और प्रयागराज से जल भर करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए ये कांवड़ लेकर सभी कांवड़ ये जा रहे हैं और अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं।
0: कल सावन शिवरात्रि है और अब बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो कहीं भक्ति की धुन पर कदम ताल कर रहे हैं तो कहीं आस्था के साथ उनका अंदाज हर किसी का ध्यान खींच रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर की सड़कों पर भी कांवड़ के ऐसे ही अनोखे रंग दिखाई दिए। आगे आगे पैदल चलते कांवड़िए और पीछे पीछे शान से चलती बुलडोजर वाली कांवड़, रंग बिरंगी रोशनी से सजी इस कांवड़ को देखने के लिए लोग सड़कों के किनारे ठहर गए। वहीं मुजफ्फरनगर में ही एक ऐसी अनोखी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है जो देखने में बाइक जैसी है और बैटरी से चलती है, जिसे तेजस बाइक कांवड़ कहा जा रहा है और इस पर बीटेक के छात्र अक्षय कुमार जलाभिषेक के लिए जल लेने निकले हैं।
6: बोले ये मैंने तेज बाइक बनाई है जो कि बैटरी चलती है, इसमें मैंने 150 किलोमीटर की बैटरी लगाई है जो कि चार्ज हो जाती है करीबन 4 घंटे में। मैंने ये सोचा कि सब कांवड़ ले जा रहे हैं, एक ऐसी कांवड़ लेकर जाए जो दुनिया देखे।
0: सहारनपुर की सड़कों पर भी इन दिनों आस्था की रोशनी बिखरी हुई है। रात के वक्त रंग बिरंगी लाइटों से सजी कांवड़ जैसे जैसे आगे बढ़ती है पूरा कांवड़ मार्ग रोशनी से जगमगा उठता है। इस कांवड़ में भोलेनाथ के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन कर लोग खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। सहारनपुर और मुरादाबाद में तो कांवड़ियों का स्वागत भी फूल बरसा कर किया गया। यहां कांवड़ियों पर जमकर पुष्प वर्षा की गई और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। मुरादाबाद में कांवड़ियों के खाने पीने का भी इंतजाम रहा, उन्हें फल बांटे गए। मुरादाबाद में तो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, भंडारे के साथ प्रोजेक्ट जटायु से निगरानी भी की जा रही है। ये प्रोजेक्ट जटायु 4S यानी सर्विस, सैनिटेशन, सिक्योरिटी और सर्विलांस से तैयार हुआ है। इसके साथ ही यूपी के मेरठ में तो बुलडोजर से कांवड़ियों पर फूलों की बरसात की गई। जगह जगह कांवड़ियों के स्वागत के बीच अनोखी कांवड़ों के अलावा अनोखे ढंग से यात्रा करते कांवड़िये भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। फरीदाबाद में भक्ति का एक ऐसा रूप नजर आया जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। संत प्रेमानंद जी का एक भक्त हरिद्वार से वृंदावन तक दंडवत कांवड़ लेकर निकला है।
7: अंदर से ख्याल आया कि इस बार हमको दंडवत कांवड़ यात्रा करके वृंदावन धाम जाना चाहिए, बाबा जी से दर्शन करना चाहिए और पवित्र गंगा जल जाकर बाबा जी गंगा जल से स्नान करें।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान भोले बाबा की एक नन्ही भक्त ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अपनी पहली कांवड़ यात्रा में एक साल की आराध्या ने गंगोत्री से दिल्ली तक का सफर तय किया है।
8: भोले के ना जाने कितने रूप है और उन्हीं में से एक सबसे छोटा रूप मैं आपको ये दिखा रही हूँ। एक साल की आराध्या है। सबसे पहले तो मैं इस कैरियर से शुरू करूंगी कि बेबी कैरियर में किस तरीके से जो है उसको सजाया गया है, क्योंकि ये आराध्या की जो है प्रथम कांवड़ यात्रा है। इन्होंने ये पोस्टर भी जो है इसलिए लगाया है, आराध्या की तस्वीर जो है इसमें लगाई गई है और आराध्या की ये पहली कांवड़ यात्रा है गंगोत्री धाम से लेकर हैदरपुर। हैदरपुर के ये लोग निवासी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप दिख जाएगा बम बम भोले के जयकारों के साथ इन्होंने ये नई शुरुआत करी है। इस बच्ची की एक साल की उम्र है लेकिन भक्ति का ये भी रूप है जो देखने को मिलता है। हर साल ही अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आती है, लेकिन सबसे छोटा रूप मैं आपको भोले का दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से एक साल के बच्चे ने गंगोत्री धाम से ये यात्रा जो है शुरू करी और वो यहाँ पर दिल्ली आ पहुंची है। माँ बाप तो जो है कर लेते हैं कि कवर करना है, हमें जो है पैदल यात्रा करनी है, लेकिन एक साल के बच्चे के साथ ये वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है।
9: नहीं, इतना खास मुश्किल भी नहीं है।
8: क्यों मुश्किल नहीं लगा?
9: अगर सारा लेके सामान चलो तो कोई मुश्किल नहीं होती है।
0: सावन में कांवड़ यात्रा सिर्फ गंगा जल लाने की परंपरा नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और भक्ति के अलग अलग रंगों की तस्वीर भी है। ये भक्ति बताती है कि भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचने के रास्ते भले अलग हों लेकिन मंजिल एक ही है और वो है महादेव की सच्ची भक्ति। ये महादेव के लिए आस्था ही है कि हर कोई उनको अपने मन की मुरादें सुनाता है, क्योंकि भक्तों का अटूट विश्वास है कि महादेव न सिर्फ सुनते हैं बल्कि भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, सहारनपुर से राहुल कुमार और फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी बढ़त देखने को मिली। 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 43 अंकों की बढ़त के साथ 78,542 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 13 अंकों की बढ़त के साथ 24,583 पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में लगातार पांचवें दिन बढ़ोतरी देखने को मिली। सोमवार को सोना 2,000 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,56,000 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी तेजी रही। चांदी की कीमतों में 5,200 रुपए की उछाल आई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,40,000 रुपए पर पहुंच गई। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच 10 अगस्त को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हुआ। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 11 पैसे गिरकर 95.28 रुपए पर पहुंच गई।
10: बिहार में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग की तैयारी में सुनील शेट्टी। इसके अलावा फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
0: दीपिका पादुकोण अगले महीने यानी सितंबर में दूसरी बार मां बनने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि गर्भ के 8वें महीने में भी वो सेट पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। अपनी अपकमिंग फिल्म राका की शूटिंग जल्द से जल्द खत्म करने के लिए वो पूरे दिन सेट पर रहती हैं और जरूरत पड़ने पर देर रात तक काम भी करती हैं। अपने काम के प्रति दीपिका के इस कमिटमेंट को देखकर क्रू और टीम के लोग हैरान हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक बेटिया दुआ के माता पिता हैं। कपल के परिवार में एक बार फिर किलकारी गूंजने वाली है। दीपवीर सितंबर में अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करेंगे। अभिनेता अरशद वारसी की पॉपुलर वेब सीरीज असुर के अगले सीजन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि असुर 3 की शूटिंग अगले महीने शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असुर के क्रिएटर गौरव शुक्ला अब तीसरे सीजन में डायरेक्टर की कुर्सी संभालेंगे। पहले दो सीजन का निर्देशन ओनी सेन ने किया था। वहीं इस बार एक नए कास्ट की एंट्री भी होने वाली है। एक्ट्रेस श्वेता बसु प्रसाद असुर 3 का हिस्सा बन सकती हैं। असुर एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। इसका पहला सीजन 2020 में आया था, जिसमें अरशद वारसी और वरुण सोबती की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। शिवम नायर की एक और फिल्म में अभिनेता जॉन अब्राहम नजर आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं। फिल्म की शूटिंग जल्दी ही शुरू होगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को 2027 के आखिर में सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है। इससे पहले जॉन अब्राहम और शिवम नायर ने पिछले साल आई फिल्म द डिप्लोमैट में साथ काम किया था। इसका निर्देशन शिवम नायर ने किया था। अभिनेता सुनील शेट्टी अपनी अगली फिल्म की शूटिंग बिहार में करने की तैयारी कर रहे हैं। वे वहां अच्छी लोकेशन की तलाश में हैं। ये बात खुद सुनील शेट्टी ने कही है। उन्होंने पटना में मीडिया से बात करते हुए इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वो 4 महीने पहले भी यहां आए थे और उन्हें काफी अच्छा लगा, इसलिए शूटिंग की तैयारी की।
11: कोशिश यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहा तो एक फिल्म शूट करने के इरादे से आए।
0: वेब सीरीज मिर्जापुर पर बनी फिल्म मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर 11 अगस्त यानी कल आएगा। फिल्म अगले महीने 4 सितंबर को सिनेमाघरों में हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म को रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है। कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदा ने इसके को प्रोड्यूसर है और इसे लिखा है पुनीत कृष्णा ने।
10: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाए, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली। 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का केंद्र, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मानसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार। घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान, ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन, समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का दिया संदेश। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: बच्चों को देखिए, अपने फिटनेस के दम पर क्या सुंदर फॉर्मेशन बनाया है, वो भी मिनटों में, कोई चूक नहीं। इनके बीच तालमेल भी गजब का है। योगा स्टूडेंट्स का ये वीडियो देखकर लोग इनके फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं। इनको ये प्लास्टिक की डोरी चाहिए और वो बाइक में फंसी हुई है, सो खूब दिमाग लगाया जा रहा है, कभी इधर से तो कभी उधर से निकालने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन डोरी है कि निकल नहीं रही। पर कौवा भी हार नहीं मान रहा, उसने तब तक कोशिश की जब तक की डोरी निकल नहीं गई। लोग वीडियो देखकर कह रहे हैं हमें भी तुरंत हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि जो चाहिए उसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक्सरसाइज भी देखिए, जरा नीचे रखनी है और एक हाथ से सामने रखी पेंसिल उठाकर पीछे के चौकोर घेरे में डालनी है। ध्यान रहे पेंसिल बाहर न निकल पाए। प्रतियोगिता दो बच्चों के बीच है और इसे जीतने के लिए दोनों बच्चे जिस तरह से मेंढकों की तरह उछल कूद कर रहे हैं वो देखना दिलचस्प है। गुब्बारे का इतना मजेदार इस्तेमाल आपने शायद ही देखा हो। गुब्बारों को जोड़कर दुल्हन बना दी, चेहरा भी बना दिया, हाथ पांव और लाल दुपट्टा भी रख दिया सर पर। पंखे की चाल पर दुल्हन जिस तरह से ठुमके लगा रही है वो देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। जिसने भी ये कारनामा किया है उनके दिमाग की दाद तो देनी पड़ेगी। सामने समोसा है, दूरी

0: ज्यादा नहीं है, पर खाना आसान नहीं क्योंकि आपको अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है। हाथ और पैरों को एक जगह कुछ इस तरह बांधकर मुंह से समोसा उठाना है, पर ये क्या इतना आसान है? देखिए कैसे सांसें फूल रही हैं सबकी। शुक्र है कुछ लोग फिटनेस पर काम कर रहे हैं। समोसा पूरी तरह मुंह में नहीं रख सकी तो क्या, मुंह तो लगा लिया ना।
1: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली मेट्रो की। पिछले दो दशकों में दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो ने अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली है। दिल्ली मेट्रो ने भरोसेमंद सेवा के मामले में दुनिया की कई बड़ी मेट्रो सेवाओं को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर की 45 प्रमुख मेट्रो सेवाओं से जुड़े कम्युनिटी ऑफ मेट्रो के तुलनात्मक सर्वे में दिल्ली मेट्रो दुनिया की सबसे भरोसेमंद मेट्रो बन गई है। इस ग्लोबल सर्वे में मेट्रो ट्रेनों की पंक्चुअलिटी यानी कि समय की पाबंदी और ऑपरेशन रिलायबिलिटी यानी कि सटीकता को खास तौर पर देखा गया है। दिल्ली मेट्रो की खास बात यह है कि यहां ट्रेन के अपनी मंजिल तक पहुंचने में 59 सेकंड से ज्यादा की देरी को भी विलंब माना जाता है। वहीं कई दूसरे देशों की मेट्रो सेवाओं में 2 से 5 मिनट तक की देरी को सामान्य सीमा में रखा जाता है। दिल्ली मेट्रो ने दिसंबर 2002 में अपनी शुरुआत के बाद से ट्रेन ऑपरेशन के मामले में लगातार सुधार किया है। साल 2003 में दिल्ली मेट्रो की पंक्चुअलिटी करीब 98.27% थी, जो अब बढ़कर 99.95% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 23 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क करीब 416.5 किलोमीटर के लंबे दायरे में फैल चुका है। दिल्ली मेट्रो में ट्रेनों के बीच अंतराल भी कम हुआ है। शुरुआत में ट्रेनों के बीच करीब 7 मिनट का अंतर होता था, वहीं वेस्ट कॉरिडोर में ये गैप अब घटकर करीब 2 मिनट 18 सेकंड रह गया है। दिल्ली मेट्रो अब सिर्फ समय की पाबंदी में ही नहीं बल्कि तकनीक के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली मेट्रो की पिंक और मेजेंटा लाइन समेत करीब 29% नेटवर्क पर ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन की सुविधा है। करीब 71.55 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन दुनिया की सबसे लंबी चालक रहित मेट्रो लाइनों में प्रमुख स्थान रखती है। दुनिया भर में भारत की शान बढ़ाने वाली दिल्ली मेट्रो सबसे भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। दिल्ली मेट्रो की इस उपलब्धि पर हमने मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों से बात की और उनकी राय जानी।
2: दिल्ली मेट्रो का सफर आपने किया ही होगा। दिल्ली मेट्रो ने कीर्तिमान स्थापित किया है कि पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी है दिल्ली मेट्रो की, इस पर क्या कहेंगे?
3: नहीं, काफी अच्छा मेट्रो ने दिल्ली को एक कन्वेंस दिया है सफर करने के लिए। और एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, दिल्ली में मेट्रो काफी अच्छा अपना दे रही है सर्विस।
2: स्टेट में नहीं, पूरे विश्व को मार दिया है, विश्व में पेरिस सब जो मेट्रो है उनसे भी बेहतर पंक्चुअलिटी, मतलब समय सीमा के अंदर
3: सर, समय सीमा में अपना सर्विस दे रही है। अगर आपको एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान जाना है तो समय सीमा के अंदर में आपको पहुंचाती है।
4: बहुत अच्छा है, 2-2 मिनट की सर्विस है मेट्रो की। पंक्चुअलिटी भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। फ्रीक्वेंसी और पंक्चुअलिटी दोनों मैटर करती हैं। दोनों जगहों पर हर स्टेशन पे 2-2 मिनट की और 3-3 मिनट का ही मेट्रो का ही वो है डिफरेंस है, जो कि पब्लिक के लिए बहुत वो है, सहूलियत है पब्लिक को इस चीज की।
5: टाइम तो ठीक है सर, स्पीड तो ठीक है, पर बाकी कंडीशन अंदर तो ऐसी होगी जैसे कोई लोकल ट्रेन है जी सर। बहुत शाम को देखो आप, कम से कम 20-20, 15-15 मिनट लग जाती है एंट्री करने में, बहुत लंबी लंबी लाइन होती है सर।
6: समय के हिसाब से सही है, लेकिन आजकल बहुत भीड़ चल रही है।
7: भीड़ चल रही है, टाइम तो कम लगती है ना?
6: टाइम बचत होती है, लेकिन पैसे अभी इंक्रीज हुआ है, उसको देखना चाहिए सरकार को। मतलब 90% तो सही है, बाकी 10% की गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी टेक्निकल इश्यू होता है तो आधे घंटे लेट चलती है,
7: देर हो जाता है, बाकी ठीक है,
6: बाकी सही है।
8: मेट्रो से मुझे बहुत अच्छा लगता है सफर करना, और मेट्रो का सबसे अच्छी चीज ये है कि टाइम भी पंक्चुअल रहता है। अगर टाइम जो भी निर्धारित कर दिया 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, तो उसी राइट टाइम पे अराइवल होता है, और मतलब कि डेस्टिनेशन पे भी ये टाइम से ही पहुंचाता है। तो फिर अगर कहीं ऑफिस या फिर मैं जाता हूँ तो जहाँ तक फिर मैं ज्यादातर मेट्रो का ही यूज करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेट्रो जी बिल्कुल समय से पहुंचाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। या इवन अगर टिकट काउंटर या फिर सब कुछ बात करें तो सारी फैसिलिटी बहुत गुड है, बहुत अच्छी है।
1: अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज उन खिलाड़ियों के मन की बात और जीत का मंत्र जानेंगे जो इस बार ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेकर लौटे हैं। हाल ही में सभी खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनसे अपनी भावनाएं साझा की।

0: मेरे यहां मुझे यहां लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूं, तो खिलाड़ी है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी।
1: हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाई।
0: पक्का?
2: जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने गिफ्ट दे दिया।
0: बड़ी शान बढ़ाई आपने, इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है।
3: मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज्यादा था। पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो
0: बहुत बहुत बढ़िया।
4: सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा।
0: यानी मान के चलते हैं।
4: हाँ सर।
0: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
5: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था, और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
0: इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ, और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना, और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूं, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं।
5: जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे, और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट है, वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही।
0: कारगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी?
6: उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है, तो मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया, तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज को मैंने डेडिकेट किया था सर।
0: आपको यह याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना, कि मैं कारगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने।
7: वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे, और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे, तो मिलिट्री वाले को फोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी मिले थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था, उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ, वहाँ बोलो, मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
0: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया।
8: मेरे मन में भी धक धक धक धक हो रहा है।
0: आप चिंता मत कीजिए।
8: पर
0: आप जाकर आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है।
8: मेरे फ्रेंड्स सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी, भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तुम मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ।
6: कॉमन गेम्स में मेडल, सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुश है जी। मैंने सर को क्रेडिट दिया था क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ।
0: मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है, मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना?
9: जी सर। बहुत
0: कैसा बना है स्टेडियम?
9: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर।
0: भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी
9: जी सर 2000।
0: तो उज्जैन जाते थे कि नहीं?
9: जी सर उज्जैन भी गई थी सर।
0: अच्छा महाकाल के पास भी गई?
9: जी सर।
0: काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार?
9: जी सर।
0: सावन महीना तो अभी है,
9: वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर।
0: ठीक है दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ। और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
10: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से बर्थडे था तो आज सर की
0: बहुत बधाई।
10: ये ओनली एक ही थी सर।

0: खिलेगा।
1: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होगा और इस जगह पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए हैं। अभी से लाल किले के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। इस बार सुरक्षा के लिए AI का भी इस्तेमाल किया गया है।

0: 15 अगस्त देश के लिए बेहद खास दिन, वो दिन जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। इस दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए अभी से लाल किले के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। सुरक्षा घेरे में इस बार फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS, बायोमेट्रिक्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और AI इंटीग्रेटेड CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सुरक्षा का ऐसा हाईटेक पहरा है जिससे किसी भी अपराधी का बचकर निकल पाना मुश्किल होगा।
1: कि इस बार देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और उसके मद्देनजर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी पुख्ता कर दिए गए हैं। तो जो लोग 15 अगस्त को यहाँ आना चाहते हैं, लाल किले पर आना चाहते हैं, वो समय से आए, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो काफी पुख्ता होगी, जो चेकिंग है वो काफी ज्यादा सख्त होगी।
0: राजधानी दिल्ली में खासकर लाल किले के आसपास के इलाके में इस बार सुरक्षा व्यवस्था में AI तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। साथ ही करीब दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों समेत 20,000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं।
2: स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है वो भी वंदे मातरम है और इसीलिए यहाँ पे वंदे मातरम की ही थीम पे सारा प्रोग्राम होगा। और इसके अंदर जो सुरक्षा इंतजामों की अगर हम बात करें तो सुरक्षा इंतजाम काफी डिटेल में हम लोग काफी समय से तैयारी कर रही है दिल्ली पुलिस।
0: लाल किले और उसके आसपास 1,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से पूरे इलाके की लगातार निगरानी की जा रही है।
1: 1,000 CCTV का जो फीड है वो लगातार यहाँ पर आ रहा है और ये बस नॉर्मल CCTV फीड नहीं है, बल्कि इसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी जो है वो प्रयोग किया गया है। एनालिटिक्स की अलग टीम बनाई गई है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स की अलग टीम बनाई गई है।
0: और खास बात ये है कि कई कैमरे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स से लैस हैं, यानी कैमरे सिर्फ तस्वीर रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि तस्वीरों और गतिविधियों की जांच कर संदिग्ध गतिविधि या किसी अज्ञात वस्तु को पहचानने में मदद करेंगे।
1: जैसे सर ये स्क्वायर बन के आ रहा है तो ये किस तरीके से काम करता है और कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है?
3: सर इसकी जो सेटिंग है, कैमरे की सेटिंग और उसका जो ग्रेविटी नोटिस करी जाती है कि कितना एग्जैक्ट इसका मैच आता है, उस पर हम फिक्स कर देते हैं। अभी जैसे जिन लोगों का नाम एज वगैरह मेंशन हो रहा है कि एज ग्रुप के हैं, मेल है फीमेल है, इस तरह से आइडेंटिटी आती है।
0: जमीन पर ही नहीं, आसमान पर भी सुरक्षा की पैनी नजर है। लाल किले के आसपास एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। किसी भी बिना अनुमति वाले ड्रोन की गतिविधि को समय रहते डिटेक्ट करने और उससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं। यानी लाल किले की सुरक्षा का ये घेरा जमीन से लेकर आसमान तक बनाया गया है, जिसका मकसद साफ है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को लाल किले के आसपास पहुंचने से रोकना जो सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके

0: अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
3: ग्रैंड चेस टूर रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचे भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा, खेल सकते हैं ग्रैंड चेस टूर फाइनल। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
4: सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज में जीत के बाद आर प्रज्ञानानंदा का जोश हाई है, इस जीत ने उन्हें ओवरऑल ग्रैंड चेस टूर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। अगर यहां कोई बड़ी गड़बड़ नहीं होती है तो उनके साल के आखिर में होने वाले फाइनल में खेलने की पूरी संभावना है। ग्रैंड चेस टूर फाइनल में टूर के टॉप 4 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और अभी अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआना प्रज्ञानंद से आगे हैं। फ्रांसीसी ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा के टूर से हटने के फैसले के बाद सैमुअल सेवियन ने सिंकफील्ड कप में चौंकाने वाली एंट्री की है। फील्ड कप में टूर के सभी 9 रेगुलर खिलाड़ी वापसी करेंगे, जिससे ये साल के सबसे मजबूत टूर्नामेंट्स में से एक बन जाएगा। भारतीय मूल के शतरंज के होनहार खिलाड़ी 11 साल की बोधना शिवानंदन और 17 साल के श्रेयस रॉयल ने वीकेंड पर 2026 ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। रविवार को कोवेंट्री में खत्म हुई इस चैंपियनशिप में बोधना ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज चैंपियन बनी। टूर्नामेंट के दौरान गोधाना कहकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। उन्होंने आयरलैंड की 14 साल की त्रिशा कन्या मार्ला के साथ हुए रोमांचक रैपिड चेस प्लेऑफ में जीत हासिल करके ये खिताब अपने नाम किया। वहीं श्रेयस रॉयल ने 9 राउंड के बाद टेबल में टॉप करते हुए ओवरऑल ब्रिटिश खिताब अपने नाम किया। इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कप्तान हैरी ब्रुक के साथ वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स और बांग्लादेश के ओपनर तंजिद हसन को जुलाई 2026 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है। हैरी ब्रुक ने जुलाई में जबरदस्त खेल दिखाते हुए इंग्लैंड को भारत के विरुद्ध व्हाइट बॉल सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।
3: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
5: सावन की शिवरात्रि की क्या है महिमा, सावन की शिवरात्रि का क्या होगा उपाय और सावन की शिवरात्रि का क्या होगा पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो

0: पत्रकारिता करते हैं, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली। 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मानसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान, ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का संदेश।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सावन शिवरात्रि की। सावन से दूसरे सोमवार को जहां शिवालयों में भक्ति की धारा बह रही है, वहीं पर मंगलवार को शिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। शिव भक्तों के लिए सावन शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व माना जाता है और इस साल ग्रहों का योग कुछ ऐसा है कि शिवरात्रि और भी ज्यादा मंगलमयी हो गई है। क्या है संयोग, आपको विस्तार से हम बताएंगे। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए लाखों की तादाद में कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से निकल चुके हैं। इनमें बड़ी तादाद में दिल्ली NCR के कांवड़िए भी मौजूद हैं। आज आपकी मुलाकात एक साल की आराध्या से करवाएंगे, जो माता पिता के साथ गंगोत्री से गंगा जल लेकर आई हैं। और इसके अलावा उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी की अद्भुत तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं शिवरात्रि पर जलाभिषेक की तैयारियों के साथ। देखिए, सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भक्त उमड़े और मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर और बड़ी तादाद में जलाभिषेक होगा। इसलिए कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की भारी भीड़ रही। अंदाजा है कि 3 करोड़ से ज्यादा शिवभक्त गंगा जल लेकर अपने इलाके के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली NCR के भी लाखों शिवभक्त गंगा जल लेकर आए हैं और इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको मिलवाते हैं एक साल की शिवभक्त आराध्या से।

0: शिव, शिव का सावन और सावन की शिवरात्रि। शिव भक्तों के लिए इस पावन दिन का क्या महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो हरिद्वार से निकलने वाली हर सड़क पर केसरिया सैलाब है। हर हर महादेव के जय घोष से जमीन आसमान गुंजायमान है।
1: हाईवे पर लगातार बड़ी संख्या में कांवड़िए बाइक पर सवार शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे जल लेकर यहाँ से जाने के लिए, और जितनी बड़ी संख्या में ये लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य पर रवाना भी हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद कांवड़ियों की संख्या कम होती दिखाई नहीं दे।

0: सड़क पर जगह जगह बाइकें खड़ी हुई है, उनका किसका पता नहीं है कौन किसकी बाइक है। ये कांवड़िए बाइक खड़ी करके यहाँ से चले गए और ये बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए भी अब जल लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और हाईवे पर सीटियों की आवाज, कांवड़ियों की आवाज, बम बम भोले की आवाज या भोले शंकर की आवाज यही सुनाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इस तरह से कांवड़िए यहाँ पर जा रहे हैं। ये इस तरह का माहौल ही है, अलग ही तरीके का है। पुलिस प्रशासन जैसे ना के बराबर काम कर रहा है, खुद कांवड़िए सीटियां बजा बजा के अपना रास्ता खुद बना रहे हैं और यहाँ से जल लेकर रवाना हो रहे हैं और बड़ी कुशलता के साथ पूरी तरह से फिलहाल संपन्न हो रहा है।
1: शिवरात्रि पर भोले का जलाभिषेक करने की मनोकामना लिए जो हरिद्वार से चले अब दिल्ली NCR पहुंच चुके हैं। इन कांवड़ियों में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। यहां तक कि एक साल की आराध्या को शिवरात्रि पर जलाभिषेक करना है।
2: एक साल की आराध्या है। सबसे पहले तो मैं इस कैरियर से शुरू करूंगी कि बेबी कैरियर में किस तरीके से जो है उसको सजाया गया, क्योंकि ये आराध्या की जो है प्रथम कांवड़ यात्रा है। इन्होंने ये पोस्टर भी जो है इसलिए लगाया है, आराध्या की तस्वीर जो है इसमें लगाई गई है। और आराध्या की ये पहली कांवड़ यात्रा है गंगोत्री धाम से लेकर हैदरपुर। हैदरपुर के ये लोग निवासी हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप दिख जाएगा बम बम भोले के जयकारों के साथ इन्होंने ये नई शुरुआत करी है। इस बच्ची की एक साल की उम्र है, लेकिन भक्ति का ये भी रूप है जो देखने को मिलता है। हर साल ही अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आती है, लेकिन सबसे छोटा रूप मैं आपको भोले का दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से एक साल के बच्चे ने गंगोत्री धाम से ये यात्रा जो है शुरू करी और वो यहाँ पर दिल्ली आ पहुंची है। आराध्या के माँ बाप हमारे साथ है, इस वक्त मौजूद है। आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए।
3: प्रीति।
2: प्रीति, प्रीति। और आपका?
4: करण।
2: करण। करण, प्रीति सवाल ही पहले ये है, गर्मी बहुत है, हालांकि हर सावन में बारिश जरूर होती है लेकिन गर्मी भी होती है। माँ बाप तो जो है कर लेते हैं कि कवर करना है हमें जो है पैदल यात्रा करनी, लेकिन एक साल के बच्चे के साथ ये वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है।
3: नहीं, इतना खास मुश्किल भी नहीं है।
2: क्यों मुश्किल नहीं लगा?
3: अगर सारा लेके सामान चलो तो कोई मुश्किल नहीं होती है।
2: अच्छा, सारा सामान लेके साथ चलो, लेकिन बच्चे तो परेशान हो जाते हैं ना, गर्मी हो बारिश हो।
3: हाँ ये तो है, ये हरिद्वार के बाद ही परेशान करते हैं, उससे पहले नहीं करते।
1: पिता ने महादेव से बेटी की मुराद मांगी थी जो पूरी हो गई। अब माता पिता नन्ही आराध्या को प्राइम पर लेकर गंगोत्री से चल पड़े। हरिद्वार होते हुए आराध्या ने लंबी यात्रा तय की।
2: आराध्या का जल देखिए, कितना छोटी सी बच्ची का छोटा सा जल, मतलब ये तो होगा
3: ये गंगोत्री का है, बच्चे गंगोत्री का। ये महाकाली द्वार का है,
2: है। तो ये कितना है ML?
3: ये होगा
2: 500 ML लगभग होगा, ये बच्ची के साइज के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि 500 ML का जल जो है
3: गले में डाल गए।
1: करीब 500 ml गंगा जल जो आराध्या लेकर आई है मंगलवार को महादेव पर चढ़ाएंगी। इस एक साल की नन्ही शिव भक्त के साथ इस कांवड़ यात्रा में 53 साल की राजबाला भी हैं। कंधे पर 21 किलो वजन की कांवड़ लिए सिर्फ 5 दिनों में राजबाला ने ये यात्रा पूरी की है। और हाँ, बिल्कुल अकेले।
2: देखिए किस तरीके से अलग अलग पवित्र स्थानों से जल लेकर जो है जितने भी भोले के भक्त है वो दिल्ली में इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं। और मेरे साथ आंटी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले नाम बताइए और उम्र बताइए।
5: मैं राजा बिहार से आई हूँ, सेक्टर 18 रोहिणी से। मेरा नाम राजबाला है। मैं हर की पौड़ी से मैंने जल उठाया है, 21 लीटर मेरा जल है और मैंने 5 दिन में ही दिल्ली में संपर्क किया।
2: क्या उम्र है आपकी पहले?
5: मेरी 53 साल है।
2: 53 साल है और आप 5 लीटर जल जो है
5: 21 लीटर
2: जल 5 दिन में आप ये सफर तय करके आए।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये भोले की भक्ति की शक्ति है कि हर उम्र हर तबके के लोग तेजी से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी चंद दिनों में तय करते हुए शिवालय के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि शिवरात्रि पर जलाभिषेक करना है। जो पैदल जा सकते थे पैदल गए, पर जो मजबूर थे उन्होंने भी हार नहीं मानी। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाने वाले सुनील हर साल यूं ही अपनी ऑटो लेकर हरिद्वार जाते हैं।
2: सुनील जी इस वक्त हमारे साथ है, हालांकि पैरों में उस तरीके की शक्ति नहीं है जिस तरीके से वो चलकर जो है कांवड़ लेकर दिल्ली आ सके, लेकिन उसके बावजूद इस हालत में भी जो है ये टेम्पो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का ही टेम्पो है, इसको चलाकर जो है वो दिल्ली में आज यहाँ आए हैं जल लेकर। सबसे पहले तो ये बताइए आपकी उम्र क्या है?
6: मेरी उम्र है 45 साल।
2: 45 साल की उम्र है सुनील जी। आपने जल कहाँ से लिया है, क्योंकि अलग अलग पवित्र स्थानों से लोग जल लेकर?
6: नहीं, मैं हरिद्वार से जल उठाता हूँ और हरिद्वार से ही लेके आया हूँ।
2: हर साल लेकर आते हैं आप?
6: जी, हर साल लेके आता हूँ।
2: तो कितना लीटर जल लेकर आए हैं आप?
6: मैं जी 2 लीटर जल लेके आता हूँ और भोलेनाथ पे चढ़ाता हूँ।
2: भोलेनाथ पे आप चढ़ाते हैं, तो शिवरात्रि का

0: इंतजार है जिस दिन जो है आप जल अर्पित जो है जलाभिषेक जो है वो करोगे। अच्छा, अगर मैं यही पूछूं कि मन में इतनी आस्था आती कैसे, क्योंकि तकलीफ है, उस तकलीफ के बावजूद आपके साथ मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, बस नजर आ रहा है तो ये हरा रंग का टेम्पो जिसको आप चलाकर खुद यहाँ पर आए हैं।
1: ये तो बाबा की मर्जी है, बाबा बुलाते हैं चले जाते हैं और उनके नाम का ही जल चढ़ाते हैं जी।
0: कितने सालों से आप लोग आप आ रहे हो?
1: मेरी हो गई 20-22 साल।
0: 20-22 साल से, तो आप देख सकते हैं।

0: कितने सालों से आप लोग आप आ रहे हो?
1: मेरी हो गई 20-22 साल.
0: 20-22 साल से. तो आप देख सकते हैं कि 20-22 साल से ये यूं ही जो है जल लेकर जो है दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद जो है शिवालय जाकर जो है जल अभिषेक कर.
2: दिल्ली की सरहद पर कांवड़ियों का जमघट लगा है. गंगोत्री यहाँ हरिद्वार से लौटे हैं. रात भर के इंतजार के बाद शिवरात्रि पर जल अभिषेक होगा और तपस्या पूरी होगी. अकेले या दोस्तों के साथ या फिर परिवार को अपनी ऑटो रिक्शा में लिए कांवड़िए भक्ति में मगन है.
3: ऑटो उनकी रोजी रोटी है, इसी के जरिए इनका परिवार चलता है. लेकिन सावन के महीने में इसी रोजी रोटी इसी ऑटो पर ये अपने परिवार को बैठाकर निकल पड़े हरिद्वार की तरफ. वहां से जल लिया और अब वापस जा रहे हैं और कल शिवरात्रि है तो कल आप जल चढ़ाएंगे. जतिन आप कहां से चले थे आप?
4: हम चले थे बदरपुर से.
3: बदरपुर से
4: हाँ.
3: कौन है आपके साथ?
4: मेरे साथ मेरी वाइफ है, ये मेरी छोटी लड़की है, ये मेरा लड़का है. इसका नाम लवीस भोले है, इसका नाम कृषा भोली है, मेरा नाम जतिन भोला है, इसका नाम नीतू भोला है.
3: तो ये बेटी कितनी बड़ी
4: है? ये 3 साल की है.
3: और वो बेटा?
4: वो 2 साल का हो जाएगा अगस्त में.
3: 3 साल की बेटी है, 2 साल का बेटा है. बेटा का बर्थडे आने वाला
4: है अगस्त में,
3: 17 अगस्त को. तो बोले आप इसी से आपकी रोजी रोटी चलती है. पहले तो इतनी हिम्मत लाना कि आप 2-4 दिन के लिए ब्रेक लगा के अपने काम के लिए इसको लेकर निकल चलो, ये हिम्मत कहाँ से आई?
4: ये सब भोलेनाथ की कृपा है. बोल बन.
2: भोले भंडारी के लिए जो भक्ति भावना है उसे इन जख्मी पैरों से समझिए. पांव में छाले पड़ गए तो प्लास्टिक की बोतल को चप्पल की तरह पहन लिया और इसी तरह मीलों का सफर तय करके गंगा जल ले आए. लेकिन इसमें जो आनंद है उसकी मिसाल नहीं. 11 साल के राहुल को ही देख लीजिए.
3: मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो अपने साथ जल लेकर निकला है. हरिद्वार से चल के अब नोएडा तक पहुंच गया है और अब इसकी दूरी बहुत कम बची हुई है. क्या नाम बेटा आपका?
5: राहुल.
3: राहुल, राहुल कितने साल के हो आप?
5: 11.
3: 11. और जल कितना आपके पास?
5: 6 लीटर.
3: 6 लीटर जल है. पहली बार आए या पहले भी आए हो?
5: पहले भी आई.
3: पहले भी आए हो. कितनी एज से आ रहे हो?
5: 3 साल.
3: 3 साल से आ रहे हो. पहली बार जल कितना लेकर आए थे?
5: गाड़ी में आए थे.
3: पहली बार गाड़ी में आए थे. दूसरी बार?
5: दूसरी बार.
3: पिछली बार भी गाड़ी में आए थे. तुमने जल पहली बार उठाया है.
6: हाँ.
3: बहुत. तुम्हें रास्ते में कैसा लगा जब तुमने पहली बार कंधे पे रखा, कुछ दूर चले तो क्या लगा?
5: अच्छा लगा.
3: अच्छा लगा. थके तो नहीं वहां से यहाँ?
5: का
3: कोई चोट तो नहीं कहीं पे? कंधे दर्द तो नहीं?
2: ऐसे शिव भक्त लाखों की तादाद में है जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं और मंगलवार को अपने अपने शहर कस्बे या फिर गांव के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे. नोएडा से मनीष चौरसिया, दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
7: देखिए झारखंड के देवघर में भी कांवड़ यात्रा पूरी श्रद्धा और जोश के साथ लगातार जारी है. शिवरात्रि पर जहां पर लाखों की तादाद में शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे. चलिए आपको मिलवाते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली कृष्णा बम से. 74 साल की कृष्णा बम पिछले करीब 42 वर्षों से कांवड़ यात्रा कर रही है और इस साल भी कांवड़ लेकर देवघर के लिए निकल चुकी है.
8: मुजफ्फरपुर की 74 वर्षीय कृष्णा बम माता बम हमारे साथ हैं जो कई एक वर्षों से डाक बम प्रतीक सुमारी को मुजफ्फरपुर से जाती हैं और बाबा बैद्यनाथ धाम में चराती हैं.
9: ये भोलेनाथ की कृपा है कि 42 वर्षों तक लगातार सुल्तानगंज से बाबा धाम बिना रुके अनवरत चल के 16 घंटे में जल चढ़ाती आ रही थी. पिछले साल मेरा दोनों घुटना टूट गया था, मैं नहीं जा सकी इस बार. लेकिन महाकाल गई, महाकाल 4 दिनों में जल चढ़ाई. फिर इस बार मैं 2 तारीख को जल उठाई हूँ, 5 को महाकाल चढ़ा के रात में घर लौटी हूँ. फिर बाबा के यहाँ जाने की तैयारी है. अब डाक जल तो नहीं चलेगा लेकिन समर्पित शरीर है, भोलेनाथ मुझे जैसे ले जाए.
8: 42 वर्षों का ही साथ है बैद्यनाथ धाम बाबा का और आपका. प्रत्येक सुमारी को जाती थी और आज अब तैयार है, जा रही है. कितनी खुशी हो रही है इस बार?
9: खुशी हो रही है कि पहले तो मैं जाने लायक 10 दिन पहले नहीं थी लेकिन अचानक मेरा दिमाग चेंज किया है. टिकट 8 दिन पहले ली हूँ और खुशी हो रही है कि महाकाल में चढ़ा ली जल, दर्द कम हो गया तो बाबा फिर कहीं बुला ले हमें.
7: सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन में आस्था परंपरा और राजसी वैभव का अद्भुत संगम नजर आया. शाम करीब 4 बजे बाबा महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मन महेश स्वरूप ने भक्तों को दर्शन दिए. बाबा की एक झलक पाने के लिए

देखिए, श्रद्धालुओं के लिए सावन की शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और जलाभिषेक से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने जिस दिन विषपान किया था वो दिन सावन शिवरात्रि का ही था। विष से उनके शरीर में जब जलन शुरू हो गई तो देवताओं ने जलाभिषेक किया और तभी से शिवलिंग के अभिषेक की परंपरा चल पड़ी। जानकारों के मुताबिक इस साल शिवरात्रि पर ग्रहों का भी शुभ संयोग बन रहा है। रिपोर्ट देखिए।

0: इस बार सावन की शिवरात्रि पर मंगलवार का संयोग बना है। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है और मान्यता है कि शंकर ही केसरी नंदन है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। इस बार सावन में कई पावन संयोग बन रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को प्रदोष का महासंयोग बना। सोमवार और प्रदोष के अवसान का मिलन महाशिवरात्रि के साथ होने जा रहा है। साफ है कि सावन की शिवरात्रि के अति पावन मौके पर इस बार भगवान भोले की विशेष कृपा बरसने वाली है। इस बार सावन की शिवरात्रि मनोकामनाओं के पूर्ण होने का खास अवसर लेकर आ रही है। इस बार शिवरात्रि पर कई शुभ और दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जो भोले के भक्तों के लिए वरदान साबित होंगे। इस बार शिवरात्रि के मौके पर चंद्रमा पुनर्वसु के पश्चात पुष्य नक्षत्र से कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे गौरी योग का संयोग बनेगा। साथ ही इस बार शिवरात्रि के दिन चंद्रमा की युति सूर्य, बुध और गुरु के साथ होने से चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। गुरु और चंद्रमा साथ होने से गज केसरी योग भी बन रहा है। इस बार सावन शिवरात्रि पर शिव कृपा का लाभ सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा, लेकिन विशेष लाभ मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को मिलने वाला है। इस बार शिवरात्रि के दिन जो शिव भक्त अपने आराध्य की चारों पहर पूजा और अभिषेक करेंगे, उनके लिए चौतरफा लाभ का योग बन रहा है।
1: श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना बड़ी ही विशिष्ट फल देती है, चाहे वो मंत्र का जप हो, रुद्राभिषेक हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप हो, किसी भी तरीके से हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन हम पवित्र सरोवर का जल ला करके किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर में शिवलिंग पर अगर जलाभिषेक करते हैं तो उसका भी अलग पुण्य प्राप्त होता है। यदि इस दिन व्रत रह करके रात्र में, मध्य रात्र में, महानिशा काल में या चारों प्रहर में, रात के चारों प्रहर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए और विभिन्न वस्तुओं से, चाहे दूध से, साध से, पंचामृत से, गंगा जल से, यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के सुखों का वरदान देते हैं।
0: साफ है कि इस बार सावन की शिवरात्रि भोले भंडारी के भक्तों के लिए कई अलौकिक अवसर लिए हुए है। यही वजह है कि इस बार भोले के भक्त विशेष तौर पर कावड़ियों का उत्साह और उमंग अलग ही दिख रहा है। दरअसल शिव सृष्टि का आधार है, शिव सत्य है, आशुतोष है, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, आनंद हैं, शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु है और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी, शिव ज्ञान स्वरूप हैं, स्वर और संगीत के प्रणेता हैं, इनके डमरू से उत्पन्न नाद ही ब्रह्म है, अनादि हैं इसलिए अप्रमेय हैं। इसलिए शिव के दिव्य अलौकिक स्वरूप की अनुभूति उनकी चेतना का साक्षात तर्क यानी लॉजिक से संभव नहीं है। उसी अचिंत्य अप्रेम में अनादि शिव को सावन अत्यंत प्रिय है। सावन का शिवरात्रि महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत अवसर है। सावन की शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी बताया गया है।
1: ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, पवित्र मंदिरों में, प्रतिष्ठित मंदिरों में जाकर अभिषेक करते हैं या घर पर या नदी के किनारे कहीं भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की उपासना करते हैं तो अद्भुत परिणाम जीवन में प्राप्त होता है और व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सरलता पूर्वक कर लेता है।
0: सनातन धर्म में सावन का महीना अत्यंत पावन माना जाता है। वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का तत्व कण कण में ऐसे घुल जाता है कि मन की वीणा के तार से सिर्फ भक्ति के सुर निकलने लगते हैं। चूँकि सावन का महीना शुरू होते ही पावस ऋतु अपनी पूर्ण रवानी में होती है, इसलिए प्रकृति भी मनमोहक हरियाली से खिल उठती है। हरियाली से ढकी धरती पर भगवान भोले के भक्त भगवा पोशाक में कांधे पर कांवड़ लेकर जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है भगवान भास्कर की रश्मियां किसी घने मनोरम उपवन का श्रृंगार कर रही हो। हिंदुस्तान में यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है, सदियों से चली आ रही है। सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान भोले के अभिषेक का इतना ज्यादा महात्म्य के पीछे देवासुर संग्राम की पौराणिक कथा को आधार माना जाता है। समुद्र मंथन के बाद कालकूट यानी हलाहल और अमृत दोनों का प्राकट्य हुआ। अमृत पाने की होड़ में देवताओं और असुरों के बीच संग्राम छिड़ गया, लेकिन विषपान के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सृष्टि के व्यापक कल्याण के लिए भगवान शिव ने हलाहल पीने की जिम्मेदारी उठाई। हलाहल पीने के बाद उसके प्रभाव से भगवान भोले का गला नीला पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का अभिषेक किया। देवताओं के अभिषेक से भगवान भोले को काफी लाभ हुआ और महादेव देवताओं पर अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से ये दिन सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था, तब से इसी तिथि को सावन की शिवरात्रि के तौर पर मनाने की परंपरा चल पड़ी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावन की शिवरात्रि को अभिषेक करने से भगवान भोले अभी भी उतने ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं।
1: शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से जो हलाहल निकला था उसको उसका पान कर लिए थे, इस कारण से उनका शरीर तप रहा था। भगवान शिव उस हलाहल विष को कंठ में धारण कर लिए थे, इस कारण से उनका मस्तक गर्म हो गया था। उनको शांति प्रदान करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको आराम प्रदान करने के लिए देवी देवता और मनुष्य सभी जलाभिषेक करते हैं। जिस कारण से भगवान शिव का जो शरीर की गर्मी है वह शांत होती है, तो समुद्र मंथन के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है।
0: दरअसल ये दुनिया विश्वास की धुरी पर टिकी हुई है। विश्वास अगर अचल है तो उससे अद्भुत शक्ति मिलती है और यही शक्ति असंभव से असंभव कार्य की प्रेरणा बन जाती है। भोले के भक्तों का विश्वास है कि सावन की शिवरात्रि को जल अभिषेक करने से लोक परलोक दोनों सुधरता है। दरअसल सनातन के संगतों में शिवरात्रि की अद्भुत महिमा बताई गई है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन निश्चित काल यानी मध्यरात्रि की वेला में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ धरती पर विचरण करते हैं। यही वजह है कि शिवरात्रि की मध्यरात्रि को जल अभिषेक करने वालों को गौरी शंकर का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सावन की शिवरात्रि को भोले भंडारी की पूजा करने से कुंडली में मौजूद तमाम ग्रह दोष जैसे काल सर्प दोष, पितृ दोष और शनि दोष के अशुभ प्रभावों से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि की तिथि को किए गए दान पुण्य का भी शीघ्र लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली, 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, 2 दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मानसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान, ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का संदेश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: हरिद्वार में डाक कांवड़ के आखिरी दिन सड़कों पर सैलाब, गंगा जल लेकर रात दौड़ते हुए नजर आए कांवड़िए, बाइक पैदल और डाक वाहनों से रवाना। कल शिवरात्रि पर होगा जलाभिषेक, गंगा जल लेकर गंतव्य की ओर जा रहे हैं डाक कांवड़िए, सड़कों पर दिखाई दे रहा है कांवड़ियों का रेला। रास्ते में बिना रुके दौड़ रहे शिवभक्त, सीटी बजाकर बना रहे हैं आगे बढ़ने का रास्ता। हाईवे पर बाइक और डाक कांवड़ वाहनों की कतारें, भोलेनाथ के जयकारों की गूंज। डाक कांवड़ के अंतिम दिन आस्था और भक्ति चरम पर, ग्रुप बनाकर तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं कांवड़िए। मेरठ में बुलडोजर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, सिवाया टोल पर दुकानों का नजारा, 61 किलो फूलों से हुआ स्वागत। बुलडोजर पर सवार होकर बरसाए गए फूल, हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों का भव्य स्वागत हुआ, कांवड़ियों में शिव भक्तों को केले और कोल्ड ड्रिंक भी दी गई। शिवरात्रि से पहले सड़कों पर बढ़ी कांवड़ियों की भीड़, दिल्ली एनसीआर में के जरिए रंग का सैलाब, तीसरी कक्षा का बच्चा भी नजर आया साथ। भी बच्चों के साथ ऑटो में लेकर निकली कांवड़, ऑटो में सवार होकर दिल्ली से हरिद्वार पहुंचा पूरा परिवार। 18 दोस्तों की टोली ने भी उठाई कांवड़, मौज मस्ती के साथ भक्ति में पूरी तरीके से रंगा हुआ है माहौल। उरैयम पुष्प वर्षा से कांवड़ियों और शिव भक्तों का स्वागत, एएसपी और पुलिसकर्मियों ने बरसाए फूल। देवकाली मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हजारों शिव भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। गाजियाबाद में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, शिव भक्तों का फूलों से किया गया स्वागत, अफसरों और विधायक ने मंच से बरसाए फूल। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा का दिखा अनोखा रंग, पुष्प वर्षा से कांवड़ियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। ड्रोन और कंट्रोल रूम में कांवड़ यात्रा की निगरानी, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। उत्तर प्रदेश के बागपत में महिला कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम, पूरा महादेव में पहली बार पिंक प्लान, पिंक शिविर और पिंक टॉयलेट तैयार। महिला अफसरों के लिए हाथ में सुरक्षा की कमान, हर पिंक शिविर में महिला अफसर तैनात। महिलाओं के लिए विशेष बसें तैनात, ई व्हीकल की सुविधा भी मिलेगी। कांवड़ियों से केसरिया हुआ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, हर तरफ गूंज रहा है बोलबम के जयकारे, झूमते गाते नजर आ रहे हैं बैद्यनाथ के लिए कांवड़िए। चंदौली के कांवड़ियों ने जमाया भक्ति का रंग, प्लेटफॉर्म पर गूंज रहे हर हर महादेव के जयकारे। भागलपुर में बोलबम यात्रा में सजीव बस बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, हर साल नए रंग रूप में नजर आती है। गंगाधाम से बाबा धाम तक भक्तों का सफर, 26 साल से लगातार जारी अनोखी यात्रा, दुल्हन की तरह सजी बस ने खींचा ध्यान। नागालैंड और बंगाल के शिव भक्तों में जोश आए, यात्रा मार्ग के मंदिर मठों में दर्शन करते हुए जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं बाबा धाम। साइकिल से बोलबम यात्रा कर रहा, सिलीगुड़ी से बाबा धाम पहुंच रहे हैं शिव भक्त अनिल पूर्वे। सुल्तानगंज देवघर वासुकीनाथ तारापीठ में करते हैं जलार्पण। अकोला में महिलाओं ने निकाली भव्य कांवड़ यात्रा, ओम नमः शिवाय से गूंजा पूरा शहर। सावन में अकोला में दिखा भक्ति का अनोखा रंग, गोरक्षण रोड से मंदिर तक कांवड़ के साथ पैदल यात्रा। पांडा में कांवड़ियों की भक्ति का अनोखा अंदाज, पालकी में सवार होकर निकले भोलेनाथ, कांवड़ियों के कंधों पर विराजे शिव। चित्रकूट से मंदाकिनी जल लेकर बांदा पहुंचे कांवड़िए, 3 दिन में पूरी की पैदल कांवड़ यात्रा। भक्ति में डूबे नजर आए कांवड़िए, भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर दिखा रहे हैं जबरदस्त उत्साह, हर हर महादेव के जयकारे। वाराणसी के गौरी केदारेश्वर धाम में उमड़े शिव भक्त, बेलपत्र दूध और गंगाजल से जलाभिषेक। सावन भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु, भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं शिव भक्त, विधि विधान से कर रहे हैं पूजा अर्चना। काशी केदारनाथ पर भी दिख रहा भक्ति का जबरदस्त रंग, हर हर महादेव के जयकारे। आस्था और भक्ति में डूबी नजर आई काशी, जलाभिषेक करके भक्त सुख समृद्धि की कर रहे हैं कामना। हर हर महादेव के जयकारों की गूंज, गौरी केदारेश्वर धाम में दिख रहा अद्भुत नजारा। काशी बाबा विश्वनाथ के दरबार में उमड़ा शिव भक्तों का हुजूम, दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें, हर हर महादेव की गूंज। कांवड़ियों और डाक बम से गुलजार हुआ धाम, जलाभिषेक को भक्तों में जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने किया जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक, बेलपत्र और फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना भी की। टिहरी गढ़वाल के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़ रहे भक्तों की भारी संख्या, श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सुबह से ही मंदिर में लगी हुई लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने दुग्ध, बेलपत्र और धतूरा भी चढ़ाया। पूर्वी चंपारण के बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर में आस्था का सैलाब, दर्शन करने के लिए लंबी कतारें। बाबा सोमेश्वर नाथ के जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर, बाबा सोमेश्वर नाथ की भक्ति में सरोवर नजर आए श्रद्धालु। सहारनपुर में भूतेश्वर बाबा के दरबार में भक्तों का तांता शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचेगी 50,000 से ज्यादा कांवड़ी है। भूतेश्वर महादेव मंदिर में खास मान्यता, 40 दिन का जल चढ़ाने से पूरी होती है मुराद। मुरादाबाद के कामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का लगा मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने जलाभिषेक किया। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, सुबह से मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए लंबी कतारें। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में लगा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव धाम में भक्तों का मेला, भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया। मधेपुर में सावन में मां गंगा की उतारी गई भव्य आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मधेपुरा में सिंहेश्वर धाम में लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में सुबह से भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लखीसराय के इंद्रा दमनेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। हापुड़ के श्री श्यामेश्वर महादेव में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सीतापुर में श्यामनाथ मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सुबह सुबह अधिकारियों ने मंदिर परिसर का जायजा लिया। रोहतास के गुप्ता धाम में 60,000 श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के किए दर्शन, सुबह से लंबी कतारें। मनेर में सावन महोत्सव की धूम, पारंपरिक परिधानों में जमकर झूमी महिलाएं। चित्रकूट में शिव मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतारें, हर हर महादेव की जय घोष। मुजफ्फरपुर में खरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। औरैया में दूसरे सोमवार को भयानक नाथ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें। रायसेन के सोमेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पहाड़ों में सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आखिरी सोमवार पर बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को बांटी गई खीर, भक्तों ने लगाए बोलबम के जयकारे। बद्रीनाथ धाम में मानसून में टूटे यात्रा के रिकॉर्ड, 16,00,000 श्रद्धालु पहुंचे बद्री विशाल के दरबार। बाबा बद्री के दर्शन करने के लिए सुबह से लगी लंबी कतारें, जय बद्री के जयकारे। पाली में शिव भक्ति का अनोखा अंदाज, पीपल के पत्तों पर उकेरी भोलेनाथ की भव्य आकृति। पीपल के पत्ते पर बने कैनवस कटर से महीन नक्काशी करके बनाते हैं आकृतियां। पीपल के पत्तों पर दिखाते हैं बारी कला, शिव भक्ति ने बनाया हुनर को खास। जालना में संत गजानन महाराज की पालकी का भव्य स्वागत हुआ, दर्शन करने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, वारकरियों के जयघोष से गुंजायमान हुआ माहौल। जालना में देखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, वारकरियों को गुलाब के फूल देकर सम्मानित किया गया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला का निरीक्षण किया, मवेशियों को खिलाया चारा। अयोध्या में चंपतराय ने साधु संतों से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नागपुर में पूर्व सैनिकों ने निकाली तिरंगा यात्रा, 700 फीट की तिरंगे ने जगाया राष्ट्र अभियान। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जमकर लगे भारत माता के जयकारे। अगले साल 2027 में अजय देवगन का बड़ा धमाका, किल के डायरेक्टर निखिल संघ एक्शन फिल्म के लिए मिलाया हाथ। सोनू निगम ने सर्जरी के बीच गाया मोहम्मद रफी का गाना, हॉस्पिटल बेड से शेयर किया वीडियो, श्रेया घोषाल ने जल्द रिकवरी की कामना की। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का धमाल, भारत में बनी नंबर वन हॉलीवुड फिल्म, कमाए 455 करोड़। राजा मौली की वाराणसी से रुद्र का धांसू फर्स्ट लुक निकलकर सामने आया, महेश बाबू के 51वें बर्थडे पर फैंस को तोहफा। आकांक्षा चमोला ने मेटा से मांगी मदद, इंस्टाग्राम यूजर नेम से हटाना चाहती हैं गौरव कसर ने। कोलंबिया के मेडलिन में फूलों की परेड का 69वां साल, फूलों से सजी सेलेटा बनी आकर्षण का केंद्र। पीठ पर फूलों का भारी बोझ, चेहरों पर दिखी मुस्कान, किसानों ने 80 किलो तक की सेलेटा उठाई। मैडलिन के फूल उत्सव में दिखी रंगों की बहार, सांता एलेना के किसानों ने सजाया शहर। फूलों की भव्य सजावट ने जीता लोगों का दिल, 18वीं 19वीं सदी से जुड़ी सेलेटा परंपरा आज भी कायम। फूलों की परेड से पर्यटन को भी बढ़ावा, 2026 में 60.6 मिलियन डॉलर्स खर्च की उम्मीद। कैलिफोर्निया में कॉर्गी डॉग्स की रफ्तार का जलवा, नेशनल स्प्रिंट सीरीज में हुई जबरदस्त रेस। वुडलैंड में कॉर्गी डॉग्स की अनोखी रेस, येलो काउंटी फेयर में दर्जनों कॉर्गो ने हिस्सा लिया। कॉर्गी नेशनल स्प्रिंट सीरीज में 40 डॉग्स शामिल हुए, हीट सेमीफाइनल्स और रॉ फाइनल्स में हुआ मुकाबला। पोर्टलैंड में कॉर्गी डॉग्स ने बटोरी सुर्खियां, छोटे कद लेकिन रफ्तार में तेजी। किसी ने लगाई रफ्तार तो कोई जो है बीच में रुक गया, फिनिश लाइन पर जीत के लिए जमकर दौड़े डॉग्स। चीन की रोबोट कंपनी यूनिट्री का आईपीओ सब्सक्रिप्शन हुआ शुरू, निवेशकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। 150.80 युआन प्रति शेयर तक हुई कीमत, आईपीओ से करीब 6.10 अरब युआन जुटाने की तैयारी। यूनिट्री ने रोबोटिक्स बाजार में बढ़ाई अपनी पकड़, 2023 से 2025 तक 33,000 से ज्यादा रोबोट्स भेजे। चीन के ल्हासा में हाईलैंड कॉफी कल्चर वीक हुआ आयोजित, खास पुरोवर कॉफी ने खींचा सभी का ध्यान, तिब्बती अंदाज के क्रिएटिव रिंग्स भी परोसे गए। कनाडा में जंगल की आग के बीच मदद का हाथ, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग और डॉग्स। जंगल की आग के बीच देवदूत बने मददगार, पेंटिंग्स शेल्टर में लोगों को किया जा रहा है शिफ्ट। के बीच सुरक्षित ठिकाना बना पेंटिंग टैंक्स शेल्टर, मुश्किल वक्त में इंसानियत की खूबसूरत तस्वीर। चीन का समर बॉक्स ऑफिस 8.5 अरब युआन के पार पहुंचा, 30 दिनों तक रोज 100 मिलियन युआन से ज्यादा कमाई। चीन के सिनेमाघरों में फिल्मों की धूम, समर सीजन में 23 करोड़ 30 लाख से ज्यादा दर्शकों ने देखी फिल्में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: सावन की शिवरात्रि की क्या है महिमा, सावन की शिवरात्रि का क्या होगा उपाय, और सावन की शिवरात्रि का क्या होगा पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: श्रावण के दूसरे सोमवार पर उज्जैन में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। राजाधिराज बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले तो पूरा शहर शिवमयी नजर आया। चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप और हाथी पर मनमहेश स्वरूप में बाबा ने भक्तों को दर्शन दिए। महाकाल मंदिर में विधि विधान के साथ पूजन के साथ ही शुरू हुई राजाधिराज बाबा महाकाल की शाही सवारी। चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा महाकाल जब मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो पुलिस के सशस्त्र जवानों ने बैंड की धुन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इस शाही सवारी में भक्ति के रंग भी बखूबी नजर आए। कहीं पर डमरू और झांझ मजीरे गूंज रहे थे तो कहीं पर भजन मंडलियां बाबा की भक्ति में पूरी तरीके से लीन थी। सवारी मार्ग पर जिधर नजर डालेंगे आप उधर आस्था का सैलाब देखने को मिला। भक्तों ने पुष्प वर्षा करके अपने आराध्य का स्वागत हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर गूंजा।

0: सवारी की परंपरा यह है कि जो भी भक्त, चूंकि महाकाल यहाँ के राजा है, अवंतिका के राजा है, तो एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति जो दायित्व कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह करने के लिए बाबा महाकाल आज नगर भ्रमण पर निकलते हैं। जो भी वृद्ध हो, अशक्त हो, या जो किसी कारणवश राजा के दर्शन करते हैं उनके मंदिर में या अपन उनके महल में नहीं आ सकते हैं, तो राजा स्वयं अपने भक्तों को और जो लोग सावन का सोमवार करते हैं और वो उनको दर्शन देने के लिए जाते हैं और उनका दर्शन करके, पालकी का दर्शन करके ही लोग अपना उपवास तोड़ते हैं। इसी परंपरा को एक राजा के स्वरूप में बाबा महाकाल निर्वाह करते हैं।
1: मैं पहली बार उत्तराखंड से आया हूँ और महाकाल का दो दिन में ऐसा बुलावा आया कि बाबा ने यहाँ बुलाया और इतने भव्य दर्शन मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं किए। आनंद ही आनंद बरस रहा है यहाँ पर, और ऊपर से भी आनंद बरस रहा है और महाकाल की नगरी में भी आनंद ही आनंद बरस रहा है। सारी जनता, सारे लोग, जितने भी भक्तजन हैं, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जय महाकाल।
2: जरा सोचिए, समुन्दर के किनारे खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखें और वहां आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई नजर आए तो नजारा कैसा होगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहां पर आसमान ने जैसे रंगों की चादर ओढ़ ली हो। मौका था गाले फेसा ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का, जहां पर श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से आए काइट फ्लायर्स ने अपने हुनर का जलवा दिखाया।
3: आसमान में लहराती पतंगों को तो आपने खूब देखा होगा और इंद्रधनुष की खूबसूरत छटा को भी, पर क्या हो जब पतंगों की दुनिया में इंद्रधनुषी रंग भी शामिल हो जाएं? ये कुछ ऐसा ही नजारा है जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है। तस्वीरें हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की। मौका था कोलंबो के गाले फेस ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का। इसमें विशाल काय पतंगों के साथ ही अलग अलग आकृतियों और रंगों वाली छोटी बड़ी पतंगे भी देखने को मिली। यहाँ हर किसी में उत्साह, उमंग और आसमान को छू लेने का जुनून नजर आ रहा था। श्रीलंका में आयोजित ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आए काइट फ्लायर्स ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार करीब 30 देशों के 80 अंतर्राष्ट्रीय काइट फ्लायर्स और 1500 से ज्यादा स्थानीय प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।
4: This is a beautiful kite festival. I've never seen anything like it. It's such a family friendly festival. And right on the beach here, and the wind is beautiful, the people are beautiful, the weather's all beautiful.
3: Din hi nahi, is event ne raaton ko bhi roshan rakha. Raat mein aasman mein patangon ka shandaar nazara dikha. Andhere aasman mein roshni se jagmagati patangon ne Colombo ke skyline ko ek alag hi andaaz de diya. Samandar ki lehrein, khula aasman और उसमें उड़ती सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे। कोलंबो का ये नजारा सिर्फ एक फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है बल्कि श्रीलंका की संस्कृति, रचनात्मकता और पर्यटन को दुनिया के सामने पेश करने की एक कोशिश भी है। कोलंबो का ये काइट फेस्टिवल श्रीलंका के पर्यटन अभियान को एक नया रंग देता दिखा। यहाँ पतंगों की डोर ने सिर्फ आसमान को नहीं छुआ बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को भी एक साथ जोड़ा। यानी कोलंबो में पतंगों के बहाने आसमान भी सजा और श्रीलंका ने दुनिया को अपनी खूबसूरती और संस्कृति की एक रंगीन झलक भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली, 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मॉनसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान, ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का संदेश।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आज आपको जानकारी देते हैं कि आज इस शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं पंडित जी के साथ। आज चर्चा का विषय है सावन की शिवरात्रि। चूंकि सावन की शिवरात्रि का मौका है, सावन की शिवरात्रि क्यों खास होती है, इस दौरान कौन कौन से अचूक उपाय हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, इन तब के बारे में हम जानकारी पंडित जी से लेंगे। अंत में जाकर आपको महाउपाय के बारे में भी बताएंगे, आपकी राशियों के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या कहता है।
1: सावन की शिवरात्रि पर जब भी मौका मिले, बेहतर होगा शाम के समय शिव मंदिर में एक घी का दीपक जरूर जला दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी तमाम आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 11 अगस्त 2026 मंगलवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, प्रातः 10:09 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। पंडित जी से पूछते हैं कि शिवरात्रि का पर्व क्यों खास होता है पंडित जी, और इसकी महिमा क्या है, उसके बारे में जानकारी दीजिए।
1: जी देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। भगवान शिव से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व शिवरात्रि माना जाता है। सामान्यतः शिवरात्रि को चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि शिवरात्रि पर प्रकाश के लिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी मान्यताएं ऐसा कहती हैं कि शिवरात्रि पर शिव जी का विवाह भी हुआ था। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल जाता है। शिवरात्रि पर व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। वैसे तो हर महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन साल की 2 शिवरात्रियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है फाल्गुन की शिवरात्रि, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, और सावन का महीना चूंकि शिव जी का महीना है इसीलिए सावन की चतुर्दशी यानी शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। सावन की शिवरात्रि पर लोग पवित्र नदियों से कांवर में जल भर करके लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। अपनी मान्यताओं के अनुसार पवित्र नदियों से जल भरते हैं और लाकर ज्योतिर्लिंग पर या अपने आसपास के शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कांवर में जल भर करके ला करके अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो इससे पापों का नाश होता है।
0: और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आते हैं राशिफल पर और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष वृष और मिथुन वालों की, जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या है।
1: मेष राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, करियर में आपके दबाव बढ़ेगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, नया काम कर सकते हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, शिव जी को बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: पंडित जी एक चीज बताइए, शिव जी की उपासना का चूंकि दिन है तो क्या सही विधि विधान है जिस तरह से आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं?
1: शिव जी की उपासना सावन की शिवरात्रि पर कैसे करना चाहिए, क्या सरल और उचित तरीका होगा वो आपको बताते हैं। स्नान करिए, 12 बजे के पहले नहा लीजिए, स्नान करके शिव जी की पूजा का संकल्प लीजिएगा। इसके बाद शिव जी को मंदिर में जा करके जल अर्पित करिएगा और इसके बाद अलग अलग वस्तुओं से भगवान शिव की पूजा करिएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, इनसे शिव जी की पूजा करिए और पूजा करने के बाद शिव जी के मंत्रों का जप करिएगा। शिवरात्रि पर दिन में पूजा करने का जितना महत्व है उससे ज्यादा महत्व रात की पूजा का है, तो रात में शिव मंत्रों का आप चाहें तो जप करें और मध्य रात्रि में रुद्राष्टक या शिव स्तुति का पाठ करिएगा। अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं शिवरात्रि पर तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजा करिएगा। हर पहर में दूध, दही, घी और शहद के अलावा शिव जी को जल भी चढ़ाइएगा। शिवरात्रि में आप दिन में जितनी भी पूजा करें, शाम को जितनी भी पूजा करें, लेकिन रात की पूजा करना आवश्यक है। अगर शिवरात्रि में आप रात को जग करके पूजा करें तो उसके परिणाम और उसके प्रभाव ज्यादा शुभ होंगे।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली तीन राशियों का भी हाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कि इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। अब बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की।
1: कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90।

हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: योग हैं, धन लाभ के योग हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों के सवालों का वक्त हो चला है। आपका पहला सवाल कौन सा है पंडित जी से जाने, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, परेशानी है, उसका निवारण आप चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल ईमेल आईडी के माध्यम से इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है?
0: जी, आज का पहला प्रश्न दिव्या जी ने हमें लिखा है और दिव्या जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। 15 जून 1990 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 8:15। जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। दिव्या कह रही हैं कि मेरा विवाह 2 साल पहले हुआ था लेकिन अब मेरा विवाह नहीं चल पा रहा है, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? दिव्या, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह के चलने की संभावना दिखती है। थोड़ी सी शांति और धैर्य बनाए रखिए, इस साल के अंत तक आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, साल 2026 के लास्ट तक। थोड़ी सी शांति रखें, मामला हल होने वाला है। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम एक एक बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और जानते हैं कौन से दर्शक का अगला सवाल पंडित जी तक आया है।
0: जी, अगला प्रश्न सुधीर जी ने हमें लिखा है और सुधीर जी हमें हरिद्वार उत्तराखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1980। जन्म का समय रात में 11:35। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। सुधीर जी कह रहे हैं कि काफी समय से मैं नौकरी बदलने का प्रयास कर रहा हूं, मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? सुधीर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी बदलने का समय चल रहा है और ज्यादातर संभावना है कि नवंबर दिसंबर के महीने में आपकी नौकरी बदलेगी। आप बेहतर नौकरी में जाएंगे और नौकरी बदलने के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। नौकरी आपकी जल्दी बदल जाए, नौकरी आपकी बेहतर हो जाए, इसके लिए सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मोती बनवा के पहने, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको

0: लाभ होगा।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, प्रश्न ये है कि धन की प्राप्ति के लिए इस दिन कौन कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं जिसका भरपूर फायदा हर किसी को प्राप्त हो।
0: सावन की शिवरात्रि पर धन प्राप्त करने के प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये भगवान शिव को अर्पित करें। इन वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद शिव जी को जल की धारा अर्पित करें और फिर भगवान शिव से धन प्राप्त करने की प्रार्थना करें। सावन की शिवरात्रि पर अगर रात के समय में आप ऐसा करते हैं और शिव जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी।
1: चलिए, इस उपाय के बारे में तो पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है। अब अगला प्रश्न भी पंडित जी से पूछते हैं कि इस दौरान क्या करना चाहिए। संतान अगर किसी को नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए शिवरात्रि पर कौन से ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिसका फायदा दंपत्ति को मिले। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे,
0: अगर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? सावन की शिवरात्रि पर पति पत्नी एक साथ मिल करके शिवलिंग पर गाय के दूध का बना हुआ घी अर्पित करेंगे। इसके बाद जल की धारा अर्पित करेंगे और फिर पति पत्नी एक साथ मिल करके संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। ये प्रयोग सावन की शिवरात्रि पर प्रदोष काल में भी किया जा सकता है और सावन की शिवरात्रि पर मध्य रात्रि में भी कर सकते हैं।
1: चलिए, राशिफल पर वापस आते हैं और अगली तीन राशियों का हाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। अभी बारी है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है।
0: तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएं। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि किसी का अगर विवाह नहीं हो रहा, किसी की शादी किसी वजह से रुकी हुई है, शीघ्र विवाह वो करना चाहते हैं, तो कौन कौन से अचूक उपाय ये सभी कर सकते हैं?
0: शीघ्र विवाह के लिए आप सावन की शिवरात्रि पर एक विशेष प्रयोग प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में कर सकते हैं। शिवलिंग पर अपनी उम्र के बराबर बेल पत्र अर्पित करिए प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में, और एक एक करके बेल पत्र चढ़ाइएगा। हर बेल पत्र के साथ कहिएगा नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये हर बेल पत्र के साथ कहिएगा। और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर सावन की शिवरात्रि पर ये प्रयोग करते हैं या करती हैं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा।
1: पंडित जी, अब ये बताइए कि रोजगार प्राप्ति के लिए मनचाही नौकरी अगर आप चाहते हैं, अगर आपको नहीं मिल पा रही है, तो इस दौरान कौन कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो ये लोग कर सकते हैं?
0: अच्छे रोजगार के लिए, बेहतर नौकरी के लिए सावन की शिवरात्रि पर क्या करेंगे? शिवरात्रि पर प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ाएंगे। जल धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। इसके बाद शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाइएगा। अगर प्रदोष काल में संध्या काल में उपाय करते हैं, तो पहले उपाय करें फिर 11 घी के दीपक जलाएं। अगर रात में उपाय करते हैं, तो पहले उपाय करें और फिर 11 घी के दीपक जलाइएगा। रोजगार और नौकरी की समस्याएं हल हो जाएंगी।
1: चलिए, रोजगार प्राप्ति के लिए आपको कौन कौन से अचूक उपाय करने हैं वो तो पंडित जी ने आपको बताया। बात करते हैं स्वास्थ्य की, सेहत की और आरोग्य रहने के लिए कौन कौन से अचूक उपाय जो किए जा सकते हैं इस दिन, वो पंडित जी से जानते हैं।
0: सावन की शिवरात्रि पर अगर आप प्रार्थना करें, पूजा करें, तो आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और आरोग्य की प्राप्ति होगी। क्या करेंगे? इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिए। चंदन का इत्र हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जल अर्पित करिए। अगर मंदिर में बैठने का स्थान मिले तो मंदिर में ही ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला जप करिए, या घर पर आकर के इस मंत्र को 11 माला जपिएगा। अगर संभव हो तो एक दाना रुद्राक्ष शिवलिंग से स्पर्श कराकर या रुद्राक्ष की माला शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने गले में धारण करिएगा। अगर सावन की शिवरात्रि पर आप ऐसा करते हैं, तो ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी।
1: और चलिए, राशिफल के अंत की तरफ पहुंच गए हैं और अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं पंडित जी से इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए फिर से वापस आते हैं दर्शकों के सवाल के ऊपर। और अगला सवाल कौन से दर्शक ने भेजा है इस शो में पंडित जी से अपना प्रश्न पूछने के लिए। पंडित जी, आपसे ही जानते हैं कि कौन सी दिक्कत का समाधान आप करने वाले हैं।
0: जी, अगला प्रश्न सपना ने हमें लिखा है और सपना हमें रांची झारखंड से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अप्रैल 2002, जन्म का समय दोपहर के 1:45, जन्म स्थान है रांची। सपना कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूं, क्या मैं सरकारी नौकरी में जा सकूंगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सपना, अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट या अकाउंटिंग के क्षेत्र में प्रयास करें तो बैंकिंग या फाइनेंस आदि के क्षेत्र में आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकेंगी। और अगर आप अभी से तैयारी करें तो साल 2027-28 का अच्छा समय है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है इस शो में दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक ने पंडित जी को भेजा है।
0: जी,

0: उदय प्रताप जी ने वाराणसी से लिखा है हमें, इनकी जन्म की तारीख है 6 मार्च 1965, जन्म का समय रात में 9 बजे, जन्म का स्थान है सिवान बिहार में, लिखते हैं वाराणसी से। उदय प्रताप जी कह रहे हैं कि बहुत समय से मैं मकान बनवा रहा हूं लेकिन मेरा मकान आधा ही बन पाया है, पूरा नहीं बन पाया है, तो मेरा मकान कब तक पूरा होगा और नए मकान में मैं कब तक जा पाऊंगा। उदय प्रताप जी, आपका मकान बनने का समय चल रहा है और ऐसा लगता है कि आपका मकान 2027 के अप्रैल के पहले बन पाएगा और 2027 के जून के बाद आप नए मकान में प्रवेश कर पाएंगे। शनि की निगेटिव स्थिति की वजह से प्रॉपर्टी के मामले में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ऐसा करिए, रोज सुबह शाम एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं, जिन लोगों का जन्मदिन है 11 अगस्त को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिनका जन्मदिन 11 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर और धन की स्थिति ठीक रहेगी, संपत्ति निर्माण के योग बन रहे हैं, अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं शो के अंत की तरफ और पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव जी को तुलसी दल या तुलसी के पत्ते अर्पित किए जा सकते हैं? देखिए, सामान्यतः शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते या तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन स्कंद पुराण ऐसा कहता है कि शिव जी और विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण के महीने में, सावन के महीने में शिव जी को तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं।
1: और चलिए पंडित जी से जानते हैं 11 अगस्त 2026 यानी मंगलवार के शुभपहर के बारे में।
0: दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के मंत्रों का यथाशक्ति जप करिएगा, स्वास्थ्य और धन के मामलों में लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 11 अगस्त मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है, पंडित जी से जानते हैं।
0: आज की गुडलक राशि है वृषभ। आप जब शिव जी की पूजा करें तो उनको सफेद फूल अर्पित करिएगा, ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
1: चलिए, इस शो से जुड़े हुए तमाम उपायों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है, हमने तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में जान लेने की, जिसका इंतजार आपको रहता है। तो पंडित जी, आज का महा उपाय, खास उपाय क्या है?
0: जी,

0: प्राप्त करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे रोली मिला हुआ जल सूर्य देव को अर्पित करें। इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन इस पवित्र महीने में शहर शहर कांवड़ यात्रा देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर शिव मंदिरों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ कांवड़ और कुछ कांवड़िए अपनी अनोखेपन की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।

0: शिव भक्ति में मग्न ये कांवड़ यात्री सावन के महीने में आस्था और भक्ति का पर्याय बने हुए हैं। इनमें कोई पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकला है, कोई दूसरी और तीसरी बार निकला है और कोई कई वर्षों से सावन के महीने में ये कठिन यात्रा करता चला आ रहा है। इस साल भी श्रावण मास शुरू होते ही बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री माँ गंगा के पवित्र घाटों से जल लेकर शिवालयों की ओर निकले हैं। इनमें कई कांवड़ यात्री तो अपनी अनोखी कांवड़ को लेकर इन दिनों आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है नंदिनी और युगनागर, जो हरिद्वार से गाजियाबाद तक स्केटिंग करते हुए कांवड़ यात्रा कर रही हैं। उम्र भले ही कम है लेकिन इरादे बहुत मजबूत हैं। ये बच्चे अपने बाबा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें इन बच्चों के साथ उनके पिता भी चल रहे हैं।
1: मन में तमन्ना है कि हमारे बाबा की तबीयत सही हो। ये हमारी स्केटिंग कांवड़ यात्रा है, हरिद्वार हर की पैड़ी से हमने ये उठाई है। ये हमारी दूसरी कांवड़ यात्रा है।
0: अनोखी कांवड़ की लिस्ट में अगला नाम बीटेक के छात्र अक्षय का है, जो हरिद्वार से मेरठ के लिए निकले हैं, वो भी अपने हाथों से बनाई ई बाइक पर। अक्षय ने बताया कि उसने अपनी इस अनोखी कांवड़ को महज 3 दिन में तैयार किया, जिसमें मोटर, बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर और हेडलाइट लगी है। इसे हल्का रखने के लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया गया है। छात्र के अनुसार इस कांवड़ को तैयार करने में करीब 45,000 रुपए का खर्च आया है और ये एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 150 किलोमीटर तक चल सकती है। इसकी टॉप स्पीड करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा है।
2: बोले, ये मैंने तेज बाइक बनाई है जो कि बैटरी चलती है। इसमें मैंने 150 किलोमीटर की बैटरी लगाई है जो कि चार्ज हो जाती है करीबन 4 घंटे में। मैंने ये सोचा कि सब कांवड़ ले जा रहे हैं, एक ऐसी कांवड़ लेकर जाए जो दुनिया देखे।
3: तो क्या खुद आपने इसको तैयार किया है?
2: हाँ बोले, मैंने खुद इसको तैयार किया है। मैं एक बीटेक का स्टूडेंट हूँ और मैकेनिकल से मैंने बीटेक किया है।
0: वैसे तो उत्तराखंड से लेकर बिहार और झारखंड तक कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन जैसी रौनक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में दिखाई दे रही है वो अपने आप में अद्भुत है। बीते कुछ वर्षों की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा में बुलडोजर कांवड़ की काफी चर्चा है, जो देखने को मिली मुजफ्फरनगर में। हरिद्वार से गंगा जल लेकर 16 शिव भक्त बुलडोजर कांवड़ लेकर आए हैं और ये औघड़नाथ मंदिर में गंगा जल चढ़ाने जा रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री जी, मैं पसंद है जो मैं कार जो काम कर रहे बढ़िया कर रहे इधर।
0: फरीदाबाद का रहने वाला एक युवक कांवड़ यात्रा के लिए जॉर्डन से नौकरी छोड़कर आया है। सरूरपुर गांव के रहने वाले 28 साल के रमन हरिद्वार से दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकले हैं और वो 4 लीटर गंगा जल से भरा कलश लेकर वृंदावन जा रहे हैं। रमन का कहना है कि वो प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए ये यात्रा कर रहे हैं और वृंदावन पहुंचकर उन्हें गंगा जल से स्नान कराना चाहते हैं। रमन के साथ उनके 2 भाई और 3 दोस्त हैं, जो दंडवत कांवड़ यात्रा में उनकी मदद कर रहे हैं।
4: 2020 से अभी तक हम कांवड़ लेने के लिए नहीं गए, बाहर जॉर्डन कंट्री में थे, वो काफी साल के बाद पूछा रहा है दंडवत कांवड़ की यात्रा के लिए।
3: कांवड़ लेने
4: जाओगे हर साल?
3: तो ये पहली बार दंडवत करके हम जा रहे हैं।
4: हमारी पहली कांवड़ है दंडवत। प्रेमानंद महाराज जी से हम 3 साल से जुड़े हुए हैं, काफी सुधार हुआ है तब से, बाबा जी से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो अंदर से ख्याल आया है कि 5 साल के बाद कांवड़ लेने भी गए, अंदर से ख्याल आया कि इस बार हमको दंडवत कांवड़ यात्रा करके वृंदावन धाम जाना चाहिए, बाबा जी से दर्शन करना चाहिए और पवित्र गंगा जल ले जाकर बाबा जी गंगा जल से स्नान करें।
0: कांवड़ यात्रा के लिए कोई पैदल चल रहा है, कोई दंडवत यात्रा कर रहा है, कोई देवी देवताओं से सजी कांवड़ लेकर चल रहा है तो कोई किसी प्रसिद्ध मंदिर की थीम पर बनी कांवड़ लेकर चल रहा है। इनमें एक परिवार ऐसा भी है जो ऑटो से कांवड़ यात्रा पर निकला हुआ है, जबकि एक माँ अपने 2 साल के बच्चे के साथ कांवड़ यात्रा कर रही है।
5: जतिन मेरे साथ में है, ये ऑटो उनकी रोजी रोटी है, इसी के जरिए इनका परिवार चलता है, लेकिन सावन के महीने में इसी रोजी रोटी इसी ऑटो पर ये अपने परिवार को बैठाकर निकल पड़े हरिद्वार की तरफ, वहाँ से जल लिया और अब वापस जा रहे हैं। और कल शिवरात्रि है तो कल आप जल चढ़ाएंगे। कितने साल से जल लेकर आ रहे हैं?
6: मैं तो कम से कम 14 साल से ला रहा हूँ।
5: 14 साल?
6: हाँ। जब मैं छोटा स्कूल टाइम से, अब तो मेरे बच्चे भी साथ में जा रहे हैं मेरे।
5: भक्ति की शक्ति ऐसी है कि सफर किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए, कोई भी चीज इस सफर में बाधा नहीं बनती कभी। आप देखिए मेरे साथ एक परिवार है और इनके साथ एक छोटा सा बच्चा है, ये उसे उसकी साइकिल में लेकर आए हैं, उसे साइकिल में बैठाते हैं, कभी साइकिल से खींचते हैं, कभी अपने गोद में ले लेते हैं और इस तरह से हरिद्वार से नोएडा तक की यात्रा ये पूरी कर चुके हैं। क्या नाम है आपका?
7: सुनीता।
5: सुनीता जी, कितना बड़ा बच्चा है आपका?
7: ये 2 साल 1.5 महीने का।
5: आपने इसकी मन्नत मांग रखी थी कि ये बच्चा होगा, अच्छे से रहेगा तो फिर हम आपके पास आएंगे उसको लेकर,
7: जब हमारी मन्नत पूरी हो गई।
0: देवाधिदेव महादेव के प्रति इन शिव भक्त कावड़ियों का अटूट विश्वास ही इस मुश्किल यात्रा को आसान बनाता है। चाहे कितनी भी परेशानी और चुनौती आए, भोले के ये भक्त इसी उत्साह और जोश के साथ कावड़ यात्रा पर निकलते हैं और महादेव का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, फरीदाबाद से सचिन गौड़ और नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और अब उन खिलाड़ियों के मन की बात और जीत का मंत्र जानेंगे जो इस बार ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेकर लौटे हैं। हाल ही में सभी खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे अपनी भावनाएं शेयर की।

0: मेरे यहां मुझे यहां लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूं, तो खिलाड़ी है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी।
1: हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाई।
0: पक्का?
2: जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने गिफ्ट दे दिया।
0: बड़ी शान बढ़ाई आपने, इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है।
3: मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज्यादा था। पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो
0: बहुत बहुत बढ़िया।
4: सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा।
0: यानी मान के चलते हैं।
4: हाँ सर।
0: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
5: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था, और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
0: इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ, और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना, और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूं, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहेगा। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं।
5: जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे, और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट है, वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही।
0: कारगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी?
6: उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है, तो मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया, तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज को मैंने डेडिकेट किया था सर।
0: आपको ये याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना, कि मैं कारगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने।
7: वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे, और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था, तो मिलिट्री वाले को फोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी मिले थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था, उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ, वहाँ बोलो, मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
0: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया।
8: मेरे मन में भी धक धक धक धक हो रहा है।
0: आप चिंता मत कीजिए।
8: पर
0: आप आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है।
8: मेरे फ्रेंड्स सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी, भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तू मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ।
6: कॉमन गेम्स में मेडल, सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुशी थी। मैंने सर को क्रेडिट दिया था क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ।
0: मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है, मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना?
9: जी सर। बहुत
0: कैसा बना है स्टेडियम?
9: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर।
0: भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी
9: जी सर 2008।
0: तो उज्जैन जाते थे कि नहीं?
9: जी सर उज्जैन भी गई थी सर।
0: अच्छा महाकाल के पास भी गई?
9: जी सर।
0: काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार?
9: जी सर।
0: सावन महीना तो अभी है,
9: वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर।
0: ठीक है दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ। और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
10: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से बर्थडे था तो आज सर
0: की बहुत बधाई। वाह।
10: ये

0: खिलेगा।
1: भारत के खूबसूरत मोर अब देश की सरहदों से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर जिनेवा में अपनी छटा बिखेरेंगे। जी हां, भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 5 मोर उपहार में दिए हैं जो अब जिनेवा स्थित यूएन परिसर की शोभा बढ़ाएंगे। इसे भारत की पीकॉक डिप्लोमेसी भी कहा जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी के जरिए दुनिया को क्या संदेश दिया जा रहा है।
2: भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर अब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मेहमान बनकर पहुंचे हैं। जिनेवा में यूएन के कैंपस में ये अपनी छटा बिखेरने के लिए तैयार है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र को मोर के रूप में शानदार तोहफा दिया गया है। एक खास कार्यक्रम में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की महानिदेशक ताचियाना वालोवाया को इन मोरों का अनूठा उपहार सौंपा। बता दें कि भारत ने 45 साल बाद यूएन को मोर गिफ्ट किया है। इस बार भारत की ओर से 5 मोर भेंट किए गए हैं। इनमें 4 नीले और 1 दुर्लभ सफेद मोर शामिल है। ये मोर महज भारत की ओर से यूएन को दिया गया सामान्य तोहफा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भारत और संयुक्त राष्ट्र के बरसों पुराने और लंबे रिश्ते की याद भी दिलाता है और आपसी सहयोग के इरादे को भी जाहिर करता है। इन मोरों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये कूटनीतिक रूप से दुनिया में बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण संरक्षण के मकसद से बढ़ावा देने में मददगार हो सकते हैं। असल में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जिस जगह पर स्थित है उसका मोरों से गहरा संबंध रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय है। ये जगह स्विट्जरलैंड के मशहूर कला प्रेमी गुस्ताव रेविलियोट की संपत्ति थी। 100 साल से ज्यादा वक्त तक ये इलाका मोरों की कुनबे से गुलजार रहा था। 1954 में यहाँ एक मोर काफी चर्चा में रहा था। वो वहाँ पहुँचे तत्कालीन सोवियत प्रतिनिधि मंडल की कार पर सवार हो गया था, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में आ गई थी। हालांकि बताया जाता है कि 1950 के दशक में यहाँ पर मोरों की आबादी घटने लगी थी, जिस पर चिंता भी जताई गई थी। वहीं 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली के चिड़ियाघर से मोरों का जोड़ा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को गिफ्ट में भेजा था। इसके 45 साल के बाद एक बार फिर भारत की ओर से यहां एक साथ 5 मोर भेजे गए हैं। भारत से भेजे गए मोरों को संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलहाल अस्थायी बाड़े में रखा गया है। ये मोर करीब 3 महीने तक यहाँ पर रहेंगे और इसके बाद इन्हें खुले में घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा। खबर है कि जल्दी ही इनके नामकरण के लिए यूएन की ओर से प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। मोर को सुंदरता और गरिमा का प्रतीक भी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के परिसर में इन्हें लाए जाने से यहाँ इनकी आबादी बढ़ने की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: जय गुरुजी। आवाज आ रही है आपको बेटा?
1: जी गुरुजी।
0: कुछ भाई को लेकर बेटा चिंता दिखाई दे रही है आपकी।
1: जी जी गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे 3 महीने पहले मैंने भाग्य दर्पण बनवाया था, मेरे सैलून का काम भी चल रहा था, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा मेरा काम भी चल रहा है। लेकिन अभी मैं मायके आई हुई हूँ गुरुजी, 10 दिन हुए मुझे आए हुए। मेरा भाई जो है दुबई में काम जॉब करता था और किसी कारणवश उसकी नौकरी छूट गई है, जिसकी वजह से वो वापस आ गया और बहुत ज्यादा परेशान है। मम्मी पापा मेरे भाई सब बहुत ज्यादा दिक्कत में है गुरुजी।
0: भाई का बेटा नाम बताओ।
1: प्रदीप नाम है उनका।
0: कितने वर्ष का हो गया है
1: गुरुजी? उसकी जो उम्र है 32 साल है। आपसे बात करेगा गुरुजी, वो बात

0: लगा के मैं गुरु जी गया था यहाँ से।
1: गुन्नी चुड़ी सी
0: हो गया सब। तो गुरु जी उनके चलते मेरे को इधर डिपोर्ट कर दिया, सब नुकसान हो गया, सब बंद पड़ा है। अब जाने का भी कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, उतना मेरे से यहाँ पैसा भी नहीं बन पा रहा है, बहुत परेशान हूँ गुरु जी। सब जमा पूंजी जीवन का वहीं लगा दिया गुरु जी मैंने।
2: बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा।
0: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
2: फोन पर बेटा बने रहना,

0: चले गुरु जी, आवाज आ रही है बेटा आपको?
1: हाँ गुरु जी, आ रही है आवाज।
0: अपनी बेटा कुंडली खोल के देख लीजिएगा, इस समय बेटा आप राहु और मंगल के प्रभाव में चल रहे हैं।
1: जी गुरुजी।
0: राहु और जो मंगल का प्रभाव चलता है, यानी राहु में जब मंगल चलता है तो बेटा इसी प्रकार बने बनाए खेल बिगड़ जाते हैं, जमा जमाया रोजगार प्रभावित हो जाता है,
1: सब नुकसान हो गया गुरुजी, सब नाश हो गया है मेरे काम का, पूरा चौपट हो गया गुरुजी, जिंदगी ऐसी लग रही है डिप्रेशन की तरफ कि बर्बाद हो गया गुरुजी मेरा सब कुछ।
0: कोई बर्बाद,
1: जमीन बेच के गए थे गुरुजी।
0: बेटा बर्बाद नहीं होने दूंगा, अभी आप वापिस आयो, आपको फिर से विदेश में ही जाना है बेटा, और जो कार्य कर रहे हो बेटा उससे भी अच्छा चलेगा। राहु और मंगल का बेटा दोष है, कभी कभी गुस्सा भी बहुत आता है बेटा आपको।
1: गुरुजी बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटी दो लड़कियां हैं, पत्नी है, पूरा दिन गुरुजी मेरे को खुद ये महसूस होता है कि इनके ऊपर मैं बेवजह चिल्ला रहा हूँ, खुद महसूस होता है, लेकिन गुरुजी मैं क्या करूँ, पूरा मेरा पूरा दिन गुस्से में जाता है गुरुजी, पूरा बीपी हाई रहता है मेरा।
0: बीपी अभी और बढ़ सकता है बेटा आपका, बीपी में ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इससे बेटा मंगल जो है वो रक्त का कारक है, राहु जो है वो नसों को बेटा कमजोर कर देता है, इससे बेटा रक्त की सप्लाई प्रभावित होती है, व्यक्ति का बीपी और क्रोध बढ़ता है, चोट लगने का योग बनता है बेटा, ध्यान रखना सिर की चोट भी लग सकती है आपको।
1: गुरुजी परसों ही मैं बाथरूम से उठ रहा था गुरुजी, मेरे सर में टूटी लग गई, लोहे की टूटी थी, घाव हो गया गुरुजी, पूरा उंगली जितना घाव हो गया मेरे सर में।
0: हाँ बेटा, राहु में मंगल में बेटा हमेशा सिर की चोट लगने की संभावना, और सिर का दिमाग का ऊपरी हिस्सा ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। आपको बेटा मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ, वो नियम से कर लेना। जैसे बेटा आपकी बहन का काम अच्छा चला है बेटा गुरुजी के आशीर्वाद से, वैसे आपका भी काम अच्छा चलेगा। और जो
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
0: बेटा
2: गुंडी चुड़ी
1: बना रहेगा गुरुजी मेरे को, बस वहाँ पे मैंने सारा अपनी जमा पूंजी लगा दी गुरुजी, मेरा वो कार्य बन जाए, चालू हो जाए कैसे न कैसे, और मेरा दोबारा से वहाँ जाने का बन जाए गुरुजी, बस ये आशीर्वाद।
0: दो दो बेटा तांबे के सिक्के ले आना बेटा, सुराख वाले
1: जी,
0: दोनों सिक्के बेटा एक जैसे होने चाहिए, आने वाले मंगलवार के दिन दोनों सिक्कों को अच्छी तरह साफ कर लेना, एक सिक्के पे बेटा सिंदूर का तिलक लगाना, एक सिक्के पर शहद का तिलक लगाना, जिस पर शहद का तिलक लगाओगे बेटा उसको तो बेटा आपने अपने पास रखना है, जिस पर सिंदूर लगाओगे उस सिक्के को जाके मंगलवार को सूर्योदय काल में बेटा किसी नदी में जाके बहा देना, और दूसरा शहद वाला जो तिलक होगा सिक्का होगा उसको लाल रंग के धागे में आप अपने गले में बेटा धारण कर लेना।
1: ठीक है गुरुजी।
0: दूसरा बेटा, हर मंगलवार को गुड़ वाले मीठे चावल बेटा घर में बनाया करो, और उसमें से हाँ आधा हिस्सा बेटा मंदिर में जाके हनुमान जी को भेंट कर दिया करो, आधा हिस्सा परिवार में बेटा आपको सबको ग्रहण करना है बेटा
1: मंगलवार को करना।
0: हाँ,
1: है
0: आने वाले मंगलवार को बेटा एक सूखा भजने वाला नारियल लाल कपड़े में उसके ऊपर 181 रुपए बांध कर मंगलवार को बेटा किसी बालाजी के मंदिर में जाके दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में बेटा उसको रख कर आ जाना। रोजाना रात को सोने से पहले एक जोड़ा बेटा लौंग का आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और 11 बार एक मंत्र शब्द बोलना है, ये मंत्र है हिजारुन हिजारुन हिजारुन। उसके बाद उस लौंग को बेटा कपूर पर रखकर आपको जलाना है। ये प्रयोग बेटा करिएगा, ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग होगा, तो जीवन में मौज कर देगा, आपके रुके हुए काम बन

0: कुछ बेटा विवाह को
1: जी
0: लेकर चिंता दिखाई देती है, आपके विवाह में बहुत अड़चन है बेटा, बात बनते बनते रह जाती है, और आपकी
1: जी
0: बहन भी होगी उसके भी विवाह में अड़चन होगी बेटा।
1: जी गुरुजी, और नौकरी में भी दिक्कत आ रही है बहन के भी, और मेरे पहले ये हुआ था, माता जी आई थी सोनीपत पिताजी के लिए, तो अब तो उनकी तबीयत के लिए आई थी मिलने के लिए, वो तो ठीक हो गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसलिए हमने भी संपर्क करा, हमारी भी दिक्कत चल रही है काफी ज्यादा।
0: जी बेटा बहन का नाम बताओ।
1: जी बहन का नाम निशा है।
0: 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए।
1: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: फोन पर बेटा

0: जय गुरुजी, चिंता ना करना बेटा, कार्य आपका अवश्य बनेगा।
1: जी गुरुजी।
0: आने वाली बेटा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बेटा ढाई ढाई सेंटीमीटर के बेटा दो चकोर चांदी के टुकड़े बनवा लेना।
2: गुन्नी चुड़ी
0: एक
2: गुन्नी चुड़ी
0: और दूसरी तरफ उसकी अपनी माँ का नाम लिखवाना है।
1: जी गुरुजी।
0: ठीक है बेटा।
1: जी।
0: इसको बेटा आप केसर की स्याही से लिखना बेटा।
1: जी।
0: इसी प्रकार दूसरे चांदी के टुकड़े पर बहन को नाम लिखना है और दूसरी तरफ माँ का नाम लिखना है।
1: जी गुरुजी।
0: पीले रंग के बेटा रुमाल के ऊपर उस दोनों बहनों को बेटा चांदी का टुकड़ा बेटा रखना है।
1: जी।
0: एक मुट्ठी बेटा पीली सरसों डाल देना।
1: जी।
0: और दोनों बहनों को बेटा शुक्ल पक्ष यानी पूर्णिमा के दिन यानी चतुर्दशी को आपने ये कार्य करवाना है। और जो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन सूर्योदय काल में आपको पीले रुमाल पर ये दोनों टुकड़े बेटा अलग अलग रखने हैं। एक एक मुट्ठी पीली सरसों डाल लेना। दोनों बहनों को पीला वस्त्र धारण करके माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर 10 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है बेटा। ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः, ओम ह्रीम कुमाराय नमः, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। पूर्णमासी को बेटा 10 मिनट का दोनों बहनों को पाठ कर अपने अपने रुमाल को बेटा उसको सरसों चांदी के टुकड़े को बांध कर घर में पूजा के स्थान पर बेटा रख देना। उसके बाद रोजाना बेटा सुबह सूर्योदय काल में 10 मिनट के लिए इस मंत्र का रोज पाठ करना है।
1: जी।
0: और चीनी मिश्री से बेटा मुंह मीठा अवश्य करना है, अपना भी परिवार में सबका भी।
1: जी गुरुजी।
0: गुरुवार के गुरुवार हर गुरुवार को बेटा 4 केले 400 ग्राम चने की दाल दोनों बहनों को मंदिर में दान करनी है।
1: जी गुरुजी।
0: ये बड़ा शक्तिशाली उपाय है। रात को सोने से पहले बेटा एक जोड़ा लौंग का सीधे हाथ में रखिएगा और एक मंत्र बोलिएगा, यौ यत्वन यौ यत्वन यौ यत्वन। इस मंत्र को बोलिएगा और उस लौंग को उसके बाद कपूर पर रखकर जलाइएगा। ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा बेटा, 1 से 1.25 महीने में ही बेटा इसका बहुत ही शुभ फल आपको और आपकी बहन को होगा। शादी बेटा अति शीघ्र आप दोनों बहनों की हो जाएगी, अब चिंता ना करना। और बहन को ये बोलना बेटा, एक लालड़ी नाम का एक पत्थर आता है, बाजार से लेकर उसको चांदी में बनवाकर सीधे हाथ की अनामिका उंगली में उसको धारण करना।
1: जी गुरुजी।
0: रविवार के रविवार आपकी बहन को मंदिर में थोड़ी सी गेहूं का दान करना है, कम से कम 400 ग्राम। इससे उसको नौकरी का लाभ मिलेगा।
1: जी।
0: जीवन में स्थिरता आ जाएगी और जीवन में भटकना बंद हो जाओगे और आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। पिताजी ठीक है बेटा आपके?
1: जी जी जी जी गुरुजी, बहुत ठीक है वो तो। आप
0: ठीक है बेटा? बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बड़े प्रेम से 3 बार बोलो जय गुरु
1: जी। गुरुजी एक बार मेरी बहन से भी बात कर लीजिए, उसको भी आशीर्वाद दे दीजिए।
0: करवाइए बेटा।
1: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
0: स्वागत है बेटा। बेटा ये जो उपाय दिए गए आपने सुन लिए सारे बेटा?
1: जी जी गुरुजी।
0: लगन से करना
1: जी
0: बेटा।
1: गुरुजी मेरी नौकरी में भी दिक्कत आ रही है।
0: अब आप चिंता ना करें बेटा, ये जो उपाय दिए गए हैं ना बेटा
1: जी गुरुजी,
0: ये रामबाण की तरह काम करेंगे। और हर पल बेटा मन में गुरुजी का शुक्राना बोलते रहना, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आप तो बेटा मुझे बहुत भाग्यवान दिखाई दे रही हो, बहुत जीवन में पैसा कमाओगी देखना।
1: जी गुरुजी।
0: सीधे हाथ की हथेली पर बेटा कोई तिल का निशान है बेटा आपके?
1: जी गुरुजी है।
0: तो जाओ बेटा, ये बहुत ही सुंदर धन का योग है आपके जीवन में। बड़े प्रेम से दोनों बहनों को बोलना है 3 बार, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी,
1: जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।
0: तो प्रिय दर्शकों, आपको भी यदि इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना फोटो, अपना नाम, अपनी माँ का नाम और 3 बार जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखकर आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। भरनी नक्षत्र, इस नक्षत्र का स्वामी जो है
2: गुण्य
0: होता है। जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो बहुत ही आराम पसंद व्यक्ति होता है। आलीशान जीवन की चाह उसके मन में जन्म से ही रहती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही आकर्षक और सुंदर होता है। इसका ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव बहुत ही इतना आकर्षक होता है कि सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। इनके जीवन में प्रेम सबसे ऊपर रहता है। ये जो ठान लेते हैं वो करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और करके ही मानते हैं। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आती, बना रहता है। भरनी नक्षत्र का व्यक्ति यदि माथे पर रोजाना दही का तिलक लगाए, चांदी का चकोर टुकड़ा सदैव अपने पर्स में रखे, तो इस नक्षत्र का फल दुगना चौगना हो जाएगा। तो जल्दी से प्रिय दर्शकों, आप भी कॉल लगा सकते हैं। आइए एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
1: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
0: स्वागत है आपका बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: गुरुजी, मैं जो बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ गुरुजी।
0: मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताइए।
1: गुरुजी, मेरा नाम है सुमन।
0: कितने वर्ष के हो गई हो आप बेटा?
1: गुरुजी, मेरी आयु 34 साल है।
0: अपनी बेटा माताजी का नाम बोलो।
1: गुरुजी, मेरी माताजी का नाम है प्रेमा देवी।
0: तीन बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
1: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
0: बेटा फोन पर बने रहना।

0: गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आवाज आ रही है आपको बेटा?
1: हाँ जी गुरु जी, आ रही आवाज।
0: बच्चे को लेकर, पुत्र को लेकर परेशान रहते हो। बच्चा उदंडी है, जिद्दी है, अड़ियल है, सुनता मानता नहीं है बेटा। और ऐसा लगता है बेटा कि ना तो उसका पढ़ाई पर ध्यान है, हर वक्त बेटा भटकता रहता होगा, टीवी पिक्चर मोबाइल पर रहता होगा।
1: गुरुजी पूरे दिन ये गेम खेलता है गुरुजी, इसमें मेरा बहुत ज्यादा परेशान किया, जीना हराम किया हुआ है गुरुजी।
0: कितने वर्ष का हो गया है बच्चा?
1: गुरुजी मेरा बच्चा 19 साल का है गुरुजी, 20 साल में लगा है
0: उसकी। बेटा उम्र बताओ, 19 या 20, ये एक बताओ।
1: गुरुजी 19 साल का है।
0: 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो।
2: गुड नीज चुडीस।
0: फोन पर बेटा बने रहना।

0: गुड़नी चुड़ी
1: ध्यान रखना,
0: गुड़नी चुड़ी
1: पेट का,
0: गुड़नी चुड़ी
1: बेटा।
2: गुरुजी इसका हर्निया का भी ऑपरेशन हो रखा है और गुरुजी इसके पेट में अभी भी दर्द रहता है। गुरुजी
1: दर्द रहता है ना बेटा?
2: हाँ जी गुरुजी।
1: इसके पेट में अल्सर बनता है बेटा
2: जी। गुरुजी अभी मैंने
1: कभी ऐसा बोलता है कि मेरे पेट में जलन रहती है?
2: हाँ जी, हाँ जी गुरुजी, मुझे बताया है इन्होंने, मेरे को काफी बार बताया है।
1: कोई बात नहीं, चिंता ना करो, बच्चा ठीक हो जाएगा। इस बच्चे के ऊपर बेटा केतु का दोष है, चंद्रमा पीड़ित है बच्चे का। एक तो हर सोमवार को बेटा बच्चे के हाथ से मंदिर में दूध दान करवाइए, सफेद तिल दान करवाइए। दूसरा रोजाना बेटा सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा दूध बेटा बर्तन में डाल के बच्चे के दोनों हाथ उसमें धुलवा कर वो बेटा कुत्ते को रोज पिलाना शुरू कर दीजिए।
2: जी गुरुजी।
1: ये बच्चा बेड पर बैठकर खाना खाता है बेटा?
2: हाँ जी गुरुजी, बेड पर बैठ के खाना खाता है गुरुजी, मैंने बहुत समझाया गुरुजी।
1: बेड पर बैठकर बच्चा कभी भी खाना ना खाए
2: जी गुरुजी।
1: इससे बेटा राहु का प्रकोप होता है, व्यक्ति और भ्रमित बुद्धि का हो जाता है। इससे व्यक्ति को पेट की समस्याएं आती हैं, व्यक्ति कम सोता है, उसको दुर्स्वप्न आते हैं, व्यक्ति को नींद भी ढंग से नहीं आती होगी। इसको नींद भी ढंग से नहीं आती होगी?
2: नहीं गुरुजी, नींद बिल्कुल भी नहीं आती, 12-12 एक एक बजे तक जागता है गुरुजी।
1: जी कोई बात नहीं, बाजरा होता है ना बेटा बाजरा?
2: जी गुरुजी।
1: बाजरे का बेटा आटा ले लो बाजार से, उसकी बेटा बाजरे के आटे की एक रोटी रोज बनाया करो, उस पे थोड़ा सरसों का तेल और काले तिल लगाकर बच्चे के सिर से 7 बार वार के बेटा उसके 4 टुकड़े कर उसको जाके पीपल नीचे बेटा रोजाना रख कर आया करो बेटा।
2: जी गुरुजी।
1: ये नियम से करना है बेटा। दूसरा, आप लोगों ने रात को घर में दही बिल्कुल
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों गुड़नी
1: घर
0: गुड़नी चुड़ी गुड़नी चुड़ी
1: पर सरस्वती माता की बेटा एक फोटो सुंदर सी फ्रेम करवा के बेटा लगवा दीजिए। और जिस कमरे में बच्चा सोता है उस कमरे के पूर्व उत्तर दिशा में एक कांसे के कलश में चने की दाल भरकर पीले कपड़े से उसका मुख बांध कर उसे बेटा घर के बच्चे के कमरे में पूर्व उत्तर कोण में बेटा रख दीजिएगा। ये प्रयोग बेटा करिएगा और जब भी इसका जन्मदिन आता है बच्चे का वर्ष में एक बार,
2: हाँ जी,
1: जन्मदिन वाले दिन बेटा 27 पत्तेदार मूलियां
0: गुड़नी चुड़ी
1: उसे बेटा
0: गुड़नी
1: के सिर से
0: गुड़नी चुड़ी
1: नदी में बहते पानी में बेटा प्रवाह कर देना।
2: जी गुरुजी।
1: ये प्रयोग करोगे तो ये बच्चा सद्बुद्धि हो जाएगा, सद्मार्ग पर आएगा, पढ़ाई पर ध्यान लगाएगा, बात मानेगा सुनेगा, गलत दिशा में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आशीर्वाद मिला बेटा आपको, बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का।
2: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
1: तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार इस सकते हैं और व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपने माँ का नाम, अपनी फोटो, अपनी उम्र, 3 बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर भेजिएगा। हम आपकी कॉल अवश्य इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। कृतिका नक्षत्र जो है, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति पहली नजर में ही किसी पर भरोसा कर लेते हैं और बिना सोचे समझे दूसरे पर जल्दबाजी में एतबार भी कर लेते हैं। इस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस पर सूर्य का प्रभाव रहता है, जिसके कारण ऐसे लोग आत्म गौरव करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों
1: कर काम
0: गुड़नी चुड़ी
1: कार्य करने में सक्षम अपने आप को बना लेते हैं और जिस भी कार्य में ऐसे व्यक्ति हाथ डालते हैं उसे पूरी लगन से और मेहनत से करते भी हैं। कृतिका नक्षत्र वाले को रविवार के दिन महादेव पर लाल पुष्प अर्पण करने चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
3: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
1: स्वागत है आपका बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
3: गुरुजी मैं अभी यूपी से बोल रहा हूँ।
1: अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताओ।
3: मेरा नाम है अमित कुमार।
1: कितने वर्ष के हो गए हो आप?
3: मैं जी 29।
1: अपनी माँ का पूरा नाम बोलिए।
3: माँ का नाम है गुरुजी आरती कुमारी।
1: तीन बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
3: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
1: बेटा फोन पर बने रहिएगा।

0: जी आवाज आ रही है आपको बेटा?
1: हाँ जी, हाँ जी आ रही है।
0: बहुत बेटा जीवन में समस्याएं चल रही हैं बेटा, मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता। दूसरा विवाह में अड़चन दिखाई दे रही है, कुछ परिवार वाले बेटा अड़चन डाल रहे हैं विवाह में, अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हो।
1: हाँ जी गुरु जी, लव मैरिज करनी है, तो जिससे लव मैरिज करनी है उनकी फैमिली वाले भी मना कर रहे हैं।
0: लड़की का नाम बताओ।
1: लड़की का नाम है मोनिका।
2: गुडनी चुडीस
0: की होगी?
2: गुडनी चुडीस, गुडनी चुडीस, गुडनी चुडीस।
0: तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा।
1: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: फोन पर बेटा बने रहना,

0: जय गुरु जी। लड़की अच्छी है बेटा, जिससे बेटा विवाह करना चाहते हो बेटा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी इससे विवाह करने से। लड़की बेटा ये बताओ, रंग उसका साफ है, चश्मा लगाती है बेटा?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी।
0: लड़की के माता पिता अड़चन डाल रहे हैं?
1: हाँ जी, उनके भी और मेरे भी, दोनों के डाल रहे हैं।
0: अच्छा, आपके भी डाल रहे हैं?
1: हाँ जी।
0: लड़की से बात कराओ बेटा।
1: जी
2: हेलो, जय गुरु जी, शुक्राना
0: गुरु जी। बेटा ये बताओ बेटा, माता का स्वास्थ्य बहुत खराब है इस समय? बेटा माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है?
2: जी गुरु जी, जी गुरु जी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है उनकी।
0: पिताजी बहुत गुस्से वाले हैं?
2: जी गुरु जी।
0: बड़ा भाई है बेटा, वो भी शादी से खुश नहीं है आपकी?
2: जी गुरु जी, साफ मना कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं करनी है।
0: कोई बात नहीं, अब तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो।
2: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: फोन पर बेटा बने रहना।

0: जय गुरु जी। आने वाले बेटा शुक्रवार के दिन एक बेटा मिट्टी की हांडी ले लेना
1: जी गुरु जी।
0: उसके अंदर बेटा मिट्टी की हांडी ले लेना
1: जी गुरु जी।
0: उसके अंदर बेटा 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम कच्चा कोयला प्रवाह कर देना
1: जी गुरु जी।
0: आने वाले शुक्रवार से बेटा 43 दिन लगातार आप दोनों को अपने माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है
1: जी गुरुजी।
0: सफेद रंग के गुलाब का पौधा बेटा कहीं से ढूंढ लीजिए, जहाँ सफेद रंग का गुलाब का पौधा लगाओ और उस पर सफेद रंग का गुलाब खिलाओ
1: जी गुरुजी।
0: उस गुलाब के पौधे की बेटा थोड़ी
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए लाल गुड़नी चुड़ी करना।
0: आने वाले शुक्रवार से बेटा एक आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र का 10-10 मिनट अपने अपने घर में बेटा पाठ करना
1: ठीक है गुरुजी।
0: और मिश्री इलायची का प्रसाद बांटना घर में, और मंदिर में भी मिश्री इलायची हर शुक्रवार को दान करना। आने वाले शुक्रवार से बेटा लगातार इस मंत्र का 10 मिनट रोज पाठ करिएगा अपने अपने घर पे। इस मंत्र को बेटा बड़े ध्यान से सुनिए, ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं उग्र प्रभा शुक्रनाथा स्वाहा। ये मंत्र हम आपको बेटा लिख कर भेज देंगे
1: जी गुरुजी।
0: इस मंत्र का बेटा पाठ करिएगा, कार्य बेटा सफल हो जाएगा। और आप दोनों को रात्रि काल में सोने से पहले 7 बार एक और मंत्र बोलना है। ये मंत्र है सदोकत्वन सदोकत्वन सदोकत्वन। इस मंत्र को बेटा 11-11 बार करिएगा और मिश्री से हल्का सा मुंह मीठा करके सोइएगा बेटा
1: ठीक है गुरुजी।
0: 11 दिन का प्रभाव देखिएगा, परिवार वाले खुद बोलेंगे, खुद कहेंगे कि जहां बेटा शादी करनी है कर ले
1: जी गुरुजी। बिल्कुल,
0: इससे लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। आप 11 दिन का ये प्रभाव देखिएगा
1: जी गुरुजी।
0: और जो बेटा आपको मंत्र ये दिया है मैंने, ये रिश्ता पक्का जब हो जाए विवाह तक, वो दूसरा पहले वाला मंत्र करते रहना आप
1: जी गुरुजी। बिल्कुल करते रहेंगे,
0: अड़चन कभी नहीं आएगी। सुबह आप लोग जब स्नान करते हो ना बेटा,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो जल में थोड़ी सी हल्दी पाउडर और बेटा गुलाब जल, मतलब 2 चम्मच गुलाब जल और 2 चुटकी हल्दी पाउडर डालकर नित्य स्नान करिएगा। बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी का,
1: जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।
0: तो प्रिय दर्शकों, आप इसी प्रकार गुरुजी की ब्लेसिंग घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव की ब्लेसिंग जब मिल जाए तो अंधकार जीव
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबर गुड़नी चुड़ी
0: भी सुख में बदल जाती है। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप भी यदि कॉल करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में तुरंत अभी आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। आइए एक और भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी शुक्राना
3: गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
0: स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप
3: जी? गुरु जी मैं सोनीपत से बात कर रहा हूँ जी, हसनपुर गांव से।
0: अपना बेटा नाम बताइए।
3: मेरा नाम अमित है गुरु जी।
0: कितने वर्ष के हो गए हो आप
3: गुरु जी? अभी मैं 31वें साल में चला हूँ जी।
0: अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए।
3: मुकेश।
0: 3 बार बेटा बड़े प्रेम से बोलो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी,
3: जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।
0: बेटा फोन पर बने रहिएगा

0: जय गुरु जी, आवाज आ रही है बेटा आपको?
1: हाँ जी गुरु जी।
0: जीवन में बेटा बहुत कुछ अच्छा और बड़ा सोचते हो, बड़ा करना चाहते हो। विवाह अपनी इच्छा से किया था बेटा?
1: हाँ जी गुरु जी, मैंने अपनी मर्जी से किया था।
0: एक बेटी भी है?
1: हाँ जी गुरु जी, आपसे पहले मिलने आया था गुरु जी, आपकी कृपा से। आपने बताया था कि पहली संतान बेटी होगी, जो आपने मुझे काम भी बताए थे। सबसे पहले तो मैं आपका गुरु जी धन्यवाद करूंगा, मेरे दोनों काम सक्सेसफुल है। बस एक छोटा सा संकट है गुरु जी, उसके बारे में बात करनी है आपसे।
0: जी संकट वंकट बेटा, जब आप इस कार्यक्रम में जुड़े हो तो बेटा फिर जीवन में संकट नहीं रहते, ध्यान रखना इस बात को।
1: गुरु जी मैंने अभी ना पिछले दूसरे नवरात्रे को जमीन का बैना दिया था, तो यहाँ पे सोनीपत में जमीन ली है, तो उसका बैना दिया। अभी मंगलवार की रजिस्ट्री कह रहे, बगैर एनओसी के तो रजिस्ट्री कैसे होगी? वो कह रहे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: फोन पर बेटा बने रहे।
2: गुडनी चुडीस, गुडनी चुडीस, गुडनी चुडीस, गुडनी चुडीस।

0: जब भी बेटा जमीन का काम करोगे
1: जी गुरुजी,
0: उसमें अड़चन अवश्य आएगी। इससे पहले भी लगता है बेटा कोई जमीन का कार्य किया गया था, उसमें अड़चन आई होगी, कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर अवश्य पड़ा होगा।
1: हाँ जी गुरुजी, कोर्ट कचहरी का केस हुआ हुआ गुरुजी, हाई कोर्ट में केस चला हुआ अभी,
0: पड़ा हुआ ना बेटा। आप अपने
1: जी
0: परिवार की हिस्ट्री देख लीजिए बेटा, पिता को दादा को, आपके परिवार में भूमि को लेकर समस्या विवाद अवश्य बना होगा समय समय पर।
1: हाँ जी गुरुजी, बनता है। तो मैं गुरुजी सबसे अपने परिवार से बिल्कुल हटके ही रहता हूँ, हटके ही काम करता हूँ।
0: जब भी काम करना, एक तो अपने नाम से कभी मत करना
1: जी गुरुजी।
0: आपके बेटा चतुर्थ भूमि भाव में शनि का और राहु का प्रभाव है बेटा, जिसके कारण भूमि के कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे। कहीं कोई कागजी कार्रवाई में अड़चन आ जाएगी, कहीं कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा, कहीं बिना कारण उसको कोर्ट कचहरी में फंसना पड़ेगा और उससे आपका पैसा भी अटक जाएगा बेटा, और आप परेशान हो जाओगे।
1: भविष्य तो पहले जमीन ली थी उसके पे तो मेरे को झूठे केस लगाए हुए हैं। एक ही खेवट नंबर में दो आदमियों के नाम जमीन चढ़ा रखी है, एक वो केस चला हुआ है अभी, इसका जो दे रखा है इसकी मंगलवार की रजिस्ट्री है गुरुजी, तो इसलिए थोड़ा सा चिंतित था गुरुजी मैं।
0: आप चिंता ना करें बेटा, कार्य आपका हो जाएगा, लेकिन आगे से भविष्य में ध्यान रखना। एक तो पत्नी की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनवा लीजिए, छोटे साइज की, पासपोर्ट साइज की, उसको हमेशा अपने पर्स में रखा करो आप बेटा। दूसरा बेटा, भविष्य में कोई भी यदि प्रॉपर्टी खरीदो या कोई वाहन खरीदो, गाड़ी खरीदो, बाइक खरीदो, कुछ भी खरीदो, वाहन या मकान से संबंधित या कोई प्लाट या भूमि से संबंधित, तो सिर्फ अपनी पत्नी के नाम से लेना। वो काम आपको बेटा फलेगा और वो आपके लिए शुभ रहेगा। अभी आपको बेटा क्या करना है बेटा, गुलर का पेड़ होता है बेटा, गुलर, गुलर का पेड़।
1: हाँ जी गुलर का होता है गुरुजी।
0: अपने क्षेत्र में कोई गुलर का पेड़ बेटा ढूंढ लीजिए। मंगलवार से बेटा 7 दिन लगातार गुलर के पेड़ पे थोड़ा
2: गुन्नी चुड़ी
0: बेटा, और जब 7 दिन हो जाएं तो बेटा उस दिन गरीबों में बूंदी के लड्डू अपने हाथ से बांट देना। इसके अलावा बेटा मंगलवार के मंगलवार छोटे गरीब बच्चों को बिस्कुट के पैकेट बांटा करो, और मंगलवार के मंगलवार गरीब बच्चों को या बंदरों को गुड़ चने यानी भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद खिलाया करो, अपने हाथ से बांटा करो। आपको करना क्या है, आने वाले शनिवार के दिन 800 ग्राम साबुत बादाम ये मंदिर में जाके सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पे चढ़ाओ, और हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद ही बेटा मंदिर जाया करो। रोजाना भी जा सकते हो लेकिन शनिवार को अवश्य जाना है। सूर्यास्त के बाद जब दिन छिप जाए उस समय भगवान शिव की पूजा क्या किया करो, और महादेव के समक्ष एक तिल के तेल का दीपक जलाया करो, और उसमें 8 काली मिर्च डालनी है, और 10 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का पाठ किया करो रोजाना।
1: कितनी बार करना है गुरुजी?
0: है बेटा
1: ये कितनी बार करना है गुरुजी?
0: सिर्फ 10 मिनट के लिए बेटा, घड़ी के हिसाब से टाइम देख लेना
1: गुरुजी। मेरे गांव के और जो दूसरा गांव मोरसल बीच में शिवलिंग निकला हुआ है, वो वहाँ पे गुलर का पेड़ भी है और मैं शिवलिंग पे जाता भी हूँ, माँ देव का मंदिर है
0: बेटा, तो बिल्कुल आप वहाँ जा सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना, रोजाना का एक उपाय दे रहा हूँ, एक कटोरा बेटा जौ का रात को पानी में भिगो के रख दिया करो, सुबह उसको पानी में से निकाल के जौ को हल्का सा दूध का छींटा लगाकर उसे जाके बेटा कबूतरों को पक्षियों को रोज डाल दिया करो। जितना श्वान कुत्ते की सेवा करोगे उतना भाग्य बढ़ेगा, उतनी जीवन में अड़चने रुकावटें आपके कम आएंगी। और ये जो काम आपका होने वाला है इसमें आपको कुछ दिन का और समय मिल जाएगा, और कुछ दिन के बाद आपकी ये कागजी कार्रवाई जो भी आपको करवानी है, रजिस्ट्री करवानी है, वो आपकी बेटा हो जाएगी। कभी जीवन में अपने पैसे से बेटा किसी को शराब नहीं पिलाना, कभी भूल कर भी बेटा किसी को शराब की पार्टी मत करना। घर में बेटी आई है आपके, ये आपके घर में लक्ष्मी का रूप है, बेटी की सेवा करना बेटा। भविष्य में बेटा बेटी के ऊपर पूरा ध्यान लगाना, जितनी बेटी की सेवा करोगे उतना बुध प्रबल होगा और उतना आपका व्यापार खूब फलेगा फूलेगा, और जीवन में सदैव सुखी सुख होगा। जाओ आशीर्वाद है बेटा, काम आपके संपूर्ण सिद्ध हो जाएंगे। बड़े प्रेम से बेटा तीन बार बोल दो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का,
1: जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।
0: दर्शकों, यदि आपके घर में किसी पर ओपरी छाया है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, भूत पिशाच पितृ का वास है, या उस किसी व्यक्ति पर साया चल रहा है, वो अजीब हरकतें कर रहा है, तो शनिवार के दिन एक उपला ले गाय के
2: गुड़नी चुड़ी
0: सात बताशे, एक जायफल, एक लौंग, एक इलायची, थोड़ी पीली सरसों, थोड़ी जटामासी डालकर उसे बहुत सारा कपूर रखकर उसको जलाएं, और जो व्यक्ति पीड़ित हो उसको उस धुएं उस जब उपले को जलाएंगे तो धुआं भी निकलेगा, बहुत धुएं की धुनी लगाएं, और जब उसको धुनी दें तो एक मंत्र बोलिए, पेशी आए संकट कट जाए, पेशी आए संकट कट जाए, पेशी आए संकट कट जाए। इस मंत्र को बोलते हुए उस धुएं को उस उपले को पूरे घर में घुमाकर घर से बाहर किसी वीरान जगह पे रख के आ जाइएगा। ये प्रयोग करिएगा, तीन बार करने से घर से प्रेत बाधा, भूत बाधा, तंत्र बाधा, पिशाच बाधा भाग जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी भी कॉल कार्यक्रम में नहीं लगी तो चिंता ना करना, आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं, और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, आपको कॉल अवश्य आएगी। आइए चलते चलते गुरुदेव का धन्यवाद करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Oh, oh, oh.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली। 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, 2 दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मॉनसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान, ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का संदेश।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सावन शिवरात्रि की। सावन से दूसरे सोमवार को जहां पर शिवालयों में भक्ति की धारा बह रही है, वहीं पर मंगलवार को शिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। देखिए, शिव भक्तों के लिए सावन शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व माना जाता है और इस साल ग्रहों का जो योग है वो कुछ ऐसा है कि शिवरात्रि और भी ज्यादा मंगलमयी होने जा रही है। क्या है संयोग, आपको विस्तार से हम आगे बताएंगे। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए लाखों की तादाद में कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से अब निकल चुके हैं और इनमें बड़ी तादाद में दिल्ली एनसीआर के कांवड़िए भी शुमार हैं। आज आपकी मुलाकात एक साल की आराध्या से करवाने जा रहे हैं, जो माता पिता के साथ गंगोत्री से गंगा जल लेकर आई हैं। इनके अलावा आपको बता दें, उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी भी अद्भुत तस्वीरें उसकी आपको दिखाने जा रहे हैं आज। तो आइए शुरुआत करते हैं शिवरात्रि पर जलाभिषेक की तैयारियों के साथ। देखिए, सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भक्त उमड़े और मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर और बड़ी तादाद में जलाभिषेक होगा, इसलिए कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की भारी भीड़ रही। अंदाजा है कि 3 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने इलाके के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के भी लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर आए हैं और इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको मिलवाते हैं एक साल की शिव भक्त आराध्या से।

0: शिव, शिव का सावन और सावन की शिवरात्रि। शिव भक्तों के लिए इस पावन दिन का क्या महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो हरिद्वार से निकलने वाली हर सड़क पर केसरिया सैलाब है। हर हर महादेव के जय घोष से जमीन आसमान गुंजायमान है।
1: हाईवे पर लगातार बड़ी संख्या में कांवड़िए बाइक पर सवार शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे जल लेकर यहाँ से जाने के लिए, और जितनी बड़ी संख्या में ये लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य पर रवाना भी हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद कांवड़ियों की संख्या कम होती दिखाई नहीं दे रही। सड़क पर जगह जगह बाइकें खड़ी हुई है, उनका किसका पता नहीं है कौन किसकी बाइक है। ये कांवड़िए बाइक खड़ी करके यहाँ से चले गए और ये बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए भी अब जल लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और हाईवे पर सीटियों की आवाज, कांवड़ियों की आवाज, बम बम भोले की आवाज या भोले शंकर की आवाज या कुछ यही सुनाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कितने कांवड़िए यहाँ पर जा रहे हैं। ये इस तरह का माहौल ही है, अलग ही तरीके का है। पुलिस प्रशासन जैसे ना के बराबर काम कर रहा है, खुद कांवड़िए सीटियां बजा बजा के अपना रास्ता खुद बना रहे हैं और यहाँ से जल लेकर रवाना हो रहे हैं और बड़ी कुशलता के साथ पूरी तरह से फिलहाल संपन्न हो रहा है।
0: शिवरात्रि पर भोले का जलाभिषेक करने की मनोकामना लिए जो हरिद्वार से चले अब दिल्ली NCR पहुंच चुके हैं। इन कांवड़ियों में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। यहां तक कि एक साल की आराध्या को शिवरात्रि पर जलाभिषेक करना है।
2: एक साल की आराध्या है। सबसे पहले तो मैं इस कैरियर से शुरू करूंगी कि बेबी कैरियर में किस तरीके से जो है उसको सजाया गया है, क्योंकि ये आराध्या की जो है प्रथम कांवड़ यात्रा है। इन्होंने ये पोस्टर भी जो है इसलिए लगाया है, आराध्या की तस्वीर जो है इसमें लगाई गई है, और आराध्या की ये पहली कांवड़ यात्रा है गंगोत्री धाम से लेकर हैदरपुर। हैदरपुर के ये लोग निवासी हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप दिख जाएगा बम बम भोले के जयकारों के साथ इन्होंने ये नई शुरुआत करी है। इस बच्ची की एक साल की उम्र है, लेकिन भक्ति का ये भी रूप है जो देखने को मिलता है। हर साल ही अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आती है, लेकिन सबसे छोटा रूप मैं आपको भोले का दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से एक साल के बच्चे ने गंगोत्री धाम से ये यात्रा जो है शुरू करी और वो यहाँ पर दिल्ली आ पहुंची है। आराध्या के माँ बाप हमारे साथ है, इस वक्त मौजूद है। आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए।
3: प्रीति।
2: प्रीति, प्रीति। और आपका?
4: करण।
2: करण। करण, प्रीति सवाल ही पहले ये है, गर्मी बहुत है, हालांकि हर सावन में बारिश जरूर होती है लेकिन गर्मी भी होती है। माँ बाप तो जो है कर लेते हैं कि कवर करना है हमें जो है पैदल यात्रा करनी, लेकिन एक साल के बच्चे के साथ ये वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है।
3: नहीं, इतना खास मुश्किल भी नहीं है।
2: क्यों मुश्किल नहीं लगा?
3: अगर सारा लेके सामान चलो तो कोई मुश्किल नहीं होती है।
2: अच्छा, सारा सामान लेके साथ चलो, लेकिन बच्चे तो परेशान हो जाते हैं ना, गर्मी हो बारिश हो।
3: हाँ ये तो है, ये हरिद्वार के बाद ही परेशान करते हैं, उससे पहले नहीं करते।
0: पिता ने महादेव से बेटी की मुराद मांगी थी जो पूरी हो गई। अब माता पिता नन्ही आराध्या को प्राइम पर लेकर गंगोत्री से चल पड़े। हरिद्वार होते हुए आराध्या ने लंबी यात्रा तय की।
2: आराध्या का जल देखिए, कितना छोटी सी बच्ची का छोटा सा जल, मतलब ये तो होगा,
3: ये गंगोत्री का है, ये महाकाली द्वार का है, है।
2: तो ये कितना है ML?
3: ये होगा
2: 500 ML लगभग होगा, ये बच्ची के साइज के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि 500 ML का जल जो है
3: गले में डाल गए।
0: करीब 500 ml गंगा जल जो आराध्या लेकर आई है मंगलवार को महादेव पर चढ़ाएगी। इस एक साल की नन्ही शिव भक्त के साथ इस कांवड़ यात्रा में 53 साल की राजबाला भी हैं। कंधे पर 21 किलो वजन की कांवड़ लिए सिर्फ 5 दिनों में राजबाला ने ये यात्रा पूरी की है, और हाँ बिल्कुल अकेले।
2: देखिए किस तरीके से अलग अलग पवित्र स्थानों से जल लेकर जो है जितने भी भोले के भक्त है वो दिल्ली में इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं, और मेरे साथ आंटी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले नाम बताइए और उम्र बताइए।
5: मैं राजा बिहार से आई हूँ, सेक्टर 18 रोहिणी से। मेरा नाम राजबाला है, मैं हर की पौड़ी से मैंने जल उठाया है, 21 लीटर मेरा जल है, और मैंने 5 दिन में ही दिल्ली में संपर्क किया।
2: क्या उम्र है आपकी पहले?
5: मेरी 53 साल है।
2: 53 साल है, और आप 5 लीटर जल जो है
5: 21 लीटर
2: जल 5 दिन में आप ये सफर तय कर आए।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये भोले की भक्ति की शक्ति है कि हर उम्र हर तबके के लोग तेजी से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी चंद दिनों में तय करते हुए शिवालय के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि शिवरात्रि पर जलाभिषेक करना है। जो पैदल जा सकते थे पैदल गए, पर जो मजबूर थे उन्होंने भी हार नहीं मानी। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाने वाले सुनील हर साल यूं ही अपनी ऑटो लेकर हरिद्वार जाते हैं।
4: सुनील जी इस वक्त हमारे साथ है, हालांकि पैरों में उस तरीके की शक्ति नहीं है जिस तरीके से वो चलकर जो है कावड़ लेकर दिल्ली आ सके, लेकिन उसके बावजूद इस हालत में भी जो है ये टेम्पो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का ही टेम्पो है, इसको चलाकर जो है वो दिल्ली में आज यहाँ आए हैं जल लेकर। सबसे पहले तो ये बताइए आपकी उम्र क्या है?
6: मेरी उम्र है 45 साल।
4: 45 साल की उम्र है सुनील जी, आपने जल कहाँ से लिया है, क्योंकि अलग अलग पवित्र स्थानों से लोग जल लेकर?
6: नहीं, मैं हरिद्वार से जल उठाता हूँ। हाँ। पर हरिद्वार से ही लेके आया हूँ।
4: हर साल लेकर आते हैं आप?
6: जी हर साल लेके आता हूँ।
4: तो कितना लीटर जल लेकर आए हैं आप?
6: मैं जी 2 लीटर जल लेके आता हूँ। हाँ। और भोलेनाथ पे चढ़ाता हूँ।
4: भोलेनाथ पे आप चढ़ाते हैं, तो शिवरात्रि का इंतजार है जिस दिन जो है आप जल अर्पित जो है जल अभिषेक जो है वो करोगे।
6: हाँ जी।
4: अच्छा, अगर मैं यही पूछूं कि मन में इतनी आस्था आती कैसे, क्योंकि तकलीफ है, उस तकलीफ के बावजूद आपके साथ मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, बस नजर आ रहा है तो ये हरा रंग का टेम्पो जिसको आप चलाकर खुद यहाँ पर आए हैं।
6: ये तो बाबा की मर्जी है, बाबा बुलाते हैं चले जाते हैं और उनके नाम का ही जल चढ़ाते हैं जी।
4: कितने सालों से आप लोग आप आ रहे हो?
6: मेरी हो गई 20-22 साल।
4: 20-22 साल से, तो आप देख सकते हैं कि 20-22 साल से ये यूं ही जो है जल लेकर जो है दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद जो है शिवालय जाकर जो है जल अभिषेक करते
0: हैं। दिल्ली की सरहद पर कांवड़ियों का जमघट लगा है। गंगोत्री या हरिद्वार से लौटे हैं, रात भर के इंतजार के बाद शिवरात्रि पर जल अभिषेक होगा और तपस्या पूरी होगी। अकेले या दोस्तों के साथ या फिर परिवार को अपनी ऑटो रिक्शा में लिए कांवड़िए भक्ति में मगन है।
7: ऑटो उनकी रोजी रोटी है, इसी के जरिए इनका परिवार चलता है, लेकिन सावन के महीने में इसी रोजी रोटी इसी ऑटो पर ये अपने परिवार को बैठाकर निकल पड़े हरिद्वार की तरफ, वहां से जल लिया और अब वापस जा रहे हैं। और कल शिवरात्रि है तो कल आप जल चढ़ाएंगे। जतिन, आप कहां से चले थे? आप
8: हम चले थे बदरपुर से।
7: बदरपुर से
8: आओ।
7: कौन है आपके साथ?
8: मेरे साथ मेरी वाइफ है, ये मेरी छोटी लड़की है, ये मेरा लड़का है, इसका नाम लवीस भोले है, इसका नाम कृषा बोली है, मेरा नाम जतिन बोला है, इसका नाम नीतू बोला है।
7: तो ये बेटी कितने बड़ी
8: है? ये 3 साल की है।
7: और वो बेटा?
8: वो 2 साल का हो जाएगा अगस्त में।
7: 3 साल की बेटी है, 2 साल का बेटा है, बेटा का बर्थडे आने वाला
8: है अगस्त में,
7: 17 अगस्त को। तो बोले आप इसी से आपकी रोजी रोटी चलती है, पहले तो इतनी हिम्मत लाना कि आप 2-4 दिन के लिए ब्रेक लगा के अपने काम के लिए इसको लेकर निकल चलो, ये हिम्मत कहाँ से आई?
8: ये सब भोलेनाथ की कृपा है। बोल बन
0: भोले भंडारी के लिए जो भक्ति भावना है उसे इन जख्मी पैरों से समझिए। पांव में छाले पड़ गए तो प्लास्टिक की बोतल को चप्पल की तरह पहन लिया और इसी तरह मीलों का सफर तय करके गंगा जल ले आए, लेकिन इसमें जो आनंद है उसकी मिसाल नहीं। 11 साल के राहुल को ही देख लीजिए।
7: मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो अपने साथ जल लेकर निकला है, हरिद्वार से चल के अब नोएडा तक पहुंच गया है और अब इसकी दूरी बहुत कम बची हुई है। क्या नाम बेटा आपका?
9: राहुल।
7: राहुल, राहुल कितने साल के हो आप?
9: 11।
7: 11। और जल कितना आपके पास?
9: 6 लीटर।
7: 6 लीटर जल है। पहली बार आए या पहले भी आए हो?
9: पहले भी आई है।
7: पहले भी आए हो। कितनी एज से आ रहे हो?
9: 3 साल।
7: 3 साल से आ रहे हो। पहली बार जल कितना लेकर आए थे?
9: गाड़ी में आए थे।
7: पहली बार गाड़ी में आए थे। दूसरी बार?
9: दूसरी बार
7: पिछली बार भी गाड़ी में आए थे। तुमने जल पहली बार उठाया है?
10: हाँ।
7: तो तुम्हें रास्ते में कैसा लगा जब तुमने पहली बार कंधे पे रखा, कुछ दूर चले तो क्या लगा?
9: अच्छा लगा।
7: अच्छा लगा? थके तो नहीं वहां से यहाँ?
9: का
7: कोई चोट तो नहीं कहीं पे? कंधे दर्द तो नहीं हो रहे?
0: ऐसे शिवभक्त लाखों की तादाद में हैं जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं और मंगलवार को अपने अपने शहर कस्बे या फिर गाँव के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। नोएडा से मनीष चौरसिया, दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: देखिए, झारखंड के देवघर में भी कांवड़ यात्रा पूरी श्रद्धा और जोश के साथ लगातार जारी है। शिवरात्रि पर जहां पर लाखों की तादाद में शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे, चलिए आपको मिलवाते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली कृष्णा बम से। 74 साल की कृष्णा बम पिछले करीब 42 वर्षों से कांवड़ यात्रा कर रही है और इस साल भी कांवड़ लेकर देवघर के लिए निकल चुकी है।
12: मुजफ्फरपुर की 74 वर्षीय कृष्णा बम माता बम हमारे साथ हैं, जो कई एक वर्षों से डाक बम प्रतीक सुमारी को मुजफ्फरपुर से जाती हैं और बाबा वैद्यनाथ धाम में चराती हैं।
5: ये भोलेनाथ की कृपा है कि 42 वर्षों तक लगातार सुल्तानगंज से बाबा धाम बिना रुके अनवरत चल के 16 घंटे में जल चढ़ाती आ रही थी। पिछले साल मेरा दोनों घुटना टूट गया था, मैं नहीं जा सकी इस बार, लेकिन महाकाल गई, महाकाल 4 दिनों में जल चढ़ाई। फिर इस बार मैं 2 तारीख को जल उठाई हूँ, 5 को महाकाल चढ़ा के रात में घर लौटी हूँ। फिर बाबा के यहाँ जाने की तैयारी है। अब डाक जल तो नहीं चलेगा, लेकिन समर्पित शरीर है, भोलेनाथ मुझे जैसे ले जाए।
12: 42 वर्षों का ही साथ है वैद्यनाथ धाम बाबा का और आपका, प्रत्येक सोमवारी को जाती थी और आज अब तैयार हैं, जा रही हैं, कितनी खुशी हो रही है कि इस बार?
5: खुशी हो रही है कि पहले तो मैं जाने लायक 10 दिन पहले नहीं थी, लेकिन अचानक मेरा दिमाग चेंज किया है, टिकट 8 दिन पहले ली हूँ। और खुशी हो रही है कि महाकाल में चढ़ा ली जल, दर्द कम हो गया, तो बाबा फिर कहीं बुला ले हमें।
11: सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन में आस्था परंपरा और राजसी वैभव का अद्भुत संगम नजर आया। शाम करीब 4 बजे बाबा महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मन महेश स्वरूप ने भक्तों को दर्शन दिए। बाबा की एक झलक पाने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रिपोर्ट देखिए।

देखिए श्रद्धालुओं के लिए सावन की शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और जलाभिषेक से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने जिस दिन विषपान किया था वो दिन

0: इस बार सावन की शिवरात्रि पर मंगलवार का संयोग बना है। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है और मान्यता है कि शंकर ही केसरी नंदन है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। इस बार सावन में कई पावन संयोग बन रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को प्रदोष का महासंयोग बना। सोमवार और प्रदोष के अवसान का मिलन महाशिवरात्रि के साथ होने जा रहा है। साफ है कि सावन की शिवरात्रि के अति पावन मौके पर इस बार भगवान भोले की विशेष कृपा बरसने वाली है। इस बार सावन की शिवरात्रि मनोकामनाओं के पूर्ण होने का खास अवसर लेकर आ रही है। इस बार शिवरात्रि पर कई शुभ और दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जो भोले के भक्तों के लिए वरदान साबित होंगे। इस बार शिवरात्रि के मौके पर चंद्रमा पुनर्वसु के पश्चात पुष्य नक्षत्र से कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे गौरी योग का संयोग बनेगा। साथ ही इस बार शिवरात्रि के दिन चंद्रमा की युति सूर्य, बुध और गुरु के साथ होने से चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। गुरु और चंद्रमा साथ होने से गज केसरी योग भी बन रहा है। इस बार सावन शिवरात्रि पर शिव कृपा का लाभ सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा, लेकिन विशेष लाभ मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को मिलने वाला है। इस बार शिवरात्रि के दिन जो शिव भक्त अपने आराध्य की चारों पहर पूजा और अभिषेक करेंगे, उनके लिए चौतरफा लाभ का योग बन रहा है।
1: श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना बड़ी ही विशिष्ट फल देती है, चाहे वो मंत्र का जप हो, रुद्राभिषेक हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप हो। किसी भी तरीके से हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन हम पवित्र सरोवर का जल ला करके किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर में शिवलिंग पर अगर जलाभिषेक करते हैं तो उसका भी अलग पुण्य प्राप्त होता है। यदि इस दिन व्रत रह करके रात्र में, मध्य रात्र में, महानिशा काल में या चारों प्रहर में, रात के चारों प्रहर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए और विभिन्न वस्तुओं से, चाहे दूध से, साध से, पंचामृत से, गंगा जल से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के सुखों का वरदान देते हैं।
0: साफ है कि इस बार सावन की शिवरात्रि भोले भंडारी के भक्तों के लिए कई अलौकिक अवसर लिए हुए है। यही वजह है कि इस बार भोले के भक्त विशेष तौर पर कावड़ियों का उत्साह और उमंग अलग ही दिख रहा है। दरअसल शिव सृष्टि का आधार है, शिव सत्य है, आशुतोष है, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, आनंद हैं, शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु है और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी, शिव ज्ञान स्वरूप हैं, स्वर और संगीत के प्रणेता हैं, इनके डमरू से उत्पन्न नाद ही ब्रह्म है, अनादि हैं इसलिए अप्रमेय हैं। इसलिए शिव के दिव्य अलौकिक स्वरूप की अनुभूति उनकी चेतना का साक्षात तर्क यानी लॉजिक से संभव नहीं है। उसी अचिंत्य अप्रेम में अनादि शिव को सावन अत्यंत प्रिय है। सावन का शिवरात्रि महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत अवसर है। सावन की शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी बताया गया है।
1: ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, पवित्र मंदिरों में, प्रतिष्ठित मंदिरों में जाकर अभिषेक करते हैं या घर पर या नदी के किनारे कहीं भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की उपासना करते हैं तो अद्भुत परिणाम जीवन में प्राप्त होता है और व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सरलता पूर्वक कर लेता है।
0: सनातन धर्म में सावन का महीना अत्यंत पावन माना जाता है।

0: जाता है। वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का तत्व कण कण में ऐसे घुल जाता है कि मन की वीणा के तार से सिर्फ भक्ति के सुर निकलने लगते हैं। क्योंकि सावन का महीना शुरू होते ही पावस ऋतु अपनी पूर्ण रवानी में होती है, इसलिए प्रकृति भी मनमोहक हरियाली से खिल उठती है। हरियाली से ढकी धरती पर भगवान भोले के भक्त भगवा पोशाक में कांधे पर कावड़ लेकर जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है भगवान भास्कर की रश्मियां किसी घने मनोरम उपवन का श्रृंगार कर रही हो। हिंदुस्तान में यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है, सदियों से चली आ रही है। सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान भोले के अभिषेक का इतना ज्यादा महात्म्य के पीछे देवासुर संग्राम की पौराणिक कथा को आधार माना जाता है। समुद्र मंथन के बाद कालकूट यानी हलाहल और अमृत दोनों का प्राकट्य हुआ। अमृत पाने की होड़ में देवताओं और असुरों के बीच संग्राम छिड़ गया, लेकिन विषपान के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सृष्टि के व्यापक कल्याण के लिए भगवान शिव ने हलाहल पीने की जिम्मेदारी उठाई। हलाहल पीने के बाद उसके प्रभाव से भगवान भोले का गला नीला पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का अभिषेक किया। देवताओं के अभिषेक से भगवान भोले को काफी लाभ हुआ और महादेव देवताओं पर अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से ये दिन सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था, तब से इसी तिथि को सावन की शिवरात्रि के तौर पर मनाने की परंपरा चल पड़ी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावन की शिवरात्रि को अभिषेक करने से भगवान भोले अभी भी उतने ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं।
1: शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से जो हलाहल निकला था उसको उसका पान कर लिए थे, इस कारण से उनका शरीर तप रहा था। भगवान शिव उस हलाहल विष को कंठ में धारण कर लिए थे, इस कारण से उनका मस्तक गर्म हो गया था। उनको शांति प्रदान करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको आराम प्रदान करने के लिए देवी देवता और मनुष्य सभी जलाभिषेक करते हैं। जिस कारण से भगवान शिव का जो शरीर की गर्मी है वह शांत होती है, तो समुद्र मंथन के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है।
0: दरअसल ये दुनिया विश्वास की धुरी पर टिकी हुई है। विश्वास अगर अचल है तो उससे अद्भुत शक्ति मिलती है और यही शक्ति असंभव से असंभव कार्य की प्रेरणा बन जाती है। भोले के भक्तों का विश्वास है कि सावन की शिवरात्रि को जल अभिषेक करने से लोक परलोक दोनों सुधरता है। दरअसल सनातन के संगतों में शिवरात्रि की अद्भुत महिमा बताई गई है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन निश्चित काल यानी मध्यरात्रि की वेला में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ धरती पर विचरण करते हैं। यही वजह है कि शिवरात्रि की मध्यरात्रि को जल अभिषेक करने वालों को गौरी शंकर का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सावन की शिवरात्रि को भोले भंडारी की पूजा करने से कुंडली में मौजूद तमाम ग्रह दोष जैसे काल सर्प दोष, पितृ दोष और शनि दोष के अशुभ प्रभावों से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि की तिथि को किए गए दान पुण्य का भी शीघ्र लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को
2: जरा सोचिए, समुन्द्र के किनारे खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखें और वहां आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई नजर आए तो नजारा कैसा होगा. कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहां आसमान ने जैसे रंगों की चादर ओढ़ ली हो. मौका था गाले फेसा ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का, जहां श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से आए काइट फ्लायर्स ने अपने हुनर का जलवा दिखाया.
3: आसमान में लहराती पतंगों को तो आपने खूब देखा होगा और इंद्रधनुष की खूबसूरत छटा को भी, पर क्या हो जब पतंगों की दुनिया में इंद्रधनुषी रंग भी शामिल हो जाएं? ये कुछ ऐसा ही नजारा है जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है. तस्वीरें हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की. मौका था कोलंबो के गाले फेस ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का. इसमें विशाल काय पतंगों के साथ ही अलग अलग आकृतियों और रंगों वाली छोटी बड़ी पतंगे भी देखने को मिली. यहाँ हर किसी में उत्साह, उमंग और आसमान को छू लेने का जुनून नजर आ रहा था. श्रीलंका में आयोजित ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है. इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आए काइट फ्लायर्स ने हिस्सा लिया. आयोजकों के अनुसार करीब 30 देशों के 80 अंतर्राष्ट्रीय काइट फ्लायर्स और 1500 से ज्यादा स्थानीय प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया.
4: This is a beautiful kite festival. I've never seen anything like it. It's such a family friendly festival. And right on the beach here, and the wind is beautiful, the people are beautiful, the weather's all beautiful.
3: Din hi nahi, is event ne raaton ko bhi roshan rakha. Raat mein aasman mein patangon ka shandar nazara dikha. Andhere aasman mein roshni se jagmagati patangon ne Colombo ke skyline ko ek alag hi andaaz de diya. Samandar ki lehrein, khula aasman और उसमें उड़ती सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे. कोलंबो का ये नजारा सिर्फ एक फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है बल्कि श्रीलंका की संस्कृति, रचनात्मकता और पर्यटन को दुनिया के सामने पेश करने की एक कोशिश भी है. कोलंबो का ये काइट फेस्टिवल श्रीलंका के पर्यटन अभियान को एक नया रंग देता दिखा. यहाँ पतंगों की डोर ने सिर्फ आसमान को नहीं छुआ बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को भी एक साथ जोड़ा. यानी कोलंबो में पतंगों के बहाने आसमान भी सजा और श्रीलंका ने दुनिया को अपनी खूबसूरती और संस्कृति की एक रंगीन झलक भी दिखाई. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को.
2: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली. 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र. हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन. उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मॉनसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान, ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का संदेश।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चल।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर फ्रेम को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसमें रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। इस वीडियो को इसी एंगल से लगातार वायरल किया जा रहा है, क्या है सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, क्या है इसकी सच्चाई आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: रांची में राज्य मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक चली मैराथन वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही। जेबीएससी और जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि रांची में आंदोलनकारी छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत के प्रशासन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद अधिकारियों को जमीन पर बैठकर छात्रों से बातचीत करनी पड़ी। क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
6: झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन से जोड़कर सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में जमीन पर बैठे छात्र अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए उन्हें भी अपने साथ जमीन पर बैठने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो रांची का है, जहां जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में विसंगतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने बंद कमरे में वार्ता से इनकार कर दिया, जिसके बाद एसडीओ और एडीएम को भी प्रदर्शनकारियों के बीच जमीन पर बैठकर खुली बातचीत करनी पड़ी। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं।
0: असल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो रांची का है, जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तस्वीरें देखी, जिसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की लिखित मंजूरी नहीं मिलती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 7 अगस्त से लेकर अब तक 6 राउंड से अधिक की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जानना जरूरी हो गया था। सर्च के दौरान यह जानकारी सामने आई कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में मंत्रियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और छात्र संगठनों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वीडियो में जो दृश्य नजर आ रहे हैं वो किसी गेस्ट हाउस जैसे नहीं लग रहे हैं, ये किसी कॉलेज की बिल्डिंग जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि एसडीओ और एडीएम को जमीन पर बैठकर बातचीत के लिए मजबूर किया जाता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यह है कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर किया जाने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम पेज पर यह वीडियो मिला। इसके कैप्शन में इसे धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का बताया गया था। वीडियो में यह भी जानकारी दी गई थी कि बीबीएमकेयू में परीक्षा के नतीजों में देरी, लाइब्रेरी और बेंच की कमी तथा पानी और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने 11 सूत्रीय मांग पत्र रखा। इस दौरान बातचीत शुरू करने से पहले उन्होंने अधिकारियों से उनके साथ जमीन पर बैठने के लिए कहा। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में है प्रदर्शन 27 जुलाई 2026 को हुआ था। सर्च के दौरान हमें झारखंड के कई स्थानीय मीडिया चैनलों पर भी इस वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जुलाई को विश्वविद्यालय में एलएलएम की पढ़ाई शुरू करने, सेंट्रल लाइब्रेरी और लैब बनाने जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे एआईएसए के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी थी। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो झारखंड के रांची का नहीं बल्कि धनबाद का है, जहां विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 27 जुलाई को वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तालाबंदी की थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और वीडियो में लाठी डंडे और कुंडाल से कुछ लोग एक ढांचे को गिरा रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि यह बांग्लादेश का वीडियो है जहां पर हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
6: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन ढांचे को गिरा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं हैं, लगातार ढांचे को गिराने में लगे रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां कट्टरपंथियों का एक गुट जबरन एक हिंदू परिवार की जमीन पर कब्जा कर रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को भी बख्शा नहीं गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन ढांचे को गिरा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं है, लगातार ढांचे को गिराने में लगे रहते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह भी कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का वीडियो है, जहां कट्टरपंथियों का गुट जबरन हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया लगा। ऐसे में अगर वीडियो बांग्लादेश का बताकर वायरल किया जा रहा है तो इसमें असमिया क्यों सुनाई दे रही है। इसके अलावा हमने फिर से वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें ऐसा लगा कि ये दो गुटों के आपसी विवाद का मामला हो सकता है, क्योंकि हमें सर्च के दौरान इसे कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो बांग्लादेश के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
6: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें असम के एक फेसबुक पेज पर 29 जुलाई की एक पोस्ट मिली। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक असम के गोसाई गांव सब डिवीजन के उच्चतारी गांव में नूरुल खान और गनी शेख की अगुवाई वाले दो गुटों के बीच जमीन के पुराने विवाद को लेकर झड़प हुई थी। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें असम के कई स्थानीय न्यूज आउटलेट्स पर इस झड़प के बारे में वीडियो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार गनी शेख के ग्रुप ने नूरुल खान के उस घर को गिराने की कोशिश की जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बन रहा था। नूरुल खान के परिवार ने आरोप लगाया कि गनी शेख और उसके साथियों ने उनके निर्माणाधीन घर पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। परिवार ने शेख और उसके साथियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद पुलिस ने शेख और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने गोसाई गांव पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी नारायण बोरो से संपर्क किया। बातचीत के दौरान उन्होंने पुष्टि की कि हमलावर और पीड़ित दोनों में से कोई हिंदू नहीं था। FIR में 5 लोगों के नाम शामिल थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो का कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, ये वीडियो असम के गोसाई गांव का है जहां जमीन के विवाद को लेकर दो मुस्लिम गुटों के बीच झड़प हो गई थी। रितेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: अब फैक्चर के आखिरी सफर का आपके लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं। एक छोटी बच्ची ने अपनी क्रिएटिविटी से एक साधारण सी नोटबुक को इतना खूबसूरत डॉल हाउस बना दिया कि उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। नोटबुक का हर पन्ना खुलते ही एक नए कमरे में बदल जाता है,
2: फिर ये बेडरूम में जाएगी।
1: वीडियो में देखा जा सकता है कि शुरुआत में नोटबुक का एक पेज गुड़िया के बेडरूम की तरह बनाया गया है। कमरे में एक छोटा सा बेड है जिसमें पेपर डॉल को अंदर रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, कागज से बने कवर को हटाकर गुड़िया को बाहर भी निकाला जा सकता है, यानी ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए भी बनाया गया है। इसके अगले पन्ने पर एक छोटी सी वार्डरोब बनाई गई है, इसमें गुड़िया के लिए अलग अलग कपड़े रखे गए हैं जिन्हें बाहर निकालकर उसे पहनाया जा सकता है। बच्ची ने कपड़ों से लेकर अलमारी के दरवाजों तक हर चीज को काफी ध्यान से तैयार किया है। अलमारी के दरवाजे भी खुलते हैं और अंदर रखे छोटे छोटे कपड़े दिखाई देते हैं। इसके बाद नोटबुक में एक बाथरूम आता है, यहाँ छोटी सी शावर, सिंक और टॉयलेट तक बनाया गया है। पेपर डॉल को बाथरूम के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर खेला जा सकता है, इस वजह से पूरा सेट किसी छोटी सी प्लेसेट जैसा लगता है।
2: फिर ये किचन में जाएगी और फ्रिज से मैंगो निकालेगी।
1: नोटबुक आगे खुलती है तो एक प्यारा सा किचन दिखाई देता है, यहाँ गुड़िया के लिए छोटी डाइनिंग टेबल बनाई गई है जहाँ वो बैठ सकती है। साथ ही एक छोटा फ्रिज भी है जिसे खोला जा सकता है। हर कमरे में फर्नीचर और छोटी छोटी चीजों को अलग अलग रंगों से सजाया गया है जिससे पूरा डॉल हाउस काफी जीवंत नजर आता है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी चीज को बच्ची ने कागज, रंगों और अपनी कल्पना के सहारे तैयार किया है। इसमें ना कोई महंगा खिलौना है और ना ही किसी बड़े सेट की जरूरत पड़ी, बस एक नोटबुक और ढेर सारी क्रिएटिविटी से उसने अपने लिए एक पूरी छोटी सी दुनिया बना ली।

0: ब्राजील का ये प्यारा वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक 5 साल की बच्ची अपने क्लासमेट को लंच के समय खाना खिलाती नजर आ रही है। बच्चा बिना हाथों के पैदा हुआ है, इसलिए उसे खाना खाने में मदद की जरूरत पड़ती है। सबसे खास बात यह कि बच्ची ने उसकी मदद के लिए किसी के कहने का इंतजार नहीं किया, उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने दोस्त को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बच्ची के छोटे से काम में इतनी मासूमियत और अपनापन नजर आया कि वीडियो देखने वाले लोग भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए।
1: आप किसको करते हो ज्यादा प्यार?
2: देखो मामा को तो दोनों ही पसंद है।
1: दोनों ही पसंद हो? नहीं, एक एक की बात करो।
2: पर मम्मा आपको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
0: प्यारी सी बच्ची और उसकी माँ के बीच ये मजेदार बातचीत लोगों का दिल जीत रहा है। दरअसल जब माँ अपनी बेटी से पूछती है कि उसे पापा पसंद है या माँ, उसके बाद बच्ची ने जो जवाब दिया उसे सुनकर यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
1: आप किसको करते हो ज्यादा प्यार?
2: देखो मामा को तो दोनों ही पसंद है।
1: दोनों ही पसंद हो? नहीं, एक एक की बात करो।
2: पर मम्मा आपको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर पापा का जो प्यार है ना अलग ही है। मेरे को तो पापा को सोच के ही मेरे दिल में पता नहीं क्या ही जा रहा है।
1: क्या ही जा रहा है?
2: मतलब पापा ना मेरे फेवरेट है।
1: और मम्मा?
2: मम्मा थोड़ी कम है।
3: टू माइनस टू कितना होता है? यही तो पूछा था तुमसे और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है टू माइनस टू?
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग बच्चे के इस मासूम लॉजिक की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माँ अपनी छोटी बेटी को गणित पढ़ा रही है।
3: टू माइनस टू कितना होता है? यही तो पूछा था तुमसे और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है टू माइनस टू?
0: अपनी रोती हुई बेटी से पूछती है टू माइनस टू कितना होता है। बच्ची रोते हुए गलत जवाब देती है और कहती है 5।
3: क्या बच्चा?
0: ये सुनकर बच्ची को समझाने के लिए माँ एक आसान उदाहरण देती है। वो कहती है मानो मैंने तुम्हें लंच में 2 रोटी दी और तुमने वो दोनों खा ली, तो अब तुम्हारे पास क्या बचा? बच्ची रोते रोते पूरी मासूमियत से जवाब देती है सब्जी। बच्ची का मासूमियत भरा जवाब लोगों को खूब हंसा रहा है।
3: अभी तुम्हें लंच में मानो तुम्हें 2 रोटी दी मैंने, तुम्हें लंच में मैंने 2 रोटी दी और तुमने दोनों खा ली, तो क्या बचा?
2: सब्जी।
0: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है। इसमें एक पिता की बेटी के लिए की गई खास कोशिश नजर आती है। महंगे इंतजामों से दूर ये सरप्राइज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले लोग पिता के प्यार और सोच की तारीफ करते नहीं थक रहे। दरअसल पिता ट्रक चलाते हैं और काम की वजह से उनका काफी समय सड़क पर ही गुजरता है। ऐसे में बेटी के जन्मदिन पर किसी बड़े होटल या पार्टी हॉल में सेलिब्रेशन करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन बेटी की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा तरीका निकाला जिसने लोगों का दिल जीत लिया। पिता ने जिस ट्रक से वो अपना काम करते हैं उसी के अंदर बेटी के लिए छोटा सा बर्थडे सेटअप तैयार कर दिया। ट्रक को रंग बिरंगे गुब्बारों और लाइट से सजाया गया। इसके अलावा बेटी के लिए गिफ्ट भी रखे गए थे। वीडियो में ट्रक के अंदर का नजारा किसी छोटी सी बर्थडे पार्टी से कम नहीं लग रहा। जब बच्ची वहाँ पहुँचती है और अपने लिए इतनी खूबसूरत सजावट देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिता का यह सरप्राइज उसके लिए कितना खास है। टीचर ने अपनी क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को समझाने का ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर बच्चों को सिर्फ बोर्ड पर डायग्राम बनाकर या किताब की लाइनें पढ़कर समझाने के बजाय पूरा प्रयोग करके दिखाती हैं। इसके लिए क्लास की लाइट बंद कर दी जाती है और कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके बाद वो एक शीशे और लेजर बीम की मदद से बच्चों को समझाना शुरू करती हैं कि आखिर लाइट किसी सतह से टकराने के बाद किस तरह वापस लौटती है। लेजर की रोशनी जब शीशे पर पड़ती है तो वो दूसरी दिशा में वापस जाती हुई दिखाई देती है। इस पूरी प्रक्रिया को बच्चों के लिए और ज्यादा साफ तरीके से दिखाने के लिए हवा में पाउडर का इस्तेमाल भी किया गया। इससे लेजर बीम का रास्ता साफ नजर आने लगा। ऐसे में बच्चों को सिर्फ ये बताया नहीं गया कि प्रकाश कैसे रिफ्लेक्ट होता है, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से पूरी प्रक्रिया को होते हुए भी देखा। यही इस वीडियो की सबसे खास बात है। कई बार किताब में पढ़ी हुई कोई चीज कुछ देर बाद याद नहीं रहती, लेकिन जब उसे किसी प्रयोग के जरिए समझाया जाता है तो उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। इस टीचर ने भी कुछ ऐसा ही किया।

0: में सफर के दौरान अक्सर ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं जो बाद में यादगार बन जाते हैं। कुछ ऐसा एक स्केच आर्टिस्ट और टीटी के साथ हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर भावुक भी हो रहे हैं। दरअसल स्केच आर्टिस्ट आकाश सेल्वारासु ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर कर रहे थे। उनके पास जनरल क्लास का टिकट था और वो बाथरूम की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास बैठे हुए थे। इसी दौरान वहां टिकट चेक करने के लिए टीटी पहुंच गए। उन्होंने आकाश से टिकट मांगा। आकाश ने अपना जनरल टिकट दिखा दिया। स्लीपर कोच में जनरल टिकट पर सफर करने की वजह से टीटी ने रेलवे के नियमों के मुताबिक उनका जुर्माना काट दिया। इसके बाद टीटी ने अपने टैबलेट पर रेलवे का QR कोड दिखाकर उनसे जुर्माने की रकम ले ली और आगे बढ़ गए। देखने में ये बिल्कुल सामान्य टिकट चेकिंग की घटना थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टीटी के वहां से जाने के बाद आकाश के दिमाग में उनका चेहरा रह गया। उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल करने का फैसला किया और कुछ ही देर में टीटी का स्केच बनाना शुरू कर दिया। आकाश ने इतनी बारीकी से उनका चेहरा कागज पर उतारा कि तस्वीर देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कुछ देर बाद आकाश ने वो स्केच टीटी को जाकर दे दिया। पेंटिंग हाथ में आते ही टीटी ने हैरानी से पूछा कि मेरी पेंटिंग है? आकाश ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद टीटी ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। उन्होंने आकाश से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी की कि अगर संभव हो तो पेंटिंग को थोड़ा और बेहतर कर दें। आकाश ने उनकी बात मान ली और उन्होंने टीटी के स्केच को और निखारा और आखिर में उन्हें उनकी तस्वीर दोबारा सौंप दी। सबसे भावुक पल तब आया जब दोनों ने साथ में तस्वीर खिंचवाई। इस दौरान टीटी की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। शायद उनके लिए ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी बल्कि उस सफर की ऐसी याद थी जिसे वो लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे।
1: हम किधर जा रहे हैं?
2: किधर जा रहे हैं?
1: आप रेडी हो?
2: हाँ रेडी।
0: हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों की आदत होती है कि वे कभी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमेशा परिवार की जरूरतें ही सबसे पहले आती है। ईश्वर की नानी ने अपनी पूरी जिंदगी गांव और घर के कामकाज में बिता दी थी। उन्होंने न तो कभी हवाई जहाज देखा था और न ही कभी अपने घर से दूर किसी ट्रिप पर गई थी। पुरानी पीढ़ी के लोगों की आदत होती है कि वे कभी खुद के ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमेशा परिवार की जरूरतें ही सबसे पहले आती हैं।
2: तेरे को नींद हो जाए रे, ये बेटी, तेरे को नींद बहुत आ रही है।
0: जब ईशा का परिवार इस काबिल बना कि वे घूमने फिरने का आनंद ले सके, तो ईशा ने तय किया कि इस बार पहला हक उनकी नानी का है। ईशा उन्हें पहली बार फ्लाइट से गोवा ले गई। एयरपोर्ट लाउंज के अनुभव से लेकर विमान की खिड़की से बाहर झांकने तक नानी के चेहरे का हावभाव देखने लायक था।
2: विमान से आए हैं, ट्रेन से नहीं आए हैं। मजा आया बाबा, अभी हम जा रहे हैं गोवा में मजा करने को।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: बात करते हैं गणपति महोत्सव की, जो भले ही इस साल 14 सितंबर से आरंभ हो रहा है, लेकिन तैयारियों की तस्वीरें अभी से ही नजर आने लगी हैं, खासकर महाराष्ट्र से। भले गणपति उत्सव आज महाराष्ट्र से निकलकर देश भर में अपनी छटा बिखेर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की धरती से शुरू हुआ गणेशोत्सव अंग्रेजों के जमाने से चले आ रही पुरानी गणेश मंडलों की रौनक को लेकर काफी मशहूर रहा है। इन्हीं में से एक है पुणे का श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल, जहां इस बार के गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
8: विघ्नहर्ता सिद्धिदाता भगवान गणपति की भक्ति भले ही सब जगह एक जैसी ही हो, लेकिन महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की रौनक के तो कहने ही क्या। 10 दिन के उल्लास और उत्साह को दर्शाने वाला महाराष्ट्र इस पर्व के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता के संदेश को बरसों से देता चला आ रहा है। यही वजह है कि दशकों से महाराष्ट्र की धरती पर हर तबके से जुड़े लोग इस 10 दिन की अवधि को बप्पा के आने की खुशी के रूप में मनाते आ रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में गणपति मंडल बने हैं जो हर साल गणपति महोत्सव की तैयारियां करते हैं। ऐसा ही एक गणपति मंडल है पुणे का श्रीमंत बाहू साहेब रंगारी गणपति मंडल, जिसने 14 सितंबर से आरंभ हो रहे गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस गणपति मंडल ने क्रांति दिवस पर इस साल के गणेशोत्सव के लिए थीम रखी। श्री गणेश सुवर्ण धाम, जबकि पारंपरिक रूप से उत्सव मंडप के लिए वासा पूजन समारोह भी यहां आयोजित किया गया।
7: क्रांति दिन है आज और हमारे जो फाउंडर थे वो क्रांतिकारी थे और आज क्रांति दिन के निमित्त आज वासा पूजन भी और डेकोरेशन का अनावरण, ये दोनों चीज़ें हुए हैं। मुझे लगता है आज फर्स्ट टाइम पूना में ऐसे LED स्क्रीन पे डेकोरेशन का अनावरण जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ है। और आज इस साल का अगर आप डेकोरेशन देखेंगे, श्री सुवर्ण गणेश धाम, गणेश धाम मतलब गणेश नगरी, गणेश का घर, और सोने ये किया जा उनके माता पिता, उनके भाई, वो खुद यहाँ है ऐसा डेकोरेशन में दिखाया है। और मुझे श्योर हूँ कि मैं जो लाखों भाविक इस 10 दिन में इस जो ये गणपति श्रद्धा स्थान है उनके दर्शन करने आएंगे, तभी ये डेकोरेशन देखिए आनंद हो।
9: स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी ब्रिटिशांविरुद्ध
8: श्रीमंत बाहू साहेब रंगारी गणपति मंडल के अनुसार उनका मंडल आजादी से काफी पहले से गणेशोत्सव का आयोजन करता आया है। इस उत्सव के दौरान परंपरा बरकरार रहे, उससे कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए खास तौर से DJ मुक्त रहने का भी संकल्प मंडल की तरफ से पिछले साल लिया गया था, जिससे यहाँ आने वाली खासकर यंग जनरेशन गणेशोत्सव से जुड़ी समृद्ध परंपरा के मर्म को समझे।
7: 2006 से अगर ये गणेशोत्सव को एक कैंसर, मैं तो कैंसर रोग जो लगा है वो है DJ। आज अन्नाभाऊ साठे जयंती होता है, अंबेडकर जयंती होती है, लहूजी वस्त्रद की जयंती होती है, आप देखते उसमें कि 10-11 साल के लड़के किस प्रकार की नाच करते, ये अपनी संस्कृति नहीं है। और मुझे लगता है कि ये DJ मुक्त होना ही चाहिए। पिछले साल 50 से 50 मंडल जो DJ पे थे वो कन्वर्ट हुए हैं। इस साल ऑलरेडी हमारे पास 25 से 30 मंडल कन्वर्ट होने को तैयार है पारंपरिक पे, और मुझे खातरी की अगले 4-5 साल में पूना का एक जो गणेश उत्सव ये 100% DJ मुक्त हो।
8: बता दें कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में गणपति महोत्सव बरसों से महाराष्ट्र के सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है। कभी 1893 से सार्वजनिक रूप में विराजित किए गए गणपति बप्पा पंडालों से होते हुए बाद के सालों में घर घर विराजना शुरू हुए, और तभी से इसने महाराष्ट्र में परंपरा का रूप ले लिया। इस साल ये उत्सव गणेश चतुर्थी यानी 14 सितंबर से आरंभ होकर 23 सितंबर यानी अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के साथ संपन्न होगा। इसलिए बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता स्वरूप की पारंपरिक पूजा अर्चना के प्रतीक इस पर्व का उल्लास अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली, 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मानसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान, ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का संदेश।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सावन शिवरात्रि की। सावन से दूसरे सोमवार को जहां पर शिवालयों में भक्ति की धारा बह रही है, वहीं पर मंगलवार को शिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। देखिए, शिव भक्तों के लिए सावन शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व माना जाता है और इस साल ग्रहों का जो योग है वो कुछ ऐसा है कि शिवरात्रि और भी ज्यादा मंगलमयी होने जा रही है। क्या है संयोग, आपको विस्तार से हम आगे बताएंगे। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए लाखों की तादाद में कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से अब निकल चुके हैं और इनमें बड़ी तादाद में दिल्ली NCR के कांवड़िए भी शुमार हैं। आज आपकी मुलाकात एक साल की आराध्या से करवाने जा रहे हैं, जो माता पिता के साथ गंगोत्री से गंगा जल लेकर आई हैं। इनके अलावा आपको बता दें, उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी भी अद्भुत तस्वीरें उसकी आपको दिखाने जा रहे हैं आज। तो आइए शुरुआत करते हैं शिवरात्रि पर जलाभिषेक की तैयारियों के साथ। देखिए, सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भक्त उमड़े और मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर और बड़ी तादाद में जलाभिषेक होगा, इसलिए कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की भारी भीड़ रही। अंदाजा है कि 3 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने इलाके के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली NCR के भी लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर आए हैं और इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको मिलवाते हैं एक साल की शिव भक्त आराध्या से।

0: शिव, शिव का सावन और सावन की शिवरात्रि। शिव भक्तों के लिए इस पावन दिन का क्या महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए तो हरिद्वार से निकलने वाली हर सड़क पर केसरिया सैलाब है। हर हर महादेव के जय घोष से जमीन आसमान गुंजायमान है।
1: हाईवे पर लगातार बड़ी संख्या में कांवड़िए बाइक पर सवार शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे जल लेकर यहाँ से जाने के लिए। और जितनी बड़ी संख्या में ये लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य पर रवाना भी हो रहे हैं। मगर इसके बावजूद कांवड़ियों की संख्या कम होती दिखाई नहीं दे रही। सड़क पर जगह जगह बाइकें खड़ी हुई है, उनका किसका पता नहीं है कौन किसकी बाइक है। ये कांवड़िए बाइक खड़ी करके यहाँ से चले गए और ये बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए भी अब जल लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और हाईवे पर सीटियों की आवाज, कांवड़ियों की आवाज, बम बम भोले की आवाज या भोले शंकर की आवाज जयघोष यही सुनाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इस तरह से कांवड़िए यहाँ पर जा रहे हैं। ये इस तरह का माहौल ही है, अलग ही तरीके का है। पुलिस प्रशासन जैसे ना के बराबर काम कर रहा है। खुद कांवड़िए सीटियां बजा बजा के अपना रास्ता खुद बना रहे हैं और यहाँ से जल लेकर रवाना हो रहे हैं और बड़ी कुशलता के साथ पूरी तरह से फिलहाल संपन्न हो रहा है।
0: शिवरात्रि पर भोले का जलाभिषेक करने की मनोकामना लिए जो हरिद्वार से चले अब दिल्ली NCR पहुंच चुके हैं। इन कांवड़ियों में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। यहां तक कि एक साल की आराध्या को शिवरात्रि पर जलाभिषेक करना है।
2: एक साल की आराध्या है। सबसे पहले तो मैं इस कैरियर से शुरू करूंगी कि बेबी कैरियर में किस तरीके से जो है उसको सजाया गया, क्योंकि ये आराध्या की जो है प्रथम कांवड़ यात्रा है। इन्होंने ये पोस्टर भी जो है इसलिए लगाया है, आराध्या की तस्वीर जो है इसमें लगाई गई है। और आराध्या की ये पहली कांवड़ यात्रा है गंगोत्री धाम से लेकर हैदरपुर। हैदरपुर के ये लोग निवासी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप दिख जाएगा बम बम भोले के जयकारों के साथ इन्होंने ये नई शुरुआत करी है। इस बच्ची की एक साल की उम्र है लेकिन भक्ति का ये भी रूप है जो देखने को मिलता है। हर साल ही अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आती है, लेकिन सबसे छोटा रूप मैं आपको भोले का दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से एक साल के बच्चे ने गंगोत्री धाम से ये यात्रा जो है शुरू करी और वो यहाँ पर दिल्ली आ पहुंची है। आराध्या के माँ बाप हमारे साथ है, इस वक्त मौजूद है। आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए।
3: प्रीति।
2: प्रीति, प्रीति। और आपका?
4: करण।
2: करण। करण, प्रीति सवाल ही पहले ये है, गर्मी बहुत है, हालांकि हर सावन में बारिश जरूर होती है लेकिन गर्मी भी होती है। माँ बाप तो जो है कर लेते हैं कि कवर करना है हमें जो है पैदल यात्रा करनी, लेकिन एक साल के बच्चे के साथ ये वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है।
3: नहीं, इतना खास मुश्किल भी नहीं है।
2: क्यों मुश्किल नहीं लगा?
3: अगर सारा लेके सामान चलो तो कोई मुश्किल नहीं होती है।
2: अच्छा, सारा सामान लेके साथ चलो, लेकिन बच्चे तो परेशान हो जाते हैं ना, गर्मी हो बारिश हो।
3: हाँ ये तो है, ये हरिद्वार के बाद ही परेशान करते हैं, उससे पहले नहीं करते।
0: पिता ने महादेव से बेटी की मुराद मांगी थी जो पूरी हो गई। अब माता पिता नन्ही आराध्या को प्राइम पर लेकर गंगोत्री से चल पड़े। हरिद्वार होते हुए आराध्या ने लंबी यात्रा तय की।
2: आराध्या का जल देखिए, कितना छोटी सी बच्ची का छोटा सा जल, मतलब ये तो होगा,
3: ये गंगोत्री का है बच्चे, गंगोत्री का। ये महाकाली द्वार का है,
2: है। तो ये कितना है ML?
3: ये होगा
2: 500 ML लगभग होगा, ये बच्ची के साइज के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि 500 ML का जल जो है
3: गले में डाल गए।
0: करीब 500 ml गंगा जल जो आराध्या लेकर आई है मंगलवार को महादेव पर चढ़ाएंगी। इस एक साल की नन्ही शिव भक्त के साथ इस कांवड़ यात्रा में 53 साल की राजबाला भी हैं। कंधे पर 21 किलो वजन की कांवड़ लिए सिर्फ 5 दिनों में राजबाला ने ये यात्रा पूरी की है। और हाँ, बिल्कुल अकेले।
2: देखिए किस तरीके से अलग अलग पवित्र स्थानों से जल लेकर जो है जितने भी भोले के भक्त है वो दिल्ली में इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं। और मेरे साथ आंटी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले नाम बताइए और उम्र बताइए।
5: मैं राजा बिहार से आई हूँ, 17-18 रोहिणी से। मेरा नाम राजबाला है, मैं हर की पौड़ी से मैंने जल उठाया है। 21 लीटर मेरा जल है और मैंने 5 दिन में ही दिल्ली में संपर्क किया।
2: क्या उम्र है आपकी पहले?
5: मेरी 53 साल है।
2: 53 साल है और आप 5 लीटर जल जो है,
5: 21 लीटर
2: जल 5 दिन में आप ये सफर तय कर आए।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये भोले की भक्ति की शक्ति है कि हर उम्र हर तबके के लोग तेजी से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी चंद दिनों में तय करते हुए शिवालय के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि शिवरात्रि पर जलाभिषेक करना है। जो पैदल जा सकते थे पैदल गए, पर जो मजबूर थे उन्होंने भी हार नहीं मानी। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाने वाले सुनील हर साल यूं ही अपनी ऑटो लेकर हरिद्वार जाते हैं।
4: सुनील जी इस वक्त हमारे साथ है, हालांकि पैरों में उस तरीके की शक्ति नहीं है जिस तरीके से वो चलकर जो है कावड़ लेकर दिल्ली आ सके, लेकिन उसके बावजूद इस हालत में भी जो है ये टेम्पो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का ही टेम्पो है, इसको चलाकर जो है वो दिल्ली में आज यहाँ आए हैं जल लेकर। सबसे पहले तो ये बताइए आपकी उम्र क्या है?
6: मेरी उम्र है 45 साल।
4: 45 साल की उम्र है सुनील जी, आपने जल कहाँ से लिया है? क्योंकि अलग अलग पवित्र स्थानों से लोग जल लेकर।
6: नहीं, मेरा मैं हरिद्वार से जल उठाता हूँ। हाँ। पर हरिद्वार से ही लेके आया हूँ।
4: हर साल लेकर आते हैं आप?
6: जी हर साल लेके आता हूँ।
4: तो कितना लीटर जल लेकर आए हैं आप?
6: मैं जी 2 लीटर जल लेके आता हूँ। हाँ। और भोलेनाथ पे चढ़ाता हूँ।
4: भोलेनाथ पे आप चढ़ाते हैं, तो शिवरात्रि का इंतजार है जिस दिन जो है आप जल अर्पित जो है जलाभिषेक जो है वो करोगे।
6: हाँ जी।
4: अच्छा, अगर मैं यही पूछूं कि मन में इतनी आस्था आती कैसे, क्योंकि तकलीफ है, उस तकलीफ के बावजूद आपके साथ मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, बस नजर आ रहा है तो ये हरा रंग का टेम्पो जिसको आप चलाकर खुद यहाँ पर आए हैं।
6: ये तो बाबा की मर्जी है, बाबा बुलाते हैं चले जाते हैं और उनके नाम का ही जल चढ़ाते हैं जी।
4: कितने सालों से आप लोग आप आ रहे हो?
6: मेरी हो गई 20-22 साल।
4: 20-22 साल से, तो आप देख सकते हैं कि 20-22 साल से ये यूं ही जो है जल लेकर जो है दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद जो है शिवालय जाकर जो है जल अभिषेक करते हैं।
0: दिल्ली की सरहद पर कांवड़ियों का जमघट लगा है। गंगोत्री यहाँ हरिद्वार से लौटे हैं। रात भर के इंतजार के बाद शिवरात्रि पर जल अभिषेक होगा और तपस्या पूरी होगी। अकेले या दोस्तों के साथ या फिर परिवार को अपनी ऑटो रिक्शा में लिए कांवड़िए भक्ति में मगन है।
7: ऑटो उनकी रोजी रोटी है, इसी के जरिए इनका परिवार चलता है, लेकिन सावन के महीने में इसी रोजी रोटी इसी ऑटो पर ये अपने परिवार को बैठाकर निकल पड़े हरिद्वार की तरफ, वहां से जल लिया और अब वापस जा रहे हैं और कल शिवरात्रि है तो कल आप जल चढ़ाएंगे। जतिन, आप कहां से चले थे आप?
8: हम चले थे बदरपुर से।
7: बदरपुर से
8: आओ।
7: कौन है आपके साथ?
8: मेरे साथ मेरी वाइफ है, ये मेरी छोटी लड़की है, ये मेरा लड़का है, इसका नाम लबीस भोले है, इसका नाम कृषा बोली है, मेरा नाम जतिन बोला है, इसका नाम नीतू बोला है।
7: तो ये बेटी कितनी बड़ी
8: है? ये 3 साल की है।
7: और वो बेटा?
8: वो 2 साल का हो जाएगा अगस्त में।
7: 3 साल की बेटी है, 2 साल का बेटा है, बेटा का बर्थडे आने वाला
8: है अगस्त में,
7: 17 अगस्त को। तो बोले आप इसी से आपकी रोजी रोटी चलती है, पहले तो इतनी हिम्मत लाना कि आप 2-4 दिन के लिए ब्रेक लगा के अपने काम के लिए इसको लेकर निकल चलो, ये हिम्मत कहाँ से आई?
8: ये सब भोलेनाथ की कृपा है। बोल बम।
0: भोले भंडारी के लिए जो भक्ति भावना है उसे इन जख्मी पैरों से समझिए। पांव में छाले पड़ गए तो प्लास्टिक की बोतल को चप्पल की तरह पहन लिया और इसी तरह मीलों का सफर तय करके गंगा जल ले आए, लेकिन इसमें जो आनंद है उसकी मिसाल नहीं। 11 साल के राहुल को ही देख लीजिए।
7: मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो अपने साथ जल लेकर निकला है, हरिद्वार से चल के अब नोएडा तक पहुंच गया है और अब इसकी दूरी बहुत कम बची हुई है। क्या नाम बेटा आपका?
9: राहुल।
7: राहुल, राहुल कितने साल के हो आप?
9: 11।
7: 11। और जल कितना आपके पास?
9: 6 लीटर।
7: 6 लीटर जल है। पहली बार आए या पहले भी आए हो?
9: पहले भी आई है।
7: पहले भी आए हो। कितनी एज से आ रहे हो?
9: 3 साल।
7: 3 साल से आ रहे हो। पहली बार जल कितना लेकर आए थे?
9: गाड़ी में आए थे।
7: पहली बार गाड़ी में आए थे। दूसरी बार?
9: दूसरी बार
7: तीसरी बार भी गाड़ी में आए थे। तुमने जल पहली बार उठाया है?
10: हाँ।
7: तो तुम्हें रास्ते में कैसा लगा जब तुमने पहली बार कंधे पे रखा, कुछ दूर चले तो क्या लगा?
9: अच्छा लगा।
7: अच्छा लगा? थके तो नहीं वहां से यहाँ?
9: का
7: कोई चोट तो नहीं कहीं पे? कंधे दर्द तो नहीं हो रही?
0: ऐसे शिव भक्त लाखों की तादाद में है जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं और मंगलवार को अपने अपने शहर कस्बे या फिर गांव के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। नोएडा से मनीष चौरसिया, दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: देखिए, झारखंड के देवघर में भी कांवड़ यात्रा पूरी श्रद्धा और जोश के साथ लगातार जारी है। शिवरात्रि पर जहां पर लाखों की तादाद में शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे, चलिए आपको मिलवाते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली कृष्णा बम से। 74 साल की कृष्णा बम पिछले करीब 42 वर्षों से कांवड़ यात्रा कर रही है और इस साल भी कांवड़ लेकर देवघर के लिए निकल चुकी है।
12: मुजफ्फरपुर की 74 वर्षीय कृष्णा बम माता बम हमारे साथ है, जो कई एक वर्षों से डाक बम प्रतीक सुमारी को मुजफ्फरपुर से जाती है और बाबा बैद्यनाथ धाम में चराती हैं।
5: ये भोलेनाथ की कृपा है कि 42 वर्षों तक लगातार सुल्तानगंज से बाबा धाम बिना रुके अनवरत चल के 16 घंटे में जल चढ़ाती आ रही थी। पिछले साल मेरा दोनों घुटना टूट गया था, मैं नहीं जा सकी इस बार, लेकिन महाकाल गई, महाकाल 4 दिनों में जल चढ़ाई। फिर इस बार मैं 2 तारीख को जल उठाई हूँ, 5 को महाकाल चढ़ा के रात में घर लौटी हूँ। फिर बाबा के यहाँ जाने की तैयारी है। अब डाक जल तो नहीं चलेगा, लेकिन समर्पित शरीर है, भोलेनाथ मुझे जैसे ले जाए।
12: 42 वर्षों का ही साथ है बैद्यनाथ धाम बाबा का और आपका, प्रत्येक सोमारी को जाती थी और आज अब तैयार हैं, जा रही हैं, कितनी खुशी हो रही है कि इस बार?
5: खुशी हो रही है कि पहले तो मैं जाने लायक 10 दिन पहले नहीं थी, लेकिन अचानक मेरा दिमाग चेंज किया है, टिकट 8 दिन पहले ली हूँ। और खुशी हो रही है कि महाकाल में चढ़ा ली जल, दर्द कम हो गया, तो बाबा फिर कहीं बुला ले हमें।
11: सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन में आस्था परंपरा और राजसी वैभव का अद्भुत संगम नजर आया। शाम करीब 4 बजे बाबा महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मन महेश स्वरूप ने भक्तों को दर्शन दिए। बाबा की एक झलक पाने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रिपोर्ट देखिए।

देखिए श्रद्धालुओं के लिए सावन की शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और जलाभिषेक से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने जिस दिन विषपान किया था वो दिन सावन शिवरात्रि का ही था। विष से उनके शरीर में जब जलन शुरू हो गई तो देवताओं ने जलाभिषेक किया और तभी से शिवलिंग के अभिषेक की परंपरा चल पड़ी। जानकारों के मुताबिक इस साल शिवरात्रि पर ग्रहों का भी शुभ संयोग बन रहा है। रिपोर्ट देखिए।

0: संयोग बना है। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है और मान्यता है कि शंकर ही केसरी नंदन है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। इस बार सावन में कई पावन संयोग बन रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को प्रदोष का महासंयोग बना। सोमवार और प्रदोष के अवसान का मिलन महाशिवरात्रि के साथ होने जा रहा है। साफ है कि सावन की शिवरात्रि के अति पावन मौके पर इस बार भगवान भोले की विशेष कृपा बरसने वाली है। इस बार सावन की शिवरात्रि मनोकामनाओं के पूर्ण होने का खास अवसर लेकर आ रही है। इस बार शिवरात्रि पर कई शुभ और दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जो भोले के भक्तों के लिए वरदान साबित होंगे। इस बार शिवरात्रि के मौके पर चंद्रमा पुनर्वसु के पश्चात पुष्य नक्षत्र से कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे गौरी योग का संयोग बनेगा। साथ ही इस बार शिवरात्रि के दिन चंद्रमा की युति सूर्य, बुध और गुरु के साथ होने से चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। गुरु और चंद्रमा साथ होने से गज केसरी योग भी बन रहा है। इस बार सावन शिवरात्रि पर शिव कृपा का लाभ सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा, लेकिन विशेष लाभ मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को मिलने वाला है। इस बार शिवरात्रि के दिन जो शिव भक्त अपने आराध्य की चारों पहर पूजा और अभिषेक करेंगे, उनके लिए चौतरफा लाभ का योग बन रहा है।
1: श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना बड़ी ही विशिष्ट फल देती है, चाहे वो मंत्र का जप हो, रुद्राभिषेक हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप हो, किसी भी तरीके से हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन हम पवित्र सरोवर का जल ला करके किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर में शिवलिंग पर अगर जलाभिषेक करते हैं तो उसका भी अलग पुण्य प्राप्त होता है। यदि इस दिन व्रत रह करके रात्र में, मध्य रात्र में, महानिशा काल में या चारों प्रहर में, रात के चारों प्रहर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए और विभिन्न वस्तुओं से, चाहे दूध से, साध से, पंचामृत से, गंगा जल से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के सुखों का वरदान देते हैं।
0: साफ है कि इस बार सावन की शिवरात्रि भोले भंडारी के भक्तों के लिए कई अलौकिक अवसर लिए हुए है। यही वजह है कि इस बार भोले के भक्त विशेष तौर पर कावड़ियों का उत्साह और उमंग अलग ही दिख रहा है। दरअसल शिव सृष्टि का आधार है, शिव सत्य है, आशुतोष है, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, आनंद हैं, शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु है और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी, शिव ज्ञान स्वरूप हैं, स्वर और संगीत के प्रणेता हैं, इनके डमरू से उत्पन्न नाद ही ब्रह्म है, अनादि हैं इसलिए अप्रमेय हैं। इसलिए शिव के दिव्य अलौकिक स्वरूप की अनुभूति उनकी चेतना का साक्षात तर्क यानी लॉजिक से संभव नहीं है। उसी अचिंत्य अप्रेम में अनादि शिव को सावन अत्यंत प्रिय है। सावन का शिवरात्रि महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत अवसर है। सावन की शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी बताया गया है।
1: ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, पवित्र मंदिरों में, प्रतिष्ठित मंदिरों में जाकर अभिषेक करते हैं या घर पर या नदी के किनारे कहीं भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की उपासना करते हैं तो अद्भुत परिणाम जीवन में प्राप्त होता है और व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सरलता पूर्वक कर लेता है।
0: सनातन धर्म में सावन का महीना अत्यंत पावन माना जाता है। वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का तत्व कण कण में ऐसे घुल जाता है कि मन की वीणा के तार से सिर्फ भक्ति के सुर निकलने लगते हैं। क्योंकि सावन का महीना शुरू होते ही पावस ऋतु अपनी पूर्ण रवानी में होती है, इसलिए प्रकृति भी मनमोहक हरियाली से खिल उठती है। हरियाली से ढकी धरती पर भगवान भोले के भक्त भगवा पोशाक में कांधे पर काम

0: वर लेकर जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है भगवान भास्कर की रश्मियां किसी घने मनोरम उपवन का श्रृंगार कर रही हो। हिंदुस्तान में ये परंपरा अत्यंत प्राचीन है, सदियों से चली आ रही है। सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान भोले के अभिषेक का इतना ज्यादा महात्म्य के पीछे देवासुर संग्राम की पौराणिक कथा को आधार माना जाता है। समुद्र मंथन के बाद कालकूट यानी हलाहल और अमृत दोनों का प्राकट्य हुआ। अमृत पाने की होड़ में देवताओं और असुरों के बीच संग्राम छिड़ गया, लेकिन विषपान के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सृष्टि के व्यापक कल्याण के लिए भगवान शिव ने हलाहल पीने की जिम्मेदारी उठाई। हलाहल पीने के बाद उसके प्रभाव से भगवान भोले का गला नीला पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का अभिषेक किया। देवताओं के अभिषेक से भगवान भोले को काफी लाभ हुआ और महादेव देवताओं पर अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से ये दिन सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था, तब से इसी तिथि को सावन की शिवरात्रि के तौर पर मनाने की परंपरा चल पड़ी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावन की शिवरात्रि को अभिषेक करने से भगवान भोले अभी भी उतने ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं।
1: शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से जो हलाहल निकला था उसको उसका पान कर लिए थे। इस कारण से उनका शरीर तप रहा था। भगवान शिव उस हलाहल विष को कंठ में धारण कर लिए थे, इस कारण से उनका मस्तक गर्म हो गया था। उनको शांति प्रदान करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको आराम प्रदान करने के लिए देवी देवता और मनुष्य सभी जलाभिषेक करते हैं। जिस कारण से भगवान शिव का जो शरीर की गर्मी है वह शांत होती है, तो समुद्र मंथन के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है।
0: दरअसल ये दुनिया विश्वास की धुरी पर टिकी हुई है। विश्वास अगर अचल है तो उससे अद्भुत शक्ति मिलती है और यही शक्ति असंभव से असंभव कार्य की प्रेरणा बन जाती है। भोले के भक्तों का विश्वास है कि सावन की शिवरात्रि को जल अभिषेक करने से लोक परलोक दोनों सुधरता है। दरअसल सनातन के संगतों में शिवरात्रि की अद्भुत महिमा बताई गई है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन निशित काल यानी मध्यरात्रि की वेला में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ धरती पर विचरण करते हैं। यही वजह है कि शिवरात्रि की मध्यरात्रि को जल अभिषेक करने वालों को गौरी शंकर का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सावन की शिवरात्रि को भोले भंडारी की पूजा करने से कुंडली में मौजूद तमाम ग्रह दोष जैसे काल सर्प दोष, पितृ दोष और शनि दोष के अशुभ प्रभावों से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि की तिथि को किए गए दान पुण्य का भी शीघ्र लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: जरा सोचिए, समुंदर के किनारे खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखें और वहां आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगी उड़ती हुई नजर आए तो नजारा कैसा होगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहां आसमान ने जैसे रंगों की चादर ओढ़ ली हो। मौका था गाले फेसा ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का, जहां श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से आए काइट फ्लायर्स ने अपने हुनर का जलवा दिखाया।
3: आसमान में लहराती पतंगों को तो आपने खूब देखा होगा और इंद्रधनुष की खूबसूरत छटा को भी, पर क्या हो जब पतंगों की दुनिया में इंद्रधनुषी रंग भी शामिल हो जाएं? ये कुछ ऐसा ही नजारा है जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है। तस्वीरें हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की। मौका था कोलंबो के गाले फेस ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का। इसमें विशाल काय पतंगों के साथ ही अलग अलग आकृतियों और रंगों वाली छोटी बड़ी पतंगे भी देखने को मिली। यहाँ हर किसी में उत्साह, उमंग और आसमान को छू लेने का जुनून नजर आ रहा था। श्रीलंका में आयोजित ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आए काइट फ्लायर्स ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार करीब 30 देशों के 80 अंतर्राष्ट्रीय काइट फ्लायर्स और 1500 से ज्यादा स्थानीय प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।
4: This is a beautiful kite festival. I've never seen anything like it. It's such a family friendly festival. And right on the beach here, and the wind is beautiful, the people are beautiful, the weather's all beautiful.
3: Din hi nahi, is event ne raaton ko bhi roshan rakha. Raat mein aasman mein patangon ka shandar nazara dikha. Andhere aasman mein roshni se jagmagati patangon ne Colombo ke skyline ko ek alag hi andaaz de diya. Samandar ki lehrein, khula aasman और उसमें उड़ती सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे। कोलंबो का ये नजारा सिर्फ एक फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है बल्कि श्रीलंका की संस्कृति, रचनात्मकता और पर्यटन को दुनिया के सामने पेश करने की एक कोशिश भी है। कोलंबो का ये काइट फेस्टिवल श्रीलंका के पर्यटन अभियान को एक नया रंग देता दिखा। यहाँ पतंगों की डोर ने सिर्फ आसमान को नहीं छुआ बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को भी एक साथ जोड़ा। यानी कोलंबो में पतंगों के बहाने आसमान भी सजा और श्रीलंका ने दुनिया को अपनी खूबसूरती और संस्कृति की एक रंगीन झलक भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली। 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी। मानसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार। घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान। ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा। शेरों के संरक्षण का संदेश।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर फ्रेम को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसमें रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। इस वीडियो को इसी एंगल से लगातार वायरल किया जा रहा है। क्या है सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। क्या है इसकी सच्चाई आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: रांची में राज्य मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक चली मैराथन वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही। जेबीएससी और जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि रांची में आंदोलनकारी छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत के प्रशासन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद अधिकारियों को जमीन पर बैठकर छात्रों से बातचीत करनी पड़ी। क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
6: झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन से जोड़कर सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में जमीन पर बैठे छात्र अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए उन्हें भी अपने साथ जमीन पर बैठने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो रांची का है, जहां जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में विसंगतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने बंद कमरे में वार्ता से इनकार कर दिया, जिसके बाद एसडीओ और एडीएम को भी प्रदर्शनकारियों के बीच जमीन पर बैठकर खुली बातचीत करनी पड़ी। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं।
5: असल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो रांची का है, जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तस्वीरें देखी, जिसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की लिखित मंजूरी नहीं मिलती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 7 अगस्त से लेकर अब तक 6 राउंड से अधिक की बातचीत हो चुकी है, ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जानना जरूरी हो गया था। सर्च के दौरान यह जानकारी सामने आई कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में मंत्रियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और छात्र संगठनों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वीडियो में जो दृश्य नजर आ रहे हैं वो किसी गेस्ट हाउस जैसे नहीं लग रहे हैं, ये किसी कॉलेज की बिल्डिंग जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि एसडीओ और एडीएम को जमीन पर बैठकर बातचीत के लिए मजबूर किया जाता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर किया जाने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम पेज पर यह वीडियो मिला। इसके कैप्शन में इसे धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का बताया गया था। वीडियो में यह भी जानकारी दी गई थी कि BBMKU में परीक्षा के नतीजों में देरी, लाइब्रेरी और बेंच की कमी तथा पानी और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने 11 सूत्रीय मांग पत्र रखा। इस दौरान बातचीत शुरू करने से पहले उन्होंने अधिकारियों से उनके साथ जमीन पर बैठने के लिए कहा। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में है प्रदर्शन 27 जुलाई 2026 को हुआ था। सर्च के दौरान हमें झारखंड के कई स्थानीय मीडिया चैनलों पर भी इस वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जुलाई को विश्वविद्यालय में LLM की पढ़ाई शुरू करने, सेंट्रल लाइब्रेरी और लैब बनाने जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे AISA के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी थी। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो झारखंड के रांची का नहीं बल्कि धनबाद का है, जहां विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 27 जुलाई को वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तालाबंदी की थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और वीडियो में लाठी डंडे और कुंडाल से कुछ लोग एक ढांचे को गिरा रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि यह बांग्लादेश का वीडियो है जहां पर हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
6: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन ढांचे को गिरा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं हैं, लगातार ढांचे को गिराने में लगे रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां कट्टरपंथियों का एक गुट जबरन एक हिंदू परिवार की जमीन पर कब्जा कर रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को भी बख्शा नहीं गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन ढांचे को गिरा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं है, लगातार ढांचे को गिराने में लगे रहते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह भी कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का वीडियो है, जहां कट्टरपंथियों का गुट जबरन हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया लगा। ऐसे में अगर वीडियो बांग्लादेश का बताकर वायरल किया जा रहा है तो इसमें असमिया क्यों सुनाई दे रही है। इसके अलावा हमने फिर से वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें ऐसा लगा कि ये दो गुटों के आपसी विवाद का मामला हो सकता है, क्योंकि हमें सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो बांग्लादेश के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
6: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें असम के एक फेसबुक पेज पर 29 जुलाई की एक पोस्ट मिली। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक असम के गोसाई गांव सब डिवीजन के उच्चतारी गांव में नूरुल खान और गनी शेख की अगुवाई वाले दो गुटों के बीच जमीन के पुराने विवाद को लेकर झड़प हुई थी। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें असम के कई स्थानीय न्यूज आउटलेट्स पर इस झड़प के बारे में वीडियो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार गनी शेख के ग्रुप ने नूरुल खान के उस घर को गिराने की कोशिश की जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बन रहा था। नूरुल खान के परिवार ने आरोप लगाया कि गनी शेख और उसके साथियों ने उनके निर्माणाधीन घर पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। परिवार ने शेख और उसके साथियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद पुलिस ने शेख और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने गोसाई गांव पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी नारायण बोरो से संपर्क किया। बातचीत के दौरान उन्होंने पुष्टि की कि हमलावर और पीड़ित दोनों में से कोई हिंदू नहीं था। FIR में 5 लोगों के नाम शामिल थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो का कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। ये वीडियो असम के गोसाई गांव का है जहां जमीन के विवाद को लेकर दो मुस्लिम गुटों के बीच झड़प हो गई थी। रिद्धिश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
5: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपके लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
8: एक छोटी बच्ची ने अपनी क्रिएटिविटी से एक साधारण सी नोटबुक को इतना खूबसूरत डॉल हाउस बना दिया कि उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। नोटबुक का हर पन्ना खुलते ही एक नए कमरे में बदल जाता है।
9: फिर ये बेडरूम में जाएगी।
8: वीडियो में देखा जा सकता है कि शुरुआत में नोटबुक का एक पेज गुड़िया के बेडरूम की तरह बनाया गया है। कमरे में एक छोटा सा बेड है जिसमें पेपर डॉल को अंदर रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, कागज से बने कवर को हटाकर गुड़िया को बाहर भी निकाला जा सकता है। यानी ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए भी बनाया गया है। इसके अगले पन्ने पर एक छोटी सी वार्डरोब बनाई गई है। इसमें गुड़िया के लिए अलग अलग कपड़े रखे गए हैं जिन्हें बाहर निकालकर उसे पहनाया जा सकता है। बच्चे ने कपड़ों से लेकर अलमारी के दरवाजों तक हर चीज को काफी ध्यान से तैयार किया है। अलमारी के दरवाजे भी खुलते हैं और अंदर रखे छोटे छोटे कपड़े दिखाई देते हैं। इसके बाद नोटबुक में एक बाथरूम आता है। यहाँ छोटी सी शावर, सिंक और टॉयलेट तक बनाया गया है। पेपर डॉल को बाथरूम के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर खेला जा सकता है। इस वजह से पूरा सेट किसी छोटी सी प्लेसेट जैसा लगता है।
9: फिर ये किचन में जाएगी और फ्रिज से मैंगो निकालेगी।
8: नोटबुक आगे खुलती है तो एक प्यारा सा किचन दिखाई देता है। यहाँ गुड़िया के लिए छोटी डाइनिंग टेबल बनाई गई है जहाँ वो बैठ सकती है। साथ ही एक छोटा फ्रिज भी है जिसे खोला जा सकता है। हर कमरे में फर्नीचर और छोटी छोटी चीजों को अलग अलग रंगों से सजाया गया है जिससे पूरा डॉल हाउस काफी जीवंत नजर आता है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी चीज को बच्चे ने कागज, रंगों और अपनी कल्पना के सहारे तैयार किया है। इसमें ना कोई महंगा खिलौना है और ना ही किसी बड़े सेट की जरूरत पड़ी। बस एक नोटबुक और ढेर सारी क्रिएटिविटी से उसने अपने लिए पूरी छोटी सी दुनिया बना ली।

0: ब्राजील का ये प्यारा वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक 5 साल की बच्ची अपने क्लासमेट को लंच के समय खाना खिलाती नजर आ रही है। बच्चा बिना हाथों के पैदा हुआ है, इसलिए उसे खाना खाने में मदद की जरूरत पड़ती है। सबसे खास बात यह कि बच्ची ने उसकी मदद के लिए किसी के कहने का इंतजार नहीं किया, उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने दोस्त को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बच्ची के छोटे से काम में इतनी मासूमियत और अपनापन नजर आया कि वीडियो देखने वाले लोग भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए।
1: आप किसको करते हो ज्यादा प्यार?
2: देखो मामा को तो दोनों ही पसंद है।
1: दोनों ही पसंद हो? नहीं, एक एक की बात करो।
2: पर मम्मा आपको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
0: प्यारी सी बच्ची और उसकी माँ के बीच ये मजेदार बातचीत लोगों का दिल जीत रहा है। दरअसल जब माँ अपनी बेटी से पूछती है कि उसे पापा पसंद है या माँ, उसके बाद बच्ची ने जो जवाब दिया उसे सुनकर यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
1: आप किसको करते हो ज्यादा प्यार?
2: देखो मामा को तो दोनों ही पसंद है।
1: दोनों ही पसंद हो? नहीं, एक एक की बात करो।
2: पर मम्मा आपको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर पापा का जो प्यार है ना अलग ही है। मेरे को तो पापा को सोच के ही मेरे दिल में पता नहीं क्या ही जा रहा है।
1: क्या ही जा रहा है?
2: मतलब पापा ना मेरे फेवरेट है।
1: और मम्मा?
2: मम्मा थोड़ी कम है।
3: टू माइनस टू कितना होता है? यही तो पूछा था तुमसे और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है टू माइनस टू?
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग बच्चे के इस मासूम लॉजिक की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माँ अपनी छोटी बेटी को गणित पढ़ा रही है।
3: टू माइनस टू कितना होता है? यही तो पूछा था तुमसे और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है टू माइनस टू?
0: अपनी रोती हुई बेटी से पूछती है टू माइनस टू कितना होता है। बच्ची रोते हुए गलत जवाब देती है और कहती है 5।
3: क्या बच्चा?
0: ये सुनकर बच्ची को समझाने के लिए माँ एक आसान उदाहरण देती है। वो कहती है, मानो मैंने तुम्हें लंच में 2 रोटी दी और तुमने वो दोनों खा ली, तब तुम्हारे पास क्या बचा? बच्ची रोते रोते पूरी मासूमियत से जवाब देती है, सब्जी। बच्ची का मासूमियत भरा जवाब लोगों को खूब हंसा रहा है।
3: अभी तुम्हें लंच में, मानो तुम्हें 2 रोटी दी मैंने, तुम्हें लंच में मैंने 2 रोटी दी और तुमने दोनों खा ली, तो क्या बचा?
2: सब्जी।
0: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है। इसमें एक पिता की बेटी के लिए की गई खास कोशिश नजर आती है। महंगे इंतजामों से दूर ये सरप्राइज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले लोग पिता के प्यार और सोच की तारीफ करते नहीं थक रहे। दरअसल पिता ट्रक चलाते हैं और काम की वजह से उनका काफी समय सड़क पर ही गुजरता है। ऐसे में बेटी के जन्मदिन पर किसी बड़े होटल या पार्टी हॉल में सेलिब्रेशन करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन बेटी की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा तरीका निकाला जिसने लोगों का दिल जीत लिया। पिता ने जिस ट्रक से वो अपना काम करते हैं उसी के अंदर बेटी के लिए छोटा सा बर्थडे सेटअप तैयार कर दिया। ट्रक को रंग बिरंगे गुब्बारों और लाइट से सजाया गया। इसके अलावा बेटी के लिए गिफ्ट भी रखे गए थे। वीडियो में ट्रक के अंदर का नजारा किसी छोटी सी बर्थडे पार्टी से कम नहीं लग रहा। जब बच्ची वहाँ पहुँचती है और अपने लिए इतनी खूबसूरत सजावट देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिता का ये सरप्राइज उसके लिए कितना खास है। टीचर ने अपनी क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को समझाने का ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर बच्चों को सिर्फ बोर्ड पर डायग्राम बनाकर या किताब की लाइनें पढ़कर समझाने के बजाय पूरा प्रयोग करके दिखाती हैं। इसके लिए क्लास की लाइट बंद कर दी जाती है और कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके बाद वो एक शीशे और लेजर बीम की मदद से बच्चों को समझाना शुरू करती हैं कि आखिर लाइट किसी सतह से टकराने के बाद किस तरह वापस लौटती है। लेजर की रोशनी जब शीशे पर पड़ती है तो वो दूसरी दिशा में वापस जाती हुई दिखाई देती है। इस पूरी प्रक्रिया को बच्चों के लिए और ज्यादा साफ तरीके से दिखाने के लिए हवा में पाउडर का इस्तेमाल भी किया गया। इससे लेजर बीम का रास्ता साफ नजर आने लगा। ऐसे में बच्चों को सिर्फ ये बताया नहीं गया कि प्रकाश कैसे रिफ्लेक्ट होता है, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से पूरी प्रक्रिया को होते हुए भी देखा। यही इस वीडियो की सबसे खास बात है। कई बार किताब में पढ़ी हुई कोई चीज कुछ देर बाद याद नहीं रहती, लेकिन जब उसे किसी प्रयोग के जरिए समझाया जाता है तो उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। इस टीचर ने भी कुछ ऐसा ही किया।

0: ट्रेन में सफर के दौरान अक्सर ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं जो बाद में यादगार बन जाती हैं। कुछ ऐसा एक स्केच आर्टिस्ट और टीटी के साथ हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर भावुक भी हो रहे हैं। दरअसल स्केच आर्टिस्ट आकाश सेल्वारासु ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर कर रहे थे। उनके पास जनरल क्लास का टिकट था और वो बाथरूम की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास बैठे हुए थे। इसी दौरान वहां टिकट चेक करने के लिए टीटी पहुंच गए। उन्होंने आकाश से टिकट मांगा। आकाश ने अपना जनरल टिकट दिखा दिया। स्लीपर कोच में जनरल टिकट पर सफर करने की वजह से टीटी ने रेलवे के नियमों के मुताबिक उनका जुर्माना काट दिया। इसके बाद टीटी ने अपने टैबलेट पर रेलवे का QR कोड दिखाकर उनसे जुर्माने की रकम ले ली और आगे बढ़ गए। देखने में ये बिल्कुल सामान्य टिकट चेकिंग की घटना थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टीटी के वहां से जाने के बाद आकाश के दिमाग में उनका चेहरा रह गया। उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल करने का फैसला किया और कुछ ही देर में टीटी का स्केच बनाना शुरू कर दिया। आकाश ने इतनी बारीकी से उनका चेहरा कागज पर उतारा कि तस्वीर देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कुछ देर बाद आकाश ने वो स्केच टीटी को जाकर दे दिया। पेंटिंग हाथ में आते ही टीटी ने हैरानी से पूछा कि मेरी पेंटिंग है? आकाश ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद टीटी ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। उन्होंने आकाश से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी की कि अगर संभव हो तो पेंटिंग को थोड़ा और बेहतर कर दें। आकाश ने उनकी बात मान ली और उन्होंने टीटी के स्केच को और निखारा और आखिर में उन्हें उनकी तस्वीर दोबारा सौंप दी। सबसे भावुक पल तब आया जब दोनों ने साथ में तस्वीर खिंचवाई। इस दौरान टीटी की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। शायद उनके लिए ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी बल्कि उस सफर की ऐसी याद थी जिसे वो लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे।
1: हम किधर जा रहे हैं?
2: किधर जा रहे हैं?
1: आप रेडी हो?
2: हाँ रेडी।
0: हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों की आदत होती है कि वे कभी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमेशा परिवार की जरूरतें ही सबसे पहले आती है। ईश्वर की नानी ने अपनी पूरी जिंदगी गांव और घर के कामकाज में बिता दी थी। उन्होंने न तो कभी हवाई जहाज देखा था और न ही कभी अपने घर से दूर किसी ट्रिप पर गई थी। पुरानी पीढ़ी के लोगों की आदत होती है कि वे कभी खुद के ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमेशा परिवार की जरूरतें ही सबसे पहले आती हैं।
2: तेरे को नींद हो जाए रे, ये बेटी, तेरे को नींद बहुत आ रही है।
0: जब ईशा का परिवार इस काबिल बना कि वे घूमने फिरने का आनंद ले सके, तो ईशा ने तय किया कि इस बार पहला हक उनकी नानी का है। ईशा उन्हें पहली बार फ्लाइट से गोवा ले गई। एयरपोर्ट लाउंज के अनुभव से लेकर विमान की खिड़की से बाहर झांकने तक नानी के चेहरे का हावभाव देखने लायक था।
2: विमान से आए रहे, ट्रेन से नहीं आए रहे। आया मजा आया बाबा, अभी हम जा रहे हैं गोवा में मजा करने को।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात करते हैं गणपति महोत्सव की, जो भले ही इस साल 14 सितंबर से आरंभ हो रहा है लेकिन तैयारियों की तस्वीरें अभी से ही नजर आने लगी हैं, खासकर महाराष्ट्र से। भले गणपति उत्सव आज महाराष्ट्र से निकलकर देश भर में अपनी छटा बिखेर रहा है लेकिन महाराष्ट्र की धरती से शुरू हुआ गणेशोत्सव अंग्रेजों के जमाने से चले आ रही पुरानी गणेश मंडलों की रौनक को लेकर काफी मशहूर रहा है। इन्हीं में से एक है पुणे का श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल, जहां इस बार के गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
2: विघ्नहर्ता सिद्धिदाता भगवान गणपति की भक्ति भले ही सब जगह एक जैसी ही हो लेकिन महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की रौनक के तो कहने ही क्या। 10 दिन के उल्लास और उत्साह को दर्शाने वाला महाराष्ट्र इस पर्व के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता के संदेश को बरसों से देता चला आ रहा है। यही वजह है कि दशकों से महाराष्ट्र की धरती पर हर तबके से जुड़े लोग इस 10 दिन की अवधि को बप्पा के आने की खुशी के रूप में मनाते आ रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में गणपति मंडल बने हैं जो हर साल गणपति महोत्सव की तैयारियां करते हैं। ऐसा ही एक गणपति मंडल है पुणे का श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल, जिसने 14 सितंबर से आरंभ हो रहे गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस गणपति मंडल ने क्रांति दिवस पर इस साल के गणेशोत्सव के लिए थीम रखी। श्री गणेश सुवर्ण धाम, जबकि पारंपरिक रूप से उत्सव मंडप के लिए वासा पूजन समारोह भी यहां आयोजित किया गया।
3: क्रांति दिन है आज और हमारे जो फाउंडर थे वो क्रांतिकारी थे और आज क्रांति दिन के निमित्त आज वासा पूजन भी और डेकोरेशन का अनावरण, ये दोनों चीजें हुए हैं। मुझे लगता है आज फर्स्ट टाइम पूना में ऐसे LED स्क्रीन पे डेकोरेशन का अनावरण जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ है। और आज इस साल का अगर आप डेकोरेशन देखेंगे श्री सुवर्ण गणेश धाम, गणेश धाम मतलब गणेश नगरी, गणेश का घर, और सोने ये किया है जहाँ उनके माता पिता उनके भाई वो खुद यहाँ है ऐसा डेकोरेशन में दिखाया है। और मुझे श्योर हूँ कि मैं जो लाखों भाविक इस 10 दिन में इस जो ये गणपति श्रद्धा स्थान है उनके दर्शन करने आएंगे तभी ये डेकोरेशन देखिए आनंद हो।
4: स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी ब्रिटिशांविरुद्ध
2: श्रीमंत बाहू साहेब रंगारी गणपति मंडल के अनुसार उनका मंडल आजादी से काफी पहले से गणेशोत्सव का आयोजन करता आया है। इस उत्सव के दौरान परंपरा बरकरार रहे, उससे कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए खास तौर से DJ मुक्त रहने का भी संकल्प मंडल की तरफ से पिछले साल लिया गया था, जिससे यहां आने वाली खासकर यंग जनरेशन गणेशोत्सव से जुड़ी समृद्ध परंपरा के मर्म को समझे।
3: 2006 से अगर ये गणेशोत्सव को एक कैंसर, मैं तो कैंसर रोग जो लगा है वो है DJ। आज अन्नाभाऊ साठे जयंती होता है, अंबेडकर जयंती होती है, लहूजी वस्त्रद की जयंती होती है, आप देखते हैं उसमें कि 10-11 साल के लड़के किस प्रकार की नाच करते, ये अपनी संस्कृति नहीं है। और मुझे लगता है कि ये DJ मुक्त होना ही चाहिए। पिछले साल 50 से 50 मंडल जो DJ पे थे वो कन्वर्ट हुए हैं, इस साल ऑलरेडी हमारे पास 25 से 30 मंडल कन्वर्ट होने को तैयार है पारंपरिक पे। और मुझे खातरी कि अगले 4-5 साल में पूना का एक जो गणेश उत्सव ये 100% DJ मुक्त होगा।
2: बता दें कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में गणपति महोत्सव बरसों से महाराष्ट्र के सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है। कभी 1893 से सार्वजनिक रूप में विराजित किए गए गणपति बप्पा पंडालों से होते हुए बाद के सालों में घर घर विराजना शुरू हुए और तभी से इसने महाराष्ट्र में परंपरा का रूप ले लिया। इस साल यह उत्सव गणेश चतुर्थी यानी 14 सितंबर से आरंभ होकर संपन्न होगा, इसलिए बुद्धि महाराष्ट्र में बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
5: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली। 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मानसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान, ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का संदेश।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सावन शिवरात्रि की। सावन से दूसरे सोमवार को जहां पर शिवालयों में भक्ति की धारा बह रही है, वहीं पर मंगलवार को शिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। देखिए, शिव भक्तों के लिए सावन शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व माना जाता है और इस साल ग्रहों का जो योग है वो कुछ ऐसा है कि शिवरात्रि और भी ज्यादा मंगलमयी होने जा रही है। क्या है संयोग, आपको विस्तार से हम आगे बताएंगे। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए लाखों की तादाद में कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से अब निकल चुके हैं और इनमें बड़ी तादाद में दिल्ली एनसीआर के कांवड़िए भी शुमार हैं। आज आपकी मुलाकात एक साल की आराध्या से करवाने जा रहे हैं, जो माता पिता के साथ गंगोत्री से गंगा जल लेकर आई हैं। इनके अलावा आपको बता दें, उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी भी अद्भुत तस्वीरें उसकी आपको दिखाने जा रहे हैं आज। तो आइए शुरुआत करते हैं शिवरात्रि पर जलाभिषेक की तैयारियों के साथ। देखिए, सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भक्त उमड़े और मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर और बड़ी तादाद में जलाभिषेक होगा, इसलिए कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की भारी भीड़ रही। अंदाजा है कि 3 करोड़ से ज्यादा शिवभक्त गंगा जल लेकर अपने इलाके के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के भी लाखों शिवभक्त गंगा जल लेकर आए हैं और इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको मिलवाते हैं एक साल की शिवभक्त आराध्या से।

0: शिव, शिव का सावन और सावन की शिवरात्रि। शिव भक्तों के लिए इस पावन दिन का क्या महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो हरिद्वार से निकलने वाली हर सड़क पर केसरिया सैलाब है। हर हर महादेव के जय घोष से जमीन आसमान गुंजायमान है।
1: हाईवे पर लगातार बड़ी संख्या में कांवड़िए बाइक पर सवार शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे जल लेकर यहां से जाने के लिए, और जितनी बड़ी संख्या में ये लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य को रवाना भी हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद कांवड़ियों की संख्या कम होती दिखाई नहीं दे रही। सड़क पर जगह जगह बाइकें खड़ी हुई है, उनका किसका पता नहीं है कौन किसकी बाइक है। ये कांवड़िए बाइक खड़ी करके यहाँ से चले गए और ये बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए भी अब जल लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और हाईवे पर सीटियों की आवाज, कांवड़ियों की आवाज, बम बम भोले की आवाज या भोले शंकर की आवाज जयघोष यही सुनाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इस तरह के कांवड़िए यहाँ पर जा रहे हैं। ये इस तरह का माहौल ही है, अलग ही तरीके का है। पुलिस प्रशासन जैसे ना के बराबर काम कर रहा है, खुद कांवड़िए सीढ़ियां बजा बजा के अपना रास्ता खुद बना रहे हैं और यहाँ से जल लेकर रवाना हो रहे हैं और बड़ी कुशलता के साथ पूरी तरह से फिलहाल संपन्न हो रहा है।
0: शिवरात्रि पर भोले का जलाभिषेक करने की मनोकामना लिए जो हरिद्वार से चले अब दिल्ली NCR पहुंच चुके हैं। इन कांवड़ियों में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। यहाँ तक कि एक साल की आराध्या को शिवरात्रि पर जलाभिषेक करना है।
2: एक साल की आराध्या है। सबसे पहले तो मैं इस कैरियर से शुरू करूंगी कि बेबी कैरियर में किस तरीके से जो है उसको सजाया गया है, क्योंकि ये आराध्या की जो है प्रथम कांवड़ यात्रा है। इन्होंने ये पोस्टर भी जो है इसलिए लगाया है, आराध्या की तस्वीर जो है इसमें लगाई गई है, और आराध्या की ये पहली कांवड़ यात्रा है गंगोत्री धाम से लेकर हैदरपुर। हैदरपुर के ये लोग निवासी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप दिख जाएगा बम बम भोले के जयकारों के साथ इन्होंने ये नई शुरुआत करी है। इस बच्ची की एक साल की उम्र है, लेकिन भक्ति का ये भी रूप है जो देखने को मिलता है। हर साल ही अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आती है, लेकिन सबसे छोटा रूप मैं आपको भोले का दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से एक साल के बच्चे ने गंगोत्री धाम से ये यात्रा जो है शुरू करी और वो यहाँ पर दिल्ली आ पहुंची है। आराध्या के माँ बाप हमारे साथ है, इस वक्त मौजूद है। आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए।
3: प्रीति।
2: प्रीति, प्रीति। और आपका?
4: करण।
2: करण। करण, प्रीति सवाल ही पहले ये है, गर्मी बहुत है, हालांकि हर सावन में बारिश जरूर होती है लेकिन गर्मी भी होती है। माँ बाप तो जो है कर लेते हैं कि कवर करना है हमें जो है पैदल यात्रा करनी है, लेकिन एक साल के बच्चे के साथ ये वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है।
3: नहीं, इतना खास मुश्किल भी नहीं है।
2: क्यों मुश्किल नहीं लगा?
3: अगर सारा लेके सामान चलो तो कोई मुश्किल नहीं होती है।
2: अच्छा, सारा सामान लेके साथ चलो, लेकिन बच्चे तो परेशान हो जाते हैं ना, गर्मी हो बारिश हो।
3: हाँ ये तो है, ये हरिद्वार के बाद ही परेशान करते हैं, उससे पहले नहीं करते।
0: पिता ने महादेव से बेटी की मुराद मांगी थी जो पूरी हो गई। अब माता पिता नन्ही आराध्या को प्राइम पर लेकर गंगोत्री से चल पड़े। हरिद्वार होते हुए आराध्या ने लंबी यात्रा तय की।
2: आराध्या का जल देखिए, कितना छोटी सी बच्ची का छोटा सा जल, मतलब ये तो होगा
3: गंगोत्री का है। अच्छा, गंगोत्री ये है, महाकाली द्वार का है।
2: है तो ये कितना है ML?
3: ये होगा
2: 500 ML लगभग होगा, ये बच्ची के साइज के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि 500 ML का जल जो है
3: गले में डाल गए।
0: करीब 500 ml गंगा जल जो आराध्या लेकर आई है मंगलवार को महादेव पर चढ़ाएंगी। इस एक साल की नन्ही शिव भक्त के साथ इस कांवड़ यात्रा में 53 साल की राजबाला भी हैं। कंधे पर 21 किलो वजन की कांवड़ लिए सिर्फ 5 दिनों में राजबाला ने ये यात्रा पूरी की है, और हाँ बिल्कुल अकेले।
2: देखिए किस तरीके से अलग अलग पवित्र स्थानों से जल लेकर जो है जितने भी भोले के भक्त है वो दिल्ली में इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं, और मेरे साथ आंटी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले नाम बताइए और उम्र बताइए।
5: मैं राजा बिहार से आई हूँ, 17-18 रोहिणी से। मेरा नाम राजबाला है, मैं हर की पौड़ी से मैंने जल उठाया है, 21 लीटर मेरा जल है, और मैंने 5 दिन में ही दिल्ली में संपर्क किया।
2: क्या उम्र है आपकी पहले?
5: मेरी 53 साल है।
2: 53 साल है, और आप 5 लीटर जल जो है
5: 21 लीटर
2: जल 5 दिन में आप ये सफर तय करके आए।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये भोले की भक्ति की शक्ति है कि हर उम्र हर तबके के लोग तेजी से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी चंद दिनों में तय करते हुए शिवालय के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि शिवरात्रि पर जलाभिषेक करना है। जो पैदल जा सकते थे पैदल गए, पर जो मजबूर थे उन्होंने भी हार नहीं मानी। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाने वाले सुनील हर साल यूं ही अपनी ऑटो लेकर हरिद्वार जाते हैं।
4: सुनील जी इस वक्त हमारे साथ है, हालांकि पैरों में उस तरीके की शक्ति नहीं है जिस तरीके से वो चलकर जो है कावड़ लेकर दिल्ली आ सके, लेकिन उसके बावजूद इस हालत में भी जो है ये टेम्पो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का ही टेम्पो है, इसको चलाकर जो है वो दिल्ली में आज यहाँ आए हैं जल लेकर। सबसे पहले तो ये बताइए आपकी उम्र क्या है?
6: मेरी उम्र है 45 साल।
4: 45 साल की उम्र है सुनील जी, आपने जल कहाँ से लिया? क्योंकि अलग अलग पवित्र स्थानों से लोग जल लेकर।
6: नहीं, मेरा मैं हरिद्वार से जल उठाता हूँ। हाँ। हरिद्वार से ही लेके आया हूँ।
4: हर साल लेकर आते हैं आप?
6: जी हर साल लेके आता हूँ।
4: तो कितना लीटर जल लेकर आए हैं आप?
6: मैं जी 2 लीटर जल लेके आता हूँ। हाँ। और भोलेनाथ पे चढ़ाता हूँ।
4: भोलेनाथ पे आप चढ़ाते हैं, तो शिवरात्रि का इंतजार है जिस दिन जो है आप जल अर्पित जो है जलाभिषेक जो है वो करोगे।
6: हाँ जी।
4: अच्छा, अगर मैं यही पूछूं कि मन में इतनी आस्था आती कैसे, क्योंकि तकलीफ है, उस तकलीफ के बावजूद आपके साथ मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, बस नजर आ रहा है तो ये हरा रंग का टेम्पो जिसको आप चलाकर खुद यहाँ पर आए हैं।
6: ये तो बाबा की मर्जी है, बाबा बुलाते हैं चले जाते हैं और उनके नाम का ही जल चढ़ाते हैं जी।
4: कितने सालों से आप लोग आप आ रहे हो?
6: मेरी हो गई 20-22 साल।
4: 20-22 साल से, तो आप देख सकते हैं कि 20-22 साल से ये यूं ही जो है जल लेकर जो है दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद जो है शिवालय जाकर जो है जल अभिषेक कर।
0: दिल्ली की सरहद पर कांवड़ियों का जमघट लगा है, गंगोत्री यहाँ हरिद्वार से लौटे हैं। रात भर के इंतजार के बाद शिवरात्रि पर जल अभिषेक होगा और तपस्या पूरी होगी। अकेले या दोस्तों के साथ या फिर परिवार को अपनी ऑटो रिक्शा में लिए कांवड़िए भक्ति में मगन है।
7: ऑटो उनकी रोजी रोटी है, इसी के जरिए इनका परिवार चलता है, लेकिन सावन के महीने में इसी रोजी रोटी इसी ऑटो पर ये अपने परिवार को बैठाकर निकल पड़े हरिद्वार की तरफ, वहां से जल लिया और अब वापस जा रहे हैं और कल शिवरात्रि है तो कल आप जल चढ़ाएंगे। जतिन, आप कहां से चले थे आप?
8: हम चले थे बदरपुर से।
7: बदरपुर से
8: आओ।
7: कौन कौन है आपके साथ?
8: मेरे साथ मेरी वाइफ है, ये मेरी छोटी लड़की है, ये मेरा लड़का है, इसका नाम लवीस भोले है, इसका नाम किरसा भोली है, मेरा नाम जतिन भोला है, इसका नाम नीतू भोला है।
7: तो ये बेटी कितनी बड़ी
8: है? ये 3 साल की है।
7: और वो बेटा?
8: वो 2 साल का हो जाएगा अगस्त में।
7: 3 साल की बेटी है, 2 साल का बेटा है, बेटा का बर्थडे आने वाला
8: है अगस्त में,
7: 17 अगस्त को। तो बोले आप इसी से आपकी रोजी रोटी चलती है, पहले तो इतनी हिम्मत लाना कि आप 2-4 दिन के लिए ब्रेक लगा के अपने काम के लिए इसको लेकर निकल चलो, ये हिम्मत कहाँ से आई?
8: ये सब भोलेनाथ की कृपा है। बोल बम।
0: भोले भंडारी के लिए जो भक्ति भावना है उसे इन जख्मी पैरों से समझिए। पांव में छाले पड़ गए तो प्लास्टिक की बोतल को चप्पल की तरह पहन लिया और इसी तरह मीलों का सफर तय करके गंगा जल ले आए, लेकिन इसमें जो आनंद है उसकी मिसाल नहीं। 11 साल के राहुल को ही देख लीजिए।
7: मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो अपने साथ जल लेकर निकला है, हरिद्वार से चल के अब नोएडा तक पहुंच गया है और अब इसकी दूरी बहुत कम बची हुई है। क्या नाम बेटा आपका?
9: राहुल।
7: राहुल, राहुल कितने साल के हो आप?
9: 11।
7: 11। और जल कितना आपके पास?
9: 6 लीटर।
7: 6 लीटर जल है। पहली बार आए या पहले भी आए हो?
9: पहले भी आई है।
7: पहले भी आए हो। कितनी एज से आ रहे हो?
9: 3 साल।
7: 3 साल से आ रहे हो। पहली बार जल कितना लेकर आए थे?
9: गाड़ी में आए थे।
7: पहली बार गाड़ी में आए थे। दूसरी बार?
9: दूसरी बार
7: पिछले भी गाड़ी में आए थे। तुमने जल पहली बार उठाया है?
10: हाँ।
7: तो तुम्हें रास्ते में कैसा लगा जब तुमने पहली बार कंधे पे रखा, कुछ दूर चले अच्छा तो क्या लगा?
9: अच्छा लगा।
7: अच्छा लगा? थके तो नहीं वहां से यहाँ?
9: का
7: कोई चोट तो नहीं कहीं पे? कंधे दर्द तो नहीं हो रही?
0: ऐसे शिव भक्त लाखों की तादाद में हैं जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं और मंगलवार को अपने अपने शहर कस्बे या फिर गांव के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। नोएडा से मनीष चौरसिया, दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: देखिये, झारखंड के देवघर में भी कांवड़ यात्रा पूरी श्रद्धा और जोश के साथ लगातार जारी है। शिवरात्रि पर जहां पर लाखों की तादाद में शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे, चलिए आपको मिलवाते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली कृष्णा बम से। 74 साल की कृष्णा बम पिछले करीब 42 वर्षों से कांवड़ यात्रा कर रही है और इस साल भी कांवड़ लेकर देवघर के लिए निकल चुकी है।
12: मुजफ्फरपुर की 74 वर्षीय कृष्णा बम, माता बम हमारे साथ है, जो कई एक बरसों से डाक बम प्रतीक सुमारी को मुजफ्फरपुर से जाती है और बाबा बैद्यनाथ धाम में चराती हैं।
5: ये भोलेनाथ की कृपा है कि 42 वर्षों तक लगातार सुल्तानगंज से बाबा धाम बिना रुके अनवरत चल के 16 घंटे में जल चढ़ाती आ रही थी। पिछले साल मेरा दोनों घुटना टूट गया था, मैं नहीं जा सकी इस बार, लेकिन महाकाल गई, महाकाल 4 दिनों में जल चढ़ाई। फिर इस बार मैं 2 तारीख को जल उठाई हूँ, 5 को महाकाल चढ़ा के रात में घर लौटी हूँ। फिर बाबा के यहाँ जाने की तैयारी है। अब डाक जल तो नहीं चलेगा, लेकिन समर्पित शरीर है, भोलेनाथ मुझे जैसे ले जाए।
12: 42 वर्षों का साथ है बैद्यनाथ धाम बाबा का और आपका, प्रत्येक सोमवारी को जाती थी और आज अब तैयार हैं, जा रही हैं, कितनी खुशी हो रही है इस बार?
5: खुशी हो रही है कि पहले तो मैं जाने लायक 10 दिन पहले नहीं थी, लेकिन अचानक मेरा दिमाग चेंज किया है, टिकट 8 दिन पहले ली हूँ। और खुशी हो रही है कि महाकाल में चढ़ा ली जल, दर्द कम हो गया, तो बाबा फिर कहीं बुला ले हमें।
11: सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन में आस्था परंपरा और राजसी वैभव का अद्भुत संगम नजर आया। शाम करीब 4 बजे बाबा महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मन महेश स्वरूप ने भक्तों को दर्शन दिए। बाबा की एक झलक पाने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रिपोर्ट देखिए।

0: और महाकाल महाराज की।
1: देखिए श्रद्धालुओं के लिए सावन की शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और जलाभिषेक से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने जिस दिन विषपान किया था वो दिन सावन शिवरात्रि का ही था। विष से उनके शरीर में जब जलन शुरू हो गई तो देवताओं ने जलाभिषेक किया और तभी से शिवलिंग के अभिषेक की परंपरा चल पड़ी। जानकारों के मुताबिक इस साल शिवरात्रि पर ग्रहों का भी शुभ संयोग बन रहा है। रिपोर्ट देखिए।

इस बार सावन की शिवरात्रि पर मंगलवार का संयोग बना है। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है और मान्यता है कि शंकर ही केसरी नंदन है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। इस बार सावन में कई पावन संयोग बन रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को प्रदोष का महासंयोग बना। सोमवार और प्रदोष के अवसान का मिलन महाशिवरात्रि के साथ होने जा रहा है,

0: भोले की विशेष कृपा बरसने वाली है। इस बार सावन की शिवरात्रि मनोकामनाओं के पूर्ण होने का खास अवसर लेकर आ रही है। इस बार शिवरात्रि पर कई शुभ और दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जो भोले के भक्तों के लिए वरदान साबित होंगे। इस बार शिवरात्रि के मौके पर चंद्रमा पुनर्वसु के पश्चात पुष्य नक्षत्र से कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे गौरी योग का सहयोग बनेगा। साथ ही इस बार शिवरात्रि के दिन चंद्रमा की युति सूर्य, बुध और गुरु के साथ होने से चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। गुरु और चंद्रमा साथ होने से गज केसरी योग भी बन रहा है। इस बार सावन शिवरात्रि पर शिव कृपा का लाभ सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा, लेकिन विशेष लाभ मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को मिलने वाला है। इस बार शिवरात्रि के दिन जो शिव भक्त अपने आराध्य की चारों पहर पूजा और अभिषेक करेंगे, उनके लिए चौतरफा लाभ का योग बन रहा है।
1: श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना बड़ी ही विशिष्ट फल देती है, चाहे वो मंत्र का जप हो, रुद्राभिषेक हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप हो, किसी भी तरीके से हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन हम पवित्र सरोवर का जल ला करके किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर में शिवलिंग पर अगर जलाभिषेक करते हैं तो उसका भी अलग पुण्य प्राप्त होता है। यदि इस दिन व्रत रह करके रात्र में, मध्य रात्र में, महानिशा काल में या चारों प्रहर में, रात के चारों प्रहर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए और विभिन्न वस्तुओं से, चाहे दूध से, साध से, पंचामृत से, गंगा जल से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के सुखों का वरदान देते हैं।
0: साफ है कि इस बार सावन की शिवरात्रि भोले भंडारी के भक्तों के लिए कई अलौकिक अवसर लिए हुए है। यही वजह है कि इस बार भोले के भक्त विशेष तौर पर कावड़ियों का उत्साह और उमंग अलग ही दिख रहा है। दरअसल शिव सृष्टि का आधार है, शिव सत्य है, आशुतोष है, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, आनंद हैं, शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु है और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी, शिव ज्ञान स्वरूप हैं, स्वर और संगीत के प्रणेता हैं, इनके डमरू से उत्पन्न नाद ही ब्रह्म है, अनादि हैं इसलिए अप्रमेय हैं। इसलिए शिव के दिव्य अलौकिक स्वरूप की अनुभूति उनकी चेतना का साक्षात तर्क यानी लॉजिक से संभव नहीं है। उसी अचिंत्य अप्रेम में अनादि शिव को सावन अत्यंत प्रिय है। सावन का शिवरात्रि महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत अवसर है। सावन की शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी बताया गया है।
1: ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, पवित्र मंदिरों में, प्रतिष्ठित मंदिरों में जाकर अभिषेक करते हैं या घर पर या नदी के किनारे कहीं भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की उपासना करते हैं तो अद्भुत परिणाम जीवन में प्राप्त होता है और व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सरलता पूर्वक कर लेता है।
0: सनातन धर्म में सावन का महीना अत्यंत पावन माना जाता है। वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का तत्व कण कण में ऐसे घुल जाता है कि मन की वीणा के तार से सिर्फ भक्ति के सुर निकलने लगते हैं। चूँकि सावन का महीना शुरू होते ही पावस ऋतु अपनी पूर्ण रवानी में होती है, इसलिए प्रकृति भी मनमोहक हरियाली से खिल उठती है। हरियाली से ढकी धरती पर भगवान भोले के भक्त भगवा पोशाक में कांधे पर कावड़ लेकर जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है भगवान भास्कर की रश्मियां किसी घने मनोरम उपवन का श्रृंगार कर रही हो। हिंदुस्तान में ये परंपरा अत्यंत प्राचीन है, सदियों से चली आ रही है। सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान भोले के अभिषेक का इतना ज्यादा महात्म्य के पीछे देवासुर संग्राम की पौराणिक कथा को आधार माना जाता है। समुद्र मंथन के बाद

0: अलकूट यानी हलाहल और अमृत दोनों का प्राकट्य हुआ। अमृत पाने की होड़ में देवताओं और असुरों के बीच संग्राम छिड़ गया, लेकिन विषपान के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सृष्टि के व्यापक कल्याण के लिए भगवान शिव ने हलाहल पीने की जिम्मेदारी उठाई। हलाहल पीने के बाद उसके प्रभाव से भगवान भोले का गला नीला पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का अभिषेक किया। देवताओं के अभिषेक से भगवान भोले को काफी लाभ हुआ और महादेव देवताओं पर अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से ये दिन सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था। तब से इसी तिथि को सावन की शिवरात्रि के तौर पर मनाने की परंपरा चल पड़ी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावन की शिवरात्रि को अभिषेक करने से भगवान भोले अभी भी उतने ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं।
1: शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से जो हलाहल पर निकला था उसको उसका पान कर लिए थे। इस कारण से उनका शरीर तप रहा था। भगवान शिव उस हलाहल विष को कंठ में धारण कर लिए थे, इस कारण से उनका मस्तक गर्म हो गया था। उनको शांति प्रदान करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको आराम प्रदान करने के लिए देवी देवता और मनुष्य सभी जलाभिषेक करते हैं। जिस कारण से भगवान शिव का जो शरीर की गर्मी है वह शांत होती है। तो समुद्र मंथन के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है।
0: दरअसल ये दुनिया विश्वास की दूरी पर टिकी हुई है। विश्वास अगर अचल है तो उससे अद्भुत शक्ति मिलती है और यही शक्ति असंभव से असंभव कार्य की प्रेरणा बन जाती है। भोले के भक्तों का विश्वास है कि सावन की शिवरात्रि को जल अभिषेक करने से लोक परलोक दोनों सुधरता है। दरअसल सनातन के संगतों में शिवरात्रि की अद्भुत महिमा बताई गई है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन निशित काल यानी मध्यरात्रि की वेला में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ धरती पर विचरण करते हैं। यही वजह है कि शिवरात्रि की मध्यरात्रि को जल अभिषेक करने वालों को गौरी शंकर का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सावन की शिवरात्रि को भोले भंडारी की पूजा करने से कुंडली में मौजूद तमाम ग्रह दोष जैसे काल सर्प दोष, पितृ दोष और शनि दोष के अशुभ प्रभावों से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि की तिथि को किए गए दान पुण्य का भी शीघ्र लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: जरा सोचिए, समुंदर के किनारे खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखें और वहां आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई नजर आए तो नजारा कैसा होगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहां आसमान ने जैसे रंगों की चादर ओढ़ ली हो। मौका था गाले फेसा ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का, जहां श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से आए काइट फ्लायर्स ने अपने हुनर का जलवा दिखाया।
3: आसमान में लहराती पतंगों को तो आपने खूब देखा होगा और इंद्रधनुष की खूबसूरत छटा को भी, पर क्या हो जब पतंगों की दुनिया में इंद्रधनुषी रंग भी शामिल हो जाएं? ये कुछ ऐसा ही नजारा है जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है। तस्वीरें हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की। मौका था कोलंबो के गाले फेस ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का। इसमें विशाल काय पतंगों के साथ ही अलग अलग आकृतियों और रंगों वाली छोटी बड़ी पतंगे भी देखने को मिली। यहाँ हर किसी में उत्साह, उमंग और आसमान को छू लेने का जुनून नजर आ रहा था। श्रीलंका में आयोजित ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आए काइट फ्लायर्स ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार करीब 30 देशों के 80 अंतर्राष्ट्रीय काइट फ्लायर्स और 1500 से ज्यादा स्थानीय प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।
4: This is a beautiful kite festival. I've never seen anything like it. It's such a family friendly festival. And right on the beach here, and the wind is beautiful, the people are beautiful, the weather's all beautiful.
3: Din hi nahi, is event ne raaton ko bhi roshan rakha. Raat mein aasman mein patangon ka shandaar nazara dikha. Andhere aasman mein roshni se jagmagati patangon ne Colombo ke skyline ko ek alag hi andaaz de diya. Samandar ki lehrein, khula aasman और उसमें उड़ती सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे। कोलंबो का ये नजारा सिर्फ एक फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है बल्कि श्रीलंका की संस्कृति, रचनात्मकता और पर्यटन को दुनिया के सामने पेश करने की एक कोशिश भी है। कोलंबो का ये काइट फेस्टिवल श्रीलंका के पर्यटन अभियान को एक नया रंग देता दिखा। यहाँ पतंगों की डोर ने सिर्फ आसमान को नहीं छुआ बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को भी एक साथ जोड़ा। यानी कोलंबो में पतंगों के बहाने आसमान भी सजा और श्रीलंका ने दुनिया को अपनी खूबसूरती और संस्कृति की एक रंगीन झलक भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली। 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी। दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन। प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी। मॉनसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार। घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान। ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स। 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन। समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा। शेरों के संरक्षण का संदेश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर फ्रेम को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसमें रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। इस वीडियो को इसी एंगल से लगातार वायरल किया जा रहा है। क्या है सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। क्या है इसकी सच्चाई आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: रांची में राज्य मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक चली मैराथन वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही। जेबीएससी और जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि रांची में आंदोलनकारी छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत के प्रशासन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसके बाद अधिकारियों को जमीन पर बैठकर छात्रों से बातचीत करनी पड़ी। क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
6: झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन से जोड़कर सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में जमीन पर बैठे छात्र अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए उन्हें भी अपने साथ जमीन पर बैठने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो रांची का है जहां जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में विसंगतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने बंद कमरे में वार्ता से इनकार कर दिया जिसके बाद एसडीओ और एडीएम को भी प्रदर्शनकारियों के बीच जमीन पर बैठकर खुली बातचीत करनी पड़ी। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो रांची का है, जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तस्वीरें देखी, जिसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की लिखित मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 7 अगस्त से लेकर अब तक 6 राउंड से अधिक की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जानना जरूरी हो गया था। सर्च के दौरान यह जानकारी सामने आई कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में मंत्रियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और छात्र संगठनों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वीडियो में जो दृश्य नजर आ रहे हैं वो किसी गेस्ट हाउस जैसे नहीं लग रहे हैं, ये किसी कॉलेज की बिल्डिंग जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि एसडीओ और एडीएम को जमीन पर बैठकर बातचीत के लिए मजबूर किया जाता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर किया जाने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम पेज पर यह वीडियो मिला। इसके कैप्शन में इसे धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का बताया गया था। वीडियो में यह भी जानकारी दी गई थी कि बीबीएमकेयू में परीक्षा के नतीजों में देरी, लाइब्रेरी और बेंच की कमी तथा पानी और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने 11 सूत्रीय मांग पत्र रखा। इस दौरान बातचीत शुरू करने से पहले उन्होंने अधिकारियों से उनके साथ जमीन पर बैठने के लिए कहा। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में है प्रदर्शन 27 जुलाई 2026 को हुआ था। सर्च के दौरान हमें झारखंड के कई स्थानीय मीडिया चैनलों पर भी इस वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जुलाई को विश्वविद्यालय में एलएलएम की पढ़ाई शुरू करने, सेंट्रल लाइब्रेरी और लैब बनाने जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे एआईएसए के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी थी। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो झारखंड के रांची का नहीं बल्कि धनबाद का है, जहां विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 27 जुलाई को वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तालाबंदी की थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और वीडियो में लाठी डंडे और कुंडाल से कुछ लोग एक ढांचे को गिरा रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि यह बांग्लादेश का वीडियो है, जहां पर हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
6: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन ढांचे को गिरा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं हैं, लगातार ढांचे को गिराने में लगे रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां कट्टरपंथियों का एक गुट जबरन एक हिंदू परिवार की जमीन पर कब्जा कर रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को भी बख्शा नहीं गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन ढांचे को गिरा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं है, लगातार ढांचे को गिराने में लगे रहते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह भी कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का वीडियो है जहां कट्टरपंथियों का गुट जबरन हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया लगा। ऐसे में अगर वीडियो बांग्लादेश का बताकर वायरल किया जा रहा है तो इसमें असमिया क्यों सुनाई दे रही है। इसके अलावा हमने फिर से वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें ऐसा लगा कि ये दो गुटों के आपसी विवाद का मामला हो सकता है, क्योंकि हमें सर्च के दौरान इसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो बांग्लादेश के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
6: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें असम के एक फेसबुक पेज पर 29 जुलाई की एक पोस्ट मिली। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक असम के गोसाई गांव सब डिवीजन के उच्चतारी गांव में नूरुल खान और गनी शेख की अगुवाई वाले दो गुटों के बीच जमीन के पुराने विवाद को लेकर झड़प हुई थी। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें असम के कई स्थानीय न्यूज आउटलेट्स पर इस झड़प के बारे में वीडियो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार गनी शेख के ग्रुप ने नूरुल खान के उस घर को गिराने की कोशिश की जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बन रहा था। नूरुल खान के परिवार ने आरोप लगाया कि गनी शेख और उसके साथियों ने उनके निर्माणाधीन घर पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। परिवार ने शेख और उसके साथियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद पुलिस ने शेख और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने गोसाई गांव पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी नारायण बोरो से संपर्क किया। बातचीत के दौरान उन्होंने पुष्टि की कि हमलावर और पीड़ित दोनों में से कोई हिंदू नहीं था। FIR में 5 लोगों के नाम शामिल थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो का कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, ये वीडियो असम के गोसाई गांव का है जहां जमीन के विवाद को लेकर दो मुस्लिम गुटों के बीच झड़प हो गई थी। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपके लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
8: ये बेडरूम है।
9: एक छोटी बच्ची ने अपनी क्रिएटिविटी से एक साधारण सी नोटबुक को इतना खूबसूरत डॉल हाउस बना दिया कि उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। नोटबुक का हर पन्ना खुलते ही एक नए कमरे में बदल जाता है।
8: फिर ये बेडरूम में जाएगी।
9: वीडियो में देखा जा सकता है कि शुरुआत में नोटबुक का एक पेज गुड़िया के बेडरूम की तरह बनाया गया है। कमरे में एक छोटा सा बेड है जिसमें पेपर डॉल को अंदर रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, कागज से बने कवर को हटाकर गुड़िया को बाहर भी निकाला जा सकता है, यानी ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए भी बनाया गया है। इसके अगले पन्ने पर एक छोटी सी वार्डरोब बनाई गई है। इसमें गुड़िया के लिए अलग अलग कपड़े रखे गए हैं जिन्हें बाहर निकालकर उसे पहनाया जा सकता है। बच्चे ने कपड़ों से लेकर अलमारी के दरवाजों तक हर चीज को काफी ध्यान से तैयार किया है। अलमारी के दरवाजे भी खुलते हैं और अंदर रखे छोटे छोटे कपड़े दिखाई देते हैं। इसके बाद नोटबुक में एक बाथरूम आता है। यहाँ छोटी सी शावर, सिंक और टॉयलेट तक बनाया गया है। पेपर डॉल को बाथरूम के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर खेला जा सकता है। इस वजह से पूरा सेट किसी छोटी सी प्लेसेट जैसा लगता है।
8: फिर ये किचन में जाएगी और फ्रिज से मैंगो निकालेगी।
9: नोटबुक आगे खुलती है तो एक प्यारा सा किचन दिखाई देता है। यहाँ गुड़िया के लिए छोटी डाइनिंग टेबल बनाई गई है जहाँ वो बैठ सकती है। साथ ही एक छोटा फ्रिज भी है जिसे खोला जा सकता है। हर कमरे में फर्नीचर और छोटी छोटी चीजों को अलग अलग रंगों से सजाया गया है जिससे पूरा डॉल हाउस काफी जीवंत नजर आता है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी चीज को बच्चे ने कागज, रंगों और अपनी कल्पना के सहारे तैयार किया है। इसमें ना कोई महंगा खिलौना है और ना ही किसी बड़े सेट की जरूरत पड़ी। बस एक नोटबुक और ढेर सारी क्रिएटिविटी से उसने अपने लिए पूरी छोटी सी दुनिया बना ली।

0: ब्राजील का ये प्यारा वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक 5 साल की बच्ची अपने क्लासमेट को लंच के समय खाना खिलाती नजर आ रही है। बच्चा बिना हाथों के पैदा हुआ है, इसलिए उसे खाना खाने में मदद की जरूरत पड़ती है। सबसे खास बात यह कि बच्ची ने उसकी मदद के लिए किसी के कहने का इंतजार नहीं किया, उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने दोस्त को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बच्ची के छोटे से काम में इतनी मासूमियत और अपनापन नजर आया कि वीडियो देखने वाले लोग भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए।
1: आप किसको करते हो ज्यादा प्यार?
2: देखो मामा को तो दोनों ही पसंद है।
1: दोनों ही पसंद हो? नहीं, एक एक की बात करो।
2: पर मम्मा आपको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
0: प्यारी सी बच्ची और उसकी माँ के बीच ये मजेदार बातचीत लोगों का दिल जीत रहा है। दरअसल जब माँ अपनी बेटी से पूछती है कि उसे पापा पसंद है या माँ, उसके बाद बच्ची ने जो जवाब दिया उसे सुनकर यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
1: आप किसको करते हो ज्यादा प्यार?
2: देखो मामा को तो दोनों ही पसंद है।
1: दोनों ही पसंद हो? नहीं, एक एक की बात करो।
2: पर मम्मा आपको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर पापा का जो प्यार है ना अलग ही है। मेरे को तो पापा को सोच के ही मेरे दिल में पता नहीं क्या ही जा रहा है।
1: क्या ही जा रहा है?
2: मतलब पापा ना मेरे फेवरेट है।
1: और मम्मा?
2: मम्मा थोड़ी कम है।
1: क्या?
3: टू माइनस टू कितना होता है, यही तो पूछा था तुमसे और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है टू माइनस टू?
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग बच्चे के इस मासूम लॉजिक की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माँ अपनी छोटी बेटी को गणित पढ़ा रही है।
3: टू माइनस टू कितना होता है, यही तो पूछा था तुमसे और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है टू माइनस टू?
0: अपनी रोती हुई बेटी से पूछती है टू माइनस टू कितना होता है। बच्ची रोते हुए गलत जवाब देती है और कहती है 5।
3: क्या बच्चा?
0: ये सुनकर बच्ची को समझाने के लिए माँ एक आसान उदाहरण देती है। वो कहती है मानो मैंने तुम्हें लंच में 2 रोटी दी और तुमने वो दोनों खा ली, तो अब तुम्हारे पास क्या बचा? बच्ची रोते रोते पूरी मासूमियत से जवाब देती है सब्जी। बच्ची का मासूमियत भरा जवाब लोगों को खूब हंसा रहा है।
3: अभी तुम्हें लंच में मानो तुम्हें 2 रोटी दी मैंने, तुम्हें लंच में मैंने 2 रोटी दी और तुमने दोनों खा ली, तो क्या बचा?
2: सब्जी।
0: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है। इसमें एक पिता की बेटी के लिए की गई खास कोशिश नजर आती है। महंगे इंतजामों से दूर ये सरप्राइज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले लोग पिता के प्यार और सोच की तारीफ करते नहीं थक रहे। दरअसल पिता ट्रक चलाते हैं और काम की वजह से उनका काफी समय सड़क पर ही गुजरता है। ऐसे में बेटी के जन्मदिन पर किसी बड़े होटल या पार्टी हॉल में सेलिब्रेशन करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन बेटी की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा तरीका निकाला जिसने लोगों का दिल जीत लिया। पिता ने जिस ट्रक से वो अपना काम करते हैं उसी के अंदर बेटी के लिए छोटा सा बर्थडे सेटअप तैयार कर दिया। ट्रक को रंग बिरंगे गुब्बारों और लाइट से सजाया गया। इसके अलावा बेटी के लिए गिफ्ट भी रखे गए थे। वीडियो में ट्रक के अंदर का नजारा किसी छोटी सी बर्थडे पार्टी से कम नहीं लग रहा। जब बच्ची वहां पहुंचती है और अपने लिए इतनी खूबसूरत सजावट देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिता का ये सरप्राइज उसके लिए कितना खास है। एक टीचर ने अपनी क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को समझाने का ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर बच्चों को सिर्फ बोर्ड पर डायग्राम बनाकर या किताब की लाइनें पढ़कर समझाने के बजाय पूरा प्रयोग करके दिखाती हैं। इसके लिए क्लास की लाइट बंद कर दी जाती है और कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके बाद वो एक शीशे और लेजर बीम की मदद से बच्चों को समझाना शुरू करती हैं कि आखिर लाइट किसी सतह से टकराने के बाद किस तरह वापस लौटती है। लेजर की रोशनी जब शीशे पर पड़ती है तो वो दूसरी दिशा में वापस जाती हुई दिखाई देती है। इस पूरी प्रक्रिया को बच्चों के लिए और ज्यादा साफ तरीके से दिखाने के लिए हवा में पाउडर का इस्तेमाल भी किया गया। इससे लेजर बीम का रास्ता साफ नजर आने लगा। ऐसे में बच्चों को सिर्फ ये बताया नहीं गया कि प्रकाश कैसे रिफ्लेक्ट होता है, बल्कि उन्होंने अपनी आँखों से पूरी प्रक्रिया को होते हुए भी देखा। यही इस वीडियो की सबसे खास बात है। कई बार किताब में पढ़ी हुई कोई चीज कुछ देर बाद याद नहीं रहती, लेकिन जब उसे किसी प्रयोग के जरिए समझाया जाता है तो उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। इस टीचर ने भी कुछ ऐसा ही किया।

0: ट्रेन में सफर के दौरान अक्सर ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं जो बाद में यादगार बन जाती हैं। कुछ ऐसा एक स्केच आर्टिस्ट और टीटी के साथ हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर भावुक भी हो रहे हैं। दरअसल स्केच आर्टिस्ट आकाश सेल्वारासु ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर कर रहे थे। उनके पास जनरल क्लास का टिकट था और वो बाथरूम की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास बैठे हुए थे। इसी दौरान वहां टिकट चेक करने के लिए टीटी पहुंच गए। उन्होंने आकाश से टिकट मांगा। आकाश ने अपना जनरल टिकट दिखा दिया। स्लीपर कोच में जनरल टिकट पर सफर करने की वजह से टीटी ने रेलवे के नियमों के मुताबिक उनका जुर्माना काट दिया। इसके बाद टीटी ने अपने टैबलेट पर रेलवे का क्यूआर कोड दिखाकर उनसे जुर्माने की रकम ले ली और आगे बढ़ गए। देखने में ये बिल्कुल सामान्य टिकट चेकिंग की घटना थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टीटी के वहां से जाने के बाद आकाश के दिमाग में उनका चेहरा रह गया। उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल करने का फैसला किया और कुछ ही देर में टीटी का स्केच बनाना शुरू कर दिया। आकाश ने इतनी बारीकी से उनका चेहरा कागज पर उतारा कि तस्वीर देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कुछ देर बाद आकाश ने वो स्केच टीटी को जाकर दे दिया। पेंटिंग हाथ में आते ही टीटी ने हैरानी से पूछा कि मेरी पेंटिंग है? आकाश ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद टीटी ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। उन्होंने आकाश से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी की कि अगर संभव हो तो पेंटिंग को थोड़ा और बेहतर कर दें। आकाश ने उनकी बात मान ली और उन्होंने टीटी के स्केच को और निखारा और आखिर में उन्हें उनकी तस्वीर दोबारा सौंप दी। सबसे भावुक पल तब आया जब दोनों ने साथ में तस्वीर खिंचवाई। इस दौरान टीटी की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। शायद उनके लिए ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी बल्कि उस सफर की ऐसी याद थी जिसे वो लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे।
1: हम किधर जा रहे हैं?
2: किधर जा रहे हैं?
1: आप रेडी हो?
2: हाँ रेडी।
0: हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों की आदत होती है कि वे कभी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमेशा परिवार की जरूरतें ही सबसे पहले आती है। ईशा की नानी ने अपनी पूरी जिंदगी गांव और घर के कामकाज में बिता दी थी। उन्होंने न तो कभी हवाई जहाज देखा था और न ही कभी अपने घर से दूर किसी ट्रिप पर गई थी। पुरानी पीढ़ी के लोगों की आदत होती है कि वे कभी खुद के ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमेशा परिवार की जरूरतें ही सबसे पहले आती हैं।
2: तेरे को नींद हो जाए रे, हाँ? ये बेटी, तेरे को नींद बहुत आ रही है।
0: जब ईशा का परिवार इस काबिल बना कि वे घूमने फिरने का आनंद ले सके, तो ईशा ने तय किया कि इस बार पहला हक उनकी नानी का है। ईशा उन्हें पहली बार फ्लाइट से गोवा ले गई। एयरपोर्ट लाउंज के अनुभव से लेकर विमान की खिड़की से बाहर झांकने तक नानी के चेहरे का हावभाव देखने लायक था।
2: विमान से आए रहे, ट्रेन से नहीं आए रहे। आया मजा आया बाबा, अभी हम जा रहे हैं गोवा में मजा करने को।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: बात करते हैं गणपति महोत्सव की, जो भले ही इस साल 14 सितंबर से आरंभ हो रहा है, लेकिन तैयारियों की तस्वीरें अभी से ही नजर आने लगी हैं, खासकर महाराष्ट्र से। भले गणपति उत्सव आज महाराष्ट्र से निकलकर देश भर में अपनी छटा बिखेर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की धरती से शुरू हुआ गणेशोत्सव अंग्रेजों के जमाने से चले आ रही पुरानी गणेश मंडलों की रौनक को लेकर काफी मशहूर रहा है। इन्हीं में से एक है पुणे का श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल, जहां इस बार के गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
7: विघ्नहर्ता सिद्धिदाता भगवान गणपति की भक्ति भले ही सब जगह एक जैसी ही हो, लेकिन महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की रौनक के तो कहने ही क्या। 10 दिन के उल्लास और उत्साह को दर्शाने वाला महाराष्ट्र इस पर्व के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता के संदेश को बरसों से देता चला आ रहा है। यही वजह है कि दशकों से महाराष्ट्र की धरती पर हर तबके से जुड़े लोग इस 10 दिन की अवधि को बप्पा के आने की खुशी के रूप में मनाते आ रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में गणपति मंडल बने हैं, जो हर साल गणपति महोत्सव की तैयारियां करते हैं। ऐसा ही एक गणपति मंडल है पुणे का श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल। जिसने 14 सितंबर से आरंभ हो रहे गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस गणपति मंडल ने क्रांति दिवस पर इस साल के गणेशोत्सव के लिए थीम रखी।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली। 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी। दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन। प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी। मानसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार। घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान। ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा। शेरों के संरक्षण का संदेश।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सावन शिवरात्रि की। सावन से दूसरे सोमवार को जहां पर शिवालयों में भक्ति की धारा बह रही है, वहीं पर मंगलवार को शिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। देखिए, शिव भक्तों के लिए सावन शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व माना जाता है और इस साल ग्रहों का जो योग है वो कुछ ऐसा है कि शिवरात्रि और भी ज्यादा मंगलमयी होने जा रही है। क्या है संयोग, आपको विस्तार से हम आगे बताएंगे। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए लाखों की तादाद में कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से अब निकल चुके हैं और इनमें बड़ी तादाद में दिल्ली एनसीआर के कांवड़िए भी शुमार हैं। आज आपकी मुलाकात एक साल की आराध्या से करवाने जा रहे हैं, जो माता पिता के साथ गंगोत्री से गंगा जल लेकर आई हैं। इनके अलावा आपको बता दें, उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी भी अद्भुत तस्वीरें उसकी आपको दिखाने जा रहे हैं आज। तो आइए शुरुआत करते हैं शिवरात्रि पर जलाभिषेक की तैयारियों के साथ। देखिए, सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भक्त उमड़े और मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर और बड़ी तादाद में जलाभिषेक होगा, इसलिए कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की भारी भीड़ रही। अंदाजा है कि 3 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने इलाके के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के भी लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर आए हैं और इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको मिलवाते हैं एक साल की शिव भक्त आराध्या से।

0: शिव, शिव का सावन और सावन की शिवरात्रि। शिव भक्तों के लिए इस पावन दिन का क्या महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए तो हरिद्वार से निकलने वाली हर सड़क पर केसरिया सैलाब है। हर हर महादेव के जय घोष से जमीन आसमान गुंजायमान है।
1: हाईवे पर लगातार बड़ी संख्या में कांवड़िए बाइक पर सवार शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे जल लेकर यहाँ से जाने के लिए। और जितनी बड़ी संख्या में ये लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य को रवाना भी हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद कांवड़ियों की संख्या कम होती दिखाई नहीं दे रही। सड़क पर जगह जगह बाइकें खड़ी हुई है, उनका किसका पता नहीं है कौन किसकी बाइक है। ये कांवड़िए बाइक खड़ी करके यहाँ से चले गए और ये बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए भी अब जल लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और हाईवे पर सीटियों की आवाज, कांवड़ियों की आवाज, बम बम भोले की आवाज या भोले शंकर की आवाज जयघोष यही सुनाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इस तरह से कांवड़िए यहाँ पर जा रहे हैं। ये इस तरह का माहौल ही है, अलग ही तरीके का है। पुलिस प्रशासन जैसे ना के बराबर काम कर रहा है, खुद कांवड़िए सीटियां बजा बजा के अपना रास्ता खुद बना रहे हैं और यहाँ से जल लेकर रवाना हो रहे हैं और बड़ी कुशलता के साथ पूरी तरह से मेला सम्पन्न हो रहा है।
0: शिवरात्रि पर भोले का जलाभिषेक करने की मनोकामना लिए जो हरिद्वार से चले अब दिल्ली NCR पहुंच चुके हैं। इन कांवड़ियों में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। यहां तक कि एक साल की आराध्या को शिवरात्रि पर जलाभिषेक करना है।
2: एक साल की आराध्या है। सबसे पहले तो मैं इस कैरियर से शुरू करूंगी कि बेबी कैरियर में किस तरीके से जो है उसको सजाया गया, क्योंकि ये आराध्या की जो है प्रथम कांवड़ यात्रा है। इन्होंने ये पोस्टर भी जो है इसलिए लगाया है, आराध्या की तस्वीर जो है इसमें लगाई गई है। और आराध्या की ये पहली कांवड़ यात्रा है गंगोत्री धाम से लेकर हैदरपुर। हैदरपुर के ये लोग निवासी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप दिख जाएगा बम बम भोले के जयकारों के साथ इन्होंने ये नई शुरुआत करी है। इस बच्ची की एक साल की उम्र है लेकिन भक्ति का ये भी रूप है जो देखने को मिलता है। हर साल ही अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आती है, लेकिन सबसे छोटा रूप मैं आपको भोले का दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से एक साल के बच्चे ने गंगोत्री धाम से ये यात्रा जो है शुरू करी और वो यहाँ पर दिल्ली आ पहुंची है। आराध्या के माँ बाप हमारे साथ है, इस वक्त मौजूद है। आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए।
3: प्रीति।
2: प्रीति, प्रीति। और आपका?
4: करण।
2: करण। करण, प्रीति सवाल ही पहले ये है, गर्मी बहुत है, हालांकि हर सावन में बारिश जरूर होती है लेकिन गर्मी भी होती है। माँ बाप तो जो है कर लेते हैं कि कवर करना है हमें जो है पैदल यात्रा करनी, लेकिन एक साल के बच्चे के साथ ये वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है।
3: नहीं, इतना खास मुश्किल भी नहीं है।
2: क्यों मुश्किल नहीं लगा?
3: अगर सारा लेके सामान चलो तो कोई मुश्किल नहीं होती है।
2: अच्छा, सारा सामान लेके साथ चलो, लेकिन बच्चे तो परेशान हो जाते हैं ना, गर्मी हो बारिश हो।
3: हाँ ये तो है, ये हरिद्वार के बाद ही परेशान करते हैं, उससे पहले नहीं करते।
0: पिता ने महादेव से बेटी की मुराद मांगी थी जो पूरी हो गई। अब माता पिता नन्ही आराध्या को प्राइम पर लेकर गंगोत्री से चल पड़े। हरिद्वार होते हुए आराध्या ने लंबी यात्रा तय की।
2: आराध्या का जल देखिए, कितना छोटी सी बच्ची का छोटा सा जल, मतलब ये तो होगा
3: गंगोत्री का है। अच्छा, गंगोत्री ये महाकाली द्वार का है।
2: तो ये कितना है ML?
3: ये होगा
2: 500 ML लगभग होगा, ये बच्ची के साइज के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि 500 ML का जल जो है
3: गले में डाल गए।
0: करीब 500 ml गंगा जल जो आराध्या लेकर आई है मंगलवार को महादेव पर चढ़ाएंगी। इस एक साल की नन्ही शिव भक्त के साथ इस कांवड़ यात्रा में 53 साल की राजबाला भी हैं। कंधे पर 21 किलो वजन की कांवड़ लिए सिर्फ 5 दिनों में राजबाला ने ये यात्रा पूरी की है। और हाँ, बिल्कुल अकेले।
2: देखिए किस तरीके से अलग अलग पवित्र स्थानों से जल लेकर जो है जितने भी भोले के भक्त है वो दिल्ली में इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं। और मेरे साथ आंटी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले नाम बताइए और उम्र बताइए।
5: मैं राजा बिहार से आई हूँ, सेक्टर 18 रोहिणी से। मेरा नाम राजबाला है। मैं हर की पौड़ी से मैंने जल उठाया है, 21 लीटर मेरा जल है और मैंने 5 दिन में ही दिल्ली में संपर्क किया।
2: क्या उम्र है आपकी पहले?
5: मेरी 53 साल है।
2: 53 साल है और आप 5 लीटर जल जो है
5: 21 लीटर
2: जल 5 दिन में आप ये सफर तय करके आए।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये भोले की भक्ति की शक्ति है कि हर उम्र हर तबके के लोग तेजी से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी चंद दिनों में तय करते हुए शिवालय के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि शिवरात्रि पर जलाभिषेक करना है। जो पैदल जा सकते थे पैदल गए, पर जो मजबूर थे उन्होंने भी हार नहीं मानी। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाने वाले सुनील हर साल यूं ही अपनी ऑटो लेकर हरिद्वार जाते हैं।
4: सुनील जी इस वक्त हमारे साथ है, हालांकि पैरों में उस तरीके की शक्ति नहीं है जिस तरीके से वो चलकर जो है कावड़ लेकर दिल्ली आ सके, लेकिन उसके बावजूद इस हालत में भी जो है ये टेम्पो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का ही टेम्पो है, इसको चलाकर जो है वो दिल्ली में आज यहाँ आए हैं जल लेकर। सबसे पहले तो ये बताइए आपकी उम्र क्या है?
6: मेरी उम्र है 45 साल।
4: 45 साल की उम्र है सुनील जी, आपने जल कहाँ से लिया है, क्योंकि अलग अलग पवित्र स्थानों से लोग जल लेकर?
6: नहीं, मेरा मैं हरिद्वार से जल उठाता हूँ, पर हरिद्वार से ही लेके आया हूँ।
4: हर साल लेकर आते हैं आप?
6: जी हर साल लेके आता हूँ।
4: तो कितना लीटर जल लेकर आए हैं आप?
6: मैं जी 2 लीटर जल लेके आता हूँ और भोलेनाथ पे चढ़ाता हूँ।
4: भोलेनाथ पे आप चढ़ाते हैं, तो शिवरात्रि का इंतजार है जिस दिन जो है आप जल अर्पित जो है जलाभिषेक जो है वो करोगे।
6: हाँ जी।
4: अच्छा, अगर मैं यही पूछूं कि मन में इतनी आस्था आती कैसे, क्योंकि तकलीफ है, उस तकलीफ के बावजूद आपके साथ मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, बस नजर आ रहा है तो ये हरा रंग का टेम्पो जिसको आप चलाकर खुद यहाँ पर आए हैं।
6: ये तो बाबा की मर्जी है, बाबा बुलाते हैं चले जाते हैं और उनके नाम का ही जल चढ़ाते हैं जी।
4: कितने सालों से आप लोग आप आ रहे हो?
6: मेरी हो गई 20-22 साल।
4: 20-22 साल से, तो आप देख सकते हैं कि 20-22 साल से ये यूं ही जो है जल लेकर जो है दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद जो है शिवालय जाकर जो है जल अभिषेक कर।
0: दिल्ली की सरहद पर कांवड़ियों का जमघट लगा है, गंगोत्री यहाँ हरिद्वार से लौटे हैं। रात भर के इंतजार के बाद शिवरात्रि पर जल अभिषेक होगा और तपस्या पूरी होगी। अकेले या दोस्तों के साथ या फिर परिवार को अपनी ऑटो रिक्शा में लिए कांवड़िए भक्ति में मगन है।
7: ऑटो उनकी रोजी रोटी है, इसी के जरिए इनका परिवार चलता है, लेकिन सावन के महीने में इसी रोजी रोटी इसी ऑटो पर ये अपने परिवार को बैठा कर निकल पड़े हरिद्वार की तरफ, वहां से जल लिया और अब वापस जा रहे हैं और कल शिवरात्रि है तो कल आप जल चढ़ाएंगे। जतिन, आप कहाँ से चले थे आप?
8: हम चले थे बदरपुर से।
7: बदरपुर से?
8: हाँ।
7: कौन है आपके साथ?
8: मेरे साथ मेरी वाइफ है, ये मेरी छोटी लड़की है, ये मेरा लड़का है, इसका नाम लवीस भोले है, इसका नाम किरसा भोली है, मेरा नाम जतिन भोला है, इसका नाम नीतू भोला है।
7: तो ये बेटी कितनी बड़ी है?
8: ये 3 साल की है।
7: और वो बेटा?
8: वो 2 साल का हो जाएगा अगस्त में।
7: 3 साल की बेटी है, 2 साल का बेटा है, बेटा का बर्थडे आने वाला
8: है अगस्त में,
7: 17 अगस्त को। तो बोले आप इसी से आपकी रोजी रोटी चलती है, पहले तो इतनी हिम्मत लाना कि आप 2-4 दिन के लिए ब्रेक लगा के अपने काम के लिए इसको लेकर निकल चलो, ये हिम्मत कहाँ से आई?
8: ये सब भोलेनाथ की कृपा है। बोल बम।
0: भोले भंडारी के लिए जो भक्ति भावना है उसे इन जख्मी पैरों से समझिए। पांव में छाले पड़ गए तो प्लास्टिक की बोतल को चप्पल की तरह पहन लिया और इसी तरह मीलों का सफर तय करके गंगा जल ले आए, लेकिन इसमें जो आनंद है उसकी मिसाल नहीं। 11 साल के राहुल को ही देख लीजिए।
7: मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो अपने साथ जल लेकर निकला है, हरिद्वार से चल के अब नोएडा तक पहुंच गया है और अब इसकी दूरी बहुत कम बची हुई है। क्या नाम बेटा आपका?
9: राहुल।
7: राहुल, राहुल कितने साल के हो आप?
9: 11।
7: और जल कितना आपके पास?
9: 6 लीटर।
7: 6 लीटर जल है। पहली बार आए या पहले भी आए हो?
9: पहले भी आई है।
7: पहले भी आए हो? कितनी एज से आ रहे हो?
9: 3 साल।
7: 3 साल से आ रहे हो। पहली बार जल कितना लेकर आए थे?
9: गाड़ी में आए थे।
7: पहली बार गाड़ी में आए थे। दूसरी बार?
9: दूसरी बार
7: किसी भी गाड़ी में आए थे। तुमने जल पहली बार उठाया है?
10: हाँ।
7: तो तुम्हें रास्ते में कैसा लगा जब तुमने पहली बार कंधे पे रखा, कुछ दूर चले तो क्या लगा?
9: अच्छा लगा।
7: अच्छा लगा? थके तो नहीं वहां से यहाँ? कोई चोट तो नहीं कहीं पे? कंधे दर्द तो नहीं हो
0: रहे? ऐसे शिव भक्त लाखों की तादाद में हैं जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं और मंगलवार को अपने अपने शहर कस्बे या फिर गांव के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। नोएडा से मनीष चौरसिया, दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: देखिये, झारखंड के देवघर में भी कांवड़ यात्रा पूरी श्रद्धा और जोश के साथ लगातार जारी है। शिवरात्रि पर जहां पर लाखों की तादाद में शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे, चलिए आपको मिलवाते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली कृष्णा बम से। 74 साल की कृष्णा बम पिछले करीब 42 वर्षों से कांवड़ यात्रा कर रही है और इस साल भी कांवड़ लेकर देवघर के लिए निकल चुकी है।
10: मुजफ्फरपुर की 74 वर्षीय कृष्णा बम
11: पूरी श्रद्धा और जोश के साथ लगातार जारी है। शिवरात्रि पर जहां पर लाखों की तादाद में शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे। चलिए आपको मिलवाते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली कृष्णा बम से। 74 साल की कृष्णा बम पिछले करीब 42 वर्षों से कांवड़ यात्रा कर रही है और इस साल भी कांवड़ लेकर देवघर के लिए निकल चुकी है।
10: मुजफ्फरपुर की 74 वर्षीय कृष्णा बम माता बम हमारे साथ है।
12: किया है टिकट 8 दिन पहले ली हूँ और खुशी हो रही है कि महाकाल में चढ़ा ली जल, दर्द कम हो गया तो बाबा फिर कहीं बुला ले हमें।
11: सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन में आस्था परंपरा और राजसी वैभव का अद्भुत संगम नजर आया। शाम करीब 4 बजे बाबा महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मन महेश स्वरूप ने भक्तों को दर्शन दिए। बाबा की एक झलक पाने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रिपोर्ट देखिए।

श्रद्धालुओं के लिए सावन की शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। मान्यता है कि

इस दिन पूजा अर्चना और जलाभिषेक से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने जिस दिन विष पान किया था वो दिन सावन शिवरात्रि का ही था। विष से उनके शरीर में जब जलन शुरू हो गई तो देवताओं ने जलाभिषेक किया और तभी से शिवलिंग के अभिषेक की परंपरा चल पड़ी। जानकारों के मुताबिक इस साल शिवरात्रि पर ग्रहों का भी शुभ संयोग बन रहा है। रिपोर्ट देखिए।

0: इस बार सावन की शिवरात्रि पर मंगलवार का संयोग बना है। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है और मान्यता है कि शंकर ही केसरी नंदन है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। इस बार सावन में कई पावन संयोग बन रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को प्रदोष का महासंयोग बना। सोमवार और प्रदोष के अवसान का मिलन महाशिवरात्रि के साथ होने जा रहा है। साफ है कि सावन की शिवरात्रि के अति पावन मौके पर इस बार भगवान भोले की विशेष कृपा बरसने वाली है। इस बार सावन की शिवरात्रि मनोकामनाओं के पूर्ण होने का खास अवसर लेकर आ रही है। इस बार शिवरात्रि पर कई शुभ और दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जो भोले के भक्तों के लिए वरदान साबित होंगे। इस बार शिवरात्रि के मौके पर चंद्रमा पुनर्वसु के पश्चात पुष्य नक्षत्र से कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे गौरी योग का संयोग बनेगा। साथ ही इस बार शिवरात्रि के दिन चंद्रमा की युति सूर्य, बुध और गुरु के साथ होने से चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। गुरु और चंद्रमा साथ होने से गज केसरी योग भी बन रहा है। इस बार सावन शिवरात्रि पर शिव कृपा का लाभ सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा, लेकिन विशेष लाभ मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को मिलने वाला है। इस बार शिवरात्रि के दिन जो शिव भक्त अपने आराध्य की चारों पहर पूजा और अभिषेक करेंगे, उनके लिए चौतरफा लाभ का योग बन रहा है।
1: श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना बड़ी ही विशिष्ट फल देती है, चाहे वो मंत्र का जप हो, रुद्राभिषेक हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप हो, किसी भी तरीके से हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन हम पवित्र सरोवर का जल ला करके किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर में शिवलिंग पर अगर जलाभिषेक करते हैं तो उसका भी अलग पुण्य प्राप्त होता है। यदि इस दिन व्रत रह करके रात्र में, मध्य रात्र में, महानिशा काल में या चारों प्रहर में, रात के चारों प्रहर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए और विभिन्न वस्तुओं से, चाहे दूध से, साध से, पंचामृत से, गंगा जल से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के सुखों का वरदान देते हैं।
0: साफ है कि इस बार सावन की शिवरात्रि भोले भंडारी के भक्तों के लिए कई अलौकिक अवसर लिए हुए है। यही वजह है कि इस बार भोले के भक्त विशेष तौर पर कावड़ियों का उत्साह और उमंग अलग ही दिख रहा है। दरअसल शिव सृष्टि का आधार है, शिव सत्य है, आशुतोष है, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, आनंद हैं, शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु है और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी, शिव ज्ञान स्वरूप हैं, स्वर और संगीत के प्रणेता हैं, इनके डमरू से उत्पन्न नाद ही ब्रह्म है, अनादि हैं इसलिए अप्रमेय हैं। इसलिए शिव के दिव्य अलौकिक स्वरूप की अनुभूति उनकी चेतना का साक्षात तर्क यानी लॉजिक से संभव नहीं है। उसी अचिंत्य अप्रेम में अनादि शिव को सावन अत्यंत प्रिय है। सावन का शिवरात्रि महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत अवसर है। सावन की शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी बताया गया है।
1: ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, पवित्र

0: उनकी उपासना करते हैं तो अद्भुत परिणाम जीवन में प्राप्त होता है और व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सरलता पूर्वक कर लेता है।
1: सनातन धर्म में सावन का महीना अत्यंत पावन माना जाता है। वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का तत्व कण-कण में ऐसे घुल जाता है कि मन की वीणा के तार से सिर्फ भक्ति के सुर निकलने लगते हैं। क्योंकि सावन का महीना शुरू होते ही पावस ऋतु अपनी पूर्ण रवानी में होती है, इसलिए प्रकृति भी मनमोहक हरियाली से खिल उठती है। हरियाली से ढकी धरती पर भगवान भोले के भक्त भगवा पोशाक में कांधे पर कांवड़ लेकर जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है भगवान भास्कर की रश्मियां किसी घने मनोरम उपवन का श्रृंगार कर रही हो। हिंदुस्तान में यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है, सदियों से चली आ रही है। सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान भोले के अभिषेक का इतना ज्यादा महात्मय के पीछे देवासुर संग्राम की पौराणिक कथा को आधार माना जाता है। समुद्र मंथन के बाद कालकूट यानी हलाहल और अमृत दोनों का प्राकट्य हुआ। अमृत पाने की होड़ में देवताओं और असुरों के बीच संग्राम छिड़ गया, लेकिन विषपान के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सृष्टि के व्यापक कल्याण के लिए भगवान शिव ने हलाहल पीने की जिम्मेदारी उठाई। हलाहल पीने के बाद उसके प्रभाव से भगवान भोले का गला नीला पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का अभिषेक किया। देवताओं के अभिषेक से भगवान भोले को काफी लाभ हुआ और महादेव देवताओं पर अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से ये दिन सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था। तब से इसी तिथि को सावन की शिवरात्रि के तौर पर मनाने की परंपरा चल पड़ी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावन की शिवरात्रि को अभिषेक करने से भगवान भोले अभी भी उतने ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं।
0: शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से जो हलाहल निकला था उसको उसका पान कर लिए थे। इस कारण से उनका शरीर तप रहा था। भगवान शिव उस हलाहल विष को कंठ में धारण कर लिए थे, इस कारण से उनका मस्तक गर्म हो गया था। उनको शांति प्रदान करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको आराम प्रदान करने के लिए देवी देवता और मनुष्य सभी जलाभिषेक करते हैं। जिस कारण से भगवान शिव का जो शरीर की गर्मी है वह शांत होती है, तो समुद्र मंथन के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है।
1: दरअसल ये दुनिया विश्वास की धुरी पर टिकी हुई है। विश्वास अगर अचल है तो उससे अद्भुत शक्ति मिलती है और यही शक्ति असंभव से असंभव कार्य की प्रेरणा बन जाती है। भोले के भक्तों का विश्वास है कि सावन की शिवरात्रि को जल अभिषेक करने से लोक परलोक दोनों सुधरता है। दरअसल सनातन के संगतों में शिवरात्रि की अद्भुत महिमा बताई गई है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन निशित काल यानी मध्यरात्रि की वेला में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ धरती पर विचरण करते हैं। यही वजह है कि शिवरात्रि की मध्यरात्रि को जल अभिषेक करने वालों को गौरी शंकर का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सावन की शिवरात्रि को भोले भंडारी की पूजा करने से कुंडली में मौजूद तमाम ग्रह दोष जैसे काल सर्प दोष, पितृ दोष और शनि दोष के अशुभ प्रभावों से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि की तिथि को किए गए दान पुण्य का भी शीघ्र लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: जरा सोचिए, समुंदर के किनारे खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखें और वहां आपको एक दो नहीं बल्कि

0: सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई नजर आए तो नजारा कैसा होगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहां आसमान ने जैसे रंगों की चादर ओढ़ ली हो। मौका था गाले फेसा ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का, जहां श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से आए काइट फ्लायर्स ने अपने हुनर का जलवा दिखाया।
1: आसमान में लहराती पतंगों को तो आपने खूब देखा होगा और इंद्रधनुष की खूबसूरत छटा को भी, पर क्या हो जब पतंगों की दुनिया में इंद्रधनुषी रंग भी शामिल हो जाएं? ये कुछ ऐसा ही नजारा है जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है। तस्वीरें हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की। मौका था कोलंबो के गाले फेस ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का। इसमें विशाल काय पतंगों के साथ ही अलग अलग आकृतियों और रंगों वाली छोटी बड़ी पतंगे भी देखने को मिली। यहाँ हर किसी में उत्साह, उमंग और आसमान को छू लेने का जुनून नजर आ रहा था। श्रीलंका में आयोजित ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आए काइट फ्लायर्स ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार करीब 30 देशों के 80 अंतर्राष्ट्रीय काइट फ्लायर्स और 1500 से ज्यादा स्थानीय प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।
2: This is a beautiful kite festival. I've never seen anything like it. It's such a family friendly festival. And right on the beach here, and the wind is beautiful, the people are beautiful, the weather is all beautiful.
1: Din hi nahi, is event ne raaton ko bhi roshan rakha. Raat mein aasman mein patangon ka shandaar nazara dikha. Andhere aasman mein roshni se jagmagati patangon ne Colombo ke skyline ko ek alag hi andaaz de diya. Samandar ki lehrein, khula aasman और उसमें उड़ती सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे। कोलंबो का ये नजारा सिर्फ एक फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है, बल्कि श्रीलंका की संस्कृति, रचनात्मकता और पर्यटन को दुनिया के सामने पेश करने की एक कोशिश भी है। कोलंबो का ये काइट फेस्टिवल श्रीलंका के पर्यटन अभियान को एक नया रंग देता दिखा। यहाँ पतंगों की डोर ने सिर्फ आसमान को नहीं छुआ बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को भी एक साथ जोड़ा। यानी कोलंबो में पतंगों के बहाने आसमान भी सजा और श्रीलंका ने दुनिया को अपनी खूबसूरती और संस्कृति की एक रंगीन झलक भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली। 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मॉनसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान। ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का संदेश।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर फ्रेम को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसमें रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। इस वीडियो को इसी एंगल से लगातार वायरल किया जा रहा है, क्या है सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, क्या है इसकी सच्चाई आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: रांची में राज्य मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच 3 दौर में करीब 5 घंटे तक चली मैराथन वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही। जेबीएससी और जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि रांची में आंदोलनकारी छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत के प्रशासन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद अधिकारियों को जमीन पर बैठकर छात्रों से बातचीत करनी पड़ी। क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
6: झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन से जोड़कर सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में जमीन पर बैठे छात्र अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए उन्हें भी अपने साथ जमीन पर बैठने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो रांची का है, जहां जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में विसंगतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने बंद कमरे में वार्ता से इनकार कर दिया, जिसके बाद एसडीओ और एडीएम को भी प्रदर्शनकारियों के बीच जमीन पर बैठकर खुली बातचीत करनी पड़ी। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं।
5: असल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो रांची का है, जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तस्वीरें देखी, जिसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की लिखित मंजूरी नहीं मिलती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 7 अगस्त से लेकर अब तक 6 राउंड से अधिक की बातचीत हो चुकी है, ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जानना जरूरी हो गया था। सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में मंत्रियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और छात्र संगठनों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वीडियो में जो दृश्य नजर आ रहे हैं वो किसी गेस्ट हाउस जैसे नहीं लग रहे हैं, ये किसी कॉलेज की बिल्डिंग जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि एसडीओ और एडीएम को जमीन पर बैठकर बातचीत के लिए मजबूर किया जाता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर किया जाने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम पेज पर यह वीडियो मिला। इसके कैप्शन में इसे धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का बताया गया था। वीडियो में यह भी जानकारी दी गई थी कि BBMKU में परीक्षा के नतीजों में देरी, लाइब्रेरी और बेंच की कमी तथा पानी और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने 11 सूत्रीय मांग पत्र रखा। इस दौरान बातचीत शुरू करने से पहले उन्होंने अधिकारियों से उनके साथ जमीन पर बैठने के लिए कहा। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन 27 जुलाई 2026 को हुआ था। सर्च के दौरान हमें झारखंड के कई स्थानीय मीडिया चैनलों पर भी इस वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जुलाई को विश्वविद्यालय में LLM की पढ़ाई शुरू करने, सेंट्रल लाइब्रेरी और लैब बनाने जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे AISA के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी थी। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो झारखंड के रांची का नहीं बल्कि धनबाद का है, जहां विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 27 जुलाई को वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तालाबंदी की थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और वीडियो में लाठी डंडे और कुंडाल से कुछ लोग एक ढांचे को गिरा रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का वीडियो है जहां पर हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
6: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन ढांचे को गिरा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं हैं, लगातार ढांचे को गिराने में लगे रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां कट्टरपंथियों का एक गुट जबरन एक हिंदू परिवार की जमीन पर कब्जा कर रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को भी बख्शा नहीं गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन ढांचे को गिरा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं है, लगातार ढांचे को गिराने में लगे रहते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह भी कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का वीडियो है जहां कट्टरपंथियों का गुट जबरन हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया लगा। ऐसे में अगर वीडियो बांग्लादेश का बताकर वायरल किया जा रहा है तो इसमें असमिया क्यों सुनाई दे रही है। इसके अलावा हमने फिर से वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें ऐसा लगा कि ये दो गुटों के आपसी विवाद का मामला हो सकता है, क्योंकि हमें सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो बांग्लादेश के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
6: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें असम के एक फेसबुक पेज पर 29 जुलाई की एक पोस्ट मिली। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक असम के गोसाई गांव सब डिवीजन के उच्चतारी गांव में नूरुल खान और गनी शेख की अगुवाई वाले दो गुटों के बीच जमीन के पुराने विवाद को लेकर झड़प हुई थी। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें असम के कई स्थानीय न्यूज आउटलेट्स पर इस झड़प के बारे में वीडियो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार गनी शेख के ग्रुप ने नूरुल खान के उस घर को गिराने की कोशिश की जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बन रहा था। नूरुल खान के परिवार ने आरोप लगाया कि गनी शेख और उसके साथियों ने उनके निर्माणाधीन घर पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। परिवार ने शेख और उसके साथियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद पुलिस ने शेख और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने गोसाई गांव पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी नारायण बोरो से संपर्क किया। बातचीत के दौरान उन्होंने पुष्टि की कि हमलावर और पीड़ित दोनों में से कोई हिंदू नहीं था। FIR में 5 लोगों के नाम शामिल थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो का कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, ये वीडियो असम के गोसाई गांव का है जहां जमीन के विवाद को लेकर दो मुस्लिम गुटों के बीच झड़प हो गई थी। रिद्धिश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपके लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
9: ये बेडरूम है।
10: एक छोटी बच्ची ने अपनी क्रिएटिविटी से एक साधारण सी नोटबुक को इतना खूबसूरत डॉल हाउस बना दिया कि उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। नोटबुक का हर पन्ना खुलते ही एक नए कमरे में बदल जाता है,
9: फिर ये बेडरूम में जाएगी।
10: वीडियो में देखा जा सकता है कि शुरुआत में नोटबुक का एक पेज गुड़िया के बेडरूम की तरह बनाया गया है। कमरे में एक छोटा सा बेड है जिसमें पेपर डॉल को अंदर रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, कागज से बने कवर को हटाकर गुड़िया को बाहर भी निकाला जा सकता है, यानी ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए भी बनाया गया है। इसके अगले पन्ने पर एक छोटी सी वार्डरोब बनाई गई है। इसमें गुड़िया के लिए अलग अलग कपड़े रखे गए हैं जिन्हें बाहर निकालकर उसे पहनाया जा सकता है। बच्चे ने कपड़ों से लेकर अलमारी के दरवाजों तक हर चीज को काफी ध्यान से तैयार किया है। अलमारी के दरवाजे भी खुलते हैं और अंदर रखे छोटे छोटे कपड़े दिखाई देते हैं। इसके बाद नोटबुक में एक बाथरूम आता है, यहाँ छोटी सी शावर, सिंक और टॉयलेट तक बनाया गया है। पेपर डॉल को बाथरूम के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर खेला जा सकता है। इस वजह से पूरा सेट किसी छोटी सी प्लेसेट जैसा लगता है।
9: फिर ये किचन में जाएगी और फ्रिज से मैंगो निकालेगी।
10: नोटबुक आगे खुलती है तो एक प्यारा सा किचन दिखाई देता है। यहाँ गुड़िया के लिए छोटी डाइनिंग टेबल बनाई गई है जहाँ वो बैठ सकती है। साथ ही एक छोटा फ्रिज भी है जिसे खोला जा सकता है। हर कमरे में फर्नीचर और छोटी छोटी चीजों को अलग अलग रंगों से सजाया गया है जिससे पूरा डॉल हाउस काफी जीवंत नजर आता है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी चीज को बच्चे ने कागज, रंगों और अपनी कल्पना के सहारे तैयार किया है। इसमें ना कोई महंगा खिलौना है और ना ही किसी बड़े सेट की जरूरत पड़ी, बस एक नोटबुक और ढेर सारी क्रिएटिविटी से उसने अपने लिए पूरी छोटी सी दुनिया बना ली।

0: ब्राजील का ये प्यारा वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक 5 साल की बच्ची अपने क्लासमेट को लंच के समय खाना खिलाती नजर आ रही है। बच्चा बिना हाथों के पैदा हुआ है, इसलिए उसे खाना खाने में मदद की जरूरत पड़ती है। सबसे खास बात यह कि बच्ची ने उसकी मदद के लिए किसी के कहने का इंतजार नहीं किया, उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने दोस्त को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बच्ची के छोटे से काम में इतनी मासूमियत और अपनापन नजर आया कि वीडियो देखने वाले लोग भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए।
1: आप किसको करते हो ज्यादा प्यार?
2: देखो मामा को तो दोनों ही पसंद है।
1: दोनों ही पसंद हो? नहीं, एक एक की बात करो।
2: पर मम्मा आपको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
0: प्यारी सी बच्ची और उसकी माँ के बीच ये मजेदार बातचीत लोगों का दिल जीत रहा है। दरअसल जब माँ अपनी बेटी से पूछती है कि उसे पापा पसंद है या माँ, उसके बाद बच्ची ने जो जवाब दिया उसे सुनकर यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
1: आप किसको करते हो ज्यादा प्यार?
2: देखो मामा को तो दोनों ही पसंद है।
1: दोनों ही पसंद हो? नहीं, एक एक की बात करो।
2: पर मम्मा आपको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर पापा का जो प्यार है ना अलग ही है। मेरे को तो पापा को सोच के ही मेरे दिल में पता नहीं क्या ही जा रहा है।
1: क्या ही जा रहा है?
2: मतलब पापा ना मेरे फेवरेट है।
1: और मम्मा?
2: मम्मा थोड़ी कम है।
3: टू माइनस टू कितना होता है? यही तो पूछा था तुमसे और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है टू माइनस टू?
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग बच्चे के इस मासूम लॉजिक की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माँ अपनी छोटी बेटी को गणित पढ़ा रही है।
3: टू माइनस टू कितना होता है? यही तो पूछा था तुमसे और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है टू माइनस टू?
0: अपनी रोती हुई बेटी से पूछती है टू माइनस टू कितना होता है। बच्ची रोते हुए गलत जवाब देती है और कहती है 5।
3: क्या बच्चा?
0: ये सुनकर बच्ची को समझाने के लिए माँ एक आसान उदाहरण देती है। वो कहती है मानो मैंने तुम्हें लंच में 2 रोटी दी और तुमने वो दोनों खा ली, तब तुम्हारे पास क्या बचा? बच्ची रोते रोते पूरी मासूमियत से जवाब देती है सब्जी। बच्ची का मासूमियत भरा जवाब लोगों को खूब हंसा रहा है।
3: अभी तुम्हें लंच में मानो तुम्हें 2 रोटी दी मैंने, तुम्हें लंच में मैंने 2 रोटी दी और तुमने दोनों खा ली, तो क्या बचा?
2: सब्जी।
0: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है। इसमें एक पिता की बेटी के लिए की गई खास कोशिश नजर आती है। महंगे इंतजामों से दूर ये सरप्राइज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले लोग पिता के प्यार और सोच की तारीफ करते नहीं थक रहे। दरअसल पिता ट्रक चलाते हैं और काम की वजह से उनका काफी समय सड़क पर ही गुजरता है। ऐसे में बेटी के जन्मदिन पर किसी बड़े होटल या पार्टी हॉल में सेलिब्रेशन करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन बेटी की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा तरीका निकाला जिसने लोगों का दिल जीत लिया। पिता ने जिस ट्रक से वो अपना काम करते हैं उसी के अंदर बेटी के लिए छोटा सा बोर्ड सेटअप तैयार कर दिया। ट्रक को रंग बिरंगे गुब्बारों और लाइट से सजाया गया। इसके अलावा बेटी के लिए गिफ्ट भी रखे गए थे। वीडियो में ट्रक के अंदर का नजारा किसी छोटी सी बर्थडे पार्टी से कम नहीं लग रहा। जब बच्ची वहां पहुंचती है और अपने लिए इतनी खूबसूरत सजावट देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिता का ये सरप्राइज उसके लिए कितना खास है। टीचर ने अपनी क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को समझाने का ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर बच्चों को सिर्फ बोर्ड पर डायग्राम बनाकर या किताब की लाइनें पढ़कर समझाने के बजाय पूरा प्रयोग करके दिखाती हैं। इसके लिए क्लास की लाइट बंद कर दी जाती है और कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके बाद वो एक शीशे और लेजर बीम की मदद से बच्चों को समझाना शुरू करती हैं कि आखिर लाइट किसी सतह से टकराने के बाद किस तरह वापस लौटती है। लेजर की रोशनी जब शीशे पर पड़ती है तो वो दूसरी दिशा में वापस जाती हुई दिखाई देती है। इस पूरी प्रक्रिया को बच्चों के लिए और ज्यादा साफ तरीके से दिखाने के लिए हवा में पाउडर का इस्तेमाल भी किया गया। इससे लेजर बीम का रास्ता साफ नजर आने लगा। ऐसे में बच्चों को सिर्फ ये बताया नहीं गया कि प्रकाश कैसे रिफ्लेक्ट होता है, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से पूरी प्रक्रिया को होते हुए भी देखा। यही इस वीडियो की सबसे खास बात है। कई बार किताब में पढ़ी हुई कोई चीज कुछ देर बाद याद नहीं रहती, लेकिन जब उसे किसी प्रयोग के जरिए समझाया जाता है तो उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। इस टीचर ने भी कुछ ऐसा ही किया।

0: सफर के दौरान अक्सर ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं जो बाद में यादगार बन जाती हैं। कुछ ऐसा एक स्केच आर्टिस्ट और टीटी के साथ हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर भावुक भी हो रहे हैं। दरअसल स्केच आर्टिस्ट आकाश सेल्वारासु ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर कर रहे थे। उनके पास जनरल क्लास का टिकट था और वो बाथरूम की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास बैठे हुए थे। इसी दौरान वहां टिकट चेक करने के लिए टीटी पहुंच गए। उन्होंने आकाश से टिकट मांगा। आकाश ने अपना जनरल टिकट दिखा दिया। स्लीपर कोच में जनरल टिकट पर सफर करने की वजह से टीटी ने रेलवे के नियमों के मुताबिक उनका जुर्माना काट दिया। इसके बाद टीटी ने अपने टैबलेट पर रेलवे का QR कोड दिखाकर उनसे जुर्माने की रकम ले ली और आगे बढ़ गए। देखने में ये बिल्कुल सामान्य टिकट चेकिंग की घटना थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टीटी के वहां से जाने के बाद आकाश के दिमाग में उनका चेहरा रह गया। उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल करने का फैसला किया और कुछ ही देर में टीटी का स्केच बनाना शुरू कर दिया। आकाश ने इतनी बारीकी से उनका चेहरा कागज पर उतारा कि तस्वीर देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कुछ देर बाद आकाश ने वो स्केच टीटी को जाकर दे दिया। पेंटिंग हाथ में आते ही टीटी ने हैरानी से पूछा कि मेरी पेंटिंग है? आकाश ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद टीटी ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। उन्होंने आकाश से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी की कि अगर संभव हो तो पेंटिंग को थोड़ा और बेहतर कर दें। आकाश ने उनकी बात मान ली और उन्होंने टीटी के स्केच को और निखारा और आखिर में उन्हें उनकी तस्वीर दोबारा सौंप दी। सबसे भावुक पल तब आया जब दोनों ने साथ में तस्वीर खिंचवाई। इस दौरान टीटी की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। शायद उनके लिए ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी बल्कि उस सफर की ऐसी याद थी जिसे वो लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे।
1: हम किधर जा रहे हैं?
2: किधर जा रहे हैं?
1: आप रेडी हो?
2: हाँ रेडी।
0: हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों की आदत होती है कि वे कभी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमेशा परिवार की जरूरतें ही सबसे पहले आती है। ईश्वर की नानी ने अपनी पूरी जिंदगी गांव और घर के कामकाज में बिता दी थी। उन्होंने न तो कभी हवाई जहाज देखा था और न ही कभी अपने घर से दूर किसी ट्रिप पर गई थी। पुरानी पीढ़ी के लोगों की आदत होती है कि वे कभी खुद के ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमेशा परिवार की जरूरतें ही सबसे पहले आती हैं।
2: तेरे को नींद हो जाए रे? हाँ ये बेटी, तेरे को नींद बहुत आ रही है।
0: जब ईशा का परिवार इस काबिल बना कि वे घूमने फिरने का आनंद ले सके, तो ईशा ने तय किया कि इस बार पहला हक उनकी नानी का है। ईशा उन्हें पहली बार फ्लाइट से गोवा ले गई। एयरपोर्ट लाउंज के अनुभव से लेकर विमान की खिड़की से बाहर झांकने तक नानी के चेहरे का हावभाव देखने लायक था।
2: विमान से आए रहे, ऐसा ट्रेन से नहीं आए रहे। आया मजा आया बाबा, अभी हम जा रहे हैं गोवा में मजा करने को।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: बात करते हैं गणपति महोत्सव की, जो भले ही इस साल 14 सितंबर से आरंभ हो रहा है लेकिन तैयारियों की तस्वीरें अभी से ही नजर आने लगी हैं, खासकर महाराष्ट्र से। भले गणपति उत्सव आज महाराष्ट्र से निकलकर देश भर में अपनी छटा बिखेर रहा है लेकिन महाराष्ट्र की धरती से शुरू हुआ गणेशोत्सव अंग्रेजों के जमाने से चले आ रही पुरानी गणेश मंडलों की रौनक को लेकर काफी मशहूर रहा है। इन्हीं में से एक है पुणे का श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल, जहां इस बार के गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
2: विघ्नहर्ता सिद्धिदाता भगवान गणपति की भक्ति भले ही सब जगह एक जैसी ही हो लेकिन महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की रौनक के तो कहने ही क्या। 10 दिन के उल्लास और उत्साह को दर्शाने वाला महाराष्ट्र इस पर्व के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता के संदेश को बरसों से देता चला आ रहा है। यही वजह है कि दशकों से महाराष्ट्र की धरती पर हर तबके से जुड़े लोग इस 10 दिन की अवधि को बप्पा के आने की खुशी के रूप में मनाते आ रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में गणपति मंडल बने हैं जो हर साल गणपति महोत्सव की तैयारियां करते हैं। ऐसा ही एक गणपति मंडल है पुणे का श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल, जिसने 14 सितंबर से आरंभ हो रहे गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस गणपति मंडल ने क्रांति दिवस पर इस साल के गणेशोत्सव के लिए थीम रखी। श्री गणेश सुवर्ण धाम, जबकि पारंपरिक रूप से उत्सव मंडप के लिए वासा पूजन समारोह भी यहां आयोजित किया गया।
3: क्रांति दिन है आज और हमारे जो फाउंडर थे वो क्रांतिकारी थे और आज क्रांति दिन की निमित्ति आज वासा पूजन भी और डेकोरेशन का अनावरण, ये दोनों चीजें हुए हैं। मुझे लगता है आज फर्स्ट टाइम पूना में ऐसे LED स्क्रीन पे डेकोरेशन का अनावरण जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ है। और आज इस साल का अगर आप डेकोरेशन देखेंगे श्री सुवर्ण गणेश धाम, गणेश धाम मतलब गणेश नगरी, गणेश का घर, और सोने ये किया है जहाँ उनके माता पिता, उनके भाई, वो खुद यहाँ है ऐसा डेकोरेशन में दिखाया है। और मुझे श्योर हूँ कि मैं जो लाखों भाविक इस 10 दिन में इस जो ये गणपति श्रद्धा स्थान है उनके दर्शन करने आएंगे तभी ये डेकोरेशन देखिए आनंद हो।
4: स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी ब्रिटिशांविरुद्ध
2: श्रीमंत बाहू साहेब रंगारी गणपति मंडल के अनुसार उनका मंडल आजादी से काफी पहले से गणेशोत्सव का आयोजन करता आया है। इस उत्सव के दौरान परंपरा बरकरार रहे, उससे कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए खास तौर से DJ मुक्त रहने का भी संकल्प मंडल की तरफ से पिछले साल लिया गया था, जिससे यहां आने वाली खासकर यंग जनरेशन गणेशोत्सव से जुड़ी समृद्ध परंपरा के मर्म को समझे।
3: 2006 से अगर ये गणेशोत्सव को एक कैंसर, मैं तो कैंसर रोग जो लगा है वो है DJ। आज अन्नाभाऊ साठे जयंती होता है, अंबेडकर जयंती होती है, लहूजी वस्ताद की जयंती होती है, आप देखते उसमें कि 10-11 साल के लड़के किस प्रकार की नाच करते, ये अपनी संस्कृति नहीं है। और मुझे लगता है कि ये DJ मुक्त होना ही चाहिए। पिछले साल 50 से 50 मंडल जो DJ पे थे वो कन्वर्ट हुए हैं। इस साल ऑलरेडी हमारे पास 25 से 30 मंडल कन्वर्ट होने को तैयार है पारंपरिक पे, और मुझे खातरी कि अगले 4-5 साल में पूना का ये जो गणेश उत्सव ये 100% DJ मुक्त हो।
2: बता दें कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में गणपति महोत्सव बरसों से महाराष्ट्र के सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है। कभी 1893 से सार्वजनिक रूप में विराजित किए गए गणपति बप्पा पंडालों से होते हुए बाद के सालों में घर घर विराजना शुरू हुए और तभी से इसने महाराष्ट्र में परंपरा का रूप ले लिया। इस साल ये उत्सव गणेश चतुर्थी यानी 14 सितंबर से आरंभ होकर 23 सितंबर यानी अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के साथ संपन्न होगा। इसलिए बुद्धि समृद्धि और विघ्नहर्ता स्वरूप की पारंपरिक पूजा अर्चना के प्रतीक इस पर्व का उल्लास अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली, 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मॉनसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान, ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। वर्ल्ड लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का संदेश।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सावन शिवरात्रि की। सावन से दूसरे सोमवार को जहां पर शिवालयों में भक्ति की धारा बह रही है, वहीं पर मंगलवार को शिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। देखिए, शिव भक्तों के लिए सावन शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व माना जाता है और इस साल ग्रहों का जो योग है वो कुछ ऐसा है कि शिवरात्रि और भी ज्यादा मंगलमयी होने जा रही है। क्या है संयोग, आपको विस्तार से हम आगे बताएंगे। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए लाखों की तादाद में कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से अब निकल चुके हैं और इनमें बड़ी तादाद में दिल्ली NCR के कांवड़िए भी शुमार हैं। आज आपकी मुलाकात एक साल की आराध्या से करवाने जा रहे हैं, जो माता पिता के साथ गंगोत्री से गंगा जल लेकर आई हैं। इनके अलावा आपको बता दें, उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी भी अद्भुत तस्वीरें उसकी आपको दिखाने जा रहे हैं आज। तो आइए शुरुआत करते हैं शिवरात्रि पर जलाभिषेक की तैयारियों के साथ। देखिए, सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भक्त उमड़े और मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर और बड़ी तादाद में जलाभिषेक होगा, इसलिए कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की भारी भीड़ रही। अंदाजा है कि 3 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने इलाके के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली NCR के भी लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर आए हैं और इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको मिलवाते हैं एक साल की शिव भक्त आराध्या से।

0: शिव, शिव का सावन और सावन की शिवरात्रि। शिव भक्तों के लिए इस पावन दिन का क्या महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो हरिद्वार से निकलने वाली हर सड़क पर केसरिया सैलाब है। हर हर महादेव के जय घोष से जमीन आसमान गुंजायमान है।
1: हाईवे पर लगातार बड़ी संख्या में कांवड़ी बाइक पर सवार शिव भक्त हथियार पहुंच रहे जल लेकर यहाँ से जाने के लिए, और जितनी बड़ी संख्या में ये लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी संख्या में कांवड़िए हथियार से अपने अपने गंतव्य पर रवाना भी हो रहे हैं। मगर इसके बावजूद कांवड़ियों की संख्या कम होती दिखाई नहीं दे रही। सड़क पर जगह जगह बाइकें खड़ी हुई है, उनका किसका पता नहीं है कौन किसकी बाइक है। ये कांवड़िए बाइक खड़ी करके यहाँ से चले गए और ये बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए भी अब जल लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और हाईवे पर सीटियों की आवाज, कांवड़ियों की आवाज, बम बम भोले की आवाज या भोले शंकर की आवाज जयघोष यही सुनाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जितने कांवड़िए यहाँ पर जा रहे हैं, ये इस तरह का माहौल ही है, अलग ही तरीके का है। पुलिस प्रशासन जैसे ना के बराबर काम कर रहा है, खुद कांवड़िए सीटियां बजा बजा के अपना रास्ता खुद बना रहे हैं और यहाँ से जल लेकर रवाना हो रहे हैं और बड़ी कुशलता के साथ पूरी तरह से फैला संपन्न हो रहा है।
0: शिवरात्रि पर भोले का जलाभिषेक करने की मनोकामना लिए जो हरिद्वार से चले अब दिल्ली NCR पहुंच चुके हैं। इन कांवड़ियों में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। यहां तक कि एक साल की आराध्या को शिवरात्रि पर जलाभिषेक करना है।
2: एक साल की आराध्या है। सबसे पहले तो मैं इस कैरियर से शुरू करूंगी कि बेबी कैरियर में किस तरीके से जो है उसको सजाया गया है, क्योंकि ये आराध्या की जो है प्रथम कांवड़ यात्रा है। इन्होंने ये पोस्टर भी जो है इसलिए लगाया है, आराध्या की तस्वीर जो है इसमें लगाई गई है, और आराध्या की ये पहली कांवड़ यात्रा है गंगोत्री धाम से लेकर हैदरपुर। हैदरपुर के ये लोग निवासी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप दिख जाएगा बम बम भोले के जयकारों के साथ इन्होंने ये नई शुरुआत करी है। इस बच्ची की एक साल की उम्र है, लेकिन भक्ति का ये भी रूप है जो देखने को मिलता है। हर साल ही अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आती है, लेकिन सबसे छोटा रूप मैं आपको भोले का दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से एक साल के बच्चे ने गंगोत्री धाम से ये यात्रा जो है शुरू करी और वो यहाँ पर दिल्ली आ पहुंची है। आराध्या के माँ बाप हमारे साथ है, इस वक्त मौजूद है। आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए।
3: प्रीति।
2: प्रीति, प्रीति। और आपका?
4: करण।
2: करण। करण, प्रीति सवाल ही पहले ये है, गर्मी बहुत है, हालांकि हर सावन में बारिश जरूर होती है लेकिन गर्मी भी होती है। माँ बाप तो जो है कर लेते हैं कि कवर करना है हमें जो है पैदल यात्रा करनी, लेकिन एक साल के बच्चे के साथ ये वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है।
3: नहीं, इतना खास मुश्किल भी नहीं है।
2: क्यों मुश्किल नहीं लगा?
3: अगर सारा लेके सामान चलो तो कोई मुश्किल नहीं होती है।
2: अच्छा, सारा सामान लेके साथ चलो, लेकिन बच्चे तो परेशान हो जाते हैं ना, गर्मी हो बारिश हो।
3: हाँ ये तो है, ये हरिद्वार के बाद ही परेशान करते हैं, उससे पहले नहीं करते।
0: पिता ने महादेव से बेटी की मुराद मांगी थी जो पूरी हो गई। अब माता पिता नन्ही आराध्या को प्राइम पर लेकर गंगोत्री से चल पड़े। हरिद्वार होते हुए आराध्या ने लंबी यात्रा तय की।
2: आराध्या का जल देखिए, कितना छोटी सी बच्ची का छोटा सा जल, मतलब ये तो होगा
3: गंगोत्री का है। बच्चे गंगोत्री ये महाकाली द्वार का है, है।
2: तो ये कितना है ML?
3: ये होगा
2: 500 ML लगभग होगा, ये बच्ची के साइज के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि 500 ML का जल जो है
3: गले में डाल गए।
0: करीब 500 ml गंगा जल जो आराध्या लेकर आई है मंगलवार को महादेव पर चढ़ाएंगी। इस एक साल की नन्ही शिव भक्त के साथ इस कांवड़ यात्रा में 53 साल की राजबाला भी हैं। कंधे पर 21 किलो वजन की कांवड़ लिए सिर्फ 5 दिनों में राजबाला ने ये यात्रा पूरी की है, और हाँ बिल्कुल अकेले।
2: देखिए किस तरीके से अलग अलग पवित्र स्थानों से जल लेकर जो है जितने भी भोले के भक्त है वो दिल्ली में इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं। और मेरे साथ आंटी इस वक्त मौजूद है, सबसे पहले नाम बताइए और उम्र बताइए।
5: मैं राजा बिहार से आई हूँ, सेक्टर 18 रोहिणी से। मेरा नाम राजबाला है, मैं हर की पौड़ी से मैंने जल उठाया है, 21 लीटर मेरा जल है और मैंने 5 दिन में ही दिल्ली में संपर्क किया।
2: क्या उम्र है आपकी पहले?
5: मेरी 53 साल है।
2: 53 साल है और आप 5 लीटर जल जो है
5: 21 लीटर
2: जल 5 दिन में आप ये सफर तय कर आए।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये भोले की भक्ति की शक्ति है कि हर उम्र हर तबके के लोग तेजी से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी चंद दिनों में तय करते हुए शिवालय के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि शिवरात्रि पर जलाभिषेक करना है। जो पैदल जा सकते थे पैदल गए, पर जो मजबूर थे उन्होंने भी हार नहीं मानी। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाने वाले सुनील हर साल यूं ही अपनी ऑटो लेकर हरिद्वार जाते हैं।
4: सुनील जी इस वक्त हमारे साथ है, हालांकि पैरों में उस तरीके की शक्ति नहीं है जिस तरीके से वो चलकर जो है कावड़ लेकर दिल्ली आ सके, लेकिन उसके बावजूद इस हालत में भी जो है ये टेम्पो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का ही टेम्पो है, इसको चलाकर जो है वो दिल्ली में आज यहाँ आए हैं जल लेकर। सबसे पहले तो ये बताइए आपकी उम्र क्या है?
6: मेरी उम्र है 45 साल।
4: 45 साल की उम्र है सुनील जी, आपने जल कहाँ से लिया है, क्योंकि अलग अलग पवित्र स्थानों से लोग जल लेकर?
6: नहीं, मेरा मैं हरिद्वार से जल उठाता हूँ, पर हरिद्वार से ही लेके आया हूँ।
4: हर साल लेकर आते हैं आप?
6: जी हर साल लेके आता हूँ।
4: तो कितना लीटर जल लेकर आए हैं आप?
6: मैं जी 2 लीटर जल लेके आता हूँ और भोलेनाथ पे चढ़ाता हूँ।
4: भोलेनाथ पे आप चढ़ाते हैं, तो शिवरात्रि का इंतजार है, जिस दिन जो है आप जल अर्पित जो है जलाभिषेक जो है वो करोगे।
6: हाँ जी।
4: अच्छा, अगर मैं यही पूछूं कि मन में इतनी आस्था आती कैसे, क्योंकि तकलीफ है, उस तकलीफ के बावजूद आपके साथ मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, बस नजर आ रहा है तो ये हरा रंग का टेम्पो जिसको आप चलाकर खुद यहाँ पर आए हैं।
6: ये तो बाबा की मर्जी है, बाबा बुलाते हैं चले जाते हैं और उनके नाम का ही जल चढ़ाते हैं जी।
4: कितने सालों से आप लोग आप आ रहे हो?
6: मेरी हो गई 20-22 साल।
4: 20-22 साल से, तो आप देख सकते हैं कि 20-22 साल से ये यूं ही जो है जल लेकर जो है दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद जो है शिवालय जाकर जो है जल अभिषेक करते
0: हैं। दिल्ली की सरहद पर कांवड़ियों का जमघट लगा है, गंगोत्री यहाँ हरिद्वार से लौटे हैं। रात भर के इंतजार के बाद शिवरात्रि पर जल अभिषेक होगा और तपस्या पूरी होगी। अकेले या दोस्तों के साथ या फिर परिवार को अपनी ऑटो रिक्शा में लिए कांवड़िए भक्ति में मगन है।
7: ऑटो उनकी रोजी रोटी है, इसी के जरिए इनका परिवार चलता है, लेकिन सावन के महीने में इसी रोजी रोटी इसी ऑटो पर ये अपने परिवार को बैठा कर निकल पड़े हरिद्वार की तरफ, वहां से जल लिया और अब वापस जा रहे हैं और कल शिवरात्रि है तो कल आप जल चढ़ाएंगे। जतिन, आप कहाँ से चले थे आप?
8: हम चले थे बदरपुर से।
7: बदरपुर से?
8: हाँ।
7: कौन है आपके साथ?
8: मेरे साथ मेरी वाइफ है, ये मेरी छोटी लड़की है, ये मेरा लड़का है, इसका नाम लवीस भोले है, इसका नाम कृषा भोली है, मेरा नाम जतिन भोला है, इसका नाम नीतू भोला है।
7: तो ये बेटी कितनी बड़ी है?
8: ये 3 साल की है।
7: और वो बेटा?
8: वो 2 साल का हो जाएगा अगस्त में।
7: 3 साल की बेटी है, 2 साल का बेटा है, बेटा का बर्थडे आने वाला
8: है अगस्त में,
7: 17 अगस्त को। तो बोले आप इसी से आपकी रोजी रोटी चलती है, पहले तो इतनी हिम्मत लाना कि आप 2-4 दिन के लिए ब्रेक लगा के अपने काम के लिए इसको लेकर निकल चलो, ये हिम्मत कहाँ से आई?
8: ये सब भोलेनाथ की कृपा है। बोल बम।
0: भोले भंडारी के लिए जो भक्ति भावना है उसे इन जख्मी पैरों से समझिए। पांव में छाले पड़ गए तो प्लास्टिक की बोतल को चप्पल की तरह पहन लिया और इसी तरह मीलों का सफर तय करके गंगा जल ले आए, लेकिन इसमें जो आनंद है उसकी मिसाल नहीं। 11 साल के राहुल को ही देख लीजिए।
7: मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो अपने साथ जल लेकर निकला है, हरिद्वार से चल के अब नोएडा तक पहुंच गया है और अब इसकी दूरी बहुत कम बची हुई है। क्या नाम बेटा आपका?
9: राहुल।
7: राहुल, राहुल कितने साल के हो आप?
9: 11।
7: 11। और जल कितना आपके पास?
9: 6 लीटर।
7: 6 लीटर जल है। पहली बार आए या पहले भी आए हो?
9: पहले भी आई है।
7: पहले भी आए हो? कितनी एज से आ रहे हो?
9: 3 साल।
7: 3 साल से आ रहे हो। पहली बार जल कितना लेकर आए थे?
9: गाड़ी में आए थे।
7: पहली बार गाड़ी में आए थे। दूसरी बार?
9: दूसरी बार
7: पिछले भी गाड़ी में आए थे। तुमने जल पहली बार उठाया है? हाँ। तो तुम्हें रास्ते में कैसा लगा जब तुमने पहली बार कंधे पे रखा, कुछ दूर चले तो क्या लगा?
9: अच्छा लगा।
7: अच्छा लगा? थके तो नहीं वहां से यहाँ? का कोई चोट तो नहीं कहीं पे? कंधे दर्द तो नहीं हो रहे?
0: ऐसे शिव भक्त लाखों की तादाद में है जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं और मंगलवार को अपने अपने शहर कस्बे या फिर गांव के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। नोएडा से मनीष चौरसिया, दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: देखिए, झारखंड के देवघर में भी कांवड़ यात्रा पूरी श्रद्धा और जोश के साथ लगातार जारी है। शिवरात्रि पर जहां पर लाखों की तादाद में शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे, चलिए आपको मिलवाते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली कृष्णा बम से। 74 साल की कृष्णा बम पिछले करीब 42 वर्षों से कांवड़ यात्रा कर रही है और इस साल भी कांवड़ लेकर देवघर के लिए निकल चुकी है।
11: मुजफ्फरपुर की 74 वर्षीय कृष्णा बम माता बम हमारे साथ हैं, जो कई एक वर्षों से डाक बम प्रतीक सुमारी को मुजफ्फरपुर से जाती है और बाबा वैद्यनाथ धाम में चराती हैं।
12: ये भोलेनाथ की कृपा है कि 42 वर्षों तक लगातार सुल्तानगंज से बाबा धाम बिना रुके अनवरत चल के 16 घंटे में जल चढ़ाती आ रही थी। पिछले साल मेरा दोनों घुटना टूट गया था, मैं नहीं जा सकी इस बार, लेकिन महाकाल गई, महाकाल 4 दिनों में जल चढ़ाई। फिर इस बार मैं 2 तारीख को जल उठाई हूँ, 5 को महाकाल चढ़ा के रात में घर लौटी हूँ। फिर बाबा के यहाँ जाने की तैयारी है। अब डाक जल तो नहीं चलेगा, लेकिन समर्पित शरीर है, भोलेनाथ मुझे जैसे ले जाए।
11: 42 वर्षों का ही साथ है वैद्यनाथ धाम बाबा का और आपका, प्रत्येक सोमवारी को जाती थी और आज अब तैयार हैं, जा रही हैं, कितनी खुशी हो रही है कि इस बार?
12: खुशी हो रही है कि पहले तो मैं जाने लायक 10 दिन पहले नहीं थी, लेकिन अचानक मेरा दिमाग चेंज किया है, टिकट 8 दिन पहले ली हूँ। और खुशी हो रही है कि महाकाल में चढ़ा ली जल, दर्द कम हो गया, तो बाबा फिर कहीं बुला ले हमें।
10: सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन में आस्था परंपरा और राजसी वैभव का अद्भुत संगम नजर आया। शाम करीब 4 बजे बाबा महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मन महेश स्वरूप ने भक्तों को दर्शन दिए। बाबा की एक झलक पाने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रिपोर्ट देखिए।

देखिए, श्रद्धालुओं के लिए सावन की शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और जलाभिषेक से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने जिस दिन विषपान किया था वो दिन सावन शिवरात्रि का ही था। विष से उनके शरीर में जब जलन शुरू हो गई तो देवताओं ने जलाभिषेक किया और तभी से शिवलिंग के अभिषेक की परंपरा चल पड़ी। जानकारों के मुताबिक इस साल शिवरात्रि पर ग्रहों का भी शुभ संयोग बन रहा है। रिपोर्ट देखिए।

0: इस बार सावन की शिवरात्रि पर मंगलवार का संयोग बना है। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है और मान्यता है कि शंकर ही केसरी नंदन है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। इस बार सावन में कई पावन संयोग बन रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को प्रदोष का महासंयोग बना। सोमवार और प्रदोष के अवसान का मिलन महाशिवरात्रि के साथ होने जा रहा है। साफ है कि सावन की शिवरात्रि के अति पावन मौके पर इस बार भगवान भोले की विशेष कृपा बरसने वाली है। इस बार सावन की शिवरात्रि मनोकामनाओं के पूर्ण होने का खास अवसर लेकर आ रही है। इस बार शिवरात्रि पर कई शुभ और दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जो भोले के भक्तों के लिए वरदान साबित होंगे। इस बार शिवरात्रि के मौके पर चंद्रमा पुनर्वसु के पश्चात पुष्य नक्षत्र से कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे गौरी योग का संयोग बनेगा। साथ ही इस बार शिवरात्रि के दिन चंद्रमा की युति सूर्य, बुध और गुरु के साथ होने से चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। गुरु और चंद्रमा साथ होने से गज केसरी योग भी बन रहा है। इस बार सावन शिवरात्रि पर शिव कृपा का लाभ सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा, लेकिन विशेष लाभ मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को मिलने वाला है। इस बार शिवरात्रि के दिन जो शिव भक्त अपने आराध्य की चारों पहर पूजा और अभिषेक करेंगे, उनके लिए चौतरफा लाभ का योग बन रहा है।
1: श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना बड़ी ही विशिष्ट फल देती है, चाहे वो मंत्र का जप हो, रुद्राभिषेक हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप हो, किसी भी तरीके से हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन हम पवित्र सरोवर का जल ला करके किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर में शिवलिंग पर अगर जलाभिषेक करते हैं तो उसका भी अलग पुण्य प्राप्त होता है। यदि इस दिन व्रत रह करके रात्र में, मध्य रात्र में, महानिशा काल में या चारों प्रहर में, रात के चारों प्रहर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए और विभिन्न वस्तुओं से, चाहे दूध से, साध से, पंचामृत से, गंगा जल से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के सुखों का वरदान देते हैं।
0: साफ है कि इस बार सावन की शिवरात्रि भोले भंडारी के भक्तों के लिए कई अलौकिक अवसर लिए हुए है। यही वजह है कि इस बार भोले के भक्त विशेष तौर पर कावड़ियों का उत्साह और उमंग अलग ही दिख रहा है। दरअसल शिव सृष्टि का आधार है, शिव सत्य है, आशुतोष है, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, आनंद हैं, शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु है और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी, शिव ज्ञान स्वरूप हैं, स्वर और संगीत के प्रणेता हैं, इनके डमरू से उत्पन्न नाद ही ब्रह्म है, अनादि हैं इसलिए अप्रमेय हैं। इसलिए शिव के दिव्य अलौकिक स्वरूप की अनुभूति उनकी चेतना का साक्षात तर्क यानी लॉजिक से संभव नहीं है। उसी अचिंत्य अप्रेम में अनादि शिव को सावन अत्यंत प्रिय है। सावन का शिवरात्रि महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत अवसर है। सावन की शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी बताया गया है।
1: ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, पवित्र मंदिरों में, प्रतिष्ठित मंदिरों में जाकर अभिषेक करते हैं या घर पर या नदी के किनारे कहीं भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की उपासना करते हैं तो अद्भुत परिणाम जीवन में प्राप्त होता है और व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सरलता पूर्वक कर लेता है।
0: सनातन धर्म में सावन का महीना अत्यंत पावन माना जाता है। वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का तत्व कण कण में ऐसे घुल जाता है कि मन की वीणा के तार से सिर्फ भक्ति के सुर निकलने लगते हैं।

0: भगवान भोले के भक्त भगवा पोशाक में कंधे पर कावड़ लेकर जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है भगवान भास्कर की रश्मियाँ किसी घने मनोरम उपवन का श्रृंगार कर रही हो। हिंदुस्तान में ये परंपरा अत्यंत प्राचीन है, सदियों से चली आ रही है। सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान भोले के अभिषेक का इतना ज्यादा महात्मय के पीछे देवासुर संग्राम की पौराणिक कथा को आधार माना जाता है। समुद्र मंथन के बाद कालकूट यानी हलाहल और अमृत दोनों का प्राकट्य हुआ। अमृत पाने की होड़ में देवताओं और असुरों के बीच संग्राम छिड़ गया, लेकिन विषपान के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सृष्टि के व्यापक कल्याण के लिए भगवान शिव ने हलाहल पीने की जिम्मेदारी उठाई। हलाहल पीने के बाद उसके प्रभाव से भगवान भोले का गला नीला पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का अभिषेक किया। देवताओं के अभिषेक से भगवान भोले को काफी लाभ हुआ और महादेव देवताओं पर अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से ये दिन सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था। तब से इसी तिथि को सावन की शिवरात्रि के तौर पर मनाने की परंपरा चल पड़ी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावन की शिवरात्रि को अभिषेक करने से भगवान भोले अभी भी उतने ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं।
1: शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से जो हलाहल निकला था उसको उसका पान कर लिए थे। इस कारण से उनका शरीर तप रहा था। भगवान शिव उस हलाहल विष को कंठ में धारण कर लिए थे, इस कारण से उनका मस्तक गर्म हो गया था। उनको शांति प्रदान करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको आराम प्रदान करने के लिए देवी देवता और मनुष्य सभी जलाभिषेक करते हैं। जिस कारण से भगवान शिव का जो शरीर की गर्मी है वह शांत होती है, तो समुद्र मंथन के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है।
0: दरअसल ये दुनिया विश्वास की दूरी पर टिकी हुई है। विश्वास अगर अचल है तो उससे अद्भुत शक्ति मिलती है और यही शक्ति असंभव से असंभव कार्य की प्रेरणा बन जाती है। भोले के भक्तों का विश्वास है कि सावन की शिवरात्रि को जल अभिषेक करने से लोक परलोक दोनों सुधरता है। दरअसल सनातन के संगतों में शिवरात्रि की अद्भुत महिमा बताई गई है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन निशित काल यानी मध्यरात्रि की वेला में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ धरती पर विचरण करते हैं। यही वजह है कि शिवरात्रि की मध्य रात्रि को जल अभिषेक करने वालों को गौरी शंकर का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सावन की शिवरात्रि को भोले भंडारी की पूजा करने से कुंडली में मौजूद तमाम ग्रह दोष जैसे काल सर्प दोष, पितृ दोष और शनि दोष के अशुभ प्रभावों से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि की तिथि को किए गए दान पुण्य का भी शीघ्र लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: जरा सोचिए, समुन्द्र के किनारे खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखें और वहां आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई नजर आए तो नजारा कैसा होगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहां आसमान ने जैसे रंगों की चादर ओढ़ ली हो। मौका था गाले फेसा ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का, जहां श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से आए काइट फ्लायर्स ने अपने हुनर का जलवा दिखाया।

0: आसमान में लहराती पतंगों को तो आपने खूब देखा होगा और इंद्रधनुष की खूबसूरत छटा को भी, पर क्या हो जब पतंगों की दुनिया में इंद्रधनुषी रंग भी शामिल हो जाए। ये कुछ ऐसा ही नजारा है जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है। तस्वीरें हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की। मौका था कोलंबो के गाले फेस ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का। इसमें विशाल काय पतंगों के साथ ही अलग अलग आकृतियों और रंगों वाली छोटी बड़ी पतंगे भी देखने को मिली। यहाँ हर किसी में उत्साह, उमंग और आसमान को छू लेने का जुनून नजर आ रहा था। श्रीलंका में आयोजित ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आए काइट फ्लायर्स ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार करीब 30 देशों के 80 अंतर्राष्ट्रीय काइट फ्लायर्स और 1500 से ज्यादा स्थानीय प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।
1: This is a beautiful kite festival. I've never seen anything like it. It's such a family friendly festival and right on the beach here, and the wind is beautiful, the people are beautiful, the weather's all beautiful.
0: Din hi nahi, is event ne raaton ko bhi roshan rakha. Raat mein aasman mein patangon ka shandaar nazara dikha. अंधेरे आसमान में रोशनी से जगमगाती पतंगों ने कोलंबो के स्काईलाइन को एक अलग ही अंदाज दे दिया। समंदर की लहरें, खुला आसमान और उसमें उड़ती सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे। कोलंबो का ये नजारा सिर्फ एक फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है, बल्कि श्रीलंका की संस्कृति, रचनात्मकता और पर्यटन को दुनिया के सामने पेश करने की एक कोशिश भी है। कोलंबो का ये काइट फेस्टिवल श्रीलंका के पर्यटन अभियान को एक नया रंग देता दिखा। यहाँ पतंगों की डोर ने सिर्फ आसमान को नहीं छुआ, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को भी एक साथ जोड़ा। यानी कोलंबो में पतंगों के बहाने आसमान भी सजा और श्रीलंका ने दुनिया को अपनी खूबसूरती और संस्कृति की एक रंगीन झलक भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे।